0: पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया। सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
2: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है, तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
1: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
3: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
4: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
1: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर, यही दो इलाके बच गए थे जहां सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था।
3: याद करिए, जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं,
4: इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको मालूम है मैं स्वयं आता हूं कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, अब कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता।
1: इधर बीजेपी के दिग्गज समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उधर अखिलेश भी पलटवार कर रहे हैं।
5: किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये सरकार तो वो है जो जान ले रही है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है।
1: वार पलटवार के बीच बात अगर प्लान की हो तो एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बना है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है और पूरी यूपी में भी 20% का मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है। इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है।
1: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
6: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है, आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं।
7: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं। अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा, हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
1: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए एसपी सीधे सीधे निशाने पर है।
7: समाजवादी थी तो वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा, टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
1: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
8: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
1: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा, अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
0: बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना 19 सितंबर की है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं और जो तस्वीरें हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं।
9: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई, तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
10: पुलिस के द्वारा तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकते हैं।
9: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: अब जमुई कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है, विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं लेकिन सरकार में शामिल जेडीयू के नेता बेतुका बयान दे रहे हैं। वो जमुई की घटना को छिटपुट घटना बता रहे हैं।
11: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे।
9: शर्म तो सुबह के नाश्ते में घोट के पी गए हैं उमेश सिंह, तभी इतने जघन्य अपराध को छिटपुट कह रहे हैं। नेताजी जिस दौर की बात आप कर रहे हैं तब से 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, अगर तब जैसे हालात आज भी हैं तो शर्मिंदा हों। आपको होना भी चाहिए जैसे आरजेडी वाले हैं।
12: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रहेगा।
9: वैसे जिस तरह का बयान जेडीयू के नेता ने दिया है उसके बाद तेजस्वी का बयान गलत भी नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
13: फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों तत्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है।
9: अब ये वीडियो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है।
14: इस तरह की घटना खास करके किसी भी क्षेत्र में होना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए ही बहुत ही चिंता की बात है।
9: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं, तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: पंजाब में नशे का मुद्दा गरमाया हुआ है। दावा है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गुलजार सिंह नाम के शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा सिंह ने भी खुदकुशी की कोशिश की है। हालांकि बाद में मालूम यह चला कि खुदकुशी की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह पर पहले से ही कई सारे आपराधिक केस चल रहे हैं।
9: सात सितंबर को गुलजार सिंह और 20 सितंबर को जगसीर सिंह। पंजाब के ये दोनों मामले ड्रग्स से जुड़े हैं। आरोप भी एक ही है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाना जानलेवा हो सकता है। रविवार को जगसीर सिंह जग्गा नाम के शख्स पंजाब में ड्रग्स को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया। जग्गा सिंह ने आरोप लगाया कि उसने ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धमकियां दी जाने लगी, जिससे तंग आकर उसे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जहर खाकर खुदकुशी करने को मजबूर होना पड़ा।
15: नशे को लेकर एक और मामला सामने आया है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला जगसीर उर्फ जग्गा का है, जिसने एक नशीला पदार्थ डिप्टी कमिश्नर संगरूर के सामने खा लिया। उसके बाद राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। सचिन पायलट ने वीडियो वायरल भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल, बीजेपी ने भी ये पूरा मामला उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले पे सवालिया निशान किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि ड्रग्स के मामले उजागर कर रहे हैं।
9: जग्गा सिंह की तस्वीर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने जारी की। तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। पंजाब में विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोल दिया।
16: डेस्परेशन और मजबूर कितने लोग हो गए हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, और अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के ये हालात हो गए हैं, ये बड़ा बात क्लियर है कि ये सीधा सीधा फेलियर भगवंत मान का।
17: नशे रोकण वास्ते विल पावर चाहिदी है, लत्तां विच जान चाहिदी है, और माफिया दे नाल लड़न दी कैपेसिटी चाहिदी है, ते नाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चाहिदे है, जेडे के भगवंत मान कोल एक भी चीज नहीं।
9: आरोपों की ऐसी आंधी चली कि दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार और केजरीवाल को घेरा।
18: आज मैं कहना चाहता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, केजरीवाल को, क्या वचन दिया था तुमने पंजाब को? जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे 3 महीने में खत्म कर देंगे नशा, 6 महीने में नामो निशान नहीं मिलेगा, डेडलाइन दी थी डेडलाइन, लेकिन डेडलाइन एक बार डेड हुई, दोबारा डेड हुई, तिबारा डेड हुई, इनकी डेडलाइन हमेशा डेड होती है।
9: लेकिन आरोपों की आंधी तूफान बनती उससे पहले ही पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला जग्गा पहले से ही आपराधिक किस्म का आदमी, जिस पर 9 केस दर्ज हैं, इसमें रेप जैसे संगीन आरोप भी है।
19: ऑलरेडी 9 FIR दर्ज ने, इना विचों 4 दे विचों कन्विक्टेड ने, जिदे विच वख-वख थाणियां दे केसेस ने, एक्साइज दे केसेस ने, चीमा थाने दे 3 जिदे विचों कन्विक्टेड ने, अते एक NDPS दा केस, सदर पटियाले दा केस है जिदे विचों कन्विक्टेड ने।
20: जग्गा को ड्रग सिंडिकेट से कितना खतरा था और वो लोग किस हद तक इन्हें धमकाते थे, इसका सच तो पुलिस की जांच में आएगा। लेकिन पहले गुलजार और अब जग्गा सिंह का एक ही आरोप लगाना नशे को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। इससे पहले खुदकुशी करने वाले गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे। उनके बेटे के नशे की लत में पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गई, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है उसकी बानगी संगरूर की ये घटनाएं हैं। गुलजार की जान चली गई, जगसीर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन जब पंजाब सरकार की विपक्ष ने घेराबंदी तेज की तो आप प्रवक्ता ने जवाब देते हुए इन नेताओं की तुलना गिद्ध से कर दी।
21: उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में। ये लोग तो वो है, ये गिद्ध है, ये भारत की राजनीति के गिद्ध है और लाश टूटते हैं। वो जगह से लाश बना नहीं, इसलिए शाम तक चुप है।
20: पंजाब में चुनाव नजदीक है और भगवंत मान सरकार नशा मुक्ति के अपने वादे को लेकर कटघरे में, जिसे भुनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। कमलजीत संत, चंडीगढ़, आज तक।
0: आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र की खुदकुशी का सच क्या है, ये मामला लगातार उलझता जा रहा है क्योंकि आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में अब आईआईटी बॉम्बे के अलावा आईआईटी मद्रास की फैकल्टी भी आ गई है। आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में मौन जुलूस निकाला जा रहा है। अब सवाल ये है कि सब अपनी अपनी जगह कायम है, क्या 22 साल के दलित छात्र साहिल ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी।
22: आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के साहिल की आत्महत्या का सच क्या है? क्या साहिल चैट जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? क्या साहिल के साथ उसकी जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा था? आईआईटी बॉम्बे इस वक्त एक छात्र की आत्महत्या से बुरी तरह से घिरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है,
23: भारतीय जनता पार्टी
22: तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में पेच बहुत है, बहुत विवाद है। केस पूरी तरह से उलझा हुआ है क्योंकि एक दलित छात्र ने सुसाइड किया है तो राजनीति भी हो रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि इस छात्र के सुसाइड करने की वजह क्या है, ये समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझना होगा। शुक्रवार को खबर आई कि आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र बखोड़े ने आत्महत्या कर ली। वो आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था। शुक्रवार को ही मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। 19 सितंबर यानी शनिवार को आईआईटी बॉम्बे की तरफ से ये बयान एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एग्जाम पेपर जवाब तलाशने के लिए चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। इसमें ये भी लिखा है कि इस छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि इस केस को छात्र के साथ डिस्कस भी किया गया। फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने छात्र की काउंसलिंग भी की और उसे ये भी बताया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यह छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर शाम को वो अपने ही कमरे में मृत पाया गया। लेकिन ये केस यहीं नहीं रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल से जब साहिल के माता पिता आए तो उन्होंने पवई पुलिस थाने में जो FIR लिखवाई उसमें जातिगत भेदभाव की बात थी। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ आईआईटी बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। ये भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता रविंद्र बकोड़ ने कहा कि प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उनके बेटे को जाति सूचक अपशब्द कहते थे और करीब 3 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में यह भी कहा गया कि उनका बेटा दलित है, इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
2: ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है, और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी है उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है।
22: लेकिन तब तक तो IIT बॉम्बे का कैंपस राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पिछले 4 दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र डायरेक्टर शिरीष केदारे का घेराव कर रहे हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। छात्रों की अपनी मांगे भी हैं। रविवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन में IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने यह ऐलान कर दिया कि वो सोमवार को अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने तालियां भी बजाई।
3: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
4: बोल रहे हैं ना?
3: आप रिजाइन करने वाले? जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं।
4: बोल रहे हैं ना?
3: आप रिजाइन करने?
22: लेकिन आज फिर IIT बॉम्बे की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताते हैं। लेकिन IIT बॉम्बे की तरफ से इस पोस्ट पर आज माफी भी मांगी गई। ये वही पोस्ट है जो साहिल की मौत के बाद शनिवार 19 सितंबर को पोस्ट की गई थी, जिसमें साहिल का एग्जाम के दौरान AI यूज करने की बात कही गई थी। अब IIT बॉम्बे ने अपनी इस पोस्ट पर माफी मांगी है। कहा है कि हमने साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में पहले जो कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। ये घटना किन परिस्थितियों की वजह से हुई ये उपयुक्त एजेंसी की जांच से ही पता चलेगा। यानी अब तमाम दबाव के बाद IIT बॉम्बे जांच की बात कर रहा है, और तब तक वो इस विषय में नहीं जाना चाहता कि साहिल ने किन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या की। लेकिन जो गंभीर आरोप प्रोफेसर सूर्यनारायण पर लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन आरोपों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन की पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है, और प्रोफेसर दुल्ला के पक्ष में IIT बॉम्बे की फैकल्टी भी खड़ी हो गई है। IIT बॉम्बे के फैकल्टी फोरम का कहना है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्यनारायण को सस्पेंड नहीं किया गया, वो अभी भी IIT बॉम्बे की फैकल्टी हैं। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला IIT बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी हैं, जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। अब ये पूरा मामला IIT बॉम्बे के लिए बहुत विवादित भी हो गया है और बड़ा भी। छात्र लगातार अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने साथी प्रोफेसर के साथ खड़ी है।
23: प्रोफेसर डोला के समर्थन में एक तरफ प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ स्टूडेंट्स IIT में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि साहिल को तकरीबन 3 महीनों से सताया जा रहा था, जिसमें उन्होंने पढ़ाई का प्रेशर उसके साथ साथ जाति को लेकर के कई आरोप किए, उसके ऊपर किए गए इस तरह की बात सामने रखी है। आखिर सच क्या है, यह मुंबई क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। जतिन बांद्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: मंगल की किस समस्या के समाधान के लिए हनुमान जी को बूंदी अर्पित करनी चाहिए? मंगल की कौन सी समस्या लाल फल अर्पित करने से दूर हो जाती है? और मंगल की किस समस्या के समाधान के लिए गुड़ का दान करना बड़ा शुभ होता है? कौन से हैं मंगल के दान और कैसे होगा इनसे समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ, गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 गिरफ्तार। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज की बुलंद, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत, संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजों का ऐलान।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और पहले बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर के साथ जिसने पूरे बिहार नहीं बल्कि देश को शर्मसार किया, सवाल खड़े किए, लेकिन अब उसमें कार्यवाही हुई है। दरअसल बिहार के जमुई में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और वसूली का मामला सामने आया है। ये घटना 19 सितंबर की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, फिर उनके साथ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दबाव बढ़ा तो बिहार सरकार कह रही है कि कार्रवाई होगी।
1: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
2: पुलिस के द्वारा 3 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और 2 और हो सकते हैं।
1: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: इस पूरी घटना में बिहार में कानून व्यवस्था की कलई खोली है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर लोगों में, इस तरह के लोगों में पुलिस कानून व्यवस्था का डर क्यों नहीं है। अब जमुई कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार में शामिल जेडीयू के नेता बेतुका बयान दे रहे हैं, वो जमुई की घटना को छिटपुट घटना बता रहे हैं।
3: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे।
1: शर्म तो सुबह के नाश्ते में घोट के पी गए हैं उमेश सिंह, तभी इतने जघन्य अपराध को छिटपुट कह रहे हैं। नेताजी, जिस दौर की बात आप कर रहे हैं तब से 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, अगर तब जैसे हालात आज भी हैं तो शर्मिंदा हों, आपको होना भी चाहिए जैसे आरजेडी वाले हैं।
4: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग को बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रही।
1: वैसे जिस तरह का बयान जेडीयू के नेता ने दिया है उसके बाद तेजस्वी का बयान गलत भी नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
5: फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों तत्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है।
1: अब ये वीडियो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है।
6: इस तरह की घटना खास करके किसी भी क्षेत्र में होना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए ही बहुत ही चिंता की बात है।
1: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं, सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: उधर आईआईटी मुंबई में एक दलित छात्र की खुदकुशी का सच क्या है, यह मामला लगातार उलझता जा रहा है क्योंकि आरोपी परिवार के समर्थन में अब आईआईटी बॉम्बे के अलावा आईआईटी मद्रास की फैकल्टी भी आ गई है। आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में मौन जुलूस निकल रहे हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह यह कायम है कि क्या 22 साल के दलित छात्र साहिल ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या की।
7: बॉम्बे में 22 साल के साहिल की आत्महत्या का सच क्या है? क्या साहिल चैट जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? क्या साहिल के साथ उसकी जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा था? आईआईटी बॉम्बे इस वक्त एक छात्र की आत्महत्या से बुरी तरह से घिरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है,
8: भारतीय जनता पार्टी,
7: तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में पेच बहुत है, बहुत विवाद है। केस पूरी तरह से उलझा हुआ है क्योंकि एक दलित छात्र ने सुसाइड किया है तो राजनीति भी हो रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि इस छात्र के सुसाइड करने की वजह क्या है, ये समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझना होगा। शुक्रवार को खबर आई कि आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र बखोड़े ने आत्महत्या कर ली। वो आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था। शुक्रवार को ही मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। 19 सितंबर यानी शनिवार को आईआईटी बॉम्बे की तरफ से ये बयान एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एग्जाम पेपर जवाब तलाशने के लिए चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। इसमें ये भी लिखा है कि इस छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि इस केस को छात्र के साथ डिस्कस भी किया गया। फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने छात्र की काउंसलिंग भी की और उसे ये भी बताया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यह छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर शाम को वो अपने ही कमरे में मृत पाया गया। लेकिन ये केस यही नहीं रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल से जब साहिल के माता पिता आए तो उन्होंने पवई पुलिस थाने में जो FIR लिखवाई उसमें जातिगत भेदभाव की बात थी। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ आईआईटी बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। यह भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता रविंद्र बकोड़े ने कहा कि प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उनके बेटे को जाति सूचक अपशब्द कहते थे और करीब 3 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में यह भी कहा गया कि उनका बेटा दलित है इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
9: ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी है उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है।
7: लेकिन तब तक तो आईआईटी बॉम्बे का कैंपस राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पिछले 4 दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र डायरेक्टर शिरीष केदारे का घेराव कर रहे हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। छात्रों की अपनी मांगे भी हैं। रविवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन में आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने यह ऐलान कर दिया कि वो सोमवार को अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने तालियां भी बजाई।
10: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूं। बोल रहे ना?
7: लेकिन आज फिर आईआईटी बॉम्बे की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताते हैं। लेकिन आईआईटी बॉम्बे की तरफ से इस पोस्ट पर आज माफी भी मांगी गई। ये वही पोस्ट है जो साहिल की मौत के बाद शनिवार 19 सितंबर को पोस्ट की गई थी जिसमें साहिल का एग्जाम के दौरान AI यूज करने की बात कही गई थी। अब आईआईटी बॉम्बे ने अपनी इस पोस्ट पर माफी मांगी है। कहा है कि हमने साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में पहले जो कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। ये घटना किन परिस्थितियों की वजह से हुई ये उपयुक्त एजेंसी की जांच से ही पता चलेगा। यानी अब तमाम दबाव के बाद आईआईटी बॉम्बे जांच की बात कर रहा है और तब तक वो इस विषय में नहीं जाना चाहता कि साहिल ने किन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या की। लेकिन जो गंभीर आरोप प्रोफेसर सूर्यनारायण पर लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन आरोपों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन की पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है और प्रोफेसर दुल्ला के पक्ष में आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी भी खड़ी हो गई है। आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी फोरम का कहना है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्यनारायण को सस्पेंड नहीं किया गया, वो अभी भी आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी हैं। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला आईआईटी बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी हैं, जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। अब ये पूरा मामला आईआईटी बॉम्बे के लिए बहुत विवादित भी हो गया है और बड़ा भी। छात्र लगातार अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने साथी प्रोफेसर के साथ खड़ी है।
8: प्रोफेसर डोला के समर्थन में एक तरफ प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ स्टूडेंट्स आईआईटी बी में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि साहिल को तकरीबन 3 महीनों से सताया जा रहा था, जिसमें उन्होंने पढ़ाई का प्रेशर उसके साथ साथ जाति को लेकर के कई आरोप किए, उसके ऊपर किए गए इस तरह की बात सामने रखी है। आखिर सच क्या है, यह मुंबई क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। जतिन बांद्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: और बात करेंगे उत्तर प्रदेश मिशन 2027 की, जिसको लेकर के तमाम पार्टियां अपने समीकरण साध रही हैं। बीजेपी अपने संगठन को चुनावी बोर्ड में एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है। उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम यूपी दौरा भी अहम है। नितिन नवीन सीएम योगी के साथ मेरठ में थे, जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
11: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया। सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
12: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज्य से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है, तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
11: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
12: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
11: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर, यही दो इलाके बच गए थे जहां सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था।
12: याद करिए, जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं, इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको यालुम है, मैं स्वयं आता हूं कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता।
11: इधर बीजेपी के दिग्गज समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उधर अखिलेश भी पलटवार कर रहे हैं।
13: किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये सरकार तो वो है जो जान ले रही है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है।
11: वार पलटवार के बीच बात अगर प्लान की हो तो एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बना है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: तो हमेशा यह सवाल उठता गया, आखिर पश्चिम यूपी ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि पश्चिम यूपी के चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। यूपी में 20% मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है। इस बार इसी वोट बैंक की लड़ाई पश्चिम यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिख रही है, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी की नो एंट्री है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। डेडलाइन भी दे दी है 2 अक्टूबर की, कि अगर बात हुई तो ठीक, वरना हम अपने मन से गठबंधन करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखिए जरा ये रिपोर्ट।
11: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
14: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है, आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं।
15: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा, हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है, और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
11: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए SP सीधे सीधे निशाने पर है।
15: समाजवादी थी तो वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है। ना वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
11: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
16: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
11: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा, अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के साथ साथ चुनाव पंजाब में भी हैं, तो पंजाब में भी सियासत गरमाई हुई है, और इस बार मामला हमेशा की तरह, हर चुनाव की तरह नशा है। नशा सियासत के केंद्र में है, तो दावा है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गुलजार सिंह नामक एक शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप है कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा सिंह ने भी खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि बाद मालूम चला कि खुदकुशी की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह पर पहले से ही कई सारे आपराधिक केस चल रहे हैं।
17: सात सितंबर को गुलजार सिंह और 20 सितंबर को जगसीर सिंह, पंजाब के ये दोनों मामले ड्रग्स से जुड़े हैं। आरोप भी एक ही है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाना जानलेवा हो सकता है। रविवार को जगसीर सिंह जग्गा नाम के शख्स पंजाब में ड्रग्स को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया। जग्गा सिंह ने आरोप लगाया कि उसने ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धमकियां दी जाने लगी, जिससे तंग आकर उसे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जहर खाकर खुदकुशी करने को मजबूर होना पड़ा।
18: नशे को लेकर एक और मामला सामने आया है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला जगसीर उर्फ जग्गा का है, जिसने एक नशीला पदार्थ डिप्टी कमिश्नर संगरूर के सामने खा लिया। उसके बाद राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। सचिन पायलट ने वीडियो वायरल भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल बीजेपी ने भी ये पूरा मामला उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले पे सवालिया निशान किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि ड्रग्स के मामले उजागर कर रहे हैं।
17: जग्गा सिंह की यह तस्वीर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने जारी की। तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। पंजाब में विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोल दिया।
19: डेस्परेशन और मजबूर कितने लोग हो गए हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, और अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के ये हालात हो गए हैं, ये बड़ा बात क्लियर है कि ये सीधा सीधा फेलियर भगवंत मान का।
20: नशे रोकने वास्ते विल पावर चाहिए, लत्तां विच जान चाहिए है, और माफिया दे नाल लड़न दी कैपेसिटी चाहिए है, ते नाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल चाहिए है, जेड़े के भगवंत मान कोल एक भी चीज नहीं।
17: आरोपों की ऐसी आंधी चली कि दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार और केजरीवाल को घेरा।
21: आज मैं कहना चाहता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, केजरीवाल को क्या वचन दिया था तुमने पंजाब को? जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे 3 महीने में खत्म कर देंगे नशा, 6 महीने में नामो निशान नहीं मिलेगा। डेडलाइन दी थी डेडलाइन, लेकिन डेडलाइन एक बार डेड हुई, दोबारा डेड हुई, तिबारा डेड हुई, इनकी डेडलाइन हमेशा डेड होती है।
17: लेकिन आरोपों की आंधी तूफान बनती उससे पहले ही पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला जग्गा पहले से ही आपराधिक किस्म का आदमी है, जिस पर 9 केस दर्ज हैं, इसमें रेप जैसे संगीन आरोप भी है।
22: उन्होंने ऑलरेडी 9 FIRs दर्ज ने, इना विचों 4 कन्विक्टेड ने, जिदे विच वक वक थाने दे केसेस ने, एक्साइज दे केसेस ने, चीमा थाने दे 3 जिदे विचों कन्विक्टेड ने, अते एक NDPS दा केस सदर पटियाले दा केस है जिदे विचों कन्विक्टेड ने।
17: जग्गा को ड्रग सिंडिकेट से कितना खतरा था और वो लोग किस हद तक इन्हें धमकाते थे, इसका सच तो पुलिस की जांच में आएगा। लेकिन पहले गुलजार और अब जग्गा सिंह का एक ही आरोप लगाना नशे को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। इससे पहले खुदकुशी करने वाले गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे, उनके बेटे के नशे की लत में पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गई, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है, उसकी बानगी संगरूर की ये घटनाएं हैं। गुलजार की जान चली गई, जगसीर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन जब पंजाब सरकार की विपक्ष ने घेराबंदी तेज की तो आप प्रवक्ता ने जवाब देते हुए इन नेताओं की तुलना गिद्ध से कर दी।
23: उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में, ये लोग तो वो है, ये गिद्ध है, ये भारत की राजनीति के गिद्ध है और लाश टूटते हैं। वो जगह से लाश बना नहीं, इसलिए शाम तक चुप हो जाए।
17: पंजाब में चुनाव नजदीक है और भगवंत मान सरकार नशा मुक्ति के अपने वादे को लेकर कटघरे में, जिसे भुनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।
0: अगली खबर मध्य प्रदेश की है, जहां शाजापुर में एक सरकारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
2: ये क्या पत्नी आपकी?
17: सरकारी स्कूलों में जवाबदेही का कितना ज्यादा काल है, उससे आप मध्य प्रदेश के शाजापुर की इस कहानी से खबरदार हो जाएंगे। माथा पीट लेने वाली इस कहानी के मुख्य किरदार ये पति पत्नी है। जैस्मीन भी एक सरकारी स्कूल में टीचर है, लेकिन पढ़ाते उनके पति सादिक सिद्दीकी है। मतलब कागजों में जैस्मीन भी टीचर है, हाजिरी भी वो लगाती है, वेतन भी पाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते इनके पति। मानो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना घर का कामकाज हो गया, जिसे मियां बीवी ने मिलजुल कर बांट लिया। ये मजाक शाजापुर के गांव मुल्लाखेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक दो महीने नहीं बल्कि पिछले दो साल से चल रहा है। उससे भी बड़ी बात ये कि प्रिंसिपल साहिबा ये जानती थी।
3: यहाँ पर एक भाई साहब जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, वो कौन थे?
4: मिस्टर
3: है, तो उनको पढ़ाने का अधिकार है यहाँ पे?
4: पढ़ाने का अधिकार नहीं है।
3: वो फिर भी यहाँ पे पढ़ा रहे थे, अभी
4: भी यहाँ पे पढ़ा थे।
3: है ना, क्या नाम है उनका?
4: उनका साजिद सिद्दीकी।
3: साजिद सिद्दीकी कब से पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे?
4: ये तो दो साल से पढ़ा रहे हैं।
3: दो साल से यही पढ़ा रहे हैं वो, मतलब उनकी वाइफ भी यही रहती है?
4: दो साल तो नहीं है, मतलब जैसे अभी अटेंडेंस जो लग रही है ना, जब उनको छोड़ने आते हैं तो नहीं रुक जाते हैं,
3: है ना, और ये बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे।
17: इस कारनामे की रिपोर्टिंग के लिए आज तक की टीम जब स्कूल में पहुंची, तब जैस्मीन बी के होनहार मियां सादिक सिद्दीकी स्कूल में ही मिल गए। लेकिन हमारे सवाल ने मौका जायका बिगाड़ दिया।
2: ये क्या पत्नी आपकी?
4: हाँ।
2: फिर आप यहाँ पढ़ाते हो? मतलब
4: नहीं पढ़ा, मैं तो आया था, मैं टाइम नहीं, मैं तो अभी आगे छोड़ छोड़ा गया, कल जब बैठ जाता हूं तो
2: कब से आपकी ऐसी तबीयत वगैरह खराब है?
4: ये हुई अपने पूर्व रहते बाद।

0: क्या काम करते हो वैसे? आप क्या काम करते हो?
1: मेरा तो नहीं क्लिनिक
0: क्लिनिक है, डॉक्टर हो?
2: सरकारी स्कूलों में आमतौर पर लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनमें अनुशासन और जवाबदेही नहीं है। शाजापुर का ये स्कूल इस बात को साबित भी करता है क्योंकि 2 साल से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ चल रहा है, लेकिन अफसरों को इसकी भनक तक नहीं है, जबकि ये स्कूल जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये स्कूल विवादों में आया। मुल्लाखेड़ी के इसी स्कूल में मिड डे मील के बर्तनों के नाम पर कथित फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि निकालने का मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले शाजापुर कलेक्टर इस स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए गई थी तो बच्चों की उपस्थिति पूरी दिखाने के लिए टीचर ने अपनी नातिन को छात्रा बनाकर खड़ा कर दिया था। स्कूल में मदरसे के बच्चों को पढ़ाए जाने की भी बात सामने आई थी। एक के बाद एक गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को भी आखिरकार जागना पड़ा और जासमीन बी को नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी गई।
3: कलेक्टर मैडम निरीक्षण के लिए पूछी थी तो वहाँ कुछ दूसरे स्कूल की या दूसरी लड़कियाँ भी बैठी थी, क्या कुछ मामला था?
4: उसमें भी हमने जांच कराई है, जांच में यही निकल के आया है कि संबंधित शिक्षिका उस दिन उनके घर में जो बच्चा था वो देखभाल के लिए कोई था नहीं वहाँ पर घर पे, इसलिए वो अपने साथ में लेके आई थी ऐसा उन्होंने बताया, जबकि बालिका वो वहाँ पर उज्जैन में पढ़ती है। लेकिन फिर भी हमने दूसरी चीज़ को भी हमने देखा है, ये तो एक बालिका का प्रकरण हुआ लेकिन अन्य बच्चे भी हमें वहाँ पर इस प्रकार से मिले जो कि मदरसों में दर्ज हैं, उसके संबंध में भी हमने उसकी जांच वगैरह कराई है तो इस चीज़ की पुष्टि हुई कि बच्चे मदरसे में दर्ज थे।
2: अब सवाल ये है कि टीचर की जगह उसके पति के पढ़ाने की बात किस किस अफसरों को पता थी? क्या ये सारा काम मिली भगत से किया जा रहा था इसीलिए हाजिरी भी लगती रही और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया?
5: क्लास में टीचर की जगह अगर कोई और पढ़ा रहा हो तो सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का भी है। शाजापुर शहर जो कि जिला मुख्यालय भी है वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर अगर ये गड़बड़ी चल रही थी तो सवाल ये है कि क्या सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ कागजों में होती है?
6: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
8: मंगल की किस समस्या के समाधान के लिए हनुमान जी को बूंदी अर्पित करनी चाहिए? मंगल की कौन सी समस्या लाल फल अर्पित करने से दूर हो जाती है? और मंगल की किस समस्या के समाधान के लिए गुड़ का दान करना बड़ा शुभ होता है? कौन से हैं मंगल के दान और कैसे होगा इनसे समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ, गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज की बुलंद, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत, संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजों का ऐलान।

0: में एक नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ होती है, बदसलूकी होती है। मामला सामने आता है 19 सितंबर को, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक से जा रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोग सड़क पर रोकते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उसके बाद उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। देखिए रिपोर्ट।
1: ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं और दिलों में खौफ भर देती हैं। बिहार की जमुई की तस्वीरें हैं ये, जहां एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े हैं ये दरिंदे। बीच सड़क पर एक लड़की और लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, ये लोग उन पर टूट पड़े। इनकी हिम्मत तो देखिए कि निष्ठा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। लड़की और लड़का दोनों गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई जाने दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन इन खूंखार जीवों को दया कहाँ आती है। दोनों माफी मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तभी मुंह पर लाल गमछा बांधे एक दरिंदा आया और लड़की को उठाकर भागने लगा। लड़का तुरंत उसके पीछे भागा, कुछ दूर पर रोक लिया और जैसे तैसे करके उसके चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था, जिसे देखकर कई और लोग भी इकट्ठा हो गए। लड़का और लड़की दोनों इतने डर गए थे कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने बीच बचाव करके दोनों को वहां से रवाना कर दिया। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
2: पुलिस के द्वारा तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकते हैं।
1: अब पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का कितना खौफ है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: इस घटना के बाद अब जबरदस्त सियासत भी हो रही है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है। लेकिन सरकार में शामिल जेडीयू के नेता बेतुका बयान दे रहे हैं, वो जमुई की घटना को छिटपुट घटना बता रहे हैं।
3: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे।
1: शर्म तो सुबह के नाश्ते में घोट के पी गए हैं उमेश सिंह, तभी इतने जघन्य अपराध को छिटपुट कह रहे हैं। नेताजी जिस दौर की बात आप कर रहे हैं, तब से 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं। अगर तब जैसे हालात आज भी हैं तो शर्मिंदा हों, आपको होना भी चाहिए जैसे आरजेडी वाले हैं।
4: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग को बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रही।
1: वैसे जिस तरह का बयान जेडीयू के नेता ने दिया है, उसके बाद तेजस्वी का बयान गलत भी नहीं है, क्योंकि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
5: फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और साइबर सेल और स्थानीय पुलिस दोनों त्वरित कार्रवाई करने में लगी हुई है।
1: अब ये वीडियो देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है।
6: इस तरह की घटना खास करके किसी भी क्षेत्र में होना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए ही बहुत ही चिंता की बात है।
1: बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं। सरकार कहती है कि अपराधी बचेंगे नहीं, तो विपक्ष कहता है कि पुलिस पंगु हो गई है। इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर बेटियों के साथ जमुई जैसा कांड हो रहा है। जमुई से राकेश सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को, क्योंकि मिशन यूपी 2027 को लेकर के बीजेपी अपने संगठन को लेकर चुनावी मोड एक्टिव करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रही है। उसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन का पश्चिम यूपी दौरा बेहद अहम है। नितिन नबीन के साथ सीएम योगी भी मेरठ में थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
7: बीजेपी बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पश्चिमी यूपी के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन मेरठ पहुंचे तो उनका स्वागत इस अंदाज में किया गया। सीएम योगी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम यूपी में लग गई है। यहां नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
8: उस कार्यकर्ता भाइयों के साथ बैठा हूं जिन कार्यकर्ता भाइयों ने उस आतंक के राज से, उस जंगल के राज से, और हम कह सकते हैं वो परिवारवादी राज से इस राज्य को निकालकर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई मिशन को पूरा किया है, तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और परिश्रम है।
7: मेरठ के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और वहीं सनातन का उद्घोष किया।
8: भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को
9: गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था।
7: पश्चिमी यूपी में योगी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम बताते हैं कि 27 की सियासत में पश्चिमी यूपी की क्या अहमियत है। पश्चिमी यूपी में मेरठ और सहारनपुर यही दो इलाके बच गए थे जहां सीएम योगी का कार्यक्रम नहीं हुआ था।
8: याद करिए, जो लोग आपकी विरासत को कोसते थे, सनातन को कोसते हैं,
9: इन लोगों ने कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हमने कहा था कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है, कावड़ यात्रा चलेगी, धूम धड़ाके के साथ चलेगी। आपको मालूम है मैं स्वयं आता हूं कावड़ यात्रा में भाग लेता हूं, पुष्प वर्षा भी करता हूं। इस सनातन के प्रतीक है, अब कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे रोक नहीं लगा सकता।
7: इधर बीजेपी के दिग्गज समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उधर अखिलेश भी पलटवार कर रहे हैं।
10: किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये सरकार तो वो है जो जान ले ले रही है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है।
7: वार पलटवार के बीच बात अगर प्लान की हो तो एनडीए के प्लान के मुताबिक पश्चिमी यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 महीने में पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां और 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट मिले हैं। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बना है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दरअसल पश्चिम यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है और पूरी यूपी में 20% मुस्लिम वोट सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला वोट बैंक है, और इसीलिए इस बार वोट बैंक की लड़ाई पश्चिम यूपी से लेकर पूरे यूपी में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी की नो एंट्री हो रही है, जबकि ओवैसी ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है।
7: यूपी में चुनावी समर की तैयारियां तेज हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, चुनाव से पहले हर दांव चला जा रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी की ओर से विपक्ष को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है।
11: हमने पब्लिकली कई मर्तबा कहा है, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है, आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं।
12: मैं सिर्फ दोबारा यही कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद रोना नहीं, इलेक्शन के बाद मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये लोग समझते हैं तो समझें, मगर मैं इस बात को आपके सामने खुलकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा, हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
7: ओवैसी की पार्टी यूपी में उन सीटों पर खासा फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि एक ओर वो समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिसके जरिए एसपी सीधे सीधे निशाने पर है।
12: समाजवादी थी तो वाई का फायदा था, अब बाबा बन गए तो टी का फायदा है। टी का फायदा है ना, वो एम बोलते ना ये एम बोलते, कोई एम नहीं बोलता।
7: उधर समाजवादी पार्टी से अब तक ओवैसी के ऑफर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उल्टा समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी की चुनावी रणनीति पर सवाल ही उठा रही है।
13: AIMIM भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के वोटों के बंटवारा करने का प्रयास हो रहा है।
7: ओवैसी की गठबंधन के डेडलाइन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। साफ है कि विपक्ष की पार्टियां साथ आती हैं तो यूपी में सियासत में नया समीकरण बनेगा, अगर साथ नहीं आती तो विपक्षी दलों के एजेंडे पर ओवैसी का हमला और ज्यादा तेज होगा। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के साथ चुनाव पंजाब में भी होने वाले हैं और इसीलिए पंजाब में भी राजनीति गर्म है और हर बार की तरह, हर चुनाव की तरह नशा वहां के राजनीति के केंद्र में आ चुका है। अब दावा इसके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गुलजार सिंह नाम के एक शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप है कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा सिंह ने भी खुदकुशी की कोशिश की। बाद में यह पता चला कि खुदकुशी की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह पर पहले से ही कई सारे आपराधिक केस चल रहे हैं।
14: सात सितंबर को गुलजार सिंह और 20 सितंबर को जगसीर सिंह, पंजाब के ये दोनों मामले ड्रग्स से जुड़े हैं। आरोप भी एक ही है कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाना जानलेवा हो सकता है। रविवार को जगसीर सिंह जग्गा नाम के शख्स पंजाब में ड्रग्स को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया। जग्गा सिंह ने आरोप लगाया कि उसने ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धमकियां दी जाने लगी, जिससे तंग आकर उसे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जहर खाकर खुदकुशी करने को मजबूर होना
15: पड़ा।
16: नशे को लेकर एक और मामला सामने आया है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला जगसीर उर्फ जग्गा का है, जिसने एक नशीला पदार्थ डिप्टी कमिश्नर संगरूर के सामने खा लिया। उसके बाद राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। सचिन पायलट ने वीडियो वायरल भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल, बीजेपी ने भी ये पूरा मामला उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले पे सवालिया निशान किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि ड्रग्स के मामले उजागर कर रहे हैं।
14: जग्गा सिंह की यह तस्वीर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने जारी की। तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। पंजाब में विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोल दिया।
17: डेस्परेशन और मजबूर कितने लोग हो गए हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, और अगर उसका होम डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के ये हालात हो गए हैं, ये बड़ा बात क्लियर है कि ये सीधा सीधा फेलियर भगवंत मान का।
18: नशे रोकण वास्ते विल पावर चाहिए, लत्तां विच जान चाहिए है, और माफिया दे नाल लड़न दी कैपेसिटी चाहिए है, ते नाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल चाहिए है, जेड़े के भगवंत मान कोल एक भी चीज नहीं।
14: आरोपों की ऐसी आंधी चली कि दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार और केजरीवाल को घेरा।
19: आज मैं कहना चाहता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, केजरीवाल को, क्या वचन दिया था तुमने पंजाब को? जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे 3 महीने में खत्म कर देंगे नशा, 6 महीने में नामो निशान नहीं मिलेगा। डेडलाइन दी थी डेडलाइन, लेकिन डेडलाइन एक बार डेड हुई, दोबारा डेड हुई, तिवारा डेड हुई, इनकी डेडलाइन हमेशा डेड होती है।
14: लेकिन आरोपों की आंधी तूफान बनती उससे पहले ही पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला जग्गा पहले से ही आपराधिक किस्म का आदमी, जिस पर 9 केस दर्ज है, जिसमें रेप जैसे संगीन आरोप भी है।
15: ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 9 FIR ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਵਿਕਟਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਚੀਮਾ ਥਾਣੇ ਦੇ 3, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਵਿਕਟਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਕੇਸ, ਸਦਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਵਿਕਟਡ ਨੇ।
14: जग्गा को ड्रग्स सिंडिकेट से कितना खतरा था और वो लोग किस हद तक इन्हें धमकाते थे, इसका सच तो पुलिस की जांच में आएगा। लेकिन पहले गुलजार और अब जग्गा सिंह का एक ही आरोप लगाना नशे को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कहने को तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा, लेकिन असल में जो नागरिक ड्रग्स के खिलाफ जमीनी अभियान चला रहे हैं, उनका जीना मुहाल हो गया है। इससे पहले खुदकुशी करने वाले गुलजार सिंह भी संगरूर के रहने वाले थे। उनके बेटे के नशे की लत में पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आरोप है कि जब गुलजार ने मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के स्थानीय समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने गुलजार सिंह पर दबाव बनाया कि वो मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गुलजार को जाति सूचक गालियां दी गई, अपमानित किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ चुनावी अभियान तो चल रहा है, लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है, उसकी बानगी संगरूर की ये घटनाएं हैं। गुलजार की जान चली गई, जगसीर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन जब पंजाब सरकार की विपक्ष ने घेराबंदी तेज की तो आप प्रवक्ता ने जवाब देते हुए इन नेताओं की तुलना गिद्ध से कर दी।
20: उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा पंजाब में। ये लोग तो वो है, ये गिद्ध है, ये भारत की राजनीति के गिद्ध है और लाश टूटते हैं। वो जगह से लाश बना नहीं, इसलिए आज तक चुप है।
14: पंजाब में चुनाव नजदीक है और भगवंत मान सरकार नशा मुक्ति के अपने वादे को लेकर कटघरे में, जिसे भुनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस के पंजाब प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी थी। कमलजीत संत, चंडीगढ़, आज तक।
0: इसी मध्य प्रदेश से अगली खबर ये कि साजापुर में सरकारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ जो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कागजों में स्कूल में महिला शिक्षिका की नियुक्ति है, हाजिरी भी शिक्षिका की, वेतन भी शिक्षिका का, लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षिका के पति। देखिए पूरी रिपोर्ट।
21: क्या पत्नी आपकी?
14: सरकारी स्कूलों में जवाबदेही का कितना ज्यादा काल है, उससे आप मध्य प्रदेश के शाजापुर की इस कहानी से खबरदार हो जाएंगे। माथा पीट लेने वाली इस कहानी के मुख्य किरदार ये पति पत्नी है। जासमीन भी एक सरकारी स्कूल में टीचर है, लेकिन पढ़ाते उनके पति सादिक सिद्दीकी है। मतलब कागजों में जासमीन भी टीचर है, हाजिरी भी वो लगाती है, वेतन भी पाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते इनके पति। मानो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना घर का कामकाज हो गया, जिसे मियां बीवी ने मिलजुल कर बांट लिया। ये मजाक शाजापुर के गांव मुल्ला खेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक दो महीने नहीं बल्कि पिछले 2 साल से चल रहा है। उससे भी बड़ी बात ये कि प्रिंसिपल साहिबा ये जानती थी।
22: यहाँ पर एक भाई साहब जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, वो कौन थे?
23: वो इनके जासमीन मेटा मतलब उनके मिस्टर थे।
22: मिस्टर हैं, तो उनको पढ़ाने का अधिकार है यहाँ पे?
23: पढ़ाने का अधिकार नहीं,
22: वो फिर भी यहाँ पे पढ़ा रहे थे। अभी है ना, क्या नाम है उनका?
23: साजिद सिद्दीकी।
22: साजिद सिद्दीकी कब से पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे?
23: ये तो 2 साल से पढ़ा रहे हैं।
22: 2 साल से यही पढ़ा रहे हैं वो, मतलब उनकी वाइफ भी यही रहती
23: तो
22: है।
23: 2 साल तो नहीं है, मतलब जैसे ये अभी अटेंडेंस जो लग रही है ना,
22: हाँ?
23: जब उनको छोड़ने आते हैं तो नहीं, रुक जाते हैं
22: वो, है ना, और ये बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे।
14: इस कारनामे की रिपोर्टिंग के लिए आज तक की टीम जब स्कूल में पहुंची, तब जासमीन बी के होनहार मियां सादिक सिद्दीकी स्कूल में ही मिल गए। लेकिन हमारे सवाल ने मुंह का जायका बिगाड़ दिया।
21: ये क्या पत्नी आपकी?
23: हाँ।
21: फिर आप यहाँ पढ़ाते हो? मतलब
23: नहीं पढ़ा, मैं तो आया था, मैं तो कभी छोड़ छोड़ा गया, कभी अब बैठ जाता हूँ।
21: कब से आपकी ऐसी तबीयत वगैरह खराब है?
23: कोरोना
21: के बाद से ऐसे ही है ना, तब से आप इनको लेने छोड़ने आते हो। आप क्या काम करते हो वैसे? आप क्या काम करते हो?
23: मेरा तो नहीं, क्लिनिक
21: है, डॉक्टर हो।
14: सरकारी स्कूलों में आमतौर पर लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनमें अनुशासन और जवाबदेही नहीं। शाजापुर का ये स्कूल इस बात को साबित भी करता है क्योंकि 2 साल से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ चल रहा है, लेकिन अफसरों को इसकी भनक तक नहीं, जबकि ये स्कूल जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये स्कूल विवादों में आया। मुल्ला खेड़ी के इसी स्कूल में मिड डे मील के बर्तनों के नाम पर कथित फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि निकालने का मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले शाहजहापुर कलेक्टर इस स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए गई थी तो बच्चों की उपस्थिति पूरी दिखाने के लिए टीचर ने अपनी नातिन को छात्रा बनाकर खड़ा कर दिया था। स्कूल में मदरसे के बच्चों को पढ़ाए जाने की भी बात सामने आई थी। एक के बाद एक गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को भी आखिरकार जागना पड़ा और जैस्मीन बी को नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी गई।
22: कलेक्टर मैडम निरीक्षण के लिए पूछी थी तो वहाँ कुछ दूसरे स्कूल की या दूसरी लड़कियाँ भी बैठी थी, क्या कुछ मामला था?
2: उसमें भी हमने जांच कराई है, जांच में ये निकल के आया है कि संबंधित शिक्षिका उस दिन उनके घर में जो बच्चा था वो देखभाल के लिए कोई था नहीं वहाँ पर घर पे, इसलिए वो अपने साथ में लेके आई थी ऐसा उन्होंने बताया, जबकि बालिका वो वहाँ पर उज्जैन में पढ़ती है। लेकिन फिर भी हमने दूसरी चीज़ को भी हमने देखा है, ये तो एक बालिका का प्रकरण हुआ लेकिन अन्य बच्चे भी हमें वहाँ पर इस प्रकार से मिले जो कि मदरसों में दर्ज हैं, उसके संबंध में भी हमने उसकी जांच वगैरह कराई है तो इस चीज़ की पुष्टि हुई कि बच्चे मदरसे में दर्ज थे।
14: अब सवाल ये है कि टीचर की जगह उसके पति के पढ़ाने की बात किस किस अफसरों को पता थी, क्या ये सारा काम मिली भगत से किया जा रहा था इसीलिए हाजिरी भी लगती रही और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया।
3: क्लास में टीचर की जगह अगर कोई और पढ़ा रहा हो तो सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का भी है। शाहजहापुर शहर जो कि जिला मुख्यालय भी है वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर अगर यह गड़बड़ी चल रही थी तो सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ कागजों में होती है?
0: में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: मंगल की किस समस्या के समाधान के लिए हनुमान जी को बूंदी अर्पित करनी चाहिए? मंगल की कौन सी समस्या लाल फल अर्पित करने से दूर हो जाती है? और मंगल की किस समस्या के समाधान के लिए गुड़ का दान करना बड़ा शुभ होता है? कौन से हैं मंगल के दान और कैसे होगा इनसे समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, वो खबर जिसने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बिहार के जमुई

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ, गठबंधन उसी से जो पहले से है साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 की गिरफ्तारी। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी मामले में डीन से हटाए गए प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज की बुलंद, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। और रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत, संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजों का ऐलान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मंगल ग्रह अगर जीवन में समस्या दे रहा हो तो मंगल की किन वस्तुओं के दान से आप मंगल की समस्या को दूर कर सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:43 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 7:06 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको आज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मंगल ग्रह की वजह से आपके जीवन में किसी तरह की दिक्कत है, किसी तरह की समस्या है, तो आप क्या दान करें मंगल ग्रह से संबंधित, जिससे आपकी समस्याएं दूर हो जाएं। मंगल कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, मंगल की विशिष्टताएं क्या हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, मंगल को ग्रहों में सेनापति माना जाता है। जैसे सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, वैसे ही मंगल सेनापति हैं। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम के स्वामी माने जाते हैं। मंगल का मुख्य तत्व अग्नि तत्व है और मंगल का मुख्य रंग है लाल। तांबा मंगल की धातु है और जौ मंगल का अनाज है। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। देखिए, सेनापति का मतलब ये नहीं है कि आप युद्ध लड़ने जाएंगे तो आपको बचाएगा। आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से, आपके जीवन में आने वाली मुश्किलों से, रोगों और बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा। ये काम सेनापति का है, ये काम मंगल का है। मंगल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना चाहते हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतान को लेकर परेशान ना हों, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो मंगल किस तरह की समस्या जीवन में देता है जिसके लिए हमें मंगल का दान करना चाहिए? मंगल के खराब होने के क्या परिणाम होते हैं? देखिए, अगर मंगल किसी व्यक्ति का खराब है, निगेटिव है, तो व्यक्ति क्रूर और हिंसक स्वभाव का होता है, क्रूर होता है, वायलेंट होता है। मंगल अगर खराब हो, आदमी चिल्लाए कितना भी ज्यादा, अपने आप को कितना भी कॉन्फिडेंट दिखाए, लेकिन वास्तव में उसके आत्मविश्वास और साहस का स्तर कमजोर होता है। मंगल अगर खराब हुआ तो संपत्ति के मामले में, खास तौर से जमीन के मामले में, मुश्किल

झंझट पैदा होगा। व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं, खासतौर से मंगल होता है बोन मैरो का मालिक, इसीलिए व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं या बोन मैरो जैसी प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बनती हैं। मंगल अगर खराब हुआ आप कर्ज से बच नहीं सकते। कर्ज और मुकदमेबाजी, कर्ज और विवाद आपका लगा रहेगा। और अगर मंगल ज्यादा खराब हुआ, किसी और पाप ग्रह से इंटेंगल्ड हुआ, प्रभाव हुआ, तो कभी कभी जेल के दर्शन भी हो जाएंगे। अगर मंगल निगेटिव है और विवाह के भाव से इसका संबंध बन जाता है तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। वैवाहिक जीवन में पहले झगड़े होते हैं, तनाव होता है, फिर मुकदमेबाजी, डिवोर्स, जेल यात्रा, ऐसी नौबत आ जाती है। मंगल पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खान पान में सावधानी रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दीपिका ने हमें लिखा है, पुणे महाराष्ट्र से लिखती हैं। दीपिका की जन्म तारीख है 7 अक्टूबर 1990। जन्म का समय शाम के 6:35। जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। दीपिका कह रही हैं कि मैं नौकरी बदलने का काफी समय से प्रयास कर रही हूं, क्या करूं कि मेरी नौकरी बदले और भविष्य मेरा कैसा रहेगा। दीपिका, आपकी कुंडली के हिसाब से मार्च 2027 तक अभी हम आपको नौकरी बदलने की कोई सलाह नहीं देंगे। मार्च 2027 तक जिस नौकरी में हैं वहीं रहिए, उसके पहले रिस्क मत लीजिए। अप्रैल 2027 से आप नौकरी बदलने का प्रयत्न करें। अप्रैल, मई, जून 2027 में नौकरी बदलेगी और आपको सफलता मिलेगी। अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिए, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए और थोड़ा समय अगर अपने परिवार को दें तो जीवन बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहने, 14-15 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अब अगर मंगल आपकी कुंडली में अशुभ है, आप लगातार बीमार रहते हैं, आपकी मुकदमेबाजियां चल रही हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के परेशान हैं, डर, घबराहट, चिंता, बेचैनी लगी रहती है, भाई भाई के संबंध खराब हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मंगल निगेटिव है, अशुभ है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय पुस्तकों में, किताबों में मंगल के लिए बताए गए हैं। आप अपने आचरण को बदलकर अपना खान पान, अपनी जीवनचर्या, अपने बात करने का तरीका, अपने आचरण से, मंत्र का जप करने से, रत्न का प्रयोग करके और दान से आप मंगल को बेहतर कर सकते हैं। मंगल के लिए किस स्थिति में कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए यह आपको जानना होगा। मंगल के निगेटिविटी को दूर करने के लिए कौन सा रत्न पहनना है यह आपको समझना होगा। और मंगल की किस समस्या के लिए क्या दान करना है ये भी आपको जानना चाहिए।
इन सब को करने से मंगल शुभकारी हो जाता है, मंगल की अशुभता जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं डालती है। लेकिन तमाम उपाय में अगर मंगल आपका बहुत निगेटिव है, बहुत अशुभ है, तो शीघ्र लाभ के लिए दान जरूर करना चाहिए। और दान करेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को, या अगर कोई नहीं मिलता तो खाने की वस्तु है तो गाय को खिला देंगे, या वो भी संभव नहीं है तो दान की वस्तु हनुमान जी के मंदिर में दान करिएगा और नियमित रूप से तरीके से करिएगा, मंगल की अशुभता दूर हो जाएगी। मंगल की किस समस्या के लिए किस चीज का दान करेंगे इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

रखें, काम टालने से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो मंगल अगर अशुभ है, मंगल की अशुभता ज्यादा है और जिसकी वजह से आपको जीवन में समस्या आ रही है, तो मंगल की अलग अलग समस्याओं के लिए आप अलग अलग चीजों का दान कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं। अगर मंगल की वजह से स्वास्थ्य की समस्या है, रक्त की दिक्कत है, बार बार बुखार होता है, बार बार चोट लगती है, तो नियमित रूप से हर मंगलवार को लाल फल का, सेब या अनार का दान करने से लाभ होगा। लंबे समय तक करिए और स्वास्थ्य की समस्याओं का ध्यान रखिए। अगर मंगल की वजह से आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो हनुमान जी के मंदिर जा करके हर मंगलवार को बूंदी का दान करिए। हनुमान जी से आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रार्थना करिए। नियमित रूप से हनुमान जी का पूजन और बूंदी का दान करते रहिए, आपको लाभ होगा। अगर किसी प्रॉपर्टी की कोई समस्या है, जमीन जायदाद की कोई समस्या है, तो आप मंगलवार को लाल मसूर की दाल या जौ का या जौ के आटे का दान करिएगा। निरंतर करते रहिए, जमीन की समस्या को सुलझाने का प्रयास करिए। लाल मसूर की दाल का या जौ के आटे का दान करिए। अगर आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, कर्ज से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है,

जग इसका दान करें, तांबा दान कर लें दो चार मंगलवार, तब आप लाल कपड़े का दान भी कर सकते हैं और साथ में अपनी तरफ से कर्ज चुकाने का पूरा प्रयास भी करिएगा और साथ में ये उपाय करिएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर किसी मुकदमे में फंस गए हैं, बेवजह का विवाद है पड़ोसी के साथ, मोहल्ले वाले के साथ, या बिना वजह के मुकदमे विवाद को लंबे समय से झेल रहे हैं, तो मंगलवार को मीठी चीज का दान करिए। सबसे अच्छा होगा गुड़ का दान करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी तरफ से शांति रखिए, विवाद सुलझाने का प्रयास करिए और मंगलवार को गुड़ या मिठाई का दान करिए या गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाइए। देखिए, मंगल जब भी आपको जीवन में समस्या दे तो शास्त्र कहता है कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। कार्तिकेय महाराज के द्वादश नाम को पढ़िए और नियमित रूप से मंगलवार के मंगलवार गुड़ का दान करिए। अगर आप ऐसा निरंतर करें तो मंगल की अशुभता से, मंगल की समस्याओं से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन टाल दें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कोई लड़का मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक लड़की से करनी चाहिए, और अगर कोई लड़की मांगलिक है तो उसकी शादी भी मांगलिक लड़के से करनी चाहिए, यानी मंगली का विवाह मंगली से ही करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक से ही किया जाए। सिर्फ आपको ये देखना होगा कि जिसकी कुंडली में मंगल दोष है वो दूसरे की कुंडली से कट रहा है या नहीं कट रहा है, और दूसरा मंगली ना हो लेकिन उसका सूर्य, शनि, राहु और केतु मंगल दोष को काट सकता हो तो भी शादी कर सकते हैं। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि मंगली का विवाह मंगली से ही हो। सिर्फ इतना है कि जिसकी कुंडली में मंगल दोष है दूसरे की कुंडली से उसका मंगल दोष कटना चाहिए। अब जान लेते हैं लकी नंबर के अनुसार आपका लक क्या है। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर

नंबर 5 यात्रा के योग बन रहे हैं, नंबर 6 धन लाभ के योग बन रहे हैं, नंबर 7 मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, नंबर 8 करियर में सफलता मिलेगी और नंबर 9 परिवार में मंगल कार्य होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर होंगी। अगर आपको किसी महत्वपूर्ण काम से आज जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा पढ़कर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन आभूषण, तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि के लिए, धन का लाभ होगा, तनाव समाप्त होंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को, तनाव बढ़ सकता है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज परिवर्तिनी एकादशी है और आज भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की उपासना करिएगा, लाभ होगा। और आज कभी भी समय निकालकर हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा, शुभ रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

17 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप के 3 आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया है। ये पीड़िता सोमवार शाम करीब 7 बजे अपने 17 साल के दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर पहुंची थी। दर्शन के बाद दोनों करीब 7:30 बजे पास के पार्क में गए थे। आरोप है कि पार्क में 25 से 30 साल की उम्र के 3 युवक पहुंचे, दोनों को धमकाया। आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप भी किया। नाबालिग एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आरोपी का नाम आसिफ है। बाकी आरोपियों की पहचान के लिए पार्क और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस आसपास मौजूद लोगों से भी घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। कालकाजी थाने में पॉक्सो और रेप की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। केस के बाद पुलिस जांच कर रही थी, तभी आरोपी एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। तो दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने जांच पड़ताल में एक आरोपी को पहचान किया, आसिफ नाम है, और एनकाउंटर के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस मामले की जांच कर रही है। और आइए अब देखते हैं नॉनस्टॉप 100।

नशे के खिलाफ अमित शाह का बड़ा एक्शन प्लान, एनटीए प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी के साथ नशे के खिलाफ बनेगी नई रणनीति, ड्रग तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी। नशे के खिलाफ 3 साल का एक्शन प्लान, डार्कनेट क्रिप्टो से ड्रग तस्करी पर कसेगा शिकंजा। एनसीबी की नई वेबसाइट लॉन्च, लखनऊ देहरादून में नए परिसरों की भी आधारशिला रखी जाएगी। नशे की मांग घटाने से नशा मुक्ति तक, एंटी नारकोटिक्स मिशन पर बनेगी नई रणनीति। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र राज्य एजेंसियां होंगी और मजबूत, 8 तकनीकी संतरों में तस्करी और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक की रणनीति पर मंथन। आईआईटी बॉम्बे में छात्रों के दबाव के आगे झुका प्रशासन, प्रोफेसर दुल्ला को दीन पद से हटाया गया। छात्र साहिल की मौत पर आईआईटी बॉम्बे के छात्र प्रतिनिधि बोले, हम नकल या एकेडमिक गड़बड़ का सपोर्ट नहीं करते। प्रोफेसर दुल्ला को सिर्फ डीन पद से हटाने पर भड़के छात्र, प्रोफेसर पद से भी तत्काल सस्पेंशन की मांग की। आईआईटी बॉम्बे में सुसाइड रोकने की कवायद तेज हो गई है, हॉस्टल में सीलिंग फैन की जगह लगेंगे अब वॉल माउंटेड फैन। साहिल की मौत के बाद आईआईटी बॉम्बे में घमासान, 18 मांगों पर प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार के जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ का वीडियो आने के बाद बिहार पुलिस का सख्त एक्शन, अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, बाकियों की तलाश में जुटी है, लगातार छापेमारी हो रही है। जमुई की शर्मनाक घटना पर सियासी संग्राम, तेजस्वी ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में गुंडा राज कायम हो चुका है। जमुई मामले पर बिहार सरकार का बचाव करते नजर आए मंत्री श्रवण कुमार, कहा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, सरकार की नजर है, दोषी बच नहीं पाएंगे। जमुई की घटना पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, आरोपियों पर पॉस्को के तहत कार्यवाही की मांग की। राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए उठाए सवाल, पूछा सार्वजनिक सड़क पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी दौरे का दूसरा दिन, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक और संगठनात्मक बैठक। पूर्व सांसदों और विधायकों और संगठन के बड़े पदाधिकारियों से लेंगे फीडबैक, बूथ मैनेजमेंट, सदस्यता अभियान और आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। नितिन नवीन की पदाधिकारियों संग अहम बैठकें, किसान मुद्दे और जाट मुस्लिम समीकरण के बीच संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। योगी सरकार का मिशन रोजगार, 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का दावा, आज 3567 अभ्यर्थियों को सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। यूपी में हर हफ्ते बड़ा भर्ती अभियान, यूपी बोले सरकार नियुक्तियां करती रहेगी, मिशन रोजगार के साथ 9.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य। रोजगार पर योगी का विपक्ष परवार, बोले जो नहीं कर पाए वो हमेशा सिर बोलते रहेंगे। 2027 के लिए अखिलेश का पीडीए प्लान तेज, यूनिवर्सिटी कैंपस में युवाओं से सीधा संवाद, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक युवाओं को जोड़ने के लिए पीडीए यूथ मीटअप का अभियान। युवा वोटरों पर अखिलेश की नजर, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर संवाद। 2027 से पहले दलित वोटरों पर अखिलेश का फोकस, एसपी के सियासी रंग में नीला भी शामिल, आगरा में नवंबर में दलित सम्मेलन की तैयारी, रामजी लाल सुमन करेंगे नेतृत्व। इटली में हिजाब बैन के प्रस्ताव को लेकर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध, मौलाना खालिद रशीद ने उठाए सवाल। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने खोला गठबंधन का दरवाजा, 2 अक्टूबर तक ऐलान का दावा, बयान ओवैसी, बोले जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं।

राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, 302 में से 200 निकायों पर बीजेपी का दबदबा, 94 निकायों तक सिमटी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस के बीच 106 निकायों का अंतर। राजस्थान में निकाय चुनाव का बीजेपी के पक्ष में बड़ा जनादेश, 6 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा, 302 निकायों के नतीजे घोषित, 7 निकायों के परिणाम अभी बाकी। वीरमणि पॉस्को केस पर तमिलनाडु में सियासी घमासान, टीवी के ने स्टालिन की पिछली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। वीरमणि पॉस्को केस पर तमिलनाडु में सियासी घमासान, टीवी के का दावा, मामला फंड लेने का नहीं है, आरोपी को बचाने और जांच में हस्तक्षेप का है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ आज करेगी अहम सुनवाई, राज्यों के अतिरिक्त टैक्स लगाने के अधिकार पर होगा फैसला। तरंग शक्ति 2026 की वापसी, जोधपुर बनेगा एयर वॉरफेयर का केंद्र। भारतीय वायुसेना करेगी मेगा मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा साझा युद्धाभ्यास। तरंग शक्ति 2026 में ग्लोबल एयर फोर्सेस की होगी बड़ी भागीदारी, दुनिया के अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान आसमान में दिखाएंगे ताकत। पाली में भारत अमेरिका सैनिकों ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास जारी, जंगल से इंडोर फायरिंग रेंज तक बढ़ाया तालमेल। पाली की खड़ी चट्टानों पर भारत अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त रैपलिंग अभ्यास, पहाड़ी युद्ध कौशल को किया मजबूत। डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, पोखरण में केएल रून का सफल परीक्षण, 8 घंटे उड़ान, 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान का आश्वासन दिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 4th एडिशन का सीएम योगी ने किया ऐलान, 25 से 29 सितंबर तक नोएडा के इंडिया एक्सपो केंद्र में होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी देने की पहल तेज, नौशेरा में रोड बनाने के साथ पुल से जोड़े जा रहे हैं इलाके। बद्रीनाथ धाम में मानसून के बाद लौटी रौनक, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उठा रहे मौसम का लुत्फ। गणेशोत्सव का आज 9वां दिन, देशभर में विधि विधान से गजानन की आराधना जारी। देश के कई पूजा पंडालों से गजानन की प्रतिमा को हुई विदाई, लोगों ने भक्तिभाव और अगले बरस जल्दी आने की गुहार के बीच किया विसर्जन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेशोत्सव में दिखा बप्पा का अनोखा पंडाल, गणपति अलग अलग रूपों में दे रहे हैं जल बचाने पर्यावरण की रक्षा का संदेश। जालना में गणेशोत्सव के मौके पर चमनचा राजा गणपति मंडल ने बनाया खाटू श्याम बाबा का भव्य दृश्य। भिलाई में भी धूमधाम से हुआ भगवान गणेश का विवाह, रिद्धि सिद्धि संग वैदिक रीति रिवाज से रचाई शादी। अमरावती में इको फ्रेंडली बाबा की मूर्तियों और पंडालों के अनोखे प्रयोग, अंजीर मखाने से बनाई गई 7 फीट ऊंची प्रतिमा। चंद्रपुर के गणपति पंडाल में अनोखा प्रयोग देखने को मिला, सुग्रीव की गुफा में राम रूपी गजानन दे रहे दिव्य दर्शन। मुंबई में शिवडीचा राजा का भव्य अवतार, अंडरवाटर द्वारका की अद्भुत थीम, गणपति पंडाल की शानदार सजावट, शिवडीचा राजा गणपति पंडाल के 75 साल पूरे होने पर जश्न। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने लालबाग चराजा के दरबार में लगाई हाजिरी, पत्नी ऋतिक सचदेह के साथ किए बापा के दर्शन, दोनों ने लिया बापा का आशीर्वाद। मुंबई में विशेष रेल 23 से 26 सितंबर की रात में चलाने का फैसला, गणपति विसर्जन के बाद लौटने वालों की सुविधाओं के लिए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर घूमने गई नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, एनकाउंटर के बाद एक आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग से रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाने पर भारी हंगामा किया, प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। हैदराबाद में 10 रुपए के विवाद में ऑटो ड्राइवर को मौत के घाट उतारा, इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा। ग्वालियर में कोचिंग जा रही छात्रा को बाइक से रोका, छेड़छाड़ के बाद की मारपीट का सीसीटीवी वीडियो वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। सहारनपुर में एटीएम कार्ड बदलने वाला शातिर गिरफ्तार, एटीएम से छेड़छाड़ कर मदद के बहाने एटीएम बदल कर करता था खेल, कई जिलों में 10 से ज्यादा केस दर्ज। महाराष्ट्र के शाहपुर के कोठारे घाट में एसटी बस का भीषण हादसा, ब्रेक फेल होने की आशंका, 14 यात्री घायल, 5 की हालत गंभीर। लखनऊ होमगार्ड भर्ती में अभ्यर्थी की मौत का चौंकाने वाला खुलासा, गले में पानी की बोतल फंसने से दम घुटने के बाद 12 जगह चोट के निशान। बीड के मजगोई में बंद मकान का ताला तोड़कर करीब 25 लाख रुपए के गहने और नकदी पार, इलाके में दहशत। गोहना में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, कोर्ट से लौट रहे स्कॉर्पियो सवारों पर हमला, बुलेट प्रूफ गाड़ी ने बचाई 4 लोगों की जान। लखीमपुर में प्रेमी ने स्कूल में घुसकर बच्चों के सामने प्रेमिका टीचर को मारी गोली, फिर खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, बच्चों में हड़कंप। सहारनपुर में महिला अस्पताल में 12 घंटे पहले जन्मा नवजात चोरी, टीका लगवाने के पहले महिला बच्चे को लेकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्ध महिला। पाली में बेकाबू ट्रेलर ने डिवाइडर तोड़ा, खेत में जा घुसा, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक हादसा, बड़ा हादसा टल गया।
नागपुर में अस्पतालों के सामने रोड डिवाइडर से टकराया, एक की मौत, दो गंभीर घायल, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इंदौर में तेज डीजे बजाना भारी पड़ गया, पुलिस की कार्रवाई, 6 डीजे संचालकों पर FIR, करीब 15 लाख का सामान जब्त। इंदौर में अचानक सड़क धंस गई, 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया, नगर निगम ने गड्ढे को अस्थायी बंद किया, सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। फिल्म हनुमान अंश की शानदार कमाई, 45वें दिन लगभग 14 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म हनुमान अंश ने 45वें दिन भारत में लगभग 272 करोड़ रुपए की कमाई की, दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ रुपए तक का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म में बेहद ही छोटे बजट की फिल्म है हनुमान अंश, लगभग 2 करोड़ रुपए का पूरा बजट था। अली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिव्यांशु स्टारर मिर्जापुर ने भारत में 200 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार किया, 4 सितंबर को रिलीज हुई थी फिल्म। रश्मिका मंदाना का एक्शन अवतार नजर आया, मैसा का टीजर देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हुए। 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के लिए आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जरूरी होगा, अभी तक करीब 27.5 करोड़ ग्राहकों ने प्रक्रिया को पूरा किया है। MDR के बाद मध्य प्रदेश में कारोबारी 23 सितंबर को नो UPI डे की तैयारी में लगे, पेट्रोल पंप संचालकों ने भी MDR को लेकर 16 अक्टूबर से UPI भुगतान बंद करने की बात कही। गोल्ड लोन की मांग में 80-85% तक की बढ़ोतरी का अनुमान, युवा भी सोना गिरवी रखकर जरूरत का पैसा जुटा रहे हैं। दिल्ली NCR में 2026 की पहली छमाही में रिटेल शॉप्स की लीजिंग 78% बढ़ी, मॉल में जगह लेने की मांग दोगुनी हुई, जिसमें फैशन, खाने पीने और बड़े स्टोर प्रमुख रहे। 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक हड़ताल से पहले SBI ने ग्राहकों को जरूरी काम निपटाने की सलाह दी है, शाखाओं के साथ कुछ बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। एशियन गेम 2026 का आगाज का तीसरा दिन, पहले दिन भारत के हिस्से में आए 2 मेडल, आज भी कई खेलों में पदक की उम्मीद। भारत को एशियन गेम 2026 में तीसरा मेडल हुआ हासिल, मेंस 10 मीटर एयर राइफल्स में मिला सिल्वर। मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी भारत को मिला मेडल, 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल में सुचिका तारियाल ने ब्रॉन्ज जीता। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल, हिमांशु ने जीता सिल्वर, रुद्राक्ष को ब्रॉन्ज मिला। एशियन गेम्स की पदक तालिका में फिलहाल भारत का 10वां स्थान, अब तक भारत के खाते में 6 मेडल।

0: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
0: छक्का?
1: सब कैशलेस हो गया है।
0: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ। तू
2: चार्ज हुआ यार।
3: बैट किसका है?
4: टाटा AIG है तो भरोसा है।
5: एक दो विश्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते
2: यार, लोन भूल गया। मैरी,
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
6: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
7: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।
9: और वही, कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
12: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
16: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
16: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
18: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
19: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मौजूदा चुनाव आयुक्त एस एस संधु, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गजों के नाम उस नोटिस में शामिल हैं जो उन्हें दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मिला है। और इस चुनाव आयोग के इस नोटिस ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े नामों जो कई अहम पदों पर रह चुके हैं, उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मिले नोटिस की वजह क्या है। दरअसल दिल्ली में एसआईआर के बाद 97 लाख से ज्यादा वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें करीब 33.13 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी मिली है। अब चुनाव आयोग की ओर से इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें मौजूदा वोटर की जानकारी का 2002 में हुए पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया है। कई बड़े नामों को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
1: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहाँ और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया। मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
0: उधर दिग्गजों को मिले नोटिस के बाद कांग्रेस की ओर से हमले का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी के दबाव में शुरू की गई और इसके जरिए वोटर लिस्ट से कई नाम काटने की साजिश रची गई। उधर तमाम सवालों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ,
4: ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
15: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मौजूदा चुनाव आयुक्त एस एस संधु, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गजों के नाम उस नोटिस में शामिल हैं जो उन्हें दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मिला है और इस चुनाव आयोग के इस नोटिस ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े नामों जो कई अहम पदों पर रह चुके हैं, उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मिले नोटिस की वजह क्या है। दरअसल दिल्ली में एसआईआर के बाद 97 लाख से ज्यादा वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है जिसमें करीब 33.13 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी मिली है। अब चुनाव आयोग की ओर से इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें मौजूदा वोटर की जानकारी का 2002 में हुए पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया है। कई बड़े नामों को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
1: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहाँ और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया। मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 और 2002 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
0: उधर दिग्गजों को मिले नोटिस के बाद कांग्रेस की ओर से हमले का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी के दबाव में शुरू की गई और इसके जरिए वोटर लिस्ट से कई नाम काटने की साजिश रची गई। उधर तमाम सवालों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपना जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नोटिस मिलने का ये मतलब नहीं है कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। नोटिस पाने वाले लोगों को अपनी बात रखने और जरूरी दस्तावेज देने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोग के इस बयान के बाद भी सियासत तेज होती जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया के बीच दिग्गजों को नोटिस पर नई लड़ाई छिड़ गई है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

यूपी में विपक्ष पर बीजेपी का डबल अटैक, मेरठ में नितिन नवीन और योगी का वार, एसपी बीएसपी के लिए देश से पहले परिवार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी रणनीति में ओवैसी की नो एंट्री, अखिलेश ने किया साफ, गठबंधन उसी से जो पहले से साथ, माया पर भी तंज। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जहां बीजेपी सत्ता में वहां बन जाती है अन्याय का जरिया, अब तक 3 गिरफ्तार। आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी मामले में डीन से हटाया गया प्रोफेसर के पक्ष में प्रदर्शन, फैकल्टी ने कैंपस में आवाज की बुलंद, पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। और रूस के चुनाव में फिर पुतिन का जलवा, यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत, संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती, 25 सितंबर को फाइनल नतीजों का ऐलान।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजे 8 बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आपको बताते हैं पहली खबर क्या होगी। पहली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां नाबालिग से रेप के बाद भारी बवाल मचा है। बुलेटिन में दूसरी खबर होगी वो भी दिल्ली से। कालकाजी इलाके में रेप के एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। विस्तार से खबरें आपको देंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे जमुई में नाबालिग से हुई दरिंदगी में, जिसमें पुलिस एक्शन के बीच सियासत गर्मा रही है। बुलेटिन में आगे भी बात करेंगे कि IIT बॉम्बे में कैसे सुसाइड केस के बाद छात्र और फैकल्टी आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद बात सियासी खबरों की भी करेंगे। आपको बताएंगे यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी के ऑफर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया है। तो साथ ही बात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को पश्चिमी यूपी के उस दौरे में जिसमें लगातार चुनावी रणनीति पर मंथन जारी है। तो खबर में यह भी आपको बताएंगे कि टीएमसी के बागी सांसद आज सदस्यता के मामले में लोकसभा स्पीकर को अपना जवाब देंगे, उसमें क्या कुछ होगा। इसके साथ ही एशियन गेम्स की भी बात करेंगे, जहां भारत की पदकों की टैली लगातार बढ़ती जा रही है। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन के सुपर 8 की शुरुआत राजधानी दिल्ली से आई बड़ी खबर से। नाबालिग से रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए लोगों ने दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाने पर भारी हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। तो देशबंधु गुप्ता रोड पर जहां पर आरोप था कि एक नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना हुई, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई, देशबंधु गुप्ता रोड थाने के बाहर लोग जमकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इतना ही नहीं, वहां पर पुलिस के साथ भी उनकी तूतू मैं हुई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। ये देखिए बीती रात की 3 तस्वीरें कि कैसे लोगों का गुस्सा फूटा। थाने के बाहर लोग जमा हो गए प्रदर्शन करने के लिए। प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस के साथ झड़प होने लगी। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा भीड़ को पीछे करने के लिए। आरोपी जो थी उसकी गिरफ्तारी हुई थी, एक नाबालिग बच्ची जो उस इलाके में थी, और उसके बाद आरोप एक 56 साल के आदमी पर जिसने इस घृणित कार्य को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई के लिए ना मांग करते हुए लोग थाने के बाहर पहुंचे, देशबंधु गुप्ता रोड थाने के पास। और वहां पर लोगों की नाराजगी, वहां नारेबाजी हुई, लोग गुस्से में थे, थाने के बाहर भीड़ बढ़ती गई और ऐसे में पुलिस के साथ भी झड़प हुई। यह आक्रोश दिल्ली के सदर बाजार में 11 साल की एक बच्ची के साथ हुए महापाप के खिलाफ है। राजधानी दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाने के बाहर सोमवार देर शाम बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए। भीड़ ने थाने में मौजूद रेप के आरोपी और उसकी मां पर हमला बोल दिया। आरोपी और उसकी मां को बचाने के लिए पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। रेप की वारदात 16 सितंबर की रात की है। जांच के मुताबिक क्लास 6 में पढ़ने वाली नाबालिग रात करीब 11 बजे स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी। तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया। इसके बाद उसने नाबालिग लड़की के हाथ पैर बांधे और उसका यौन उत्पीड़न किया।
2: मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। और अगर आप देखें ये पूरे इलाके को, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कंजस्टेड इलाका है। और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहां काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी आप देखें तो ये जो पूरी गली है, इसी गली में ये दूसरी दुकान जो है ये बताई जा रही है ये मकसूद की है, जहां वो टेलर का काम करता था। 16 तारीख की रात करीब 11 बजे के आसपास जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से नीचे उतरती है, स्टेशनरी जाती है, कॉपी पेंसिल लेने के लिए जाती है, लेकिन मकसूद जो कि उसे पहले से जानता था उसे अपनी दुकान में लाता है। आरोप ये है कि उसके हाथ पैर बांधता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है।
1: इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और डर है।
3: हमारे भी बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा कि हम बाहर निकाले ना निकाले, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे। लेकिन अब हमें फिक्र महसूस हो गया, क्योंकि अब जब ऐसा इंसान नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा, शैतान जाग के अंदर, तो हर आदमी को डर लगेगा।
1: वारदात को लेकर स्थानीय लोग हैरान भी हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि 56 साल का मकसूद ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है।
4: आदमी सही था, लेकिन अब उसके अंदर शैतान जाग गया। क्या हुआ, आदमी तो सही था वो।
2: आप लोग आसपास रहते हैं, आपको पता होगा।
4: बिल्कुल, यही घर है हमारा पड़ोस में, और ये बच्ची जो है ये मेरी किराएदारी थी।
1: राजधानी दिल्ली की ये वारदात बेहद डराने वाली है। क्या अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक। तो आखिर ये पूरी घटना जिस तरह हुई इसके बाद दिल्ली में हंगामा, और इससे सवाल ये भी उठता है कि देश की राजधानी में कानून व्यवस्था का डर क्यों नहीं है, लगातार ऐसी वारदातों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। तो गैंगरेप की वारदात हुई, पुलिस की कार्रवाई हुई, 17 साल की नाबालिग जिसके साथ ये गैंगरेप हुआ, उस गैंगरेप के बाद तीनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर धमकाया भी था। देखिए एक और गैंगरेप की जो घटना होती है उसके बाद 17 साल की एक नाबालिग जो कि कालकाजी मंदिर के पास, अब उसमें पुलिस ने जब कार्रवाई की तो एक की पहचान हुई आसिफ, उसको पुलिस ने इनकाउंटर किया। अब इस गैंगरेप की वारदात के बाद तीनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। सोमवार करीब 7 बजे 17 साल के दोस्त के साथ वो कालकाजी मंदिर पहुंची थी। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने पॉक्सो समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया। 7:30 बजे पार्क में गए थे 25 से 30 साल की उम्र के 3 युवक पहुंचे, दोनों को धमकाया। आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया। नाबालिग के एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए आरोपी का नाम आसिफ है। बाकी आरोपियों की पहचान के लिए पार्क और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस आसपास मौजूद लोगों से भी घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। कालकाजी थाने में पॉक्सो रेप की धाराओं के तहत केस दर्ज था। केस के बाद पुलिस जांच कर रही थी, तब आरोपी एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। तो देखिए दिल्ली में दूसरी बलात्कार की एक घटना, दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग के साथ एक गैंगरेप होता है। गैंगरेप की घटना 17 साल की नाबालिग थी जो अपने दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर के पास गई थी और वहां पर यह घटना होती है, और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। दर्ज करने के बाद जब जांच शुरू की तो एनकाउंटर हुआ और उस मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है। इसके बाकी के 2 आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, जांच कर रही है। कालकाजी थाने में पॉक्सो रेप की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो एक घटना हमने देखी देशबंधु गुप्ता रोड पर, और दूसरी घटना एक नाबालिग के साथ होती है कालकाजी मंदिर के पास, जहां पर 25 से 30 साल की उम्र के 3 युवक वहां पहुंचे थे। उन दोनों ने उन्हें धमकाया, आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद जब मामला दर्ज हुआ पुलिस ने जांच की, एनकाउंटर के बाद एक आरोपी पकड़ा गया है, बाकियों की तलाश जारी है। तो आप सोचिए कि दिल्ली में लगातार 2 ऐसी घटनाएं, कालकाजी में जहां पर यह घटना हुई थी, हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं सीधे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर वहां पर पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन हिमांशु हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। हिमांशु, 2 और आरोपियों की तलाश जारी थी, क्या उनकी पहचान हो पाई है, आप बता पाएंगे उनके बारे में, और पुलिस आगे अब क्या कार्रवाई कर रही है? तो जैसे हिमांशु से संपर्क टूट गया है, हम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी जगह की है गैंगरेप की, बाकी जो 2 आरोपी हैं उनकी तलाश चल रही है। आपको बता दें पॉस्को के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस छानबीन में, आप सोचिए कि पूरा इलाका सीसीटीवी से सघन है, वहां पर सीसीटीवी तलाश की जा रही है। जैसे एक शख्स की पहचान हुई पुलिस वहां पर पहुंची थी, उसके बाद एनकाउंटर हुआ, जब वो घायल हुआ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, बाकी के जो 2 आरोपी हैं उनकी तलाश चल रही है, लेकिन क्या उन दोनों के बारे में कोई सुराग लग पाया? हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए घटनास्थल से। हिमांशु, बाकी के एक बार जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, ये इलाका है, आसपास सीसीटीवी की मौजूदगी है, जैसे एक आरोपी की पहचान हुई, अब आगे पुलिस क्या कर रही है, दोनों की पहचान हो पाई है बाकी के 2 आरोपियों की?
5: हाँ बिल्कुल, पहचान हो गई है आशुतोष, क्योंकि जब आसिफ पकड़ा गया, हालांकि एनकाउंटर में वो घायल हुआ है, लेकिन जब उससे जो जानकारी अब तक पुलिस को मिली है, बाकी दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। और पुलिस ने टीम बनाई है जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो लोकल थाने की पुलिस है, इसके अलावा स्पेशल स्टाफ थाने की पुलिस है, टीम बनाई गई है, बाकायदा अलग अलग जगहों पर रेड कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश ये है कि वो निकल करके दोनों भागने नहीं पाए। अब आसिफ का देखिए कैसे एनकाउंटर हुआ और कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया। पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, क्योंकि वो कालकाजी मंदिर के पीछे का जो पार्क है जहां पर वो लड़की टहलने गई थी, जब ये तीनों आरोपी पहुंचे, पुलिस वाला बन के धमकाया और उसके साथ गलत हरकत को अंजाम दिया, इसलिए पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे आशुतोष, और जो पीड़िता है उससे भी डिस्क्रिप्शन लिया था। उसके बाद जब पुलिस को एक की पहचान हुई तो पता लगा कि वो बाहर भागना चाहता, उसने अपने कुछ जानकारों को मिलने के लिए कहा बुलाया इस पार्क में, आप देखिए ये जो पार्क है नेहरू प्लेस के पास, वहां पर मिलने के लिए बुलाया। और उसके बाद यहां पर जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस ने ट्रैप लगाया, और ट्रैप लगाने के बाद जब उसको देखिए रात का वक्त था और पुलिस का कहना है कि आरोपी ने भागने की कोशिश की, इसके बाद जो पुलिस की तरफ से रिटेलिएशन हुआ, जब आरोपी ने गोली चलाई, जब पुलिस की तरफ से हुआ तो आरोपी घायल हुआ है। लेकिन
1: ठीक है मानशु, पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बाकी की दो आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है, जैसे उनके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के जमुई से शर्मनाक तस्वीरों पर बवाल मचा। बिहार के जमुई में नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ हुई, बदसलूकी हुई और इस मामले ने पूरे देश को झकझोरा। यह घटना 4 दिन पुरानी है जिसका वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा। पुलिस केस दर्ज करके आरोपी की धरपकड़ में लगी है और अब तक केस में 3 नाबालिग आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोचिए कि मामला इतना विभत्स कि 3 गिरफ्तार।
6: आज तक के पंचायत बिहार कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कानून व्यवस्था को लेकर जब सीधा सवाल हुआ, तब मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा था,
7: कार्रवाई लगातार होते रहनी चाहिए। सुशासन तभी स्थापित होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा, अपराधी को सजा दिलाया जाए और यदि कोई जघन अपराध है उस पर तुरंत अपराध पर कार्रवाई हो और उसको सजा एक टाइम फ्रेम में हो।
6: उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार के जमुई में बेटी के साथ जिन लोगों ने सरेआम ये सब किया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी, एक मिसाल कायम होगी ताकि बिहार में किसी बेटी को दोबारा ये दिन ना देखना पड़े। बिहार की इन तस्वीरों ने सारे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के दोनों पीड़ित नाबालिग हैं और 10वीं के छात्र हैं। शनिवार को दोनों जमुई के बड़वा पहाड़ घूमने गए थे। जमुई में लड़की के साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। जमुई पुलिस ने सबसे पहले दोनों पीड़ित छात्र और छात्रा से संपर्क किया और FIR दर्ज कर ली। इस वारदात की वजह का पता लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार में कानून का इकबाल कहाँ है? क्या बेटियों का बाहर निकलना मना है? क्यों लड़का और लड़की एक साथ बाहर नहीं घूम सकते? जमुई की इस घटना के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के इन सवालों के जवाब में BJP और JDU ने सरकार का बचाव किया और दावा किया कि सम्राट चौधरी की सरकार में कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के जमुई की इस घटना में ये दरिंदे न सिर्फ एक नाबालिग बच्ची पर टूट पड़े बल्कि बीच सड़क पर इतनी घिनौनी हरकत की। इनकी हिम्मत तो देखिए कि नीचता भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं, जो बताता है कि बिहार के अपराधियों में खौफ सिर्फ दावे करके तो नहीं होगा। रोहित सिंह, पटना, आज तक।
1: तो इस बीच जमुई में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने पर पीड़ित की पहचान उजागर करने वालों पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब तक पुलिस ने 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जब ये वीडियो सामने आया था उसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लोग साझा करने लगे। 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल चलाने वालों पर केस दर्ज। तो जमुई में हुई घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, इस पर सियासत भी तेज हो रही है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इस घटना पर बेहद शर्मनाक बयान दिया है। श्रवण कुमार ने जमुई की घटना को छिटपुट मामला बताया। इसके पहले
8: में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए, जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
1: ऐसे शर्मनाक बयान देने वाले बयान बहादुर सिर्फ मंत्री नहीं है। बिहार की जमुई की घटना पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी बेहद शर्मनाक बयान दिया। जमुई की घटना के सवाल पर उमेश कुशवाहा RJD राज के दौर की कानून व्यवस्था की दलील देने लगे। मौजूदा घटना को छिटपुट घटना बता दिया। अब विपक्ष जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर भी हमलावर है।
9: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
1: उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में स्कूल में एक टीचर की हत्या का मामला सामने आया है, जहां प्रेमी सऊद अंसारी ने टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से जुड़ा एक CCTV वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी टीचर घसीट कर ले जाता दिखाई दे रहा है। टीचर के हत्या के बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तो स्कूल में घुसकर एक टीचर की हत्या होती है और सऊद अंसारी जो है उसने टीचर को गोली मार ली। और उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसका सीसीटीवी सामने आया है जिसकी मदद से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लखीमपुर का ये मामला है, एक टीचर की हत्या का मामला, और जो प्रेमी था उसने टीचर को गोली मारी। उसके बाद जो सीसीटीवी उसमें दिखाई दे रहा है कि आरोपी टीचर को घसीट कर ले जा रहा है और उसके बाद उस आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। और अब बात करेंगे लखनऊ हिट एंड रन केस की, जिसमें पीड़िता को धमकाने वाले आरोपी शरीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद शरीफ पीड़िता के घर गया था, उसे धमकाया था, केस वापस लेने का दबाव बनाया था, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की गई और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये वही वीडियो है जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई पुलिस ने की थी, मामला दर्ज कर लिया था और अब पीड़िता पर केस वापस लेने की धमकी और दबाव बनाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हिट एंड रन मामले में अब एक और गिरफ्तारी हो गई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का और बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे में छात्र के सुसाइड मामले की। पुलिस और प्रशासन के एक्शन के बीच इस घटना को लेकर बवाल बना है, कई सवालों की पड़ताल जारी है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आईआईटी बॉम्बे में साहिल की मौत का सच क्या है? क्या साहिल चैट जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? जातिगत उत्पीड़न के आरोपों में कितनी सच्चाई है? आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल वाकोड़े की मौत के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर साहिल ने आत्महत्या क्यों की? शुक्रवार को आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल में साहिल मृत पाए गए। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर का छात्र था। उसी दिन उसके मिड सेमेस्टर एग्जाम के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने की बात सामने आई। आईआईटी बॉम्बे के शुरुआती बयान के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड किया था, लेकिन आईआईटी ने यह भी कहा था कि साहिल के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू नहीं किया गया था। फैकल्टी एडवाइजर और विभागाध्यक्ष ने उससे बात करके काउंसलिंग की थी और ये भी बताया था कि इस घटना का उसके करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद परिवार ने पुलिस शिकायत में एक अलग तस्वीर पेश की। परिवार का आरोप है कि साहिल के साथ जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना हुई। पिता रविंद्र वाकोड़े ने कहा कि प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने साहिल के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन इस बीच आईआईटी बॉम्बे ने अपने शुरुआती बयान पर ही सवाल खड़े कर दिए। आईआईटी ने अपने पहले बयान के लिए माफी मांगी और कहा कि साहिल की मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका पता जांच से ही चलेगा, यानी चैट जीपीटी की घटना का आत्महत्या से कोई सीधा संबंध था या नहीं ये अभी जांच का विषय है। उधर प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला पर भी कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को डीन के पद से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। अभी वे आईआईटी बॉम्बे में फैकल्टी बने हुए हैं। इस बीच आईआईटी बॉम्बे का फैकल्टी फोरम प्रोफेसर दुल्ला के समर्थन में है, यानी एक तरफ साहिल के लिए इंसाफ की मांग कर रहे छात्र हैं, दूसरी तरफ अपने साथी प्रोफेसर के समर्थन में खड़ी फैकल्टी, और बीच में चल रही है एक जांच जो ये तय करेगी कि साहिल की मौत के पीछे आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी। आज तक ब्यूरो। अगली खबर गुजरात के साबरकांठा से आ रही है। बड़ी खबर यह कि अंबाजी जा रहे पदयात्रियों को बेकाबू स्कॉर्पियो ने रौंद दिया है। हादसा हिम्मतनगर हाईवे पर डोलगढ़ के पास हुआ है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि 8 पदयात्री हवा में उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अंबाजी की यात्रा पर जा रहे थे पदयात्रियों को स्कॉर्पियो गाड़ी ने रौंद दिया। अगली खबर जयपुर से आ रही है, जहां थार सवार बदमाशों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि साइड नहीं मिली तो युवकों ने कैब ड्राइवर, उसके साथ मौजूद लोगों से मारपीट की और फिर हॉकी डंडों से गाड़ी में तोड़फोड़ भी की, एक युवक पर पिस्टल तान दी। ये घटना खोरा बीसल थाना इलाके में हुई। रविवार देर रात की यह घटना है। आधे घंटे तक हंगामा चला जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके आधार पर पुलिस ने न सिर्फ शिकायत दर्ज की है, जांच शुरू की है और अब इसी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। एक खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आ रही है। तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। यह बिसरख इलाके के इटैड़ा के पास यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद थार चालक गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार भी हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस को बुलाया गया, दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने पति नीरज को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने थार को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गणेश उत्सव के बीच शाहरुख खान परिवार के साथ लालबाग चराजा के दर्शन करने पहुंचे। शाहरुख ने पत्नी गौरी और बेटी सुहाना के साथ बापा के दर्शन किए, विधि विधान से पूजन किया। इसके लिए उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। शाहरुख खान की पूजा करते हुए तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शाहरुख ने गणेश जी के चरणों पर फूल चढ़ाया, फिर वो गौरी के साथ बापा की आरती में भी शामिल हुए। और अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। व्हाइट हाउस ने ट्रंप टीवी लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है। ये एक डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क होगा। इस नेटवर्क पर अमेरिकी प्रशासन से जुड़ा कंटेंट 24 घंटे स्ट्रीम किया जाएगा। व्हाइट हाउस का यह फैसला ट्रंप के 8 सितंबर को CNN, MS Now और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस से बैन करने के बाद दिया गया है। ट्रंप ने कहा था कि ये संस्थान लगातार फेक न्यूज फैला रहे हैं। अमेरिकी टीवी नेटवर्क ने व्हाइट हाउस से 3 प्रमुख आउटलेट्स पर प्रतिबंध के विरोध में ट्रंप के लाइव कवरेज को ही रोक दिया है। देखिए, अमेरिका में एक नया विवाद। इस विवाद के चलते ट्रंप व्हाइट हाउस हेलीपैड के उद्घाटन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनकी स्पीच का लाइव कवरेज अब नहीं किया जा रहा है। उधर जापान में चल रहे एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला टीम कई इवेंट्स में अपना दमखम दिखा रही है। भारत ने दूसरे दिन शूटिंग में मिले 2 सिल्वर मेडल के साथ अपना खाता खोला और अब तीसरे दिन शूटिंग के बाद मिक्स मार्शल आर्ट में भी मेडल आ चुका है, जिससे पदकों की अब तक कुल संख्या 6 हो चुकी है।
10: शूटरों ने फिर बहाया देश का मान। मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक सुचिका के नाम। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। शूटिंग में सोमवार को भी पदकों पर भारतीय शूटरों ने निशाना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में हिमांशु ढिल्लो ने सिल्वर और रुद्रांश पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा पुरुष टीम ने भी 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता। उधर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत की सुचिका ने कांस्य मेडल जीता है। इसके अलावा हॉकी में भारतीय महिला टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से रौंद कर अपना विजय अभियान जारी रखा है। कल सुबह भारत की महिला क्रिकेट टीम फाइनल में श्रीलंका का सामना करेगी। पिछली बार गोल्ड मेडल जीतने वाली हिंदुस्तान की बेटियों से इस बार भी सोने पर कब्जा करने की ही उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
11: इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
12: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
13: लायन डेट नट बाइट्स।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: और वही कहाँ गए थे घूमने?
18: जीके मैक्स।
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
20: जेके वॉल मैक्स
21: बेस्ट पेंट,
22: जेके मैक्स।
23: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
24: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा. अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया.
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी.
1: असली शहद, असली स्वाद.
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें.
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ. कपीवा डायबिटीज जूस.
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर. सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
6: Maddie, I need to open a savings account.
7: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
6: स्मॉल बैंक?
7: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
6: ओके
7: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: There is a very famous quote ki history repeat itself.
4: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
5: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
4: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
6: असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं MIM के, उनका ये कहना है कि हम चुनावों के अंदर बिल्कुल उतरेंगे, पूरी मजबूती से उतरेंगे और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि गठबंधन हो जाए।

0: पढ़ाई में कैसा है?
1: जेके मैक्स
2: बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
7: जेके मैक्स पेंट्स
6: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग

0: what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा. अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया.
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद. लायन कश्मीर हनी,
1: असली शहद, असली स्वाद.
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें.
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ. कपीवा डायबिटीज जूस.
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर. सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
6: Maddie, I need to open a savings account.
7: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
6: स्मॉल बैंक?
7: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस, एच करंट अकाउंट बिजनेस, मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज, आरडी, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
6: ओके
7: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: There is a very famous quote ki history repeat itself.
4: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
5: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
4: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
6: असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं MIM के, उनका ये कहना है कि हम चुनावों के अंदर बिल्कुल उतरेंगे, पूरी मजबूती से उतरेंगे और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि गठबंधन हो जाए। आप देंगे उनको न्योता गठबंधन का या फिर आप नहीं चाहेंगे कि वो हिस्सा ना बने?
7: ओवैसी साहब के उतरने से सिर्फ इतना होगा कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी अपने गोल के ऊपर लगी हुई है। बिहार में क्या हुआ, 6 MLA जीत गए, 7 जीत गए, 8 जीत गए, यहां 10 जीत जाएंगे। सरकार बीजेपी के बन जाए तो 10 MLA किसी काम के भी नहीं है। बिहार में क्या कर पाए, वो कुछ कर पाए बिहार में क्या?
6: बिहार में भी वो कह रहे थे कि आप गठबंधन कर लीजिए।
7: बिहार में कुछ देखिए, उनके गठबंधन का मतलब दूसरा भी है, मुसलमान मुसलमान से राजनीति नहीं होगी। मोदी जी ने मुसलमानों का मुगालता दूर कर दिया कि तुम्हारे बिना सरकार नहीं बनती, वो तुम्हारे बिना ही सरकार बना रहे हैं, तो इसलिए इस मुगालते को दूर कर दो। हमें दूसरे साथियों को आगे रख करके मुसलमान को खामोशी के साथ पीछे चलना चाहिए। और भैया इनसे मुक्ति पाओ, इनसे मुक्ति नहीं पाएंगे तो हमारी मस्जिदें टूटेंगी, हमारे ही डंडे चलेंगे, हमारी गोली लगेंगी। और किस पे तशद्दुद हो रहा है सबसे ज्यादा, तो हम पर होता है, फिर दलितों पर होता है।

जमुई दरिंदगी मामले में घिर गई सम्राट सरकार। मंत्री श्रवण कुमार का चौंकाने वाला बयान, कहा छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। एक्शन में महिला आयोग, राहुल और ममता का बीजेपी पर निशाना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से रेप केस में एनकाउंटर के बाद एक आरोपी गिरफ्तार, दो की तलाश जारी। सदर बाजार इलाके में भी बच्ची से दरिंदगी के बाद फूटा लोगों का आक्रोश। IIT बॉम्बे खुदकुशी मामले में आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में आया फैकल्टी फोरम, जारी की गई चिट्ठी, लिखा सस्पेंड नहीं है डुल्ला, पीड़ित परिवार ने की CBI जांच की मांग। पश्चिम यूपी बीजेपी अध्यक्ष का मिशन 2027 जारी, आज सहारनपुर के दौरे पर है नितिन नवीन, लेंगे कार्यकर्ताओं से फीडबैक। मेरठ में कहा SP BSP के लिए देश से पहले परिवार। रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, निचले सदन में यूनाइटेड रशिया ने हासिल किया बहुमत, 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 पर जीत, 25 सितंबर को फाइनल नतीजे का ऐलान।

नशे के खिलाफ अमित शाह का बड़ा एक्शन प्लान, एएनटीएफ प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी के साथ नशे के खिलाफ बनेगी नई रणनीति, ड्रग तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी। नशे के खिलाफ 3 साल का एक्शन प्लान, डार्कनेट क्रिप्टो से ड्रग तस्करी पर कसेगा शिकंजा। एनसीबी की नई वेबसाइट लॉन्च, लखनऊ देहरादून में नए परिसरों की आधारशिला। नशे की मांग घटाने से नशा मुक्ति तक, एंटी नारकोटिक्स मिशन पर बनेगी नई रणनीति। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र राज्य एजेंसियां होंगी और मजबूत, 8 तकनीकी संतरों में तस्करी और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक की रणनीति पर मंथन। आईआईटी बॉम्बे में छात्रों के दबाव के आगे झुका प्रशासन, प्रोफेसर डुल्ला को डीन पद से हटाया गया। छात्र साहिल की मौत पर आईआईटी बॉम्बे के छात्र प्रतिनिधि बोले, हम नकल या अकेडमिक गड़बड़ी का सपोर्ट नहीं करते। प्रोफेसर डुल्ला को सिर्फ डीन पद से हटाने पर भड़के छात्र, प्रोफेसर पद से भी तत्काल सस्पेंशन की मांग की। आईआईटी बॉम्बे में सुसाइड रोकने की कवायद तेज, हॉस्टल में सीलिंग फैन की जगह लगेंगे वॉल माउंटेड फैन। साहिल की मौत के बाद आईआईटी बॉम्बे में घमासान, 18 मांगों पर प्रशासन ने दिया कार्रवाई का भरोसा। जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ का वीडियो आने के बाद बिहार पुलिस का सख्त एक्शन, अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश में लगातार छापेमारी। जमुई की शर्मनाक घटना पर सियासी संग्राम, तेजस्वी ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में गुंडाराज पूरी तरह कायम। जमुई मामले पर बिहार सरकार का बचाव करते नजर आए मंत्री श्रवण कुमार, कहा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जमुई की घटना पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, आरोपियों पर पॉस्को के तहत कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया, पूछा सार्वजनिक सड़क पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी दौरा, आज दूसरे दिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई रणनीतिक संगठनात्मक बैठक। पूर्व सांसदों, विधायक और संगठन के बड़े पदाधिकारियों से लेंगे फीडबैक, बूथ मैनेजमेंट, सदस्यता अभियान और आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। नितिन नवीन की पदाधिकारियों संग अहम बैठकें, किसान मुद्दों और जाट मुस्लिम समीकरण के बीच संगठन को मजबूत करने पर जोर। यूपी में योगी रोजगार कुंभ जारी, आज 3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। यूपी में रोजगार पर योगी सरकार का फोकस, सरकार का दावा, अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया। रोजगार पर योगी का विपक्ष पर वार, बोले जो नहीं कर पाए वो हमेशा बोलते रहेंगे। 2027 के लिए अखिलेश का पीडीए प्लान तेज, यूनिवर्सिटी कैंपस में युवाओं से सीधा संवाद, पिछड़ा दल अल्पसंख्यक युवाओं को जोड़ने के लिए पीडीए यूथ मीटअप अभियान। युवा वोटरों पर अखिलेश की नजर, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दों पर संवाद। 2027 से पहले दलित वोटरों पर अखिलेश का फोकस, एसपी के सियासी रंग में नीला भी शामिल, आगरा में नवंबर में दलित सम्मेलन की तैयारी। इटली में हिजाब बैन के प्रस्ताव को लेकर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध, मौलाना खालिद रशीद ने उठाए सवाल। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने खोला गठबंधन का दरवाजा, 2 अक्टूबर तक ऐलान का दावा, ओवैसी ने कहा जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं हम उनके साथ काम करने को तैयार। ओवैसी का विपक्ष को ऑफर, बोले बीजेपी को रोकने के लिए अकेले कोई पार्टी काफी नहीं है। ओवैसी के गठबंधन ऑफर पर कांग्रेस का पलटवार, इमरान मसूद ने कहा ओवैसी 4-5 सीटें जीत सकते हैं लेकिन बीजेपी की सरकार बनवा देंगे। यूपी में मुस्लिम सियासी हिस्सेदारी पर ओवैसी का जोर, बोले मुस्लिम समाज की अपनी राजनीतिक लीडरशिप एजेंसी होनी चाहिए। 2027 के लिए एआईएम एमआईएम तैयार, ओवैसी को जीत का भरोसा, कहा हमारे उम्मीदवार जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे। संगरूर में ड्रग्स को लेकर सियासी संग्राम तेज, ग्रामीण के जहर खाने से गरमाई सियासत। ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले के जग्गा के जहर खाने पर बीजेपी का आप पर हमला, तरुण चुप ने कहा सच बोलने वालों को मिटाना, क्या यही आप मॉडल है। संगरूर ड्रग्स कांड पर आपका पलटवार, विपक्ष और पंजाब को बदनाम करने का आरोप। ड्रग्स के मुद्दे पर घिरी पंजाब सरकार, प्रताप बाजवा का भगवंत मान पर सीधा हमला, कहा भगवंत मान नशा रोकने में नाकाम रहे। 2027 से पहले पंजाब में ड्रग्स बना बड़ा सियासी मुद्दा, बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा ड्रग माफिया को पंजाब के हर गांव और मोहल्ले से खत्म करेंगे। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार की मुश्किल बढ़ी, आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई, मिलन प्रधान ने 5 मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की। नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस के प्रचार पर संकट, मिलन प्रधान 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में। कांग्रेस उम्मीदवार पर शिकंजा, हत्या समेत कई मामलों में गिरफ्तारी हुई है, पुलिस के मुताबिक 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े मामले हैं ये। टीएमसी के बागी सांसदों पर एक्शन की तैयारी, ओम बिरला ने जवाब के लिए आज तक का समय दिया, सांसद सुदीप अयोग्यता याचिका पर 22 सितंबर तक देना होगा जवाब। टीएमसी के 20 बागी सांसदों की सदस्यता पर तलवार लटकी है, अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से कार्रवाई तेज करने की मांग उठाई। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, 302 में से 200 निकायों पर बीजेपी का दबदबा, 94 निकायों तक सिमटी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस के बीच 106 निकायों का अंतर। राजस्थान में निकाय चुनाव बीजेपी के पक्ष में बड़ा जनादेश, 6 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा, 302 निकायों के नतीजे घोषित किए गए हैं, 7 निकायों का परिणाम अभी आने बाकी है। वीरमणि पॉस्को केस पर तमिलनाडु में सियासी घमासान मचा, टीवी के निस्तारण की पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीरमणि पॉस्को केस पर तमिलनाडु में सियासी घमासान जारी है, क्योंकि टीवी का दावा है मामला फंड लेने का नहीं है बल्कि आरोपी को बचाने और जांच में हस्तक्षेप का है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ आज करेगी अहम सुनवाई, राज्यों के अतिरिक्त टैक्स लगाने के अधिकार पर होगा फैसला। तरंग शक्ति 2026 की वापसी, जोधपुर बनेगा एयर वॉरफेयर का केंद्र।
भारतीय वायुसेना कह रही है कि मेगा मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा साझा युद्धाभ्यास। तरंग शक्ति 2026 में ग्लोबल एयर फोर्सेस की होगी बड़ी भागीदारी, दुनिया के अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान आसमान में करतब दिखाएंगे। पाली में भारत अमेरिका सैनिकों ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास जारी, जंगल से इंडोर वार फायरिंग रेंज तक बढ़ाया तालमेल। पाली की खड़ी चट्टानों पर भारत अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त ग्रैपलिंग अभ्यास, पहाड़ी युद्ध कौशल को मजबूत किया। डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, पोखरण में केएल ड्रोन का सफल परीक्षण, 8 घंटे उड़ान और 1000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता टेस्ट की गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान का आश्वासन दिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे एडिशन का सीएम योगी ने ऐलान किया, 25 से 29 सितंबर तक नोएडा के इंडिया एक्सपो केंद्र में होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांव में बेहतर कनेक्टिविटी देने की पहल तेज की गई है, नौशेरा में रोड बनाने के साथ पुलों से जोड़े जा रहे हैं इलाके। बद्रीनाथ धाम में मॉनसून के बाद रौनक लौट गई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उठा रहे मौसम का लुत्फ। गणेशोत्सव का आज 9वां दिन है, देशभर में विधि विधान से गजानन की आराधना जारी है। देश के कई पूजा पंडालों से गजानन की प्रतिमा की विदाई हो रही है, लोगों ने भक्तिभाव अगले बरस जल्दी आने के गुहार के बीच विसर्जन किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेशोत्सव के बीच दिखा बप्पा का अनोखा पंडाल, गणपति अलग अलग रूपों में दे रहे हैं जल बचाने और पर्यावरण की रक्षा का संदेश। जालना में गणेशोत्सव के मौके पर चमन चराजा गणपति मंडल ने बनाया खाटू श्याम का भव्य दृश्य। भिलाई में धूमधाम से हुआ भगवान गणेश का विवाह, रिद्धि सिद्धि संग वैदिक रीति रिवाज से रचाई शादी। अमरावती में इको फ्रेंडली बाबा की मूर्ति और पंडालों के अनोखे प्रयोग देखने को मिले, अंजीर मखाने से बनाई गई 7 फीट ऊंची प्रतिमा। चंद्रपुर के गणपति पंडाल में अनोखा प्रयोग, सुग्रीव की गुफा में राम रूपी गजानन के हो रहे दिव्य दर्शन। मुंबई में शिवडी चराजा का भव्य अवतार, अंडरवाटर द्वारका की अद्भुत थीम, गणपति पंडाल की शानदार सजावट। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने लालबाग चराजा के दरबार में लगाई हाजिरी, पत्नी ऋतिक सजदे के साथ के बापा के दर्शन। मुंबई में विशेष रेल 23 से 26 सितंबर की रात में चलाने का फैसला, गणपति विसर्जन के बाद लौटने वालों की सुविधाओं के लिए किया गया फैसला। जिले के कालकाजी मंदिर में घूमने गए नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, एनकाउंटर के बाद एक गिरफ्तार। नाबालिग से रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोगों ने दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाने पर भारी हंगामा किया, प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। हैदराबाद में 10 रुपए के विवाद में ऑटो ड्राइवर को उतारा गया मौत के घाट, इलाज के दौरान दम तोड़ा। ग्वालियर में कोचिंग जा रही छात्रा को बाइक से रोका, छेड़छाड़ के बाद की मारपीट, सीसीटीवी का वीडियो वायरल। सहारनपुर में एटीएम कार्ड बदलने वाला छात्र गिरफ्तार, एटीएम से छेड़छाड़ कर मदद के बहाने एटीएम बदलकर करता था खेल, कई जिलों में 10 से ज्यादा केस दर्ज। महाराष्ट्र के शाहपुर के कोठारे घाट में एसटी बस का भीषण हादसा, ब्रेक फेल होने की आशंका, 14 यात्री घायल, 5 की हालत गंभीर। लखनऊ होमगार्ड भर्ती में अभ्यर्थी की मौत का चौंकाने वाला खुलासा, गले में पानी की बोतल फंसने से दम घुटने के बाद 12 जगह चोट के निशान। बीड़ के अंबाजोगाई में बंद मकान का ताला तोड़कर करीब 25 लाख रुपए के गहने और नकदी पार, इलाके में दहशत। गोहाना में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, कोर्ट से लौट रहे स्कॉर्पियो सवारों पर हमला, बुलेटप्रूफ गाड़ी ने बचाई 4 लोगों की जान। लखीमपुर में प्रेमी ने स्कूल में घुसकर बच्चों के सामने प्रेमिका टीचर को मारी गोली, फिर खुद की गोली मारकर हत्या की, बच्चों में मचा हड़कंप। सहारनपुर में महिला अस्पताल में 12 घंटे पहले जन्मा नवजात, चोरी टीका लगवाने के बहाने महिला बच्चे को लेकर फरार, सीसीटीवी में कैद संदिग्ध महिला। पाली में बेकाबू ट्रेलर ने तोड़ा डिवाइडर, खेत में जा घुसा, सीटीसी में कैद हुआ खौफनाक हादसा, बड़ा हादसा टल गया। नागपुर में अस्पताल के सामने रोड डिवाइडर से टकराया ट्रक, एक की मौत, 2 गंभीर घायल, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इंदौर में तेज डीजे बजाना भारी पड़ा, पुलिस की कार्रवाई, 6 डीजे संचालकों पर FIR, करीब 15 लाख का सामान जब्त। इंदौर में अचानक धस गई सड़क, 10 फीट से ज्यादा गड्ढा बना, नगर निगम ने गड्ढे को अस्थायी बंद किया, सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। फिल्म हनुमान अंश की शानदार कमाई, 45वें दिन लगभग 14 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म हनुमान अंश ने 45वें दिन तक भारत में लगभग 272 करोड़ रुपए की कमाई की, दुनिया भर में लगभग 330 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। बेहद ही छोटे बजट की फिल्म हनुमान अंश, लगभग 2 करोड़ रुपए का पूरा बजट था। अली फैजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्यन्दु स्टारर मिर्जापुर ने भारत में 200 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया, 4 सितंबर को फिल्म रिलीज हुई। रश्मिका मंदाना का एक्शन अवतार नजर आया है, मैसा का टीजर देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हुए हैं।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:43 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 7:06 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतान को लेकर परेशान ना हों। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खान पान में सावधानी रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

रखें, काम टालने से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting.
6: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान ने सियासी बहस को गर्मा दिया है। एजे नूरानी मेमोरियल लेक्चर में अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देते हुए हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बताया था।
5: जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय फॉरेन सेक्रेटरी गुंडेविया एंड आई कोट दोज वर्ड्स द डेंजर to India. Mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism.
6: इसके बाद बीजेपी ने अंसारी के बयान पर मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि इस बयान के जरिए सनातन और हिंदू परंपरा को निशाना बनाया गया है।
7: और सचमुच डरावने वक्तव्य है। भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और यह वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
6: वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से जुड़े मौलाना साजिद राशिदी ने भी हामिद अंसारी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
8: जब आप पद पर थे, आप मुसलमानों के लिए कुछ कर सकते थे, उस वक्त तो आपने किया नहीं। अब आपको कोई पूछ नहीं रहा है तो जानबूझकर आप अपने आप को जनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी अभी जिंदा हूं, मैं भी अभी हयात हूं, मेरे बारे में भी सोचो।
6: उधर विश्व हिंदू परिषद ने भी अंसारी के बयान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हामिद अंसारी के बयान के बाद शुरू हुआ सियासी विवाद अब सांप्रदायिकता, सनातन परंपरा और धर्म निरपेक्षता के मुद्दे तक पहुंच गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों की प्रतिक्रियाओं के बीच अंसारी के बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
5: जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय फॉरेन सेक्रेटरी गुंडेविया एंड आई कोट दोज वर्ड्स द डेंजर टू इंडिया। मार्क यू, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism.
7: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं। भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। एक्शन महिला आयोग, राहुल और ममता का बीजेपी पर निशाना। दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से रेप केस में एनकाउंटर के बाद एक आरोपी गिरफ्तार, दो की तलाश जारी। सदर बाजार इलाके में बच्ची से दरिंदगी के बाद फूटा लोगों का आक्रोश। मिशन पश्चिमी यूपी में नितिन नवीन के आज सहारनपुर दौरा, कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक। मेरठ में टोटी चोरी के बहाने विपक्ष पर निशाना, अखिलेश का पलटवार, अपना बूथ तक तो जिता नहीं पाए। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले गिरफ्तार किए गए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की याचिका पर आज सुनवाई करेगा कलकत्ता हाईकोर्ट। 3 अक्टूबर तक है न्यायिक हिरासत। 4 को खत्म हो रहा है प्रचार। पहली बार दिल्ली के बाद गुजरात में आज से शुरू हो रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह। सितारों की चमक से जगमग हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऐतिहासिक शो में बैठेंगे 1000 लोग।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली से बिहार तक बच्चियों के साथ हो रहा है अपराध, कहीं सरेआम छेड़खानी तो कहीं गैंगरेप। देश को झकझोर देने वाली इन वारदातों पर सबसे पहले करेंगे बात। IIT छात्र खुदकुशी मामले में प्रोफेसर के साथ खड़ी हुई फैकल्टी, आरोपों को बताया झूठा। इस बहुचर्चित केस पर विस्तार से होगी चर्चा। और बुलेटिन के आखिरी हिस्से में बात करेंगे ट्रंप की मीडिया के बहिष्कार के बीच व्हाइट हाउस ने लॉन्च किया है ट्रंप टीवी। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं देश की संवेदना को झकझोर देने वाली तीन वारदातों से। तीन वारदात देश में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में नाबालिग से गए गैंगरेप, उसके बाद दिल्ली के सदर बाजार में दुकान के भीतर मासूम बच्ची से रेप, और बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की से सरेआम छेड़छाड़। सरकार के तमाम दावों के बावजूद ये वारदात बेटियों की सुरक्षा की पोल खोलती है और तस्वीरें सवाल पूछती हैं कि आखिर कैसे बचेंगी बेटियां और कैसे पढ़ेंगी बेटियां। और इन खबरों के बीच अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के कालकाजी जहां पर मंदिर के पास एक पार्क में 17 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। तीन आरोपियों ने नाबालिग के साथ ये गैंगरेप किया है। शाम तकरीबन 7 बजे की यह घटना है। 17 वर्षीय दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर पहुंची और दर्शन के बाद उन्होंने शाम तकरीबन 7:30 बजे पार्क में गए। तभी 25 से 30 साल की उम्र के तीन युवक वहां पहुंचे और दोनों को धमकाया। आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया और एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बाकी आरोपियों की पहचान और पार्क के आसपास इलाकों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास मौजूद लोगों से घटना के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। कालकाजी थाने में पॉक्सो और रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। केस के बाद पुलिस जांच कर रही थी, तभी आरोपी एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, बाकी दो आरोपियों के बारे में अब तक पुलिस क्या जानकारी जुटा पाई है?
1: जो आसिफ है, जो पकड़ा गया है एनकाउंटर के बाद, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहीं पर एनकाउंटर हुआ, उससे मिली जानकारी के बाद अब तलाश जारी है। ये एनकाउंटर स्पॉट की सीधी तस्वीरें आप देखिए, यहां पर फॉरेंसिक टीम आपको मौके से जो फायर जो गोलियां चली थी उनके बुलेट्स यहां पर इकट्ठी की जा रही है। सामने आप देखिए आरोपी आसिफ की बाइक और वो पिस्टल भी यहीं पर पड़ी हुई है जिससे उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई। आरोप है कि उसने जो गोली चलाई थी उसमें से एक गोली जो हेड कांस्टेबल जो पुलिस टीम में शामिल थे उनके बुलेट प्रूफ पर लगी। इस वजह से गनीमत रही कि पूरी तैयारी के साथ पुलिस थी, उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखा था और इस वजह से उन्हें चोट नहीं लगी। लेकिन आसिफ को आप सोचिए कि चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई और यहां से भागने की कोशिश की। और लेकिन ये आप जो पूरा इलाका देखेंगे, सामने का जो पूरा इलाका है वहां पर आपको सामने पुलिस बूथ नजर आएगा, उस इलाके को पुलिस ने पूरी तरीके से कवर कर लिया था और पीछे की तरफ भी पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी जिससे आरोपी यहां पर पूरी तरीके से फंस गया। लेकिन फिर भी इसने पुलिस टीम पर गोली चलाने की और यहां से भागने की कोशिश की। सुबह उस वक्त तकरीबन 6:30 का वक्त हो रहा था, 6 से 6:30 का वक्त हो रहा था। इस वजह से यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग आते हैं और ये पार्क आप देखिए बगल में है तो यहां पर भी लोग मौजूद थे और अचानक से लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी तो एकदम से लोग यहां से पीछे की तरफ हटे। करीब 5 से 6 राउंड गोलियां आप चली है। आप देखिए यहां पर आपको तमाम जो बुलेट्स यहां पर फायर हुई हैं उनके निशान यहां पर नजर आएंगे। फॉरेंसिक टीम आपको यहां पर नजर आएगी। अभी वही पिस्टल जो आरोपी आसिफ की पिस्टल है नेहा, देखिए वहां पर जांच की जा रही है, उस पिस्टल के बारे में पता किया जा रहा है। अब आगे चूंकि गोली लगी है, घायल हुआ है आसिफ, तो उससे अभी जो प्राइमरी जानकारी मिल पाई है उसके आधार पर जो दो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। जो पीड़ित बच्ची थी उसने भी पुलिस को उसके बारे में कुछ उनके हुलिये के बारे में जानकारी दी थी जिसके बाद पुलिस ने
0: ठीक है बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और खबर दिल्ली से जहां पर अपराध की ये दूसरी घटना है। नाबालिग बच्ची से रेप से गुस्साए लोगों ने दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड के थाने पर भारी हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने रेप के आरोपी और उसकी मां पर हमला किया है। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। ये कल देर शाम की घटना है जहां पर पुलिस के लिए ये आक्रोश।
2: ये आक्रोश दिल्ली के सदर बाजार में 11 साल की एक बच्ची के साथ हुए महापाप के खिलाफ है। राजधानी दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाने के बाहर सोमवार देर शाम बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए। भीड़ ने थाने में मौजूद रेप के आरोपी और उसकी मां पर हमला बोल दिया। आरोपी और उसकी मां को बचाने के लिए पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। रेप की वारदात 16 सितंबर की रात की है। जांच के मुताबिक क्लास 6 में पढ़ने वाली नाबालिग रात करीब 11 बजे स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी। तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया। इसके बाद उसने नाबालिग लड़की के हाथ पैर बांधे और उसका यौन उत्पीड़न किया।
3: मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। और अगर आप देखें ये पूरे इलाके को तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कंजस्टेड इलाका है और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहाँ काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी आप देखें तो ये जो पूरी गली है, इसी गली में ये दूसरी दुकान जो है ये बताई जा रही है ये मकसूद की है जहां वो टेलर का काम करता था। 16 तारीख की रात करीब 11 बजे के आसपास जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से नीचे उतरती है, स्टेशनरी जाती है, कॉपी पेंसिल लेने के लिए जाती है, लेकिन मकसूद जो कि उसे पहले से जानता था उसे अपनी दुकान में लाता है। आरोप ये है कि उसके हाथ पैर बांधता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है।
2: इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और डर है।
4: हमारे भी बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा है कि हम बाहर निकाले ना निकाले, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हमें फिक्र महसूस हो गया क्योंकि अब जब ऐसा इंसान नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा है शैतान जाग के अंदर तो हर आदमी को डर लगेगा।
2: वारदात को लेकर स्थानीय लोग हैरान भी हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि 56 साल का मकसूद ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है।
5: आदमी सही था लेकिन अब उसके अंदर शैतान जाग गया, क्या हुआ, आदमी तो सही था वो।
3: आप लोग आसपास रहते हैं, आपको पता होगा।
5: बिल्कुल, यही घर है हमारा पड़ोस में और ये बच्ची जो है ये मेरी किराएदारी थी।
2: राजधानी दिल्ली की ये वारदात बेहद डराने वाली है। क्या अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है? अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आरोपी के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है?
1: देखिए, आरोपी तो गिरफ्तार हो ही चुका था क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस की टीम मौके से पहुंची और वहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उसकी पूरा बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है क्योंकि जिस तरीके की वारदात को उसने अंजाम दिया नया, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। उसने ल्योर किया, ल्योर करके उसने दुकान के अंदर बच्ची को ले गया और वहां पर उसने गलत हरकत को अंजाम दिया। अब ऐसे में क्या ऐसे इसने कि पहले किसी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया, इसलिए पुलिस पूरा उसका मोबाइल का डाटा खंगाल रही है, जो आसपास की सीसीटीवी है, खासतौर से जो उसके दुकान को उसके एरिया को कवर करते हैं उस एरिया को कवर कर रही है, और बकायदा एक टीम है जो उसके पूरी प्रोफाइलिंग कर रही है क्योंकि इसमें पुलिस को, क्योंकि 6 साल की बच्ची का मामला है, ऐसे में पुलिस जरूर केसेस में जो आरोपी होते हैं उनकी पूरी प्रोफाइलिंग करती है, देखती है कि कहां पर इसने ऐसे कितने वारदातों को अंजाम दिया। तो अभी फिलहाल और ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है लेकिन पुलिस की कोशिशें लगातार जारी है। दूसरी तरफ क्या कोई और तो नहीं था जिसको इसने बाद में बताया हो या मदद मांगी हो? जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात बिहार के जमुई कांड की, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ हुए बदसलूकी की खौफनाक वारदात के बाद एक्शन अब भी जारी है। अब तक छेड़छाड़ में शामिल 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकियों की तलाश तेज है। और इस बीच जमुई में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर पीड़ित की पहचान उजागर करने वालों पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब तक पुलिस ने 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
6: कॉपी की दाम देख लीजिए आप।
7: अरे कॉपी की दाम ना क्या लगा इसको?
2: बिहार की इन तस्वीरों ने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया है। एक नाबालिग लड़की पर लोग हैवान की तरह टूट पड़े। जिसने भी ये तस्वीर देखी वही परेशान है, सवाल पूछ रहा है कि बिहार को क्या हो गया।
8: आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी, ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी जी के बयान पर एक संदेह पैदा करने वाला घटना है कि बिहार में आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।
2: विपक्ष हमलावर है और बिहार सरकार बैकफुट पर। बिहार के उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने इस वारदात पर विपक्ष को राजनीति न करने की नसीहत दे डाली
6: कि जिस तरह की घटना घटी है निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। समाज को बदनाम कर देने वाली ये घटना है और एक बेटी होने के नाते जब ये घटनाएं घर से करीब होती है तो निश्चित रूप से मन और ज्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ जो विपक्ष की टिप्पणी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करना अपने आप में ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी संकुचित है।
2: बेहद अजीब तर्क है, एक बच्ची के साथ इतनी बड़ी शर्मनाक वारदात और मंत्री को लगता है विपक्ष कोई सवाल भी न पूछे। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जमुई की घटना पर जवाब की मांग की तो देखिए बिहार के कद्दावर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने क्या कहा।
9: महिला सुरक्षा को लेकर वो बिहार में महिलाएं सुरक्षित है, जरा अपने एलआई उनके जो लालू प्रसाद जी हैं उनसे पूछे कि उनके शासन काल में सूर्यास्त के बाद कोई महिला घर से निकलना नहीं चाहती थी।
2: वारदात शनिवार की है जब 10वीं में पढ़ने वाले दोनों पीड़ित नाबालिग जमुई के मड़वा पहाड़ घूमने गए थे।
10: जमुई के वायरल वीडियो मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों युवक और युवती एक कोचिंग में पढ़ाई करते थे। शनिवार का दिन था लिहाजा छुट्टी होने के बाद वो घूमने के लिए जमुई के मड़वा पहाड़ इलाके में चले गए और यहीं पर मनचलों ने उन्हें निशाना बनाया। स्कूटी सवार युवक और युवती को वहां रोका गया और उनके साथ जिस घटना को अंजाम दिया गया वह वाकई शर्मसार करने वाला है।
2: वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। जमुई पुलिस ने सबसे पहले दोनों पीड़ित छात्र और छात्रा से संपर्क किया, FIR दर्ज कर ली। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, बाकियों की तलाश जारी है।
11: घर जाके लड़की के घर जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, इसके बाद जमुई पुलिस के द्वारा 3 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और 2 और हो सकता है, तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था।
2: बिहार पुलिस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करने वालों पर एक्शन ले रही है। वायरल वीडियो को सोशल मीडिया से हटाया जा रहा है।
12: 120 ऐसे सोशल मीडिया के डिफरेंट साइट के यूजर प्रोफाइल धारकों पर ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे नाबालिग पीड़िता के निजता का ख्याल रखें, ऐसे वीडियो को वायरल न करें।
2: बिहार पुलिस एक्शन में है, सवाल कानून व्यवस्था के भरोसे का है, जरूरी है हर हाल में यह भरोसा बना रहे। शशिभूषण पटना, आज तक।
0: रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। रोहित, बिहार सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी है इस पूरे मामले में, क्या सम्राट चौधरी खुद इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं?
13: नहीं, बिल्कुल सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया है और इसीलिए अब जो घटना तो घट गई है उसके बाद कार्रवाई हम देख रहे हैं हो रही है। 7 आरोपी जो इस पूरे मामले में है उसमें से 3 की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, लेकिन अभी भी जो 4 आरोपी हैं जिससे बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी जो है, जो वो गेरुए रंग का जो जिसने चेहरा ढका हुआ है गमछे से, वो सब अभी फरार चल रहे हैं और उनके धरपकड़ के लिए कल देर रात तक तकरीबन 300 से भी ज्यादा पुलिस बल जो है वो पूरे जमुई जिले में जो है छापेमारी करता रहा, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल हाथ नहीं लगी है और अभी भी ये 4 आरोपी जो है वो फिलहाल पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। लेकिन शर्मनाक घटना घटी है और उसको लेकर राजनीति भी लगातार जो है बिहार में हम देख रहे हैं वो चल रहा है। जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जमुई में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और शर्मसार भी किया है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है और इस पर सियासत भी तेज है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इस घटना पर बेहद शर्मनाक बयान दिया। श्रवण कुमार ने जमुई की घटना को छुटपुट मामला बताया।
14: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
0: वहीं इस घटना पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बेहद शर्मनाक बयान दिया। जब इस घटना पर सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने आरजेडी राज के दौर की कानून व्यवस्था की दलील दी और मौजूदा घटना को चुटपुट घटना बताया। अब विपक्ष जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर हमलावर है।
15: चुटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
0: अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर लखीमपुर में स्कूल में एक टीचर की हत्या का मामला सामने आया, जहां प्रेमी सऊद अंसारी ने टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आरोपी टीचर को वो घसीट कर ले जाता दिख रहा है। टीचर की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये वही फुटेज है जिसमें आरोपी इस टीचर को घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके थोड़ी देर बाद इसने फायरिंग की जिसमें टीचर की जान चली गई और इसके बाद आरोपी ने भी खुद आत्महत्या कर ली। और अब बात आईआईटी मुंबई में छात्र की खुदकुशी मामले की। इस पर अब बवाल छात्रों ने मचाया है। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रदर्शन के बाद अब फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर दुल्ला के समर्थन में आ गए।
16: साहिल वकोडी सुसाइड केस में आरोपों से घिरे प्रोफेसर सूर नारायण दुल्ला के समर्थन में अब आईआईटी बॉम्बे फैकल्टी फोरम उतर आया है। इन सॉलिडेरिटी विद सूर्या के बैनर के साथ फैकल्टी के सदस्यों ने कल आईआईटी बॉम्बे परिसर में मार्च किया। प्रोफेसर दुल्ला के समर्थन में आईआईटी बॉम्बे फैकल्टी फोरम ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्य नारायण को सस्पेंड नहीं किया गया है, वो अभी भी आईआईटी बॉम्बे में फैकल्टी हैं। प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला आईआईटी बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी है जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। आईआईटी बॉम्बे में साहिल वकोडे की आत्महत्या से भारी तनाव स्थित है। पिछले चार दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन में छात्र तो हैं ही, इसमें राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन भी शामिल हो गए हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि साहिल को सुसाइड करने की वजह क्या है। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ आईआईटी बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। ये भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता रविंद्र वाकोडे ने कहा कि प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला उनके बेटे को जाति सूचक अपशब्द कहते थे और करीब 3 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में ये भी कहा गया है कि उनका बेटा दलित है, इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। उधर आईआईटी बॉम्बे की तरफ से शुरुआत में बताया गया, शुक्रवार को मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। इसी पर उसकी काउंसलिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि साहिल को हॉस्टल खाली कराने की धमकी दी गई थी जिससे वो परेशान था।
17: क्योंकि 8 दिन के पहले उनके मम्मी पापा जब मिलने के लिए गए थे तो उनके मम्मी पापा को साहिल ने बताया था कि यहाँ कॉलेज में मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता है, मुझ पर अन्याय हो रहा है। तो साहिल के मम्मी पापा ने बोला आपको ये पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा, बाकी चीजों पर ध्यान मत दे, दूसरी पे ये पढ़ाई कर, ऐसे बोला था। हाँ, 8 दिन के पहले उनके माँ बाप जाके मिल के आए तो माँ बाप को बताया था कि ये कॉलेज में ऐसा हो रहा, तो माँ बाप ने समझाया, बेटा तुम पढ़ाई पर ध्यान दो।
16: कैंपस में एक छात्र की खुदकुशी से बढ़कर कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। जरूरी है पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और त्वरित जांच हो। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: दीपेश त्रिपाठी में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे आईआईटी मुंबई से। दीपेश, दरअसल इस आत्महत्या का सच क्या है? अगर छात्र कंप्लेन कर रहा था अपने माँ बाप को कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है, क्या उसने कुछ स्पेसिफिक नाम लिए थे जिसमें प्रोफेसर दुल्ला का भी नाम शामिल था?
18: जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उनके भी जांच की जा रही है। वो भी जो इंक्वायरी फैकल्टी और पुलिस की तरफ से की जा रही है जांच का एक अहम हिस्सा है। और ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सुसाइड होने के बाद ये मामला उजागर क्यों हुआ, इसके पहले क्यों नहीं उजागर हुआ। जाहिर तौर पर जो फैकल्टी है उन्होंने प्रोफेसर डुल्ला को बैक किया है, उनका सपोर्ट किया है, उनके समर्थन में उतर के कहा है कि माल प्रैक्टिस या एग्जाम में चीटिंग को रोकने के लिए जो गाइडलाइंस फैकल्टी की तरफ से तय की गई थी आईआईटी की तरफ से, उसी को फॉलो कर रहे थे और उसके बाहर जाके उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसके लिए उनके सपोर्ट में वो उतरे हैं। हालांकि जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20 मांगों का चार्टर जो है फैकल्टी को दिया था और कहा था कि ये 20 मांगे जो है इस चार्टर की वो पूरी होनी चाहिए, जिसमें से एक मांग थी प्रोफेसर डुल्ला का सस्पेंशन। हालांकि फैकल्टी द्वारा कहा गया है कि जो सस्पेंशन है वो सस्पेंड नहीं किया गया था, टेम्पररी उनको अपनी ड्यूटी से रिलीव किया गया था ताकि इंक्वायरी जो है वो इम्पार्शियल हो सके, फेयर हो सके। हालांकि स्टूडेंट्स अपनी मांग पर अड़िग हैं कि इनका सस्पेंशन होना चाहिए और जल्द से जल्द इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए। जो आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं उनकी भी जांच हो रही है और वो जैसा कि हमने बताया कि जो जांच पुलिस द्वारा और फैकल्टी द्वारा जो इंक्वायरी की जा रही है उसका एक अहम हिस्सा होंगे। और जाहिर तौर पर जिनके भी नाम परिवार ने इन आरोपों में लगाए हैं उन पर पुलिस द्वारा पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है और उनसे भी पूछताछ क्राइम ब्रांच द्वारा की जाएगी।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात राजनीति की करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं लेकिन चुनाव प्रचार का बिगुल एक तरह से बज चुका है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। कल मेरठ से दौरे की शुरुआत हुई और आज वो सहारनपुर जाएंगे।
19: ये 2027 की लड़ाई का शंखनाद है जिसे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीएम योगी और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ पश्चिमी यूपी से शुरू किया है। आपको बता दें कि नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर मेरठ और सहारनपुर आए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि बीजेपी ने 2027 के प्रचार की शुरुआत के लिए इन दोनों ही शहरों को क्यों चुना। पहले आपको दिखाते हैं क्यों यूपी में 2027 की लड़ाई बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों की तरफ लौटते हैं। जो बीजेपी यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही थी वो 33 सीटों पर सिमट जाती है। अखिलेश की पार्टी यूपी में 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीतकर यूपी का तिलिस्म तोड़ दिया। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में मिली बढ़त के चश्मे से देखें तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 217 पर आगे रही। इसमें समाजवादी पार्टी 178 विधानसभा सीट पर, कांग्रेस 38 सीट पर, जबकि टीएमसी 1 सीट पर। वहीं यूपी की सत्तारूढ़ बीजेपी पिछड़ गई, एनडीए सिर्फ 181 विधानसभा सीटों पर आगे रही। इसमें बीजेपी 169, आरएलडी 8, अपना दल 4 सीट पर, यानी राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मोदी और योगी की जोड़ी को देश के सबसे बड़े राज्य में पीछे किया। बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा एकदम ताजा था, यानी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दो लड़कों की जोड़ी लोकसभा चुनावों से विधानसभा चुनावों में भी बड़े उलटफेर का संकेत देती है। और बात पश्चिमी यूपी की करें तो पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटों में से बीजेपी को 2019 में 19 सीटें मिली थीं, तो 2024 में बीजेपी 13 सीटें ही जीत पाई, जबकि समाजवादी पार्टी को 2019 में 4 सीटें मिली थीं और 2024 में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें जीती और कांग्रेस का 2019 में खाता भी नहीं खुला।

0: बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अपनता लोगों का गुस्सा। मिशन पश्चिमी यूपी में नितिन नवीन का सहारनपुर दौरा, कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक। मेरठ में टोटी चोरी के बहाने विपक्ष पर निशाना, अखिलेश का पलटवार, अपना बूथ तक तो जिता नहीं पाए। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले गिरफ्तार किए गए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की याचिका पर आज सुनवाई करेगा कोलकाता हाईकोर्ट। 3 अक्टूबर तक है हिरासत, 4 को खत्म हो रहा है प्रचार। पहली बार दिल्ली के बाद गुजरात में आज से शुरू हो रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह। सितारों की चमक से जगमग हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऐतिहासिक शो में बैठेंगे 1000 लोग।

सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में साजिश के तहत लगाई गई थी आग। 14 दुकानों के जलने से करीब 24 करोड़ का नुकसान हुआ था। आसनसोल के बीबी कॉलेज में एबीवीपी के दो गुट आपस में भिड़े, सीसीटीवी में कैद हुई छात्राओं की मारपीट। हैदराबाद में डांस ग्रुप के इंडियन रॉक पायथन और मुर्गी बरामद, सार्वजनिक कार्यक्रम में इस्तेमाल का आरोप। दक्षिण 24 परगना में भांगर महाविद्यालय में नए अध्यक्ष सायंतन बसु के खिलाफ प्रदर्शन, एसएफआर स्टूडेंट फ्रंट कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। पोपल बंदर के हमले से 91 साल की बुजुर्ग महिला की मौत, सीसीटीवी में कैद होगी ये घटना। गाजियाबाद मॉल रेस्टोरेंट फूड प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, गंदगी और लाइसेंस उल्लंघन पर कार्रवाई तेज। प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी की पुरानी नियमावली की मांग पर छात्रों का आंदोलन तेज, शिक्षा निदेशालय पर कर रहे हैं आमरण अनशन। कानपुर देहात में टायर फैक्ट्री में भीषण आग, दो मजदूरों की मौत। संभल में 7 साल पुराने सिपाही हत्याकांड में बड़ा फैसला, दोषी धर्मपाल को उम्र कैद और 1,69,000 रुपए का जुर्माना। बरेली में पेट्रोल चोरी के आरोप में 2 पुलिसकर्मी निलंबित, डायल 112 की गाड़ी से तेल निकालकर पेट्रोल पंप पर बेचने का आरोप। दिल्ली के कालकाजी मंदिर घूमने गई नाबालिग से गैंग रेप का मामला, इनकाउंटर के बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी। नाबालिग से रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, दिल्ली के देश बंधु गुप्ता रोड पर थाने पर भारी हंगामा, प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प। लखनऊ में हिट एंड रन मामले के बाद पीड़िता को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार। तिरुवल्लूर में सरकारी अस्पताल परिसर में महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया आरोपी को, मुठभेड़ में लगी गोली। ग्वालियर में कोचिंग जा रही छात्रा को बाइक से रोका गया, छेड़छाड़ के बाद की मारपीट का सीसीटीवी का वीडियो हुआ वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार दूसरा फरार। नशे के खिलाफ अमित शाह का बड़ा एक्शन, एएनटीएफ प्रमुख के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी के साथ नशे के खिलाफ बनेगी नई रणनीति, ड्रग तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी। नशे के खिलाफ 3 साल का एक्शन प्लान, डार्कनेट क्रिप्टो से ड्रग तस्करी पर कसेगा शिकंजा, एनसीबी की नई वेबसाइट लॉन्च। लखनऊ देहरादून में नए परिसरों की आधारशिला। नशे की मांग घटाने से नशा मुक्ति तक एंटी नारकोटिक्स मिशन पर बनेगी नई रणनीति। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र राज्य एजेंसियां होंगी और मजबूत, 8 तकनीकी सत्रों में तस्करी और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक की रणनीति पर मंथन। आईटी बॉम्बे में छात्रों के दबाव के आगे झुका प्रशासन, प्रोफेसर दुल्ला के डीन पद से सस्पेंशन। छात्र साहिल की मौत पर आईटी बॉम्बे में छात्र प्रतिनिधियों ने बोला, हम नकल या अकेडमिक गड़बड़ी का सपोर्ट नहीं करते। प्रोफेसर दुल्ला को सिर्फ डीन पद से हटाने पर भड़के छात्र, प्रोफेसर पद से भी तत्काल सस्पेंशन की मांग।

बॉम्बे में सुसाइड रोकने की कवायद तेज, हॉस्टल में सीलिंग फैन की जगह लगेंगे वॉल माउंटेड फैंस। साहिल की मौत के बाद आईआईटी बॉम्बे में घमासान, 18 मांगो, प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। नाबालिग से छेड़छाड़ का वीडियो आने के बाद बिहार पुलिस का सख्त एक्शन, अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश में छापेमारी। जमुई की शर्मनाक घटना पर सियासी संग्राम तेज, तेजस्वी ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में गुंडा राज पूरी तरह कायम हो चुका है। जमुई मामले पर बिहार सरकार का बचाव करते नजर आए मंत्री श्रवण कुमार, कहा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, सरकार की नजर है, दोषी बच नहीं पाएंगे। जमुई की घटना पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, आरोपियों पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर निशान साधते हुए उठाए सवाल, पूछा सार्वजनिक सड़क पर ऐसी घटना कैसे हो सकती। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी दौरे का दूसरा दिन आज सहारनपुर में, नितिन नवीन कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक। पूर्व सांसदों, विधायकों और संगठन से बड़े पदाधिकारियों से लेंगे फीडबैक। बूथ मैनेजमेंट, सदस्यता अभियान और आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। नितिन नवीन की पदाधिकारियों संग अहम बैठकें, किसान मुद्दों और जाट मुस्लिम समीकरण के बीच संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। यूपी में योगी रोजगार कुंभ जारी, आज 3,567 अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति पत्र। यूपी में रोजगार पर योगी सरकार का फोकस, सरकार का दावा, अब तक करीब 1,000,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया। रोजगार पर योगी का विपक्ष परिवार, बोले जो नहीं कर पाएंगे वो हमेशा बोलते ही रहेंगे। दो हजार 2027 के अखिलेश का पीरियड प्लान तेज, यूनिवर्सिटी कैंपस में युवाओं से सीधा संवाद, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक युवाओं को जोड़ने के लिए पीरियड यूथ मीटअप अभियान। युवा वोटर्स पर अखिलेश की नजर, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दों पर संवाद। 2027 से पहले दलित वोटर्स पर अखिलेश का फोकस, एसपी के सियासी रंग में नीला भी शामिल, आगरा में नवंबर में दलित सम्मेलन की तैयारी। इटली में हिजाब बैन के प्रस्ताव को लेकर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध, मौलाना खालिद रशीद ने उठाए सवाल। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने खोला गठबंधन का दरवाजा, 2 अक्टूबर तक ऐलान का दावा, ओवैसी बोले जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं हम उनके साथ काम करने को तैयार। ओवैसी का विपक्ष पर को ऑफर, बोले बीजेपी को रोकने के लिए अकेले कोई पार्टी काफी नहीं है, जो बीजेपी को सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं हमसे बात करें। ओवैसी गठबंधन ऑफर पर कांग्रेस का पलटवार, इमरान मसूद बोले ओवैसी 4-5 सीटें जीत सकते हैं लेकिन बीजेपी सरकार बनवा देंगे। यूपी में मुस्लिम सियासी हिस्सेदारी पर ओवैसी का जोर, बोले मुस्लिम समाज की अपनी राजनीतिक लीडरशिप और एजेंसी होनी चाहिए। 2027 के लिए AIMIM तैयार, ओवैसी को जीत का भरोसा, का इस बार हमारे उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। संगरूर में ड्रग्स को लेकर सियासी संग्राम तेज, ग्रामीण के जहर खाने से गरमाई सियासत, कांग्रेस का आरोप, पंजाब पुलिस और आपका पूरा तंत्र ड्रग्स के खेल में शामिल। ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा के जहर खाने पर बीजेपी का आप पर हमला, तरुण चुग बोले सच बोलने वालों को मिटाया, क्या सही आप मॉडल है। संगरूर ड्रग्स कांड पर आपका पलटवार, विपक्ष पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप, संजय सिंह बोले बीजेपी कांग्रेस और अकाली दल पंजाब को बदनाम करने के लिए झूठ फैला रहे। ड्रग्स के मुद्दे पर घिरी पंजाब सरकार, प्रताप बाजवा का भगवंत मान पर सीधा हमला, कहा भगवंत मान नशा रोकने में नाकाम, पंजाब पुलिस और आप तंत्र शामिल। 2027 से पहले पंजाब में ड्रग्स बना सियासी मुद्दा, बीजेपी नेता तरुण चुग बोले ड्रग माफिया को पंजाब के हर गांव और मोहल्ले से खत्म करेंगे। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार की मुश्किल बढ़ी, आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस के प्रचार पर संकट, मिलन प्रधान 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में, 6 अक्टूबर को होगा मतदान। नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पर शिकंजा, हत्या समेत कई मामलों में गिरफ्तारी, पुलिस के मुताबिक 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़ा है मामला। टीएमसी के बागी सांसदों पर एक्शन की तैयारी, ओम बिरला ने जवाब के लिए आज तक का दिया है समय। टीएमसी के 20 बागी सांसदों की सदस्यता पर तलवार, अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर से कार्रवाई तेज करने की उठाई मांग, अयोग्यता याचिका पर स्पीकर ने सांसदों को नोटिस दिया। राजस्थान निकाय चुनाव, बीजेपी की बंपर जीत, 302 में से 200 निकायों पर बीजेपी का दबदबा, 94 निकायों तक सिमटी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस के बीच 106 निकायों का अंतर। राजस्थान में निकाय चुनाव का बीजेपी के पक्ष में बड़ा जनादेश, 6 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा, 302 निकायों के नतीजे घोषित, 7 निकायों के परिणाम आना बाकी। वीरमणि पॉक्सो केस पर तमिलनाडु में सियासी घमासान, टीवी के ने स्टालिन की पिछली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप।
वीरमणि पॉक्सो केस पर तमिलनाडु में सियासी घमासान, टीवी का दावा मामला फंड लेने का नहीं है, आरोपी को बचाने और जांच में हस्तक्षेप का है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ आज करेगी अहम सुनवाई, राज्यों के अतिरिक्त टैक्स लगाने के अधिकार पर होगा फैसला। महाराष्ट्र के शाहपुर में कोठारे घाट में एसटी बस का भीषण हादसा, ब्रेक फेल होने की आशंका, 14 यात्री घायल, 5 की हालत गंभीर। लखनऊ होमगार्ड भर्ती में अभ्यर्थी मौत का चौंकाने वाला खुलासा, गले में पानी की बोतल फंसने से दम घुटने के बाद 12 जगहों पर चोट के निशान। पीठ के अंबा जुगाई में बंद मकान का ताला तोड़कर करीब 25 लाख रुपए के गहने और नकदी गायब, इलाके में दहशत। गोहाना में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, कोर्ट से लौट रहे स्कॉर्पियो सवारों पर हमला, बुलेट प्रूफ गाड़ी ने बचाई 4 लोग की जान। लखीमपुर प्रेमी ने स्कूल में घुसकर बच्चों के सामने प्रेमिका टीचर को मारी गोली, फिर खुद को गोली मारकर कर ली आत्महत्या। सहारनपुर में महिला अस्पताल में 12 घंटे पहले जन्मा नवजात चोरी, टीका लगवाने के बहाने महिला बच्चे को लेकर फरार हुई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पाली में बेकाबू ट्रेलर ने तोड़ा डिवाइडर, खेत में जा घुसा, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। नागपुर के अस्पताल में सामने डिवाइडर से टकराया ट्रक, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। इंदौर में तेल डीजे बजाना पड़ा भारी, पुलिस की कार्रवाई, 6 डीजे संचालकों पर FIR, करीब 15 लाख का सामान जब्त। इंदौर में अचानक धसी सड़क, बना 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा, निगम ने गड्ढे को किया स्थायी बंद, सड़क निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। तरंग शक्ति 2026 की वापसी, जोधपुर में बनेगा एयर वॉरफेयर का केंद्र। भारतीय वायुसेना करेगा मेगा मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा साझा युद्धाभ्यास। तरंग शक्ति 2026 से ग्लोबल एयर फोर्सेस की होगी भागीदारी, दुनिया के अलग अलग देशों से लाखों विमान आसमान में दिखाएंगे करतब। औली में भारत अमेरिकी सैनिकों ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास जारी, जंगल से इंडोर फायरिंग रेंज तक बढ़ाया तालमेल। औली की खड़ी चट्टानों पर भारत अमेरिकी सैनिक का संयुक्त रैपलिंग अभ्यास, पहाड़ी युद्ध कौशल को किया मजबूत। गणेशोत्सव का आज 9वां दिन, देश भर में विधि विधान से गजानन की आराधना जारी। देश के कई पूजा पंडालों से गजानन प्रतिमा की हुई विदाई, लोगों ने भक्तिभाव और अगले बरस जल्दी आने की गुहार के बीच किया विसर्जन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेशोत्सव में दिखा बप्पा का अनोखा पंडाल, गणपति में अलग अलग रूपों में दे रहे हैं जल बचाने और पर्यावरण की रक्षा का संदेश। जालना में गणेशोत्सव के मौके पर चमन चाराजा गणपति मंडल ने बनाया खाटू श्याम बाबा का भव्य दृश्य। भिलाई में धूमधाम से हुआ भगवान गणेश का विवाह, रिद्धि सिद्धि संग वैदिक रीति रिवाज मचाई गई शादी, निकली भव्य बारात। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्ति और पंडालों के अनोखे प्रयोग, अंजीर मखाने से बनाई गई 7 फीट ऊंची प्रतिमा। चंद्रपुर के गणपति पंडाल में अनोखा प्रयोग, सुग्रीव की गुफा में राम रूपी का जन्म के हो रहे हैं दिव्य दर्शन। मुंबई में शिव दीक्षा राजा का भव्य अवतार, अंडर वाटर द्वारका के अद्भुत थीम, गणपति पंडाल की शानदार सजावट। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने लाल बादशाह राजा के दरबार में लगाई हाजिरी, पत्नी रितिका सजदे के साथ बप्पा का किए दर्शन, दोनों ने लिया आशीर्वाद। मुंबई विशेष रेल 23-26 सितंबर की रात को चलाने का फैसला, गणपति विसर्जन के बाद लौटने वालों की सुविधाओं के तहत लिया गया है फैसला। फिल्म अरमान अंश की शानदार कमाई, 45 दिन लगभग 14 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। फिल्म अरमान अंश में 45 दिन भारत में की गई लगभग 272 करोड़ रुपए की कमाई, दुनिया भर में लगभग 330 करोड़ रुपए तक का क्रॉस कलेक्शन। बेहद ही छोटे बजट की फिल्म अरमान अंश, लगभग 2 करोड़ रुपए का था बजट। अली फैजल, पंकज त्रिपाठी, देवेंदु सारण, मिर्जापुर ने भारत में 200 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार किया। रश्मिका मंदाना का नजारा एक्शन अवतार, मैसा का टीजर देख फैंस के रोंगटे खड़े हुए। एशियन गेम्स 2026 का तीसरा दिन, पहले दिन भारत के हिस्से में आए 2 मेडल, आज भी कई खेलों में पदक की उम्मीद। भारत के एशियन गेम्स 2026 में तीसरा मेडल हासिल हुआ, मेन्स 10 मीटर एयर राइफल मिला सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत को मिला मेडल, 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल में सुचिका तारियाल ने जीता ब्रॉन्ज। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल, हिमांशु ने जीता सिल्वर, रुद्रांश ने ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स की पदक तालिका में फिलहाल भारत का 10वां स्थान, अब तक भारत के खाते में 6 मेडल।

0: और आपको बता दें, तमिलनाडु में सीएम सी जोसेफ विजय ने सरकारी स्कूलों में ब्रेकफास्ट स्कीम का शुभारंभ कर दिया है। सरकारी स्कूल में पेरुंथलाइवर कामराजर नाश्ता योजना का विस्तार किया गया है। दौरान सीएम विजय ने बच्चों को नाश्ता परोसा और बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता भी किया। इस विस्तार के तहत सुबह के मुफ्त भोजन की योजना है, जो पहले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को दी जाती थी, लेकिन अब इसे विस्तारित कर दिया गया है। राज्यभर के 15,454 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 15 लाख छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। सीएम विजय ने स्कीम के विस्तार को अंजाम दिया है। स्कूली बच्चों को पहले नाश्ता परोसा, फिर उनके बीच बैठकर ये नाश्ता किया। सीएम विजय की तस्वीर जहां पर उन्होंने अब स्कूली बच्चों के लिए ये नाश्ता स्कीम का विस्तार किया। और अब बात पुलिस कर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, उनके लिए सलाह ड्यूटी पर जाने के लिए पंजाब सरकार ने जारी की है। इसके तहत पुलिस कर्मियों के लिए यह सलाह है कि ड्यूटी पर जाते या लौटते समय वर्दी में यात्रा ना करें। अमृतसर में हाल ही में हुई एसआई हरजीत सिंह की हत्या के बाद आईजी बॉर्डर रेंज ने पुलिस कर्मियों के लिए यह सलाह दी है। इस घटना के मद्देनजर पाकिस्तान सीमा से लगे जिलों में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। आईजी बॉर्डर रेंज में ने अमृतसर ग्रामीण बटाला गुरदासपुर और पठानकोट के एसएसपी को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों के बारे में निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया कि पुलिसकर्मियों को घर से ड्यूटी पर जाते और लौटते वक्त सादे कपड़ों में यात्रा करनी चाहिए और इस दौरान वर्दी पहनने से बचना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि निजी यात्रा करते समय पुलिसकर्मियों को ऐसा कोई भी चिन्ह प्रतीक या वस्तु नहीं रखनी चाहिए या प्रदर्शित करनी चाहिए जिसमें उनकी पहचान पुलिस बल के सदस्य के रूप में हो। पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हर तरीके से ड्यूटी के बाद अपनी पहचान छुपाई जाए। 9 बज गए, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: एक दो विश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
11: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
13: और वही कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट।
15: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट खुशियों के रंग।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: यार लोन भूल गया। मैरी।
3: It's just a good bank ना।
4: Ujjivan Small Finance Bank.
2: Small Finance Bank.
4: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
5: There's nothing small about
6: it. Ujjivan, nothing small about us.
7: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: पानी के बिना जिंदगी कैसी होगी, क्या कभी सोचा है? इसी देश में ऐसे गांव भी हैं जहां पानी भरने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज उसी गांव में बस टोटे घुमाइए और पानी बहने लगता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आजादी के 79 साल बाद लहुरिया द में हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंच चुका है। विंध्य की पहाड़ियों पर बसे करीब 1500 लोगों का ये गांव कभी पानी के लिए जंगल और पहाड़ नापता था, कभी रात रात भर लाइन लगानी पड़ती थी।
2: जेकर दिन करा तो दिन कठोले न रात भर झीना में पावरी टोटी आज तब लगे न पावे लगा न झीना में बसे डारी।
1: गर्मी में हालात इतने खराब हो जाते थे कि टैंकर से हर परिवार को सिर्फ 15 लीटर पानी मिलता था, लेकिन जल जीवन मिशन की हर घर नल योजना के तहत 31 अगस्त 2023 को पहली बार इस गांव में नल से पानी पहुंचा।
3: हम लोग पानी की दरी जाते हैं, झिन्ना जाते हैं, फिर मैसे उड़ जाते हैं, ले आते तो पीते हैं। 3 साल से पानी आवा थी, अब घर टोटी चालू भरी थे।
1: पानी पहुंचने से सबसे ज्यादा राहत गांव की महिलाओं को मिली। क्षमा देवी बताती हैं कि
4: अब हो गया सही है, पानी वानी आ रहा है।
1: दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के गांवों में सबसे ज्यादा नल कनेक्शन लगाए गए। मार्च 2025 तक यूपी में 2,36,00,000 से ज्यादा घरों तक नल वाला पानी पहुंच चुका है। राज्य भर में करीब 5,07,479 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। जो गांव कभी प्यास की पहचान था, आज वहां हर घर में पानी की आवाज सुनाई देती है।
5: पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मौजूदा चुनाव आयुक्त एस एस संधू, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गजों के नाम उस नोटिस में शामिल हैं जो उन्हें दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मिला है, और इस चुनाव आयोग के इस नोटिस ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े नामों जो कई अहम पदों पर रह चुके हैं, उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मिले नोटिस की वजह क्या है? दरअसल दिल्ली में एसआईआर के बाद 97,00,000 से ज्यादा वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें करीब 33.13 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी मिली है। अब चुनाव आयोग की ओर से इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें मौजूदा वोटर की जानकारी का 2002 में हुए पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया है। कई बड़े नामों को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
6: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहाँ और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया? मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
5: उधर दिग्गजों को मिले नोटिस के बाद कांग्रेस की ओर से हमले का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी के दबाव में शुरू की गई और इसके जरिए वोटर लिस्ट से कई नाम काटने की साजिश रची गई। उधर तमाम सवालों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपना जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नोटिस मिलने का ये मतलब नहीं है कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। नोटिस पाने वाले लोगों को अपनी बात रखने और जरूरी दस्तावेज देने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोग के इस बयान के बाद भी सियासत तेज होती जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया के बीच दिग्गजों को नोटिस पर नई लड़ाई छिड़ गई है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आईआईटी बॉम्बे खुदकुशी मामले में फैकल्टी और छात्र आमने सामने, आरोपी प्रोफेसर को तुरंत हटाने की मांग, लेकिन डुल्ला के समर्थन में आई दिल्ली आईआईटी की फैकल्टी, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। जमुई दरिंदगी मामले में घिर गई सम्राट सरकार, मंत्री श्रवण कुमार का चौंकाने वाला बयान, कहा छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, एक्शन में महिला आयोग, राहुल गांधी और ममता का बीजेपी पर निशाना। पंजाब में टारगेट पर आए पुलिस वालों की जान बचाने के लिए अजीबोगरीब फरमान, ड्यूटी के बाद घर जाते जाते ना पहने वर्दी, निजी यात्रा के दौरान भी सादे कपड़ों में रहे। यूपी में अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती समाजवादी पार्टी, बीजेपी को हराना है तो अखिलेश फाइनल करें सीटें, इमरान मसूद का बयान। इकरा का जवाब, गठबंधन नहीं हुआ तो नुकसान कांग्रेस का। पहली बार दिल्ली के बाद गुजरात में आज से शुरू हो रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह। सितारों की चमक से जगमग होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऐतिहासिक शो में बैठेंगे 1000 लोग।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है और इस बुलेटिन में कई अहम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार के जमुई में नाबालिग से हुई बदसलूकी की। इसे लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी तेज हो गई है। इस पर आपको हर अपडेट देंगे, साथ ही बताएंगे यूपी के सियासत के बारे में, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन का सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है, इस पर पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों खौफ में है पंजाब पुलिस, क्यों जारी करनी पड़ रही है उनको एडवाइजरी। लेकिन सबसे पहले बात बिहार के जमुई से आई शर्मनाक तस्वीरों पर मचे बवाल की। बिहार के जमुई में नाबालिग से सरेआम छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले ने देश को झकझोर दिया है। ये घटना 4 दिन पुरानी है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ में लगी हुई है। अब तक इस केस में 3 नाबालिग आरोपी पकड़े भी गए हैं, लेकिन इस पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, फिर चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों या सरकार की तरफ से।

0: तो इस बीच जमुई में घटना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर साझा हुआ है उस पर पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले लोगों पर पुलिस का एक्शन हो रहा है। अब तक पुलिस ने 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। ये 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल वो हैं जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया जिससे पीड़िता की पहचान पता चल गई, पब्लिक हो गई। हमारे सहयोगी रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जमुई का ये जो मामला है ये आपराधिक मामला है, दोनों इसमें चाहे लड़का हो लड़की दोनों ही नाबालिग भी हैं, तो पुलिस इसको लेकर सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी किस तरह की सख्ती कर रही है?
1: नहीं बिल्कुल, देखिए पुलिस ने साफ तौर पर कल से ये रुख स्पष्ट किया है कि जो भी सोशल मीडिया हैंडल पर इसको शेयर करेगा, पोस्ट करेगा या फिर जो पीड़ित छात्र हैं या छात्रा इस मामले में हैं उनकी अगर आइडेंटिटी यानी जो है वो अगर पब्लिक होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में जो है कार्रवाई की भी जा रही है कि जहाँ जहाँ पर ये जिसने भी ये शेयर किया है इस वीडियो को उसके खिलाफ जो है पुलिस ने वैसे हैंडल्स को जो है उसको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मामले की पूरी हम जांच पर नज़र डालें तो कल देर रात, पूरी रात हम कह सकते हैं, तकरीबन 300 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी पूरे जमुई ज़िले में जो है वो छापेमारी करते रहे और एक तरीके से अभियान चलाया उन चार अपराधियों के धरपकड़ के लिए, जिन्हें बताया जा रहा है कि जो मास्टर माइंड है, जो अपना चेहरा ढका हुआ जो दिख रहा है वो व्यक्ति, उसे ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है और वो सब जो है अभी फरार चल रहे हैं। तीन की जो है गिरफ्तारी हो गई है। ये तीनों जो है जो गिरफ्तार हुए हैं वो तीनों नाबालिग हैं, लेकिन इसमें चार अभी और जो है वो भी फिलहाल फरार चल रहे हैं और इनकी धरपकड़ के लिए लगातार देर रात तक पूरी छापेमारी चलती रही, लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है और SIT लगातार दबिश बना रही है ताकि इन चारों को गिरफ्तार किया जा सके। अंजलि
0: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आइए आपको अब तीन तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे ये पूरी वारदात हुई जिसका वीडियो भी बाद में वायरल हुआ। ये 19 सितंबर की वारदात थी और अब आपको बता दें कि जब इसका संज्ञान लिया गया पुलिस ने इस मामले में 7 से 8 आरोपी होने की बात कही और 3 नाबालिग को इस मामले में पकड़ा गया है। तो जमुई की घटना जो हुई है इससे पूरे देश को तो शर्मसार कर दिया है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार भी कर रही है और इस पर सियासत अब तेज होती जा रही है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इस घटना पर बेहद शर्मनाक बयान दिया है। श्रवण कुमार ने जमुई की घटना को छिटपुट मामला बताया है।
2: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मरमाहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए, जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
0: जमुई में हुई इस घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं। इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है, वहीं विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
3: कॉपी की दावे देख लीजिए।
4: बिहार की इन तस्वीरों ने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया है। एक नाबालिग लड़की पर लोग हैवान की तरह टूट पड़े। जिसने भी ये तस्वीर देखी वही परेशान है, सवाल पूछ रहा है कि बिहार को क्या हो गया।
5: आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी जी के बयान पर, एक संदेह पैदा करने वाला घटना है कि बिहार में आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।
4: विपक्ष हमलावर है और बिहार सरकार बैकफुट पर। बिहार के उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने इस वारदात पर विपक्ष को राजनीति न करने की नसीहत दे डाली।
6: कि जिस तरह की घटना घटी है निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, समाज को बदनाम कर देने वाली ये घटना है, और एक बेटी होने के नाते जब ये घटनाएं घर से करीब होती है तो निश्चित रूप से मन और ज्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ जो विपक्ष की टिप्पणी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करना अपने आप में ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी संकुचित है।
4: बेहद अजीब तर्क है, एक बच्ची के साथ इतनी बड़ी शर्मनाक वारदात, और मंत्री को लगता है विपक्ष कोई सवाल भी ना पूछे। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जमुई की घटना पर जवाब की मांग की तो देखिए बिहार के कद्दावर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने क्या कहा।
7: महिला सुरक्षा को लेकर वो बिहार में महिलाएं सुरक्षित है, जरा अपने एलआई उनके जो लालू प्रसाद जी हैं उनसे पूछे कि उनके शासन काल में सूर्यास्त के बाद कोई महिला घर से निकलना नहीं चाहती थी।
4: वारदात शनिवार की है जब 10वीं में पढ़ने वाले दोनों पीड़ित नाबालिग जमुई के मड़वा पहाड़ घूमने गए थे।
8: जमुई के वायरल वीडियो मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों युवक और युवती एक कोचिंग में पढ़ाई करते थे। शनिवार का दिन था लिहाजा छुट्टी होने के बाद वो घूमने के लिए जमुई के मड़वा पहाड़ इलाके में चले गए और यहीं पर मनचलों ने उन्हें निशाना बनाया। स्कूटी सवार युवक और युवती को वहां रोका गया और उनके साथ जिस घटना को अंजाम दिया गया वह वाकई शर्मसार करने वाला है।
4: वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। जमुई पुलिस ने सबसे पहले दोनों पीड़ित छात्र और छात्रा से संपर्क किया, FIR दर्ज कर ली। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, बाकियों की तलाश जारी है।
9: घर जाके लड़की के घर जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, इसके बाद जमुई पुलिस के द्वारा 3 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और 2 और हो सकता है, तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था।
4: बिहार पुलिस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करने वालों पर एक्शन ले रही है। वायरल वीडियो को सोशल मीडिया से हटाया जा रहा है।
10: 120 ऐसे सोशल मीडिया के डिफरेंट साइट के यूजर प्रोफाइल धारकों पर ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे नाबालिग पीड़िता के निजता का ख्याल रखें, ऐसे वीडियो को वायरल न करें।
4: बिहार पुलिस एक्शन में है, सवाल कानून व्यवस्था के भरोसे का है, जरूरी है हर हाल में ये भरोसा बना रहे। शशिभूषण, पटना, आज तक।
0: बिहार के जमुई की घटना पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बेहद शर्मनाक बयान दिया है। जमुई की घटना के सवाल पर उमेश कुशवाहा आरजेडी राज के दौर की कानून व्यवस्था की दलील देने लगे और मौजूदा घटना को इन्होंने भी छिटपुट घटना बता दिया। अब विपक्ष जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर भी हमलावर है।
11: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था ना। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
0: और अब खबर दिल्ली की, जहां रेप और गैंगरेप की 2 वारदातों को लेकर अब गंभीर सवाल उठे हैं। एक मामला सदर बाजार इलाके का है जबकि दूसरा मामला कालकाजी इलाके का है। दोनों मामलों को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि ये दोनों मामले बच्चियों को लेकर है। तो आपको बता दें कि एक वारदात जो है वो दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास, वो एक पार्क में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात है। इस मामले में 3 आरोपियों से नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता सोमवार शाम करीब 7 बजे अपने 17 वर्षीय दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर पहुंची थी। दर्शन के बाद दोनों करीब शाम 7:30 बजे पास के पार्क में गए थे, तभी 25 से 30 साल की उम्र के 3 आरोपी वहां पहुंचे और दोनों को धमकाया। आरोपियों में ने नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंग रेप भी किया। इस मामले की जानकारी मिलते ही एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपी का नाम आसिफ बताया जा रहा है। पुलिस ने आसिफ की बाइक और पिस्तौल भी बरामद कर ली है। अन्य 2 आरोपियों की पहचान के लिए पार्क और आसपास के इलाकों की CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस आसपास मौजूद लोगों से भी घटना के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
12: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ, जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है, इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा, पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है, जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद पास के हॉस्पिटल भेजा है। सुबह तकरीबन 6 से 6:30 बजे के आसपास ये एनकाउंटर हुआ। आप देख सकते हैं मौके पर फॉरेंसिक टीम, पुलिस की वो टीम जो एनकाउंटर में शामिल थी, सभी लोग यहां पर मौजूद है। इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है और यहां से तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं। दरअसल सोमवार शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास कालका जी मंदिर के पीछे जो पार्क है, वहां पर एक 17 साल की बच्ची के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था और खुद को पुलिस वाला बनकर उन्होंने धमकाया भी था। जैसे ही इस मामले की रिपोर्ट की गई, पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और उसके बाद एक आरोपी फिलहाल पकड़ा गया है, एनकाउंटर में घायल हुआ है, जबकि बाकी 2 आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। साउथ ईस्ट दिल्ली की पुलिस कई इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और दिल्ली की दूसरी खबर सदर बाजार इलाके की है, जहां नाबालिग से रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। गुस्साए लोगों ने दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाने पर भारी हंगामा भी किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मामला दरअसल दिल्ली में एक मासूम के साथ रेप का है, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों में गुस्सा फूटा। वो पुलिस के पास पहुंचे और वहां उन्होंने पुलिस वालों के साथ झड़प भी की। उनका गुस्सा शांत कराने की कोशिश में लगातार पुलिस वहां लगी रही। आरोपी 56 साल का मकसूद बताया जा रहा है। बच्ची जो है वो स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए गई थी रात को बाहर। उस दौरान बच्ची को बहलाकर उसने अपनी दुकान के अंदर कर लिया और उसके साथ कथित तौर पर रेप किया। और अब खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक है, इसे लेकर अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान दोनों पार्टियां पहले तो कर चुकी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन में सब कुछ सामान्य है भी या नहीं, क्या दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग आसानी से हो पाएगी या नहीं, फिर ऐसा कुछ पेज भी आ सकता है कि इस गठबंधन में सब मामला फंस जाए, ये भी सवाल उठ रहा है। क्या गठबंधन अभी भी अधर में झूल रहा है, ये सवाल है। कांग्रेस के नेता लगातार गठबंधन को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी वैसा ही सिलसिला जारी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि अखिलेश यादव कितने सक्रिय दिखते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर गठबंधन होना है तो उसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, वरना हम अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे बयान के बीच समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने कह दिया है कि कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी, गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए ही नुकसानदायक होगा, यानी कि कांग्रेस के लिए, हमारे लिए नहीं, यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए नहीं।
13: अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है, अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है कहीं भी, पूरे देश में नहीं है, तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है, इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ ही हो सकती है और कांग्रेस ही लड़ सकती है। मैं कह रहा हूं इसे तुरंत फाइनल करिए। कौन टच में मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं है। जो भी होना है फाइनल करिए, अगर फाइनल नहीं होगा तो उसका नुकसान जमीन पर हो रहा है ना।
14: बिल्कुल ही बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए भी।
0: अभी एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने साफ किया था कि यूपी में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वही रहेगा, मतलब कांग्रेस के साथ ही गठबंधन जारी रहेगा।
15: समाजवादी पार्टी का जो पूर्व में गठबंधन था वही रहेगा। और मैं इधर देख रहा हूं किसी को रथ का रंग नहीं दिखाई दे रहा है, लाल रंग उन्हें कोई दूसरा रंग दिखाई दे रहा है, किसी को किसी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो रथ केवल डीजल भरवाने गया था, अभी से घबरा गए आप।
0: और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक का। अभिषेक, जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के कुछ नेता करते रहते हैं वो कहीं ना कहीं गठबंधन के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, दबाव बनाते हैं, और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से अब आपको किस तरह की बातें कही जा रही, क्या अखिलेश इस तरह के बयानों से नाराज होते हुए?
16: देखिए अंजलि, समाजवादी पार्टी एक तरीके से पिछले दो महीने ऐसे बिल्कुल खामोश थी। लगातार इमरान मसूद बोल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को कह दिया था कि इस पर बोलना नहीं है, जो तय होगा वो शीर्ष नेतृत्व के बीच में तय होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त बिल्कुल डेस्परेट है, उसे लग रहा है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग होना चाहिए, जल्द से जल्द सीटों का ऐलान होना चाहिए। और इमरान मसूद लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई और ये चुनाव तक टल गया, यानी कि चुनाव के ऐलान तक टल गया, तो फिर कांग्रेस पार्टी के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, फिर जो समाजवादी पार्टी उन्हें देगी उसी के भरोसे रहना पड़ेगा। तो बड़ी क्लियर कट स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की है कि दबाव बनाए रखो कि जल्द से जल्द सीट टेबल पर बैठे और सीट शेयरिंग करें। उधर समाजवादी पार्टी का पूरा अपना जो उनका प्लान है वो कि इस सीट शेयरिंग को जितना टाल सकते हो टालो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जल्द अगर बैठा गया टेबल पर तो बहुत सारी सीटें कांग्रेस को दे पड़ सकती है। दोनों की स्ट्रेटजी है।
0: शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अभिषेक। और बात पंजाब की करते हैं, जहां पंजाब सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस कर्मियों को सलाह दी गई है कि ड्यूटी पर जाते या लौटते समय वर्दी में यात्रा न करें। अमृतसर में हाल ही में हुए ASI हरजीत सिंह की हत्या के बाद IG बॉर्डर रेंज ने पुलिस कर्मियों के लिए एक सलाह जारी की है। इस घटना के मद्देनजर और पाकिस्तान सीमा से लगे जिलों में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए IG बॉर्डर रेंज ने अमृतसर ग्रामीण, बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट के SSP को पत्र लिखकर पुलिस कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों के बारे में निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया है कि पुलिस कर्मियों को घर से ड्यूटी पर जाते और ड्यूटी से लौटते समय सादे कपड़ों में यात्रा करनी चाहिए और इस दौरान वर्दी पहनने से बचना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि निजी यात्रा करते समय पुलिस कर्मियों को कोई भी ऐसा चिन्ह, प्रतीक या वस्तु साथ नहीं रखनी चाहिए या प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी पहचान पुलिस बल के सदस्य के रूप में हो सके। पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पुलिस कर्मियों को सादे कपड़े पहनने चाहिए। आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी असीम बसी का। असीम, जिस वर्दी से लोगों के अंदर डर और कभी कभार एक रिस्पेक्ट पैदा होनी चाहिए, उसी वर्दी को ना पहनने का डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है पंजाब पुलिस की तरफ से, क्यों, किस तरह के हादसे हुए थे जिसकी वजह से अब इस तरह की एडवाइजरी पंजाब पुलिस को देनी पड़ी है?
17: देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है, पंजाब बॉर्डर जो है 550 किलोमीटर लगता है, और बॉर्डर जोन जो है जिसमें आपने बात भी की, अमृतसर रूरल है, बटाला है, पठानकोट है, गुरदासपुर है, ये सारा बॉर्डर जोन है। और अब एक एडवाइजरी निकाली गई है कि जो पुलिस वाले घर से जब दफ्तर अपने पुलिस थाने में आते हैं या पुलिस थाने से अब रात को वापस जाते हैं, उस वक्त वो सिविल यूनिफॉर्म में रहें, उस वक्त वर्दी ना पहने, क्योंकि इसका रीजन ये है। और बड़ी बात यह है कि एक सेफ्टी मेजर है उनके लिए, क्योंकि कुछ जो जैसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने रेगुलरली पुलिस वालों को टारगेट किया है। कुछ महीने पहले गुरदासपुर में दो कॉप्स मारे गए, उसके बाद एएसआई जोगा सिंह को मारा गया, उसके बाद एएसआई जसवंत सिंह के ऊपर अटैक किया गया, और अब रिसेंटली 17 सितंबर को एएसआई हरजीत सिंह को अमृतसर में मार दिया गया। शहजाद भट्टी ये गैंग सारा लगातार जो है पुलिस वालों को टारगेट कर रहा है। तो एक सेफ्टी मेजर है, एडवाइजरी है कि जब वो दफ्तर आते हैं अपने, तो घर से दफ्तर आते हैं तो सिविल में रहें, और रात को जब वापस जाते हैं वो सिविल में रहें ताकि टारगेट ना हो पाए।
0: पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
20: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
21: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
3: छक्का,
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट,
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
7: ओले बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: बहुत टाइर्ड हो गई।
10: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: और वही कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
16: JK वॉल मैक्स।
17: बेस्ट पेंट
18: JK मैक्स।
19: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK मैक्स पेंट।
20: JK मैक्स पेंट खुशियों के रंग।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank mein khollo.
0: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account business, Maxima business, Privilege, RDF. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
3: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
4: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
7: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
8: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
7: असली शहद, असली स्वाद।
9: In association with
10: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, Signature Finest Cardamom Seeds,
11: E3 Edge

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima business privilege, RDF, there's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
3: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta steel TMT se bana.
4: Rungta nahi to ghar strong nahi. Rungta steel TMT bar ekdam solid.
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
7: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
8: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
7: असली शहद, असली स्वाद।
9: In association with
10: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, Signature Finest Cardamom Seeds,
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: Weight, lifestyle के लिए 10 अलग pages क्यों follow करना? Health, fitness, yoga, mental wellness, सब कुछ एक ही जगह, Fit Tak. Simple tips, expert insights, real conversations. लाइफ अपग्रेड करो इजी वे, वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
13: There is a very famous quote ki history repeat itself.
14: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
15: कुछ left और right wing के लोग history को अलग अलग interpret करते हैं सर, उससे सर social harmony और peace में कुछ दिक्कतें आती हैं देश में।
14: देखो दुनिया में एक subject है इतिहास जिसको किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है, जैसे औरंगजेब, वो बेचारा कबर में कितना करवट बदलता होगा इधर उधर, सुबह से शाम तक इस देश में लोग उसको याद।

आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र वोखड़े के सुसाइड मामले का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब इस मामले में आईआईटी दिल्ली की फैकल्टी फोरम ने आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर का समर्थन किया है। आईआईटी दिल्ली फैकल्टी फोरम ने आईआईटी बॉम्बे के छात्र की मौत पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सूर्य नारायण डुला के प्रति एकजुटता भी दिखाई है, जिन पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में कल आईआईटी बॉम्बे में भी वहां के फैकल्टी ने प्रोफेसर डुला के समर्थन में प्रदर्शन किया था। साथ ही आईआईटी मद्रास में भी देखा गया। आपको बता दें कि आईआईटी बॉम्बे फैकल्टी फोरम ने बयान जारी कर कहा है कि आईआईटी बॉम्बे फैकल्टी फोरम अपने सहयोगी प्रोफेसर दुल्ला के साथ मजबूती से खड़ा है। उधर इस मामले की जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच को भी सौंप दी गई है। एक दिन पहले ही यह फैसला हुआ है। तो आइए आपको तीन तस्वीरें इस मामले की दिखाते हैं। आईआईटी मुंबई में आईआईटी बॉम्बे में अब जो जांच है वो पुलिस के हाथ जा चुकी है, यानी कि अब ये मामला

0: जो है वो पुलिस इसकी तहकीकात करेगी, जो इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रही थी कैंपस के स्तर पर उसका क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही फैकल्टी फोरम जो है IIT बॉम्बे का, वो प्रोफेसर दुला के साथ खड़ा नजर आ रहा है। उनका कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी भी तरह का प्रेजुडिस या किसी भी तरह की दबाव बाहर से इस मामले में नहीं आना चाहिए। साथ ही में जो परिजन हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया है वो इस मामले में CBI की जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो दलित भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। तो छात्र के परिजन अब CBI जांच की मांग कर रहे हैं और उनका दावा है कि इस पूरे मामले में उनके बेटे के साथ कई दिन से भेदभाव किया जा रहा था।
1: मोबाइल यूज कर रहा था तो आपकी एग्जामिनेशन हॉल में क्या चल रहा था? एग्जामिनेशन लेने वाले क्या कर रहे थे? कौन सा ऐसा बच्चा है, 10वीं का बच्चा थोड़ी है, IIT का बच्चा जब एग्जाम दे रहा है तो खुद मोबाइल लेके जाएगा वो? ये कैसी बात है समझ में नहीं आ रही है, पूरे फैमिली को समझ में नहीं आ रही है। 17 तारीख को हमको मैसेज देते थे कि आपके साहिल ने सुसाइड किया। भाई इतना सा सेंटेंस हमारे बच्चे के लिए काफी है? क्यों किया, कैसा किया, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये प्रोफेसर को सस्पेंड करने के बाद में इतने बड़ी बात हो गई इस प्रशासन में? ये साहिल के सुसाइड मामले में जितने भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जितने बच्चे मरे वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के बच्चे मरे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ में क्यों हो रहा है? ये जातिगत पड़ताड़ना नहीं तो क्या होता है? हम भारत के संविधान के रखवाले करने वाले लोग हैं और हमारे साथ में अगर अन्याय होता है तो पूरा देश देख रहा है कि साहिल को न्याय मिलना चाहिए, साहिल के फैमिली को न्याय मिलना चाहिए।
0: और आइए अब सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी का, जो कि IIT बॉम्बे के कैंपस के बाहर ही मौजूद हैं। दीपेश, ये जो मामला है वो इसमें कई परतें अब सामने आ रही हैं, चाहे आरोप हो परिजन के या फिर इस मामले को आगे बाहर मुंबई क्राइम ब्रांच को दिया जाना हो या फिर IIT के प्रोफेसर का एकजुट होना। ये मामला महज एक सुसाइड का नहीं बल्कि एक बड़ा मामला बनता जा रहा है, जहां पर दलित छात्रों की स्थिति के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं।
2: जी हाँ बिल्कुल, देखिए साहिल वाघमोड़े के सुसाइड से शुरू हुआ यह मामला अब काफी और बड़ा और पेचीदा होते जा रहा है, जहां पर एक तरफ जो माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक तरफ आ रहे हैं, उनका जो एक सेक्टर वो एक तरफ आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो IIT है, IIT मुंबई बॉम्बे हो गई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, ये सब एक तरफ होते जा रहे हैं। IIT के छात्रों जो है उनका कहना है कि उन्होंने एक 20 मांगों वाला एक चार्टर सबमिट किया था जिसमें प्रोफेसर डुला का सस्पेंशन भी एक अहम मांग थी, लेकिन इस मांग को दरकिनार करते हुए उन पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड नहीं किया गया और इसके विपरीत उनको सपोर्ट किया जा रहा है IIT द्वारा। जबकि IIT का कहना है, IIT पवई का, कि प्रोफेसर डुला सिर्फ अपना काम कर रहे थे, उन्होंने उस गाइडलाइंस का फॉलो किया है जो गाइडलाइंस सेट की गई है IIT द्वारा एग्जाम में माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब दो गुट आमने सामने हो गए, एक तरफ IIT और एक तरफ जो अंदर के प्रोफेसर हैं उनका गुट। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। हालांकि मुंबई पुलिस द्वारा ये इसकी जांच निष्पक्ष हो और जल्द गति से हो, इसीलिए मामला जो है मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू कर दी है, मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो CCTV थे उनको कलेक्ट कर लिया है, जो संबंधित लोग थे FIR में जिनके नाम है उनके स्टेटमेंट लेने का सिलसिला अब क्राइम ब्रांच द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच एक टाइमलाइन सेट कर रही है और उस स्टेटमेंट से कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही है, जो स्टेटमेंट उनको मिलेंगे और उस CCTV के ट्रेल को भी फॉलो कर रही है। हालांकि अब देखना होगा कि ये मामला आने वाले दिनों में और कितना बड़ा होता है, क्योंकि दिन ब दिन ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। अब ये मामला जो माइनॉरिटी के छात्र हैं या जो IIT फैकल्टी है उनके बनाम कहीं ना कहीं उनके आपस में आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहा है।
0: जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये मामला लगातार उलझता ही जा रहा है जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में अब IIT बॉम्बे के अलावा IIT मद्रास की फैकल्टी भी आ गई है। आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में एक साइलेंट मार्च निकाला गया और ये सवाल अपनी जगह अभी भी कायम है कि क्या 22 साल के दलित छात्र साहिल ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या की थी।
3: IIT बॉम्बे में 22 साल के साहिल की आत्महत्या का सच क्या है? क्या साहिल ChatGPT से नकल करते पकड़ा गया इसलिए आत्महत्या की? क्या साहिल के साथ उसकी जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा था? IIT बॉम्बे इस वक्त एक छात्र की आत्महत्या से पूरी तरह से घिरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार कैंपस के अंदर और बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंपस के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है,
4: भारतीय जनता पार्टी,
3: तो कैंपस के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों, दलित संगठनों और लेफ्ट से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस केस में पेंच बहुत है, बहुत विवाद है। केस पूरी तरह से उलझा हुआ है क्योंकि एक दलित छात्र ने सुसाइड किया है, तो राजनीति भी हो रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि इस छात्र के सुसाइड करने की वजह क्या है, ये समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझना होगा। शुक्रवार को खबर आई कि आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल रविंद्र बखोड़े ने आत्महत्या कर, वो आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था। शुक्रवार को ही मिड सेमेस्टर एग्जाम में साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक साहिल ने एग्जाम पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। 19 सितंबर यानी शनिवार को आईआईटी बॉम्बे की तरफ से ये बयान एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने एग्जाम पेपर जवाब तलाशने के लिए चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था। इसमें ये भी लिखा है कि इस छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि इस केस को छात्र के साथ डिस्कस भी किया गया। फैकल्टी एडवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने छात्र की काउंसलिंग भी की और उसे ये भी बताया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यह छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर शाम को वो अपने ही कमरे में मृत पाया गया। लेकिन ये केस यही नहीं रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल से जब साहिल के माता पिता आए तो उन्होंने पवई पुलिस थाने में जो FIR लिखवाई उसमें जातिगत भेदभाव की बात थी। साहिल के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे के साथ आईआईटी बॉम्बे में जातिगत भेदभाव किया जाता था। ये भी आरोप है कि उनके बेटे का संस्थागत शोषण हुआ जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल के पिता रविंद्र बकोड़े ने कहा कि प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उनके बेटे को जाति सूचक अपशब्द कहते थे और करीब 3 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में ये भी कहा गया कि उनका बेटा दलित है, इसलिए उसे परेशान करके किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।
5: IIT के एक हॉस्टल में बीटेक सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट करने की एक घटना हुई थी। इसी घटना के संबंध में जो डिसीज स्टूडेंट है उनके पिताजी की कंप्लेंट पे पवई पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन पवई पुलिस की तरफ से किया जा रहा है।
6: सर, ये मामला किन लोगों पर दर्ज किया है और क्या सेक्शंस लगाए गए हैं
5: इसमें? ये जो मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड और अदर रिलेवेंट सेक्शंस के तहत हमने रजिस्टर किया है और मृतक स्टूडेंट के जो पिताजी है उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज किया है उन सभी के खिलाफ अभी जांच चालू है।
6: सर, क्या एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया गया इसमें?
5: जिस तरीके की FIR है उसको जो जो सेक्शंस अप्लाई होते हैं वो सभी अप्लाई किए गए हैं।
3: लेकिन तब तक तो IIT बॉम्बे का कैंपस राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पिछले 4 दिनों से कैंपस के अंदर छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र डायरेक्टर शिरीष केदारे का घेराव कर रहे हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। छात्रों की अपनी मांगे भी हैं। रविवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन में IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने यह ऐलान कर दिया कि वो सोमवार को अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वहां मौजूद छात्रों ने तालियां भी बजाई।
7: जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूँ।
8: बोल रहे
7: हैं ना? हम रिजाइन करने जो होगा मुझे मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिजाइन करने वाला हूँ।
8: बोल रहे हैं ना?
7: हम रिजाइन करने।
3: लेकिन आज फिर IIT बॉम्बे की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताते हैं। लेकिन IIT बॉम्बे की तरफ से इस पोस्ट पर आज माफी भी मांगी गई। ये वही पोस्ट है जो साहिल की मौत के बाद शनिवार 19 सितंबर को पोस्ट की गई थी, जिसमें साहिल का एग्जाम के दौरान AI यूज करने की बात कही गई थी। अब IIT बॉम्बे ने अपनी इस पोस्ट पर माफी मांगी है। कहा है कि हमने साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में पहले जो कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। ये घटना किन परिस्थितियों की वजह से हुई ये उपयुक्त एजेंसी की जांच से ही पता चलेगा। यानी अब तमाम दबाव के बाद आईआईटी बॉम्बे जांच की बात कर रहा है और तब तक वो इस विषय में नहीं जाना चाहता कि साहिल ने किन परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या की। लेकिन जो गंभीर आरोप प्रोफेसर सूर्यनारायण पर लगे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि इन आरोपों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई हुई है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन की पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है और प्रोफेसर दुल्ला के पक्ष में आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी भी खड़ी हो गई है। आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी फोरम का कहना है कि हम अपने साथी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के साथ मजबूती से खड़े हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन प्रोफेसर सूर्यनारायण को सस्पेंड नहीं किया गया, वो अभी भी आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी है। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला आईआईटी बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित फैकल्टी है जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। छात्र मामलों के विभाग के डीन रहते हुए उन्होंने छात्रों के कल्याण के बहुत से काम किए। झूठे आरोपों के जरिए हम अपने साथी की छवि धूमिल होने से परेशान हैं। अब ये पूरा मामला आईआईटी बॉम्बे के लिए बहुत विवादित भी हो गया है और बड़ा भी। छात्र लगातार अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने साथी प्रोफेसर के साथ खड़ी है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।
0: मामला हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी का है। मतलब आईआईटी के छात्र ऐसे दिन रात प्रदर्शन करें, आईआईटी की फैकल्टी पर दलित होने की वजह से किसी छात्र को प्रताड़ित किया जाए, ऐसे आरोप लगे, ये सब यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इससे आईआईटी नाम के ब्रांड की छवि पर भी असर पड़ रहा है और राजनीति तो इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए ही है।
3: आईआईटी बॉम्बे इस वक्त प्रदर्शनों का गढ़ बना हुआ है। अलग अलग प्रदर्शन चल रहे हैं। कॉलेज के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है, बाहर दूसरे संगठनों का। और अब आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में भी आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें आईआईटी बॉम्बे के अंदर की हैं। ये साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च है जो प्रोफेसर सूर्यनारायण के समर्थन में निकाला जा रहा है। तमाम प्रोफेसर इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। इस बीच साहिल की नानी भी सामने आई है। उनका दावा है कि मृतक साहिल लगातार अपने माता पिता को बताता था कि उसके साथ कॉलेज में शोषण होता है। 8 दिन पहले भी उसने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई थी,
4: क्योंकि 8 दिन के पहले उनके मम्मी पापा जब मिलने के लिए गए थे तो उनके मम्मी पापा को साहिल ने बताया था कि यहाँ कॉलेज में मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता है, मुझ पर अन्याय हो रहा है। तो साहिल के मम्मी पापा ने बोला, आपको ये पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा, बाकी चीजों पर ध्यान मत दे, तू सिर्फ ये पढ़ाई कर, ऐसे बोला था। हाँ, 8 दिन के पहले उनके माँ बाप जाके मिल के आए तो माँ बाप को बताया था कि ये कॉलेज में ऐसा हो रहा, तो माँ बाप ने समझाया, बेटा तुम पढ़ाई पर ध्यान दो।
3: साहिल के दोस्तों को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने अचानक से इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। जिन छात्रों के साथ साहिल कैंपस में रहता था वही बता रहे हैं कि उन्हें साहिल कभी दुखी नहीं लगा। वो साहिल के साथ भेदभाव की बात से भी इनकार कर रहे हैं।
8: काफी स्टूडेंट्स हर्ट है ऑब्वियसली, वो बहुत ही अच्छा, हम सबका बहुत अच्छा दोस्त था वो, और वो बहुत ऐसा, मुझे तो प्रोसेस नहीं हुआ जब वो ऐसा हुआ। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत खुश था वो, मतलब मैंने उसको देखा है, मैंने कभी उसके से दुख होते हुए तो नहीं देखा था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था।
9: वो भी हुआ वो 18 सितंबर मिड सेमेस्टर एग्जाम जब उसको पकड़ा गया और उसके बाद जब वो रूम पे गया उसमें हुआ।
8: यही है जो चल रहा है अभी, मतलब वही रीजन, मुझे भी वही लगता है, अदरवाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन आई डोंट थिंक, बट वो हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं पता उस बात पे।
9: लेकिन इन जनरल क्योंकि अब कहा जा रहा है 3 सुसाइड कैंपस पे इस साल हो चुके हैं, तो उसको लेकर के भी जो कदम उठाने चाहिए थे कॉलेज कहीं ना कहीं उसमें फेल हुआ है।
8: सर, स्टेप्स लिए जाते हैं, स्टूडेंट वेलनेस सेंटर है मेंटल हेल्थ के बारे में, बट हाँ मतलब और बेटर कर सकते हैं उसको, अगर स्टूडेंट्स को थोड़ा अच्छे से समझे और उनका प्रॉब्लम्स को एक पोर्टल हो जहाँ पे आप यू नो, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बात करते जाते तो बहुत लोग जज करते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन।
3: अब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन ये कैंपस राजनीति का अखाड़ा भी बना हुआ है। कैंपस के अंदर ही छात्रों के आंदोलन गुटों में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के गुट के खिलाफ कैंपस में ही नारेबाजी हो रही है। लेफ्ट के तमाम स्टूडेंट नेता सक्रिय हो गए।
10: कुछ भी कास्टिज्म का एंगल है तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में अगर आप कास्टिज्म कर रहे हो, टीचर्स फैकल्टी कास्टिज्म कर रहा है दलित बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, सो दैट इज समथिंग वेरी सीरियस एंड दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बिकॉज अपोलॉजी ये सबसे कुछ नहीं होगा। वी नीड टू सी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, वी नीड टू सी सॉलिड प्रूफ दैट
9: की क्या डिमांड है, उन्हें बेसिकली क्या चाहिए। मतलब साहिल का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद अंदर लगातार IIT में कैंपस में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका डिमांड क्या, व्हाट शुड बी
10: The immediate demand is resignation. हमें जितने भी professors involved थे उन सबके resignation चाहिए। जो director है, जो dean है, हमें उनके resignation चाहिए। हमें accountability चाहिए कि आपने ऐसा किया है, आपने क्या ऐसा किया है कि तीन दलित students ने पिछले एक साल में suicide कर लिया। आपके यहाँ पर ऐसा क्या arrangement है academia का कि लोग इतना pressure में है, इतने pressure में कि लोग ये सारे इतने tragic और इतने इरिवर्सिबल choices कर रहे हैं। तो हमारा सबसे immediate resignation ही हमारा goal है। उसके बाद there needs to be an independent student body under jo which talks about the students, which talks on the behalf of the students mental health ke liye kisi ko yahan par kuch karna padega because
3: tamam dalit sangathan bhi dalit chhatr ki aatmahatya ke baad sakriya hai। Republican Party of India ka ek dhada ab aaropi professor ki giraftari ki mang kar raha hai।
11: main Maharashtra sarkar ke maniye mukhyamantri Devendra Fadnavis saab se mang karta hu ki आत्महत्या फ्राइडे को हुई, अभी तीन दिन हुए, आज मंडे है, तभी भी इसके ऊपर प्राध्यापक सूर्य नारायण डुल्ला के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और आज बॉम्बे IIT ने प्राध्यापक सूर्य नारायण डुल्ला को निलंबित किया है, ये खबर मिली है। लेकिन सिर्फ निलंबन नहीं चाहिए, हमारी मांग है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खराब पार्टी की मांग है, जल्द से जल्द प्राध्यापक सूर्य नारायण डुल्ला को हिरासत में ले लो, उसके ऊपर एट्रोसिटी के तहत केस करो, जल्द से जल्द मनुष्यवध का गुना दाखिल करो और उसको गिरफ्तार करो, यह मांग।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
15: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और यह वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।

0: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting.
1: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान ने सियासी बहस को गर्मा दिया है। एजे नूरानी मेमोरियल लेक्चर में अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देते हुए हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बताया था।
0: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, the danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism.
1: इसके बाद बीजेपी ने अंसारी के बयान पर मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि इस बयान के जरिए सनातन और हिंदू परंपरा को निशाना बनाया गया है।
2: और सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
1: वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से जुड़े मौलाना साजिद राशिदी ने भी हामिद अंसारी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
3: जब आप पद पर थे, आप मुसलमानों के लिए कुछ कर सकते थे, उस वक्त तो आपने किया नहीं। अब आपको कोई पूछ नहीं रहा है तो जानबूझकर आप अपने आप को जनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी अभी जिंदा हूं, मैं भी अभी हयात हूं, मेरे बारे में भी सोचो।
1: उधर विश्व हिंदू परिषद ने भी अंसारी के बयान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हामिद अंसारी के बयान के बाद शुरू हुआ सियासी विवाद अब सांप्रदायिकता, सनातन परंपरा और धर्म निरपेक्षता के मुद्दे तक पहुंच गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों की प्रतिक्रियाओं के बीच अंसारी के बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आईआईटी बॉम्बे खुदकुशी मामले में फैकल्टी और छात्र आमने सामने, आरोपी प्रोफेसर को तुरंत हटाने की मांग, लेकिन दुल्ला के समर्थन में आया दिल्ली और मद्रास आईआईटी। पीड़ित परिवार मांग रहा है सीबीआई जांच।
1: जमुई दरिंदगी मामले में घिर गए सम्राट सरकार मंत्री श्रवण कुमार का चौंकाने वाला बयान, कहा छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। एक्शन में महिला आयोग, राहुल और ममता का बीजेपी पर निशाना।
0: ड्यूटी ऑफ होने के बाद वर्दी में ना रहने के कथित फरमान से विपक्ष निशाने पर आई पंजाब सरकार, कांग्रेस और अकाली दल ने भगवंत मान को घेरा, पंजाब पुलिस ने कहा ऐसी एडवाइजरी नहीं भेजी।
1: यूपी में अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती समाजवादी पार्टी, बीजेपी को हराना है तो अखिलेश फाइनल करे सीटें। इमरान मसूद का ये बयान, निकरा का जवाब, गठबंधन नहीं हुआ तो नुकसान कांग्रेस को।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढांडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं शतक आज तक। आईआईटी दिल्ली फैकल्टी फोरम का आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर डुल्ला का सीधा समर्थन, कहा बिना सबूत आरोप लगाकर प्रोफेसर की छवि खराब करने की कोशिश। आईआईटी बॉम्बे विभागों पर आईआईटी दिल्ली फैकल्टी फोरम का सीधा बयान, शिक्षकों की शैक्षणिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने की बात कही। आईआईटी बॉम्बे में छात्रों के दबाव के आगे झुका प्रशासन, बीते सोमवार को प्रोफेसर डुल्ला को डीन पद से हटा दिया गया। प्रोफेसर डुल्ला को सिर्फ डीन पद से हटाने पर छात्र भड़क गए, प्रोफेसर पद से भी तत्काल सस्पेंशन की मांग। आईआईटी बॉम्बे में सुसाइड रोकने की कवायद तेज, हॉस्टल में सीलिंग फैन की जगह अब वॉल माउंटेन लगाए जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की हलचल ने तेज, बीजेपी को हराने की रणनीति पर नेताओं के बीच में नसीहतों का दिखा दौर। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का अखिलेश पर निशाना, बोले कि अखिलेश की सक्रियता मायने नहीं रखती, बीजेपी से लड़ाई कांग्रेस के बिना नहीं हो सकती। इमरान मसूद के बयान पर इकरा हसन का पलटवार, अखिलेश को बताया बीजेपी को हराने का वाला चेहरा, यूपी में बीजेपी को सिर्फ अखिलेश यादव ही हरा सकते हैं कहा। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, गठबंधन नहीं रहा तो नुकसान कांग्रेस का होगा। अजय राय का केजरीवाल पर हमला, बोले कि शराब नीति विवाद में घिरे लोग ड्रग्स पर बात कर रहे हैं, केजरीवाल ने दिल्ली में शराब कारोबार को बढ़ावा दिया।
0: नशे के खिलाफ अमित शाह का बड़ा एक्शन प्लान, एएनटीएफ प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी के साथ नशे के खिलाफ बनेगी नई रणनीति, ड्रग तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी। नशे के खिलाफ 3 साल का एक्शन प्लान, डार्कनेट क्रिप्टो से ड्रग तस्करी पर कसेगा शिकंजा, एनसीबी की नई वेबसाइट लॉन्च, लखनऊ देहरादून में नए परिसरों की आधारशिला। नशे की मांग हटाने से नशा मुक्ति तक एंटी नारकोटिक्स मिशन पर बनेगी नई रणनीति। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र राज्य एजेंसियां होंगी और मजबूत, 8 तकनीकी सत्रों में तस्करी और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक की रणनीति पर मंथन। जम्मू में नाबालिग से छेड़छाड़ के वीडियो आने के बाद बिहार पुलिस का सख्त एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी तलाश में लगातार छापेमारी। जम्मू की शर्मनाक घटना पर सियासी संग्राम, तेजस्वी ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में गुंडाराज पूरी तरह से कायम हो चुका है। जमुई मामले पर बिहार सरकार को बचाव करते नजर आए मंत्री श्रवण कुमार, कहा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, सरकार की नजर है, दोषी बच नहीं पाएंगे। जमुई की घटना पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, आरोपियों पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए उठाए सवाल, पूछा सार्वजनिक सड़क पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है।
1: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी के दौरे का दूसरा दिन, सहारनपुर में नितिन नवीन कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। पूर्व सांसदों, विधायकों और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ बातचीत, फीडबैक लेंगे, बूथ मैनेजमेंट, सदस्यता अभियान, आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा। नितिन नवीन के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठकें, किसान के मुद्दों, जाट मुस्लिम समीकरणों के बीच में संगठन को मजबूत करने पर जोर। यूपी में योगी रोजगार कुंभ जारी, अब आज 3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। यूपी में रोजगार पर सीएम योगी का फोकस, सरकार का दावा, अब तक लगभग 10 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया। रोजगार पर योगी का विपक्ष पर बार, बोले कि जो नहीं कर पाएंगे वो हमेशा बोलते रहेंगे। 2027 के लिए अखिलेश यादव का पीडीए का प्लान पर तंज, यूनिवर्सिटी कैंपस में युवाओं से सीधा संवाद, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक युवाओं को जोड़ने के लिए पीडीए यूथ मीटअप अभियान। युवा वोटर्स पर अखिलेश की नजर, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दों पर संवाद। 2027 से पहले दलित वोटर्स पर अखिलेश का फोकस, समाजवादी पार्टी के सियासी रंग में नीला भी शामिल, आगरा में नवंबर में दलित सम्मेलन की तैयारी, रामजीलाल सुमन करेंगे नेतृत्व। इटली में हिजाब बैन के प्रस्ताव को लेकर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध, मौलाना खालिद रशीद ने उठाए सवाल।
0: यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने खोला गठबंधन का दरवाजा, 2 अक्टूबर तक ऐलान का दावा, ओवैसी बोले जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ओवैसी का विपक्ष को ऑफर, बोले बीजेपी को रोकने के लिए अकेले कोई पार्टी काफी नहीं है, जो बीजेपी को सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं हमसे बात करें। ओवैसी के गठबंधन ऑफर पर कांग्रेस का पलटवार, इमरान मसूद बोले ओवैसी 4-5 सीटें जीत सकते हैं लेकिन बीजेपी सरकार बनवा दे। यूपी में मुस्लिम सियासी हिस्सेदारी पर ओवैसी का जोर, बोले मुस्लिम समाज की अपनी राजनीतिक लीडरशिप और एजेंसी होनी चाहिए। 2027 के लिए एमआईएम तैयार, ओवैसी को जीत का भरोसा, कहा इस बार हमारे उम्मीदवार जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे। संगरूर में ड्रग्स को लेकर सियासी संग्राम, ग्रामीण के जहर खाने से गरमाई सियासत, कांग्रेस का आरोप, पंजाब पुलिस और आपका पूरा तंत्र ड्रग्स के खेल में शामिल। ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा के जहर खाने पर बीजेपी का आप पर हमला, तरुण चुग बोले सच बोलने वालों को मिटाना, क्या यही आप मॉडल है। संगरूर ड्रग्स कांड पर आपका पलटवार, विपक्ष पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप, संजय सिंह बोले बीजेपी कांग्रेस और अकाली दल पंजाब को बदनाम करने के लिए झूठ फैला रही है। ड्रग्स मुद्दे पर गिरी पंजाब सरकार, प्रताप बाजवा का भगवंत मान पर सीधा हमला, कहा भगवंत मान नशा रोकने में नाकाम, पंजाब पुलिस और आप तंत्र शामिल। 2027 से पहले पंजाब में ड्रग्स बना बड़ा सियासी मुद्दा, बीजेपी नेता तरुण चुग बोले ड्रग माफिया को पंजाब के हर गांव और मोहल्ले से खत्म करेंगे।
1: नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ी, आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई, मिलन प्रधान ने 5 मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है। नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस के प्रचार पर संकट, मिलन प्रधान 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में, 6 अक्टूबर को होगा मतदान। नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पर शिकंजा, हत्या समेत कई मामलों में गिरफ्तारी, पुलिस के मुताबिक 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े हुए हैं मामले। टीएमसी के बाकी सांसदों पर एक्शन की तैयारी, ओम बिरला ने जवाब के लिए आज तक समय दिया और सांसद सुदीप को अयोग्यता याचिका पर 22 सितंबर तक जवाब देना होगा। टीएमसी के 20 बाकी सांसदों की सदस्यता पर तलवार, अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर से कार्रवाई तेज करने की मांग उठाई और अयोग्यता याचिका पर स्पीकर ने सांसदों को नोटिस दिया। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, 302 में से 200 निकायों पर बीजेपी का दबदबा, 94 निकायों तक सिमटी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस के बीच 106 निकायों का अंतर है। राजस्थान में निकाय चुनाव का बीजेपी के पक्ष में बड़ा जनादेश, 6 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा, 302 निकायों में नतीजे घोषित, 7 पर परिणाम बाकी। वीरमणि पॉक्सो केस में तमिलनाडु में सियासी घमासान, टीवीके ने स्टालिन की पिछली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। वीरमणि पॉक्सो केस पर तमिलनाडु में सियासी घमासान, टीवीके का दावा कि मामला फंड लेने का नहीं, आरोपी को बचाने और जांच में हस्तक्षेप का है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के संवैधानिक पीठ आज करेगी अहम सुनवाई, राज्यों को अतिरिक्त टैक्स लगाने के अधिकार पर होगा फैसला।
0: महादेव बेटिंग ऐप में ईस्ट माई ट्रिप को फाउंडर निशांत पिट्टी का आरोपी, ईडी का अवैध रकम निवेश का आरोप। महादेव बेटिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन, निशांत पिट्टी के 59.6 करोड़ के शेयर जब्त, पहले भी हुई थी छापेमारी। तमिलनाडु में आज कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम का विस्तार, थिरुवनमयूर में छात्रों संग नाश्ता करते दिखाई दिए सीएम विजय। जयशंकर की ईयू समकक्षों से अहम मुलाकात, खाड़ी यूक्रेन और इंडो पैसिफिक पर चर्चा, भारत ईयू सहयोग के कई मुद्दों पर मंथन। यूएन महासभा के बीच जयशंकर की यूरोपीय देशों को विदेश मंत्री संग बैठक, खाड़ी यूक्रेन और इंडो पैसिफिक पर चर्चा। ग्रेटर नोएडा में युवती से छीना गया iPhone 18 Pro, 3 दिन पहले खरीदा था फोन। साबरकांठा में पदयात्रियों को बेकाबू स्कॉर्पियो ने रौंदा, एक श्रद्धालु की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल, गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो को फूंका। प्रतापगढ़ की कोतवाली के बाथरूम में 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे। तेलंगाना के आदिलाबाद की सरकारी अस्पताल में एसी फटने से 5 जन के नवजात की मौत, वार्ड में मची अफरा तफरी। रिवाड़ी में फर्जी हरियाणा पुलिस अधिकारी बनकर मेडिकल स्टोर संचालक से फिरौती वसूलने वाला आरोपी गिरफ्तार।
1: दिल्ली के कालका जी मंदिर घूमने गई नाबालिग से गैंगरेप का आरोप है और एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग से रेप के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, दिल्ली में देशबंधु गुप्ता रोड थाने के बाहर जबरदस्त हंगामा, प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच में झड़प तक हुई। दिल्ली के कालका जी गैंगरेप केस में बड़ी कार्रवाई, घटनास्थल से आरोपी की पिस्टल बरामद। लखनऊ में हिट एंड रन के केस में आरोपी केस के बाद से पीड़िता को धमकाने वाला जो आरोपी है वो गिरफ्तार। तिरुवल्लूर में सरकारी अस्पताल परिसर में महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया, आरोपी को मुठभेड़ के बाद गोली लगी। सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में साजिश के तहत लगाई गई थी आग, 14 दुकानों के जलने के बाद 24 करोड़ का हुआ था नुकसान। आसनसोल के बीबी कॉलेज में एबीवीपी के 2 गुटों में भिड़ंत, घटना सीसीटीवी में कैद, छात्राओं के साथ भी मारपीट। हैदराबाद में डांस ग्रुप से इंडियन रॉक पाइथन और मुर्गी भी बरामद, सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल का आरोप। दक्षिण 24 परगना में भांगर विश्वविद्यालय में नए अध्यक्ष साइंतन बसु के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, एसएफआई स्टूडेंट फ्रंट कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। कोपल में बंदर के हमले में 91 साल की एक बुजुर्ग महिला की मौत, घटना सीसीटीवी में भी कैद। गाजियाबाद में मॉल, रेस्टोरेंट और फूड प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, गंदगी और लाइसेंस उल्लंघन का आरोप और अब कार्रवाई तेज। प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी की पुरानी नियमावली की मांग पर छात्रों का आंदोलन तेज, शिक्षा निदेशालय आमरण अनशन कर रहे हैं। उसके बाद कानपुर देहात में टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 मजदूरों की मौत। संभल में 7 साल पुराने सिपाही हत्याकांड में बड़ा फैसला, दोषी धर्मपाल को उम्र कैद और 1,69,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगा। बरेली में पेट्रोल चोरी के आरोप में 2 पुलिसकर्मी निलंबित, डायल 112 की गाड़ी से तेल निकालकर पेट्रोल पंप पर बेचने का आरोप।
0: केवड़िया में आज सजेगा 72वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म अवार्ड का मंच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भव्य आयोजन। दिल्ली से बाहर पहली बार गुजरात में हो रहा है राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह। नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए सितारों का केवड़िया पहुंचना जारी, वडोदरा एयरपोर्ट पर देखी फिल्म सितारों की हलचल, रणदीप हुड्डा धानुष समेत कई हस्तियां गुजरात पहुंची। ज्यूरी सदस्य अक्षय कुमार परीजा, म्यूजिक डायरेक्टर जीवी प्रकाश पहुंचे, कोरियोग्राफर मास्टर कला समारोह में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रीय सम्मान के लिए जुटा भारतीय सिनेमा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे विजेताओं का सम्मान। एक्टर कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के मिलेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान, दिग्गज अभिनेता आनंद नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। करण जौहर ने एक नई फिल्म की घोषणा की, रॉक के संस्थापक आर्यन काव की जिंदगी और उनके काम पर होगी आधारित। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 11 अगस्त 2028 तय की है, 2028 में रॉक के 60 साल पूरे हो रहे हैं। नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म मेकर राम कमल मुखर्जी की नई फिल्म कॉमन आदमी का टीजर जारी, फिल्म में सीए देवेंद्र जैन की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में नए कलाकार अनुज अनिल शर्मा और श्रीजा दत्ता के साथ दिग्गज एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेनगुप्ता और सोनाली कुलकर्णी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। ओटीटी की चर्चित वेब सीरीज दुपहिया सीजन 2 का ट्रेलर जारी, कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहला सीजन खत्म हुआ था।
1: रिलीज से पहले अल्लू अर्जुन की फिल्म राघा ने रचा इतिहास, रियल टाइम में सबसे अधिक लोगों के मोशन कैप्चर का बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक ही समय में 37 कलाकारों के रियल टाइम मोशन कैप्चर किए गए और इसमें एडवांस वीएफएक्स और 92 कैमरों का इस्तेमाल किया गया। ऑस्कर अवार्ड्स में भारत के लिए एक और गौरव का पल, नागालैंड की फिल्म अंग को 2027 के ऑस्कर अवार्ड्स के इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में उनकी डायरेक्ट एंट्री हुई। इस साल भारत की ओर से ऑस्कर जाने वाली ये दूसरी फिल्म है और इससे पहले मराठी फिल्म गोंधल को भारत की ऑफिशियल एंट्री मिली। अप्रैल में शुरू होगी थ्री इडियट्स के सीक्वल की शूटिंग, फिल्म ललकारा के बाद काम शुरू करेंगे आमिर खान। एशियन गेम्स से में भारतीय तैराकी के लिए बड़ी शानदार खबर आई, भारतीय टीम ने जो है मेडली रिले के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। ऋषभ दास, धनुष सुरेश, इसके साथ साथ बेनेडिक्टन रोहित और आकाश मणि ने हिट्स में 3 सेकंड का समय लेकर फाइनल में एंट्री। कबड्डी में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का शानदार प्रदर्शन, अपने दूसरे ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया को शिकस्त दी। पुरुष हॉकी में आज श्रीलंका से टकराएगी भारतीय टीम, भारतीय समय अनुसार 2:30 होगा मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय हॉकी टीम का जबरदस्त रिकॉर्ड, दोनों के बीच में अब तक कुल 13 हॉकी मुकाबले खेले गए और सभी मैचों में भारतीय टीम ने जीत की है दर्ज।

0: वहीं पंजाब पुलिस की कथित एडवाइजरी पर मान सरकार ने विपक्ष का पर हमला किया। अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, राष्ट्र सुरक्षा का सवाल है, ऐसी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि यूनिफॉर्म ना पहने। क्या आपने कभी ऐसी कोई एडवाइजरी सुनी है?
1: तो ये बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। पंजाब सरकार निशाने पर है और पंजाब में कथित एडवाइजरी को लेकर अब विपक्ष के निशाने पर आप सरकार आ गई और भगवंत मान लगातार घेरे जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ दूसरे मुद्दे भी हैं, लेकिन जो ड्रग्स का मामला है बहुत बड़ा है। इस बीच में कल अकाली दल की तरफ से भी घेरा गया और कई और प्रतिक्रियाएं आई, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार आ रहे हैं। तो अब मजीठिया ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बड़ा मसला बताया।
2: चीफ मिनिस्टर स्लीपिंग, हमारा चीफ मिनिस्टर भगवंत मान तो आप अल्कोहल अब्यूज से पीड़ित हैं और एक बारी क्या कितनी बारी वो इस इलाज के लिए दाखिल हो या कैन अ ड्रंक चीफ मिनिस्टर डू जस्टिस टू पंजाब इज माय क्वेश्चन। बॉर्डर स्टेट है, नेशनल सिक्योरिटी इज इन क्वेश्चन। ये एडवाइजरी निकाली जा रही कि वर्दी पहन के मत जाओ ड्यूटी पे, क्या आपने ऐसी एडवाइजरी कभी सुनी है? पीपल आर प्राउड ऑफ द यूनिफॉर्म, यहां पे बैठे यूनिफॉर्म पहन के ना जाओ। जब पुलिसिंग का और पॉलिटिकल पुलिस नेक्सस पैदा हो जाए फिर ये हालात बनते हैं।
0: पंजाब पुलिस की कथित एडवाइजरी पर कांग्रेस ने भी मान सरकार को घेरा है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अब पंजाब पुलिस के जवानों को सलाह दी जा रही है कि वो यूनिफॉर्म पहनकर यात्रा ना करें और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ही इसे पहने। ये भगवंत मान के गृहमंत्री के होने का चिंताजनक नतीजा है, जिनकी दिलचस्पी पंजाब के लोगों की सुरक्षा और पंजाब पुलिस का मनोबल बढ़ाने के बजाय विपक्ष पर तंज कसने, राजनीतिक दिखावा करने और ड्रामेबाजी में ज्यादा है। जबकि पुलिस को ही आने जाने के दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए कहा जा रहा है, तो मुख्यमंत्री ये पूछने का समय आ गया है कि पंजाब की कानून व्यवस्था की असल जिम्मेदारी किसकी है। पंजाब पुलिस का आप मनोबल गिरा रहे हैं, ये बाजवा ने आरोप लगाया।
1: विपक्ष के आरोपों के बीच में पंजाब पुलिस का बयान आया है। पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर या उसके अधीन किसी भी पंजाब पुलिस ऑफिस ने पुलिस कर्मियों को ऐसा कोई निर्देश या ऐसी कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की है। तो ये पुलिस की तरफ से आ गया है बयान। सोशल मीडिया पर फैल रहे ऐसे मैसेजेस फर्जी हैं और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नागरिकों और पुलिस कर्मियों को यह सलाह दी जाती है कि वो सही जानकारी के लिए केवल और केवल आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें। तो जो एडवाइजरी थी जिसमें ड्रेसेस को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई थी, उसे भ्रामक ही बताया है।
0: असीम बस्सी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। असीम, क्या सच्चाई है? ऐसी एडवाइजरी जारी होने के बाद फिर बैक ट्रैक करना और ये कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहां तक सही है?
3: देखिए, आज सुबह से श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी, इन्होंने पोस्ट में डाला है एडवाइजरी कि हाँ, बॉर्डर रेंज में एक एडवाइजरी जारी की गई है जहां पर कहा गया है कि पुलिसकर्मी जो हैं वो यूनिफॉर्म में ट्रैवल मत करें। जब वो थाने में जाएं, थाने से घर और घर से थाने के बीच में जो सफर है वो सिविल यूनिफॉर्म में करें, क्योंकि हमने देखा है पिछले बैक टू बैक इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पंजाब पुलिस के पर्सोनल्स को अटैक किया गया है, मर्डर किया गया है, जब वो यूनिफॉर्म्स में थे। पिछले दिनों ऐसे हरजीत सिंह को भी मारा गया। इसके बाद एक पूरा पॉलिटिकल जो है बवाल हुआ है कि एडवाइजरी को लेकर। हालांकि अब पंजाब पुलिस ने फैक्ट चेक किया है, पंजाब पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इस तरह की कोई एडवाइजरी जो है वो जारी नहीं की है, ना कि पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स ने की है, ना ही पंजाब पुलिस के किसी और ऑफिस ने की है। हालांकि इस पूरे बीच में एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसको हालांकि हम वेरीफाई नहीं करते हैं इस पूरी एडवाइजरी को लेकर, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर पंजाब में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई है। और हरपाल सिंह चीमा जो कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन जो है एडवाइजरी को लेकर झूठ बोल रही है, इस तरह की कोई एडवाइजरी नहीं है। और खास करके उन्होंने कहा कि इनके पास कोई इश्यू नहीं है तो रोज एक नया एजेंडा चलता है। सो इस एडवाइजरी जो कि पंजाब पुलिस कॉप्स के लिए निकाली गई थी, जिसके ऊपर पूरा बवाल हुआ, उसको पंजाब पुलिस कह रही है कि
1: ऑपोजिशन में जब नहीं रहा तो उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन है कि इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। और अब आप बात करते हैं 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, जो कि आज गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय सिनेमा 2024 की उपलब्धियों के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान देंगी। पहली बार ये सम्मान समारोह ये राजधानी से बाहर, दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है। कन्नड़ सिनेमा में योगदान और 5 दशक से ज्यादा लंबे करियर के लिए अनुभवी कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा।
0: ममूटी और कार्तिक आर्यन को ब्रह्मा युगम और चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल का अवार्ड मिलेगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल चुना गया है।
1: तो अनंत नाग को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
4: की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तैयारियां पूर्णता की ओर है। आप तस्वीरों में देख पा रहे यहाँ के भारत की अलग अलग भाषा की जो फिल्में हैं इनके बैनर लगाए गए हैं। यहाँ पे जो 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ते कई कलाकार को यहाँ पे अवार्ड दिए जाएंगे। यहाँ पे केवड़िया में आज यहाँ पे यामी गौतम है, कार्तिक आर्यन है और भी कलाकार है जिनको अवार्ड मिलने वाले है, वो यहाँ पे आ चुके हैं। और आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पंडाल बनाया गया है जहाँ पे 1000 जितने लोग बैठेंगे और ये जो जगह है जहीं से वहां से ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कलाकार है उनको अवार्ड देंगे। 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास रखा गया है। इससे पहले इस तरह के जो कार्यक्रम है ये दिल्ली में होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास इस तरह का बड़ा आयोजन हो रहा है और जो कलाकार है वो यहाँ पे आ चुके हैं और ये कार्यक्रम यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे होगा और इसकी तैयारियां अब पूर्णता की ओर है। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा आज तक।
0: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: यार लोन भूल गया मैरी।
8: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
7: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
8: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
7: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
9: There's nothing small about
7: it. Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: AU सोच बदलो और बैंक भी।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पैसे को तुरंत जाने की मांग, लेकिन दिल्ला के समर्थन में आया दिल्ली और मद्रास आईआईटी, पीड़ित परिवार मांग रहा है सीबीआई जांच।
1: जमुई दरिंदगी मामले में घिर गई सम्राट सरकार, छोटी मोटी घटना बताकर फंसे मंत्री श्रवण कुमार, तुम्हारी पलटी अब बताया शर्मनाक, राहुल और ममता का बीजेपी पर निशाना।

0: पंजाब पुलिस ने कहा ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं भेजी।
1: यूपी में अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती समाजवादी पार्टी, बीजेपी को हराना है तो अखिलेश फाइनल करें सीटें। इमरान मसूद का बयान, निकरा का जवाब, गठबंधन नहीं हुआ तो नुकसान कांग्रेस का।

0: चमक से जगमग हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऐतिहासिक शो में बैठेंगे 1000 लोग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: बिहार हो या फिर दिल्ली हो, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बदसलूकी होती रही, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि देखकर रूह कांप जाएगी। ये एक ऐसी वारदात है जिसके बाद एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
2: जंगल राज की बातें सम्राट सरकार करते रहे, पूर्व की सरकारों को जंगल राज कहा गया, तो अगर ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। उधर दिल्ली के कालकाजी में एक नाबालिग से रेप की खबर है। बीच दिल्ली में कालकाजी के एक पार्क में आरोपी पुलिस के भेष में आए और खुद को पुलिस बताकर 17 साल के एक लड़के से पिस्तौल की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया। तो जम्मू में एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत होती है, भीड़ एक नाबालिग लड़की को नोचती है, बदसलूकी करती है, पूरे देश में इस वारदात की तस्वीरें जो कोई देख रहा है वो स्तब्ध रह जाता है। लेकिन हैरत

0: Abi yine mi dedin ya? Ben de
1: बिहार की इन तस्वीरों ने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया है। एक नाबालिग लड़की पर लोग हैवान की तरह टूट पड़े हैं। जिसने भी ये तस्वीर देखी वही परेशान है, आहत है, आक्रोश में है, सवाल पूछ रहा है कि बिहार को हो क्या गया। लेकिन बिहार के माननीय मंत्री इस वारदात को छिटपुट मानते हैं।
2: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
1: सुना आपने, जिस घटना पर शर्मसार होना चाहिए, सिर्फ शर्म से झुक जाना चाहिए, उस पर सम्राट चौधरी के मंत्री कह रहे हैं कि ये तो छिटपुट घटना है। ये बताता है कि बिहार की सरकार जघन्य अपराधों को किस नजरिए से देखती है। मंत्री श्रवण कुमार को तो आपने सुना, लेकिन ऐसी सोच सिर्फ उन्हीं की नहीं है। वो जिस पार्टी के हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष भी शर्मनाक बयान देने में पीछे नहीं है।
3: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
1: यानी कि सोच में खोट एक ही जगह नहीं है। जब भी बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं एनडीए के नेता लालू राज की मिसाल देने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि इस वक्त बिहार में उनकी सरकार है। बिहार की एक और मंत्री विपक्ष को ही नसीहत देती दिख रही है, कह रही है कि विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए।
4: कि जिस तरह की घटना घटी है निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, समाज को बदनाम कर देने वाली ये घटना है। और एक बेटी होने के नाते जब ये घटनाएं घर से करीब होती है तो निश्चित रूप से मन और ज्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ जो विपक्ष की टिप्पणी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करना अपने आप में ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी संकुचित है।
1: केंद्र सरकार में मंत्री ललन सिंह भी बचाव में लालू राज का हवाला दे रहे हैं।
5: उन महिला सुरक्षा को लेकर, वो बिहार में महिलाएं सुरक्षित है, जरा अपने एलआई उनके जो लालू प्रसाद जी हैं उनसे पूछे कि उनके शासन काल में सूर्यास्त के बाद कोई महिला घर से निकलना नहीं चाहती थी।
1: आखिर लालू राज पर ठीकरा फोड़कर अपने बचाव की ये कोशिश कब तक होती रहेगी? ये तो समझ में आता है कि बीजेपी और जेडीयू की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, लेकिन सत्ता में बैठे चेहरों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की उम्मीद में ही उन्हें जनता का जनादेश मिला है। बिहार को अपराध मुक्त करने को लेकर खुद सम्राट चौधरी बड़े बड़े दावे करते रहे हैं।
6: आज यदि दुश्मन आपका नहीं है श्वेता जी, तो रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा। किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। रे रूल ऑफ लॉ है, लेकिन जिसके अपराध हो, किसी का व्यक्तिगत झगड़ा है, तब तो मैं पक्का कहूंगा कि भाई पुलिस थाने को बता के जाइए, ऐसे नहीं।
1: ये तब की बात है जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, अब तो वो बिहार के सर्वे सर्वा हैं। फिर भी जम्मू जैसी घटना हो जाती है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। शशि भूषण, पटना, आज तक।
7: वहीं सम्राट सरकार मंत्री और सत्ताधारी दल के नेता चाहे जो कुछ कहें, लेकिन जमुई की वारदात पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है।
8: यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो हैं अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी जी के बयान पर, एक संदेह पैदा करने वाला घटना है।
9: उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो ऐसे ही बोलते ही रहते हैं। जब ये विरोधी हैं तो हम अच्छा काम भी करेंगे तो नजर नहीं आएगा, वो अलग बात है, उधर में नहीं जाना चाहता। लेकिन ना मैं जरूर कहूंगा कि हम लोग बिहार के मामला में हमेशा गंभीर रहते हैं। बिहार का जो आपने बताया है, ऐसा जो भी कांड होता है आप देखा होगा, तत्काल कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारी भी हुई है, जो बचे हैं वो बचेंगे नहीं, गिरफ्तारी कर ली जाएगी बहुत जल्द।
10: जमुई की घटना पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि छेड़छाड़ करने वालों का एनकाउंटर कर

0: देना चाहिए।
1: ये शर्मसार करने वाली घटना है और हर पार्टी के लोग इस घटना की चिंता जताई है और निंदा की। हमारे नेता भी कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए और सरकार को घेरने का काम किया। सरकार ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हों, छेड़खानी कर रहे हों, और दिन दहाड़े रोड पर इस तरह की घटना आप लोग को भी देखना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें और जो दोषी है उसको ट्रायल करा के तुरंत उसको सजा दिलवाने का काम करें।
2: वहीं जमुई की वारदात पर आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा ने बीजेपी की सांसद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से खास बातचीत की, सुनिए।
3: बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, आप एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन भी रही हैं और जब वो तस्वीरें आई जमुई से जहां पर वो बच्ची हाथ जोड़ती हुई बिलखती हुई प्लीड करती हुई नजर आ रही है, ये जो तस्वीरें आई उनको पहली बार किस तरह से देखते हैं और किस तरह के एक्शन आपको लगते हैं कि इसमें होने चाहिए?
4: मुझसे तो वो पूरा वीडियो देखा नहीं गया और मैं देख भी नहीं पाती इस तरह के वीडियो। मतलब बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह का बिहेवियर, मुझे नहीं लगता कि ये मानवता की जितना कहें कि गिर सकता है कोई वैसा गिरे हुए इंसान होंगे। और सबसे रोष की बात ये थी कि पुलिस ने तब वो उसको लिया कॉग्निजेंस जब लोगों ने इस पे शोर मचाना शुरू किया, क्यों नहीं तुरंत अरेस्ट हुए? ये जैसे ही कंप्लेंट हुई थी वैसे ही क्यों नहीं अरेस्ट हुए? और फिर हम एलिबाई दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं कि ये तो वन ऑफ द इंसिडेंट है या कुछ है। हमें तुरंत ऐसी चीजों पे कार्रवाई करनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं कहूंगी ऐसे व्यक्तियों को जो माइनर कहते हैं, माइनर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, और आपने सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखे होंगे पूरे भारत भर में जहां माइनर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बूढ़ी औरत का रेप हो, छोटी बच्ची का रेप हो, ऐसे माइनर्स को एडल्ट की तरह ट्राई तो करना ही चाहिए। तो कभी कभी लगता है कि शरीयत लॉस अपनाने चाहिए, इनके हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने ऐसे हाथों से छुआ और इतनी गलत तरीके से छुआ। अगर इस तरह के लॉज, और मुझे लगता है अगर हार्श पनिशमेंट नहीं देंगे तो ये सुधरेंगे नहीं। दिन पर दिन एज कम होती जा रही है, हमने 17 को इंक्लूड किया, 16 को इंक्लूड किया कि इनको एडल्ट की तरह, क्या हम 14 को इंक्लूड करें, 12 को इंक्लूड करें? कैसे कर सकते हैं? या तो माँ बाप जिम्मेवार ठहराने चाहिए, उनको जेल में बंद करें माँ बाप को पूरी तरह से। हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे मुझे लगता है जुडिशरी भी बहुत लीनियंट हो रही है, ऐसे जगह पे हम छोड़ते जाते हैं, रेप अक्यूज्ड को हम छोड़ते हैं और वापस आके फिर रेप करता है वो। हम क्यों जुडिशरी आजकल सब जेलें खाली करने में लगे हैं कि हम इनको बेल दे दें, छोड़ दें, माफ कर दें? माफी ठीक है जहां पे माफी बनती है, लेकिन इस तरह के ग्रूसम इंसिडेंट में कोई माफी नहीं, चाहे वो 14 साल का बच्चा है या 15 साल का है, वो बचना नहीं चाहिए।
0: और हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, जो हुआ बहुत शर्मनाक है, लेकिन अब एक्शन का इंतजार है, क्या क्या कार्रवाई हो रही है और किस किस तरह की कार्रवाई हो रही है?
5: देखिए, कार्रवाई तो कल हुई थी राजीव, हमने देखा 3 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन बहुत अचरज वाली बात है, जैसा रेखा शर्मा भी बोल रही थी कि आखिर जो नाबालिग है उसकी कैटेगराइजेशन जो है, मतलब वो कितने आयु पर की जाए, क्योंकि जो 3 आरोपी पकड़े गए कल वो तीनों नाबालिग हैं। अब आप समझ लीजिए इस मामले में क्या होगा। लेकिन हाँ, दूसरे आरोपी जो हैं वो ऐसे भी हैं जो नाबालिग नहीं है, जिसमें एक नंदन यादव का नाम आ रहा है जिसने सबसे ज्यादा उस नाबालिग युवती के साथ गलत बर्ताव किया, बार बार उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किए। तो ये मामला यही ठंडा पड़ने वाला नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि रात भर जो जमुई पुलिस है और जो बिहार पुलिस ने SIT बनाई राजीव, वो रात भर छापेमारी करती रही है अलग अलग जगहों पे जो बाकी अन्य आरोपी हैं। क्योंकि पुलिस ने खुद कल अपने बयान में कहा था कि 7 से 8 की संख्या में जो आरोपी हैं उनकी पहचान की जा चुकी है। तो अगर पुलिस के ही दावे के मुताबिक 3 नाबालिग आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो बाकी के जो 4
2: के पास इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे।
6: यह आधारशिला है नए भारत की। भारत विश्वगुरु कब था? जब भारत दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का संचालन करता था, जब भारत में तक्षशिला और नालंदा के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, तब भारत विश्वगुरु था और भारत के पास तो ये धरोहर पहले से मौजूद है, केवल उसको पहचानने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर गति कैसे होनी चाहिए यह आपके द्वारा प्रशिक्षित विद्यार्थी तय करेगा। सरकार उद्योग लगाने के लिए माहौल दे सकती है, उद्योग लगवाने में मदद कर सकती है, लेकिन वह उद्योग इनोवेशन का आधार बनेगा, एम्प्लॉयमेंट का आधार बनेगा, यह आपके द्वारा पढ़ाए गए और प्रशिक्षित किए गए छात्र ही तय करेंगे, वही विद्यार्थी तय करेगा। सरकार लैब बना सकती है, लेकिन वह लेबोरेटरी किसी रिसर्च के लिए बेहतरीन शोध करके दिखा रही है और छात्रों को उसके योग्य बना रही है, यह आपके द्वारा प्रशिक्षित छात्र ही तय करेगा। और जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तब आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना पूरी होगी। उस संकल्पना के साथ जोड़ने के लिए इसलिए हमारे लिए आज का यह कार्यक्रम विशेष अवसर है। जब इतने बड़े पैमाने पर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं, मैं तो आप सबसे कहूंगा कि आप जितने भी लोग आए हैं, जितने लोग 3567 लोगों का चयन हुआ है, अब एक बड़े पवित्र अभियान के साथ जुड़े हैं। श्री राम के जीवन में पग पग पर उस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई। पहले गुरु वशिष्ठ का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके गुरुकुल में रह करके भगवान राम ने अपने अनुजों के साथ मिलकर के जीवन के बारे में जाना। और गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में आए तो जीवन का उद्देश्य क्या है, दिव्य अस्त्र और शस्त्र पकड़ करके उन्होंने वह भी सीखा। राम मर्यादा के आदर्श हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श के रूप में प्रभु श्री राम एक प्रेरणा होगी। जब यही गुरुत्तरदायित्व महर्षि वाल्मीकि के हाथों में आता है तो उन्होंने वह वाल्मीकि रामायण के माध्यम से करके दिखाया। उत्तर और दक्षिण को जोड़ना है इस कार्य को करने का जब गुरुत्तरदायित्व, महर्षि अगस्त के पास सामने आया तो उन्होंने वह कार्य करके दिखाया। कृष्ण कन्हैया की शिक्षा होनी है और एक ही पंक्ति में बैठ करके कृष्ण भी और सुदामा भी अध्ययन करेंगे। कोई भेदभाव नहीं है, राजवंश में पैदा हुआ व्यक्ति हो या एक झोपड़ी में बैठा हुआ इंसान, कोई भेदभाव नहीं। गुरु संदीपन जैसा ऋषि उस दायित्व का निर्वहन कर रहा है। चाणक्य के बारे में यहां पे हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने आपके सामने कहा ही, तक्षशिला के विश्वविद्यालय के आचार्य हैं लेकिन भारत के आसन्न संकटों को देख रहे हैं, विभाजित राजनीतिक ताकतों को देख रहे हैं। उन्हें लगा कि नहीं, केवल इससे काम नहीं होगा, किसी चंद्रगुप्त को तैयार करना पड़ेगा, और उन्होंने पाटलिपुत्र में और साम्राज्य खड़ा कर दिया। स्वतंत्र भारत ने भी इस बात को देखा है, आज हम उसका एहसास कर रहे हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं।
0: और अब खबर यूपी चुनाव से जुड़े हुए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? कांग्रेस नेता लगातार गठबंधन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की ओर से वैसा ही सिलसिला लगातार जारी है।
2: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश यादव कितने सक्रिय दिखते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर गठबंधन होना है तो उसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, वरना हम अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे बयान के बीच समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने कह दिया है कि कांग्रेस अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएगी, गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए नहीं।
7: अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है, अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है, कहीं भी पूरे देश में नहीं है, तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है, इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है और कांग्रेस ही लड़ सकती है। मैं कह रहा हूं इसे तुरंत फाइनल करिए, कौन टच में मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं है, जो भी होना है फाइनल करिए, अगर फाइनल नहीं होगा तो उसका नुकसान जमीन पर हो रहा है ना।
8: बिल्कुल ही बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी, गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए नहीं।
2: एक दिन पहले अखिलेश यादव ने साफ किया था कि यूपी में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वही रहेगा, मतलब कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा।
9: समाजवादी पार्टी का जो पूर्व में गठबंधन था वही रहेगा, और मैं इधर देख रहा हूं किसी को रथ का रंग नहीं दिखाई दे रहा है, लाल रंग उन्हें कोई दूसरा रंग दिखाई दे रहा है, किसी को किसी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो रथ केवल डीजल भरवाने गया था, अभी से घबरा गए आप।
0: और एक और 11 में आप रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
13: एयू सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया? मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 और 2002 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ।
3: SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है, उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं, और चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत सबको बताना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में। लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए, बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी गया है भाई, एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के, लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मौजूदा चुनाव आयुक्त एस एस संधू, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गजों के नाम उस नोटिस में शामिल हैं जो उन्हें दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मिला है और इस चुनाव आयोग के इस नोटिस ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े नामों जो कई अहम पदों पर रह चुके हैं, उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मिले नोटिस की वजह क्या है। दरअसल दिल्ली में एसआईआर के बाद 97 लाख से ज्यादा वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है जिसमें करीब 33.13 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी मिली है। अब चुनाव आयोग की ओर से इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें मौजूदा वोटर की जानकारी का 2002 में हुए पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया है। कई बड़े नामों को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
1: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहाँ और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया। मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
0: उधर दिग्गजों को मिले नोटिस के बाद कांग्रेस की ओर से हमले का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी के दबाव में शुरू की गई और इसके जरिए वोटर लिस्ट से कई नाम काटने की साजिश रची गई। उधर तमाम सवालों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपना जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नोटिस मिलने का ये मतलब नहीं है कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। नोटिस पाने वाले लोगों को अपनी बात रखने और जरूरी दस्तावेज देने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोग के इस बयान के बाद भी सियासत तेज होती जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया के बीच दिग्गजों को नोटिस पर नई लड़ाई छिड़ गई है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, आज तक।

सामने सामने आरोपी प्रोफेसर को तुरंत हटाने की मांग, लेकिन डुल्ला के समर्थन में आया दिल्ली और मद्रास आईआईटी। पीड़ित परिवार मांग रहा है सीबीआई जांच। जमुई दरिंदगी मामले में घिर गई सम्राट सरकार। छोटी मोटी घटना बताकर फंसे मंत्री श्रवण कुमार, तुम्हारी पलटी। अब बताया शर्मनाक, राहुल और ममता का बीजेपी पर निशाना।

0: बाजार इलाके में भी बच्चे से दरिंदगी के बाद फूटा आक्रोश। लखनऊ में सीएम योगी ने 3,500 माध्यमिक स्कूलों में टीचर के 3,500 पदों पर बांटा नियुक्ति पत्र। अखिलेश का निशाना कहा, सैफई सिंडिकेट अब डकैती नहीं डाल सकता। ड्यूटी ऑफ होने के बाद वर्दी में ना रहने के कथित फरमान से विपक्ष के निशाने पर आई पंजाब सरकार। कांग्रेस और अकाली दल ने भगवंत मान को घेरा। पंजाब पुलिस ने कहा, ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं भेजी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और सबसे पहले रिपोर्ट आपको देश की राजधानी दिल्ली से देते हैं। दिल्ली के कालकाजी इलाके में गैंगरेप के फरार दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज तड़के एनकाउंटर में आसिफ नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया था और अब खबर आ रही है कि बचे हुए दो आरोपी भी पकड़ लिए गए हैं। कल शाम को दिल्ली के कालकाजी इलाके में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात हुई थी। ये वारदात दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पास हुई है। खबरों के मुताबिक 17 साल की लड़की सोमवार शाम लगभग 7 बजे के आसपास अपने 17 साल के दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन पूजन के गई और बाद में शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास वहां पास के आस्था कुंज पार्क में वो गए। वहीं पर 3 युवकों ने उस लड़की के साथ रेप किया। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने खुद को पुलिस वाला बताया था।
2: इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था कुंज पार्क में, जहां पर सोमवार देर शाम 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी आसिफ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आसिफ के पैर में गोली लगी है, वो घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके 2 साथियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमवार शाम उनको जानकारी मिली, शिकायत मिली कि 17 साल की एक लड़की के साथ इस पार्क में 3 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि 7:30 बजे के आसपास तीनों इस पार्क में दाखिल होती है, वो मंदिर आई थी और उसके बाद उसके बैक गेट के इलाके से होते हुए आस्था कुंज पार्क में आ जाती है गेट नंबर 7 से, और इस पार्क के अंदर जब वो पहुंचती है तो अंधेरा हो ही चुका था, लाइट जल रही थी लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं थी। तभी वो तीनों सामने आ जाते हैं। उन्होंने खुद को पुलिस वाला बनाया ताकि लड़कियों को डराया जा सके और पुलिस वाला बनाने के बाद वो पीड़िता को अलग कर दिए। 2 लड़कियों को एक तरफ उन्होंने कर दिया और पीड़िता को एक तरफ ले गए। वहां पर आसिफ नाम का आरोपी जो एनकाउंटर के बाद घायल हुआ है, पकड़ा गया है, उसने मंचा निकाला और उसने पीड़िता को डराना धमकाना शुरू किया और एक ने चाकू निकाला। दोनों ने मिलकर पीड़िता को धमकाया और उसके बाद बारी बारी तीनों ने गलत हरकत को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए।
0: दिल्ली में रेप की एक और वारदात हुई और यह खबर है सदर बाजार इलाके की, जिसे लेकर कल दिल्ली के देश बंद गुप्ता रोड थाने के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने रेप के आरोपी और उसकी मां पर हमला किया। रेप की वारदात 16 सितंबर की रात की है। जांच के मुताबिक कक्षा 6 में पढ़ने वाले नाबालिग रात लगभग 11 बजे स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली। तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे पहला फुसलाकर दुकान के अंदर बुलाया। इसके बाद उसने नाबालिग लड़की के हाथ पैर बांधे और उसका यौन उत्पीड़न किया। तो देश की राजधानी दिल्ली को यह क्या हुआ? यहां का लॉ एंड ऑर्डर सवालों में, मासूम बच्चियां दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस को चलाने वाले क्या कर रहे हैं, तमाम सवाल बने हुए हैं दिल्ली में कालकाजी में और उसके बाद ये घटना सदर बाजार इलाके में। यहां मासूम के साथ रेप किया गया। 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट बिहार से है। देश की संवेदना को झकझीर देने वाला ये मामला सामने आया है। बिहार के जमुई कांड में पुलिस ने अब 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में तो 2 की उम्र 17 से 18 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वारदात में फिलहाल 7 से 8 युवकों के नाम सामने आए हैं, बाकियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई भी की है और वीडियो को वायरल करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शिकंजा कसा है। 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जमुई के साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार सरकार सवालों में है।
3: नाबालिग लड़के और लड़की के साथ हुई घटना के मामले में बिहार पुलिस लगातार एक्शन में है। बिहार पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। जमुई पुलिस के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 3 गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस इसको इस मामले में नंदन यादव की तलाश है। ये नंदन यादव वही है जिसने छात्रा के साथ सबसे अधिक बदसलूकी की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब बिहार पुलिस इसे टेकडाउन कराने के लिए भी प्रयास कर रही है। वहीं एसआईटी लगातार दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
0: जमुई की वारदात पर विपक्ष सम्राट सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बिहार के उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने इस वारदात पर विपक्ष को राजनीति न करने की सलाह दी है।
4: यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी जी के बयान पर, एक संदेह पैदा करने वाला घटना है कि बिहार में आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।
5: इस तरह की घटना घटी है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। समाज को बदनाम कर देने वाली ये घटना है, और एक बेटी होने के नाते जब ये घटनाएं घर से करीब होती है तो निश्चित रूप से मन और ज्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ जो विपक्ष की टिप्पणी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करना अपने आप में ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी संकुचित है।
0: जमुई की तस्वीरों ने देश की संवेदनाओं को झकझोर दिया, लेकिन विडंबना आप देखिए, सत्ता पक्ष के कुछ लोग इसे छिटपुट घटना बता रहे हैं।
6: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए, जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
7: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
0: इस तरह की घटनाओं को छिटपुट कहने वाले आपके जनप्रतिनिधि, आप सोचिए। चौतरफा आलोचना के बाद अब खबर यह भी आ रही है कि मंत्री श्रवण कुमार अपने बयान से पलट गए। उन्होंने वारदात को अब शर्मनाक बताया है और कहा कि जमुई की घटना दुखद है और शामिल दोषी बख्शा नहीं जाएगा।
8: शर्मसार करने वाली घटना है, और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं हैं, सरकार के लोग चिंतित नहीं हैं, सरकार के लोग मर्माहत नहीं हैं। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा। इस तरह के कृत्य करने वाले को किसी भी हालत में बचने नहीं दिया जाएगा, हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
0: 12 बजे रिपोर्ट में अगले रिपोर्ट अब आईआईटी बॉम्बे की, जहां पर छात्र के सुसाइड केस में, आईआईटी बॉम्बे केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच अब तेज कर दी है। पुलिस ने साहिल के परीक्षा हॉल से लेकर हॉस्टल तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। क्राइम ब्रांच को पता चला कि सीसीटीवी में परीक्षा हॉल में साहिल की गतिविधियां कैप्चर हुई हैं। साथ ही सीसीटीवी में हॉल से निकलकर हॉस्टल की तरफ जाते हुए भी उसको देखा गया है। हॉस्टल के कमरे से वापस आने के सीसीटीवी फुटेज कोई नहीं मिला है। अब क्राइम ब्रांच उन तस्वीरों के आधार पर छानबीन कर रही है। आईआईटी बॉम्बे से हमारे संवाददाता दीपेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। दीपेश, सीसीटीवी में क्या क्या दिखाई दिया है अब तक पुलिस को?
9: राजीव, देखिए, जांच क्राइम ब्रांच के पास जाने के बाद क्राइम ब्रांच ने जो सीसीटीवी फुटेज है आईआईटी प्रीमाइसेस के, उनको अपने हिरासत में ले लिया, उनको जब्त कर लिया है, और अब उनके आधार पर जो है वो क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ेगी। जो टाइमलाइन है उसको मैच करके देखा जाएगा। सीसीटीवी में जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच को साफ नजर आ रहा है कि साहिल वाघमोड़े जो है वो परीक्षा हॉल में जा रहा है और फिर परीक्षा हॉल से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ जा रहा है। इसी बीच जो बीच के सीसीटीवीज हैं यानी एग्जामिनेशन सेंटर से लेकर साहिल वाघमोड़े के कमरे तक की सीसीटीवी, उसके हॉस्टल तक की सीसीटीवी, उनके बीच की सीसीटीवी की भी जांच हो रही है। उसमें देखा जा रहा है कि साहिल वाघमोड़े ने किसी से बात की थी क्या, और अगर बात की थी तो क्या बात की थी। लेकिन फिलहाल जो प्राइमरी सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा है उसमें पुलिस को साफ नजर आ रहा है कि साहिल वाघमोड़े जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर से निकलकर अपने हॉस्टल बिल्डिंग की तरफ जा रहा है और कमरे में जाने के बाद वो दोबारा से बाहर नहीं आया है। तो इसी के आधार पर पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। प्राची,
0: बहुत शुक्रिया दीपेश आपका इस जानकारी के लिए। अब अगली रिपोर्ट आपको पंजाब से देते हैं। पंजाब में पुलिस की एक कथित एडवाइजरी से सियासी तापमान गर्मा गया है। पंजाब पुलिस कहती है कि ऐसी कोई एडवाइजरी हमने जारी ही नहीं की जिसमें ये कहा गया हो कि ड्यूटी पर जाते या फिर ड्यूटी से लौटते समय पुलिस वाले यूनिफॉर्म पहनने से बचे। हाल के दिनों में पुलिस वालों पर हमले की घटना को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी होने की खबर सामने आई थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने अब इसका खंडन कर दिया है। अब इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई।
10: पंजाब में एक एडवाइजरी को लेकर जो है पॉलिटिकल माहौल गर्मा गया है। जी हाँ, सुबह से ही कांग्रेस पार्टी हो, अकाली दल हो, बीजेपी हो, उन्होंने एक एडवाइजरी पोस्ट की। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की है जिसमें कहा गया है कि जो कॉप्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो घर से दफ्तर तक और दफ्तर से थाने से घर तक जब ट्रैवल करते हैं इसके बीच वो यूनिफॉर्म मत पहने और सिविल क्लोथ में रहें। रीजन क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ समय में काफी पंजाब पुलिस के लोगों को टारगेट किया गया और पिछले दिनों हरजीत सिंह को भी, ऐसे हरजीत सिंह को भी मारा गया है कुछ लोगों द्वारा अमृतसर में। लेकिन इस सब के बीच में पंजाब पुलिस ने एक फैक्ट चेक जारी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी की नहीं की गई है पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा, ना ही पंजाब पुलिस के किसी अफसर के द्वारा। कहा जा रहा था कि एडवाइजरी जो है जो कि बॉर्डर रेंज के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे गुरदासपुर, पठानकोट, बटाला, अमृतसर रूरल, उनके लिए जारी की गई, लेकिन अब पंजाब पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इस तरह की कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की। और आम आदमी पार्टी ने भी श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है। फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने कहा है कि ऑपोजिशन जो है वो झूठ बोल रही है, किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, कोई किसी तरह का कोई इसमें सच नहीं है और कोई एजेंडा नहीं होता है, इसलिए झूठा एजेंडा फैलाने के लिए ऑपोजिशन पार्टी ये सब कर रही है।
0: अब पंजाब पुलिस की कथित एडवाइजरी पर मान सरकार का विपक्ष पर जबरदस्त हमला है। अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने कहा कि सीएम भगवंत मान तो सो रहे हैं। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। ऐसी एडवाइजरी अगर जारी की जा रही है कि यूनिफॉर्म न पहने, तो क्या आपने कभी ऐसी कोई एडवाइजरी सुनी है?
11: चीफ मिनिस्टर स्लीपिंग, हमारा चीफ मिनिस्टर भगवंत मान तो आप अल्कोहल अब्यूज से पीड़ित हैं और एक बारी क्या कितनी बारी वो इस इलाज के लिए दाखिल हुए। कैन अ ड्रंक चीफ मिनिस्टर डू जस्टिस टू पंजाब इज माई क्वेश्चन। बॉर्डर स्टेट है, नेशनल सिक्योरिटी इज इन क्वेश्चन। ये एडवाइजरी निकाली जा रही कि वर्दी पहन के मत जाओ ड्यूटी पे, क्या आपने ऐसी एडवाइजरी कभी सुनी है? पीपल आर प्राउड ऑफ द यूनिफॉर्म, यहां पे बैठे यूनिफॉर्म पहन के ना जाओ। जब पुलिसिंग का और पॉलिटिकल पुलिस नेक्सस पैदा हो जाए फिर ये हालात बनते हैं।
0: अब बात पंजाब के ही संगरूर की, जहां खुदकुशी की कोशिश करने वाला जग्गा सिंह को लेकर पंजाब पुलिस के दावों की। संगरूर पुलिस ने इस बीच में दावा किया है कि जग्गा सिंह पहले से 9 उस पर मामले दर्ज हैं, जिनमें से 4 मामलों में तो दोषी ठहराया गया है, इनमें एनडीपीएस केस भी शामिल है। संगरूर पुलिस के मुताबिक इस साल भी जग्गा सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और पूरी खबर डिटेल जानकारी दे रहे संवाददाता कमलजीत संधू।
12: संगरूर में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले जग्गा सिंह पे नया खुलासा किया है आम आदमी पार्टी और संगरूर पुलिस द्वारा। उनका कहना है कि इस पे कई मामले दर्ज हैं। संगरूर पुलिस के माने तो 9 पर्चे दर्ज हैं, जिसमें से कई एनडीपीएस के हैं और एक रेप का मामला भी दर्ज है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि विपक्षी पार्टियां इसमें लाशों की राजनीति कर रही है और मुद्दा ढूंढ रही है जहां पे कोई मुद्दा नहीं है, और आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी और पंजाब पुलिस मिली भगत है जिसकी वजह से नशा फैल रहा है। वहां पे विपक्षी पार्टी फिर से निशाना बना रही है आम आदमी पार्टी को और कह रहे हैं कि सुधार हो चुका था जग्गा सिंह में, जिसके बाद उसने कई ऐसे वीडियोज से उजागर किया कि किस तरह से नशा इजिली अवेलेबल है पंजाब में। लेकिन इस पूरे मामले में जहां राजनीति हो रही है, वहीं पे जग्गा सिंह जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है राजेंद्र अस्पताल पटियाला में। फिलहाल कई वीडियोज उजागर किए हैं धर्मपत्नी ने, जो कि सीसीटीवी फुटेज है जहां पे दिखाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि इसमें अब जांच की जा रही है।
0: अब रिपोर्ट यूपी से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का युवाओं को नौकरी देने का अभियान जारी है। आज लखनऊ में 3,567 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है।
13: ये केवल एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, 3,567 ऐसे लोगों का चयन करके जिनके हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक गुरुत्वर दायित्व भी है, और उस दायित्व के निर्वहन करने के लिए आज आप सब नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं।
0: तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 1,00,000 नई नौकरियों के अभियान की शुरुआत की थी, और उसके बाद से लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। अब क्या है योगी का मिशन, बता रहे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव।
14: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनाव से पहले तकरीबन 1,00,000 नौकरियां देने के लिए ताबड़तोड़ नियुक्ति पत्र दे रही है। इस नौकरियों के महाकुंभ में पहले जैसे कि देखा है हमने, पहले दिन ही यूपी ट्रिपलएससी के अलग अलग विभागों की और साथ ही साथ यूपी पीसीएस के अन्य विभागों की तकरीबन 849 और तकरीबन 850 यानी तकरीबन 1900 पोस्टों पर नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आज शिक्षा विभाग में तकरीबन 3,500 पदों पर नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। यही नहीं, होमगार्ड की अगर बात करें तो 70,000 से ऊपर होमगार्ड की भर्ती की जानी है, यानी कि चुनाव से पहले तकरीबन 1,00,000 लोगों को नौकरी। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार नौकरियां नहीं दे रही है। 9.5 सालों के कार्यकाल में तकरीबन 9.5 लाख नौकरी भी देने का दावा कर रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और अब आने वाले 6 महीने भी जो चुनाव के बचे हैं उससे भी कम समय में तकरीबन 1,00,000, ये बड़ा दांव माना जा रहा है।
0: यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर गहमा गहमी तेज है, नई राजनीतिक समीकरण साथे जा रहे हैं, गठबंधन की कोशिशें हो रही हैं और रणनीति पर चर्चा जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के साथ साथ इकरा हसन ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है, कांग्रेस को लेकर उन्होंने बयान दिया है। इकरा हसन ने कहा है कि प्रदेश में अखिलेश यादव ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाने में सक्षम है। यूपी में लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में चुनाव से पूर्व गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं, और एसपी सांसद का नया बयान है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उसके बाद इकरा हसन ने यह बयान दिया।
15: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने से पहले ही इंडिया गठबंधन में वर्चस्व और वजूद की नूरा कुश्ती अब धरातल पर दिखाई पड़ रही है, यानी कि चीजें अब सामने आ रही हैं। एक तरफ इकरा हसन है जो ये कहती है कि समाजवादी पार्टी के बिना कांग्रेस यूपी में कुछ नहीं कर सकती, तो इमरान मसूद भी पलटवार करने से चूकते नहीं हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ये बताना चाहती है कि जब बात यूपी के विधानसभा चुनाव की होगी तो अखिलेश यादव ही गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस सपा को यानी कि समाजवादी पार्टी को यह बताना चाहती है कि भाई जब चुनाव होगा तो राहुल गांधी ही एक राष्ट्रीय चेहरा रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के हामी के बिना सीट शेयरिंग पूरी नहीं हो सकती है।
16: कि अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है, अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है, कहीं भी पूरे देश में नहीं है, तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है, इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है और कांग्रेस ही लड़ सकती है। मैं कह रहा हूं इसे तुरंत फाइनल करिए, कौन टच में मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं है, जो भी होना है फाइनल करिए, अगर फाइनल नहीं होगा तो उसका नुकसान जमीन पर हो रहा है ना।
17: बिल्कुल ही बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए भी।
0: बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ले चलते, प्रदीप भंडारी बोल रहे
18: हैं है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज जो वोटर रोल्स को क्लीन करती है उसका कांग्रेस विरोध इसीलिए करती है क्योंकि कांग्रेस शासन काल में गांधी वाड्रा परिवार लोकतंत्र की चोरी करता था। टुवर्ड्स द एंड द थ्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू द कांग्रेस पार्टी आर द फॉलोइंग। ए, जब कोर्ट ये मान रहा है कि सोनिया गांधी जी के द्वारा 1980 में वोट जो दिया गया जब वो भारत की नागरिक नहीं थी उसमें जो प्राइमा फेसी एलिगेशन है कि फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुआ वो सही है, तो सोनिया गांधी जी ने या गांधी वाड्रा परिवार ने किसकी मदद से या खुद के रसूख को इस्तेमाल करते हुए क्या लोकतंत्र की चोरी नहीं की? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो ये, जब 1980 के दशक में वो भारत की नागरिक नहीं थी तो ऐसा कौन सा जादू कांग्रेस पार्टी ने कर दिया कि उनको वोट डलवा दिया, और ऐसा कैसे कर दिया कि वोटर लिस्ट में नाम आ गया? और सवाल नंबर तीन, वोट चोरी की बात करने वाले क्या आज देश की जनता के सामने एस्टैब्लिश्ड लोकतंत्र के चोर नहीं साबित हुए? ये सभी सवालों का जवाब अगर राहुल गांधी नहीं देते हैं तो ये देश की जनता, देश का युवा ये समझेगा कि इनकी मौन, इनका मौन, दैट साइलेंस इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, इनका मौन इनकी स्वीकारता है कि इनने लोकतंत्र की चोरी करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आपके पास है तो हम सवाल ले सकते हैं।
0: अब आगे बढ़ते हैं, बात पश्चिम बंगाल की सियासत की करेंगे जिसे लेकर आज बेहद अहम दिन है क्योंकि टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपना जवाब सौंपा। टीएमसी ने पार्टी के बागी सांसदों के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने याचिका लगाई है। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ने बागी सांसदों को अपना जवाब देने के लिए 22 सितंबर तक का समय दिया था।
19: टीएमसी वर्सेस टीएमसी में आज एनसीपीआई सांसदों के पास आखिरी दिन है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास जवाब दाखिल करने का। आपको बता दें कि इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने इन एनसीपीआई के सांसदों के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई करने की मांग की गई थी और साथ साथ अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में अर्जी लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की अर्जी के बाद लोकसभा स्पीकर ने पहले 26 अगस्त को इन एनसीपीआई के सांसदों को एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने की मोहलत दी थी लेकिन उसके बाद उसकी टाइमलाइन बढ़ाकर 22 सितंबर कर दी गई, यानी कि आज आखिरी दिन है जब एनसीपीआई के सांसदों को इस पूरे नोटिस के खिलाफ, जो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है, इस पूरे नोटिस में उनको जवाब दाखिल करना है। अब देखना यह होगा कि किस तरह की बात एनसीपीआई सांसद और किस तरह का जवाब एनसीपीआई सांसद लोकसभा स्पीकर को इस पूरे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो कार्रवाई करने की बात की गई है उसमें जवाब देते हैं।
0: उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल पुलिस ने पुराने मामले में मिलन प्रधान को गिरफ्तार किया था और 4 अक्टूबर तक उन्हें जेल भेज दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ मिलन प्रधान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई।
20: मुर्शिदाबाद के रेजी नगर से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की अर्जी पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मिलन प्रधान, जिसे कुछ दिनों पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था 2007 के पुराने कई मामलों में, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में मिलन प्रधान की ओर से अर्जी दी गई है कांग्रेस की ओर से और रक्षा कवच की मांग की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि 4 अक्टूबर को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और 6 अक्टूबर को चुनाव होना है, ऐसे में उन्हें रक्षा कवच दिया जाए जो पुराने मामले हैं उनके लिए। कल ही ये अर्जी दी गई थी, हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि आज सुनवाई होगी तो आज इस मामले में सुनवाई होनी है। इस बीच मिलन प्रधान, जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, उन्हें न्यायिक हिरासत में पुलिस ने भेज दिया था।
0: अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस ने ट्रंप टीवी लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है और ये डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क होगा। इस नेटवर्क पर अमेरिकी प्रशासन से जुड़ा हुआ कंटेंट 2400 घंटे स्ट्रीम किया जाएगा। व्हाइट हाउस का यह फैसला ट्रंप के 8 सितंबर को CNN, MS Now और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस से बैन करने के बाद लिया गया।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिना प्रेस के पहला बयान सामने आया है और खास बात यह है कि उनके इस बयान में उनकी आवाज नहीं है। दरअसल व्हाइट हाउस के बाहर एक नए हेलीपैड के उद्घाटन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बयान दिया, लेकिन इस मौके पर ना ही कोई प्रेस वहां पर मौजूद थी और प्रेस पूल भी वहां से गायब था, ना कोई टीवी कैमरा और ना ही कोई माइक। और ऐसे में नतीजा ये हुआ कि हेलीकॉप्टर की तेज आवाज के बीच डोनाल्ड ट्रंप की आवाज दब गई और उनके बयान में उनकी आवाज ही सामने नहीं आई। और इसी बीच व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नए टीवी चैनल की घोषणा की जिसका नाम दिया गया ट्रंप टीवी द एसेंशियल स्टेशन। ये टीवी डोनाल्ड ट्रंप के सभी बयानों को, उनके वक्तव्यों को लगातार लाइव फीड के जरिए टेलीकास्ट करेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास व्हाइट हाउस में प्रेस इन्वाइटेड नहीं होगी? और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि चर्चा रही है डोनाल्ड ट्रंप और कई सारे अमेरिकी मीडिया हाउसेस के बीच बढ़ते विवाद की।
0: और बात 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की आज गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय सिनेमा में 2024 की उपलब्धियों के लिए ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे और पहली बार यह समारोह राजधानी दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है।
21: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के इतिहास में पहली बार दिल्ली से बाहर इसका आयोजन हो रहा है और वो भी गुजरात के एकता नगर, जो पहले केवड़िया के नाम से जाना था और जहां पे देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा स्टेच्यू दुनिया का जो है वो है वहीं पर इसका आयोजन किया गया है, जिसकी घोषणा के साथ ही जो है वो कॉन्ट्रोवर्सी जरूर हुई थी, पर सरकार ने साफ किया था कि अब जो है हर साल देश के अलग अलग राज्यों में इसका आयोजन किया जाएगा। आज एकता नगर में इसका आयोजन हो रहा है और शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों जो हैं सभी विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। सबकी निगाहें हैं, जो पहले ही घोषणा तो हो चुकी थी पर आज जो है वो पुरस्कार दिए जाएंगे। जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसको साइड में रखकर एक बड़ा दिन आज गुजरात के लिए है कि पहली बार जब ये फिल्म पुरस्कार दिल्ली से बाहर हो रहे हैं और वो भी गुजरात में हो रहे हैं, तो गुजरात के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। और आज सभी फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा जो है वो आना शुरू हो चुका है। बीती रात से सभी जो बड़े फिल्म कलाकार हैं वो आने शुरू हैं, कार्तिक आर्यन हो या रणदीप हुड्डा हो, सभी लोग जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। और आज शाम को जो विजेताएं हैं उनको राष्ट्रपति जी के हाथों ये पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके साथ शायद फिर से एक बार कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिल सकती है।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिहार जमुई से बहुत बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। बिहार पुलिस ने एक्शन लिया है और जो मुख्य आरोपी जमुई का था, जिसकी तस्वीरें आपने भी देखी होगी, जिसे देखकर आपको भी गुस्सा आया होगा, वो मुख्य आरोपी एनकाउंटर में बताया जा रहा है कि घायल है। जमुई बदसलूकी मामले में ये बड़ी कार्रवाई। जो मुख्य आरोपी है, जो मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए भी आपको दिखाई दिया होगा, देखिए तस्वीर में हम आपको उसकी दिखा रहे हैं, उसके पैर में गोली लगी है। नंदन यादव इसका नाम है और इसके पैर में गोली लगी है। बिहार सरकार जो लगातार सवालों में है, बिहार सरकार के मंत्रियों का जो बयान है वो सवालों में, लेकिन इस बीच में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, कहां पर किन परिस्थितियों में यह एनकाउंटर हुआ और क्या क्या अभी चल रहा है?
1: देखिए राजीव, जो खबर आ रही है कि पिछले दो दिनों से जो नंदन यादव बताए जा रहे हैं जमुई कांड में, इन दोनों के
0: रोहित कुछ समस्या है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हम दोबारा आपके पास लौटते हैं, पूरी डिटेल जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन ये बहुत

0: कहते हैं वो नाबालिगों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो उन पर तो बालिगों जैसा केस चलना चाहिए, मांग की जा रही है। और वो लोग भी इस तरह की मांग करें जो बड़े बड़े पदों पर रहे। जमुई बदसलूकी के मामले में बिहार पुलिस का एक्शन, इससे पहले कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और अब कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। हमारे संवाददाता रोहित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, अब विस्तार से बताएं किन परिस्थितियों में कहां से भागा था, कौन मदद कर रहा था, कहां पर ये एनकाउंटर हुआ?
1: 19 सितंबर को जिस तरीके से ये नाबालिग छात्र और छात्रा के साथ बदसलूकी और एक तरीके से कहें तो यौन उत्पीड़न का जो पूरा वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से लगातार जो है वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। और कल 3 आरोपी जो नाबालिग थे उनको तो गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो मुख्य आरोपी था जिसने नकाब से अपना चेहरा ढका हुआ था, जो तस्वीरों में दिख रहा है वायरल वीडियो में, नंदन यादव उसका नाम बताया जा रहा है। तो नंदन यादव और उसका एक और साथी बताया जा रहा है कि यही दोनों जो है।
0: ठीक है रोहित, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। शशि भूषण भी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए। शशि भूषण, एक को गोली लगी है, एक का बताया जा रहा पैर टूट गया है, लेकिन और डिटेल जानकारी दीजिए किन परिस्थितियों में तमाम चीजें हो रही है और अभी और भी इसमें आरोपी हैं जिनको ढूंढा जा रहा है।
2: बिल्कुल, और भी आरोपी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख आरोपियों के तौर पे नंदन यादव और हरिराम यादव, इन दोनों की पहचान पुलिस ने की थी राजीव। और जैसा हम थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि नंदन यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रात भर छापेमारी करती रही। SIT की जो टीम बनाई गई वो टीम लगातार लगी हुई थी कि कैसे नंदन यादव की गिरफ्तारी की जाए। और जो जानकारी सामने आ रही है, नंदन यादव की पुलिस से जो मुठभेड़ हुई है उसमें उसने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई हैं और उसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और उसी दौरान उसके पैर में गोली लगने की खबर है। लेकिन हरिराम यादव जो दूसरा आरोपी है, उस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उसके भी पैर टूटने की सूचना है। अभी थोड़ी देर में हो सकता है डिटेल जो है वो पूरी जानकारी सामने आ जाए, लेकिन हाँ माफ कीजिएगा, इस वक्त जो हम बता रहे हैं आपको उसमें नंदन यादव, जिसकी तस्वीर भी हमारे पास आ गई है, वो तस्वीर हम साझा कर रहे हैं, वो तस्वीर भी आप दिखा सकते हैं। वो नंदन यादव इस वक्त जो है वो
0: आप उसको अस्पताल फोन पर भी दिखा सकते हैं अगर आपके पास है, उसकी तस्वीर पूरे देश को देखनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास फोन में है तो तस्वीर भी दिखा दें आप साथ साथ।
2: बिल्कुल, देखिए मैं कैमरा जूम करके कहूंगा नदीम को थोड़ा दिखाएं इस पे। ये नंदन यादव है जिसका एनकाउंटर पुलिस ने किया है। फिलहाल इसकी स्थिति क्या है इसको लेकर के बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं उसके मुताबिक पुलिस एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी है और पुलिस इसको लेकर के जमुई सदर अस्पताल गई है एनकाउंटर जो है उस पूरी घटना के बाद। तो ये अपने आप में यही वो शख्स है जिसकी तस्वीर सामने अब आ चुकी है और जो नंदन यादव है यही मुख्य आरोपी रहा इस पूरे घटनाक्रम का। पीड़िता क्या जिस तरह इसने उसके शरीर के साथ जो बर्ताव किया, जो वायरल वीडियो में जो तस्वीरें हम देख नहीं सकते हैं, वीडियो देखना भी संभव नहीं है, उसमें ये जिस तरह का एक कुकृत कर रहा था, अब वो पुलिस एनकाउंटर के बाद अब पुलिस उसको इलाज के लिए ले गई है। जो जानकारी
0: इलाज तो इनका हर तरीके से होना ही चाहिए। शशि भूषण सर, एक बार जो तस्वीर आप दिखा रहे थे, हमने इस बार तस्वीर समय स्क्रीन पर लगा दी है, आप देखिए इसके माथे पर कितना बड़ा टीका है, मतलब ये अपने आप को कितना बड़ा भक्त दिखाता होगा, कितना बड़ा धर्म का पालन करने वाला ये अपने आप को दिखाते, देखिए माथे पर कितना बड़ा टीका है। लेकिन जो इसकी हरकतें हैं वो राक्षस से कम नहीं है, गिद्ध, आप मतलब अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं शख्स के लिए। आप देखिए इसका चेहरा देखिए, आप ये उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या कर रहा था वो सबके समक्ष है। वो वीडियो देखना मतलब देखा नहीं जा रहा उस वीडियो को, मतलब ऐसी इन लोगों ने उसमें हरकत की है और ऐसी न जाने कितनी घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं। किसी के पास कोई डेटा नहीं, कोई विजुअल, कोई तस्वीरें नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र ही बताया जो है ऐसा है। हमारे साथ शशि भूषण है। शशि भूषण, एनकाउंटर हो गए, तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या बैकग्राउंड भी इसका इसी तरह का आपराधिक है या पहली बार ही पकड़े गए हैं?
2: देखिए, पहली बात तो ये बता दूं आपको राजीव, दर्शकों को भी, कि बिहार पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पे इसकी जानकारी दी गई है कि दो आरोपियों को दबोचा है पुलिस ने, गिरफ्तारी हुई है, जिसमें नंदन यादव और हरिराम यादव दोनों के नाम की एक तरह से पुष्टि भी हो गई है। थोड़ी देर में जमुई पुलिस, हो सकता है जब ये पूरा घटनाक्रम थमेगा तो उसकी आधिकारिक जानकारी देगी, हो सकता है प्रेस ब्रीफिंग भी करेगी। रही बात नंदन यादव के बैकग्राउंड की, तो एक बहुत अहम जानकारी हम साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ। बालू का जो कारोबार होता है, बालू खनन का जो कारोबार होता है, उससे ये जुड़ा हुआ बताया जाता है। मतलब

0: समझिए, बिहार के अंदर अगर माफिया शब्द का इस्तेमाल होता है तो दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अलग अलग सेक्टर्स में सिंडिकेट या माफिया काम करता है। उसमें बालू माफिया की चर्चा होती है हमेशा, चाहे बिहार सरकार के मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या फिर दूसरे अधिकारी हों, वो इसकी चर्चा करते हैं। बार बार हमने बड़े बड़े जो नेटवर्क और सिंडिकेट के लोग हैं, जो आपराधिक बैकग्राउंड में कनेक्ट रहते हैं, उनमें बालू माफिया से जुड़े लोगों का नाम आता है। तो ये अगर शख्स बालू के कारोबार से जुड़ा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि इसका बैकग्राउंड कैसा रहा होगा। और सबसे हम बात जमुई का जो पूरा इलाका है, वहां बड़े पैमाने पे खनन का काम होता है। आप देखिए बांका की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे पत्थर का खनन होता है वहां पे। आप अगर जमुई की तरफ जाएंगे तो वहां घाट पे बालू का खनन होता
1: अगर
0: है।
1: बालू खनन तो में लिप्त है तो बिना पॉलिटिकल शेयर के वो भी संभव नहीं होता है। बहुत शुक्रिया शशि भूषण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करेंगे योगी का चुनावी यज्ञ।

0: और अब यूपी के चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी में कांग्रेस ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए नए कानून का प्रस्ताव वो करने जा रहे हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि यूपी में भी कांग्रेस बिल्कुल बिहार की तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के चेयरमैन अनिल जयहिंद ने यूपी में ऐसे कानून का प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी को भेजा है। इसमें SC ST एक्ट की तर्ज पर कांग्रेस EBC अत्याचार निवारण कानून बनाने का वादा करेगी। जो प्रस्ताव कांग्रेस के पास इस समय विचाराधीन है उसमें पार्टी अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम लाने का वादा कर सकती है। इसमें आबादी के अनुपात में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग, 25 करोड़ तक सरकारी ठेकों में ओबीसी और EBC के लिए 50% आरक्षण का प्रस्ताव, भूमिहीन अति पिछड़े परिवारों को आवासीय जमीन उपलब्ध कराने का इसमें वादा, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के प्रस्ताव को विधानसभा से पारित करके फिर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र को भेजने का वादा भी किया जा सकता है। तो ये वादे हैं, आपको बता दें। और हमारे संवाददाता राहुल गौतम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अब राहुल, ये प्रस्ताव ये किस स्तर पर, किस लेवल पर है और क्या समाजवादी पार्टी की इसमें सहमति है?
1: देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का निजी फैसला है और ये जो प्रपोजल है इसको भेजा गया है आलाकमान को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, और उसमें ये उनसे आग्रह किया गया है अगर कि उनकी मंजूरी हो तो हम इसको मैनिफेस्टो के अंदर शामिल करना चाहते हैं, ताकि एक जो बड़ा तबका है, खास तौर पर वो ओबीसी जिनके पास जमीन नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ओबीसी डिपार्टमेंट है उसका ये मानना है कि उनको जरूरत है प्रोटेक्शन की, एम्पावरमेंट की, और इसीलिए जिस प्रकार से पिछले हालिया दिनों के अंदर कुछ घटनाएं घटी जिनमें जो ओबीसी समाज की जो कमजोर जातियां हैं उनका उनके साथ में घटनाएं घटी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक बड़ा तबका है जिसको हम केटर कर सकते हैं या फिर उनकी तरफ अपील की जा सकती है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि
0: यूपी में अगड़ी जाति से अजय राय आते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित नेता राजेंद्र पाल जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, अब ईबीसी के लिए नए कानून का प्रस्ताव, तो क्या कांग्रेस सब कुछ साधने के चक्कर में फंसेगी तो नहीं?
1: देखिए, एक कहावत होती है जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी भी कोशिश करेगी कि सबको साथ में लेकर आए, लेकिन ये मैसेज भी दिया जाए कि हम सबके साथ खड़े भी हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अगड़ी जाति से आते हैं, जो प्रभारी हैं वो दलित जाति से आते हैं, इसके अलावा जो नॉन यादव ओबीसीज हैं उनको साधने की कोशिश है इस ईबीसी कार्ड के थ्रू, क्योंकि यही इसी तरीके से बिहार के अंदर भी कोशिश की गई थी कि जो अन्य जातियां हैं यादव को छोड़कर या जाट कम्युनिटी को छोड़कर जो प्रमुख जातियां हैं उनको छोड़कर जो छोटी छोटी जातियां हैं ओबीसी की उनको साधा जाए और उनको अपने पाले में किया जाए, तो जाहिर है ये बड़ा कोशिश है उस पूरे वोट बैंक को साधने की,
0: बड़ा मूव तो है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका जानकारी के लिए। लेकिन आपको याद दिलाते हैं कि बिहार चुनाव से पहले 24 सितंबर 2025 को पटना के एक बड़े होटल में राहुल गांधी ने बिल्कुल इसी तरह के कानून का वादा किया था, हालांकि चुनाव में उसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ और पहले जो 19 सीटें थी भी वो घटकर 6 पर सिमट गई थी। तो यूपी के चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा रोजगार भी है। स्कूल कॉलेज शिक्षा परीक्षा पेपर लीक युवा रोजगार जैसे मुद्दों पर योगी सरकार चुनाव से पहले पूरा ध्यान दे रही है और इसी कड़ी में हर हफ्ते सरकारी नौकरी बांटने का सीएम योगी का प्लान भी है। आज फिर से मुख्यमंत्री ने 3,500 से ज्यादा सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे हैं।

0: सीएम योगी की ये सेल्फी देखिए और इसका टारगेट समझिए। यूपी पुलिस के पुलिस उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और सहायक उपनिरीक्षक लेखा के 912 पदों के लिए नियुक्ति पत्र देने के बाद सीएम योगी ने जो सेल्फी ली है वो बीजेपी के यूथ कनेक्ट को बताती है। और युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे नौकरी को लेकर योगी सरकार ने जो मेगा प्लान बनाया है वो सिलसिला अब जारी है। सीएम योगी ने यूपी के युवाओं को हर हफ्ते सरकारी नौकरी बांटने का जो ऐलान किया है उसी चरण में शिक्षा विभाग में नौकरियां दी गई हैं। सीएम योगी ने शिक्षा विभाग में कुल 3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जिसमें सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पदों पर भर्तियां हुई है।
1: मुझे तो बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 3,567 को तो हम नियुक्ति पत्र आज दे रहे हैं और मैं पिछले एक सप्ताह के अंदर ये 5,297 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर चुका हूं। पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 9.5 लाख युवाओं को ये नियुक्ति पत्र उससे पहले वितरित किया है।
0: एक तरफ सीएम योगी पिछले 9 साल में 9.5 लाख सरकारी नौकरियों समेत 4 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ यूपी के कुछ युवा आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रयागराज में रामनामी ओढ़कर प्रदर्शन कर रहे ये युवा टीजीटी पीजीटी में पुरानी नियमावली लागू करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: तो युवाओं के मुद्दों पर सिर्फ नौकरी रोजगार ही नहीं बल्कि स्कूली शिक्षा की भी चुनावी चर्चा जोर पर है और मुख्यमंत्री योगी ने इस मुद्दे पर ध्यान भी पूरा दिया है। अब खबर यह है कि यूपी के जेन एल्फा के लिए अब हर महीने ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग हो रहे हैं। इसमें हर चौथे शनिवार को बीओ प्रधानाध्यापकों के साथ समीक्षा करेंगे। इस बैठक में निपुण भारत मिशन, प्री प्राइमरी शिक्षा, डिजिटल संसाधन, पीएम पोषण, ऑपरेशन कायाकल्प, बालिका शिक्षा, समावेशी शिक्षा, नामांकन उपस्थिति और वित्तीय प्रगति की समीक्षा होगी। क्लासरूम की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के लिए बनी हुई योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग होगी, शैक्षिक कैलेंडर, मासिक पाठ्यक्रम की प्रगति परखी जाएगी और हर एक बैठक में 2 प्रधानाध्यापक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड साझा करेंगे। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के नामांकन और उपस्थिति पर भी विशेष निगरानी होगी। स्मार्ट क्लासेस, इसके साथ साथ आईसीटी लैब और डिजिटल पुस्तकालय के प्रभावी उपयोग की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा तमाम योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और उनकी रिपोर्ट भी अपडेट लगातार की जाती रहेगी। और जेन जी के मुद्दों की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि यूपी में जेन जी से कनेक्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसमें ऐप के जरिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सदस्यता दिलाई जा रही है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलाया जाएगा जिसमें जिम्मेदारी नीले रंग बिरंगी समाजवादी छात्र सभा को सौंपी गई है। समाजवादी पार्टी के दूसरे संगठन भी इस अभियान में सहयोग करेंगे। इस अभियान के जरिए फीस बढ़ोतरी, छात्र संघ बहाली, आरक्षण, रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
3: इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में है जहां ये अभियान, इसकी शुरुआत हो चुकी। 30 सितंबर तक ये 15 दिवसीय अभियान चल रहा है जहां एक ऐप के जरिए सदस्यता दिलाई जा रही है और बातें कही जा रही है। इसका नाम है पीडीए जागरूकता अभियान, जहां पर नौजवानों को और छात्रों को पार्टी से जोड़ने की कवायद चल रही है। आप देखेंगे तो यहां पर कई जो छात्र सभा के सदस्य हैं, इस तरह की जो ड्रेस इनको मिली थी, आपको दिखा देते हैं एक बार। ये इस तरह की जो पहले आपने देखा होगा, इनकी लाल रंग की ड्रेस थी, अब ये ड्रेस हो चुकी है नीले रंग की। इसमें लिखा है शिक्षा रचनात्मक संघर्ष समाजवादी छात्र सभा और यहाँ पर कुछ बुक्स हैं और SCS जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है, साइकिल यानी कि समाजवादी पार्टी का सिंबल, और सर पे इनके देखिए एक लाल टोपी है, समाजवादी पार्टी 92। यानी क्या कर रहे हैं इस वक्त आप लोग, किस तरीके से अभियान चला रहे हैं, अपना परिचय दीजिए और बताइए।
4: मेरा नाम विनीत कुशवाहा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा का। ये पिछले 15 सितम्बर से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा की तरफ से छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान शुरू हुआ है जिसमें हम 15 तारीख से लेके और 22 तारीख तक आज आखिरी डेट है सदस्यता अभियान का। पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया है जिसके तहत आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय में सदस्यता
3: कर रहे हैं। दिखाइए मुझे ऐसे क्या है इसमें, ऐप
4: है पार्टी का,
3: आप दिखाइए।
4: ये ऐप है जिसमें हम स्टूडेंट का नाम पता करते हैं, नाम पता करने के बाद उसकी विधानसभा हम पता कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट यहाँ जुड़ता है तो ये हमारे उस विधानसभा में भी हमसे जुड़ जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमें लगता है कि प्रत्येक जिले में 1500 से 2000 स्टूडेंट अभी जुड़ चुके हैं।
3: खाली लखनऊ यूनिवर्सिटी की कहानी है या तमाम जगह आप लोग जा रहे हैं?
4: पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हमारे पास बहुत मतलब स्टूडेंट जुड़ चुके हैं समाजवादी में, और 10,000 से तो ऊपर हमें लगता है कि 10-15,000 से ऊपर स्टूडेंट ऐसे जुड़ चुके हैं जो ऐप द्वारा जुड़ चुके हैं, बाकी ऐसे जो फॉर्म हमारे पास
3: करें। ये उससे हर दल ही समझ गया है कि युवा शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो अगर वोटिंग में वोटर में के रूप में तब्दील हुई तो शायद चुनाव के नतीजों में फेरबदल कर सकती है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: यूपी में चुनावी सियासत की धुरी इन दिनों पश्चिमी यूपी के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी नेतृत्व 2 दिनों से पश्चिमी यूपी के तार सुलझाने में लगा हुआ है, तो गठबंधन इंडिया में गठबंधन से पहले कांग्रेस की बेकरारी बढ़ती जा रही है। राहुल अखिलेश तो खामोश हैं, लेकिन उनके नेताओं के बीच में बयान युद्ध चल रहा है।
5: सियावर रामचंद्र भगवान के
6: दो दिनों से बीजेपी नेतृत्व पश्चिम यूपी में पार्टी के खम पेच दुरुस्त कर रही है, 2027 के रण के लिए मोर्चे सजा रही है, और जिसकी पिच पर यह तैयारी हो रही है वहां सामने खड़ी कांग्रेस बेकरार हो रही है, क्योंकि अखिलेश ने उनके रास्ते क्लियर नहीं किए हैं। यूपी कांग्रेस में इसे लेकर बेचैनी, बेकरारी और अब नाराजगी इस कदर बढ़ती जा रही है कि अखिलेश यादव का नाम सुनते इमरान मसूद जैसे नेता फट पड़ते हैं।
7: अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है, अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं।
6: जिस सहारनपुर में बीजेपी जमीनी स्तर पर शक्ति केंद्रों से लेकर पन्ना प्रमुखों तक पहुंच रही है, 2027 के महासंग्राम के मंत्र दिए जा रहे हैं। जाट, ओबीसी, दलित और शहरी मतदाताओं को साधने के तमाम नुस्खे अपना रही है। कार्यकर्ताओं के घर भोजन से लेकर रविदास मंदिर में दर्शन तक की गतिविधि से सहारनपुर में कांग्रेस असहज हो रही है, क्योंकि उसे अपनी तैयारी का मौका नहीं मिल रहा है। इमरान मसूद की बेचैनी और नाराजगी की बड़ी वजह यही है, और अब तो वो अखिलेश को चेतावनी तक दे डाल रहे हैं।
7: कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है, कहीं भी पूरे देश में नहीं है, तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है, इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है, और कांग्रेस ही लड़ सकती है, राहुल गांधी का नेतृत्व इनसे पार पा सकता है।
8: बिल्कुल ही बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है, कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी।
6: दरअसल इमरान पहली बार आवाज नहीं उठा रहे, इनके खिलाफ अक्सर समाजवादी पार्टी बयान नहीं देती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर के पास की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी इकरा हसन को आगे कर दिया है। इमरान मसूद की बेचैनी की एक और वजह समझिए। इमरान मसूद सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन इस लोकसभा के दायरे में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पास एक भी विधानसभा सीट नहीं है। सहारनपुर शहर, देवबंद और रामपुर मनिहारन पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि बेहट और सहारनपुर देहात पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की चुनावी तैयारी कहां फंसी है, और अब ये भी साफ हो रहा है कि सीट बंटवारे पर कांग्रेस और राहुल जल्द से जल्द बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश ने फिलहाल ब्रेक लगा रखा है।
7: कह रहा हूं इसे तुरंत फाइनल करिए, कौन टच में मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं है, जो भी होना है फाइनल करिए, अगर फाइनल नहीं होगा तो उसका नुकसान जमीन पर हो रहा है ना।
8: गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए भी।
6: इस बीच ओएसी फैक्टर भी कांग्रेस की बेचैनी को बढ़ाने के लिए काफी है। हालांकि अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही साफ कर दिया है कि यूपी में गठबंधन उन्हीं से होगा जिनसे पिछले चुनाव में गठबंधन था। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
2: और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: पानी के बिना जिंदगी कैसी होगी, क्या कभी सोचा है? इसी देश में ऐसे गांव भी हैं जहां पानी भरने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज उसी गांव में बस टोटे घुमाइए और पानी बहने लगता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आजादी के 79 साल बाद लहुरिया द में हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंच चुका है। विंध्य की पहाड़ियों पर बसे करीब 1500 लोगों का ये गांव कभी पानी के लिए जंगल और पहाड़ नापता था, कभी रात रात भर लाइन लगानी पड़ती थी।
12: जेकर दिन करा तो दिन कर ढोले ना, रात भर झिन्ना में पावली भाई टोटी आज तब लगन पावे लागन झिन्ना में बसे डारी।
11: गर्मी में हालात इतने खराब हो जाते थे कि टैंकर से हर परिवार को सिर्फ 15 लीटर पानी मिलता था, लेकिन जल जीवन मिशन की हर घर नल योजना के तहत 31 अगस्त 2023 को पहली बार इस गांव में नल से पानी पहुंचा।
13: हम लोग पानी के दरी जाते हैं, झिन्ना जाते हैं, फिर वैसे उड़ जाते हैं, ले आते तो पीते हैं। 3 साल से पानी आवा थी, अब घर टोटी चालू को भरी थी।
11: पानी पहुंचने से सबसे ज्यादा राहत गांव की महिलाओं को मिली। क्षमा देवी बताती हैं कि
13: अब हो गया सही है, पानी वानी आ रहा है ना।
11: दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के गांवों में सबसे ज्यादा नल कनेक्शन लगाए गए। मार्च 2025 तक यूपी में 2,36,00,000 से ज्यादा घरों तक नल वाला पानी पहुंच चुका है। राज्य भर में करीब 5,07,479 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। जो गांव कभी प्यास की पहचान था, आज वहां हर घर में पानी की आवाज सुनाई देती है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, माँ ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है, अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है। कितना गहरा उस परिवार का दुख होगा। पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता।
3: IIT बॉम्बे पवई को राजनीतिक अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है। उस IIT पवई के डायरेक्टर पर क्या बीत रही होगी जिसका इस्तीफा आप ले रहे हैं। दोनों विषयों को गंभीरता से समझिए। बच्चे की मृत्यु का सभी को दुख है, संवेदना है। उसने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, इसकी जांच होनी चाहिए। SIT बैठे, क्राइम ब्रांच आए, पुलिस आए, इसकी एक निष्पक्ष जांच भी हो। साथ ही साथ नकल को भी तो रोकना शिक्षक का ही काम है, मैनेजमेंट का ही काम है।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय फॉरेन सेक्रेटरी गुंडेविया एंड आई कोट दोज वर्ड्स द डेंजर टू इंडिया Mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism.
2: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था। और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए हैं।

0: जमुई दरिंदगी मामले में घिरी सम्राट चौधरी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी नंदन यादव गिरफ्तार। दबिश दौरान पुलिस पर चलाई थी गोली। दूसरा आरोपी भी अरेस्ट। दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से रेप केस में एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। दो और लोगों को पुलिस ने पकड़ा। सदर बाजार इलाके में बच्ची से दरिंदगी के बाद फूटा आक्रोश। आईटी बॉम्बे खुदकुशी मामले की जांच तेज। क्राइम ब्रांच ने खंगाली परीक्षा हॉल से हॉस्टल तक की सीसीटीवी फुटेज। सुसाइड मामले में आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में आई आईआईटी दिल्ली और मद्रास फैकल्टी। लखनऊ में सीएम योगी ने 3,500 माध्यमिक स्कूलों में टीचर के 3,500 पदों पर बांटा नियुक्ति पत्र। अखिलेश पर निशाना। कहा सैफई सिंडिकेट अब डकैती नहीं डाल सकता। ड्यूटी ऑफ होने के बाद वर्दी में ना रहने के कथित फरमान से विपक्ष के निशाने पर आई पंजाब सरकार। कांग्रेस और अकाली दल ने भगवान मान को घेरा। पंजाब पुलिस ने कहा ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं भेजी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ मैं नेहा बाथम शुरुआत कर रहे हैं नॉनस्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जमुई बदसलूकी मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी नंदन मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। जमुई की शर्मनाक घटना पर सियासी संग्राम, तेजस्वी ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में गुंडा राज पूरी तरह कायम हो चुका है। जमुई मामले पर बिहार सरकार का बचाव करते नजर आए मंत्री श्रवण कुमार का, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, सरकार की नजर है, दोषी बच नहीं पाएंगे। जमुई की घटना पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, आरोपियों पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए उठाए सवाल, पूछा सार्वजनिक सड़क पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। आईआईटी दिल्ली फैकल्टी फोरम का आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर दुल्ला को समर्थन, कहा बिना सबूत आरोप लगाकर प्रोफेसर की छवि खराब करने की कोशिश। आईआईटी बॉम्बे विवादों पर आईआईटी दिल्ली फैकल्टी फोरम का बयान, शिक्षकों और शैक्षणिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने की कही बात। आईआईटी बॉम्बे में छात्रों के दबाव के आगे झुका प्रशासन, बीते सोमवार को प्रोफेसर दुल्ला को डीन पद से हटा दिया। प्रोफेसर दुल्ला को सिर्फ डीन पद से हटाने पर भड़के छात्र, प्रोफेसर पद से तत्काल सस्पेंशन की मांग। आईटी बॉम्बे में सुसाइड रोकने की कवायद तेज, हॉस्टल में सीलिंग फैन की जगह लगेंगे वॉल माउंटेड फैंस। यूपी एक्सप्रेस की शुरुआत, योगी सरकार ने नौकरी महाकुंभ से की, सीएम योगी ने 3567 चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक को मिले नियुक्ति पत्र। नौकरी महाकुंभ में सीएम योगी का संबोधन, भारत को बताया विश्व गुरु, जीवन में शिक्षा की भूमिका को बताया अहम, राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील। सीएम योगी का बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर हमला, बोले अब सीएफआई सिंडिकेट कहीं डाका नहीं मार सकता, नकल माफियाओं की कसी जा रही है नकेल। नितिन नवीन आज यूपी दौरे पर, सहारनपुर में कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक। मुजफ्फरनगर में नितिन नवीन का बड़ा दावा, 2027 होने वाला है बीजेपी का आगाज, पार्टी की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं ने भरा जोश। पूर्व सांसदों, विधायकों और संगठन के बड़े पदाधिकारियों से लिए फीडबैक, बूथ मैनेजमेंट, सदस्यता अभियान और आगामी कार्यक्रम पर होगी चर्चा। नितिन नवीन के पदाधिकारियों संग बैठकें, किसान मुद्दों और जाट मुस्लिम समीकरण के बीच संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने खोला गठबंधन का दरवाजा, 2 अक्टूबर तक ऐलान का दावा। ओवैसी बोले जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। ओवैसी का विपक्ष को ऑफर, बोले बीजेपी को रोकने के लिए अकेले कोई पार्टी काफी नहीं है, जो बीजेपी को सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं हमसे बात करें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में हलचल तेज, बीजेपी को हराने की रणनीति पर नेताओं के बीच नसीतों का दौर जारी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का अखिलेश पर निशाना, बोले अखिलेश की सक्रियता मायने नहीं रखती, बीजेपी से लड़ाई कांग्रेस के बिना नहीं हो सकती। इमरान मसूद के बयान पर इकरा हसन का पलटवार, अखिलेश को बताया बीजेपी को हराने का चेहरा, यूपी में बीजेपी को सिर्फ अखिलेश यादव ही हरा सकते हैं। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन का कांग्रेस पर हमला, बोली कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, गठबंधन नहीं रहा तो नुकसान कांग्रेस का होगा। अजय राय का केजरीवाल पर हमला, बोले शराब नीति विवाद में घिरे लोग ड्रग्स पर बात कर रहे हैं, केजरीवाल ने दिल्ली में शराब कारोबार को बढ़ावा दिया। राम मंदिर दान मामले में एसआईटी रिपोर्ट, एससी ने रिकॉर्ड पर ली, 25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल होगी। राम मंदिर दान मामले में एसआईटी की जांच में 105 बार रकम निकालने की कोशिश, 86 कीमती वस्तुएं बिना रसीद मिली। यूपी विधानसभा 2027 चुनाव की तैयारियों में जुटा विपक्ष, पीडीए रथ को लेकर के रंग को लेकर मायावती का हमला, कहा सपा के पीडीए रथ में लाल कम, बीजेपी आरएसएस का भगवा रंग ज्यादा। मायावती के भगवाकरण वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले सावन के अंधों को हरा ही दिखता है। यूपी 2027 के लिए एसपी की चुनावी रणनीति, 403 सीटों पर 27,000 वोट बढ़ाने का अखिलेश का लक्ष्य, कम अंतर से आ रही सीटों पर होगा फोकस। नशे के खिलाफ अमित शाह का बड़ा एक्शन प्लान, एएनटीएफ प्रमुखों के तीसरे राष्ट्र सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी के साथ नशे के खिलाफ बनेगी नई रणनीति, ड्रग तस्करी नेटवर्क को शिकंजा कसने की तैयारी। नशे के खिलाफ 3 साल का एक्शन प्लान, डार्कनेट क्रिप्टो से ड्रग तस्करी पर कसेगा शिकंजा, एनसीबी की नई वेबसाइट लॉन्च। नशे की मांग घटाने से नशा मुक्ति तक, एंटी नार्कोटिक्स मिशन पर बनेगी नई रणनीति। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र राज्य एजेंसियां होंगी और मजबूत, 8 तकनीकी सत्रों में तस्करी और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक की रणनीति पर मंथन। संगरूर में ड्रग्स को लेकर सियासी संग्राम तेज, ग्रामीणों के जहर खाने से गरमाई सियासत, कांग्रेस का आरोप, पंजाब पुलिस और आपका पूरा तंत्र ड्रग्स के खेल में शामिल।
ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा के जहर खाने पर बीजेपी का आप पर हमला। तरुण चुग बोले, सच बोलने वालों को मिटाना, क्या यही सही आप मॉडल है। संगरूर ड्रग्स कांड पर आपका पलटवार, विपक्ष पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप। संजय सिंह बोले, बीजेपी कांग्रेस और अकाली दल पंजाब को बदनाम करने के लिए झूठ फैला रहे। ड्रग्स के मुद्दे पर गिरी पंजाब सरकार, प्रताप बाजवा का भगवान मान पर सीधा हमला, कहा भगवान मान नशा रोकने में नाकाम, पंजाब पुलिस और आप तंत्र शामिल। 2027 से पहले पंजाब में ड्रग्स बना बड़ा सियासी मुद्दा, बीजेपी के तरुण चुग बोले, ड्रग माफिया को पंजाब के हर गांव और मोहल्ले से खत्म कर देंगे। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार की बड़ी मुश्किलें, मिलन प्रधान ने 5 मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है। नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस के प्रचार पर संकट, मिलन प्रधान 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में, 6 अक्टूबर को होगा मतदान। नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पर शिकंजा, हत्या समेत कई मामलों में गिरफ्तारी, 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े हैं ये मामले। टीएमसी के बागी सांसदों पर एक्शन की तैयारी, ओम बिरला के जवाब के लिए आज तक का दिया गया समय, सांसद सुदीप को अयोग्यता याचिका पर 22 सितंबर तक देना होगा जवाब। टीएमसी के बीच बागी सांसदों की सदस्यता पर तलवार, अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर से कार्रवाई तेज करने की उठाई मांग, अयोग्यता याचिका पर स्पीकर ने सांसदों को नोटिस दिया। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईज माई ट्रिप को फाउंडर निशांत पिट्टी आरोपी, ईडी का वैध रकम निवेश का आरोप। महादेव बेटिंग ऐप में ईडी का बड़ा एक्शन, निशांत पिट्टी के 59.6 करोड़ के शेयर जब्त, पहले भी हुई थी छापेमारी। तमिलनाडु में आज कामराजार ब्रेकफास्ट स्कीम का विस्तार, तिरुवनमयन मयूर में छात्रों संग नाश्ता करते नजर आए सीएम विजय। जयशंकर की ईयू समकक्षों से अहम मुलाकात, खाड़ी यूक्रेन और इंडो पैसिफिक पर चर्चा, भारत ईयू सहयोग के कई मुद्दों पर मंथन। यूएन महासभा के बीच जयशंकर की यूरोपीय देशों के बीच बैठक, खाड़ी यूक्रेन और इंडो पैसिफिक पर चर्चा। ग्रेटर नोएडा में युवती से छीना गया आईफोन 18 प्रो, 3 दिन पहले ही खरीदा था नया फोन। साबरकांठा में पदयात्रियों को बेकाबू स्कॉर्पियो ने रौंदा, एक श्रद्धालु की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल, गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो को फूंका। प्रतापगढ़ की कोतवाली के बाथरूम में 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पुलिस। तेलंगाना के आदिलाबाद के सरकारी अस्पताल में एसी फटने से 5 दिन की नवजात की मौत, वार्ड में मची अफरा तफरी।

0: और इस बीच बड़ी खबर जमुई बदसुलूकी मामले से जुड़ी हुई है। बिहार पुलिस इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है। मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी नंदन यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, इसमें नंदन यादव के पैर में गोली लगी है। इसके अलावा मुठभेड़ में दूसरा आरोपी हरेराम के पैर टूटने की खबर है। दोनों मुख्य आरोपी नंदन यादव हरेराम यादव जमुई के प्रतापपुर गांव के रहने वाले हैं और दोनों ही ट्रैक्टर चालक बताए जा रहे हैं। वही इस मामले में पुलिस पहले 3 नाबालिग को पकड़ चुकी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वीडियो में कुछ युवक स्कूली छात्र और छात्रा के साथ अभद्रता और छात्रा के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद से ही बिहार पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। शशि भूषण में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, पुलिस ने इन्हें कैसे चिन्हित किया कि कहां पर इनकी लोकेशन है, कैसे इनकी धरपकड़ संभव हुई?
1: नहीं, देखिए आधिकारिक तौर पे पुलिस ने भी कोई जानकारी दी नहीं है, लेकिन जो पहली जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पुलिस है वो लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान नंदन यादव और हरेराम यादव, शायद उसका नाम रामासीस भी है, उन दोनों को दबोचने में पुलिस सफल रही है। और नंदन यादव को पुलिस घटनास्थल पर लेकर के गई थी, इसी दौरान उसने फायरिंग की और जवाबी जो कार्रवाई पुलिस ने की है उसमें नंदन यादव के पैर में गोली लगी है। वो तस्वीरें भी आ गई हैं एनकाउंटर के तुरंत बाद की, और बाद में उसको जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया है, वहीं पर उसका इलाज कराया जा रहा है। उससे सवाल भी हुआ है उस पूरे घटनाक्रम को लेकर, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जमुई पुलिस के लिए बिहार की SIT जो गठित हुई थी बिहार पुलिस की, उसके लिए एक बड़ी सफलता है कि नंदन यादव जो मुख्य आरोपी रहा इस पूरे जमुई कांड का, वो दबोचा गया है। उसका हाफ एनकाउंटर कह सकते हैं क्योंकि पैर में गोली लगी है और इलाज जो है वो चल रहा है उसका नया।
0: इसके अलावा लंबे वक्त से कहा जा रहा था कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या ये एनकाउंटर के बिना भी संभव था?
1: देखिए, पुलिस की कोशिश ये थी कि किसी तरह से जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जो कानूनी प्रक्रिया है स्पीडी ट्रायल और बाकी प्रक्रिया के तहत जो केस दर्ज हुए हैं उसमें सजा दिलाई जाए। लेकिन जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है शुरुआती दौर में, उसके मुताबिक उसको जब घटनास्थल पे मौका वारदात पे लेकर के जा रही थी पुलिस, तो इसी दौरान उससे फायरिंग की। अब कैसे वो फायरिंग हुआ, किस हथियार का उसने इस्तेमाल किया, ये सब पुलिस बताएगी आगे। लेकिन हाँ, इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और उसमें उसके पैर के अंदर गोली लगी है, ये बात। दूसरी जो जानकारी है जिसमें हरेराम यादव को लेकर जानकारी है, उसमें ये कहा जा रहा है कि उसका पैर टूटा है। अब उसका पैर कैसे टूटा, क्या वो भाग रहा था पुलिस से बचने के लिए, कहीं से जंप कर रहा था, इसको लेकर भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। तो जो जमुई पुलिस या फिर बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी उस तक इंतजार करना होगा। नेहा,
0: इसके अलावा शशि भूषण, कई सवाल उठ रहे हैं। इनकी जो पेशा है वो ट्रैक्टर चालक बताया जा रहा है, ये उस दिन घटनास्थल पर क्या कर रहे थे, क्या इनकी मंशा थी जो अभद्रता की गई, क्या ये पहले से प्लान्ड थी, कोई और भी होता तो उसके साथ ये यही करते, क्या जानकारी इस बारे में मिल रही?
1: देखिए, डिटेल जानकारी तो जब पुलिस पूरी घटना को लेकर के इनसे पूछताछ करेगी तो मालूम पड़ेगा, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है नेहा, उसके मुताबिक जो नंदन यादव है वो बालू के कारोबार से जुड़ा हुआ है। कुछ जानकारी आ रही है कि एक ट्रैक्टर चालक के तौर पे काम करता था, बालू को ट्रैक्टर से ढोने का काम करता था। लेकिन हाँ, क्या ये महज संयोग था कि जब पीड़ित लड़के और लड़की वहां से गुजर रहे थे तो ये दूसरे लोगों के साथ वहां मौजूद था, या फिर इसने प्लान वे में वो पूरा काम किया, ये अपने आप में जांच का विषय है या इस थ्योरी को पुलिस समझने की कोशिश करेगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का जरूर है कि ये लोगों पर अपना दबाव प्रभाव या फिर इस तरह की घटना को अंजाम देने की प्रवृत्ति इसकी हो सकती है। पुलिस देखेगी कि क्या इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड पहले का रहा है, तो ये सारी चीजें अभी अब आगे छन करके आनी है। नेहा,
0: इसके अलावा ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों ने इसे शेयर रीशेयर किया है, उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। ये वीडियो दरअसल बनाया किसने और ये कैसे सोशल मीडिया तक पहुंचा जिसके बाद ये मामला संज्ञान में आया?
1: देखिए, जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक पुलिस को जो जानकारी हुई इस वीडियो या इस घटना को लेकर के, वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद हुई। खुद बिहार पुलिस ने कहा, बिहार की जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है KS अनुपम, उन्होंने कल कहा था कि 23 ऐसे सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं जहां से इस वीडियो को टेकडाउन कराने के लिए हमने नोटिस दिया है, वो प्रक्रिया में हम जुटे हैं। तो अब रही बात कि ये वीडियो बनाया किसने, मैं पहले भी बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि जिस जगह पे घटना हुई वहां कोई CCTV कैमरा लगा हुआ था या फिर पीड़ित इस स्थिति में थे कि वो इस खुद अपने साथ हो रहे इस बुरे बर्ताव का वीडियो बना पाते, इन आरोपियों का वीडियो बना पाते। इन्हीं आरोपियों ने इस पूरे कुकृत्य को करते वक्त वीडियो भी बनाया और वही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। 19 सितंबर के शाम 6:30 के आसपास की घटना है। जो पुलिस ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 6:25 से 6:30 के बीच जो मड़बा पहाड़ी का इलाका है वहां पर यह घटना घटी, एक ग्रामीण सड़क है वहां पे। अब उसके बाद यह वीडियो वायरल हुआ, 20 सितंबर की शाम से वायरल होना शुरू हुआ। संभव है कि आरोपियों में से किसी ने एक वीडियो को बनाया होगा, वो वीडियो किसी के दूसरे के पास शेयर हुआ होगा, उसने साझा किया होगा, फिर ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास शेयर होते होते वायरल हो गया सोशल मीडिया पे और यही वो वीडियो आधार बना इस पूरे घटनाक्रम में। पीड़ित लड़के और लड़की को शायद न्याय नहीं मिलता या फिर कोई जान भी नहीं पाता कि उनके साथ ऐसी घटना घटी है अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता। तो ये वीडियो वायरल होना उन आरोपियों के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुआ और उसी के आधार पे पुलिस ने 7 से 8 आरोपियों की शिनाख्त की। और अब देखिए, नंदन यादव जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसका हाफ एनकाउंटर हुआ है, जमुई सदर अस्पताल में उसको पुलिस इलाज के लिए करके पहुंची है।
0: 7 से 8 आरोपी आप बता रहे हैं, कुल कितने के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कुल कितने अभी तक फरार हैं?
1: नेहा देखिए, कल 3 गिरफ्तारियां हुई थी, तीनों नाबालिग थे, 17-18 साल की उम्र के आसपास के। आज 2 गिरफ्तारियों की बात सामने आ चुकी है, एक नंदन यादव जिसका यहाँ पे एनकाउंटर हुआ, दूसरा हरेराम उर्फ रामाशीष, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उसका पैर टूटा है, किन परिस्थितियों में टूटा है ये जानकारी नहीं है, लेकिन कुल 5 आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में है। मतलब ये मानिए कि 2 से 3 आरोपी अभी ऐसे हो सकते हैं जो पकड़ से बाहर हैं, लेकिन चूंकि मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है तो संभव है कि बाकी के भी आरोपी जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएं। नया
0: अभी पुलिस का इस बारे में कोई आधिकारिक बयान आएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी?
1: देखिए, उम्मीद तो की जा रही है, जब ऐसा कोई घटनाक्रम होता है, एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, मुठभेड़ के बाद थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि पुलिस भी अपने तौर पे तैयारी करती है, बताती है, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो इस वक्त पुलिस की है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिनको गोली लगे हैं, उनको कैसे ट्रीटमेंट दिलाया जाए। तो नंदन यादव को लेकर पुलिस इसीलिए पहुंची है सदर अस्पताल। अब पुलिस जब इन चीजों से थोड़ा फारिग होगी तो उसके बाद संभव है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जो जमुई के SP हैं वो ब्रीफिंग करेंगे और वो ब्रीफिंग में जो जानकारी है तो वो भी हम बताएंगे आपको जी।
0: इसके अलावा शशि भूषण, ये सवाल भी उठ रहा है कि जिन लोगों ने पीड़िता की पहचान छुपाए बिना इस वीडियो को सार्वजनिक किया, वायरल किया, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है?
1: देखिए, जिन एक बार अपना सवाल दोहराए नेहा।
0: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
2: जमुई पॉस्को केस का मुख्य आरोपी नंदन यादव आज पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दरमियान मुठभेड़ में पुलिस की गोली उसके पैर पे लगी और वो घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस केस के सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी है और जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए सघन जांच चल रही है, सघन छापेमारी चल रही है। बहुत जल्द सारे आरोपी कानून की गिरफ्त में होंगे। ऐसे जानवरों के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है और बिहार में तो अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। बड़ा स्पष्ट है, बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो।
0: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जितने भी गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं इस पूरे मामले में, क्या ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? क्या ये किसी पॉलिटिकल ग्रुप का इन्हें समर्थन हासिल है? क्या ये वहां पर जानबूझकर भेजे गए थे? क्या जानकारी?
1: देखिए, कनेक्शन का तार तो पुलिस जोड़ेगी नया, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि ये सभी उसी इलाके के। एक बात तो बहुत स्पष्ट है, जो मड़वा गांव है उसी से संबंध है। जो जमुई के एसपी हैं उनका अभी अभी वर्जन आया है, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। वो रिएक्शन भी जा चुका है, तो वो क्या करें ये भी देखना दिलचस्प होगा। जमुई के डीएम नवीन कुमार, उनका बयान आया है इस पूरे घटनाक्रम पे, और सदर अस्पताल खुद नवीन कुमार पहुंचे हैं वहां पे। तो पूरे जमुई जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ये कि कैसे इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। तो पुलिस भी लगातार इसीलिए छापेमारी कर रही थी। मैंने बताया आपको कि 400 से ज्यादा पुलिस बल कल रात भर जमुई के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करती रही। वहां पर पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं अलग अलग गांवों में छापेमारी करती रही, एसआईटी के टीम के लोग मौजूद रहे। तो वो तस्वीरें भी आई हैं जो पुलिस टीम ने एनकाउंटर किया नंदन यादव का, उस पुलिस टीम की तस्वीरें भी आई हैं एनकाउंटर के तुरंत बाद की। तो पुलिस की तत्परता लगातार बनी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर के। जिला प्रशासन की तरफ से खुद डीएम मॉनिटर कर रहे थे इस मामले को, क्योंकि किरकिरी तो हुई सरकार की। जो गुड गवर्नेंस के दावे होते हैं उसके बीच जो जमुई की घटना है, उस घटना ने पूरे बिहार को शर्मसार किया। तो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी प्रेशर था जिला प्रशासन पे। उन सब चीजों का असर ही है कि अब जो मुख्य आरोपी है वो उसका हाफ एनकाउंटर हो चुका है और वो सदर अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है।
0: ठीक है, और जिस अस्पताल में वो भर्ती है वहीं से हमारे सहयोगी राकेश कुमार की रिपोर्ट देखिए।
3: जमुई के सदर अस्पताल में आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की काफी भीड़ है, और भीड़ इसलिए बात को लेकर है कि पिछले दिनों जो जमुई में नाबालिग छात्र छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला उजागर हुआ था, राष्ट्रीय सुर्खियां बनी थी। उस मामले में जमुई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नंदन यादव और हरेराम यादव का हाफ इनकाउंटर किया है। ये पुलिस बीती रात से ही उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही थी, लेकिन आज सुबह कुंदर बराज के पास, लखीसराय जिले में कुंदर बराज के पास भागने के क्रम में नंदन मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी और हरेराम यादव का पैर टूटा है। अभी इमरजेंसी के कक्ष में दोनों का इलाज किया जा रहा है, किसी की इंट्री इसमें नहीं हो रही है। काफ़ी भीड़ है, सदर अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसी कक्ष के अंदर नंदन यादव और हरेराम यादव का इलाज चल रहा है। कि यही दो मुख्य आरोपी हैं जिनको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा था। लाल गमछे में जो आरोपी दिख रहे था वही नंदन यादव का, जो छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था। अभी इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से कतरा रही है। दोनों के बारे में ये बताया जा रहा है कि दोनों सदर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गाँव का रहने वाला है, और दोनों हरिनंदन और हरेराम यादव शराब माफिया और बालू की तस्करी से जुड़ा काम करता था। पुलिस को एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी सफलता मानी जाए कि दोनों का हाफ इनकाउंटर किया। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में अपना क्या बयान देती है। राकेश कुमार सिंह, आज तक जमुई।
0: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, 7 से 8 आरोपी इस पूरे मामले में, कितने इसमें से नाबालिग हैं?
1: जो 2-3 आरोपी कल गिरफ्तार हुए थे नेहा, वो नाबालिग बताए जा रहे हैं। उनकी उम्र 17-18 के आसपास बताई जा रही है। आज जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुई हैं ये दोनों नाबालिग नहीं है। नंदन यादव भी नाबालिग नहीं है और दूसरा जो हरेराम यादव वो भी नाबालिग नहीं है। तो 5 आरोपियों में से जो अभी तक की स्थिति है वो वही है, और जो तमाम दूसरे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जब होगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि क्या उसमें भी कोई नाबालिग है या फिर वो सभी वयस्क हैं। नया
0: एनएनजेपी के जमुई से सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अरुण जी, अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है क्या उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप?
4: देखिए, पुलिस ने कैसे जैसे ही कल संज्ञान में आया था उसको लेकर के पुलिस से स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर एफआईआर रजिस्टर किया, तीन आरोपियों को कल गिरफ्तार किया। आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार किया। पुलिस स्विफ्टली काम कर रही है, सरकार के साथ हम लोगों का ये एंडेवर है, हम लोगों का प्रयास है कि पुलिस ऐसी किसी भी घटना को तुरंत संज्ञान में लेकर के स्वतः कार्रवाई करे और लगातार पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से इसको सुनिश्चित कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। संतुष्ट या असंतुष्ट होने की बात नहीं है, जब तक समाज में अपराध है हम बढ़ाना चाहिए।
0: अरुण जी, ये पूरा मामला संज्ञान दरअसल इसलिए आया क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। ठीक है, फिर एसपी जमुई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्वजीत दयाल जी, अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है क्या ये एनकाउंटर दरअसल जरूरी था, इन्हें बिना एनकाउंटर के नहीं पकड़ा जा सका, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की?
5: नहीं, इनकाउंटर सिचुएशन जो आया उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। वो जो अपराधी था वो फायरिंग किया, उसके जवाब में अपने हाथ में लठार जो है पुलिस द्वारा गोली चलानी पड़ी।
0: सर, ये जो दोनों आरोपी आज पकड़े गए हैं कहां से इनकी इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे इन तक पहुंची पुलिस, इस बारे में कोई जानकारी देना चाहेंगे आप?
5: नहीं, ये जानकारी देना अभी उचित नहीं हुआ, जिसने कहाँ से सूचना मिली ये जानकारी देना उचित नहीं हुआ। बस आज सुबह हम लोगों को खबर मिली थी कि ये दोनों जो अपराधी हैं वो गांव के बगल में ही जो नदी है उसी के जंगल में छुपे हुए हैं, उसी पर हम लोगों ने घेराबंदी करके कार्रवाई की।
0: सर, कुल कितने आरोपी हैं इस मामले में, कितने को पकड़ लिया गया, अभी कितने फरार हैं?
5: जो मुख्य जो दो आरोपी थे जिन्हें आज जो है अरेस्ट किया गया है, और तीन जो वीडियो में जो फ्रेम में जो दिख रहे थे उस वीडियो में उन्हें कल ही उनको निरुद्ध किया गया था, इन सबों को पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
0: सर, ये जो वीडियो अब बिना विक्टिम की पहचान छुपाए सर्कुलेट हो रहे हैं, उन लोगों तक भी पुलिस पहुंच रही है कि किसने ये वीडियो सर्कुलेट किए?
5: ये भी हम लोगों ने ऐसे 120 जो URL के जो यूजर ID क्रिएटर्स हैं उन पर हम लोगों ने FIR दर्ज किया है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 23 में भी ये इलीगल है कि आप कोई नाबालिग का जो आप बिना पहचान को छुपाए उसके वीडियो को डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट, IT एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 120 ऐसे साइट पर हम लोगों ने FIR दर्ज किया है। और
0: सर, क्या पीड़िता ने कोई शिकायत, कोई FIR दर्ज कराई है?
5: नहीं, इसमें कल जो है पीड़िता के पिताजी के बयान पर ही ये कांड दर्ज हुआ था, अननोन पर कांड दर्ज हुआ था, फिर हम लोगों ने अनुसंधान के क्रम में।
0: ठीक है, अभियुक्तों की। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपको। और बड़ी खबर जापान में चल रहे एशियन गेम्स से जुड़ी हुई, जहां महिला क्रिकेट में भारत ने गोल्ड पदक अपने नाम कर लिया है। बड़ी उपलब्धि भारतीय महिला टीम ने हासिल की है, फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को मात देकर गोल्ड अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया था और इसी मुकाबले में स्थिति वंधारा ने 79 रन की पारी खेली, जबकि ऋषा घोष ने 49 और शेफाली वर्मा ने 48 रन बनाए। तो ये बड़ी उपलब्धि गोल्ड हासिल किया है महिला क्रिकेट टीम ने। स्मृति मंधाना के 79 रनों की पारी की बदौलत भारत इस मकाम तक पहुंच सका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि एशियन गेम्स में 2026 में भारत को पहला गोल्ड हासिल हो गया है, खाता खुल गया है गोल्ड के लिहाज से, और ये उपलब्धि भारतीय महिला टीम की वजह से। महिला क्रिकेट में ये गोल्ड मेडल हासिल हुआ है, जिसमें शेफाली वर्मा ने भी अहम 48 रन का योगदान दिया है, ऋचा घोष ने 49 रन बनाए हैं। ये फाइनल मुकाबला जिसमें भारत ने श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया था। गोल्ड पदक जिसका खाता खुल चुका है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बदौलत। पहला गोल्ड एशियन गेम्स में 2026 में भारत का ये पहला गोल्ड. अब क्रिकेट में महिला क्रिकेट में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है. हिंदुस्तान के लिए बड़ी उपलब्धि. अब से कुछ ही देर पहले ये डिफीट श्रीलंका की और इसके मुख्य किरदार स्मृति मंधाना, शिफाली वर्मा और साथ ही ऋचा घोष.

श्रीलंका को 147 रन से मात दे दी है टीम इंडिया ने। महिला क्रिकेट टीम ने अपना दबदबा दिखाया, 217 रन का लक्ष्य दिया जिसे श्रीलंकाई टीम हासिल नहीं कर पाई। स्मृति बंधाना ने 79 रन बनाए हैं जबकि ऋचा घोष ने 49 और शेफाली वर्मा ने 48 रन की पारी खेली है।

0: एशियन गेम्स में ये बड़ी उपलब्धि, गोल्ड हासिल कर लिया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। भारत को पहला गोल्ड हासिल हो गया है 2026 एशियन गेम्स में, जिसमें तीन अहम महिला किरदार इस पूरी जीत में दिखाई दे रही हैं, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और साथ ही स्मृति मंधाना। 79 रन की जबरदस्त पारी खेलते हुए इतना बड़ा स्कोर दिया, जिसे श्रीलंकाई टीम हासिल नहीं कर पाई। विक्रांत गुप्ता जुड़ गए हमारे साथ। विक्रांत, बहुत बड़ी जीत, गोल्ड भारत के नाम।
1: पहला गोल्ड मेडल है नेहा, इसलिए इसको सेलिब्रेट ज्यादा किया जाएगा, लेकिन क्रिकेट से आप इस चीज की उम्मीद रखते ही थे। आप न सिर्फ आज विमेंस गोल्ड आज भारत के पास आया है, मेंस गोल्ड भी इंडिया को ही मिलेगा। सो क्रिकेट में आप दो गोल्ड मेडल्स के लिए ही खेल रहे थे, लेकिन अगर आप देखें खास तौर से विमेंस क्रिकेट टीम, चूंकि आप वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं 50 ओवर में, एशिया में आपका कोई मुकाबला नहीं था। अब कुछ दिन पहले तो इंडिया एशिया कप भी जीत कर आया था, श्रीलंका को भी हराया था, और अगर आप 20 ओवर के एक फाइनल मुकाबले में मार्जिन देखें वो है 147 रन। मतलब अगर मैं क्रिकेट पेडिग्री के हिसाब से चलूं तो इंडिया को ना सिर्फ गोल्ड बल्कि सिल्वर और ब्रॉन्ज भी मिलना चाहिए था अगर इंडिया तीन टीमें करता, हालांकि इसमें एक ही टीम होती है, बट बड़ी कामयाबी हरमनप्रीत के लिए। खास बात यह है, आप इस टीम को देखें इंटरनेशनली भी और एशिया में भी, इंडिया के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। दीप्ति शर्मा है, शेफाली वर्मा है, श्रियंका पाटिल हैं, श्री चरनी है, तो ये स्पिन अटैक जो है ना वो सामने वाली टीमें खेल नहीं पाती, लेकिन ताकत सबसे बड़ी इस इंडियन टीम की इस एशियन गेम्स में रही है आपकी सलामी जोड़ी शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना। इनफैक्ट स्मृति मंधाना ने तो बड़े मैचों में अब रन बनाए ही हैं। शेफाली वर्मा का जो आज से 1.5-2 साल पहले वर्ल्ड कप की टीम में कमबैक हुआ था, तब से उठा के देख लें वो कंसिस्टेंसी जिसकी दरकार थी उस वक्त, वो कंसिस्टेंसी वापस आई है, और मेरे ख्याल से बिग मैच प्लेयर जिसे कहते हैं ना वो शेफाली वर्मा ही है।
0: हमारे साथ इस बीच वो तस्वीरें दिखा देते हैं जिसमें भारतीय टीम ने ये पदक हासिल किया है, गोल्ड मेडल भारत के नाम हुआ है। ये विजुअल्स उसी मैच के,
2: यूजिंग हर फीट एंड एफर्टलेसली हॉस्टिंग इट डाउन द ग्राउंड एंड दैट क्लियर्स द बाउंड्री।

0: not been her strength.
1: It's up in the air. And yet once more.
2: Thinking about it.
1: Leading edge. Sends Harshita packing.
3: विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं. विक्रांत, अगर बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो कौन कौन से वो बॉलर्स थे भारतीय महिला टीम में जिन्होंने अपना दबदबा दिखाया और उसकी वजह से ये विन पॉसिबल हुई?
4: दीप्ति शर्मा, मतलब शायद इस वक्त अगर आप देखें स्लो पिचेस पे उनके जैसा कोई गेंदबाज नहीं है. शेफाली वर्मा ऑलराउंडर के तौर पर शुरू में विकटें ही उन्होंने ली. श्री चरनी जो इस वक्त T20 में आपकी नंबर एक गेंदबाज हैं दुनिया में, और श्रियंका पाटिल. मैं मेडल्स टैली भी देख रहा हूं, हालांकि अपडेट नहीं हुई है अभी नेहा. इंडिया चूंकि पिछले साल 100 से ज्यादा मेडल्स, पिछली एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल थे और आप 100 से ज्यादा मेडल्स ही उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या इंडिया 20 गोल्ड मेडल ले पाएगा इस पर सबकी नजर रहेगी. इस वक्त मैं जो देख पा रहा हूं वो ये है, चूंकि इंडिया का ये पहला गोल्ड है तो इंडिया थोड़ी देर पहले 12वें नंबर पर था और शायद अब जो है इंडिया 7वें नंबर पर हो जाएगा. कोशिश इंडिया की ये रहती है कि एशियन गेम्स में क्या वो टॉप 3 या 4 या 5 में रह सकते हैं, क्योंकि अभी गोल्ड मेडल्स ना शुरुआत हुई है. अभी पहला गोल्ड आया है क्रिकेट में, जैसे मैंने कहा एक और गोल्ड आएगा, हॉकी के 2 गोल्ड मेडल्स आएंगे, ट्रैक एंड फील्ड में आपको गोल्ड मेडल्स मिलेंगे, वेट लिफ्टिंग में मिलेंगे, बैडमिंटन में कह नहीं सकता हूं क्योंकि एशिया में एक तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप जितना ही कॉम्पिटिशन होता है. तो शुरुआत हुई है, लेकिन मेन गोल जो है इंडिया का वो यही है कि आज पहला गोल्ड आया है और जल्दी इस तादाद को 1 से 10 और 10 से 20 तक लेकर जाया जाए.
3: आगे कौन से मैचेस हैं महिला क्रिकेट टीम के, क्या प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं और क्या एक और गोल्ड की उम्मीद हम कर सकते हैं?
4: क्रिकेट में तो आपको मेंस टीम श्रेयस अय्यर की टीम से भी गोल्ड मेडल वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप जानती हैं कि एशिया में भारत का क्या है कंपटीशन, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है. आई डोंट थिंक कि वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत मेंस में भी आएगी. सो क्रिकेट में 2 out of 2, हॉकी में मेरा मानना है 2 out of 2, वहां पे भी मेन और विमेन दोनों में आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए. उसके बाद ट्रैक एंड फील्ड में भी आप देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली नीरज चोपड़ा नहीं है वहां पे, जो श्रीलंका के जेवलिन थ्रोअर हैं वो मैं मानता हूं कि हॉट फेवरेट हैं गोल्ड मेडल के लिए. बट ट्रैक एंड फील्ड बाकी डिसिप्लिन में भी आपको मेडल मिलेंगे. बॉक्सिंग में आपका ठीक ठाक प्रॉस्पेक्ट है, वेट लिफ्टिंग में आपका प्रॉस्पेक्ट है, और जो एक गोल्डन गेम इंडिया के लिए है वो है शूटिंग. तो शूटिंग में भी आप इंडिया से कई गोल्ड मेडल्स और उम्मीद कर सकते हैं.
3: तो शूटिंग में अभी प्रॉस्पेक्ट्स बाकी हैं, कई और गोल्ड मेडल भारतीय टीम वहां पर हासिल कर सकती है. लेकिन ये जो पॉइंट्स टैली जिसमें आप दिखा रहे हैं कि रैंकिंग में भी अभी एक जंप आ गया है, ये जाहिर तौर पर काफी उत्साह बढ़ाता है अन्य टीम्स का भी. लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन अभी किन स्पोर्ट्स में रहा है भारतीय टीमों का, और आगे जो आपने बताया है कि अभी भी और गोल्ड आ सकते हैं भारतीय झोली में?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं. और देखिए अभी जैसे ना 4 सिल्वर थे इंडिया के, और जब आप कहते हैं ना सिल्वर जीता नहीं जाता, वो अक्सर कहते हैं कि आप गोल्ड हारते हैं तो आपको सिल्वर मिलता है. शूटिंग में आपने देखा आपको मेडल्स मिले हैं, बट अभी शूटिंग में आपको गोल्ड मेडल्स भी मिलेंगे. बाकी स्पोर्ट्स मैंने आपको बताया ही है, जो इंडिविजुअल हैं उसमें आप कई ऐसे खेल हैं जिसमें आप एशिया में आपको आपको टॉप बिलिंग जो है वो मिलती है. लेकिन मैं ये देखना चाहूँगा कि श्रेयस अय्यर की क्रिकेट टीम जो है वो क्या करती है, बिकॉज कहीं ना इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की राइवलरी जो एशिया कप में थी वो एशियन गेम्स में लेकर आई है. हालांकि इंडिया ने मेरे हिसाब से तो फुल फ्लेज्ड विमेंस और मेंस टीम उतारी है, वहां पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए. हॉकी में क्योंकि आप ओलंपिक्स में भाई आप 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, सो मेरे ख्याल से हॉकी में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया को दोनों गोल्ड मेडल मिलेंगे.
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो जापान में चल रहे एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है. बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी खबर आई है जिससे सबको झकझोर दिया है. दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक पार्क में गैंगरेप की वारदात हुई. 3 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, फिर छापेमारी कर 2 और आरोपियों को धर दबोचा. तो कालकाजी वाले मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. गैंगरेप का ये मामला है जो कालकाजी के एक पार्क में अंजाम दिया गया.
5: बीच दिल्ली एक नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी. अब पुलिस ने इस केस के आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. दिल्ली के कालकाजी

0: इलाके में हुई गैंग रेप की वारदात के एक आरोपी आसिफ को पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कुछ ही देर बाद केस के दो और आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। ये तस्वीरें एनकाउंटर स्थल की हैं, जहां आरोपी की बाइक गिरी दिख रही है। पास ही आरोपी की पिस्टल पड़ी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आखिर मौके पर क्या हुआ, कैसे गैंगरेप के आरोपी की तलाश के बीच मुठभेड़ शुरू हुई।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ, जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है, इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा, पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है, जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
0: बताया जा रहा है कि पीड़ित नाबालिग बीती शाम अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। पूजा के बाद दोनों आस्था कुंज पार्क गए, वहीं सभी आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे थे। मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने खुद को पुलिस वाला बताया, पुलिस की धौंस दिखाकर दोनों को धमकाया और फिर दरिंदगी को अंजाम दिया।
2: जो है आशीष, उसको एक पुलिस एनकाउंटर के तहत सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ा है। दो और लोगों के नाम सामने आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है।
0: केस के एक आरोपी की एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। केस के दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और दिल्ली की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग बच्ची से रेप से गुस्साए लोगों ने दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाने पर भारी हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने रेप के आरोपी और उसकी मां पर हमला बोल दिया।
4: यह आक्रोश दिल्ली के सदर बाजार में 11 साल की एक बच्ची के साथ हुए महापाप के खिलाफ है। राजधानी दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाने के बाहर सोमवार देर शाम बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए। भीड़ ने थाने में मौजूद रेप के आरोपी और उसकी मां पर हमला बोल दिया। आरोपी और उसकी मां को बचाने के लिए पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। रेप की वारदात 16 सितंबर की रात की है। जांच के मुताबिक क्लास 6 में पढ़ने वाली नाबालिग रात करीब 11 बजे स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी, तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया। इसके बाद उसने नाबालिग लड़की के हाथ पैर बांधे और उसका यौन उत्पीड़न किया।
5: मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ पर यह पूरा हादसा हुआ, और अगर आप देखेंगे पूरे इलाके को तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कंजस्टेड इलाका है, और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहां काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी आप देखें तो ये जो पूरी गली है, इसी गली में ये दूसरी दुकान जो है ये बताई जा रही है ये मकसूद की है, जहां वो टेलर का काम करता था। 16 तारीख की रात करीब 11 बजे के आसपास जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से नीचे उतरती है, स्टेशनरी जाती है, कॉपी पेंसिल लेने के लिए जाती है, लेकिन मकसूद जो कि उसे पहले से जानता था उसे अपनी दुकान में लाता है। आरोप यह है कि उसके हाथ पैर बांधता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है।
4: इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और डर है।
6: हमारे भी बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा है कि हम बाहर निकालें ना निकालें, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हमें फिकर महसूस हो गया, क्योंकि अब जब ऐसा इंसान नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा, शैतान जाग के अंदर, तो हर आदमी को डर लगेगा।
4: वारदात को लेकर स्थानीय लोग हैरान भी हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि 56 साल का मकसूद ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है।
7: आदमी सही था, लेकिन अब उसके अंदर शैतान जाग गया, क्या हुआ, आदमी तो सही था वो।
5: आप लोग आसपास रहते हैं, आपको पता होगा।
7: बिल्कुल, यही घर है हमारा पड़ोस में, और ये बच्ची जो है ये मेरी किराएदारी थी।
4: राजधानी दिल्ली की ये वारदात बेहद डराने वाली है क्या अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है अंशुल सिंह दिल्ली आज तक
3: वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक स्कूल में टीचर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया जहां पूर्व प्रेमी सऊद अंसारी ने टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें आरोपी टीचर को घसीट कर ले जाता दिख रहा है टीचर की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली

0: स्कूल का कैंपस है जहां एक और कुछ बच्चे खड़े दिख रहे हैं। इस बीच एक शख्स महिला को खींचता नजर आ रहा है। महिला हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, विरोध जताती है, लेकिन वो शख्स उसे धक्का मारते हुए आगे ले जाता है। ये तस्वीरें यूपी के लखीमपुर के एक स्कूल में हुई महिला टीचर निषाद फातिमा की हत्या से ठीक पहले की है, जहां आरोपी सऊद अंसारी पहले टीचर को जबरन कॉरिडोर में ले गया, फिर कुछ देर के विवाद के बाद महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, महिला टीचर की हत्या के बाद आरोपी सऊद अंसारी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। लखीमपुर में दिन दहाड़े जैसी वारदात हुई, उससे स्कूल परिसर में सनसनी फैल गई। स्कूल में मौजूद बच्चे दहशत में आ गए। जो बच्चे उस वक्त वहां मौजूद थे, उनकी बातों से डर और खौफ को साफ साफ महसूस किया जा सकता है।
1: चार गोलियां चली, फिर आवाज आई, मैं दौड़कर पीछे मुड़ा। सभी
2: यहाँ निशान में एक टीचर है, उसके अंदर आया और उसका यहाँ पर पूरा काट दिया है।
0: इस खौफनाक वारदात के बाद तफ्तीश जारी है। पुलिस तमाम फुटेज खंगाल कर जांच कर रही है, लेकिन उसे लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर आरोपी इतनी आसानी से स्कूल परिसर में कैसे पहुंच गया? आखिर उसे किसी ने रोका क्यों नहीं? जिस वक्त आरोपी महिला टीचर को घसीट कर ले जाता दिख रहा है, उस वीडियो में बच्चों के साथ दो महिलाएं भी नजर आ रही हैं। लेकिन हैरानी की बात ये कि आंखों के सामने हो रही इस हरकत पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
3: किसी तरह की कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया गया, ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी थी। यदि उसको डिटेन किया जाता गेट पर, तो शायद इस तरह की घटना एक टीचर के साथ न होती। निर्मम हत्या हुई उस लड़की की, उस लड़की की मैं चाचा हूं, इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे तो न्याय मिलना चाहिए। इस तरह के स्कूल अपने कमियों को छिपाने के लिए अभी तक किसी तरह का उन्होंने पुलिस में अन्य कार्रवाई नहीं की है।
0: उधर सुरक्षा को लेकर सवालों से घिरा स्कूल प्रबंधन सफाई दे रहा है। पुलिस की जांच के बीच पल्ला झाड़ने की कोशिश करता दिख रहा है।
4: पहले जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसे कर लेने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा वो तो कैमरा फुटेज में है ना। सारी व्यवस्था है यहाँ पे, यहाँ पे आईडी कार्ड देखकर ही बच्चों को दिया जाता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल स्कूल। अरे वही तो कह रहे हैं, आप लोग देखिए अभी जो चीज़ आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं कैसे हुआ, पहले देखिए जो चीज़। मेरे ख्याल से ये सवाल आप बेहतर होगा पुलिस से इसलिए पूछे क्योंकि अभी वो कैमरा फुटेज वो देख रहे हैं।
0: जानकारी के मुताबिक सऊद और महिला टीचर पहले रिश्ते में थे, लेकिन कुछ दिनों पहले दोनों अलग हो गए थे, जिसके बाद आरोपी ने ऐसा कदम उठाया कि पूरे इलाके में इस वारदात से सनसनी फैल गई। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।
5: और अब बात लखनऊ हिट एंड रन मामले की। इस पूरे मामले में जांच जैसे जैसे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं और आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। अब पुलिस ने इस केस से पीड़िता को धमकाने वाले शरीफ नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है।
6: धनवाद भाई, क्या घटना हुई थी?
7: एक से दो महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी अगर ना छोड़।
8: यूपी की राजधानी लखनऊ से बीते दिनों आई इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। बीसक शहनवाज नाम की लड़की ने एक्स गर्लफ्रेंड को कार से कुचलने की कोशिश की, सरयाम उसकी हत्या का प्रयास किया। आरोपी शहनवाज अब पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरे आरोपी दानिश की तलाश जारी है। दानिश की तलाश में पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस बीच पुलिस ने लखनऊ हिट एंड रन केस में एक और बड़ा एक्शन लिया है। मामला दर्ज होने के बाद पीड़ित को धमकाने वाले आरोपी शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है।
9: इन्होंने मुझसे नाम पूछा।
8: कुछ दिन पहले ही पीड़ित लड़की ने आज तक से बातचीत में बताया था कि केस दर्ज होने के बाद शहनवाज का एक साथी शरीफ उसके घर आया था और उसे धमकी दी थी।
9: इनका दोस्त कल जो शरीफ आया था उसने पता है क्या बोला कि ये सब मत करना, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, दो तीन दिन में उनकी बेल हो जाएगी। और ऐसा बिल्कुल बोला, हम आपको प्रूफ और उनका कुछ नहीं कर सकती हो कि तुम्हारी इज्जत जाएगी, हम अपनी इज्जत जाने के चक्कर में ये सब बर्दाश्त करते हैं, आप बताइए मुझे।
8: पीड़िता के दावों के बीच ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। पुलिस धमकी देने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई है और अब शरीफ पर भी शिकंजा कस दिया। केस की जांच के बीच पीड़ित लड़की ने अपने मोबाइल पर कई वीडियो और तस्वीरें दिखाई, जिससे साफ पता चल रहा है कि आरोपी शहनवाज लंबे समय से उससे रिश्ते में था और इस दौरान ही वो उसे धोखा भी दे रहा था।
9: इनके वीडियो तो ऐसे मेरे पास हैं, मैंने तो नहीं अपलोड कर दिए, मैं जबरदस्ती किसी को रख रही थी।
10: इतने सवाल का दूर से दिखाइए,
9: इतने सारे मेरे वीडियो है। मेरे साथ के ये सारे फोटोज वगैरह वीडियोज हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। ये देखिए घूम रहे हैं साथ में, ठीक है, अगर हम करना चाहें हम भी अपलोड कर सकते थे। नए नए वीडियो डीले के हैं, देख लीजिए आप खुद, सबके वीडियो है मेरे पास, डेली मिलते थे, डेली साथ में रहते थे, हम भी अपलोड कर सकते थे ना। मैंने इनका इंस्टाग्राम चेक किया था, तब उस पे दूसरा नाम आया।
8: पीड़िता का बयान साफ बता रहा है कि आखिर इन आरोपियों की साजिश कितनी गहरी थी, कैसे पूरा प्लान बनाया गया था। अब जब हिट एंड रन केस के बाद पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है, तब भी इसका डर कम नहीं हुआ है। पीड़ित को घर जाकर उसे धमकाने का प्रयास हुआ। माना जा रहा है कि इस केस में शरीफ की गिरफ्तारी के बाद फरार दानिश का सुराग पुलिस के हाथ लग सकते हैं। लखनऊ हिट एंड रन केस के एक और आरोपी पर पुलिस का शिकंजा जल्द कस सकता है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और अब बात जयपुर की, जहां के नरेना इलाके के पेट्रोल पंप पर युवक को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की तस्वीरें आई हैं। सीसीटीवी तस्वीरों को दिख रहा है कि एक शख्स बाइक में पेट्रोल भरवा रहा है और इसी दौरान ट्रैक्टर ने उसे कुचलने का प्रयास किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब ये ट्रैक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ या जानबूझकर इस तरीके से बाइकर पे चढ़ाई गया ये ट्रैक्टर, ये दरअसल साफ नहीं हो रहा, क्योंकि दोबारा ये घूमकर इसी सड़क पर वापस आ जाता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बाल बाल इस शख्स की जान बची, जो शख्स पेट्रोल भर रहा था उसने भी अपने आप को बचाया।

0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
6: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
10: जेके वॉल मैक्स।
9: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
10: जेके वॉल मैक्स।
9: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।
2: There is a very famous quote ki history repeat itself.
3: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
4: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
3: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bichara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
5: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
6: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं हैं, सरकार के लोग चिंतित नहीं हैं, सरकार के लोग मर्माहत नहीं हैं। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा, लेकिन इस घटना में जिन लोगों का माने हाथ है, जो लोग इस घटना में शरीक हैं उनकी कल गिरफ्तारी हुई है और भी जो बचे लोग हैं उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई सख्त कार्रवाई कर रही है। इस तरह के कृत्य करने वाले को किसी भी हालत में बचने नहीं दिया जाएगा, हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

0: जमुई दरिंदगी मामले में घिरी सम्राट चौधरी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपित नंदन यादव गिरफ्तार। 3 नाबालिग समेत कुल 5 आरोपी अरेस्ट। दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से गैंगरेप केस में एनकाउंटर के बाद आरोपित गिरफ्तार 2 और लोगों को पुलिस ने पकड़ा। सदर बाजार इलाके में भी बच्ची से दरिंदगी के पार फूटा आक्रोश। आईआईटी बॉम्बे खुदकुशी केस की जांच तेज। क्राइम ब्रांच ने खंगाली परीक्षा हॉल से हॉस्टल तक की सीसीटीवी फुटेज। सुसाइड मामले में आरोपित प्रोफेसर के समर्थन में आई आईआईटी दिल्ली और मद्रास फैकल्टी। लखनऊ में सीएम योगी ने 3,500 माध्यमिक स्कूलों में टीचर के 3,500 पदों पर बांटा नियुक्ति पत्र। अखिलेश पर निशाना, कहा सैफई सिंडिकेट अब डकैती नहीं डाल सकता। एशियन गेम्स में भारत की विमेंस क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। फाइनल में श्रीलंका को धूल छटाकर जीता गोल्ड मेडल। लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक हासिल करने का रिकॉर्ड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित न्यूज रूम लाइव में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसा हर बार बता दिया, कि किन खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे सुसाइड केस की। अब जांच दल जब जांच कर रहा है तो क्या क्या कुछ सामने आ रहा है, किस सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखी जा रही है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की भी, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि गठबंधन होगा ये बात तो कही जा रही है, लेकिन कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं, तो उनके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश से ही एक और बड़ी खबर होगी, जहां अजदुद्दीन ओवैसी की तरफ से निशाना साधा गया। अजदुद्दीन ओवैसी भी अब एंट्री कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन बयानबाजी कैसी कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो हमारी चौथी बड़ी खबर होगी वो पंजाब में सियासी हलचल कैसी हो रही है, एक सुसाइड केस, और उसके बाद फिर मामला कितना पेचीदा हो रहा है, कैसे मान सरकार को घेरा जा रहा है, ये सारी डिटेल खबरें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो होगी आईआईटी बॉम्बे से जुड़ी हुई। आईआईटी बॉम्बे केस में अब जांच टीम जांच आगे बढ़ा रही है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है, यानी परीक्षा हॉल से हॉस्टल तक वो सारा सीसीटीवी जुटाने की कोशिश की जा रही है और ये जानकारी जुटाया जा रहा है। पुलिस ने साहिल के परीक्षा हॉल से लेकर हॉस्टल तक सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मांगी है। पता चला है कि सीसीटीवी में परीक्षा हॉल में साहिल की गतिविधियां कैप्चर हुई हैं, मोबाइल चैट जीपीटी वाली। साथ ही सीसीटीवी में हॉल से निकलकर हॉस्टल की तरफ जाते हुए भी देखा गया है। हॉस्टल के कमरे से वापस आने की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है। अब क्राइम ब्रांच उन तस्वीरों के आधार पर छानबीन कर रही है। अधिकारियों के अनुसार एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में बीटेक के दूसरे वर्ष के छात्र वाकोडे का शव 18 सितंबर की शाम को पवई कैंपस स्थित उनके हॉस्टल के कमरे से फंदे से लटका मिला था। अब यह घटना मिड सेमेस्टर परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके चैट जीपीटी का उपयोग करते हुए पकड़े जाने के कुछ घंटों बाद हुई थी, यानी जो क्वेश्चन पेपर था वो चैट जीपीटी पर लोड कर दिया था इसने। अब सूर्य नारायण दुल्ला पर एक्शन हुआ है, जो कि प्रोफेसर है, लेकिन उनके समर्थन में अब बहुत से लोग आ गए हैं, कई फैकल्टीज आ गई हैं, जिनमें आईआईटी मद्रास भी है, वो लोग अब समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि जो ये हो रहा है वो गलत हो रहा है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और साथ ही साथ कुछ छात्र भी आ गए हैं समर्थन में। वो कह रहे हैं ये तरीका गलत है। छात्र की मौत पर दुख जताया गया है, लेकिन जो एक्शन प्रोफेसर दुल्ला पर हुआ है उसका भी विरोध जताया जा रहा है। अब देखिए, प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला पर जो एक्शन हुआ है उसको लेकर अब कई बयान भी सामने आ रहे हैं। मुस्तफा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए। मुस्तफा, ये बताइए, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ अपडेट है, पुलिस किस ओर आगे बढ़ रही है?
2: जी बिल्कुल, जो बॉम्बे आईआईटी में एग्जाम का दिन था, जिस दिन साहिल को तथाकथित तौर पर पकड़ा गया था, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, उसका सीसीटीवी जो है वो पुलिस ने सीज किया है। क्राइम ब्रांच जो है उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रदर्शन जो है वो बॉम्बे आईआईटी के बाहर कंटिन्यूसली देखने के लिए मिल रहा है, तो एक तरफ पुलिस की तहकीकात है, दूसरी तरफ प्रदर्शन है। आपको ये भी बता दें कि कुछ स्टूडेंट अभी भी जो है वो आईआईटी बॉम्बे के बाहर जो है आईआईटी बॉम्बे के अंदर बैठे हुए हैं, साहिल वाकोड़े के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों में आईआईटी डायरेक्टर ने कई तरह के कदम उठाए हैं, टीचर्स ने जो है वो जो प्रोफेसर है उसको समर्थन भी कर दिया है, लेकिन अभी भी एक तरह से आप कह सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जो जातीय में मतभेद हुआ है या जो हरेसमेंट हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों ऐसा है कि 3 से 4 सुसाइड इस साल में ही IIT बॉम्बे में हो चुकी है, तो इसमें बदलाव की जरूरत है, जो बदलाव हो नहीं पा रहा है। अब इंस्टीट्यूट का कहना है कि वो लोग प्रोफेसर को सपोर्ट करेंगे, जांच में आप कह सकते हैं कि शामिल होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड पहले की है IIT में, उनके माँ बाप का भी ये कहना है कि न्याय की तो वादे हमको भी किए गए थे, अगर हमारे साथ न्याय होता तो साहिल जैसा केस आज नहीं हो रहा होता। जी,
0: लेकिन ये देखा गया है कि अब IIT मद्रास और बाकी के जो फैकल्टीज हैं वो भी एकजुट हो रहे हैं, कुछ छात्र भी एकजुट हो रहे हैं, जो प्रोफेसर दुल्ला पर एक्शन हुआ है उसका विरोध जता रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कुछ प्रोफेसर जो हैं वो प्रोफेसर ढुला का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोफेसर जो हैं वो इस समर्थन का विरोध कर रहे हैं। उसी तरह से छात्र जो है 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसा भी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है। तो एक तरह से IIT में एक बड़ा डिवाइड है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जहां पर अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से लोग आते हैं और उनकी अगर किसी तरह की कंप्लेंट है और बार बार छात्र सुसाइड होने से ये कंप्लेन उजागर हो रही है, तो इस पे एक्शन आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा।
0: अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन जिस का जिक्र हम कर रहे थे कि प्रोफेसर दुल्ला पर जिस तरह से एक्शन हुआ है उसका विरोध शुरू हो गया है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, ये प्रोफेसर तो साथ में आए हैं लेकिन कुछ छात्र भी सामने आए, उनसे बात की हमारे सहयोगी दीपेश ने, वो आपको सुनवाते हैं बातचीत।
3: वाघमोड़े के IIT बॉम्बे कैंपस में सुसाइड का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ हैं IIT बॉम्बे के ही एक छात्र उत्कर्ष। उत्कर्ष, क्या आप साहिल के क्लासमेट थे और क्या हुआ था पूरा इंसिडेंट और फिलहाल अंदर क्या माहौल है, थोड़ा बताएंगे?
4: लाइक साहिल का मैं क्लासमेट नहीं था, साहिल वाज इन सेकंड ईयर, आई एम थर्ड ईयर और उसकी ब्रांच भी डिफरेंट है, तो मैं उसको पर्सनली जानता भी नहीं था। कॉलेज के माहौल की बात करें तो अब काफी नॉर्मल हो चुका है, जैसे पहले हुआ करता था। लाइक अंदर क्लासेस वगैरह चल रही हैं, नॉर्मल चल रहा है वैसे पहले ऐसा ही, कुछ बच्चे बस अभी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, अभी 10-5 बच्चे बैठे हुए हैं, बाकी तो नॉर्मल हो गया काफी पहले से।
3: हाँ, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि कॉलेज का माहौल जो मेंटली काफी प्रेशराइज है, जो छात्र पढ़ रहे हैं उन पर काफी प्रेशर होता है, क्या सही है ये या क्या माहौल है अंदर?
4: लाइक अभी या फिर लाइक थ्रू आउट द ईयर?
3: ओवरऑल भी, अभी भी।
4: लाइक ओवरऑल तो ऐसा रहता है, अगर आप IIT बॉम्बे में पढ़ रहे हो तो आपको आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है सोसाइटी की, तो इसलिए प्रेशर तो रहता ही है हमेशा। अभी की बात करें तो अभी सोसाइटी से इतना चेंज नहीं आया है मेंटल प्रेशर भी किसी के, लाइक नॉर्मल ही है पहले ऐसा ही है।
3: जो प्रोफेसर हैं डूला, उनके सस्पेंशन की मांग हो रही है, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग हो रही है, इस मांग को आप कैसे देखते हैं? क्या अदर बच्चों की तरह आप भी इसका समर्थन करते हैं?
4: लाइक अदर बच्चे समर्थन नहीं कर रहे हैं इसका, तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ।
3: अच्छा, हाँ, तो आपका क्या कहना है? आपकी क्या?
4: Like, मैं तो विरोध में हूँ उनके, उन सर के सस्पेंशन के।
3: मतलब आप उनको सपोर्ट कर रहे?
4: सपोर्ट मैं सर को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहा, मैं अपोज कर रहा हूँ उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं।
3: अच्छा, हाँ, तो क्या आपके मुताबिक एलिगेशन नहीं लगने चाहिए थे? हुआ क्या था, अगर आपने कुछ सुना हो या आपको कुछ पता हो?
4: लाइक उन्हें सर ने साहिल को कन्फ्रंट किया था एग्जाम में जाके, जब वो चीटिंग करते हुए पकड़ा उसको, कन्फ्रंट किया था उसको, बताया कि ऐसा रूल होता है और फिर और सस्पेंशन वगैरह कुछ लगेगा ऐसा कुछ करके, तो यही था। इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा हो, मुझे भी दिख रहा है, तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है स्टेट, वो तो कम्प्लीट बेसलेस ही हुआ ना, फिर वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
0: देखिए, ये एक छात्र की बात थी, लेकिन 2023 की बात है, 2023 में भी एक छात्र जिसका नाम था दर्शन सोलंकी, उसने भी सुसाइड किया था। अब उसके पिता की तरफ से भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी छात्र के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे बात की हमारे सहयोगी मुस्तफा ने।
2: साथ रमेश भाई सोलंकी जुड़ रहे हैं, गुजरात से हैं। इनके बेटे जो 18 साल का था उस वक्त, दर्शन सोलंकी ने 2023 में हॉस्टल की बिल्डिंग से IIT में सुसाइड की थी। आपको पता है इन सब चीजों से आप गुजर चुके हैं, दर्शन के समय आप न्याय मांग रहे थे ताकि किसी और बच्चे के साथ इस तरह की चीज ना हो।
5: हाँ, मैं न्याय मांग रहा था कि ऐसी घटना और बच्चों के साथ ना हो, और इस साल में 5 से 6 बच्चों के साथ ये घटना हो गई है, और निचली कक्षा के लोग जैसे कि SC ST का शेड्यूल कास्ट के जो लड़के होते उसके साथ ही ये घटना होते, जो बच्चे होनार होते उनको IIT वाले आगे आने नहीं देते, या फिर IIT में से निकलने की तैयारी में होते उनको कुछ न कुछ प्रेशर करके कुछ न कुछ बातें लाके उनको निकालने की धमकी देते हैं, जैसे साहिल वाकोड़े को भी धमकी दी थी कि तुझे रस्टिगेट कर देंगे, और उस प्रेशर में आके साहिल वाकोड़े को ये आत्महत्या करना पड़ा। उसको भी अपना फ्यूचर दिख रहा था, लेकिन ये लोगों ने उसका फ्यूचर मिट्टी में मिला दिया था। इस वजह से उसको साहिल वाकड़े को आत्महत्या करनी पड़ी।
0: और आइए अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, क्या एक साथ गठबंधन होगा? 2027 का मुकाबला एक साथ लड़ेंगे? अब देखिए खबरें तो आ रही हैं, बयान तो सामने आ रहे हैं, और अखिलेश यादव भी ये बात कह चुके हैं, लेकिन क्या सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के? तो यहाँ पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच गठबंधन में क्या सब कुछ सामान्य है? सीट शेयरिंग आसानी से हो जाएगी या फिर कुछ ऐसा पेच इस गठबंधन में फंस रहा है जिससे गठबंधन अभी भी अधर में झूल रहा है? कांग्रेस के नेता लगातार गठबंधन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के ओर से भी वैसा ही सिलसिला जारी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कितने सक्रिय दिखते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर गठबंधन होना है तो उसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, वरना हम अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ेंगे।
6: अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है कहीं भी, पूरे देश में नहीं है, तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है। इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है, और कांग्रेस ही लड़ सकती है। मैं कह रहा हूं इसे तुरंत फाइनल करिए। कौन टच में मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं है। जो भी होना है फाइनल करिए, अगर फाइनल नहीं होगा तो उसका नुकसान जमीन पर हो रहा है ना।
7: बिल्कुल ही बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए भी।
0: अब देखिए ये तो 2027 की बात चल रही है, लेकिन इससे पहले कब हुआ था? 2022 में चुनाव हुआ था। 2022 से पहले कब हुआ था? 2017 में हुआ था। वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब साथ में चुनाव लड़ी थी तो क्या कंडीशन रही थी? देखिए 399 सीटें कांग्रेस लड़ी, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली 399 में से, और समाजवादी पार्टी को 347 में से 111 सीटें हासिल हुई। ये 2022 विधानसभा चुनाव की बात है, तालमेल नहीं था यहां पर। अब आप देखिए 2017 में जहां तालमेल था वहां पर समाजवादी पार्टी 311 सीटों पर लड़ी, जीत मिली 47 सीटों पर, और कांग्रेस 114 सीटों पर लड़ी, जीत मिली 7 सीटों पर। और ये वो कहा गया था दो युवाओं की जोड़ी, तो उस वक्त 2017 का ये जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस का रिकॉर्ड यहां पर उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है, तो आप देखिए कि कितनी सीटों पर लड़े और कितनी सीटों पर जीते, यानी आप अंतर देखिए, मतलब सक्सेस रेट बहुत कम कही जा सकती है। अब यही समाजवादी पार्टी चाहती है कि ज्यादा सीटों पर वो खुद लड़े। अब बात गठबंधन की जा रही है, ये आंकड़े तो आपने यहां पर देख लिए हैं। अब आंकड़े देखने के बाद अब एक बात और देख लेते हैं कि अखिलेश यादव, जब अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर बात की जाती है तो अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन पर क्या कहते हैं, वो सुनिए आप अखिलेश की जुबानी।
8: समाजवादी पार्टी का जो पूर्व में गठबंधन था वही रहेगा, और मैं इधर देख रहा हूं किसी को रथ का रंग नहीं दिखाई दे रहा है, लाल रंग उन्हें कोई दूसरा रंग दिखाई दे रहा है, किसी को किसी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो रथ केवल डीजल भरवाने गया था, अभी से घबरा गए आप?
0: देखिए अखिलेश यादव के दावे क्या हैं वो तो आपने यहां पर देख लिया, आप गठबंधन की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से तंज कसा जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है। अभी हालिया जो बयान आ रहे हैं, राकेश त्रिपाठी को सुनवाते हैं आपको, बीजेपी प्रवक्ता है।
9: समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी को पनौती मान रही है, जान रहे कि उसको कितनी भी सीटें दे दें चुनाव जीत नहीं सकते, हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं और 5 सीटें भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जीत नहीं सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अहंकार इतना है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद रोज कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम बसपा के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कौन सा गठबंधन कैसे बने ये सोचना बहुत मुश्किल हो रहा है विपक्ष के लिए, क्योंकि भाजपा को हराने के लिए उनके पास कोई रणनीति नहीं है। जाति और मजहब के वोट बैंक के लिए ऐसी मारामारी है, हर आदमी हर पार्टी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए इनके बीच में कोई गठबंधन बन नहीं पा रहा है।
0: कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुमार जरा बताइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में रुचि रखने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि इमरान मसूद और इकरा हसन के बयान सुनने के बाद क्या माने, ऑल इज वेल है गठबंधन को लेकर या नहीं है, या कुछ पेच फंसा है?
10: नहीं, बिल्कुल ऑल इज वेल तो नहीं है और ये नई बात भी नहीं है। आप देखें तो कांग्रेस पार्टी इस बार समाजवादी पार्टी से जल्द गठबंधन चाहती है। वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो ये गठबंधन हो, क्योंकि अगर लेट होता है तो फिर समाजवादी पार्टी को लगता है, कांग्रेस को लगता है कि सपा की दया पर ही, समाजवादी पार्टी की दया पर ही रहना पड़ेगा। वो जितनी सीटें देगी उतने पर ही लड़ना पड़ेगा। आप देखें तो इमरान मसूद पिछले कई महीनों से लगातार ये बातें कह रहे हैं, कांग्रेस का नेतृत्व एक शब्द उन्हें न बोल रहा है न टोक रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो बात इमरान मसूद कह रहे हैं वो बात वही बात आगे बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी काफी समय से चुप थी, लेकिन अब उसने जवाब देने का फैसला किया है, इकरा हसन को सामने लाया है और इकरा हसन ने साफ साफ कह दिया बेवकूफी वाली बात है और अगर जीतना है तो अखिलेश यादव ही जीत सकते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती अकेले। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कांग्रेस जल्दबाजी में है, उसे वो चाहती है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो। अखिलेश यादव किसी जल्दबाजी में नहीं है, समाजवादी पार्टी चाहती है जितना ज्यादा टल जाए। याद करिए 2024 में दोनों साथ मिलकर लड़े थे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था, बीजेपी को इन लोगों ने हराया, लेकिन जब से पिछले कुछ महीने से कांग्रेस का उभार दिख रहा है, कांग्रेस को लेकर के चाहे संसद रुका हो, छात्रों की गूंज हो, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो, इन सबों के जरिए लग रहा है कि कांग्रेस बढ़ रही है। लेकिन आप देखें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जमीन पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती, पश्चिम में एक प्रभाव हो सकता है। अब अखिलेश यादव ने साफ एक तरीके से कह दिया है कि हम गठबंधन में तो जाएंगे, लेकिन किसी तरीके का जो ये बार्गेनिंग चल रहा है ना मामला कि भाई अभी आओ बैठो अभी आ करके करो, मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार होगी। और सपा ने अब एक तरीके से तैयारी कर ली है कि जिस तरीके का सवाल उठाया जाएगा उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा।
0: और समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले भी इस बारे में कहा गया है जो गठबंधन की बातें हैं सीटों को लेकर कि कांग्रेस को समझना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अजदुद्दीन ओवैसी भी यहां पर शांत तो है नहीं, अजदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार थी समाजवादी पार्टी की कब, जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा बातचीत जब बढ़ी तो रुके नहीं अजदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने यहां पर मीर जाफर और मीर सादिक तक का जिक्र कर डाला, सुन लीजिए।
11: अब चुनाव आएगा ये तमाम चमचे आएंगे, ये तमाम मीर जाफर आएंगे, मीर सादिक आएंगे और आकर वो आपको पुराना चरस चकाएंगे, हम सरकार बना रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। 14 में हार गए, 17 में हार गए, 19 में हार गए, 22 में हार गए, 24 में हार गए, अब 28 आ रहा है तो कह रहे हैं भैया आ रहे हैं। जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे ये साफ ही यहां पर है, पूछो इनसे, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था, 50,000 लोग अपने घर और गांव से बेघर हो गए थे, पार्टीशन में भी इतने लोग बेघर नहीं हुए थे, कितने मुसलमान एमपी थे समाजवादी में आपको मालूम? किसी को मालूम कितने मुस्लिम एमएलए थे समाजवादी के पास? 47 थे, 47 थे, उसके बावजूद भी 100 मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटी गई थी, एक या दो को इंसाफ मिला, बाकी तड़प रही है इंसाफ के लिए, 50,000 लोग बेघर हो गए।
0: देखिए अजदुद्दीन ओवैसी भी अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी तरफ से भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया और बाबर तक का जिक्र कर दिया, सुन लीजिए।
12: हर और एक संकट का प्रश्न था, भारत के सनातन की परंपरा को कोसना और भारत की हिंदू परंपरा को गजनवी, गोरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने का प्रयास होता था, लेकिन अब नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह समाप्त करने की इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रहा है और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है।
0: तो एक और बड़ी खबर आपको बता दो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और यह अभियान अभी तक जारी है। अब इस बार लखनऊ में 3,567 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। उत्तर प्रदेश में रोजगार कुंभ का आज तीसरा दिन था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3,567 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अब तक 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया है। 16 सितंबर को गोरखपुर में सीएम योगी ने 19 सितंबर से 1,00,000 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया था। सरकार ने अगले 6 महीने में 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है।
13: नौजवानों के हौसलों को हमेशा ब्रेकर देने वाले लोग कभी नहीं चाहते कि अच्छा हो, उन्होंने किया नहीं। और मुझे तो बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 3,567 को तो हम नियुक्ति पत्र आज दे रहे हैं और मैं पिछले एक सप्ताह के अंदर ये 5,297 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर चुका हूं। पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 9,950,000 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र उससे पहले वितरित किया है और मैंने सेफाई सिंडिकेट से ये भी कहा है कि भाई हम दे रहे हैं, ये हमारा उनके वक्तव्य के बाद एक तीसरा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है और मैंने उनको कहा है कि हम देते जाएंगे, आप गिनते जाइए। और हो सकता है गिनती नहीं आती होगी तो कभी कभी शिवपाल जी के सानिध्य में बैठ जाइए तो बहुत अच्छी गिनती सिखा देंगे।
0: चलिए उत्तर प्रदेश से अब आपको पंजाब लिए चलते हैं। पंजाब के संगरूर की खबर की बात करते हैं जहां पर सीएम मान के घर के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंच गए, जमकर हंगामा हुआ, वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर करने के लिए तैयारियां पूरी की गई थी। देखिए कैसे पुलिस बल का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। वाटर कैनन की गाड़ियां भी मौके पर तैनात थी। प्रदर्शनकारी 2 सितंबर को मोहनजीत नाम के शख्स पर हुए एक्शन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहनजीत ने ड्रग्स के मामले को लेकर सीएम मान के खिलाफ प्रदर्शन किया था जिसके बाद पुलिस ने उस पर एक्शन किया था। सियासत बहुत तेज हो रही है पंजाब में ड्रग्स मामले पर, जमकर पंजाब में ड्रग्स के मामले को लेकर हंगामा हो रहा और ये अभी से नहीं हुआ है। संगरूर से मामला शुरू हुआ था जहां पर ड्रग्स का एक मुद्दा उठाया गया था, मंत्री भी घेरे में, मुख्यमंत्री भी घेरे में, कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। चंडीगढ़ में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, चौतरफा घेराव आम आदमी पार्टी का इस वक्त हो रहा था पंजाब में। और देखिए ये पूरा आपको सीक्वेंस बता रहे हैं। पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया था 2 सितंबर 2026 को मोहनजीत सिंह को, दूसरा गुलजार सिंह बंजारा गांव संगरूर 6 से 7 सितंबर, अभी तक इनका जिक्र हो रहा है।
14: आपका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, आपका काम है शिकायतकर्ता अगर आपके पास आए उसको इंसाफ मिले। और यहां मुख्यमंत्री कहता है ड्रग्स दो, चिट्टा दो। भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी से, जैसा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, पंजाब में ऐसी पापी नशीली जनता विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
15: कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, सारी की सारी पार्टियां बिना सच जाने, बिना कुछ पड़ताल किए इन लोगों का सहारा लेके, इनके पीछे खड़े होके आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ ऊट पटांग बयान, ऊट पटांग अभियान चलाया जा रही है।
0: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
5: In association with
6: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
7: There is a very famous quote ki history repeat itself.
8: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
9: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
8: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: जमुई दरिंदगी मामले में गिरी सम्राट चौधरी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपित नंदन यादव गिरफ्तार। 3 नाबालिग समेत कुल 5 आरोपित अरेस्ट। दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से गैंगरेप केस में एनकाउंटर के बाद आरोपित गिरफ्तार 2 और लोगों को पुलिस ने पकड़ा। सदर बाजार इलाके में भी बच्ची से दरिंदगी के बाद फूटा आक्रोश। आईआईटी बॉम्बे खुदकुशी केस की जांच तेज। क्राइम ब्रांच ने खंगाली परीक्षा हॉल से हॉस्टल तक की सीसीटीवी फुटेज। सुसाइड मामले में आरोपित प्रोफेसर के समर्थन में आई आईआईटी दिल्ली और मद्रास फैकल्टी। लखनऊ में सीएम योगी ने 3,500 माध्यमिक स्कूलों में टीचर के 3,500 पदों पर बांटा नियुक्ति पत्र। अखिलेश पर निशाना, कहा सैफई सिंडिकेट अब डकैती नहीं डाल सकता। एशियन गेम्स में भारत की विमेंस क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। फाइनल में श्रीलंका को धूल चटाकर जीता गोल्ड मेडल। लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक हासिल करने का रिकॉर्ड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस

0: बिहार के जमुई में एक मामला सामने आता है जहां पर एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की जाती है। कई लोग होते हैं दरिंदे बन जाते हैं वहां पर, और उसके बाद अब ताबड़तोड़ पुलिस की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन एक्शन के साथ साथ सवाल भी उठ रहे हैं व्यवस्था पर। जमुई में 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी के मामले का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार सरकार पर गंभीर सवाल है, लेकिन पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत कुछ 5 लोगों को पकड़ लिया, जिसमें 3 नाबालिग भी हैं। 2 मुख्य आरोपियों को तो पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपित का एनकाउंटर हुआ नंदन यादव नाम। अब तक 5 गिरफ्तारियां हो पाई हैं, लेकिन लोगों के अंदर आक्रोश बहुत ज्यादा है, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, और लोग कह रहे हैं कि छोटी मासूम बच्चियों के साथ अगर इस तरह की हरकत की जाती है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा की मांग इस वक्त आम लोगों की तरफ से की जा रही है। जमुई बदसलूकी मामले में बिहार पुलिस का एक्शन, जो आप देख रहे हैं, एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये वही नंदन यादव है जिसने सारी हदें पार कर दी थी, एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी, उसके साथ ऐसी बदसलूकी की थी, ऐसा व्यवहार किया था जो बिल्कुल उचित नहीं कहा जा सकता। और जिस जगह पर हादसा हुआ, उस जगह पर शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शशि, बताइए इस पूरे मामले में अब तक क्या अपडेट है, आप जहां पर मौजूद है वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं?
1: जगह से मैं थोड़ा आगे की तरफ आया हूँ। जो एनकाउंटर आज 2 अपराधी जो पकड़े गए हैं, मतलब आरोपी पकड़े गए हैं, वो दरअसल लखीसराय जो जिला है, वो जमुई में घटना को अंजाम दिया उन्होंने, वो लखीसराय जिले में पहुंच गए थे। और देखिए, लखीसराय का वो नदी क्षेत्र का इलाका है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और उस जगह पे पहुंचा करके आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों को, कि जो नंदन यादव है और हरिराम यादव, दरअसल उनका एनकाउंटर कहाँ हुआ, पुलिस ने कहां से उनको दबोचा, ये पूरा इलाका आप जहां कहीं भी नजर जाए, हिमांशु जरा कैमरे की नजर से देखिए, नदीम जो दिखा रहे हैं, बड़े बड़े जो घास कह लीजिए उनको, हम लोग लोकल भाषा में कास बोलते हैं, ये कास के पौधे हैं, इसमें अगर कोई छिप जाए तो उसको तलाशना, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए हुआ क्या, उसकी पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। एक पत्रकारदर्शी भी हमारे साथ हैं जो घटना के वक्त मौजूद थे, और देखिए यहीं पर जिस नदी के पास मौजूद हैं हम, इसी नदी से घाट से नंदन यादव, हरेराम यादव बालू का उठाव करते थे, दोनों ट्रैक्टर चालक, और यहीं से उठा करके बालू वो ले जाते थे, दूसरी जगह पे डंप करते थे, लेकिन यहीं वहां उन्होंने ठिकाना भी बनाया। जिस घटना का वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद उनको ये लग गया हिमांशु कि अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
0: जी
1: तो ऑडियो अगर नहीं है तो नदीम भाई माइक ऑन कर दीजिए, और
0: आ रही आपकी आवाज,
1: जो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे,

0: एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जाकर के फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है। और एक प्रत्यक्षदर्शी है हमारे साथ राजकिशोर राम, जो ये कुंदर बराज का इलाका है, कुंदर गांव है, वहां के ही रहने वाले हैं। और जो आरोपी हैं, दोनों मुख्य आरोपी, वो प्रतापपुर के रहने वाले हैं। प्रतापपुर का पहले जानते हैं राजकिशोर राम जी से। राजकिशोर जी, आप उस समय यहां मौजूद थे जब घटना हुई, तो क्या हुआ दरअसल बताइए हमारे दर्शकों को, बताइए।
1: हमारे गांव की तरफ उधर से जम्मू जिला से रपेटते हुए आए प्रशासन लोग, तो हमारे कुंदर गांव के लोग उधर गांव में हम लोग जब भीड़ जमा देखा तो कांस की ओर छुपने का प्रयास किया। उसके बाद उधर से बराज पर से पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए और जिला से फिर इधर से घेरे, तो ये लोग को यहां रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
0: ये कौन सा नदी क्षेत्र है?
1: ये क्यूल नदी।
0: क्यूल नदी,
1: जी जी जी।
0: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
1: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
0: अच्छा
1: जी।
0: तो ये पुलिस से भाग रहे थे?
1: भाग रहे थे सर।
0: और पुलिस को चैलेंज भी किया
1: जी, पुलिस के ऊपर गोली चलाया, पुलिस को मारा गोली।
0: अच्छा, पुलिस के ऊपर गोली चलाया इन्होंने। तो आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है? आवाज वावाज सुना आपने?
1: जी, दो फायर हुआ।
0: दो फायर के
1: दो जो सर, हम लोग सर इसी जगह चिमनी के पास थे।
0: आप बता रहे थे तकरीबन 12 बजे के आसपास की।
1: जी जी जी जी जी।
0: तो जो घटना घटी वो आप लोगों का गांव, हम चूंकि यहाँ आ रहे थे, बहुत अंदर है ये, तो मतलब क्यूल नदी में हम आ गए। जी, जी, जी। तो ये गांव जो है वो आपका कुंदर गांव है। जी, जी। उसके पहले मड़वा गांव पड़ता है। तो मड़वा क्या जमुई जिले में है? और
1: मड़वा, राजपुरा और प्रतापपुर जमुई जिले में है। हम लोग सर लखीसराय जिले में है।
0: अच्छा
1: जी।
0: तो ये लोग क्या यहाँ छुपने का प्रयास कर रहे?
1: जी, यहाँ छुपवे करता था इसी तरह आकर के सर, इस एरिया में आकर के छुपता था सर। वो लोग बालू का सर व्यवसाय वो लोग करता है और सर गुंडागर्दी में तो सब आगे है।
0: अच्छा, बैकग्राउंड वैसा ही?
1: बैकग्राउंड सर राजपुरा और प्रतापपुर हर समय सर उसका बैकग्राउंड अथी रहा। अभी अपराधी पकड़ा गया सर, SLR और राइफल उसके थी प्रतापपुर गांव से सर। लेकिन सर उसका बैकग्राउंड सर गलत ही है शुरू से।
0: ये जो घटना हुई राजकिशोर जी, चूंकि आपका ठीक है, आपका गांव भले ही अलग जिले में है, लखीसराय जिले में, हम चूंकि अंदर आए हैं, बहुत काफी अंदर, कई किलोमीटर, तो हम मतलब इस घटना का वीडियो जब वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, क्या आप लोगों के दिमाग में बात आई कि बगल का पड़ोस का गांव और जो बच्चे और बच्चियां छोटे आए उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया?
1: गलत हुआ सर, बिल्कुल गलत हुआ सर, व्यवहार एकदम बिल्कुल गलत किया सर। हम लोग सर इससे बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: लोगों ने मतलब लोगों में नाराजगी भी थी,
1: इसलिए नाराजगी था सर, ही लेकर के उसको पकड़वाने का हम लोग पूरा प्रयास किए।
0: हिमांशु, देखिए ये बड़ी बात बता रहे हैं, राजकिशोर राम हैं जो कुंदर गांव के निवासी हैं और ये खुद हमको लेकर के इस जगह पे आए। मतलब आप देखिए यहाँ कोई पुलिसिंग नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई ऐसा एनकाउंटर के बाद का जो आम तौर पे सीन दिखता है वैसा सीन नहीं है। ये क्यूल नदी है और ये काफी अंदर हम पैदल चल करके आए हैं, कई किलोमीटर मुख्य सड़क से अंदर। तो राजकिशोर राम यहाँ लेकर के आया, राजकिशोर राम ने खुद बताया कि हमने पकड़वाया, हम लोगों ने पकड़वाया, हमारे जो तमाम ग्रामीण थे वो इस बात को इंश्योर करना चाहते थे कि जो भी इस मामले में आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो।
2: अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये तो आपने बताया रिपोर्ट में, लेकिन आप ही की एक रिपोर्ट उस जगह से जहां पर ये क्राइम हुआ है वो एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर आपसे दोबारा बात करेंगे।
0: 19 सितंबर की शाम दरअसल जमुई में जो घटना घटी नाबालिग लड़के और लड़की के साथ, वो यही पहुंचे थे इसी मड़वा पहाड़ को देखने के लिए जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। छोटे सा पहाड़ है और दो पहाड़ियां हैं यहाँ पे, एक पहाड़ी वो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाई तरफ। इन दो पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं। जो 19 सितंबर की शाम जब पीड़ित और पीड़िता यहाँ पहुंचे थे तो उनको नहीं पता था कि जब रोशनी कम हो जाएगी तो इसी सड़क से आगे बढ़ते वक्त उनके साथ कोई हादसा होगा। हम जिस सड़क पे इस वक्त मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सड़क जो है वो जमुई लखीसराय मुख्य मार्ग से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ आती है और यहीं पर वो घटना घटी इसी सड़क पे। जो इस सड़क की तस्वीर है वो ये बताती है कि ऐसा नहीं लगता है कि यहां पर ऐसी कोई घटना हो जाती।

0: क्योंकि पास में आबादी है, लेकिन इसी सड़क से आगे जब आप क्यूल नदी की तरफ जाते हैं तो वहां पर खनन का काम चलता है, और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है और उसका सहयोगी हरेराम यादव, ये दोनों बालू खनन के कारोबार में शामिल हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बालू की जो घाट से निकासी होती है उसको लेकर के दूसरे लोकेशन पर लेकर के जाते हैं, और इसी सड़क पर उस वक्त वो मौजूद थे जब घटना घटी, और मड़वा पहाड़ देखने, उसकी तस्वीरें कैद करने के लिए आए दो नाबालिग लड़के और लड़कियां जो है वो निशाना बन गए उन दरिंदों का, जिसकी तस्वीरें, जिसका वीडियो शर्मसार करने वाला पूरा देश देख रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीमालम के साथ शशिभूषण, जमुई आज तक।
1: देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर की एक लंबी फहरिस्त है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का एक नया स्टाइल बन चुका है अपराधियों के, लेकिन अब बाकी के राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। और बिहार के जमुई में जिन दरिंदों ने एक नाबालिग के साथ छेड़खानी की सारी हदें पार की, उनका भी एनकाउंटर हुआ, दो लोगों का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। नंदन यादव मुख्य आरोपित था, जिसके एनकाउंटर के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें और जो दोषी है उसको ट्रायल कराकर तुरंत उसको सजा दिलवाने का काम करें।
3: शरीयत लॉज अपनाने चाहिए, इनके हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने ऐसे हाथों से छुआ और इतनी गलत तरीके से छुआ।
4: इस वीडियो ने बिहार को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो ने सम्राट सरकार को सख्ते में ला दिया। इस वीडियो ने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जब एक नाबालिग लड़की के साथ सरेआम छेड़छाड़ हुई, जब भीड़ ने एक नाबालिग लड़की को घेर कर उससे जबरदस्ती करने लगे, जघन्य ज्यादती पर उतर आए, तो इस वीडियो को देखने वाले हर शख्स की आंखों में खून उतर आया। मांग उठने लगी दोषियों का एनकाउंटर करने की।
2: लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो और दिन दहाड़े रोड पर इस तरह की घटना आप लोग को भी देखना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें और जो दोषी है उसको ट्रायल करा के तुरंत उसको सजा दिलवाने का काम करें।
4: भाई वीरेंद्र अकेले नहीं थे जो हैवानियत करने वालों से सख्ती की हिमायत कर रहे थे। आज तक से बातचीत में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने भी सख्त से सख्त एक्शन की मांग की थी।
3: क्यों नहीं तुरंत अरेस्ट हुए ये, जैसे ही कंप्लेंट हुई थी वैसे ही क्यों नहीं अरेस्ट हुए, और फिर हम एलिबाई दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं कि ये तो वन ऑफ द इंसिडेंट है या कुछ है। हमें तुरंत ऐसी चीजों पे कार्रवाई करनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं कहूंगी ऐसे व्यक्तियों को जो माइनर कहते हैं, माइनर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, और आपने सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखे होंगे पूरे भारत भर में जहां माइनर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बूढ़ी औरत का रेप हो, छोटी बच्ची का रेप हो, ऐसे माइनर्स को एडल्ट की तरह ट्राई तो करना ही चाहिए। तो कभी कभी लगता है कि शरीयत लॉज अपनाने चाहिए, इनके हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने ऐसे हाथों से छुआ और इतनी गलत तरीके से छुआ।
4: साफ था कि सम्राट चौधरी की सरकार चौतरफा दबाव में घिर गई है, विपक्ष पूरी तरह हमलावर था और सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा था।
5: आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी के बयान पर एक संदेह पैदा करने वाला घटना है।
6: उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो ऐसे बोलते ही रहते हैं। जब ये विरोधी हैं तो हम अच्छा काम भी करेंगे तो नजर नहीं आएगा, वो अलग बात है, उधर में नहीं जाना चाहता। लेकिन ना मैं जरूर कहूंगा कि हम लोग बिहार के मामला में हमेशा गंभीर रहते हैं। बिहार का जो आपने बताया है, ऐसा जो भी कांड होता है आप देखा होगा, तत्काल कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारी भी हुई है, जो बचे हैं वो बचेंगे नहीं, गिरफ्तारी कर ली जाएगी बहुत जल्द।
4: जब सम्राट सरकार को बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने एक बड़ा कदम उठाया। खबर आ रही है कि इस वारदात के मुख्य आरोपी नंदन यादव का एनकाउंटर कर दिया गया है।
0: पीड़ित लड़के और लड़की को शायद न्याय नहीं मिलता या फिर कोई जान भी नहीं पाता कि उनके साथ ऐसी घटना घटी है अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता। तो ये वीडियो वायरल होना उन आरोपियों के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुआ और उसी के आधार पे पुलिस ने 7 से 8 आरोपियों की शिनाख्त की। और अब देखिए नंदन यादव जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसका हाफ एनकाउंटर हुआ है, जमुई सदर अस्पताल में उसको पुलिस इलाज के लिए करके पहुंची है।
7: 7 से 8 आरोपी आप बता रहे हैं, कुल कितने के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कुल कितने अभी तक फरार हैं?
0: नेहा देखिए कल 3 गिरफ्तारियां हुई थी, तीनों नाबालिग थे, 17-18 साल की उम्र के आसपास के। आज 2 गिरफ्तारियों की बात सामने आ चुकी है, एक नंदन यादव जिसका यहाँ पे एनकाउंटर हुआ, दूसरा हरेराम उर्फ रामाशीष, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उसका पैर टूटा है, किन परिस्थितियों में टूटा है ये जानकारी नहीं है, लेकिन कुल 5 आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में है।
4: जाहिर है सम्राट चौधरी सरकार ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दामन पर लगे दाग को धोने की कोशिश की है, लेकिन ये दाग पूरी तरह तभी धुल पाएगा जब बिहार में ऐसी वारदात दोबारा ना होने पाए। शशि भूषण, जमुई, आज तक।
1: देखिए मामला बेहद गंभीर है, संवेदनशील है, बयानबाजी भी इसमें हो रही है। अब देखिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी, उनका भी बयान सामने आया, बयान प्रियंका का भी सामने आया, बयान तेजस्वी का भी सामने आया, सब सुनवाते हैं आपको।
8: ये इतना घृणित अपराध है कि जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और आपने अभी तक देखा है कि सरकार ने इस मामले में कितनी मुस्तैदी से और सख्ती से काम किया है कि पहले ही क्षण से पॉक्सो एक्ट लगा के जिसमें सबसे कठोरतम सजा का प्रावधान है वो एक्ट के तहत केस दर्ज करके जो अपराधी हैं और अपराधी भी जो भी अलग अलग किस्म से जिनका इस अपराध में सहयोग रहा है, जो घटना करने वाले हैं, जो वीडियो बनाने वाले हैं, जो उसको वायरल करने वाले हैं, सभी की पहचान की जा रही है और सभी को सख्त प्रावधानों के तहत कठोरतम सजा दी जाएगी।
9: जो जमुई में जो घटना हुई, जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो बच्चियां जो हैं, जो महिलाएं जो हैं, जो युवती है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, शर्मसार कर देने वाला वो वीडियो है। दोषियों को जितनी कड़ी से भी कड़ी सजा दी जाए वो कम है। जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, पूरे देश भर में बिहार सरकार की थूथू हो रही है। यही सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया था कि यहां से चले जाइए मुंगेर, अगर कोई कुछ हो जाए, किसी को हाथ लगा दे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आज बिहार में ये वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बच्चियां सुरक्षित पूरे बिहार में नहीं है, चाहे दिन हो, रात हो, घर हो या सड़क हो, कॉलेज हो या स्कूल हो या अस्पताल हो। आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है,
10: I saw that. It's horrible and crimes against, I didn't understand you asking about crimes against women. No, crimes against women are just increasing. It's become unsafe for women. It was always unsafe, but it's become more and more increasingly violent towards women. And I think that there's no point talking about big schemes and programs if we can't even ensure the safety of women on our streets. So it's really something that all of us need to think about. Wherever there are state governments and especially central government, they need to think about how they are going to ensure that women feel safe.
1: देखिए जमुई में एक नाबालिग लड़की के साथ तरिंदगी होती है, भीड़ आती है और बहुत छेड़छाड़ करती है और उसके बाद पूरा देश स्तब्ध हो जाता है। जैसे ये तस्वीरें सामने आती हैं उसके बाद हर किसी का कलेजा फटा रहता है, गुस्सा आक्रोश सब देखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात तब होती है जब बिहार सरकार के मंत्री क्या कहते हैं, उसको छिटपुट घटना बता देते हैं, छिटपुट घटना बता देते हैं। और सरकार से अब सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं सरकार पर कि आखिर एक नाबालिग के साथ बिहार में इस तरह से होता है। हालांकि सरकार का एक्शन बाद में हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर लोगों के अंदर का आक्रोश अभी भी थमा नहीं है।
11: बिहार की इन तस्वीरों ने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया है। एक नाबालिग लड़की पर लोग हैवान की तरह टूट पड़े हैं। जिसने भी यह तस्वीर देखी वही परेशान है, आहत है, आक्रोश में है, सवाल पूछ रहा है कि बिहार को हो क्या गया। लेकिन बिहार के माननीय मंत्री इस वारदात को छिटपुट मानते हैं।
12: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
11: सुना आपने, जिस घटना पर शर्मसार होना चाहिए, सिर्फ शर्म से झुक जाना चाहिए, उस पर सम्राट चौधरी के मंत्री कह रहे हैं कि ये तो छिटपुट घटना है। ये बताता है कि बिहार की सरकार जघन्य अपराधों को किस नजरिए से देखती है। मंत्री श्रवण कुमार को तो आपने सुना, लेकिन ऐसी सोच सिर्फ उन्हीं की नहीं है। वो जिस पार्टी के हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष भी शर्मनाक बयान देने में पीछे नहीं है।
13: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही
1: है। इससे पहले जो बयान आपने सुना था श्रवण कुमार का, अब एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने बयान से पलटे अब इस पूरी घटना को शर्मनाक बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बयान सामने आता है उसके बाद अब देखिए श्रवण कुमार ने जमुई की घटना को शर्मनाक बताया। इससे पहले क्या बयान दिया था वो तो आपने सुन लिया था, छिटपुट घटना बताई थी इससे पहले श्रवण कुमार ने।
14: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा, लेकिन इस घटना में जिन लोगों का मैंने हाथ है, जिन लोग जो लोग इस घटना में शरीक हैं उनकी कल गिरफ्तारी हुई है।
1: तो अब मंत्री जी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन तब तक सरकार को और पार्टी को जो डैमेज होना था वो हो गया। और कहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: हरमन ब्रिगेड ने कमाल कर दिया। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और इस बार फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से मात दे दी। 2022 के गेम्स में भी टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था और यहां पर पहली बैटिंग करते हुए 216 रन का लक्ष्य श्रीलंका को दिया गया था, लेकिन श्रीलंका की पूरी टीम 15.4 ओवर में महज 69 रन पर सिमट गई है। स्मृति मंदाना ने 79 रन बनाए, ऋचा घोष ने 49 रन की नाबाद पारी खेली और शेफाली वर्मा ने 48 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, माँ ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है, अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है, कितना गहरा उस परिवार का दुख होगा। पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पढ़ने की क्या आवश्यकता।
3: आईआईटी बॉम्बे पवई को राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है, उस आईआईटी पवई के डायरेक्टर पर क्या बीत रही होगी जिसका इस्तीफा आप ले रहे हैं। दोनों विषयों को गंभीरता से समझिए। बच्चे की मृत्यु का सभी को दुख है, संवेदना है, उसने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठे, क्राइम ब्रांच आए, पुलिस आए, इसकी एक निष्पक्ष जांच भी हो। साथ ही साथ नकल को भी तो रोकना शिक्षक का ही काम है, मैनेजमेंट का ही काम है।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
2: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं हैं, सरकार के लोग चिंतित नहीं हैं, सरकार के लोग मर्माहत नहीं हैं। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा, लेकिन इस घटना में जिन लोगों का माने हाथ है, जो लोग इस घटना में शरीक हैं उनकी कल गिरफ्तारी हुई है और भी जो बचे लोग हैं उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई सख्त कार्रवाई कर रही है। इस तरह के कृत्य करने वाले को किसी भी हालत में बचने नहीं दिया जाएगा, हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

जरूरत नहीं तो कॉल और एसएमएस के लिए रिचार्ज मिलेगा सस्ता। ट्राई का बड़ा फैसला कंपनी को देना होगा, विकल्प जरूरत और बजट के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं मोबाइल यूजर्स। जमुई दरिंदगी मामले में घिरे सम्राट चौधरी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी नंदन यादव गिरफ्तार, 3 नाबालिग समेत कुल 5 आरोपी अरेस्ट। दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से गैंगरेप केस में एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार, 2 और लोगों को पुलिस ने पकड़ा। सदर बाजार इलाके में बच्चे से दरिंदगी के बाद फूटा आक्रोश। बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे खुदकुशी केस में जांच तेज, क्राइम ब्रांच ने खंगाली परीक्षा हॉल से लेकर हॉस्टल तक की सीसीटीवी फुटेज। सुसाइड मामले में आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में आई आईआईटी दिल्ली और मद्रास की फैकल्टी। एशियन गेम्स में भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, फाइनल में श्रीलंका को धूल चटाकर जीता गोल्ड मेडल, लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक हासिल करने का रिकॉर्ड।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। जमुई बदसुलूकी मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी नंदन मुठभेड़ के बाद किए गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। इसके अलावा पुलिस मुठभेड़ में दूसरे आरोपी हरे राम के पैर टूटने की खबर है, 3 नाबालिग समेत कुल 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार। दोनों मुख्य आरोपी नंदन यादव और हरे राम यादव जमुई के प्रतापपुर गांव के रहने वाले हैं और दोनों ही ट्रैक्टर चालक का काम करते हैं। इस मामले में पुलिस पहले 3 नाबालिगों को पकड़ चुके और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई। जमुई घटना पर भड़के प्रियंका गांधी, कहा कि सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं तो बड़ी योजनाओं का फायदा क्या। आईआईटी बॉम्बे खुदकुशी केस में जांच भी तेज, क्राइम ब्रांच ने खंगाली परीक्षा हॉल से हॉस्टल तक की सीसीटीवी फुटेज। आईआईटी दिल्ली फैकल्टी फोरम का आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर दुल्ला को समर्थन, कहा कि बिना सबूत आरोप लगाकर प्रोफेसर की छवि खराब करने की कोशिश। आईआईटी बॉम्बे विभागों पर आईआईटी दिल्ली फैकल्टी फोरम का बयान, शिक्षकों की शैक्षणिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने की बात कही। सुसाइड मामले में आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में आईआईटी दिल्ली के बाद अब मद्रास के फैकल्टी भी आए सामने। आईआईटी बॉम्बे में सुसाइड रोकने की कवायद, इस हॉस्टल में सीलिंग फैन की जगह लगेंगे वॉल माउंटेड फैन। दिल्ली में एसआईआर को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। दिल्ली एसआईआर पर प्रशांत भूषण का गंभीर आरोप, बोले कि वोटर लिस्ट से 47 लाख नाम हटा दिए गए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, सीजेआई ने आयोग को अंतर की कैटेगरी और स्पष्ट करनी होगी का। लगभग 30 लाख नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल कि चुनाव आयोग ने बीएलओ की संख्या बताई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 14,000 बीएलओ हैं, 1200 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तैनात हैं। मिली एसआईआर पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा कि एक भी योग्य वोटर का नाम हम हटने नहीं देंगे, ऐसा दावा है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 29 अक्टूबर डेडलाइन जरूरत पड़े तो फिर एक्सटेंशन के लिए भी तैयार है। लखनऊ में सीएम योगी ने माध्यमिक स्कूलों में टीचर के 3,500 पदों पर नियुक्ति पत्र बांटा है। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक को नियुक्ति पत्र मिले। नौकरी महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी का संबोधन, भारत को बताया विश्व गुरु, जीवन में शिक्षा की भूमिका को बहुत अहम बताया। सीएम योगी का बिना नाम लिए अखिलेश पर हमला, बोले कि अब सिर्फ सिंडिकेट का डाका नहीं मार सकते, वो नकल माफियाओं की पर नकेल कसी जा चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी का दौरा, दूसरा दिन सहारनपुर में नितिन नवीन कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का दावा, बोले कि 2027 में होने वाला है बीजेपी का आगाज, पार्टी की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पूर्व सांसदों, विधायकों, संगठन के बड़े पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा, बूथ मैनेजमेंट, सदस्यता अभियान और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा। नितिन नवीन के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक, किसान के मुद्दों, जाट मुस्लिम समीकरण के बीच में संगठन को मजबूत करने पर जोर। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने खोला गठबंधन का दरवाजा, 2 अक्टूबर तक ऐलान का दावा, ओवैसी बोले बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार। ओवैसी का विपक्ष को ऊपर, बोले कि बीजेपी को रोकने के लिए अकेले कोई पार्टी काफी नहीं है, जो बीजेपी को सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं वो हमसे बात करें। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन में हलचल तेज, बीजेपी को हराने की रणनीति पर जो है नेताओं के बीच में नसीहतों का दौर। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले कि अखिलेश की सक्रियता मायने नहीं रखती, बीजेपी से लड़ाई कांग्रेस के बिना नहीं हो सकती। इमरान मसूद के बयान पर अकरा हसन का पलटवार, अखिलेश को बताया बीजेपी को हराने वाला चेहरा, यूपी में बीजेपी को सिर्फ अखिलेश यादव ही हरा सकते हैं कहा। सपा सांसद इकरा हसन का कांग्रेस पर निशाना, बोले कि कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, गठबंधन नहीं रहा तो कांग्रेस को नुकसान। अजय राय का केजरीवाल पर हमला, बोले कि शराब नीति विवाद में घिरे लोग ड्रग्स पर बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में शराब कारोबार को बढ़ावा दिया। राम मंदिर दान मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट ली गई, 25 सितंबर तक अब चार्जशीट दाखिल करनी होगी। राम मंदिर दान मामले में एसआईटी की जांच में 105 बार रकम निकालने की कोशिश हुई, 86 कीमती वस्तुएं बिना रसीद के मिल गई। पीडीए रथ के रंग को लेकर मायावती का हमला, कहा कि समाजवादी पार्टी के पीडीए रथ में लाल कम, बीजेपी आरएसएस का भगवा रंग ज्यादा। मायावती के भगवाकरण वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलट, बोले कि सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखाई देता है। यूपी 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति, 403 सीटों पर 27,000 वोट बढ़ाने का अखिलेश का लक्ष्य, कम अंतर से हारी हुई सीटों पर फोकस। नशे के खिलाफ अमित शाह का बड़ा एक्शन प्लान, एएनटीएफ प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी के साथ नशे के खिलाफ बनेगी नई रणनीति, ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी। नशे के खिलाफ 3 साल का एक्शन प्लान और डार्कनेट क्रिप्टो से ड्रग तस्करी पर कसेगा शिकंजा, एनसीबी की नई वेबसाइट लॉन्च, लखनऊ देहरादून में नए परिसरों की आधारशिला। नशे की मांग घटाने से नशा मुक्ति तक एंटी नार्कोटिक्स मिशन पर बनेगी नई रणनीति। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र राज्य एजेंसियां होंगी और ज्यादा मजबूत, 8 तकनीकी सूत्रों जो सत्र होंगे उनमें तस्करी और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक की रणनीति पर मंथन। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ी, मिलन प्रधान ने 5 मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की। नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस के प्रचार पर संकट, मिलन प्रधान 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में, 6 अक्टूबर को होगा मतदान। नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पर शिकंजा, हत्या समेत कई मामलों में गिरफ्तारी, पुलिस के मुताबिक 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े हुए हैं मामले। टीएमसी के बाकी सांसदों पर एक्शन की तैयारी, ओम बिरला ने जवाब के लिए आज तक का समय दिया और सांसद सुदीप की अयोग्यता याचिका पर 22 सितंबर तक देना होगा जवाब। टीएमसी के 20 बाकी सांसदों की सदस्यता पर तलवार, अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर से कार्रवाई तेज करने की उठाई मांग, अयोग्यता याचिका पर स्पीकर ने सांसदों को नोटिस दिया। संगरूर में ड्रग्स को लेकर सियासी संग्राम, कांग्रेस का आरोप, पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी का पूरा तंत्र ड्रग्स के खेल में शामिल। ड्रग के खिलाफ आवाज उठाने वाले जग्गा के जहर खाने पर बीजेपी आप कर दोनों का हमला, तरुण चुग बोले कि सच बोलने वालों को मिटाना यही तो आपका मॉडल है। संगरूर ड्रग्स कांड पर आम आदमी पार्टी का बलड़वा, संजय सिंह बोले कि बीजेपी कांग्रेस और अकाली दल पंजाब को बदनाम करने में जुटे, झूठ फैला रहे। ड्रग्स के मुद्दे पर घिरी पंजाब सरकार, प्रताप बाजवा का सीएम मान पर हमला, भगवंत मान तो नशा रोकने में नाकाम है। महादेव बैटिंग केस में इज माई ट्रिप के को फाउंडर निशांत पेटी आरोपी और ईडी का अवैध रकम निवेश का आरोप है। महादेव बेटिंग केस में ईडी का एक्शन, निशांत पेटी के 59 करोड़ के शेयर भी जब्त किए गए और पहले भी छापेमारी हुई थी। जयशंकर की ईयू समकक्षों के साथ अहम मुलाकात, खाड़ी, यूक्रेन, इंडो पैसिफिक पर चर्चा, भारत ईयू सहयोग के कई मुद्दों पर मंथन। यूएन महासभा के बीच जयशंकर की यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक, खाड़ी, यूक्रेन और इंडो पैसिफिक पर चर्चा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गहरी खाई में गिरी कार हादसे में 4 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में युवती से छिना आईफोन 18 प्रो, 3 दिन पहले ही खरीदा था फोन। सांबरकांठा में पदयात्रियों को बेकाबू स्कॉर्पियो ने रौंद दिया, 1 श्रद्धालु की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल, गुस्साए भीड़ ने स्कॉर्पियो को जला दिया। प्रतापगढ़ के कोतवाली में बाथरूम में 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, घटना सीसीटीवी में कैद। तेलंगाना में आदिलाबाद में सरकारी अस्पताल में एसी फटने से 5 दिन के नवजात की मौत, वार्ड में अफरा तफरी। भिवाड़ी में फर्जी हरियाणा पुलिस अधिकारी बनकर मेडिकल स्टोर संचालक से फिरौती वसूलने वाला आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के कालकाजी मंदिर घूमने गई नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग से रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, दिल्ली में लोगों ने देशबंधु गुप्ता रोड थाने पर किया हंगामा, प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प। दिल्ली के कालकाजी गैंगरेप केस में कार्रवाई, घटनास्थल से आरोपी की पिस्टल बरामद। लखनऊ हिट एंड रन केस मामले में पीड़िता को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार। तिरुवल्लूर में सरकारी अस्पताल परिसर में महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली। सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में साजिश के तहत लगाई गई आग, 14 दुकानों के जलने में लगभग 24 करोड़ का हुआ था नुकसान। आसनसोल के बीबी कॉलेज में एबीवीपी के 2 गुटों में भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद हुई छात्राओं के साथ मारपीट। हैदराबाद में डांस ग्रुप से इंडियन रॉक पाइथन और मुर्गी बरामद, सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल का है आरोप। दक्षिण 24 परगना में भांगर महाविद्यालय में नए अध्याय साइंतन बसों के खिलाफ प्रदर्शन, एसएफआई और स्टूडेंट फ्रंट कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। कोपल में बंदर के हमले में 91 वर्ष की बुजुर्ग महिला की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में मॉल, रेस्टोरेंट और फूड प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, गंदगी और लाइसेंस उल्लंघन पर कार्रवाई। प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी की पुरानी नियमावली पर मांग पर छात्रों का आंदोलन, अब तेज शिक्षा निदेशालय पर आमरण अनशन कर रहे हैं। कानपुर देहात में टायर फैक्ट्री में भीषण आग, 2 मजदूरों की मौत। संभल में 7 साल पुराने सिपाही हत्याकांड में बड़ा फैसला, दोषी धर्मपाल को उम्र कैद, 1 लाख से ज्यादा रुपए का जुर्माना भी। बरेली में पेट्रोल चोरी के आरोप में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 112 की गाड़ी से तेल निकालकर पेट्रोल पंप पर बेचने का आरोप। केवड़िया में सजेगा 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का मंच, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में भव्य आयोजन, दिल्ली से बाहर पहली बार गुजरात में हो रहा है राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए सितारों का केवड़िया पहुंचना जारी, वडोदरा एयरपोर्ट पर देखिए फिल्म सितारों की हलचल, रणदीप हुड्डा, धनुष समेत कई हस्तियां गुजरात पहुंचे। जूरी सदस्य अक्षय कुमार परिजा, इसके साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर जीवी प्रकाश भी पहुंचे, कोरियोग्राफर मास्टर कला समारोह में हिस्सा ले रहे। राष्ट्रीय सम्मान के लिए जुटा भारतीय सिनेमा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं का करेंगे सम्मान, 2024 के लिए चुने गए कलाकारों और टेक्नीशियंस को सम्मान मिलेगा। एक्टर कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए मिलेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान, दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। करण जौहर ने नई फिल्म का ऐलान किया और रॉ के संस्थापक आर एन काओ की जिंदगी और उनके काम पर आधारित होगी ये फिल्म। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 11 अगस्त 2028 तय किया है, 2028 में रॉ के 60 साल पूरे हो रहे हैं। नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म मेकर राम कमल मुखर्जी की नई फिल्म कॉमन आदमी का टीजर जारी, फिल्म में सीए देवेंद्र जैन की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में नए कलाकार अनुज, अनिल शर्मा और श्रीजा दत्ता के साथ दिग्गज एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेन गुप्ता और सोनाली कुलकर्णी स्पेशल अपीयरेंस में दिखेंगे। ओटीटी पर चलती वेब सीरीज दुपहिया सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज, सीजन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहला सीजन खत्म हुआ। रिलीज से पहले ही अल्लू अर्जुन की फिल्म में रचा इतिहास और रियल टाइम में सबसे अधिक लोगों के मोशन कैप्चर का बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक ही समय में 37 कलाकारों का रियल टाइम मोशन कैप्चर किया गया, इसमें एडवांस VFX और 92 कैमरों का इस्तेमाल किया गया। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भारत के लिए एक और गौरव कपल, नागालैंड की फिल्म अंग को 2027 के ऑस्कर अवार्ड्स के इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में डायरेक्ट एंट्री मिली। इस साल भारत की ओर से ऑस्कर जाने वाली ये दूसरी फिल्म, इसके पहले मराठी फिल्म गोंधल को भारत की ऑफिशियल एंट्री मिली थी। अप्रैल में शुरू होगी 3 इडियट्स के सीक्वल की शूटिंग, फिल्म नलकारा के बाद काम शुरू करेंगे आमिर खान। एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड, महिला क्रिकेट टीम ने जापान को 147 रनों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेलों में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार जीता गोल्ड, 2022 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। फाइनल में पहले खेलते हुए भारतीय महिलाओं ने खड़ा किया था 3 विकेट पर 216 रनों का स्कोर, 69 रन पर सिमट गए श्रीलंकाई टीम। भारत से स्मृति मंधाना ने 45 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेली, शेफाली वर्मा ने 48 रन बनाए और 49 रनों पर नाबाद रही ऋचा घोष। भारत से दीप्ति शर्मा ने झटके 3 विकेट, शेफाली श्रीचरणी और श्रेयांका ने 2-2 विकेट लिए। एशियन गेम्स में भारतीय तैराकी के लिए भी बड़ा शानदार खबर आई है और भारतीय टीम ने मेटली रिले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऋषभ दास, धनुष सुरेश और इसके साथ साथ बेनेडिक्टन रोहित और आकाश मणि ने हिट्स में 3 सेकंड का समय लेकर फाइनल में मारी एंट्री। कबड्डी में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का शानदार प्रदर्शन, अपने दूसरे ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया को करारी शिकस्त दी। पुरुष हॉकी मैच श्रीलंका से टकराएगी भारतीय टीम, भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे से दोपहर में मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय हॉकी टीम का जबरदस्त रिकॉर्ड, दोनों के बीच में अब तक खेले गए 13 मुकाबलों में से सारे मैच जीते टीम इंडिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद।
0: अब बात लखनऊ हिट एंड रन केस की। लखनऊ में हुए हिट एंड रन मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था। पुलिस ने इस केस में पीड़िता को धमकाने वाले शरीफ नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया है। लखनऊ हिट एंड रन केस मामले में ये जांच हो रही है और आरोपी पीड़िता को धमका रहे थे और धमकाने वाला आरोपी शरीफ नाम का पकड़ लिया गया।
1: नवाज भाई क्या घटना हुई थी?
2: एक से दो महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी अगर ना छोड़ूं।
3: यूपी की राजधानी लखनऊ से बीते दिनों आई इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। बीसर्क शहनवाज नाम के लड़के ने एक्स गर्लफ्रेंड को कार से कुचलने की कोशिश की, सरेआम उसकी हत्या का प्रयास किया। आरोपी शहनवाज अब पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरे आरोपी दानिश की तलाश जारी है। दानिश की तलाश में पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस बीच पुलिस ने लखनऊ हिट एंड रन केस में एक और बड़ा एक्शन लिया है। मामला दर्ज होने के बाद पीड़ित को धमकाने वाले आरोपी शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है।
2: इन्होंने मुझसे नाम पूछा।
3: कुछ दिन पहले ही पीड़ित लड़की ने आज तक से बातचीत में बताया था कि केस दर्ज होने के बाद शहनवाज का एक साथी शरीफ उसके घर आया था और उसे धमकी दी थी।
2: इनका दोस्त कल जो शरीफ आया था उसने पता है क्या बोला कि ये सब मत करना, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, दो तीन दिन में उनकी बेल हो जाएगी। और ऐसा बिल्कुल बोला, हम आपको प्रूफ और उनका कुछ नहीं कर सकती हो कि तुम्हारी इज्जत जाएगी, हम अपनी इज्जत जाने के चक्कर में ये सब बर्दाश्त करते हैं, आप बताइए मुझे।
3: पीड़िता के दावों के बीच ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। पुलिस धमकी देने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई है और अब शरीफ पर भी शिकंजा कस दिया। केस की जांच के बीच पीड़ित लड़की ने अपने मोबाइल पर कई वीडियो और तस्वीरें दिखाई, जिससे साफ पता चल रहा है कि आरोपी शहनवाज लंबे समय से उससे रिश्ते में था और इस दौरान ही वो उसे धोखा भी दे रहा था।
2: इनके वीडियो तो ऐसे मेरे पास हैं, मैंने तो नहीं अपलोड कर दिए, मैं जबरदस्ती किसी को रख रही थी।
1: दूर से दिखाइए,
2: इतने सारे मेरे साथ के ये सारे फोटोज वगैरह वीडियोज हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। ये देखिए घूम रहे हैं साथ में, ठीक है, अगर हम करना चाहें हम भी अपलोड कर सकते थे। नए नए वीडियो डीले के हैं, देख लीजिए आप खुद, सबके वीडियो हैं मेरे पास, डेली मिलते थे, डेली साथ में रहते थे, हम भी अपलोड कर सकते थे ना। मैंने इनका इंस्टाग्राम चेक किया था, तब उस पे दूसरा नाम आया।
3: पीड़िता का बयान साफ बता रहा है कि आखिर इन आरोपियों की साजिश कितनी गहरी थी, कैसे पूरा प्लान बनाया गया था। अब जब हिट एंड रन केस के बाद पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है, तब भी इसका डर कम नहीं हुआ है। पीड़ित को घर जाकर उसे धमकाने का प्रयास हुआ। माना जा रहा है कि इस केस में शरीफ की गिरफ्तारी के बाद फरार दानिश का सुराग पुलिस के हाथ लग सकते हैं। लखनऊ हिट एंड रन केस के एक और आरोपी पर पुलिस का शिकंजा जल्द कस सकता है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड के, जिसमें पुलिस के चार्जशीट में अब बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सिया की साजिश का बड़ा राज खुला है।

0: पुणे के बेहद चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच अब चार्जशीट के साथ एक अहम मुकाम पर पहुंच गई है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने वडगांव मावल कोर्ट में 5053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें लोहगढ़ किले को घटनास्थल के तौर पर रखते हुए फॉरेंसिक और टेक्निकल साक्ष्य को शामिल किया गया है। पुलिस ने 3 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए हैं। इन बयानों को मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन गवाहों ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को केतन अग्रवाल को धक्का देते हुए देखने की बात कही है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि उनके बेटे केतन का कत्ल सिया और उसके दोस्त चेतन चौधरी ने मिलकर किया है।
1: चार्जशीट दाखिल किया है बोल के पुलिस ने इंटीमेशन दिया है। मैंने सैटरडे को कोर्ट में माननीय न्यायालय में अर्ज किया है कि मुझे उसकी कॉपी मिले, तो मुझे शायद 1-2 दिनों में वो नया कॉपी प्राप्त हो जाएगी। और न्याय जिस हिसाब से मेरे को पुलिस मुख्यालय या एसपी साहब और जो एसआईटी के लोग थे उन्होंने काम किया है, मुझे लगता है कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है कि सिया चेतन चौधरी और उनके साथीदारों ने मिलके मेरे बेटे का कत्ल किया है।
2: तो आपको लगता है कि उनकी शादी हुई थी?
1: मुझे भी ये कुछ पेपर में पढ़ के पता चला है, पर मुझे सत्य का अभी कोई ज्ञान नहीं है। जैसे ही मेरे पास कुछ चार्जशीट आती है, कुछ होता है, मुझे पता चलता है तो मैं बताऊंगा आपको।
2: लेकिन अभी पुलिस से क्या गुहार है आपकी?
1: मुझे पुलिस से इतनी गुहार है कि वो इसमें जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है उसको न्यायालय के सामने पेश करके और मेरे
3: और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: यार लोन भूल गया। मैरी
5: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
6: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
6: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
7: There's nothing small about
8: us. Ujjivan, nothing small about us.
9: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
10: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
11: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: डेटा की जरूरत नहीं तो कॉल और एसएमएस के लिए रिचार्ज मिलेगा सस्ता। टीआरएआई का बड़ा फैसला, कंपनी को देना होगा विकल्प, जरूरत और बजट के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं मोबाइल यूजर्स। जमुई दरिंदगी मामले में घिरी सम्राट चौधरी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी नंदन यादव गिरफ्तार, 3 नाबालिग समेत कुल 5 आरोपी अरेस्ट। दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से गैंगरेप केस में एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार, 2 और लोगों को पुलिस ने पकड़ा, सदर बाजार इलाके में बच्ची से दरिंदगी के बाद फूटा आक्रोश। आईटी बॉम्बे खुदकुशी मामले की जांच तेज, क्राइम ब्रांच ने खंगाली परीक्षा हॉल से हॉस्टल तक की सीसीटीवी फुटेज, सुसाइड मामले में आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में आई आईटी दिल्ली और मद्रास फैकल्टी। एशियन गेम्स, भारत की विमेंस टीम क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, फाइनल में श्रीलंका को धूल चटाकर जीता गोल्ड मेडल, लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक हासिल करने का रिकॉर्ड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें, इन एसोसिएशन विद
2: भारत

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें असरदार, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बात जमुई की सबसे पहले करेंगे, जहां पर नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में बिहार पुलिस फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस वारदात के मुख्य आरोपी नंदन यादव को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जमुई में 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी मामले में वीडियो वायरल होने के बाद से ही बिहार सरकार पर गंभीर सवाल उठे, लेकिन पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया है, जिसमें 3 नाबालिग हैं। 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। तो जमुई बदसलूकी मामले में बिहार पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, अब 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नंदन यादव, जिसे आपने प्रमुखता से इस वीडियो में देखा होगा, किस तरीके से वो अभद्र व्यवहार इस लड़की के साथ कर रहा था, उसे पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे आरोपी को भी पैर में चोटें बताई जा रही हैं। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी और उसके साथी को मुठभेड़ के बाद जहां से पकड़ा गया, वहां से देखिए हमारे संवाददाता शशि भूषण की एक ग्राउंड रिपोर्ट।
1: लेकिन ये देखिए, यहां पे यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए, हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के, जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है। और एक प्रत्यक्षदर्शी है हमारे साथ, राजकिशोर राम, जो ये कुंदर बराज का इलाका है, कुंदर गांव है, वहां के ही रहने वाले हैं। और जो आरोपी हैं, दोनों मुख्य आरोपी, वो प्रतापपुर के रहने वाले हैं। प्रतापपुर का पहले जानते हैं राजकिशोर राम जी से। राजकिशोर जी, आप उस समय यहाँ मौजूद थे जब घटना हुई, तो क्या हुआ दरअसल बताइए हमारे दर्शकों को, बताइए।
2: हमारे गाँव की तरफ उधर से जम्मू जिला से रपेटते हुए आए प्रशासन लोग, तो हमारे कुंदर गांव के लोग उधर गांव में, हम लोग जब भीड़ जमा देखा तो कांस की ओर छुपने का प्रयास किया। उसके बाद उधर से बराज पर से पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए, और जिला से फिर इधर से घेरे, तो ये लोग को यहां रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
0: हमारे संवाददाता शशि भूषण क्राइम सीन पर मौजूद है, वहां से उनकी

0: के साथ वो यही पहुंचे थे इसी मड़वा पहाड़ को देखने के लिए जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। ये छोटे सा पहाड़ है और दो पहाड़ियां हैं यहाँ पे, एक पहाड़ी वो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाईं तरफ। इन दो पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं। जो 19 सितंबर की शाम जब पीड़ित और पीड़िता यहाँ पहुंचे थे तो उनको नहीं पता था कि जब रोशनी कम हो जाएगी तो इसी सड़क से आगे बढ़ते वक्त उनके साथ कोई हादसा होगा। हम जिस सड़क पे इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सड़क जो है वो जमुई लखीसराय मुख्य मार्ग से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ आती है और यहीं पर वो घटना घटी इसी सड़क पे। जो इस सड़क की तस्वीर है वो ये बताती है कि ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना हो जाती, क्योंकि पास में आबादी है। लेकिन इसी सड़क से आगे जब आप क्यूल नदी की तरफ जाते हैं तो वहां पर खनन का काम चलता है और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है और उसका सहयोगी हरेराम यादव, ये दोनों बालू खनन के कारोबार में शामिल हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बालू की जो घाट से निकासी होती है उसको लेकर के दूसरे लोकेशन पर लेकर के जाते हैं और इसी सड़क पर उस वक्त वो मौजूद थे जब घटना घटी और मड़वा पहाड़ देखने, उसकी तस्वीरें कैद करने के लिए आए दो नाबालिग लड़के और लड़कियां जो है वो निशाना बन गए उन दरिंदों का, जिसकी तस्वीरें, जिसका वीडियो शर्मसार करने वाला पूरा देश देख रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीमालम के साथ शशिभूषण, जमुई आज तक।
1: वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर की एक लंबी फेहरिस्त रही है, बल्कि यूं कहें कि योगी राज में अपराधियों से निपटने का स्टाइल बन गया है एनकाउंटर, लेकिन अब दूसरे राज्यों में भी पुलिस इसी स्टाइल को अपनाती दिख रही है। बिहार के जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया, मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार किया।
2: जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें और जो दोषी है उसको ट्रायल करा के तुरंत उसको सजा दिलवाने का काम करें।
3: शरीयत लॉस अपनाने चाहिए, इनके हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने ऐसे हाथों से छुआ और इतनी गलत तरीके से छुआ।
4: इस वीडियो ने बिहार को हिलाकर रख दिया, इस वीडियो ने सम्राट सरकार को सख्ते में ला दिया, इस वीडियो ने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जब एक नाबालिग लड़की के साथ सरेआम छेड़छाड़ हुई, जब भीड़ ने एक नाबालिग लड़की को घेर कर उससे जबरदस्ती करने लगे, जघन्य ज्यादती पर उतर आए, तो इस वीडियो को देखने वाले हर शख्स की आंखों में खून उतर आया। मांग उठने लगी दोषियों का एनकाउंटर करने की।
2: लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो और दिन दहाड़े रोड पर इस तरह की घटना आप लोग को भी देखना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें और जो दोषी है उसको ट्रायल करा के तुरंत उसको सजा दिलवाने का काम करें।
4: भाई वीरेंद्र अकेले नहीं थे जो हैवानियत करने वालों से सख्ती की हिमायत कर रहे थे। आज तक से बातचीत में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने भी सख्त से सख्त एक्शन की मांग की थी।
3: क्यों नहीं तुरंत अरेस्ट हुए, ये जैसे ही कंप्लेंट हुई थी वैसे ही क्यों नहीं अरेस्ट हुए, और फिर हम एलिबाई दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं कि ये तो वन ऑफ द इंसिडेंट है या कुछ है। हमें तुरंत ऐसी चीजों पे कार्रवाई करनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं कहूंगी ऐसे व्यक्तियों को जो माइनर कहते हैं, माइनर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, और आपने सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखे होंगे पूरे भारत भर में जहां माइनर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बूढ़ी औरत का रेप हो, छोटी बच्ची का रेप हो, ऐसे माइनर्स को एडल्ट की तरह ट्राई तो करना ही चाहिए। तो कभी कभी लगता है कि शरीयत लॉस अपनाने चाहिए, इनके हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने ऐसे हाथों से छुआ और इतनी गलत तरीके से छुआ।
4: साफ था कि सम्राट चौधरी की सरकार चौतरफा दबाव में घिर गई है, विपक्ष पूरी तरह हमलावर था और सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा था।
5: आप देखिएगा यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी

0: लड़कियां जो है अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी जी के बयान पर, एक संदेह पैदा करने वाला घटना है।
1: उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो ऐसे ही बोलते ही रहते हैं। जब ये विरोधी हैं तो हम अच्छा काम भी करेंगे तो नजर नहीं आएगा, वो अलग बात है। उधरने में नहीं जाना चाहता, लेकिन ना मैं जरूर कहूंगा कि हम लोग बिहार के मामला में हमेशा गंभीर रहते हैं। बिहार का जो आपने बताया है, ऐसा जो भी कांड होता है आप देखा होगा, तत्काल कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारी भी हुई है, जो बचे हैं वो बचेंगे नहीं, गिरफ्तारी कर ली जाएगी बहुत जल्द।
2: जब सम्राट सरकार को बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने एक बड़ा कदम उठाया। खबर आ रही है कि इस वारदात के मुख्य आरोपी नंदन यादव का एनकाउंटर कर दिया गया है।
3: पीड़ित लड़के और लड़की को शायद न्याय नहीं मिलता या फिर कोई जान भी नहीं पाता कि उनके साथ ऐसी घटना घटी है अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता। तो ये वीडियो वायरल होना उन आरोपियों के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुआ, और उसी के आधार पे पुलिस ने 7 से 8 आरोपियों की शिनाख्त की। और अब देखिए, नंदन यादव जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसका हाफ एनकाउंटर हुआ है, जमुई सदर अस्पताल में उसको पुलिस इलाज के लिए करके पहुंची है।
4: 7 से 8 आरोपी आप बता रहे हैं, कुल कितने के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कुल कितने अभी तक फरार है?
3: नेहा देखिए, कल 3 गिरफ्तारियां हुई थी, तीनों नाबालिग थे, 17-18 साल की उम्र के आसपास के। आज 2 गिरफ्तारियों की बात सामने आ चुकी है, एक नंदन यादव जिसका यहाँ पे एनकाउंटर हुआ, दूसरा हरेराम उर्फ राम आशीष, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उसका पैर टूटा है, किन परिस्थितियों में टूटा है ये जानकारी नहीं है, लेकिन कुल 5 आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में है।
2: जाहिर है सम्राट चौधरी सरकार ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दामन पर लगे दाग को धोने की कोशिश की है, लेकिन ये दाग पूरी तरह तभी धुल पाएगा जब बिहार में ऐसी वारदात दोबारा ना होने पाए। शशि भूषण, जमुई, आज तक।
4: इस पूरी वारदात में बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
5: ये इतना घृणित अपराध है कि जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और आपने अभी तक देखा है कि सरकार ने इस मामले में कितनी मुस्तैदी से और सख्ती से काम किया है कि पहले ही क्षण से पॉक्सो एक्ट लगा के, जिसमें सबसे कठोरतम सजा का प्रावधान है, वो एक्ट के तहत केस दर्ज करके जो अपराधी हैं और अपराधी भी जो भी अलग अलग किस्म से जिनका इस अपराध में सहयोग रहा है, जो घटना करने वाले हैं, जो वीडियो बनाने वाले हैं, जो उसको वायरल करने वाले हैं, सभी की पहचान की जा रही है और सभी को सख्त प्रावधानों के तहत कठोरतम सजा दी जाएगी।
4: उस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर कई सवाल उठाए।
0: जो जमुई में जो घटना हुई, जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो बच्चियां जो हैं, जो महिलाएं जो हैं, जो युवती है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, शर्मसार कर देने वाला वो वीडियो है। दोषियों को जितनी कड़ी से भी कड़ी सजा दी जाए वो कम है। जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, पूरे देश भर में बिहार सरकार की थूथू हो रही है। यही सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया था, यहां से चले जाइए मुंगेर, अगर कोई कुछ हो जाए, किसी को हाथ लगा दे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आज बिहार में ये वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बच्चियां सुरक्षित पूरे बिहार में नहीं है। चाहे दिन हो, रात हो, घर हो या सड़क हो, कॉलेज हो या स्कूल हो या अस्पताल हो। आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा अगर हिम्मत है।
4: इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे भयानक घटना बताते हुए महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर नाराजगी और अफसोस जाहिर किया है।
6: I saw that. It's horrible and crimes against, I didn't understand you asking about crimes against women. No, crimes against women are just increasing. It's become unsafe for women. It was always unsafe, but it's become more and more increasingly violent towards women. And I think that there's no point talking about big schemes and programs if we can't even ensure the safety of women on our streets. So it's really something that all of us need to think about. Wherever there are state governments, and especially central government, they need to think about how they are going to ensure that women feel safe.
4: और इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पहले इस घटना पर बेहद शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने घटना को छुटपुट मामला बता दिया। जब बयान पर विवाद बढ़ा तो बाद में उन्होंने बयान ही बदल दिया।
7: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाए।
8: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है। और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा, लेकिन इस घटना में जिन लोगों का मैंने हाथ है, जो लोग इस घटना में शरीक हैं, उनकी कल गिरफ्तारी हुई है, और भी जो बचे लोग हैं उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई, सख्त कार्रवाई कर रही है। इस तरह के कृत्य करने वाले को किसी भी हालत में बचने नहीं दिया जाएगा, हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
4: और अब बात दिल्ली से आई एक झकझोर देने वाली खबर की। यहां पर कालकाजी इलाके में एक पार्क में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तीन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, फिर छापेमारी कर दो और आरोपियों को दबोच लिया।
9: बीच दिल्ली एक नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी। अब पुलिस ने इस केस के आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में हुई गैंग रेप की वारदात के एक आरोपी आसिफ को पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कुछ ही देर बाद केस के दो और आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। ये तस्वीरें एनकाउंटर स्थल की हैं, जहां आरोपी की बाइक गिरी दिख रही है, पास ही आरोपी की पिस्टल पड़ी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आखिर मौके पर क्या हुआ, कैसे गैंगरेप के आरोपी की तलाश के बीच मुठभेड़ शुरू हुई।
10: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ, जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है, इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा, पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है, जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
9: बताया जा रहा है कि पीड़ित नाबालिग बीती शाम अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। पूजा के बाद दोनों आस्था कुंज पार्क गए। वहीं सभी आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे थे। मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने खुद को पुलिस वाला बताया, पुलिस की धौंस दिखाकर दोनों को धमकाया और फिर दरिंदगी को अंजाम दिया।
11: जो है आशीष, उसको एक पुलिस एनकाउंटर के तहत सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ा है। दो और लोगों के नाम सामने आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, तो इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जल्दी बाकी जो अरेस्ट है वो भी डाले जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी।
9: केस के एक आरोपी की एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। केस के दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और जिस जगह ये वारदात हुई उस क्राइम सीन से पूरी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा।
10: इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था कुंज पार्क में, जहां पर सोमवार देर शाम 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी आसिफ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आसिफ के पैर में गोली लगी है, वो घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दो साथियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमवार शाम उनको जानकारी मिली, शिकायत मिली कि 17 साल की एक लड़की के साथ इस पार्क में तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि 7:30 बजे के आसपास तीनों इस पार्क में दाखिल होती है, वो मंदिर आई थी और उसके बाद उसके बैक गेट के इलाके से होते हुए आस्था कुंज पार्क में आ जाती है गेट नंबर 7 से, और इस पार्क के अंदर जब वो पहुंचती है तो अंधेरा हो ही चुका था, लाइट जल रही थी लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं थी। तभी वो तीनों सामने आ जाते हैं, उन्होंने खुद को पुलिस वाला बनाया ताकि लड़कियों को डराया जा सके, और पुलिस वाला बनाने के बाद वो पीड़िता को अलग कर दिए, दो लड़कियों को एक तरफ उन्होंने कर दिया और पीड़िता को एक तरफ ले गए। वहां पर आसिफ नाम का आरोपी जो एनकाउंटर के बाद घायल हुआ है, पकड़ा गया है, उसने मंचा निकाला और उसने पीड़िता को डराना धमकाना शुरू किया और एक ने चाकू निकाला, दोनों ने मिलकर पीड़िता को धमकाया और उसके बाद बारी बारी तीनों ने गलत हरकत को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए।
4: उत्तर प्रदेश लखीमपुर के एक स्कूल में टीचर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर पूर्व प्रेमी सऊद अंसारी ने टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें आरोपी टीचर को घसीट कर ले जाता दिख रहा है। टीचर की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। खबरें ऐसे लाने मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: पानी के बिना जिंदगी कैसी होगी, क्या कभी सोचा है? इसी देश में ऐसे गांव भी हैं जहां पानी भरने के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज उसी गांव में बस टोटे घुमाइए और पानी बहने लगता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आजादी के 79 साल बाद लहुरिया द में हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंच चुका है। विंध्य की पहाड़ियों पर बसे करीब 1500 लोगों का ये गांव कभी पानी के लिए जंगल और पहाड़ नापता था, कभी रात रात भर लाइन लगानी पड़ती थी।
18: जेका दिन करा तो दिन कर ढोले ना, रात भर झिन्ना में पावे भाई टोटी आज तब लगे न पावे लागन है झिन्ना में बसे डारी।
17: गर्मी में हालात इतने खराब हो जाते थे कि टैंकर से हर परिवार को सिर्फ 15 लीटर पानी मिलता था, लेकिन जल जीवन मिशन की हर घर नल योजना के तहत 31 अगस्त 2023 को पहली बार इस गांव में नल से पानी पहुंचा।
19: हम लोग पानी के दरी जाते हैं, झिन्ना जाते हैं, फिर मैसे उड़ जाते हैं, ले आते तो पीते हैं। 3 साल से पानी आवा थी, अब घरे टोटी चालू को भरी थी।
17: पानी पहुंचने से सबसे ज्यादा राहत गांव की महिलाओं को मिली। क्षमा देवी बताती हैं कि
19: अब हो गया सही है, पानी वानी आ रहा है ना।
17: दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के गांवों में सबसे ज्यादा नल कनेक्शन लगाए गए। मार्च 2025 तक यूपी में 2,36,00,000 से ज्यादा घरों तक नल वाला पानी पहुंच चुका है। राज्य भर में करीब 5,07,479 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। जो गांव कभी प्यास की पहचान था, आज वहां हर घर में पानी की आवाज सुनाई देती है।
20: आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो हैं अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी जी के बयान पर एक संदेह पैदा करने वाला घटना है कि बिहार में आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।
21: इस तरह की घटना घटी है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, समाज को बदनाम कर देने वाली ये घटना है, और एक बेटी होने के नाते जब ये घटनाएं घर से करीब होती है तो निश्चित रूप से मन और ज्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ जो विपक्ष की टिप्पणी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करना अपने आप में ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी संकुचित है।

0: सीएम योगी की ये सेल्फी देखिए और इसका टारगेट समझिए। यूपी पुलिस के पुलिस उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और सहायक उप निरीक्षक लेखा के 912 पदों के लिए नियुक्ति पत्र देने के बाद सीएम योगी ने जो सेल्फी ली है वो बीजेपी के यूथ कनेक्ट को बताती है। और युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे नौकरी को लेकर योगी सरकार ने जो मेगा प्लान बनाया है वो सिलसिला अब जारी है। सीएम योगी ने यूपी के युवाओं को हर हफ्ते सरकारी नौकरी बांटने का जो ऐलान किया है उसी चरण में शिक्षा विभाग में नौकरियां दी गई हैं। सीएम योगी ने शिक्षा विभाग में कुल 3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, जिसमें सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पदों पर भर्तियां हुई हैं।
1: मुझे तो बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 3,567 को तो हम नियुक्ति पत्र आज दे रहे हैं और मैं पिछले एक सप्ताह के अंदर ये 5,297 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर चुका हूं। पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 9.5 लाख युवाओं को ये नियुक्ति पत्र उससे पहले वितरित किया है।
0: एक तरफ सीएम योगी पिछले 9 साल में 9.5 लाख सरकारी नौकरियों समेत 4 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ यूपी के कुछ युवा आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रयागराज में रामनामी ओढ़कर प्रदर्शन कर रहे ये युवा टीजीटी पीजीटी में पुरानी नियमावली लागू करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

डेटा की जरूरत नहीं तो कॉल और एसएमएस के लिए रिचार्ज मिलेगा सस्ता। टीआरएआई का बड़ा फैसला, कंपनी को देना होगा विकल्प, जरूरत और बजट के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं मोबाइल यूजर्स।

0: नाबालिग समेत कुल 5 आरोपी हुए अरेस्ट। दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से गैंगरेप केस में इनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार, 2 और लोगों को पुलिस ने पकड़ा। सदर बाजार इलाके में भी बच्ची से दरिंदगी के बाद फूटा गुस्सा। आईआईटी बॉम्बे खुदकुशी केस में जांच तेज, क्राइम ब्रांच ने खंगाली परीक्षा हॉल से हॉस्टल तक की सीसीटीवी फुटेज। सुइसाइड मामले में आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में आई दिल्ली आईआईटी और मद्रास की फैकल्टी। एशियन गेम्स में भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, फाइनल में श्रीलंका को धूल चटाकर जीता गोल्ड मेडल, लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक हासिल करने का रिकॉर्ड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकु।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या बोलेंगे ट्रंप? ईरान के खिलाफ 7 महीने से खिंच रही जंग। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने में रहे नाकाम। फिर भी जारी है खुद को शांति दूत बताने वाला गुणगान। अमेरिका में 66% ट्रंप को करते हैं नापसंद। सीएनएन को निशाना बनाया तो पूरी मीडिया ने किया ट्रंप का बहिष्कार। कल ईरान को दी तबाह करने की धमकी, अब उसके राष्ट्रपति से मिलने को तैयार। विदेश मंत्री अराची बोले यूएन में सुनाई देगी मिनाब कत्लेआम की गूंज। न्यूयॉर्क पहुंचे समझौता कराने में फेल ट्रंप के चापलूस शहबाज, लगे चोर बताने वाले पोस्टर, बूट पॉलिश पीएम बताने वाले बैनर ने चिढ़ाया। भारत का दिखा दम, बड़े बड़े देशों ने यूएन में स्थायी सीट के लिए किया समर्थन।
4: डी-रिस्क एंड डाइवर्सिफाई
3: संकटों से घिरी दुनिया के मुद्दे उठा रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर।
4: ऑफ चोक पॉइंट्स डोमिनेंस एंड डिसरप्शन।
3: सबसे बड़ा सवाल यूएन में समाधान या सुलह का सबसे बड़ा मंच हो चुका है नाकाम।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। जब दुनिया में 2 बड़ी जंगें समय छिड़ी हुई हैं, तब सुलह के लिए बना दुनिया का एक महामंच एक बार फिर सजा हुआ है। जी हां, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। इसमें करीब 130 देशों के या तो बड़े नेता खुद आ रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष या फिर उनके प्रतिनिधि इस चर्चा में, बहस में, बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 81वां सत्र है और इसका मुख्य विषय है विश्वास की बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन। एक संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे, और ये बेहद मुश्किल साबित हो रहा है, टेढ़ी खीर है समय ये। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के सामने रूस और यूक्रेन और ईरान और अमेरिका की जंग को रुकवाने की सबसे बड़ी न केवल चुनौती बल्कि जिम्मेदारी है, और इसमें वो अभी तक पूरी तरह से नाकाम रहा है। अब से करीब 3 घंटे बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे तो तमाम चुनौतियों पर वो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक चुनौती में वो खुद युद्ध में भाग ले रहे हैं, दूसरे में अमेरिका पर आरोप लग रहा है कि वो यूक्रेन को पिछले 3-4 वर्षों से लगातार हथियार की सप्लाई कर रहा है। तो 24 घंटे पहले ईरान को मिटाने की धमकी देने के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ मिलने की बात कर रहे हैं। मसूद पेजेश्कियान आज न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं, जबकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि मिनाब में 166 स्कूली बच्चियों की जो बेरहम हत्या हुई थी, अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल पर जो आरोप है कि अमेरिका ने अपने जहाज से वो मिसाइल दागी और इससे 166 बच्चियां मारी गई, ये मुद्दा यूएन में गूंजेगा। दूसरी तरफ जंग रुकवाने में नाकाम डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश की मीडिया से एक अलग जंग कर बैठे हैं। उन्होंने सीएनएन को व्हाइट हाउस प्रेस पूल से बाहर कर दिया तो पूरी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप का ही बहिष्कार कर दिया। न्यूयॉर्क के मेयर ने भी कैमरे पर प्रेस की स्वतंत्रता का उन्हें ज्ञान दिया। और इन सबके बीच भारत की धमक न्यूयॉर्क में दिखाई भी दे रही है, सुनाई भी दे रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के अलावा कई देशों के साथ रूस और यूक्रेन की जंग, खाड़ी के युद्ध की वजह से हालात और हिंद प्रशांत महासागर यानी इंडो पैसिफिक को लेकर अलग अलग चर्चाएं की और बेहद महत्वपूर्ण है ये चर्चाएं। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय यह है कि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का की जो महासभा है उसके सत्र के इतर भारत ने मध्य यूरोप के 4 शक्तिशाली देशों के साथ एक अलग महत्वपूर्ण बैठक की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ हुई इस बैठक में इन देशों ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता इसका समर्थन किया है। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के देशों का हिस्सा होने के साथ साथ ही हिंद प्रशांत महासागर में एक उभरती महाशक्ति है, ऐसे में भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी ही चाहिए। भारत ने पहली बार V4 यानी विसेग्राद समूह के 4 देशों के साथ यह बैठक की है। कौन से हैं ये देश? पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य। ये जो समूह है दरअसल इसकी स्थापना 15 फरवरी 1991 को हंगरी के ऐतिहासिक शहर विजेग्राद में हुई थी, इसीलिए इन देशों को V4 कहा जाता है। लेकिन सुनिए इस बैठक के बाद कैसे इस समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी का सामूहिक समर्थन किया है। सुनिए।
5: We all agreed as V4 countries that India as a part of the Global South country, upcoming superpower in the Indo-Pacific region, must be at the table as the permanent member of UN Security Council.
6: We have very good relations with the V4 countries and we know that these are countries with a very strong, very distinctive capability. These are industrial economies. Economies with great innovation and technology talent. I think how the V4 come together is for them to decide. But we certainly welcome the opportunity to work with the V4.
0: और न्यूयॉर्क में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 7:20 पर राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ जंग और रूस यूक्रेन जंग समेत दुनिया के सामने कई मौजूद चुनौतियों और अमेरिका की भूमिका पर बोल सकते हैं। पिछले संबोधन में उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की दलील दी थी, तो इस बार वो दुनिया की उन चुनौतियों की चर्चा कर सकते हैं जो काफी हद तक उन्होंने या अमेरिका ने ही खड़ी की है, चाहे वो व्यापार युद्ध हो या ईरान के साथ जंग के कारण तेल की कीमतों में लगी आग हो या हॉर्मूज के अलावा लाल सागर में शिपिंग को आ रही बड़ी चुनौतियों की बात हो। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस स्पीच से पहले हम आपको उससे जुड़ी और उनसे जुड़ी कुछ बड़ी बातें बताते हैं। उनकी ये स्पीच ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता अब तक के उनके सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। मात्र 32% अमेरिकी लोग उन्हें अब पसंद करते हैं, 66% अमेरिका में अब उन्हें नापसंद किया जा रहा है। वो ईरान युद्ध को 4-5 हफ्तों की बात बता रहे थे, लेकिन अब 7 महीने हो गए हैं और वो अभी भी इस युद्ध में फंसे हुए हैं। जो दूसरे टर्म की शुरुआत में वो कुछ ही दिनों में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे। आपको याद है वो यहां तक कह रहे थे कि उनके व्हाइट हाउस में घुसने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर वो इस मोर्चे पर भी नाकाम रहे हैं। फिर भी वो खुद को शांति दूत बताकर 8 युद्ध रुकवाने का दावा अभी भी कर रहे हैं और इस तरह के झूठे दावे वो एक बार फिर कर सकते हैं। ट्रंप यूरोप और कनाडा जैसे महत्वपूर्ण सहयोगियों से दुश्मनों जैसा सलूक कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें अमेरिका पर या उन पर अमेरिका को कितना भरोसा है ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दोस्ती गांठने की बात कर रहे हैं। उनकी नीतियों के चलते मल्टीलैटरल वर्ल्ड में अमेरिका का दबदबा लगातार घटता जा रहा है और सबसे बड़ी चिंता की बात जो विश्व भर में प्रजातंत्र के लिए है वो ये है कि चीन अमेरिका जो जगह खाली कर रहा है, धीरे धीरे चीन अपनी पैठ वहां बढ़ा रहा है। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर, उस संयुक्त राष्ट्र की सच्चाई बताते हैं जिसका 81वां सत्र बस उसके लिए देश अलग अलग जुट रहे हैं। क्या है इस समय? दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ बीते कई वर्षों में अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। यूएन का महत्व क्या पूरी तरह खत्म हो गया है? यह दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ एक संगठन था जो 21वीं सदी में सेल बाय डेट के बाहर हो चुका है। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध, यूएन फेल, ईरान, यूएन फेल, वेनेजुएला अमेरिका का हमला, एक देश के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया, यूएन मुंह बांधे बैठा रहा, सऊदी हूथी, वहां भी एक लड़ाई छिड़ गई है, यूएन फेल। आप अलग अलग जंग में देखिए यूएन क्या कुछ काम कर पा रहा है, नहीं, हर मोर्चे पर यूएन फेल साबित हो रहा है। और इसकी वजह क्या है? दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह संगठन शुरू हुआ था, तब से चला रहा यह देश केवल 5 देशों के वीटो सिस्टम पर आकर अटक जाता है। और आप देखिए उन 5 देशों में कई देश इस समय युद्ध के बादल या तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। आप अमेरिका की बात कर लीजिए तो अमेरिका ईरान के साथ युद्ध कर रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर चुका है, यूएनएससी 2 गुटों में इस समय बट गया है, एक रूस और चीन, दोनों के पास वीटो पावर है, दूसरा यूएस यूके फ्रांस, वीटो पावर है लेकिन ये एक अलग समूह बना हुआ है। अब दोनों जब आपस में भिड़ जाते हैं तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? तो वही घिसा पिटा स्वरूप, 5 देशों की वीटो पार, बाकी सब बोल भी ले तो क्या बोल रहे हैं किसी को इस पे फर्क नहीं पड़ता। भारत को इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्य बनाने की आवश्यकता पर अब जितने भी विकासशील देश है वो तो जबरदस्त इस पर बल दे ही रहे हैं, विकसित देश भी लगभग सभी ये कह चुके हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलनी चाहिए। और अब ब्रिक्स सम्मेलन के बाद तो चीन भी इस बात पर राजी हो गया है कि भारत और ब्राजील जैसे देश, वो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़े प्रजातंत्र हैं, उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए। और अब क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जब रिफॉर्म होगा, यूएन का रिफॉर्म होगा, तब जाकर क्या कोई समाधान निकलेगा? दरअसल एंटोनियो गुटेरेस वो 31 दिसंबर 2026 तक ही महासचिव हैं, उसके बाद अब प्रश्न कई उठ रहे हैं, क्या यूएन की कोई वैधता रह जाएगी, मान्यता रह जाएगी? क्योंकि अब तक यूएन क्योंकि एक मंच पर नहीं आ पा रहा है, ये 5 परमानेंट जिनके पास वीटो पावर है देश परमानेंट मेंबर्स, यही नहीं अभी डिसाइड कर पा रहे हैं कि गुटेरेस का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो जब इन बेसिक सवालों पर जिनको हाउसकीपिंग के मुद्दे कहते हैं कि कौन अगला अध्यक्ष होगा, कौन महासचिव होगा, कौन आगे चलाएगा, जब यहीं पर ये बात नहीं कर पा रहे हैं, एक मंच पर नहीं हो पा रहे, एक मत नहीं हो पा रहे, तो दुनिया की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? कल अमेरिका के दौरे पर पहुंच रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। अब ऐसे में क्या जिस G2 की बात की जाती है, अमेरिका और चीन, वैसे तो अलग अलग G2, G3, कई और विकल्पों की बात की जाती है, एक G7 अलग चला रहा है, ब्रिक्स अलग चला रहा है, लेकिन छोटे छोटे कई सारे गुट बन रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है वो इसमें शामिल नहीं होंगे चीन के राष्ट्रपति, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक अलग मुलाकात करेंगे एशिया पैसिफिक कंट्रीज की एक बैठक में भाग लेने के लिए वो यहां पर आ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में आगे क्या यूएन आगे कैसे बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में यूएन का मतलब क्या कोई रह गया है या बिना रिफॉर्म्स के यूएन अब एक केवल खत्म संस्था है कि 21वीं सदी में उसकी कोई भूमिका नहीं है, एक और बड़ा सवाल। सवाल सिर्फ यूनाइटेड नेशंस पर ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा फैसलों पर भी उठ रहे हैं। दरअसल अमेरिका में इस समय ट्रंप बनाम मीडिया की लड़ाई अदालत में पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने CNN, MS Rao और पॉलिटिको जैसे बड़े मीडिया संस्थानों पर व्हाइट हाउस में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप यह है कि उनकी सरकार के खिलाफ जानबूझकर नकारात्मक खबरें, जिसे डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज कहते हैं, वो ये चैनल और पब्लिकेशंस चलाते हैं। वीकेंड पर इन संस्थानों के पत्रकारों ने उनके पास जो प्रेस पास थे उसे जब्त कर लिया गया। इस फैसले के बाद अब पूरी की पूरी अमेरिकन मीडिया ने राष्ट्रपति ट्रंप का बहिष्कार करने का निर्णय कर लिया है। और इसी वजह से जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हेलीपैड का उद्घाटन किया तो वो बोलते रहे लेकिन उनका ऑडियो दुनिया को सुनाई नहीं दिया। अगर मीडिया का बहिष्कार नहीं होता तो प्रेस पूल से वीडियो और ऑडियो उसका पूरा इंतजाम किया जाता। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा और व्यस्तताओं के कारण 5 बड़े टीवी नेटवर्क, जिसमें ABC, CBS, CNN, फॉक्स न्यूज और NBC, ये 5 अलग अलग अमेरिका में नेटवर्क से बारी बारी से प्रेस पूल के तौर पर यह राष्ट्रपति के हर कार्यक्रम का वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसके बाद ये बाकी चैनल भी, क्योंकि ये व्हाइट हाउस का प्रेस पूल है, सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। सोमवार को इस पूल की जिम्मेदारी CNN की थी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बैन के कारण वो कवरेज नहीं कर पाए। खास बात ये कि CNN के रोके जाने के विरोध में अन्य जो उनके प्रतिद्वंदी नेटवर्क भी हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक माना जाने वाला फॉक्स न्यूज भी शामिल है, लेकिन उसने भी मीडिया की एकजुटता दिखाई और उन्होंने कहा कि जब तक व्हाइट हाउस किसी एक मीडिया संस्थान को उनकी रिपोर्टिंग के कारण निशाना बनाएगा, तब तक कोई भी नेटवर्क अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यक्रमों की पूल कवरेज नहीं करेगा। अब कल अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी को लेकर अपनी बात खुलकर रखी। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के सरकारी आवास ग्रेसी मैंशन पहुंचे थे और सभी मीडिया के लोग भी वहां मौजूद थे। सुनिए ममदानी और ट्रंप ने प्रेस के साथ चल रही जंग को लेकर क्या क्या कहा।
7: I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in is everyone, no matter the opinion or the critique, that we engage.
8: It's interesting because they said they were going to boycott me, but they never boycott me, so I wasn't very worried about that. Look at all that press. But no, I'm not. I'm only doing it because I think the press also has an obligation. And, you know, I won in a landslide. I won the election in a landslide. I've done great things. I've done a lot of great things. I've settled 8 wars. And they're doing very poorly. You would think that an outlet would write at least reasonably well, but never. If you look at CNN, it's fake news. If you look at MS Now, I don't even know what MS Now is. I guess it's the MSNBC, what it used to be, or MSDNC, as some people call it. That's Democrat National Committee. But it's just biased news. And I think that these outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house. This is a special house, Gracie Mansion.
0: और जब मीडिया ने व्हाइट हाउस कवरेज का बॉयकॉट कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया पैंतरा आजमाया है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप टीवी या ट्रंप टीवी लॉन्च कर दिया। अब व्हाइट हाउस से जुड़ी कवरेज ट्रंप टीवी के जरिए होगी। वही ट्रंप के बयान और व्हाइट हाउस में होने वाली हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग खुद करेंगे और फिर उसे जारी करेंगे, लेकिन ये पहले की तरह निष्पक्ष नहीं होगा। ट्रंप टीवी पर वही चीजें आएंगी जो ट्रंप के हित में होंगी। डोनाल्ड ट्रंप इससे प्रेस पूल को तो दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष खबर देखने वाले अमेरिकियों से वो और दूर हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर डोनाल्ड ट्रंप को वो कवरेज भी नहीं मिल पाएगी जो इस समय मिल रही थी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचे वहां पर उन्हें भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। उनके होटल के बाहर मौजूद जो प्रवासी ईरानी हैं और जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सैयद अब्बास अराकची के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हूटिंग की। हालांकि इस भारी विरोध के बावजूद सैयद अब्बास अराकची का दावा है कि वो अमेरिका को मिनाब हमले के मुद्दे पर घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर रुख खासा उलझा नजर आ रहा है। कल तक ईरान को पूरी तरह से मिटा देने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब काफी बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मुलाकात कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि कूटनीति के इस मंच पर सैयद अब्बास अराकची और अमेरिका के नेतृत्व के बीच ये तलखी क्या नया मोड़ लेती है।
9: यह स्वाभाविक है कि यह मंच एक ऐसी जगह होगी जहां ईरान के लोग और मिनाब स्कूल के शहीद बच्चों के परिजन अपनी बात रख सकेंगे। मिनाब का मामला एक ऐसा सबूत साबित हो रहा है जिसे वॉशिंगटन नजरअंदाज नहीं कर सकता। हाल ही में यून के एक पैनल ने पाया है कि यह एक युद्ध अपराध था और वॉशिंगटन उस काउंसिल से हट गया जो उसका पक्ष सुन सकती थी।
0: ईरान से समझौता कराने में पूरी तरह से नाकाम, हर मोर्चे पर नाकाम पाकिस्तान को अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ही ये कह चुके हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर समझता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। इसीलिए जिस पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले सर पर चढ़ा रखा था, उसके प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुंचने पर उन्हें इस समय कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शाहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, लेकिन विमान से जब वो उतरे तो सन्नाटा था। इस बार भारी भरकम आर्थिक संकट का हवाला देकर शाहबाज शरीफ ने खर्चों में कटौती का दिखावा किया और अपने साथ केवल उप प्रधानमंत्री इशाक डार और विशेष सहायक तारिक फातिमी के साथ एक छोटा प्रतिनिधिमंडल लेकर वो अमेरिका गए हैं। लेकिन अमेरिका में बसे पाकिस्तानियों ने इसे ढोंग बताया और उनकी पोल खोल कर रख दी। मैं आपको वो तस्वीरों भी दिखाऊंगा। न्यूयॉर्क के सबसे व्यस्त पेन स्टेशन के बाहर पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो समर्थक हैं, शाहबाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने पोस्टरों की झड़ी लगा दी। और इन पोस्टरों में आप जरा गौर से देखिएगा, इन पोस्टरों को चेरी ब्लॉसम पॉलिश होती है ना, तो उन्हें चेरी पॉलिश और चोर बताते हुए लिखा कि चोरों की सरकार नामंजूर। इसके साथ ही उन्हें फर्जी जनादेश से बनी फॉर्म 47 की सरकार का प्रधानमंत्री करार दिया गया है। पोस्टर पर 12 अरब पाकिस्तानी रुपए के उस आलीशान विमान की तस्वीर भी छाप कर तीखा तंज कसा गया है। यह विमान इसी साल पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने अपने लिए खरीदा था। विरोधियों ने पोल खोलते हुए उजागर किया कि जिस पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन यानी PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बोली महज 10 अरब रुपए लग रही है, वहां के हुक्मरान अपने पैसे नहीं जनता के पैसों के 12 अरब का प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं अपने लिए। इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में जारी फासीवाद के खिलाफ लगे ये जो पोस्टर है, अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया और राजनयिकों के बीच शाहबाज सरकार की फजीहत करा रहे हैं। इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से
11: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: मैडी, I need to open a savings account.
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक?
3: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
2: Okay.
3: Ujjivan, nothing small about us.
4: Mera rutba hai mera signature. Mera jazba hai mera signature. Bebaak hai mera signature. Signature finest silver ilaichi, a premium product from Dilbaag Group.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: In association with
3: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
4: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
5: There is a very famous quote ki history repeat itself.
6: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
7: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
6: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

डेटा की जरूरत नहीं तो कॉल और एसएमएस के लिए रिचार्ज मिलेगा सस्ता। टीआरएआई का बड़ा फैसला, कंपनी को देना होगा विकल्प, जरूरत और बजट के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं मोबाइल यूजर्स। जमुई दरिंदगी मामले में घिरी सम्राट चौधरी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, इनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी नंदन यादव गिरफ्तार, 3 नाबालिग समेत कुल 5 आरोपी हुए अरेस्ट।

0: सीसीटीवी फुटेज, सुइसाइड मामले में आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में आए आईआईटी दिल्ली और मद्रास की फैकल्टी। एशियन गेम्स में भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, फाइनल में श्रीलंका को धूल चटाकर जीता गोल्ड मेडल, लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक हासिल करने का रिकॉर्ड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: चुनाव में पुतिन की पार्टी की बड़ी शान, अब कांटों भरे वॉर जोन में चलते रहने का मुश्किल इम्तिहान। लगातार दूसरे दिन रूस के हमलों से यूक्रेन में कोहराम। रूस ने कीव और डिनिप्रो में बरसाए बम। न्यूयॉर्क पहुंचे ज़ेलेंस्की, सीज फायर की तलाश। क्या अमेरिका में पूरी होगी शांति की आस? ट्रंप के साथ आज होगी ज़ेलेंस्की की मुलाकात। बातों से बनेगी बात या बम बिगाड़ेंगे हालात? एक तरफ चल रहा है कूटनीति का दौर, तो दूसरी तरफ मिसाइलों और बमों का शोर। आखिर कब तक थमेगी तबाही?
0: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत, और रणभूमि में अब बात करेंगे उस घमासान की भी और समाधान की भी, रूस का बदला पार्ट टू। जी हां, रूस में राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी एक तरफा जीत करने के बाद भी उनके लिए आने वाला जो समय है उसमें मुश्किलें होंगी। क्यों? न्यूयॉर्क की बात करेंगे, जहां शांति की आस लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अब पहुंच गए हैं। उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगी, द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात के बाद स्थायी सीज़फ़ायर का कोई संकेत निकलेगा या फिर यह बातचीत केवल एक महज औपचारिकता है, क्योंकि रूस युद्ध भूमि में पिछले 48 घंटे से बेहद आक्रामक हो चुका है, और रूस का जो संदेश है ना, अब वो केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बमबारी यूक्रेन पर है, संदेश पूरे यूरोप को दिया जा रहा है। लगातार दूसरे दिन कई शहरों पर बमबारी की है रूस ने यूक्रेन के। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी के लिए यह जश्न का दौर है, लेकिन खुद राष्ट्रपति पुतिन एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यह रूस में पहला संसदीय चुनाव था। जीत हासिल करने के लिए क्रेमलिन ने हर तरीके का इस्तेमाल किया, बहुत मेहनत भी की। चुनाव से पहले क्रेमलिन ने विपक्षी पार्टी पर प्रतिबंध तक लगा दिया। रूस की जो सत्ताधारी यूनाइटेड रशिया पार्टी है, उसने संसद के निचले सदन में यानी स्टेट ड्यूमा में 450 में से 355 सीटें जीत ली हैं, मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। यह जीत 2016 में जो 343 सीटें मिली थी उसके रिकॉर्ड से अधिक है। लेकिन पिछले एक साल में रूस के नागरिक अपनी नाराजगी और निराशा दोनों ही खुलकर अब जाहिर

पर चेतावनी भी दे रहे हैं। बैंकर्स ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था युद्ध का बोझ बहुत लंबे समय तक उठाने की स्थिति में नहीं रहेगी। सत्ता पर पुतिन की जो पकड़ है वो बेहद मजबूत है, लेकिन आने वाला वक्त उनके लिए एक कड़े इम्तिहान का भी नजर आ रहा है। उनके खिलाफ यूरोप ने मोर्चा खोल दिया है। इसके बारे में हम विस्तार से शो पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इस समय यही है कि रूस यूक्रेन युद्ध जो चला आ रहा है 2022 से, क्या वो रूस बनाम यूरोप का युद्ध खुले तौर पर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको न्यूयॉर्क से आ रही इस समय बड़ी खबर बता दे, आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। यूक्रेन को इस मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। यह द्विपक्षीय बैठक व्हाइट हाउस के आधिकारिक शेड्यूल में शामिल है। करीब एक घंटे तक इसके चलने की उम्मीद है। दोनों नेता रूस यूक्रेन युद्ध, शांति वार्ता, ऊर्जा संबंधी और डीएस्केलेशन और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए अमेरिका इस ज़ेलेंस्की की मुलाकात, इसको लेकर यूक्रेन में तो बहुत उत्साह है और ज़ेलेंस्की खुद उत्साहित है। वो रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए और सीज फायर के लिए तैयार करने के लिए इसे एक मौके के रूप में देख भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, ईंधन पर हमला किया, बार बार ईंधन बनाने वाली उनकी जितनी भी फैसिलिटीज है उन पर हमला किया, और जो रूस का ताबड़तोड़ पलटवार हुआ, ये एक बड़ी चिंता की बात है। और अब बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने से पहले ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात की, और इससे रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में यूक्रेन को और क्या क्या मदद चाहिए इस बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस बारे में ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन ने मुख्य तौर पर यूक्रेन की सुरक्षा, और सर्दियों में क्योंकि रूस ने उनके ऊर्जा के कई ठिकानों को अब निशाना बनाया है, तो सर्दियों में मदद के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ईयू लोन से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल करके अपने एयर डिफेंस सिस्टम और अतिरिक्त मिसाइलें भी हासिल करने की तैयारी में है। साथ ही अपने सहयोगी के साथ मिलकर उन्होंने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी जो काम हो रहा है उसकी चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि इस साल इसके शुरुआती नतीजे देखने को मिल भी सकते हैं कि लोगों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए और खासतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम वो लाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, स्थिति यह है कि यूक्रेन इस समय किसी भी कीमत पर इस मौके को व्यर्थ जाने नहीं देना चाहता, और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग बेहद महत्वपूर्ण मोर्चों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस की घेराबंदी करने की कोशिश तो कर रहे हैं। कई मुलाकातें हो चुकी हैं, कुछ और मुलाकातें अगले 12 से 24 घंटों में होने वाली है। क्या क्या है ये मुलाकातें? ज़ेलेंस्की प्लस CIA, ज़ेलेंस्की प्लस अमेरिका के सीनेटर्स, ज़ेलेंस्की प्लस मैक्रोन, ये आप तीन बड़ी मुलाकातों का दौर देख रहे हैं। जो मुलाकातें हो चुकी हैं और जो हो रही हैं, आयरलैंड में CIA प्रमुख के साथ उनकी मुलाकात, फिर रूस पर पाबंदियां बढ़ाने पर वो जोर दे रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका और ज्यादा प्रतिबंध रूस पर लगाए, हथियारों की सप्लाई जल्द हो, और खासतौर पर न केवल एयर डिफेंस सिस्टम बल्कि ऑफेंसिव वेपन्स। कहा तो ये तक जा रहा है कि जर्मनी की तरफ से अपने हथियार यूक्रेन को भेजने की बात हो रही है और भेजे भी जा रहे हैं, ताकि यूक्रेन आने वाली सर्दियों पर अपना बचाव कर सके। लेकिन यह बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा, खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा। रूस कब हमला करने वाला है, कहां से हमला करने वाला है, ड्रोन स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक क्या होने वाली है, एडवांस इंटेलिजेंस अगर मिल जाए CIA की मदद से, सैटेलाइट की मदद से, तो फिर यूक्रेन अपना बचाव बेहतर कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम की गुहार, पेट्रियट सिस्टम, जितना भी सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि यूक्रेन अब जेट पावर्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और उसको रोक पाना यूक्रेन के लिए मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव हो रहा है। सर्दियों से पहले उनको ऊर्जा भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, और इसी की गुहार वो राष्ट्रपति मैक्रोन से लगा चुके हैं और राष्ट्रपति ट्रंप से लगाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से वो रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं,
रूस अब यह कह रहा है कि यह हमले और खासतौर पर मॉस्को पर 1500 ड्रोन जो दागे गए, एक चीज साफ है, यह यूरोप की मदद के बिना नहीं हो सकता था। और अगर यूरोप यूक्रेन की इस तरह मदद करता रहेगा तो इस युद्ध का खामियाजा यूरोप को भी उठाना पड़ सकता है। और अब स्थिति यह आ गई है कि यूरोप के देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बात जाएगी अगर शांति का रास्ता नहीं?

निकला एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप की। उसके अलावा ज़ेलेंस्की के यूरोप के देशों के प्रमुखों के साथ बैठक, वो भी न्यूयॉर्क में। तीसरी, ज़ेलेंस्की और अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों के साथ मुलाकात कि आप जल्दी जल्दी पेट्रियट मिसाइलें बनाइए, जल्दी जल्दी हथियार बनाइए, जल्दी जल्दी हमें वो हथियार दीजिए। लेकिन देखिए, खतरा और भी है। अमेरिका एक युद्ध और लड़ रहा है, वो ईरान के विरुद्ध युद्ध, जहां पर अमेरिका के सारे बेसिस जो है मध्य पूर्व में, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम कम है। तो अमेरिका पहला एयर डिफेंस सिस्टम की जो खेप है वो मध्य पूर्व में भेजेगा और फिर उसके बाद यूक्रेन की मदद करेगा। और इसीलिए यूक्रेन और यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के देशों पर भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला रूस की तरफ से बढ़ रहा है और ये यूक्रेन के लिए एक बड़ी चुनौती है। और अब हम आपको दिखाते हैं रूस का बदला पार्ट टू, कैसे लगातार दूसरे दिन रूस ने यूक्रेन पर भारी बमबारी की। देखिए, पहले तो यूक्रेन की तरफ से 1500 ड्रोन और रॉकेट और मिसाइलों से हमला हुआ रूस पर, मॉस्को तक को नहीं छोड़ा गया, एयर डिफेंस सिस्टम रूस का कम पड़ गया। जब एक तरफ ड्रोन बरसा रहे थे तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों ने पलटवार शुरू किया और वो कहर बरसा रहे हैं इस समय पूरे यूक्रेन पर। 10 प्रांतों में अलग अलग बमबारी हो रही है, कहां कीव, कहां डेनिप्रो, कहां ज़ेपोरोजिया और कहां ओडेसा। रूसी हमलों से भारी तबाही शहर दर शहर, प्रांत दर प्रांत यूक्रेन में। इस बीच यूरोपियन कमीशन ने आज दो टू कह दिया कि रूस लगातार कई देशों में हवाई सीमा का उल्लंघन कर अब यूरोप को उकसाने की कार्रवाई कर रहा है। तो जवाब देने का वक्त भी यूरोप की तरफ से आ रहा है।

0: रूस ने फिर की बमबारी, यूक्रेन में तबाही भारी। शहर शहर एयर स्ट्राइक, धुआं धुआं कई इमारत। कीव से लेकर दिनप्रो तक मिसाइल अटैक। ना तो रूस थमने को तैयार है, न ही यूक्रेन घुटने टेकने के लिए तैयार है। इसीलिए हर दिन बम बरस रहे हैं, जमकर बरस रहे हैं। हर रात मिसाइलों और ड्रोन से आसमान गूंज रहा है। खौफ इस कदर बरपा हुआ है कि किस शहर पर किस वक्त मौत का साया मंडराने लगे, किसी को अंदाजा नहीं है। मॉस्को हमले का बदला लेने के लिए रूस ने लगातार दूसरे दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर जमकर एयर स्ट्राइक की है। 10 से ज्यादा शहरों में अलग अलग दिशाओं से 172 ड्रोन दागे गए हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों ने भी जमकर कहर बरपाया है। एक के बाद एक लगातार हुए हमलों ने पहले से कमजोर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तार तार कर दिया है। पूर्वी दिनिप्रो में भी रूसी ड्रोन हमलों से काफी नुकसान पहुंचा है। पहले रूस ने गिरान ड्रोन से बम बरसाए, उसके फौरन बाद KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए तबाही मचा दी। आग की लपटों में पूरा इलाका घिर गया और कई लोग इसमें फंस गए। अब कीव रीजन में हुए रूसी हमले की तस्वीरें देखिए। मिसाइल तेजी से अपने निशाने की तरफ आ रही है और जोरदार धमाके के साथ तबाही का तांडव मचा रही है। सैन्य मोर्चे पर ढेरों मुसीबतें झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं। अपनी हर गतिविधि को सोशल मीडिया पर साझा करने वाले जेलेंस्की ने न्यूयॉर्क पहुंचने की तस्वीरें दिखाते हुए कहा है कि इस दौरे पर उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम मुलाकात होनी है। इसके अलावा कई और देशों, कंपनियों और संस्थाओं के प्रमुखों के साथ करीब 20 मुलाकातों में वो शिरकत करने वाले हैं। इन मुलाकातों में उनका एक ही मकसद होगा, यूक्रेन की सुरक्षा करना और जल्द से जल्द शांति स्थापित करना। इधर यूरोपियन कमीशन ने भी रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसने आरोप लगाया है कि यूरोप में हमलों और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। मॉस्को यूरोप को डराना चाहता है ताकि यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ाई जा सके।
1: Faces a fast proliferation of sabotage attacks and airspace violations. Moscow is trying to scare Europe into winding down its support for Ukraine. As Russia is willing to take greater risks, we also need to impose greater costs. There are many ways to do that. To begin with, stronger action against Russia's shadow fleet and tougher measures targeting its military-industrial complex.
0: अब हर किसी की नजरें न्यूयॉर्क पर टिक गई हैं, जहां ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद अमेरिका का रुख तय करेगा कि ये युद्ध किस दिशा की ओर जा रहा है। क्या अमेरिका इस युद्ध को खत्म कराने की एक बार फिर पहल करेगा, या फिर यूक्रेन की मदद कर आग में और घी डालने का काम करेगा। वैसे ये दूसरा विकल्प भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो खुद ईरान के साथ युद्ध में अपने हथियारों के तेजी से कम होने की दिक्कत से जूझ रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: और वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी, उसकी सेना ने बीती रात रूस के समारा इलाके में एक ऑयल रिफाइनरी पर फिर हमला किया। यह रिफाइनरी यूक्रेन की सीमा से लगभग 900 किलोमीटर दूर है। इस प्लांट की जो सालाना क्षमता है वो लगभग 7 मिलियन टन कच्चा तेल को प्रोसेस करने की है। यूक्रेन का यह हमला इतना सटीक था कि जोरदार धमाके के बाद, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरे परिसर में भीषण आग लग गई और कई किलोमीटर दूर से हमले की तस्वीरों को कैद किया जा सका है। सबसे ज्यादा नुकसान इसके मुख्य डिसिल्टेशन की जो यूनिट है उसमें हुआ है। यूक्रेन की रणनीति में थोड़ा बदलाव हुआ है। यूक्रेन ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए रूस की रिफाइनरीज पर हमले तेज कर दिए, ताकि रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाए और रूस के सैनिकों के पास अपने विमानों के लिए, टैंकों के लिए, जहाजों के लिए, अपने मूवमेंट के लिए भी बिल्कुल बचे ही ना ईंधन। यह युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। अब देखिए 2022 से रणभूमि में ये दोनों देश आमने सामने हैं और जो यूक्रेन की सेना है, ताजा रिपोर्ट्स के आंकड़े बेहद चौंका देने वाले हैं। वो बताते हैं कि रूस का ये इस दौरान कितना नुकसान हुआ है। हालांकि कितना यूक्रेन का नुकसान हुआ है ये जानकारी यूक्रेन सामने नहीं आने दे रहा है और कई लोग इसीलिए इसको वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के रूप में यानी अमेरिका और यूरोप का रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो चल रहा है उस रूप में भी देख रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे विनाशकारी दौर ये रहा है। ये यूक्रेन की सेना की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये नुकसान हुआ है 2022 से 26 के बीच रूस का इस युद्ध में। और इसमें दो राय नहीं कि चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, चार वर्षों से चल रहे इस युद्ध में दोनों देशों को 4.5 वर्ष हो गए, फरवरी में अगर ये युद्ध फरवरी तक चलता रहा तो 5 वर्ष हो जाएंगे, दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे विनाशकारी साल यूक्रेन की सेना के मुताबिक 2026 ही रहा है। क्यों? क्योंकि 2026 में जब 4 वर्षों से युद्ध घिसटता चला रहा था तो यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए, जो बात यूक्रेन दुनिया को नहीं बता रहा है कि रूस ने भी ताबड़तोड़ पलटवार किया है। इस समय 3 लाख लोग, जी हां, केवल इसी वर्ष यूक्रेन के मुताबिक रूस में 3 लाख लोग या मारे गए हैं या घायल हुए हैं। रूस का आकलन यह है कि यूक्रेन में नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ है। अगर आप फिर देखें तो 42,860 मौतें केवल जुलाई के महीने में हुई हैं। ये यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस का नुकसान है। क्या ये साइओप्स है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, या ये युद्ध में शत्रु की शक्ति का या उसकी कमजोरियों का आकलन? अगर आप रूस की तरफ से आंकड़े देखें तो रूस के मुताबिक यूक्रेन का भी बहुत भारी नुकसान हुआ है और कई बार ये वीडियो सामने आते रहे हैं कि अब जबरदस्ती युवाओं को उठा के युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है, यूक्रेन में भी कॉन्स्क्रिप्शन जिसे कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं यूक्रेन की। इस युद्ध में यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है ये CSIS की तरफ से जो जानकारी मिली है, 1,50,000 से ज्यादा सैनिक और नागरिकों की मौत का आकलन ये CSIS ने यूक्रेन का किया है। बड़ा नुकसान यूक्रेन का भी इस युद्ध में हुआ है। आप ये देखिए कि एक देश जिसने अपना लगभग 20% हिस्सा खो भी दिया है, फिर रूस का दावा यह है कि 4 लाख से ज्यादा यूक्रेन के लोगों की इस युद्ध में मौत हुई है, जिसके लिए रूस के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिम्मेदार हैं और यूक्रेन के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, वो यूक्रेन की भूमि का अधिग्रहण गैर कानूनी तरीके से करना चाहते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो लगभग 20% यूक्रेन का हिस्सा पिछले 4 वर्षों में कटकर रूस के साथ हो गया है। तो इस समय यह स्थिति बेहद बेहद संवेदनशील और अब खतरा, अगर इस बार संयुक्त राष्ट्र की बैठक में समाधान नहीं निकला तो फिर यह युद्ध और ज्यादा विकराल रूप ले लेगा और यूरोप इसकी जद में आ सकता है, तब एक विश्व युद्ध की तरह यह युद्ध बन जाएगा। और इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बीच दिल्ली एक नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी। अब पुलिस ने इस केस के आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में हुई गैंग रेप की वारदात के एक आरोपी आसिफ को पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कुछ ही देर बाद केस के दो और आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। ये तस्वीरें एनकाउंटर स्थल की हैं, जहां आरोपी की बाइक गिरी दिख रही है। पास ही आरोपी की पिस्टल पड़ी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आखिर मौके पर क्या हुआ, कैसे गैंगरेप के आरोपी की तलाश के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। बताया जा रहा है कि पीड़ित नाबालिग बीती शाम अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। पूजा के बाद दोनों आस्था कुंज पार्क गए, वहीं सभी आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे थे। मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने खुद को पुलिस वाला बताया, पुलिस की धौंस दिखाकर दोनों को धमकाया और फिर दरिंदगी को अंजाम दिया।
1: जो है आशीष, उसको पुलिस एनकाउंटर के तहत सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ा है। दो और लोगों के नाम सामने आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी बाकी जो अरेस्ट हैं वो भी डाले जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी।
0: केस के एक आरोपी की एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। केस के दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आक्रोश दिल्ली के सदर बाजार में 11 साल की एक बच्ची के साथ हुए महापाप के खिलाफ है। राजधानी दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाने के बाहर सोमवार देर शाम बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए। भीड़ ने थाने में मौजूद रेप के आरोपी और उसकी मां पर हमला बोल दिया। आरोपी और उसकी मां को बचाने के लिए पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। रेप की वारदात 16 सितंबर की रात की है। जांच के मुताबिक क्लास 6 में पढ़ने वाली नाबालिग रात करीब 11 बजे स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी, तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया। इसके बाद उसने नाबालिग लड़की के हाथ पैर बांधे और उसका यौन उत्पीड़न किया। इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और डर है।
1: हमारे भी बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा है कि हम बाहर निकाले ना निकाले, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हमें फिक्र महसूस हो गया, क्योंकि अब जब ऐसा इंसान नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा है शैतान जाग के अंदर, तो हर आदमी को डर लगेगा।
0: वारदात को लेकर स्थानीय लोग हैरान भी हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि 56 साल का मकसूद ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है।
2: आदमी सही था, लेकिन अब उसके अंदर शैतान जाग गया, क्या हुआ, आदमी तो सही था वो।
3: आप लोग आसपास रहते हैं, आपको पता होगा।
2: बिल्कुल, यही घर है हमारा पड़ोस में, और ये बच्ची जो है ये मेरी किराएदारी थी।
0: राजधानी दिल्ली की ये वारदात बेहद डराने वाली है। क्या अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है? अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
4: पूरी लस्सी पीने के बाद पूर्वा यूं ही फेंक दिया, बिना पानी लिए और पानी घोल के पिए, तो वो घूर के देखते हैं एक बार, गोरस बर्बाद कर दिया।
5: डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया कि भैया हुतियों ने अटैक कर दिया है, कुछ करिए भैया। उसने कहा नहीं करेंगे, हमारा हुतियों से डील हो गया है।
6: तुम तो साला डील माना नहीं।
7: एक कमजोर प्रेसिडेंट एक घायल कुत्ते की तरह होता है।
5: हाँ भाई,
7: किसी को भी काट सकता है।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: डेटा की जरूरत नहीं तो कॉल और एसएमएस के लिए रिचार्ज मिलेगा सस्ता। ट्राई का बड़ा फैसला, कंपनी को देना होगा विकल्प, जरूरत और बजट के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं मोबाइल यूजर्स। जमुई दरिंदगी मामले में गिरी सम्राट चौधरी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपित नंदन यादव गिरफ्तार, 3 नाबालिग समेत कुल 5 आरोपित गिरफ्तार। दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से गैंगरेप केस में एनकाउंटर के बाद आरोपित गिरफ्तार, 2 और लोगों को पुलिस ने पकड़ा। सदर बाजार इलाके में भी बच्ची से दरिंदगी के बाद फूटा आक्रोश। IIT बॉम्बे खुदकुशी केस की जांच तेज, क्राइम ब्रांच ने खंगाली परीक्षा हॉल से हॉस्टल तक की सीसीटीवी फुटेज। सुसाइड मामले में आरोपित प्रोफेसर के समर्थन में आई IIT दिल्ली और मद्रास फैकल्टी। और एशियन गेम्स में भारत की विमेन्स क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, फाइनल में श्रीलंका को धूल चटाकर जीता गोल्ड मेडल, लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक हासिल करने का रिकॉर्ड।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। 1958 में बनी IIT बॉम्बे के परिसर के बाहर अब पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि 22 साल के छात्र साहिल ने खुदकुशी करने के बाद ये मामला पूरी तरीके से सियासी भी बन चुका है और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का केंद्र भी बन चुका है। इसी परिसर के अंदर करीब 550 एकड़ में फैले इस परिसर के अंदर रात भर छात्र प्रोटेस्ट करते रहे। उसके बाद IIT बॉम्बे के प्रशासन को उनकी कई मांगे मान लेनी पड़ी और जिसके चलते IIT के प्रोफेसर दुल्ला को डीन पद से हटा दिया गया। लेकिन इस वक्त जब मैं यहां पर खड़ा हूं, वहीं पर कांग्रेस और RPI के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इस मामले में एट्रोसिटीज एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर दिया गया। अगर आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं तो मेरे कुछ ही इसकी दूरी पर IIT के इस दरवाजे के सामने कांग्रेस और RPI के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ IIT बॉम्बे भी अभी थोड़ी देर में इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले जो प्रेस रिलीज IIT बॉम्बे ने जारी किया था वो उन्हें वापस लेना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स का यह कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर IIT बॉम्बे ने स्टूडेंट का नाम खराब करने की कोशिश पहले से की, जबकि पुलिस की जांच इस पूरे मामले में चल रही थी। लेकिन पूरी स्थिति बताने के लिए IIT बॉम्बे की तरफ से थोड़ी देर में कुछ रिलीज भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी और RPI के भी कुछ कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा है, कांग्रेस के नेता भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कुल मिलाकर मामला अब सियासी भी बनता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कई IIT एलुमनाइज ने भी प्रेस रिलीज के जरिए छात्रों की मांग को जायज ठहराया है, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर जो सियासी पहलू इसमें जुड़ गए उसको लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद IIT जैसे प्राथमिक संस्थान जो एक टॉप एमिनेंस के संस्थान माने जाते हैं, उसके भीतर छात्रों की खुदकुशी के मामले अब एक चिंता का विषय भी इस तरीके से बन चुके हैं। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार IIT के छात्र की खुदकुशी का मामला सियासी कैसे बन गया, क्या ये खुदकुशी रोकी जा सकती थी और इस पे IIT प्रबंधन और क्या कर सकता है। इन सभी मामलों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी ये खबर देखें।
1: IIT बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में तीन आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। पहली बात पुलिस जांच है। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की CCTV तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी। प्रोफेसर डुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं। एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RPI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर डुल्ला पर SC ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर डुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया, फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। तीन दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है, जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था, साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो। मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC ST एक्ट लगाने का है।
2: लोग बोल रहे कि ऐसा एट्रोसिटी एक्ट क्यों लगाया, इसकी वजह है सर, इसकी ये वजह है कि आज तक जिन बच्चों ने सुसाइड किया है वो बच्चे SC ST के ही है।
3: संस्थान का जो एक SC ST सेल है उसके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है, उसके उनके पास कैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहिल ने जो है उनको किसी बार अप्रोच भी किया हो या कुछ अपनी शंका भी जताई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने का नहीं है। यह स्टेटमेंट SC ST सेल IIT बॉम्बे ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है।
1: साहिल के रिश्तेदारों से लेकर दलित राजनीति करने वाले यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बड़े कैंपस में दलित ही क्यों मर रहे हैं, जबकि कैंपस के छात्र कहते हैं कि जातीय भेदभाव के आरोप गलत है।
4: मैं चाहते कि अभी तक जितने बच्चे मरे वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के बच्चे मरे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ में क्यों हो रहा है, ये जातिगत पड़ताड़ना नहीं तो क्या होता है?
5: बहुत ही अनफॉर्चुनेट, लाइक हमारा एक साथी, हमारा छोटा भाई चला गया, पर जो प्रोटेस्ट प्रोफेसर के अगेंस्ट हो रहा है वो इतना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ऐसा रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे। दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो डुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। आईआईटी में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफकोर्स ना मेरे साथ, ना मेरे किसी दोस्त के साथ, ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूँ कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
6: ये कोई आम बात नहीं था, और उसी छात्र के हॉस्टल में 4 नंबर में 20 दिन पहला एक और सुसाइड हुआ, फिर 8 महीने में 4 सुसाइड। ये 4 सुसाइड नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, मर्डर। तो ये सेंटर था,
5: इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा हो, मुझे भी दिख रहा है। तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है स्टेट, वो तो कम्प्लीटली बेसलेस ही हुआ ना, फिर वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
1: जाहिर तौर पर साहिल की खुदकुशी ने 2 बड़े सवाल खड़े किए हैं, जिसमें एक है कैंपस में बढ़ती खुदकुशी और दूसरा है दलित उत्पीड़न। देश के आईआईटी आईएएम जैसे बड़े संस्थानों में बढ़ती खुदकुशी का आंकड़ा कुछ ऐसा है कि टॉप 5 आईआईटी और 15 नए आईआईटी मिलाकर जनवरी 2006 से सितंबर 2026 के बीच 171 स्टूडेंट्स की असमय मौत हुई, जिसमें 140 सुसाइड थे। आईआईटी खड़गपुर में 29, आईआईटी मद्रास में 26, आईआईटी कानपुर में 21, आईआईटी दिल्ली में 17, आईआईटी बॉम्बे में 14 बच्चों ने जान दी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आईआईटीज, आईएम्स और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सुसाइड करने वाले 55% से अधिक एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट थे।
7: आईआईटीज में ज्यादातर एससी ओबीसी के बच्चे ही आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, मैं ये जनरल के भी कुछ करते हैं, लेकिन एससी के क्यों ज्यादा करते हैं, जबकि एससी की प्रोपोर्शनेट उनकी संख्या 15% ही है।
1: आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही सुसाइड करने वाले छात्र दर्शन के पिता कहते हैं कि कैंपस में भेदभाव तो होता है।
8: मेरे बच्चे के साथ ये आईआईटी वालों ने कुछ नहीं किया था, लेकिन एक उसका रूममेट था, रूममेट ने दर्शन के साथ कुछ जातिगत भेदभाव किया था, उसके साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं कर रहा था, जातिगत भेदभाव कर रहा था।
1: हालांकि कैंपस में खुदकुशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जो कहती है कि आईआईटीज में ग्रेड, रैंक, प्लेसमेंट सफलता की गारंटी हो गए हैं। वाइब चेक कल्चर में कमजोर स्टूडेंट आइसोलेट हो रहे हैं। क्लासरूम में एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट 60% हैं, लेकिन 56% फैकल्टी अगड़ी जाती के, 7.57% एससी और 1.91% एसटी फैकल्टी हैं। देश के 65% उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं की भारी कमी है। 23 आईआईटी सहित 31 केंद्रीय संस्थानों में स्टूडेंट के तनाव की समय रहते स्क्रीनिंग की सक्रिय व्यवस्था नहीं है, लिहाजा स्टूडेंट में 75% मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं 24 साल से पहले शुरू हो जाती है। नतीजा, गलाकाट कमीशन के दौर में खुद को पिछड़ता देखकर या माता पिता, परिवार, समाज के दबाव के कारण स्टूडेंट खुदकुशी जैसा खतरनाक कदम उठा रहे हैं। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश से मुंबई आज तक।
0: तो मामले 3 हैं। आईआईटी जैसे एक संस्थान में एक ब्राइट स्टूडेंट की सुसाइड का यानी आत्महत्या का मामला है, एक प्रतिष्ठित संस्थान में स्टूडेंट्स पर बढ़ते मानसिक दबाव का मामला है, और उसके साथ साथ दलित उत्पीड़न का मामला भी इस पूरे मामले पे उठाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो ये पूरी संस्था एक तरीके से पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था का एक निशान बन चुकी है। हर जगह पर पुलिस की व्यवस्था है, आने जाने पर रोक है, आने जाने के पहले 10 बार लोगों की चेकिंग की जा रही है, सभी जगह पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर लगा के रखी हुई है। मुस्तफा शेख इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, लगातार यहां पर राजनीतिक प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, अगर कुछ लोगों से आप बात करें, आखिरकार राजनीतिक प्रोटेस्ट का मामला ये क्यों बनता जा रहा है?

0: मुस्तफा आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है अभी ऑडियो। चलिए मुस्तफा के पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, पुलिस अब उनको साथ में लेकर जा रही है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि आईआईटी का कैंपस जहां से ब्राइट स्टूडेंट्स आईआईटी से पास आउट होकर निकलते थे, एक बड़ी एलुमनाई की लिस्ट उनमें है, लेकिन आज एक प्रोटेस्ट का की जगह भी यहां पर बन गया है। तो चर्चा हम करेंगे, तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुधीन्द्र कुलकर्णी इस वक्त जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया हुआ है और उनका यह कहना है कि इसमें एट्रोसिटी एक्ट लगाना गलत था, ये उनका कहना। सुधीन्द्र कुलकर्णी सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, कॉलमनिस्ट है और आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई है, उनसे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ प्रोफेसर राजकुमार पंत है, ये प्रेसिडेंट है फैकल्टी फोरम के आईआईटी बॉम्बे के, उनसे भी हम इस पर बातचीत करेंगे। प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस के तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं और थोड़ी देर में रजत सेठी और प्रोफेसर बद्री नारायण वाइस चांसलर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस के, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल इस पैनल के सामने मैं रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या साहिल की खुदकुशी केस में प्रोफेसर पर एससी एसटी एक्ट लगाना सही है, क्योंकि कई लोग इसी मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ये छात्र के उत्पीड़न का मामला है या ये एससी एसटी एक्ट के तहत दलित उत्पीड़न का मामला बन चुका है। दलित संगठन कहते हैं कि कई आंकड़े ये बता रहे हैं कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में किसी रिजर्वेशन के जरिए आए छात्र का समय गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा सवाल, क्या आईआईटी बॉम्बे में दलित विद्यार्थियों के उत्पीड़न भेदभाव के आरोप सही है। उसके साथ साथ तीसरा सवाल, आईआईटी आईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य तनाव से निपटने की सुविधाएं क्यों नहीं बनाई गई है, क्योंकि छात्रों का जब प्रोटेस्ट हुआ तब सबसे बड़ा मुद्दा उसमें यही बनाया गया था कि काउंसिलर्स की कमी, छात्रों के अनुपात में काउंसिलर्स की कमी, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया था। शुरुआत करते हैं सुधीन्द्र कुलकर्णी, आप आईआईटी के एलुमनाई रहे हैं, आईआईटी के छात्र रहे हैं और आपने फैकल्टीज की तरफ से भी यह कहा है कि आप फैकल्टी के साथ में खड़े हैं, ये दलित उत्पीड़न का मामला नहीं बनता है, लेकिन कई सारे आंकड़े ये बताते हैं कि अगर पिछड़ी जाति से छात्र इस बड़े संस्थानों में आते हैं तब यहां पर समय निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ड्रॉप आउट रेट्स में भी इनकी संख्या ज्यादा दिखाई देती है। इस मामले को आप किस बिना पर इस पूरे मामले से अलग करने की कोशिश करें। सुधीन्द्र कुलकर्णी,
1: साहिल जी, मैं विद्यार्थियों के साथ खड़ा हूं, मैं हमारे गुरुजन के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं स्वयं इस संस्थान का विद्यार्थी रहा हूं, छात्र रहा हूं, और एक छात्र का, छात्र की आत्महत्या, जितनी पीड़ा उनके माता पिता को होती है उतनी ही पीड़ा हम सबको होनी चाहिए। मैं ये नहीं देखता हूं कि ये छात्र ये दलित है या इस जाति का है उस जाति का है, इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट। एक युवा भारतीय ने खुदकुशी की है, ये हम सब के लिए एक बहुत शर्म की बात है और इट्स अ मैटर ऑफ सोल सर्चिंग, ये क्यों हो रहा है। और ये इट्स, देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट सुइसाइड्स एट आईआईटी बॉम्बे, ऑल्सो अदर आईआईटीज एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो इसलिए सबसे पहले जो हुआ है इसका इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच बाहर आना चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। और साथ साथ जो आज विद्यार्थी इतने दबाव में वहां जीते हैं, पढ़ते हैं, जो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, इसे कम करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी क्या है, इन संस्थानों के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो आज हुआ है कि बिना कोई सबूत के एक प्रोफेसर पर एट्रोसिटी एक्ट, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, ये लॉज होना, यह भी बहुत अन्यायपूर्ण है। उसकी गलती क्या है, क्या गलती निकली है, गलती है। निकली तो
0: हम
1: जरूर
0: इसी बात
1: सजा
0: पर चर्चा
1: चाहिए।
0: करेंगे कि आखिरकार तीन मुद्दे इसको निकलकर सामने आते हैं और मामला आप सही कह रहे हैं कि एक तरीके से सियासी तो बन चुका है और इस पर भी मैं बात करूंगा, जिसका जिन आंकड़ों का मैंने जिक्र किया वो भी मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। लेकिन प्रोफेसर रविकांत, ये मामला आखिरकार किस बात का बनता है? अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो प्रोफेसर है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें डीन पद से तो हटा दिया गया है लेकिन उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्द से जल्द। तीन मामले नजर आते हैं, एक तो एक ब्राइट स्टूडेंट है, उनके परसेंटाइल अच्छे थे, 8.5 परसेंटाइल से वो इस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश ले चुके थे, वो आत्महत्या करते हैं, उन पर एक तरीके से दबाव था, मानसिक दबाव था, आत्महत्या का कारण एक ये भी हो सकता है, और तीसरा दलित उत्पीड़न का मामला। आप इसे किस मामले से देखते हैं?
2: देखिए साहिल जी, उसके माता पिता ने ये आरोप लगाया है कि उसे जातिगत गालियां दी गई थी, दी जा रही थी, ये उनका आरोप है, और उसी आरोप के आधार पर इसमें SC ST एक्ट लगा है। और जो अभी कुलकर्णी साहब आर्गुमेंट दे रहे थे, ठीक यही आर्गुमेंट रोहित बेमुला की आत्महत्या के बाद दिए गए थे, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, एक लंबी फेरिस्ट है, सैकड़ों दलित और आदिवासी बच्चे आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं, और उसके बाद बार बार ये तर्क दिया जाता है कि नहीं साहब ये कारण नहीं था, ये कारण नहीं था। काउंसलिंग की जरूरत तो उन प्रोफेसर्स को होनी चाहिए जो जातिगत श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त हैं, जिन्हें दलित और आदिवासी बच्चे बर्दाश्त नहीं होते, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये तो रिजर्वेशन से आ गए हैं, तो साहब ये तो हमारा हिस्सा था इसलिए इनको नहीं आना चाहिए था, हायर एजुकेशन में, मेडिकल में, IITs में, IIM में, ये बर्दाश्त के बाहर है, उनसे उनको देखे नहीं जाते, उनकी शक्लें नहीं देखी जाती हैं, तो उनको काउंसलिंग की सबसे पहले जरूरत है। साहिल जी, मैं तो ये डिमांड करता हूं कि जिनके दिमाग में ये श्रेष्ठता बोध भरा हुआ है और जो चाहते हैं कि यहाँ पर दलित और आदिवासी बच्चे नहीं पढ़ सके, रही बात की ये जो आरोप लगा है ऑब्वियस है, ठीक इसी तरह का तमाशा रोहित बेमुला एक्ट को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में उसको किया है, तेलंगाना में भी करने चाह रहे हैं। क्या बजाय है कि केंद्र सरकार रोहित बेमुला एक्ट को नहीं लागू कर रही है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी बीजेपी के प्रवक्ता या जो भी सज्जन आएंगे आप पूछेगा उनसे जरूर, क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार दोहराई जा रही है और दलित और आदिवासी बच्चों के साथ? और ये बहुत नॉर्मल है, जो लोग ये सोचते हैं कि साहब ये नहीं होता है वो या तो अनजान है या फिर वो कहना नहीं चाहते। सच्चाई ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन
0: प्रोफेसर
2: बहुत सारे लोगों के
0: हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, ये प्रेसिडेंट है फैकल्टी फोरम के IIT बॉम्बे के, आपने जो सवाल उठाया वो लेकर मैं उनके पास चलूंगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई थी, एक महीने में यह दूसरी घटना है IIT बॉम्बे के भीतर। लेकिन प्रोफेसर पंत, आपका एक बयान मैंने देखा और आपने कहा कि साहिल ने इससे पहले 5 महीने में एक बार भी जो मंच होता है इस तरीके की शिकायतों को लेकर उसके सामने जाकर कोई शिकायत नहीं की थी कि उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, उस पर किसी तरीके से ताने कसे जा रहा है या किसी जाति विशेष को लेकर टिप्पणी की जा रही है। आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में फैकल्टी की कोई गलती नहीं है? क्या आपको लगता है कि संस्थान के भीतर इसमें कोई और सुधार की जरूरत थी कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होती? दोनों घटनाओं का जो रविकांत का आरोप है और उसके बाद बाकी जो चीजें मैंने पूछी।
3: जब भी कोई छात्र अपनी जान लेता है तो सबसे ज्यादा दुख उसके घर वालों के बाद हमें फैकल्टी को होता है, क्योंकि वो हमारे बच्चों के तरह ही हैं, हम उनसे रोज क्लास में मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ हम चाय पीते हैं और बातचीत भी कई बार करते हैं, तो सबसे ज्यादा दुख तो हमें होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई कोई बच्चा बेवजह से अपनी जान से हाथ धोए। तो पहली बात यह है कि मैं अभी केवल एज ए फैकल्टी फोरम प्रेसिडेंट केवल इस पर्टिकुलर केस के बारे में 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर बोलना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे कलीग के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि कोई जांच अभी तक हुई नहीं है, और बिना किसी जांच के, बिना किसी जानकारी के ये कहना कि उन्होंने धमकाया होगा, उसकी वजह से साहिल जो है वो परेशान हो गया, उसकी वजह से उसने आत्महत्या करी, इसीलिए पहले उनके ऊपर अबेटमेंट ऑफ केस लगाया गया, लेकिन कई बार ये भी प्रश्न उठा कि भाई उस बच्चे ने एकेडमिक मिसकंडक्ट यानी कि जो मामला है नकल का, वो किया भी कि नहीं किया। तो अब देखिए, क्राइम ब्रांच की ओर से जो है कुछ साक्ष्य जारी किए गए हैं जिसमें कि ये क्लियर हो गया है कि जैसा कि हमारे कलीग ने हमें बताया था, और कुछ साक्ष्य ऐसे भी लोगों के हैं जो उस क्लास में थे, और बच्चे प्लस जो हमारे टेक्निकल सॉरी टीचिंग असिस्टेंट होते हैं टीएस, उन्होंने भी इस बात को कबूला है कि भाई उस लड़के ने मोबाइल फोन निकाल करके नकल करने की कोशिश करी है, और ये चीज ऑलरेडी अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल के प्रूव भी हो गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी अब
0: बट प्रोफेसर पंत, ये अभी तो जांच का विषय है, ये तो अभी जांच का विषय है। सीसीटीवी तो क्राइम ब्रांच ने मंगवा लिया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बारे में आईआईटी बॉम्बे की तरफ से पहला जो रिलीज निकाला गया था, उसके बाद छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। छात्रों का ये कहना था कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, और उसके कुछ नियम बने हुए हैं, उस नियमों के तहत उसका पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या कारण आपको लगता है कि आईआईटी जैसे संस्थान में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का आंदोलन हुआ, छात्रों ने डायरेक्टर का घेराव किया, उन्होंने कहा कि काउंसिलर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, इस तरीके के मामलों पर जिस तरीके से निपटने की जरूरत है वो नहीं सही तरीके से निपटाया जाता, और इसी के वजह से प्रोफेसर डुल्ला को आप डीन पद से हटाइए और उसके साथ साथ फैकल्टी के तौर पर से भी हटाइए। हालांकि आईआईटी बॉम्बे ने वो बात तो नहीं मानी है, लेकिन डीन पद से उनको हटा दिया गया है क्योंकि वो चाइल्ड स्टूडेंट्स वेलफेयर के भी इंचार्ज थे।
3: नहीं, ये आपकी जानकारी गलत है। वो इस समय केवल डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स थे, और हमारे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि उनको, क्योंकि जांच हो रही है इसीलिए ये मुनासिब है कि जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज है उसको इससे हटाया जाए। तो जो टेक्निकल शब्द है वो ये है कि ही हैज बीन केप्ट इन अबेयंस, हिज डीनशिप इज केप्ट इन अबेयंस। वो अभी भी आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। तो ये भ्रांति फैली गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई जांच होती है तो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है अगर वही उस चीज का मुखिया है तो उसको अपने आप ही हट जाना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनको डीनशिप से निकाला नहीं गया है, उनको डीनशिप से टेम्पररीली अबेयंस में रखा गया है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, आपने ये कहा कि आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट किया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं आईआईटी बॉम्बे में 14,000 से ज्यादा छात्र हैं, और जो छात्र आपने गेट पर देखे हैं उनकी आप गिनती कर लीजिए। और आपको हमारे डायरेक्टर साहब ने भी ये अपनी मीटिंग में कल क्लियर किया था कि केवल जो बीच में जो फीडबैक लिया गया उनसे वो लिया गया, वो केवल 5% से भी कम या 5% के आसपास बच्चों ने जो है उसमें इस बात को किया। बहुत बड़ी मात्रा में छात्र प्रोफेसर डूला के साथ हैं, इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। कल फैकल्टी फोरम ने एक कैंपस मार्च अनाउंस किया था शाम को 5 बजे से। उस कैंपस मार्च में स्वेच्छा से फैकल्टी के साथ साथ स्टाफ मेंबर्स और बहुत सारे छात्र जुड़ गए, और उसके बाद फिर हम सब जो कन्वोकेशन हॉल में डायरेक्टर का एक ओपन हाउस चल रहा था उसमें मैक्सिमम लोग उसमें चले गए। ठीक है ना, तो ये कहना कि आईआईटी बंबई के सारे छात्र या मेजॉरिटी छात्र जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बात गलत है। एक्चुअली क्या होता है, ये सारा ऑप्टिक्स होता है कि गेट पर 250, 300, 400 बच्चे अगर जमा होकर के तकरार कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब को प्रेशराइज कर रहे हैं, रात को 1 बजे 1:30 बजे उनसे मांग रहे हैं कि, तो उन्होंने क्या किया, जो 18 मांगों का चार्टर दिया था वो उन्होंने केवल उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसमें उन्होंने सिग्नेचर करके बोला रिसीव्ड, लेकिन मीडिया में क्या आ गया कि सारी मांगे मांग ली गई। तो इसलिए अब देखिए जो लेटेस्ट छात्रों ने जो एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है इस ओपन हाउस के बाद, उसमें कहीं भी जातिगत भेदभाव का जिक्र नहीं है। उसमें यही लिखा गया है कि इंस्टीट्यूट को हमारे
0: छात्रों की तरफ से जातिगत भेदभाव का आरोप नहीं है। प्रोफेसर रविकांत, बिना जांच के देखिए कुल मिलाकर मामला यही निकल रहा है। अब प्रोफेसर पंत भी यही कह रहे हैं, सुधींद्र कुलकर्णी भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना जांच के सीधे इस तरीके से आरोप पड़ना और मामले को सियासी बनाना कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है? मैं आंकड़ों पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आपकी भूमिका इस पर, क्योंकि ये तो फैकल्टी मेंबर यहां पर कह रहे हैं, जो प्रोफेसर पंत है वो आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी है।
2: अरे, फैकल्टी मेंबर एक बैठे हैं, आपने उनकी बात मान ली, और जो बच्चे उनमें 250 प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया कि नहीं, वो कुछ बच्चे थे, वो SC ST बच्चे ही होंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं को तकलीफ होगी। और सवाल वो गायब कर दिया गया कि एक बच्चे ने आत्महत्या की, इस देश का एक नौजवान चला गया, वो सवाल गायब हो गया है, लेकिन ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया कि नहीं साहब उन पर अरे भाई आरोप लगा है और उस एक्ट में अभी उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो अभी चार्जशीट तो दाखिल नहीं हुई है, अगर नहीं हुआ होगा तो वो हट भी सकता है, तो प्रॉब्लम किस बात की है? लेकिन नहीं, पहले ही आपको क्लीन चिट देना है, आपने पहले ही तय कर लिया कि नहीं साहब ये आरोप गलत है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग उसमें मिल करके खेल कर रहे हैं, क्योंकि वो मैंने इसलिए मैंने कहा ना कि काउंसलिंग इनकी जरूरत है कि जिन लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि ये तो दलित और आदिवासी हैं, वो कैसे आ सकते हैं आईआईटी में। मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, मैंने देखा है कि जहां पर अंग्रेजी नहीं, अब ये दलित बच्चे जो आ रहे हैं, आदिवासी आ रहे हैं, ऑब्वियस है कि कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, कई बार इनको बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है, तो उनको इस नाम पर गाली दी जाती है कि इनको अंग्रेजी भी नहीं आती, आ गए यहाँ आरक्षण के बल पर। ये क्या है? ये मानसिक उत्पीड़न है। एक कोई भी नौजवान बिना किसी उत्पीड़न के कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता, हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। और चार महीने शिकायत क्या करेगा? इतना दबाव इतना रहता है कि वो शिकायत करने की हालत में होगा? एक नहीं, मैं दर्जनों केस बता सकता हूं जिनमें कभी FIR हुई ही नहीं। और इसके अलावा जो और होता है यूनिवर्सिटीज में, ये तो स्टूडेंट्स का मामला है, सब फैकल्टी के जब अपॉइंटमेंट होंगे तो उसमें NFS हो जाएगा, SC ST OBC से तो आप इतना प्रॉब्लम है कि कैसे आ सकते हैं वो, इनको तो ये अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में तो मनुस्मृति बनी हुई है।
0: कुलकर्णी,
2: अधिकार
0: आप इस बात को मानते हैं, क्या इस मामले को किसी स्टूडेंट पर मानसिक दबाव के रूप में देखना चाहिए जो रविकांत कहने की कोशिश कर रहा है?
1: साहिल जी मुझे पूछ रहे हैं आप?
0: सुरेंद्र जी यस, आपको पूछ रहा हूं।
1: देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मानसिक दबाव जो आज सभी बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यह एक हम सबके लिए एक सामाजिक चुनौती है, राष्ट्रीय चुनौती है। क्यों इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं? वो 100 हो, यानी मैं संख्या के संख्या में नहीं जा रहा हूं, तो इसलिए संख्या यानी एकेडमिक स्ट्रेस, नॉन एकेडमिक स्ट्रेस, इसे कम करने के लिए कैंपस के भीतर भी काम होना चाहिए, कैंपस के बाहर भी काम होना भी चाहिए।
0: एकेडमिक स्ट्रेस के बाहर, हाँ, एकेडमिक स्ट्रेस के बाहर इसमें जाति स्ट्रेस भी है क्या, जो रविकांत यहां पर सवाल उठा रहे हैं? क्या जाति तौर पर भी उन्हें
1: मैं आपको कहना चाहता हूं,
0: एकेडमिक स्ट्रेस का मुद्दा नहीं?
1: नहीं, मैं IIT में पढ़ चुका हूं, और जो जो IIT में आज भी पढ़ रहे हैं, हम इस बात का अतिशयोक्ति न करें। ये जो हर हर विषय में जाति लाना, ये जो जाति का विष हम सब जगह फैला रहे हैं, इससे हमारा छात्र वर्ग बट रहा है, हमारे शिक्षक वर्ग इसको बांटा जा रहा है, हर एक को अपनी जाति से आइडेंटिफाई करना,
0: ठीक है,
1: ये देश कहां जाएगा?
0: कोई बात नहीं, मैं कुछ नंबर्स यहां पर पैनल के सामने रखूंगा, जरा जरा ग्राफिक्स वो चला दीजिएगा, क्योंकि
1: मानसिक दबाव है।
0: हमने जानने की कोशिश की कि अब तक पिछले 10 साल में जो IITs में सुसाइड्स हुए हैं, जो आत्महत्या हुई है, उसके जरा नंबर्स देख लीजिए। टॉप 5 IITs और 15 नए IITs मिलाकर 2006 से जनवरी 2006 से सितंबर 2026 के बीच में 171 स्टूडेंट्स ने असमय मौत उनकी हुई है, उसमें से 140 सुसाइड केसेस थी। IIT खड़गपुर में 29, IIT मद्रास में 26, IIT कानपुर में 21, IIT दिल्ली में 17, IIT बॉम्बे में 14 केसेस इस तरीके से हुई है। और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इसमें से 55% से अधिक SC ST और OBC स्टूडेंट्स थे। उसके साथ साथ अगर हम ड्रॉप आउट रेट्स भी देख लें तो ड्रॉप आउट रेट्स में भी हमें पता चलता है कि ज्यादातर, रजत सेठी और बद्रीनारायण जी हमारे साथ में हैं, उनको इस चर्चा में मुझे लाना है इस नंबर को लेकर, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर इसका जब सवाल पूछा गया था ड्रॉप आउट रेट्स को लेकर, इसमें भी जब देखा गया तब पता चला कि IITs में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट्स में ज्यादातर बच्चे ये OBC या SC ST से आते हैं। ऐसे में रजत सेठी, इस पूरे मामलों को, ऐसे पूरे मामलों को महज एक सामाजिक मुद्दे के तौर पर कि छात्रों पर मानसिक दबाव ना बढ़ाया जाए, इसी तरीके से देखना चाहिए, या प्रबंधनों को, प्रशासन को एक अलग तरीके से भी इन मामलों को देखना चाहिए? पहले बद्री नारायण जी और उसके बाद रजत से।
4: जो हमारे विश्वदीन जी कह रहे थे, एक तो हमें ये समझना होगा कि जो आईआईटी कैंपसेस है ना, वो अति जो एस्पिरेशन, हायर एस्पिरेशंस का सेंटर है, जहां स्टूडेंट्स और उनका फैमिली और पीयर ग्रुप बहुत बड़ी जो आकांक्षा के साथ भेजती है, आकांक्षा लेके जाते हैं, और कई बार उसके साथ कोप अप नहीं कर पाने के कारण जो जो मेंटल टेंशन है वो उनका संस्थानों में बहुत है, जहां पर कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटिव जो जो लाइफ है और बड़ी चाहतों का जीवन है, तो वहां पे इस तरह की सुसाइड्स की घटनाएं हुई हैं। लेकिन ये एक सुसाइड की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हमारा परिवार, जब हमारा शिक्षक, जब हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी, हमारे पीयर ग्रुप हमें सपोर्ट करता है, तो ये चीजें कम होती जाती हैं। अगर आप देखें 22-23 जो कि कोरोना का पीरियड था के बाद, उस समय स्टेबलाइज होता है सोसाइटी इंडिया में, और स्टेबलाइज होता है, और आप ये भी देखेंगे कि उन कॉलेजेस में, उन उसमें जहां पर बहुत हायर कॉम्पिटिशन नहीं है, वहां पर सुसाइड रेट्स कम है, नहीं के बराबर है, कम है, क्योंकि वहां पर चाहते उस तरह के नहीं है। तो मुझे समझना होगा, हमें समझना होगा कि आकांक्षाओं के स्पोर्ट के केंद्र हैं और वहां पर इस तरह के मेंटल टेंशन स्वाभाविक हैं। अब ऐसे में हमारा रोल, यानी परिवार का, समाज का और शिक्षक का और सबका, ये है कि एक समरस कैंपस बने, एक ऐसा कैंपस जो मोर ह्यूमन हो, जो बहुत इमोशनली चीजों को हैंडल करे और सेंसिटिव हो, और उस तरह के हमारे नई शिक्षा नीति में इसके लिए व्यापक चर्चा है, इस पर एक प्रोविजंस भी हैं, तो हम लोग यानी सारी संस्थाएं इस दिशा में।
0: लेकिन बद्री नारायण जी, इसका क्या आप कारण दे सकते हैं? पार्लियामेंट में जवाब दिया जाता है कि 13,626 छात्र जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जातियों से बिलोंग करते हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईएम से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, सबसे ज्यादा संख्या इनकी दिखाई देती है, क्या कारण दे सकते हैं? एक तरफ तो ये बात सही है कि सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल के तौर पर आईआईटी के कैंपसेस देखे जाते हैं, लेकिन उसमें ड्रॉप आउट्स में भी जो छोटी जाति के छात्र हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, उससे कैसे निपटाया जाए?
4: नहीं, देखिए, ड्रॉप आउट्स
0: इसका क्या कारण आप देखें?
4: हमारी शिक्षा व्यवस्था लगातार ड्रॉप आउट्स के इश्यू को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, आज से नहीं, पहले से, और वो सबसे बड़ा चैलेंज भी है, और उसके लिए गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिटिव एंड दे आर कमिंग वर्किंग एट मिशनरी मोड कि उसको कैसे कम किया जाए। तो और वो भी एक सिर्फ इस कॉलेज जाने का मामला नहीं है साहब, वो भी एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से जुड़ा हुआ मामला है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूव करना होगा, समाज में लगातार हर को कैपेसिटी टू गो टू द यूनिवर्सिटी एंड सस्टेनिंग द यूनिवर्सिटी विकसित करनी होगी, उसके लिए जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जो चल रहे हैं उनको और बेहतर ढंग से और ज्यादा नीचे तक पहुंचना होगा। तो वो मामला सिर्फ एक छात्र का जाने और ड्रॉप आउट हो जाने से नहीं है, उसमें पूरे समाज कथा जुड़ी हुई है और उसमें सोशल वेलफेयर पॉलिसीज की बड़ी भूमिका होगी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो गरीबों तक चावल और लेकर के दाल और तेल सब पहुंचाए, उसका बहुत असर पड़ा है, और क्योंकि वो भोजन की समस्या से पहले मुक्ति, बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजने की शक्ति का कैपेसिटी की प्राप्ति, और उसको सस्टेन करना, अब उसको सस्टेनेबिलिटी की दिशा में सरकार को ले जाना है। और मुझे लगता है कि जो उसके लिए बहुत तरह के स्टार्टअप, यानी कैसे ये कैपेसिटी टू गो टू द यूनिवर्सिटी और कॉलेज सस्टेन रहे, कैसे, क्यों पैसे हमें लगातार मिले, इस तरह के जो
0: अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, चीजें दिखाई दे रही है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि आम तौर पर ही सभी पर दबाव होता है, लेकिन क्या इसे कास्ट एंगल से देखना गलत है पूरी तरीके से?
5: साहिल जी, पहले तो मैं शुरू करूंगा जो आपने 55% का जो आंकड़ा दिया, आपने बोला 55% ओबीसी एससी एसटी का ड्रॉप आउट रेट है, या आपने सुसाइड रेट बताया, जो कि कमोवेश जो रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट कम्युनिटी
0: में उसके आसपास
5: ही है। हाँ, सुसाइड रेट तो उसके आसपास ही है, जितने एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स होते हैं रिजर्वेशन
0: ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, मैंने कहा था जी
5: बिल्कुल, मैं बट वो प्रोपोर्शन में है, तो आप भी डेटा को आप ऐसे ना तोड़ें जिसमें कि प्रोपोर्शनैलिटी का एंगल मिस हो जाए, नंबर एक। नंबर दो, मैं खुद आईआईटी खड़गपुर से, जहां पे सबसे ज्यादा सुसाइड
0: ठीक
5: रेट
0: है।
5: है, मैं वहां पे पढ़ा हुआ हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसको 2008-09 में मैं स्टूडेंट प्रोटेस्टर भी था। हम लोगों ने वहां पे डायरेक्टर को फोर्स किया था रिजाइन करने के लिए, और एक स्टूडेंट की आत्महत्या का ही विषय था वहां पर भी। और स्टूडेंट की आत्महत्या, हम में से किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं देखा था उस समय कि ये स्टूडेंट एससी एसटी है क्या है। आईआईटी के जितने भी बच्चों से आप पूछेंगे, आप गोपनीय सर्वे करवा लीजिए, कोई भी बच्चा इस एंगल से नहीं देखता है कि ये एससी है इसलिए सुसाइड किया या ओबीसी है इसलिए सुसाइड किया। स्टूडेंट्स जबरदस्त स्ट्रेस में हैं, और आज से नहीं, ये पिछले 15-20 सालों से ये स्ट्रेस का लेवल कम हो ही नहीं रहा है। बच्चों की एक तरह से इसको मैं इंस्टीट्यूशनल हत्या ही मानूंगा, जहां पर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है। हर बार ऐसी घटना होती है जिसपे कि पीक इमोशन होता है, इंस्टीट्यूशनल फीडबैक करने का मैकेनिज्म सी नहीं है। यहाँ पे मेंटल हेल्थ को इतना नगण्य चीज मानी जाती है कि प्रोफेसर्स भी उसको उतना सीरियसली नहीं लेते। और मैं यहाँ पे प्रोफेसर पंत से भी नाराज हूं इस बात का, अगर वो सिर्फ आंकड़ों के बलबूते पे ये बोल रहे हैं कि 200-300 बच्चे आए और वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आप इस चीज को मिस नहीं कर सकते कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से बच्चे सड़क पे नहीं उतरते हैं सहजता से। आप सर्वे करवाइए, आप एनोनिमस सर्वे कराइए, तब आपको मालूम चलेगा कि कितनी गंभीर स्थिति है। लेकिन कास्ट का एंगल जिस तरह से राजनीतिक दल बनाने की भी कोशिश करेंगे, वो बच्चों के स्ट्रेस के साथ नाइंसाफी करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस का जो कारण है, उनके जो उसका जो इतना ज्यादा डीप लेवल पे स्ट्रेस को मैनेज करने की जो जरूरत है, उसको आप दरकिनार कर देंगे। और हर बार ऐसा ही होता है, जहां पे एससी एसटी करके आप राजनीति करने की कोशिश करते हैं, वहां पर आप कोर इशू को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इस विषय में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो कि जो मेन मुद्दा जो स्ट्रेस का है वो रिजॉल्व नहीं हो। और यहां पर मैं आपको, कितनी एआई की बात हुई, क्या ये प्रोफेसर को एमआईटी

0: वैल्यूएट करने का। तो ये एक चर्निंग भी है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट भी है, लेकिन उसकी वजह से अगर स्ट्रेस कंपाउंड हो रहा है बच्चों के ऊपर, तो आपको उनसे भी बचना चाहिए, उस स्थिति से भी बचना चाहिए। मैं यहां तक एग्री करता हूं, बच्चों ने अगर जो सड़कों पे उतरे हैं, कोई जात पात को देख के सड़कों पे नहीं उतरा है। अगर 300-400 बच्चे आईआईटी के उतर रहे हैं, वो कास्ट लाइन से ऊपर उठ के वो स्टूडेंट है सिर्फ इस नाते से सड़क पे उतर रहे हैं, तो मेरा प्रोफेसर पंत से भी ये फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इस मोमेंट में जहां पे बच्चे की एक जान गई है, इसको आप लोग, इसके बियॉन्ड पॉलिटिक्स, इसको आप जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है वहां पर छोड़ दें, इसके बियॉन्ड इंस्टीट्यूशनल
1: ठीक है,
0: मैकेनिज्म्स के बारे में सोचें जिसमें कि परमानेंट सॉल्यूशंस निकल सकें। ऐसा कोई कारण तो होगा कि विदेश में बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ऐसा घटनाएं नहीं होती हैं, सिर्फ भारत में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, इसके पीछे जांच करें। आप लोग बेस्ट प्रोफेसर्स हैं, बेस्ट फैकल्टी
1: प्रोफेसर पंत,
0: मेंबर्स हैं कंट्री के, तो सारी जिम्मेदारी
1: प्रोफेसर
0: आपके
1: पंत, आप
0: कंधों
1: इसका
0: पे।
1: जवाब दीजिएगा, क्योंकि रजत सेठी एक एक एक सही मुद्दा उठा रहे हैं कि सिर्फ 250 छात्र आप नंबर्स में मत गिनिएगा। आईआईटी जैसे, आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान पे छात्रों को लगता है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा, यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस बात की भी चर्चा करनी है कि एक सामान्य घर का, जनरल कैटेगरी का छात्र अच्छे नंबर पाकर आईआईटी के भीतर आता है, उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन एक निचली जाति का छात्र जो बहुत ही मेहनत से, शायद हो सकता है कि उसके परिवार की पहली पीढ़ी का छात्र होगा जो किसी संस्थान में पढ़ने के लिए भी जा रहा होगा, उसका स्ट्रेस लेवल, इस पे कोई तो बदलाव, उसमें कोई तो भेद हम करेंगे या कभी नहीं करेंगे। सामाजिक न्याय की जब इस देश में बात होगी तो आईआईटी जैसे संस्थानों को अलग तरीके से भी देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर पंत, जो रजत सेठी सवाल उठा रहे, उसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि यूजीसी का एक रिपोर्ट भी मुझे इस पैनल के सामने रखना है। प्रोफेसर पंत,
2: देखिए, मुझे ये कहना है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो आईआईटी बॉम्बे के छात्र हैं वो इस समय इस बात से सहमत हैं कि प्रोफेसर दुल्ला के साथ बेइंसाफी की जा रही है। देखिए, जिस छात्र ने आत्महत्या करी है उसके परिवार के साथ संवेदना हमसे ज्यादा कोई नहीं व्यक्त कर सकता, क्योंकि वो हमारे बच्चों की तरह हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि हमें उनकी तरफ कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है, ये कहना बहुत गलत है। हम बहुत आहत हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि हमारे कलीग ने जो है कुछ को कह दिया है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। किसी किसी घटना का ठीकरा किसी प्रोफेसर के सिर पे फोड़ना ये भी ठीक नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं ना शुरू से कि भाई जांच होने दीजिए, जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर अगर ये प्रूफ हो गया कि प्रोफेसर दुल्ला ने कोई अनुचित कार्य किया है तो ठीक है, अपना लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ पता नहीं है। और ये इस बात के ऊपर बहस शुरू हो गई, जातिगत भेदभाव और वो सब की बातें शुरू हो गई हैं। देखिए, जिस तरह से रजत सेठी जी भी आईआईटी के छात्र रह चुके हैं, मैं भी आईआईटी मद्रास का छात्र रह चुका हूं और मैंने भी वहां पर बहुत समय बिताया है। पिछले लगभग 37 साल से मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सामने ना मैंने कभी ना मेरे सामने किसी प्रोफेसर ने जानबूझ के किसी व्यक्ति के ऊपर जातिगत टिप्पणी या जातिगत भेदभाव किया है। मैं इसका खुद एक विटनेस हूँ। मैं अपनी सर्विस के बेसिस पे ये बात कह रहा हूँ, नॉट ऑन अ कैजुअल स्टेटमेंट। ओके, इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए। ऐसे ही आप आईआईटी बॉम्बे के बहुत से स्टूडेंट से बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि भाई देखिए, हमें अपने दोस्त से मतलब है, हमें एक बार। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उसने इस तरह की टिप्पणी दी होगी, अभी तो सब कयास लगे हुए हैं, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने कि डीन स्टूडेंट अफेयर रहते हुए कई ऐसी चीजें करी हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो जातिगत भेदभाव है उसको कम। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, रजत जी भी समझेंगे, एक ऑल इंडिया रैंक होता है हर स्टूडेंट का, और अगर आप आईआईटी में किसी स्टूडेंट से उसका ऑल इंडिया रैंक पूछेंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का है, क्योंकि वो जिस ब्रांच में है और उसका AIR है उसके हिसाब से। प्रोफेसर दूला वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बारे में पहल ली और उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट में AIR रैंक बताना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए ताकि ये बच्चों का स्ट्रेस निकला जाए। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बेबुनियाद तरीके से उसको विलिफाई किया जा रहा है, ठीक है। और हमारे कली कहते हैं कि कोई बात नहीं, इल्जाम ही तो लगा है। अरे इल्जाम तो लगा है, लेकिन आपने तो उनको सूली पे चढ़ा दिया पूरे मीडिया में, उनके पुश्तैनी घर में लोग

0: गए हैं आंध्र प्रदेश में, उनके घर वाले परेशान घूम रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इल्जाम में तो
1: रजत
0: लगा
1: सेठी,
0: है, अगर गलत प्रूफ
1: नहीं
0: होगा
1: मैं
0: तो बाद में
1: प्रोफेसर
0: ठीक हो
1: पंत,
0: जाएगा। अरे उनका जो
1: नहीं
0: नाम
1: मैं
0: खराब
1: प्रोफेसर
0: हुआ
1: पंत
0: है
1: से,
0: उसको कौन वापिस करेगा?
1: देखिए
0: तो
1: प्रोफेसर पंत, मैं खुद
0: बेबुनियाद।
1: एग्री,
2: जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उसी वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर पहले साहिल वाकोड़े के पिता का बड़ा बयान इस वक्त आया हुआ है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बार फिर ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि IIT में मेरा बेटा पढ़ रहा था, उन्हें फोन आया कि उसने आत्महत्या कर ली है, और उनका ये कहना है कि डीन और उसके साथ साथ IIT बॉम्बे के जो डायरेक्टर है केदारे, उनकी गिरफ्तारी हो। उनका ये कहना है कि मेरे बेटे को टॉर्चर किया गया, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कास्टिज्म को लेकर, कास्टिज्म स्लर्स यानी रिमार्क्स, उस तरीके के जातिगत रिमार्क्स, उस पर कई बार उसे टारगेट किया जाता था और उसको धमकाया गया था कि अगर अगर उसने शिकायत की तो उसे दोबारा टारगेट किया जाएगा और उस पर एक्शन ली जाएगी। ये सीधा आरोप साहिल वाकोड़े के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाया हुआ है।
3: एफआईआर में सब लिखा वाला है, इसमें एफआईआर में सब लिखा वाला है, इसके इसके तहत चौकसी होने को होना और उसको अरेस्ट करके जो है अरेस्ट अरेस्ट होने के बाद ही ये सब ये हो जाएगा।
4: सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या लिखा है।
3: ये अभी 13 तारीख को
4: क्या कहा था आपको, क्या कुछ कहा था?
3: जो एफआईआर में लिखा है वही सच सच बात है। मैं एफआईआर की कॉपी सबको दूंगा।
4: सर जो मराठी में एक्सप्लेन किया ना, वैसे हिंदी में करेंगे।
5: आप हिंदी में बताइए जो लिखा हुआ है, बताइए।
3: जिसको जातिवाचक स्वीकार कर रहे थे, ऊपर के जाति का है ये करे वाला है, सब उसको टॉर्चर करके और उसका उसको।
2: चलिए एक बार फिर आरोप लगाया, हालांकि पुलिस इस बारे में पूरी जांच करेगी। प्रोफेसर पंत भी इससे पहले बता रहे थे कि प्रोफेसर डूला एक ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने कहा था कि AIR रैंक भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, जिसके वजह से भेदभाव हो सकता है। लेकिन कुछ आंकड़े यहां पर चर्चा के अंतिम पलों में मुझे ये आंकड़े भी सबके सामने रखने हैं। UGC के ये दरअसल आंकड़े हैं, सुधीर कुलकर्णी और रजत सेठी, ये आंकड़ों को देखकर आपको क्या लगता है, क्योंकि उस पर प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। UGC के आंकड़े ये कहते हैं कि क्लासरूम में SC ST OBC के स्टूडेंट्स की संख्या 60% के करीब होती है, लेकिन 56% फैकल्टी अगड़ी जाति के हैं, 7.57% SC के, 1.91% ST फैकल्टी है। देश के 65% उच्च शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं की भारी कमी है। 23 IIT सहित 31 केंद्रीय संस्थानों में स्टूडेंट्स के तनाव की समय रहते स्क्रीनिंग की कोई भी प्रक्रिया या सक्रिय व्यवस्था नहीं की गई है। और उसके साथ साथ यह आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है, स्टूडेंट्स में 75% मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं 24 साल से पहले ही शुरू हो जाती है। यह UGC का रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, सुधीर कुलकर्णी। सुप्रीम कोर्ट में जो टास्क फोर्स बनाई गई है उस वक्त ये रिपोर्ट रखी गई थी और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाई है। सुधीर कुलकर्णी, उसके बाद रजत सिंह।
6: साहिल जी, आपने जो आंकड़े अभी बताए हैं, इन आंकड़ों से यही पता चलता है कि हमारे शिक्षा संस्थानों में स्ट्रेस लेवल जो बढ़ रहा है, इसके लिए आज तक जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी प्रोविजंस है, वो पर्याप्त नहीं है, उनमें कमी है, और इस कमी को दूर करना अत्यावश्यक है। काउंसलिंग की आवश्यकता है, मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए और जो जो करना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, इसकी आवश्यकता है। और साथ साथ मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेस बस्टर इज म्यूचुअल सपोर्ट। जो विद्यार्थी, जो दोस्ती का माहौल बनता है, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, बैचमेट्स, क्लासमेट्स, हॉस्टल मेट्स और पूरे कैंपस में,
7: साहिल जी
6: जितने,
7: देखिए साहिल जी,
6: दोस्ती का माहौल होता है उतना स्ट्रेस कम होता है। जितना
7: मैं सुरेंद्र जी, मैं एक आपको एक कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूं। सुधींद्र जी, देखिए क्या होता है जब SC ST आप रिजर्वेशन के थ्रू हमारे IIT में होता
2: सोलंकी था, के पिता ने भी यही कहा था। जी जी बोलिए
7: साहिल जी,
2: राजेश रेड्डी बोलिए।
7: मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए साहिल जी, इंस्टीट्यूशनली जब एससी एसटी और जो रिजर्वेशन के थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं, उनका एक प्रिपरेटरी स्कूल भी होता है, मेरे समय में होता था, जिसमें उनको पीसीएम फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के स्किल्स में अपडेट किया जाता था, ताकि वो एक साथ समरसता से एक ग्रुप में जो अपने इनकमिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रह सकें। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है जब आप उनको एक प्रिपरेटरी स्कूल में डालते हैं, कि उनकी जितनी भी दोस्ती होती है तो दलित स्टूडेंट्स की दोस्ती सिर्फ आपस में रह जाती है, वो बाहर उन्मुखी ही नहीं हो पाते हैं अगले 4 सालों में। तो उसके साथ जो एक कंपोजिट स्ट्रेस बनता है, उनको ये लगता है कि हम आइसोलेटेड एक ग्रुप बन गए,
2: यही बात है,
7: ये स्नोबॉल होता है। तो ऐसी कई सारी
2: दर्शन सोलंकी
7: देखने की जरूरत है।
2: इस छात्र ने इसी आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में आत्महत्या की थी, और उनके पिता से हमने जब बात की, उन्होंने यही बात का जिक्र किया कि उसके सहपाठी ही इस तरीके के स्लर्स बताते हैं, उसके सहपाठी ही कहीं ना कहीं ताना लगाते हैं, और इसी के चलते ये छात्र कहीं ना कहीं इस सोच में दबाव में आ जाते हैं कि आगे अपनी अपनी यात्रा इस संस्थान के भीतर किस तरीके से बढ़ानी है। ये मुद्दा काफी गंभीर है और इसीलिए चर्चा भी बहुत जरूरी थी। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
3: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
5: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
6: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएस।
3: अब मैं क्या ही बोलूं?
7: परिवार अटूट भरोसा।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट।
11: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
2: यार लोन भूल गया। मैरी?
3: It's
2: just a good bank ना?
4: Ujjivan Small Finance Bank.
2: Small Finance Bank?
4: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
5: There's nothing small about
6: it. Ujjivan, nothing small about us.
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, माँ ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है, अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है। कितना गहरा उस परिवार का दुख होगा। पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता।
1: आईआईटी बॉम्बे पवई को राजनीतिक अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है। उस आईआईटी पवई के डायरेक्टर पर क्या बीत रही होगी जिसका इस्तीफा आप ले रहे हैं। दोनों विषयों को गंभीरता से समझिए। बच्चे की मृत्यु का सभी को दुख है, संवेदना है। उसने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठे, क्राइम ब्रांच आए, पुलिस आए, इसकी एक निष्पक्ष जांच भी हो। साथ ही साथ नकल को भी तो रोकना शिक्षक का ही काम है, मैनेजमेंट का ही काम है।

0: पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मौजूदा चुनाव आयुक्त एस एस संधु, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गजों के नाम उस नोटिस में शामिल हैं जो उन्हें दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मिला है और इस चुनाव आयोग के इस नोटिस ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े नामों जो कई अहम पदों पर रह चुके हैं, उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मिले नोटिस की वजह क्या है। दरअसल दिल्ली में एसआईआर के बाद 97 लाख से ज्यादा वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है जिसमें करीब 33.13 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी मिली है। अब चुनाव आयोग की ओर से इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें मौजूदा वोटर की जानकारी का 2002 में हुए पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया है। कई बड़े नामों को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
1: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहाँ और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया। मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
0: उधर दिग्गजों को मिले नोटिस के बाद कांग्रेस की ओर से हमले का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी के दबाव में शुरू की गई और इसके जरिए वोटर लिस्ट से कई नाम काटने की साजिश रची गई। उधर तमाम सवालों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपना जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नोटिस मिलने का ये मतलब नहीं है कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। नोटिस पाने वाले लोगों को अपनी बात रखने और जरूरी दस्तावेज देने का मौका मिलेगा। हालांकि आयोग के इस बयान के बाद भी सियासत तेज होती जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया के बीच दिग्गजों को नोटिस पर नई लड़ाई छिड़ गई है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ. देखते रहिए आज तक.
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स. भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स टंकी मतलब वेक्टर्स.
0: प्रेजेंटेड बाय
3: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: जमुई दरिंदगी मामले में एनकाउंटर के बाद सियासत तेज, बीजेपी बोली लालू का असली चेला था गुनहगार, मुख्य आरोपी समेत अब तक 5 गिरफ्तार, तेजस्वी ने किया पलटवार। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को नहीं मिली राहत, कलकत्ता हाई कोर्ट में मिलन प्रधान ने न्यायिक हिरासत के खिलाफ दाखिल की थी अर्जी, अब 12 अक्टूबर को सुनवाई, 6 को है वोटिंग। आईआईटी बॉम्बे के बाहर कांग्रेस एससी एसटी सेल का प्रदर्शन, छात्र सुसाइड मामले में पीड़ित पिता ने डायरेक्टर और प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग की, कहा बेटे को कहे गए जाति सूचक शब्द। अमृतसर में 6 हथियार तस्कर नेटवर्क का खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार, 13 पिस्टल 23 जिंदा कारतूस बरामद। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मान, कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, यामी गौतम बनी बेस्ट एक्ट्रेस, गुजरात के केवड़िया में समारोह का आयोजन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: आज बिहार में ये वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बच्चियां सुरक्षित पूरे बिहार में नहीं।
3: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
4: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना।
5: Crimes against women are just increasing. It's become unsafe for women.
6: ये इतना घृणित अपराध है कि जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

0: मीडिया बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार के जमुई में नाबालिग छात्र छात्रा के साथ हुई शर्मनाक घटना पर आज पुलिस ने दो आरोपियों नंदन यादव और हरे राम यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। तीन नाबालिग आरोपी कल ही पकड़े गए थे, लेकिन इस घटना पर जहां आक्रोश ने सरकार और पुलिस को एक्शन के लिए मजबूर किया, तो वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पहले बिहार के मंत्री श्रवण कुमार इसको छिटपुट घटना बताए, मंत्री श्रेयसी सिंह मॉरल पुलिसिंग को लेकर दिए गए बयान पर घिरी। उन्होंने कहा कि मॉरल पुलिसिंग करनी भी चाहिए तो डिसेंट तरीके से। उधर पकड़े गए आरोपियों की यादव जाति बनाम एक आरोपी के भगवा गमछे पर आर पार की लड़ाई छिड़ी है। बीजेपी ने आरोपी को लालू का चेला बताया है। सवाल यह है कि जमुई में हुई घटना, शर्मनाक घटना के बावजूद सियासत क्यों नहीं सुधर रही? क्यों बिहार में नैतिकता के ठेकेदारों को खुली छूट मिली हुई है? यादव आरोपी और भगवा गमछा बीच में क्यों आया? जमुई का जंगल राज इसे हम कह रहे हैं, और इसीलिए आज सवाल यह है कि जमुई का जंगल राज सियासत को नहीं लाज। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के जमुई में मॉरल पॉलिसिंग की आड़ में नाबालिग छात्र छात्राओं के साथ हुई घटना का वीडियो जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जंगल राज के आरोपों पर गिर गई सम्राट सरकार की पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी नंदन यादव और हरे राम यादव के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान नंदन के पैर में गोली लगी और हरे राम के पैर में भी चोट की खबर है।
1: नंदन यादव, उसके पैर में गोली लगी है और ये वो है, तुमको शर्म नहीं आई ये सब करते हो?
0: दोनों आरोपी ट्रैक्टर चालक हैं। जिस क्षेत्र में वारदात हुई वहां बालू और रेत के खनन का काम धड़ल्ले से होता है।
2: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है। यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है।
0: जमुई के मामले में तीन नाबालिग आरोपी पहले ही गिरफ्तार हुए हैं। केस में आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में कार्रवाई शुरू हुई है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। साथ ही पीड़ित छात्र छात्राओं की पहचान उजागर करने वाले 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जमुई की यह घटना बिहार की कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर किए गए दावों और समाज की सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर गई है, खासकर तब जब सत्ता पक्ष की ओर से कुछ गैर जिम्मेदार बयान भी आए जिस पर अब यू टर्न लेने को मजबूर होना पड़ा।
3: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
4: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है।
5: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उसको सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कानून व्यवस्था पर अपने पहले के बयानों से घिरे।
6: बुलडोजर एनकाउंटर का बोलबाला, माफिया का अंत करना है, पुलिस एकदम ट्रिगर हैप्पी हो जाए तो हो जाए।
7: नहीं, अपराध अपराध अपराध के खिलाफ होना चाहिए। मैं ना, मेरी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई है ना कोई व्यक्तिगत झगड़ा है, कहां मैं इस चक्कर में पड़ूं। मेरा काम है शासन को ठीक से चलाना, पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड छोड़ देना। तो रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
0: तेजस्वी यादव अब ऐसे ही बयानों के आधार पर सम्राट चौधरी को इस्तीफे के लिए ललकार रहे हैं।
8: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा, अगर हिम्मत है तो। अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं।
0: तेजस्वी यादव ने इंडिया टुडे पर दिए गए मंत्री श्रेयसी सिंह के बयान पर एनडीए को घेरा है।
9: Moral policing can be one on one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion.
0: इस बीच जमुई की घटना पर तेजस्वी यादव के एक्स पोस्ट से एक नई राजनीति भी शुरू हो रही है। इस पोस्ट में सीएम और पुलिस के बीच काल्पनिक बातचीत लिखी गई है। एक आरोपी के गमछे के रंग के आधार पर भगवा बलात्कारी शब्द पोस्ट में आया है। इस काल्पनिक बातचीत के जरिए ये आरोप लगाने की कोशिश भी हुई कि केस में यादव और मुस्लिम एंगल ढूंढने की कोशिश हो सकती है। जमुई मामले के आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव के एनकाउंटर और गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी बयान जातीय एंगल तलाश रहा है।
10: ये एनडीए की सरकार है और खास करके सम्राट चौधरी जी की सरकार है, कहीं बर्दाश्त नहीं हो सकती हमारी बेटियों के साथ, हमारे परिवार के साथ इस प्रकार का कोई घटना। आज बिहार के जेलों में जाइए तो 70% एक समाज के लोग आते हैं, चाहे बलात्कार का मामला हो, भूमि हड़प का मामला हो, हत्या का मामला हो, एक ही कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के लोग होते हैं।
0: जमुई मामले पर बीजेपी सांसद और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान भी सुर्खियों में आ गया है।
11: मैं कहूंगी ऐसे व्यक्तियों को जो माइनर कहते हैं, माइनर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, और आपने सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखे होंगे पूरे भारत भर में जहां माइनर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बूढ़ी औरत का रेप हो, छोटी बच्ची का रेप हो, ऐसे माइनर्स को एडल्ट की तरह ट्राई तो करना ही चाहिए, तो कभी कभी लगता है कि शरीयत लॉस अपनाने चाहिए, इनके हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने ऐसे हाथों से छुआ और इतनी गलत तरीके से छुआ।
0: जमुई की घटना पर आक्रोश समझा जा सकता है, लेकिन सवाल ये भी कि क्या जमुई का मामला राजनीतिक भंवर में फंसने लगा है। आज तक ब्यूरो, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अरुण भारती जो कि सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के, और सांसद हैं ये जमुई से भी, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रीति शेखर प्रवक्ता बीजेपी की, महेश दास प्रवक्ता जेडीयू के, नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के। हम इसको जमुई का जंगल राज कह रहे हैं। सांसद जी, आपसे जरा सुनना और समझना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री इस तरह का दम भर रहे हैं कि अब तो महिलाएं कहीं भी आधी रात तक निकल जाएं, कोई उनको छू नहीं सकता, आज वो सामने आएंगे, आज कौन जवाब देगा इस बेटी के साथ जो वहां पर हुआ, इस बच्ची के साथ जो हुआ है उस, और वो लड़का जो वहां पर था, मतलब क्या है ये जंगल राज नहीं है तो क्या है ये?
12: अंजना जी, जैसे ही घटना संज्ञान में आती है उसके 48 घंटे के अंदर,
0: भारती जी संज्ञान में क्यों नहीं आती है टाइम पर? भारती जी सुनो एक सेकंड, सांसद जी ने एक सेकंड, आपको पता है ये घटना कब की है?
12: ये घटना है 19 सितंबर की। हाँ। मगर ये पुलिस के पास कोई पीड़ित परिवार नहीं गया था, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है। जब ये सोशल मीडिया पे जैसे ही वायरल होना शुरू हुआ, पीड़ित परिवार के संपर्क में रहा हूँ मैं, पुलिस प्रशासन के संपर्क में रहा हूँ, तुरंत FIR हुई कल दोपहर तक 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे, और आज शाम तक जब हम बात कर रहे हैं 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 48 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई है। पुलिस महकमे से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मेरी बात हुई है, हम लोगों ने जमुई सर्किट हाउस में बैठ करके इस पूरी की पूरी इसको हम लोगों ने देखा है, समीक्षा की है, और इसको पूरा ये किया है। आज के दिन में आप इसे जमुई का जंगलराज कैसे कह सकती हैं, क्योंकि
0: तो क्या
12: जंगलराज में तो कार्रवाई होती
0: क्या
12: नहीं,
0: राम राज्य कहे।
12: लेकिन
0: तो फिर
12: पुलिस अपना काम कर रही है, और 48 घंटे के अंदर 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस तरह की मानसिकता जिन लोगों की होती है अपराध की, उनको स्पष्ट चेतावनी है कि अभी तो सिर्फ हाफ एनकाउंटर क्वेश्चन है, फुल एनकाउंटर भी होगा अगर इस तरह की मानसिकता रहेगी तो।
0: अरुण भारती जी, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, आप लगातार चुनाव ये कहकर जीत रहे हैं कि लालू प्रसाद का जो राज था वो जंगल राज था, और मैं उस राज को डिफेंड करने नहीं आई हूं, सबको पता है कि उस दौरान क्या क्या बिहार में होता था, किस तरह से अपहरण होता था, लेकिन आप 20-25 साल बाद वही लालू राज करते हुए ये सब होने दें और फिर कहें कि इसको जंगल राज ना बोलिए, तो फिर कौन आपकी बात मानेगा? आप सोचिए, शाम के 7:15 बज रहे थे, मैं पुलिस के हिसाब से बता रही हूं जब यह घटना घटी है, और यहां मुख्यमंत्री आधी रात में घूमने के लिए कह रहे हैं कि कोई आपको छू देगा तो मुझे बता दीजिएगा।
12: अगर जंगल राज होता है ना जी, तो ये अपराधी जो थे मुख्यमंत्री आवास में मिलते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती। यहां 48 घंटे में पुलिस ने कार्रवाई करके सभी को गिरफ्तार कर लिया है, जरूरत पड़ी हो तो पड़ी है, तो पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है। जंगल राज का समय नहीं है, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ दावे किए थे, लेकिन उन दावों पर काम करते हुए दिख रहे हैं हम लोग। हम लोग कहीं किसी अपराधी को छुपा नहीं रहे हैं, किसी को बचा नहीं रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हुई तभी 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आप पूछिए जंगल राज में कितने केसेस हैं जो आज तक सॉल्व हो गए, बताइए। इतने दिनों में जितने भी लोग अभी बैठ कर बात कर रहे हैं, जो भी एलओपी अभी बयान दे रहे थे, वो दोनों एलओपी चाहे केंद्र में हो बिहार में हो, हमेशा एलोप रहते हैं। संसद चलता है तब एलोप रहते हैं, और जब यहाँ पर पुलिस कार्रवाई होने के बाद जब उनके लोग पकड़ में आ रहे हैं तब एलोप रहते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है।
0: आपके पास क्या प्रमाण है कि ये नंदन यादव या हरेलाल यादव, जो एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए, ये लोग उनसे मिले हुए हैं या उनसे जुड़े हुए हैं आरजेडी से? क्योंकि बीजेपी ने तो अभी बीजेपी बिहार बीजेपी ने अभी पोस्ट डाला है।
12: मैं अभी जमुई में ही हूँ, मैंने देखा नहीं उनका पोस्ट क्या है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह की मानसिकता जब चुनाव के दौरान जब वोटिंग हो रही थी तब भी हम लोगों ने देखी थी। लगातार जब हमारे क्षेत्र में घटना होती है इसी तरह की मानसिकता से लोग दिखे जाते हैं, और इस बार भी जब पुलिस ने कार्रवाई की कर करके लोगों को पकड़ा है, इन्हीं मानसिकता से लोगों को हम लोग हर बार देखते हैं। और लगातार जमुई में कोई भी इस तरह की घटना होती है, छोटी से छोटी घटना, बड़ी से बड़ी घटना, इन्हीं लोगों को पाया जाता है। और आज जब पुलिस कार्रवाई करके इनको पकड़ करके आज जब धारा एक्ट कर रही है, तो मैं तो चाहूंगा कि पुलिस इस बार इनको सिर्फ इनको सजा ही नहीं दिलवाए, इस बार इनका उदाहरण बने, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरह की मानसिकता लोग रखते हो उनको कानून से डरना चाहिए। और अंजना जी, मैं एक बात और करना चाहूंगा,
0: डर रहे लोग सांसद जी कानून से?
12: माननीय मुख्यमंत्री,
0: सांसद जी, लोग कानून से क्यों नहीं डर रहे हैं?
12: अरे इनका चरित्र रहा है, चाल चरित्र रहा है इनका, इनको पता है, इनको लगता है कि आज नहीं तो कल जंगल आज वापस आ जाएगा, इसे छुटको। आप देखेंगे कि हर वक्त ये कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं, हमेशा कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। इस बार भी जो जमुई में इन्होंने बेटियों के साथ किया है, बेटी के साथ किया है, ये इस बार इनका उदाहरण बनेगा। मैं आपको एक बात घटना याद दिलाता हूँ।
0: अच्छा सांसद जी, एक बात बताइए, ये तो आप बार बार कह रहे हैं एग्जाम्पल बनेगा और उससे सब कुछ बदल जाएगा, हमने देखा है कि कितने एनकाउंटर्स और एनकाउंटर के बाद लोग डर जाते हैं। भरत तिवारी का भी एनकाउंटर हुआ, उस पर आज तक प्रश्न है। सुनिए तो मेरा सवाल तो सुनिए सांसद जी, ये जमुई के इलाके में हमने सुना है, पूरा इलाका जो हमारे रिपोर्टर वहां पर गए थे, खनन माफिया का दबदबा चलता है, सही है?
12: जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, वहां पर अवैध बालू का खनन का पूरा ये चलता है।
0: तो क्यों नहीं रोकते?
12: पुलिस लगातार इस बात को लेकर के पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। अभी जिस तरह से इस सारे मामले में इन लोगों का पूरा नेक्सस खुल करके आया,
0: तो
12: इन सारे नेक्सस पर
0: अरुण जी आप सांसद हैं, अभी आपसे पहले चिराग पासवान जी आपके अध्यक्ष सांसद थे, कितने साल से चल रहा है और क्यों नहीं पुलिस इसको रोक पाती है? आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही मान रहे हैं कि चल रहा है खनन माफिया।
12: कोई लगातार पुलिस इसलिए है कि कहीं भी कोई आपराधिक मानसिकता, कोई भी ऐसे कानून व्यवस्था का कोई भी प्रयास करेगा, पुलिस उसको रोकने का काम करेगी। इस सारे इसमें आप देखेंगे पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, तुरंत ही लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। और आने वाले समय में अभी आप इन सबको, हम लोगों ने अभी बात की है, समीक्षा की है, वहां पर डीआईजी साहब भी थे, एसपी साहब, डीएम साहब भी थे, कि इनको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से तुरंत न्याय की राह पर लेके जाएंगे। इस बार इनका उदाहरण बनाया जाएगा।
0: क्या कीजिएगा, क्या उदाहरण बनाइएगा?
12: इसमें कठोर धाराएं लगेंगी, कठोर धाराओं के साथ स्पीडी ट्रायल होगा। और स्पीडी ट्रायल आपको याद होगा 2005 में भी एक बार स्पीडी ट्रायल हुआ था, 8 दिनों के अंदर आरोप तय करके सजा भी दी गई थी, उसी तरह से कार्रवाई होगी।
0: हमको लगा हाफ एनकाउंटर किया गया, पैर में गोली मारी गई है, उसी को आप लोग कह देंगे कि मिसाल बन गया?
12: नहीं नहीं नहीं, हाफ एनकाउंटर तो अभी अंजना जी सिर्फ ये कॉशन है, अगर इस तरह की मानसिकता वाले लोग और दिखेंगे तो भविष्य में फुल प्रमोशन होगा।
0: अच्छा, आप बने रहिए हमारे साथ, मुझे लग रहा है कहीं गाड़ी में आप रास्ते में कहीं से जुड़े हुए हमारे साथ। प्रीति शेखर जी, ये श्रेयसी जी जब आई टीवी पर तो उन्होंने जवाब में कहा कि मॉरल पुलिसिंग भी करनी चाहिए तो डिसेंटली करनी चाहिए। मतलब इस तरह के बेतुके बयान विधायक और सांसद मंत्री श्रवण कुमार कह रहे हैं कि छिटपुट घटना है, शर्मसार करने वाली स्थिति है। मतलब एक तो ऐसी घटना होती है, एकदम दिखता है कि पुलिस का इकबाल नहीं है। जो हुआ इस छात्र छात्रा के साथ, तो वो कल्पना करे कोई कि उनके बच्चों के साथ हो। बोलिए प्रीति शेखर जी।
13: अंजना जी, जहां तक अंजना जी, जहां तक इकबाल की बात है तो बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार कोई भी अपराध हो उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है, और यही इसी का परिणाम है कि 24 घंटे के भीतर मामला संज्ञान में आने के बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और मुठभेड़ में आज दो लोगों का हाफ इनकाउंटर किया गया है। ये बतलाता है कि बिहार में अपराध को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरा प्रश्न यह भी है कि जिस प्रकार से उस बच्ची के साथ जो अमानवीय कृत्य करते हुए अपराधियों का वीडियो बनाकर लोगों ने वायरल किया, हमारा समाज भी किस ओर जा रहा है? और हम वीडियो बनाकर उनके उस बच्ची की निजता का हनन कर रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं, ये भी समाज के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। जहां तक बात है पुलिसिंग की, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई बड़ी से बड़ी कार्रवाई हुई है, इससे पूर्व भी कई ऐसे मामले हुए जिस पर त्वरित कार्रवाई हुई है और लोगों ने इस पर संज्ञान लेकर कानून का इकबाल बुलंद करने का काम किया है। लेकिन आज तेजस्वी यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं, वो गमछे के रंग की बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूं कि बिहार की पुलिस गमछे का रंग देखकर कार्रवाई नहीं करती, अपराध के चरित्र को देखकर कार्रवाई करती है और अपराधियों के नेचर को देखकर कार्रवाई करती है। वो चाहे कोई भी
14: क्यों बोला गया
13: गमछा हो, यदि कोई अपराध छिटपुट
14: घटना
13: तो
14: क्यों कहा गया,
13: उस पर पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
14: ठीक है, आप उधर ले जाएं बहस को, उससे पहले प्रीति जी बताइए छिटपुट घटना क्यों कहा आपके मंत्री ने? आ रही अरुण जी।
13: उस पर बाद में आकर उन्होंने अपनी सफाई दी, उनको पूरे मामले की जानकारी नहीं थी।
14: सफाई क्या होता है, सफाई क्या है?
13: सामने ले जाकर
14: पहले गंदगी उठे लिए, उसके बाद से सफाई देने आई है प्रीति जी?
13: पूछा गया था ये नहीं मुझे पता।
14: नहीं प्रीति जी, पहले गंदगी उठे लिए उसके बाद से सफाई करने के लिए आई है और सफाई देने? ना ना ना,
13: शब्द नहीं बोलना चाहूंगी।
14: नहीं बिल्कुल, आपको देखिए अपनी पार्टी से ऊपर उठकर आपको उनकी भत्सना करनी चाहिए जो उन्होंने बात कही कि छिटपुट घटनाएं होती रहती है। यही तो मानसिकता है जिसकी वजह से ये सब रुकता नहीं है। अरुण जी एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं रागिनी जी आ रही हूँ।
13: उन्होंने स्वयं जब उस पर एक्सक्यूज
12: देखिए, इस तरह की
14: नहीं एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता है। एक सेकंड मैडम, प्रीति शेखर जी वो मेरी आपकी बेटी हो सकती थी
13: जी अंजना जी,
14: फिर आप ये स्वीकार करेंगे कि वो ऐसी बात बोले और अगले दिन आकर सॉरी बोल दे?
13: मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये कोई भी ये बेटी किसी के भी घर की हो सकती है, और जिस प्रकार से सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और जिस प्रकार से कुछ लोगों ने भी इस पर राजनीति करने की कोशिश की है, उनको सोचने की आवश्यकता है।
14: अच्छा।
13: कि आज जो लोग इस अपराध में शामिल हैं, वो क्यों किसी एक पार्टी के ही समर्थक आपको दिख रहे हैं? यानी कि स्पष्ट संदेश है कि बिहार में तेजस्वी यादव जी अपने गुर्गों के माध्यम से जंगल राज लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात को भी मानना पड़ेगा कि आप चाहे जितना भी अपराध फैलाने की कोशिश करें, जब कोई दुशासन पैदा होगा इस बिहार में तो उसकी भुजाएं ही नहीं तोड़ी जाएगी, उसका जरूरत पड़ने पर इनकाउंटर भी किया जाएगा, क्योंकि ये बिहार की धरती है, मां जनक जननी की धरती है, माता सीता की धरती है। यहां पर किसी बेटी का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे हैरानी तब होती है कि जब उनको बचाने के लिए एक मतलब
14: आप भी तो श्रवण कुमार को बचा ही रही हैं, आप ही श्रेयसी सिंह को बचा ही रही हैं ना, आप क्यों श्रवण कुमार को बचा रही हैं? आप बोलिए उन्होंने गलत बोला,
13: देखिए
14: बोलिए
13: मैं तो कह रही हूं कि जिन्होंने कहा उन्होंने स्वयं आकर अपनी सफाई दे दी है, तो उस पर मेरे कुछ बोलने का इसमें कोई मतलब नहीं होता।
14: क्यों नहीं मतलब?
13: लेकिन बात है कोई कार्रवाई की, बात
14: क्यों नहीं होता?
13: आप तो घुमा कर ले जा रही है, आप उनके वक्तव्य से उनको जवाब निश्चित मांगेगा, लेकिन जो भी जिस पर अपोलोजी उन्होंने दे दी है उस पर बहुत सफाई देने की मुझे आवश्यकता नहीं। हाँ, मैं प्रवक्ता के तौर पर यह निश्चित तौर पर बता सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पूरे शासन काल में बिहार में सुशासन की सरकार में अपराधियों की खैर नहीं।
14: और नवल किशोर जी जल्दी से कमेंट आपसे, उसके बाद मैं अरुण भारती जी आ रही हूँ। नवल किशोर जी एक कमेंट आपसे, तेजस्वी यादव जी का सुबह का हम लोगों ने पोस्ट देखा है, लगभग सुबह 9 बजे उन्होंने प्रियम्प्ट करते हुए कि यादव निकलेगा, ये है वो है, हरा रंग भगवा रंग का गमछा, क्या है ये भाई? चेहरा साफ दिख रहा है उस शख्स का, दिखाइए उसका चेहरा फिर से, चेहरा उस आदमी का, क्योंकि जिस आदमी ने ये कांड किया उसका चेहरा दिखना चाहिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने इस बच्ची का, उसके साथ जो छात्र था, उसके वीडियोस डाल डालकर उसको वायरल किया, असल में तो आपको इस शख्स का चेहरा दिखाना चाहिए, नंदन यादव का, जिसने इसको अंजाम दिया है, जो गमछे से मुंह छिपका आकर वहां पर गया था। उस वीडियो में इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन बच्चों का चेहरा दिख रहा है। क्या है ये नवल किशोर जी?
15: जी, ये तो हाँ। सरकार का देखिए, ये तो देखिए, सरकार और एनडीए और भाजपा का ये चरित्र है कि उसमें जाति और रंग खोजते हैं हर एक अपराध में, तो ये तो इनका चरित्र ही है। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से कुछ खबर
14: तेजस्वी जी ने किया है,
15: क्योंकि महिला
14: तेजस्वी जी ने किया
15: इसी महीने का। सुनिए, नहीं नहीं सुनिए तो
14: नहीं, आप ये पोस्ट समझाइए, क्या है ये पोस्ट में,
15: जो बात आप कहना चाहते हैं
14: ये पोस्ट में क्या है आप समझाइए। आप खोलिए, तेजस्वी जी का हैंडल खोलिए मोबाइल पर, क्या है बताइए।
15: नहीं नहीं, आप समझाइए ना, क्या पहले आप समझाइए तब हम बताएंगे।
14: हम तो समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं समझ में आया।
15: यही बात कहनी है कि जो जो जो नहीं नहीं, आप लोग सब समझते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस महीने में जो महिलाओं और बच्चियों के साथ क्राइम हुए हैं, जो कहते हैं ना कि 48 आवर्स में पकड़ लेते हैं, 3 सितंबर को समस्तीपुर में 4 साल की बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म, बक्सर में 2 शिक्षकों पर छात्राओं से रेप का आरोप, 6 सितंबर को मधेपुरा में बिहारीगंज में शर्मकार करने वाली घटना, 3 बच्चियों नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 7 सितंबर को सहरसा में 8 साल के नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, सीतामढ़ी में इलाज कराने गई किशोरी के साथ गैंगरेप, मधुबनी में कुल्हारी से महिला गला काटा, 9 सितंबर को पटना में पुनपुन में पिपरा क्षेत्र में घर से घर में घुस के लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 12 सितंबर को पटना के मोकामा में पड़ोसी ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, बेतिया में गायब चारों लड़कियां दिल्ली में मिली, मोतिहारी में घुसखोर पुलिस वालों का वीडियो वायरल, 13 सितंबर को शेखपुरा चेवड़ा में थाना क्षेत्र में नाबालिग को बेहोशी का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म, रोहतास में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर छात्र और शिक्षकों को पीटा, पटना में श्रीकृष्णपुरी थाना क्षेत्र में बोरिंग और रोड में इलाके में युवक में घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट और छेड़खानी, गया मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मानपुर नवादा में लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पटना में राजीव नगर में घुड़दौड़ रोड पर मोहल्ले में सेक्स रैकेट, 14 सितंबर को जमुई के निजी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत, ऑफिस बुलाकर किया अनुचित स्पर्श, निदेशक जेल भेजा गया, 15 सितंबर को मधुबनी में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग का शोषण, 17 सितंबर को जमुई के चकाई प्रखंड में अकेली महिला को बदमाशों ने बनाया बंधक, लूटे जेवरात, पश्चिम चंपारण में कालीबाग थाना में बहू और पोती के साथ सोई महिला का गला रेतकर हत्या, पटना में रेल इस तरह से 18 सितंबर देखिए आज तक का खबर जो जो रिपोर्ट आया है वो मैंने आपको अभी तक पढ़ के सुना है। जो लोग कहते हैं कि 48 घंटे में हम कार्रवाई करते हैं, पताल से खींचकर हम अपराधी को लाते हैं, जिनके नेता कहते हैं कि पितृपक्ष में निवेदन करते हैं कम से कम अपराधी लोग इस समय अपराध नहीं करो, जिसकी महिला मंत्री और वहां की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहती है कि जो मोरल पुलिसिंग भी करना है तो रिस्पेक्ट के साथ करो, इस तरह के मानसिकता वाले लोगों के साथ, और जिनका मुख्यमंत्री कहता है कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया हुआ, फ्री हैंड देने के बाद जो इकबाल दिख रहा है, एक महीने का रिपोर्ट है, पिछले साल का अगर रिपोर्ट दिखाया जाए तो आपको सुनते सुनते आप थक जाएंगी। मसला सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने सरकार में महिलाओं को 10,000 रुपया देकर पूरी तरह से जनादेश को प्रभावित किया और उन लोगों को झूठा वादा दिया कि 2 लाख रुपया देंगे, उन लोगों का पूरा जो उद्देश्य है कि लोगों को बरगलाना है। 41,000 करोड़ रुपया दिया गया मात्र चुनाव के एक महीना पहले अगर देखा जाए तो। इस तरह के लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि अच्छा शासन करेंगे? और आप जंगल राज जमुई की बात करते हैं, पूरा बिहार में जंगल राज है, दरोगा की हत्या नहीं हुई कि पुलिस को दौड़ा दौड़ा के नहीं पीटा गया, कौन किस तरह की हत्या नहीं हुई है वहां पर, किस तरह के अपराध नहीं हो रहे हैं? तो ये जंगल राज सिर्फ जमुई का नहीं है, पूरे बिहार में जंगल राज कर रहा है और इनका उद्देश्य भी वही है। जो सम्राट चौधरी जी हैं, जितना बोलते हैं आप कहते हैं सम्राट चौधरी भी खुद ही हत्या के आरोपी हैं, वो हत्यारों को क्या खोजेंगे? उनके पोस्टर बॉय ही हत्या के आरोपी हैं, तो दूसरों को क्या कर सकते हैं?
14: चलिए, अरुण भारती जी आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं, लेकिन आप भाग गए आज नवल किशोर जी, मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसा करेंगे, प्रोफेसर हैं आप। मैं तो बस तेजस्वी यादव साहब का ये जो पोस्ट है उसको समझने की कोशिश कर रही थी कि लड़की छेड़ने वाले ने किस रंग का गमछा लपेटा था, पुलिस सर भगवा था एकदम आप जैसा, ये क्या कहने की कोशिश है जरा, क्योंकि जब इतने संगीन अपराध में भी उसको हल्केपन के साथ ट्रीट किया जाता है ना, तो वो सब पर जिम्मेदारी आती है। उम्मीद करूंगी कि रागिनी जी हो सकता है बोले कि ये इस तरह की बात लिखना उतना ही गलत है जितना श्रेयसिंह सिंह का ये कहना कि भाई डिसेंट मॉरल पुलिसिंग होनी चाहिए, या श्रवण कुमार का कहना कि छिटपुट घटनाएं होती हैं। लेकिन आप आज बताइए अरुण भारती जी, वो कह रहे हैं कि त्वरित 48 घंटे के अंदर कार्रवाई, फिर इतनी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही है?
12: अंजना जी, नवल जी ने मुझे लगता है कि सावन के अंधे को हरियाली दिखती है, उन्होंने जंगल रात की तरह पूरा लिखवाया तो, लेकिन साथ में ये बताना भूल गए कि पुलिस की क्या क्या कार्रवाई हुई है। देखिए, जब पुलिस लगातार अगर घटनाएं हो रही है तो उस पर कार्रवाई भी कर रही है, आप कार्रवाई की जिक्र नहीं करते हैं। और आपके नेता जो खुद हैं, आज उन्होंने तो पहले ही पता चल गया था, पहले जंगल राज में अपराधी मुख्यमंत्री आवास में मिलते थे, पता चला कि जितने भी इनके अपराधी हैं अब नेता विपक्ष के टच में है, और जैसे ही कानूनी कार्रवाई होने या होने जाएगी तो इनको पता है कि हमारे लोग निकलेंगे, इसीलिए पहले उन्होंने प्रीएम्प्ट करने का काम शुरू कर दिया था। आप ये बताइए कि बिहार के गमछे को बदनाम करने का काम किसने किया था? बिहार की बेटी को जब ये लोग छेड़ रहे थे, हमारे बिहार को के गमछे के रंग पे बात कर रहे हैं, बदनाम करने का काम
15: करना चाहिए। आपकी हिम्मत नहीं है, सत्ता का मलाई खा रहे
12: हैं, सरकार छोड़ेंगे,
15: केवल सत्ता का मलाई खा रहे हैं, आपको लगातार बोलने का हिम्मत नहीं है। सम्राट चौधरी के सवाल की हिम्मत नहीं है,
12: जब पुलिस कार्रवाई कर दी तो आपके नेता, आपके
15: राहुल
12: गांधी एलओपी कहां लोग कर गए हैं,
15: सरकार को सवाल नहीं पूछ सकते।
14: अच्छा, उसको बोलने दीजिए नवल जी, नवल जी चिल्ला चिल्ली मत कीजिए।
12: सच्चाई सुन नहीं सकते हैं तो फिर इनको डिबेट में आप क्यों रखी हुई है? देखिए, जब जो बात सही है, पुलिस की कार्रवाई पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, इनके लोग मिल रहे हैं कुछ नहीं बोला, गमछों को बदनाम कर रहे हैं इस पे कुछ नहीं बोला।
14: तो सांसद जी, इनके लोग मिल रहे हैं तो इनके लोग अगर ये करेंगे तो नहीं पकड़ेगी क्या पुलिस? भाई एक बाल होना चाहिए ना, पुलिस का डर होना चाहिए, वही पुराना टेप चलता रहेगा बार बार, इनके लोग, इनके 20 साल पहले ये चलता था। रागिनी जी, आप भी इस ट्वीट को, क्योंकि आज सबको नोटिस किया जाएगा ना भाई, ऐसी मतलब वो वीडियो जो देख ले वो हिल जाए अंदर से, ऐसी घटना है ये।
16: अंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जमुई की घटना का वीडियो एक दिल दहला देने वाला वीडियो था, और वो बार बार याद दिलाता है उस नारे का जो मोदी जी ने दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इतना दिल दहला देने वाला है कि आज देश की जनता त्राहिमाम करके कह रही है कि भाजपा से बेटी बचाओ, और बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। और विडंबना देखिए कि वो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की लड़की भी पढ़कर ही आ रही थी कोचिंग सेंटर से, और अपने सहपाठी के साथ आ रही थी। जब ऐसे हैवानियत उसके साथ हुई, वो माफी हाथ जोड़ती रही, गुहार लगाती रही, और उसके शरीर को नोचा जाता रहा, और कितनी भी माफी मांग ले, ये कहना शरण कुमार जो कि भाजपा के मंत्री हैं बिहार की सरकार में, कि छिटपुट घटना है सरकार संज्ञान ले लेगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी ये कहना कि छिटपुट घटना है, और जले पर नमक रगड़ते हुए भाजपा की महिला विधायक का ये कहना मॉरल पुलिसिंग कुड हैव बीन डन इन अ मोर एलिगेंट फैशन, यानी कि मॉरल पुलिसिंग को जायज ठहरा रही थी और कह रही थी कि बस थोड़ी शालीनता से हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, शर्म नहीं चाहिए इस बात के लिए। और मुझे गर्व भी है अंजना जी इस बात का कि राहुल गांधी जी ने पुणे में जब बात कही स्मैश द पेट्रियार्की की, वही उन्होंने जमुई की घटना को जोड़कर भी कहा कि संस्कृति के नाम पर किसी का भी अधिकार नहीं कि वो बदतमीजी करे किसी लड़की के शरीर के साथ, उसकी पसंद नापसंद के साथ, उसके आने जाने के साथ रोक टोक और खिलवाड़ करे। और मैं इसका विस्तार करती हूँ क्योंकि आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो या उससे ना भी जुड़ा हो, ऐसे व्यक्ति के साथ ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पूछना भी पड़ेगा कि नारी शक्ति बंधन का क्या हुआ उन नारों का, ये पूछना पड़ेगा बेटी बचाओ के नारे का क्या हुआ, और ये भी पूछना पड़ेगा कि सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम थे आप ही के साथ बात कर रहे थे, और अगर उन्होंने कहा कि 12 बजे भी कोई छू नहीं सकता महिला को, मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो क्या आज नैतिकता दिखाते हुए वो इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे अंजना जी। जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की स्कूटी पर बैठकर 1 किलो सोना पहनकर 12 बजे रात को निकल सकती है, और आप ही जो आंकड़े दिखा रही है एनसीआरबी के, उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस उत्तर प्रदेश में है, हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिल्ली में है, जहां भाजपा की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, जो कि दिए जलाने और 108 हवन करने में व्यस्त हैं, और दिल्ली में पिछले एक महीने में 5 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, यौन शोषण होता है, एक को पूरी बस में घुमाया जाता है, बलात्कार करके फेंक दिया जाता है, दूसरी को 18 बार चाकू मारकर कुत्तों से नुचवाने के लिए 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये कहना भी कि किसी रंग का था, कोई ये था वो था, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की अंजना जी?
14: शुरुआत हुई इसलिए आप भी करेंगे और फिर उस पर कोसेंगे भी नहीं चलेगा ना। एक नाव पे ही पैर रखना पड़ेगा। अगर गलत है तो सभी के लिए गलत है, और अगर जाति और धर्म और भगवा रेप और भगवा ये रंग खोजा जाता है तो ये भी उतना ही खतरनाक एक ट्रेंड है। और जेडीयू से तुम्हारे तरफ था एक बात, आप गलत बोल गई। महेश दास जी श्रवण कुमार जेडीयू के कोटे के हैं, और श्रवण कुमार ने ही कहा कि छिटपुट घटना है। छिटपुट घटना दिख रही है आप लोग को?
17: देखिए अंजना जी, शायद माननीय मंत्री जी ने जो उस समय वक्तव्य दिया है, शायद उस समय उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था, इसलिए तो उनसे ये बात बोला गया।
14: तो चुप
17: लेकिन
14: रहते।
17: उसके बाद फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने खुद खेद व्यक्त किया कि इस तरीके की घटनाओं का कहीं भी समाज में स्थान नहीं है, और उसकी घोर निंदा भी उन्होंने किया, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जो भी लोग इस कुकृत्य में शामिल हैं उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और निश्चित तौर पे बिहार की पुलिस 24 से 48 घंटा के अंदर,
14: मैं आपको एक तरीका बताती हूँ महेश जी, मैं एक तरीका बताती हूँ सबसे अच्छा होगा। जब ऐसी कोई घटना होती है ना, निंदा प्रस्ताव लिखिए आप लोग, ठीक है, फिर उसको फ्रेम कराइए। अरे सुनिए तो महेश जी, निंदा प्रस्ताव लिखिए, आपके नेता और मंत्री श्रवण कुमार लिखें, सांसद अरुण भारती लिखें, सब लिखें, और निंदा प्रस्ताव फ्रेम कर करके अपने अपने दीवार पे टांग लीजिए, क्योंकि जनता का भला तो हो नहीं रहा उससे। आप लोगों के निंदा करते हैं और निंदनीय है, इससे जनता का भला तो हो नहीं रहा है। आपको सत्ता सौंपी जा रही है 4 बार 5 बार से लगातार, है ना, तो आपकी जवाबदेही भी उतनी ही बनती है। और अपने मंत्रियों से कह दीजिए कि जो नहीं संज्ञान में है तो उस पर चुप रह जाएं, उठपटांग चीज कम से कम ना बोले, क्योंकि बहुत ही इनसेंसिटिव है। आ रही हूं रागनी जी, प्रीति जी के पास चल के उनसे जवाब लेते हैं। प्रीति शेखर जी, देखिए ये स्थिति ऐसी है कि बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब इस पर क्या एक्शन हो सकता है कि भाई इसमें हमने एक्शन ले लिया? आप ही के कई नेता, आपने शुरू में कहा था ना कि जितने लोगों ने वीडियो वायरल किया उस लड़की का, उसके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। अच्छी बात है, मैं भी मानती हूं कि उस बच्ची का चेहरा उन वीडियोज में बिना मॉर्फ किए लोग डाल रहे हैं, चेहरा उसका दिख रहा है, जो छात्र साथ में उसका भी दिख रहा है। लेकिन मैंने तो देखा आपके कई नेता डाल रहे हैं, अब जब हाफ एनकाउंटर हुआ है उसके बाद डालने के लिए, तो पहले वीडियो डालते हैं फिर लिखते हैं। फिर उन्होंने सम्राट चौधरी का एक लाइन डाली है कि छोड़ेंगे थोड़ी, और उसके बाद से ये जो पवन यादव है उसकी फोटो डाली जा रही है। ये तो बहुत गलत है। नंदन यादव, प्रीति जी ये बहुत ही खराब है। मतलब सभी का जो लोग जुड़े हुए हैं वो सबका बड़ा दिल दुख रहा है कि ये क्यों नहीं स्थिति बदल रही है बिहार की।
13: देखिए अंजना जी, आपने जिस सुधार के बारे में आपने ध्यान आकृष्ट कराया है कि क्यों नहीं स्थिति सुधर रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्थिति बहुत सुधर रही है। पहले जहां पर मात्र अगर आखिर एक्शन कहां से संपादित होगा, थानों से होगा, तो 2005 के पहले की बात करें तो मात्र 55,000 थाने थे, अब 1,20,000 थाने और लगभग पुलिस बल है 1,20,000, और 20,000 की नियुक्ति प्रक्रिया में है, और महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर 112 कार्यरत है, वहां पर भी मामले दर्ज होते हैं, और अभिया ब्रिगेड के माध्यम से आज भी लगभग 1,005 जो महिला पुलिस की टीम है वो स्थानीय लॉज, महिला छात्रावास, महिला कॉलेज के आसपास वो काम कर रही हैं, और कई सारे मामलों में मंचलों की गिरफ्तारी हुई है, कानूनी कार्रवाई हुई है। दूसरी बात कि हमारी पुलिस, हमारी सरकार, आज देखिए कि बिहार पुलिस में भी देश में सर्वाधिक अगर महिलाओं की उपस्थिति पुलिस विभाग में है तो आज वो बिहार में है। कुल पुलिस बल के 26% की संख्या महिलाओं की है, यानी कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार तत्परता से काम कर रही है। लेकिन मतलब भावुक तब हो जा रही हूं या आक्रोशित हो रही हूं कि जब कोई तेजस्वी यादव जैसे नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं कलर, गमछे के कलर की बात करते हैं तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि उनके ही पार्टी के एक वही नंदन यादव जो लालू जी के अनुयायी अपने आप को फेसबुक पर वो अपने आप को कह रहा है, वो जब कुकृत्य करता है तो वो भगवा गमछे में होता है, लेकिन जब उसका इनकाउंटर किया जाता है तो मैं यह तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि उसके सिर पर हरा गमछा लपेटा हुआ दिख रहा है। तो ये क्या कहना चाहते हैं, हम चाहे अपराधी किसी भी कलर का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो अपराधी होता है,
14: ठीक है,
13: उस पर कानून की वही धाराएं लागू होंगी।
14: रागिनी जी बोलने फिर आ रही हूं,
13: दिए हैं कठोरतम कार्रवाई।
14: नवल जी इसके बाद आ रही
13: हूं। ये हमारी
16: अंजना जी, देखिए आंकड़ों के माया जाल में महिलाओं की अस्मिता को नहीं फंसाना चाहिए। एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़े ये बता रहे हैं कि जुवेनाइल क्राइम्स के मामले में बिहार नंबर एक पर है, महिलाओं के अपहरण के मामले में भी बिहार नंबर एक पर है, हत्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। आप अगर हिंसक अपराधों की बात करें तो एक साल में 105% की वृद्धि आई है, पर ये सब आंकड़े हैं। देखिए अगर महिला सुरक्षित है तो वो खुद महसूस करेंगी, और भगवा गमछा था कि हरा गमछा था, इसके बीच में महिलाओं की सुरक्षा को नहीं फंसाना चाहिए। अंजना जी आपने मुझे टोका, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर तेजस्वी यादव का भगवा गमछा कहना गलत है तो मोदी जी का भी

0: कपड़े देखकर लोगों को पहचानना गलत है। इस तरीके की राजनीति पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। तो देश में अगर भाजपा की जनक आरएसएस के सरसंचालक कहते हैं कि बलात्कार तो होते हैं केवल भारत में, इंडिया में, भारत में नहीं होते, मोदी जी अगर सीरियल रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के साथ मंच साझा कर वोट मांगते हैं, और अगर बिल्किस बानो के बलात्कारियों की पैरवी करने वाले को देश में शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, एक महिला नेता को सूर्पनखा, एक महिला नेता को कांग्रेस की विधवा, एक महिला नेता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाता है, तो माफ कीजिएगा, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो सकता, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल सकती, और बाकी सब कुछ जो है वो जुबानी जमा खर्च है। एक प्रवक्ता दूसरे पर आरोप लगा सकता है, दूसरा
1: बिल्कुल
0: प्रवक्ता
1: रागिनी
0: एक
1: जी,
0: पर।
1: आपने जैसे इधर की लिस्ट गिनाई तो उधर से भी एक पूरी लिस्ट गिनाएगी, टंच माल से लेकर सब कुछ होगा, फिर उस पर आप नहीं बोल पाएंगी, वो आपकी पार्टी पर बोलेंगी, अपनी पार्टी पर नहीं बोलेंगी। यही तो दुख है इस देश का, पूरा दुख ही इस देश का यही है। डेंटेड पेंटेड से लेकर क्या क्या नहीं कहा जाता है महिलाओं के लिए, और फिर वो उन पार्टियों से उम्मीद होती है कि इज्जत करें। नवल जी जल्दी से एक रिएक्शन आपका, किसने लिया लाया ये हरा गमछा और भगवा गमछा और ये सब? ये तो आप ही के नेता तेजस्वी यादव ने सुबह में पोस्ट डाला।
2: नहीं देखिए, आप पूछिए सम्राट चौधरी जी से, उन्होंने क्या कहा था आपको भी मालूम होगा। कपड़े के रंग से पहचानने का जो पूरा का पूरा जो डीएनए है वो भारतीय जनता पार्टी में पड़ा हुआ है, वो भगवा हो या हरा हो, हमें उससे मतलब नहीं। मतलब इससे है कि जो आप अभी अभी अभी आप जो गिना रहे, अभी जो प्रीति जी गिना रही थी कि इतना हम लोगों ने सिस्टम बनाया है, उसके बावजूद भी सिर्फ सितंबर का मैंने आंकड़ा दिया है। अगर पूरे साल का दिया जाए तो फिर पुलिस का कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब है कि पुलिस जो है, जो जो जिसको सम्राट चौधरी खुद कहते हैं कि एकदम फ्री हैंड दिया हुआ है, आपने पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है, उसके बावजूद भी सिर्फ महिलाओं के प्रति इतना इतना अत्याचार अपराध हो रहा है, तो फिर पूरे बिहार का क्या हाल होगा?
1: ठीक है अरुण जी, जवाब दीजिए।
2: जो कहने में सिर्फ विश्वास रखते
1: फ्री
2: हैं
1: हैंड, और हम उनके कोर्ट भी दिखा रहे हैं कि जो दावा है सम्राट चौधरी का, वो हम दावे भी दिखा रहे हैं उनके। अरुण भारती जी,
3: तेजस्वी यादव जी, अपने कार्यकर्ताओं को खुद ही कहा था कि हरा गमछा हटा दो, क्योंकि उनको पता था कि 80% जो उनके गमछाधारी लोग हैं यही लोग अपराधी भी हैं। अंजना जी, मच्छर मारने की दवा रोज दी जाती है, रोज मच्छर पनपते हैं, रोज मध्य दवा दी जाती है, आगे भी दवा दी जाएगी, और अब दवा पहले से ज्यादा कड़ी है, इसीलिए दर्द भी ज्यादा होगा। आज बताइए कि ये लोग की जो कल तक क्रिटिसाइज कर रहे थे कहाँ चले गए? राहुल गांधी जो ट्वीट कर करके कहाँ एलोप हो गए? आज जितने भी दोनों एलोपी थे अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन ने काम किया है तो भी बधाई के पात्र है? आज के दिन जब सरकार काम कर रही होती है, जब सरकार तो तब इनको सरकार की हमेशा सफलता नहीं दिखती है, सिर्फ नाकामी दिखती है, पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा लगे।
1: क्या कहा एक सेकंड के अरुण भारती जी, मच्छर है, मच्छर के लिए रोज दवा लगानी पड़ती है, फिर मच्छर मरते हैं, फिर मच्छर आ जाते हैं, ये क्या हुआ? मतलब ये इस तरह के लोग वहां पर पनपते रहेंगे और वो इस तरह का अपराध करते रहेंगे?
3: नहीं, इस तरह के अपराध करने की मानसिकता के साथ जो भी लोग आएंगे, अब बीडी की दवा और कड़वी हो चुकी है, इसलिए दर्द भी ज्यादा होगा और बोलने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। उनको पता है अपराधी कहां से आ रहे हैं, दवा कड़वी होती जा रही है, इसीलिए ये लोग चीख और बिलख भी ज्यादा रहे हैं।
1: ठीक है रागिनी जी, जल्दी से आप कुछ बोलना चाह रहे थे।
0: अंजना जी, आपने जो इकबाल की बात कही ना, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। राजनेता सरकारें किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, समानता को देखती हैं, उस पर कैसे बयान देती हैं, इसका पुलिस पर सीधा सीधा प्रभाव भी पड़ता है, और पुलिस उसी तरह से नियंत्रित की जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर में भी हमने देखा कि दिल्ली पुलिस, जहां ट्रिपल इंजन सरकार है और अमित शाह की पुलिस है, वो किस तरीके से महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे डंडा खेलने का काम कर रही थी, और आज भी लगातार बचाने की कोशिश जो की गई। आपने जो सवाल पूछा उसी को दोहराती हूं, एक बार भी आप कहिए, कोई भी, चाहे वो जदयू के प्रवक्ता हो या भाजपा के प्रवक्ता हो, कि गलत कहा शरण कुमार ने, गलत कहा श्रेयसी सिंह ने, गलत कहा उमेश कुशवाहा ने, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था। मैंने बोलना चैनल
1: बोले
0: कि हिंसा का, आतंक का, बलात्कार का कोई रंग नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, पितृ सत्ता को खत्म करके।
1: तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रही है इस वक्त रागिनी नायक, तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रही है ना रागिनी जी? आप
0: भी कह रहे हैं राहुल गांधी का ये मानना है, मैं नरेंद्र मोदी पर भी सवाल पूछ रही हूँ कि कपड़े देख के कहां पहचान लेते हैं लोग।
1: ठीक है प्रीति जी, जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं श्रवण कुमार के खिलाफ बोल पा रही हैं?
4: मैंने तो जिस बात की स्वयं उन्होंने माफी मांग ली हो, उन्होंने सामने आकर के उसके उसके बारे में मैं क्या बोलूंगी? श्रेयसी जी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं,

0: उनका क्या संदर्भ था और वो क्या बोलना चाह रही थी वो स्वयं आकर के बोलेंगी। एक प्रवक्ता के तौर पर मैं पार्टी और सरकार की बातों को जो अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई,
1: एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आप बीजेपी की प्रवक्ता, एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपने दम पर किसी और के साथ ऐसी मॉरल पुलिसिंग कर सकता है?
0: देखिए, उनका मैंने पूरा संदर्भ नहीं सुना।
1: मैं आपसे पूछ रही हूँ
0: इस बात पर,
1: मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या कोई मॉरल पुलिसिंग कर सकता है? कौन कैसे कपड़े पहने, कौन कहां पर जाए, कौन किसके साथ जाए, कहां पर दिखे नहीं दिखे, क्या कोई भी मॉरल पुलिसिंग कर सकता है, हाँ या ना?
0: देखिए, मॉरलिटी की बात करें, नॉट फॉर पुलिसिंग की, मतलब सामान्य तौर पर हम परिवार और समाज की भी बात करें तो मॉरलिटी ये सिर्फ पाठ पढ़ाने से नहीं होता, ये एक आचरण व्यवहार, और हम कैसा व्यवहार और आचरण अपने निजी जीवन में करते हैं, सार्वजनिक जीवन में करते हैं, उसका संदेश प्रेषित होता है। तो मुझे लगता है यह भी एक प्रश्न
1: आप समझी नहीं, हमारे मॉरल पुलिसिंग मैंने पूछा कि कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है। मसलन कोई दो लोग जा रहे हैं, उनको लेकर अनाप शनाप कहना कि रात में क्यों जा रहे हो, ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, कोई मॉरल पुलिसिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है?
0: देखिए, पुलिस विभाग तो करती है, संवाद करती है, और पुलिस और पब्लिक संवाद के माध्यम से सभी नैतिक बातों का प्रेषण होता है, आपस में संवाद होता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं यदि कोई रोक तो करे।
1: नागरिकों की बात कर रही हूँ प्रीति जी, क्या मैं ऐसा क्या बोल रही हूँ जो आप समझ ही नहीं पा रही है? मैं पुलिस की बात नहीं कर रही हूँ, और अगर कोई बाइक पर जा रहा है अपनी दोस्त के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कानून का उल्लंघन ये कर रहे हैं कि पुलिस इनको रोकेगी। ये जो लड़कों ने वहां पर किया है, इन दोषियों ने जो किया है, मैं उस पर पूछ रही हूं आपसे, क्या कोई नागरिक किसी की मॉरल पुलिसिंग कर सकता है, हाँ या ना?
0: देखिए, हम सामान्य तौर पर तो हम अपने और आपके भी घर की बात करें तो हम लोग नैतिक तरीके से बात कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर कोई रोक टोक की बात हो, जो हम लोग पहले किया करते थे, जो हमारे समाज में पहले जो प्रचलन था, रोको टोको और उसकी मॉरल, मतलब उसकी पूरी काउंसलिंग, अगर कोई गलत कर रहा तो उसको रोकना, यदि अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा तो उसकी काउंसलिंग।
1: अरे कौन तय करेगा गलत रास्ता कौन सा है? यही सोच तो प्रॉब्लम है ना प्रीति जी। चार बार मैंने सवाल पूछा, आपने मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ कुछ नहीं बोला। कैसे कोई किसी को रोक सकता है कि आप यहां मत जाइए, ये कपड़े मत पहनिए, वो कपड़े मत पहनिए? कोई नहीं किसी को कर सकता। और जब आप इस तरह की सोच को आजादी देती हैं कि लोग ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने में कोई गलत नहीं है, तभी बात यहां तक पहुंचती है। मतलब मैं तो एकदम ही हैरान हूं कि आप प्रीति शेखर जी मॉरल पुलिसिंग को डिफेंड कर रही हैं। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सांसद जी। आई होप आप क्लैरिटी से मैसेज दें कि इस तरह की मॉरल पुलिसिंग कोई नहीं कर सकता है।
0: मैं मॉरल पुलिसिंग को अपने नैतिक दायित्व के बारे में चर्चा करना चाहती हूं।
1: आपका नैतिक दायित्व,
0: अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो ये समाज के ऊपर ये प्रश्न है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है।
1: किसी का नैतिक दायित्व नहीं है कि वो किसी के साथ बदतमीजी करे ये कहते हुए कि तुमने क्या कपड़े पहने, तुम रात में कहां जा रही हो, तुम क्या कर रही हो। ये गलत है प्रीति शेखर, ये गलत है। इस तरह की बात बोलकर टीवी पर मत जाइए। अरुण भारती, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट।
2: देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी ने कल ही अपने आप को, जो जिस तरह के हल्के बयान दिए गए इस घटना को लेकर के, उससे अपने आप को अलग
1: कोई मॉरल पॉलिसिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है, हाँ या ना?
2: नहीं कर सकता है, नहीं
1: हाँ
2: कर
1: तो बताइए प्रीति शेखर को।
2: जिसके पास कानून या संविधान का आधार नहीं है, वो कोई भी आदमी मॉरल पुलिसिंग नहीं कर सकता है हमारे देश में, और कोई ऐसा करने का प्रयास करेगा तो ये सरासर गलत है।
1: इसी के साथ हम हल्ला बोल का अंत करते हैं। हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि आज किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है, सोच को बदलना कितना जरूरी हो चुका है। आज रात 9 बजे हम एक बार फिर से आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएंगे जमुई जैसी जघन्य अपराध की घटना में कैसे कुछ लोगों को एक बेटी के सम्मान के बजाय कपड़ों की चिंता आखिर क्यों हो रही है, कुछ लोग इंसाफ के बजाय अपराधियों की जाति और धर्म खोज रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि अमेरिका में हनुमान जी की मूर्ति से कुछ हिंदू विरोधी परेशान क्यों हैं, और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट सीट कुर्सी लग सकती है।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: Oh no, बहुत बोर लग रहा है।
6: Take a date, not bites.
7: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
6: लायन डेट नट बाइट्स।
8: एक
9: श्राम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: मैडी, I need to open a savings account.
7: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
6: स्मॉल बैंक?
7: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima, business privilege, RDF, there's nothing small about them.
6: Okay.
7: Ujjivan, nothing small about us.
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: चौल में घर छोटे होते थे बट लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे। जिस बच्चे की माँ दूसरों के घर पे काम करके जीवन निर्वाह कर रही थी, उस बच्चे को पैसों के बारे में समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
3: शॉर्टकट्स होते हैं क्या पैसा कमाने?
2: वॉरेन बफेट का एक रूल याद कर लिया, Rule number 1, नेवर लूज मनी, Rule number 2, नेवर फॉरगेट Rule number 1। हमने जो अनुभव किया है ट्रेडिंग करके, लोगों के घर टूटते हुए देखे, ट्रेडिंग करके घर बनता हुआ बहुत कम देखा है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: There is a very famous quote ki history repeat itself.
9: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
10: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
9: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bichara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
11: जो जमुई में जो घटना हुई, जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो बच्चियां जो हैं, जो महिलाएं जो हैं, जो युवती है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, शर्मसार कर देने वाला वो वीडियो है। दोषियों को जितनी कड़ी से भी कड़ी सजा दी जाए वो कम है। जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, पूरे देश भर में बिहार सरकार की थूथू हो रही है। यही सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया था कि यहां से चले जाइए मुंगेर, अगर कोई कुछ हो जाए, किसी को हाथ लगा दे, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आज बिहार में यह वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बच्चियां सुरक्षित पूरे बिहार में नहीं है। चाहे दिन हो, रात हो, घर हो या सड़क हो, कॉलेज हो या स्कूल हो या अस्पताल हो, आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा अगर हिम्मत है तो।
12: I saw that. It's horrible and crimes against, I didn't understand you asking about crimes against women. No, crimes against women are just increasing. It's become unsafe for women. It was always unsafe, but it's become more and more increasingly violent towards women. And I think that there's no point talking about big schemes and programs if we can't even ensure the safety of women on our streets. So it's really something that all of us need to think about. Wherever there are state governments, and especially central government, they need to think about how they are going to ensure that women feel safe.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नक्सल के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे होम मिनिस्टर, ANTF के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक खत्म कर देंगे नशे का कारोबार। अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बड़ी बैठक, सेवा संकल्प अभियान पर चर्चा। कल से पीएम करेंगे केंद्रीय मंत्रियों के साथ चिंतन बैठक। स्टूडेंट सुइसाइड केस, फंसी जाति की फांस। IIT बॉम्बे के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, पीड़ित परिवार की मांग, प्रोफेसर और डायरेक्टर हों गिरफ्तार, प्रोटेस्ट की तैयारी। जमुई में दरिंदगी के बाद एनकाउंटर पर सियासत, बीजेपी ने आरोपी को बताया लालू का चेला, तेजस्वी ने किया पलटवार, सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। कार्तिक आर्यन को मिला इस साल का नेशनल फिल्म अवार्ड, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग। की शुरुआत यूपी में जारी सियासत के साथ, जहां चुनाव से पहले विपक्ष में गठबंधन को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता आमने सामने हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर हमला जारी है।
1: सत्ताईस के समर में विजय पताका फहराने के लिए ये योगी का रोजगार प्लान है। योगी आदित्यनाथ लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं,
2: और मैंने उनको कहा है कि हम देते जाएंगे, आप गिनते जाइए, और हो सकता है गिनती नहीं आती होगी तो कभी कभी शिवपाल जी के सानिध्य में बैठ जाइए तो बहुत अच्छी गिनती सिखा देंगे।
1: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी पश्चिम का किला मजबूत करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में आज वो सहारनपुर में समीकरणों को साधने के लिए बैठकें कर रहे हैं। इधर विपक्ष में गठबंधन को लेकर जबरदस्त बयानबाजी चल रही है। अखिलेश कहते हैं कि जिनके साथ पहले गठबंधन था उन्हीं के साथ फिर से गठबंधन होगा।
3: समाजवादी पार्टी का जो पूर्व में गठबंधन था वही रहेगा,
1: लेकिन कांग्रेस अल्टीमेटम दे रही है कि गठबंधन करना है तो ऐलान करो, वरना कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है।
4: कि अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल कर लें, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है, कहीं भी पूरे देश में नहीं है।
1: कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि कांग्रेस यूपी में अकेले भी चुनाव लड़ने में सक्षम है, और यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अक्टूबर में गठबंधन हो जाएगा।
5: अक्टूबर में, आने वाले अक्टूबर में निश्चित तौर से, अब ये पर्व का समय शुरू हो रहा है, चीजें इसमें जरूर हो जाएंगी।
1: लेकिन समाजवादी पार्टी साफ साफ कह रही है कि कांग्रेस गठबंधन करे तो ठीक, वरना नुकसान उन्हीं का है।
6: बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए भी।
1: गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इस नूरा कुश्ती पर बीजेपी तंज कस रही है।
7: समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी को पनौती मान रही है, जान रहे कि उसको कितनी भी सीटें दे दें चुनाव जीत नहीं सकते। हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं और 5 सीटें भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जीत नहीं सकती है।
1: इधर एक दिन पहले समाजवादी पार्टी को गठबंधन का ऑफर देने वाले ओवैसी आज अखिलेश को मीर जाफर कह रहे हैं।
8: चुनाव आएगा, ये तमाम चमचे आएंगे, ये तमाम मीर जाफर आएंगे, मीर सादिक आएंगे, और आकर वो आपको पुराना चरस चकाएंगे। हम सरकार बना रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। 14 में हार गए, 17 में हार गए, 19 में हार गए, 22 में हार गए, 24 में हार गए, अब 28 आ रहा है तो कह रहे हैं भैया आ रहे हैं।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर बयानबाजी तेज है। देखना होगा कि इस पर लगाम कब लगती है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात पंजाब की, जहां चुनाव से पहले नए नए मुद्दों को सियासी हवा दी जा रही है। नशे के खिलाफ जारी जंग के बीच पंजाब पुलिस की एक एडवाइजरी पर अब घमासान मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
9: क्या पंजाब पुलिस को अपराधियों से डर लग रहा है? सोशल मीडिया पर वायरल एडवाइजरी की इन तस्वीरों ने पंजाब में सियासी घमासान मचा दिया है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि पुलिसकर्मियों को घर से ड्यूटी पर जाते समय और ड्यूटी से घर लौटते समय सादे कपड़ों में यात्रा करनी चाहिए और ऐसी यात्रा के दौरान यूनिफॉर्म पहनने से बचना चाहिए। निजी यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों को ऐसा कोई भी निशान, प्रतीक या चीज साथ नहीं रखनी चाहिए या दिखानी नहीं चाहिए, जिससे उनकी पहचान पुलिस बल के सदस्य के तौर पर हो सके।
10: कि पंजाब पुलिस ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जो कॉप्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो घर से दफ्तर तक और दफ्तर से थाने से घर तक जब ट्रैवल करते हैं, इसके बीच वो यूनिफॉर्म मत पहने और सिविल क्लोज में रहें। रीजन, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ समय में काफी पंजाब पुलिस के लोगों को टारगेट किया गया और पिछले दिनों हरजीत सिंह को भी, ऐसे हरजीत सिंह को भी मारा गया है कुछ लोगों द्वारा अमृतसर में। लेकिन इस सब के बीच में पंजाब पुलिस ने एक फैक्ट चेक जारी किया, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी की नहीं की गई है।
9: हालांकि इस एडवाइजरी के वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस ने इसका फैक्ट चेक कराया और इस तरह की किसी भी एडवाइजरी से इनकार कर दिया। पंजाब पुलिस मुख्यालय या उसके अधीन किसी भी पंजाब पुलिस कार्यालय ने पुलिस कर्मियों को ऐसा कोई निर्देश या सलाह जारी नहीं की है। सोशल मीडिया पर फैल रहे ऐसे संदेश फर्जी हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। नशे और अपराध को लेकर हो रही सियासत के बीच वायरल एडवाइजरी को लेकर विपक्ष अपमान सरकार पर हमलावर है।
11: अगर पहले से चलती थी, फिर केजरीवाल साहब ने यह प्रॉमिस कैसे कर दिया कि 4 महीने के बाद अगर ड्रग बिकेगा मैं जिम्मेवार हूंगा। जितनी पुलिस फोर्सेस लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, वो तो सारी इनको प्रोटेक्शन करने में लगी हुई है। तो आज जो किलर्स, ये जो गैंगस्टर्स हैं और ड्रग पेडलर्स और ड्रग जो माफिया है, दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग पुलिस।
12: ये एडवाइजरी निकाली जा रही कि वर्दी पहन के मत जाओ ड्यूटी पे। क्या आपने ऐसी एडवाइजरी कभी सुनी है? पीपल आर प्राउड ऑफ द यूनिफॉर्म, यहाँ पे बैठे यूनिफॉर्म पहन के ना जाओ। जब पुलिसिंग का और पोलिटिकल पुलिस नेक्सस पैदा हो जाए, फिर ये हालात बनते हैं। And if this is the situation in Sangrur,
11: अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किया नशा मुक्त पंजाब। 5 साल में तो ये अपने चीफ मिनिस्टर को नशा मुक्त नहीं कर पाए। एक स्टेट का हेड जब खुद नशा मुक्त नहीं है, पंजाब को कैसे नशा मुक्त करेगा?
9: उधर आम आदमी पार्टी इसे बेवजह का मुद्दा बता रही है।
13: कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। मैं समझता हूँ आज इन पार्टियों के पास कोई भी एजेंडा नहीं है, कोई एक भी एजेंडा नहीं है इनके पास। हर समय ये झूठा एजेंडा सुबह उठ के बनाते हैं। ये सभी पार्टियां मिलकर अपनी मीटिंग करती हैं तो एक झूठा एजेंडा फ्लोट किया जाता है।
9: पिछले दिनों ड्यूटी से जाते वक्त एएसआई की हत्या और पंजाब पुलिस पर हो रहे हमलों के बाद इस एडवाइजरी ने पंजाब में घमासान मचा दिया। सवाल उठने लगा कि क्या पंजाब पुलिस में अपराधियों का खौफ है? क्या अपराधियों पर पंजाब पुलिस नकेल कसने में नाकामयाब है? नशे और अपराध पर जारी सियासत के बीच चुनाव से पहले अब इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। असीम बस्ती के साथ कमलजीत संधु, चंडीगढ़, आज तक।
0: अब बात आईआईटी बॉम्बे में जारी तनाव की, जहां एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अब फैकल्टी और छात्र आमने सामने हैं, जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है।
9: आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में 3 आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की सीसीटीवी तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर दुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं।
14: ऐसा रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे। दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो डुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। आईआईटी में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफ कोर्स ना मेरे साथ, ना मेरे किसी दोस्त के साथ, ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
15: उनके पास कैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहिल ने जो है उनको किसी बार अप्रोच भी किया हो या कुछ अपनी शंका भी जताई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने का नहीं है। ये स्टेटमेंट SC ST सेल IIT बॉम्बे ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है।
14: इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा हो, मुझे भी दिख रहा है। तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है SC ST, वो तो कम्प्लीटली बेसलेस ही हुआ ना फिर, वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
9: एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RPI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर ढुल्ला पर SC ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर ढुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया, फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। 3 दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ है कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है, जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था, साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो। मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC ST एक्ट लगाने का है। वहीं परिवार मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है।
16: चौकशी चालू है, वो चौकशी चालू करेंगे, लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके, वो जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण डुल्ला, उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है।
9: बहरहाल अब जंग छात्र और फैकल्टी के बीच आ गई है, जिस पर अब जाति पर घमासान की एंट्री हो चुकी है। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: अब बात नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, जिसका पहली बार आयोजन दिल्ली से बाहर गुजरात के केवड़िया में किया जा रहा है, जिसमें फिल्म जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया।
17: ये सितारों के सम्मान की तस्वीर है। 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सिनेमा जगत की हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्म युग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए दिया गया, जो कि अपने पति और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पहुंची थी। बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को दिया गया। भक्षक के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को समारोह में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्टर धनुष को डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। बहत्तर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन पहली बार केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास किया जा रहा है। अब हर साल अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दिल्ली से बाहर सेरेमनी कराने को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य देश के सभी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में कुल 45 पुरस्कार दिए गए, इनमें 26 फीचर फिल्म, 16 नॉन फीचर फिल्म, 2 सिनेमा पर लेखन और 1 दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात बाजार की, आज क्या रहा शेयर बाजार का हाल और कहां पहुंचा सोने चांदी का भाव, आइए देखते हैं।
17: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 330 अंक टूटकर 74,529 और निफ्टी 85 अंक की गिरावट के साथ 23,329 पर बंद हुआ। ग्लोबल बाजारों से पॉजिटिव संकेत और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार का सेंटिमेंट कमजोर रहा। आईटी, फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर गुड्स शेयरों में चौतरफा बिकवाली से बाजार दबाव में रहा। शेयर बाजार में गिरावट के बीच रुपया मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे मजबूत होकर 95.58 रुपए पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत की उम्मीद से ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट बेहतर हुआ, जिससे रुपए को सपोर्ट मिला। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट रही और सोना 1205 रुपए गिरकर 152,132 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 2412 रुपए गिरकर 232,580 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतों में नरमी और ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली से घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी पर दबाव रहा।
0: अब बात यूनाइटेड नेशंस की, जहां युद्ध के बीच आज से 28 सितंबर तक जनरल डिबेट शुरू हो रही है। अब से कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भाषण होने वाला है। दुनिया में जारी तनाव के बीच अब सबकी नजर इस भाषण पर टिकी हुई है।

0: दुनिया में युद्ध के धमाकों की गूंज के बीच संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की जनरल डिबेट का आज से आगाज हो चुका है, जहां वैश्विक सुरक्षा, युद्ध और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर 28 सितंबर तक लंबी चर्चा की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर ईरान अमेरिका के बीच जारी जंग, गाजा को लेकर जारी तनाव हो या फिर दुनिया में चल रहा गतिरोध, हर मुद्दे पर यहां अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। ऐसे में इस डिबेट पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। न्यूयॉर्क में होने वाली इस बैठक में 193 सदस्य देशों के नेता या वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपतियों की संभावित मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए तैयार हैं। दोनों नेता ऐसे समय एक ही शहर में होंगे जब अमेरिका और ईरान के बीच करीब 7 महीने से युद्ध चल रहा है। ऐसे में दोनों के बीच संभावित बातचीत को अहम माना जा रहा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचे, उन्हें वहां भारी विरोध का सामना करना पड़ा। होटल के बाहर मौजूद प्रवासी ईरानियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें हूट किया। इस भारी विरोध के बावजूद अराग्ची का दावा है कि वो अमेरिका को मिनाब हमले के मुद्दे पर घेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
1: यह स्वाभाविक है कि यह मंच एक ऐसी जगह होगी जहां ईरान के लोग और मिनाब स्कूल के शहीद बच्चों के परिजन अपनी बात रख सकेंगे। मिनाब का मामला एक ऐसा सबूत साबित हो रहा है जिसे वॉशिंगटन नजरअंदाज नहीं कर सकता। हाल ही में यून के एक पैनल ने पाया है कि यह एक युद्ध अपराध था और वॉशिंगटन उस काउंसिल से हट गया जो उसका पक्ष सुन सकती थी।
0: हालांकि ये आयोजन ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूएन की साख भी दांव पर है, जो कि युद्ध के हालात के बीच कई मोर्चों पर पूरी तरह से नाकाम दिखा है। न्यूयॉर्क से रोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अब बात एशियन गेम्स की, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जलवा देखने को मिला। श्रीलंका को हराकर भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।
3: एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भारत के नाम। हिंदुस्तान की बेटियों ने फिर बढ़ाई तिरंगे की शान। महिला क्रिकेट फाइनल में श्रीलंका का काम तमाम। गले में गोल्ड मेडल, कानों में गूंजता राष्ट्रगान और आंखों के सामने सबसे ऊपर लहराता तिरंगा। पोडियम पर खड़े किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए ये जीवन का सबसे बड़ा पल होता है। हिंदुस्तान की बेटियों ने मंगलवार को जापान के नागोया में इस पल को बखूबी जिया और देश का मान बढ़ाया। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत के सामने श्रीलंका की टीम थी। पहले बल्लेबाजी कर टीम इंडिया ने उनकी गेंदबाजी की बखिया उधेड़ कर रख दी। स्मृति मानधाना ने 79, ऋचा घोष ने 49 और शेफाली वर्मा ने 48 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 216 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारत की गेंदबाजी के सामने श्रीलंका की टीम कहीं नहीं टिक सकी। दीप्ति शर्मा ने 3 और शेफाली, श्रेयंका और सिरचरणी ने 2-2 शिकार किए। जाहिर है 147 रन की ये बड़ी जीत खिलाड़ियों की मेहनत और टीम वर्क का नतीजा है। हिंदुस्तान की बेटियों ने न सिर्फ सोने पर कब्जा बरकरार रखा है, बल्कि पूरे देश को जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया है। आज तक ब्यूरो।
2: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
4: पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स। टंकी मतलब विक्टर्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
3: हाँ
4: ओ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
10: Money, money, money, money, every month.
11: Soch batlo aur bank bhi.
12: Mera rutba hai mera signature. Duniya ki soch se upar. Bebaak hai mera signature. Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: GK Max.
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: GK Max. Best पुट्टी?
16: JK Wall Max.
14: Best paint?
15: JK Max.
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग.
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
6: यार लोन भूल गया। मैरी।
7: It's just a good bank, ना?
8: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
6: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
8: स्मॉल। वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन्ड कार लोन, टू व्हीलर लोन।
9: There's nothing small about
6: it. उज्जीवन, nothing small about us.
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prati.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: There is a very famous quote ki history repeat itself.
4: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
5: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
4: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara cover mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: 2027 की लड़ाई का शंखनाद है, जिसे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीएम योगी और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ पश्चिमी यूपी से शुरू किया है। आपको बता दें कि नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर मेरठ और सहारनपुर आए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि बीजेपी ने 2027 के प्रचार की शुरुआत के लिए इन दोनों ही शहरों को क्यों चुना। पहले आपको दिखाते हैं क्यों यूपी में 2027 की लड़ाई बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों की तरफ लौटते हैं, जो बीजेपी यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही थी वो 33 सीटों पर सिमट जाती है। अखिलेश की पार्टी यूपी में 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है, तो कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीतकर यूपी का तिलिस्म तोड़ दिया। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में मिली बढ़त के चश्मे से देखें तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 217 पर आगे रही। इसमें समाजवादी पार्टी 178 विधानसभा सीट पर, कांग्रेस 38 सीट पर, जबकि टीएमसी 1 सीट पर। वहीं यूपी की सत्तारूढ़ बीजेपी पिछड़ गई, एनडीए सिर्फ 181 विधानसभा सीटों पर आगे रही। इसमें बीजेपी 169, आरएलडी 8, अपना दल 4 सीट पर, यानी राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मोदी और योगी की जोड़ी को देश के सबसे बड़े राज्य में पीछे किया। बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा एकदम ताजा था, यानी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दो लड़कों की जोड़ी लोकसभा चुनावों से विधानसभा चुनावों में भी बड़े उलटफेर का संकेत देती है। और बात पश्चिमी यूपी की करें तो पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटों में से बीजेपी को 2019 में 19 सीटें मिली थी, तो 2024 में बीजेपी 13 सीटें ही जीत पाई, जबकि समाजवादी पार्टी को 2019 में 4 सीटें मिली थी और 2024 में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें जीती और कांग्रेस का 2019 में खाता भी नहीं खुला था। और इस बार उसने भी सहारनपुर की 1 सीट जीत ली, जबकि आरएलडी भी 2019 के मुकाबले में 0 से 2 सीटों पर पहुंच गई। इसी से समझ में आता है कि क्यों बीजेपी के लिए 2027 की लड़ाई में पश्चिमी यूपी अहम है, और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने मिशन 2027 की शुरुआत इसीलिए पश्चिमी यूपी से कर रही है। जब नितिन नवीन पश्चिमी यूपी के मेरठ पहुंचते हैं तो पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं, यानी ये अखिलेश यादव के पीडीए वाले दांव पर सीधा अटैक है।
1: पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, मैं आज आपके सामने पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण था कि आपने इसके अलावा किसी को सम्मान नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी को भी अगर किसी ने सम्मान दिया और सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नक्सल के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे होम मिनिस्टर एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक खत्म कर देंगे नशे का कारोबार। अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बड़ी बैठक, सेवा संकल्प अभियान पर चर्चा, कल से पीएम करेंगे केंद्रीय मंत्रियों के साथ चिंतन बैठक। स्टूडेंट सुइसाइड केस पर जाति की फांस, आईआईटी बॉम्बे के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, पीड़ित परिवार की मांग, प्रोफेसर और डायरेक्टर हों गिरफ्तार, प्रोटेस्ट की तैयारी। जमुई में दरिंदगी मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। कार्तिक आर्यन को मिला इस साल का नेशनल फिल्म अवार्ड, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। विशेष में आज शुरुआत करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बिहार के जमुई दरिंदगी पर सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि उनकी पुलिस अपराधी को जब उनको अपराधी चैलेंज करते हैं तो पुलिस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा है कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
1: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथी, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
0: बिहार के जमुई में जो घटना हुई उसने पूरे देश को दहला दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि ये कैसी कानून व्यवस्था है जिसमें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जिसमें बेटी के साथ इतनी क्रूर हरकत हो सकती है। जमुई में हुई घटना के बाद बिहार प्रशासन जागा है। कल 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आज मुख्य आरोपी और उसके साथी को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
2: इस वीडियो ने पूरे बिहार को हिला के रख दिया। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस वीडियो ने लोगों के दिलों में गुस्सा भर दिया। इस वीडियो ने सम्राट सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया। खुद सम्राट सरकार ये वीडियो देखकर सन्न रह गई। इस वीडियो ने बिहार की कानून व्यवस्था का सच सामने ला दिया। इस वीडियो को देखने के बाद सबके मन में एक ही बात आई कि जमुई के जानवरों को जितनी सख्त सजा दी जाए कम होगी। एक नाबालिग बच्ची के साथ जाहिलाना हरकत करने वाले इन आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि नजीर बने। ये तस्वीरें सामने आई तो तमाम सवाल उठे और फिर एक्शन में आई बिहार की पुलिस। 3 आरोपियों को पुलिस ने कल ही गिरफ्तार कर लिया था। 3 नाबालिग थे, लेकिन आज पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव और उसके सहयोगी हरिराम यादव को गिरफ्तार किया है।
3: ने तुरंत जमुई पुलिस ने बहुत क्विक एक्शन लिए किए थे, बस जिसमें जो पकड़ा गया कल 3 नाबालिग थे। आज तो मेन एक्यूज्ड है नंदन यादव और उसके तो सहयोगी है, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिए हैं। अब इस पे सिट गठित है जो एसपी दीप्ति देख रहे थे, दीपिका, तो इस पर हम लोग चार्जशीट इमीडिएटली कर लेते हैं और बाकी जो चीज़ें कि स्पीडी ट्रायल पर भी हम लोग इसको केस चढ़ा के उसको लॉजिकल कंक्लूजन कर लेंगे। साथ ही साथ जो भी वायरल किए थे, क्योंकि नाबालिग बच्चों का वीडियो वायरल नहीं कर लेना चाहिए थे बिकॉज दैट इज़ लॉ ऑफ द लैंड। अब इसमें संवेदनाशीलता नहीं रखी गई थी, इसी कारण हम लोग एक और केस किए थे जिसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वैसा बच्चों की बना के देना सब दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, दैट इज़ पनिशेबल ऑफेंस, इट्स अ नॉन अवेलेबल ऑफेंस। सो उस हिसाब से कार्रवाई हम लोग करेंगे।
2: अब देखिए इस तस्वीर को। चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए ये शख्स नंदन यादव है। आज इसकी स्थिति ये है कि अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा, चलने के लिए इसे पुलिस के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल जमुई में वहशीपन दिखाने के बाद नंदन अपने साथी हरिराम के साथ लखीसराय की ओर भाग गया था। यह पुलिस से छिप रहा था लेकिन पुलिस ने इसे तलाश लिया। पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। इस एनकाउंटर को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा उनके जुबानी सुनिए, आज तक संवाददाता उसी जगह पर पहुंचे जहां एनकाउंटर हुआ था।
4: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है। और एक प्रत्यक्षदर्शी है हमारे साथ, राजकिशोर राम जो ये कुंदर बराज का इलाका है, कुंदर गांव है, वहां के ही रहने वाले हैं। और जो आरोपी हैं, दोनों मुख्य आरोपी, वो प्रतापपुर के रहने वाले हैं। प्रतापपुर का पहले जानते हैं राजकिशोर।

0: पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए और जिला से फिर इधर से घेरे तो ये लोग को यहाँ रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
1: ये कौन सा नदी क्षेत्र है?
0: ये क्यूल नदी।
1: क्यूल नदी
0: जी जी जी।
1: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
0: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: तो ये पुलिस से भाग रहे थे?
0: भाग रहे थे सर।
1: और पुलिस को चैलेंज भी किया
0: जी, पुलिस के ऊपर गोली चला, पुलिस को मारा गोली।
2: एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नंदन के पैर में गोली लगी है जबकि राम किशोर का पैर टूट गया है। दोनों का इलाज जमुई में हो रहा है।
3: जमुई कांड के दो प्रमुख आरोपियों को आज पुलिस ने जब दबोचा तो एनकाउंटर की स्थिति बनी और वो एनकाउंटर वाली जगह से हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा चुके हैं, लेकिन इस वक्त आपको जमुई सदर अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दोनों आरोपी जो घायल हुए इस एनकाउंटर में उनका इलाज चल रहा है। ये सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, बजाबता पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पे। अंदर किसी के भी जाने पर जो मरीज हैं उनको छोड़ करके दूसरों के जाने पर रोक है और पुलिस बल की मौजूदगी देखिए जो ये बताती है कि ये मामला कितना संवेदनशील रहा जिला प्रशासन के लिए, जमुई पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए और तमाम यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं।
2: एनकाउंटर के बाद बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि कभी न करें ऐसा विचार, देख लीजिए उचित उपचार।
4: जमुई पॉस्को केस का मुख्य आरोपी नंदन यादव आज पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दरमियान मुठभेड़ में पुलिस की गोली उसके पैर पे लगी और वो घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस केस के सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी है और जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए सघन जांच चल रही है, सघन छापेमारी चल रही है।
5: अगर ऐसी घटना की कोई भी पुनरावृत्ति एक तो नहीं होनी चाहिए और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनका उदाहरण बनाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना करने की सोच भी खत्म हो जाए।
2: बीजेपी के सांसद तो कह रही हैं कि आरोपियों के हाथ काट देने चाहिए
6: और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं कहूंगी ऐसे व्यक्तियों को जो माइनर कहते हैं, माइनर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, और आपने सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखे होंगे पूरे भारत भर में जहां माइनर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बूढ़ी औरत का रेप हो, छोटी बच्ची का रेप हो, ऐसे माइनर्स को एडल्ट की तरह ट्राई तो करना ही चाहिए। तो कभी कभी लगता है कि शरीयत लॉस अपनाने चाहिए, इनके हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने ऐसे हाथों से छुआ और इतनी गलत तरीके से छुआ। अगर इस तरह के लॉस और मुझे लगता है अगर हार्श पनिशमेंट नहीं देंगे तो ये सुधरेंगे नहीं।
2: पुलिस कार्रवाई कर रही है, 3 नाबालिगों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और उनकी तलाश जारी है। लेकिन आपको वो जगह दिखाते हैं जहां नाबालिगों से बदसलूकी हुई। देखिए यह है जमुई में मड़वा का पहाड़, यहां नजारा शानदार रहता है इसलिए लोग घूमने, कुछ अच्छा वक्त बिताने यहां आते हैं। ये नाबालिग भी यहां पहुंचे थे मगर ये इन जानवरों के हत्थे चल गए।
3: 19 सितंबर की शाम दरअसल जमुई में जो घटना घटी नाबालिग लड़के और लड़की के साथ, वो यही पहुंचे थे इसी मड़वा पहाड़ को देखने के लिए जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। छोटे सा पहाड़ है और 2 पहाड़ियां हैं यहां पे, एक पहाड़ी वो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाई तरफ। इन 2 पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहां पे लोग आते हैं। जो 19 सितंबर की शाम जब पीड़ित और पीड़िता यहां पहुंचे थे तो उनको नहीं पता था कि जब रोशनी कम हो जाएगी तो इसी सड़क से आगे बढ़ते वक्त उनके साथ कोई हादसा होगा। हम जिस सड़क पे इस वक्त मौजूद हैं जहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सड़क जो है वो जमुई लखीसराय मुख्य मार्ग से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ आती है और यहीं पर वो घटना घटी इसी सड़क पे। और हम अगर दाहिनी तरफ दिखाएं आपको तो ये मड़वा गांव है जहां पर लोग भी रहते हैं और यहीं पर जो तमाम आरोपी हैं उन्होंने स्कूटी रोकी पीड़िता और पीड़ित की और उनके साथ जो घटना घटी, जो वीडियो वायरल हुआ उसके जरिए हमने देखा है और उसी मामले में पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार अन्य

0: आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
1: अब पुलिस की कार्रवाई जारी है। उम्मीद कीजिए कि बाकी के आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ शशि भूषण, जमुई आज तक।
2: जमुई की घटना ने देश की सियासत को झकझोर दिया है। खुद सम्राट सरकार बैकफुट पर आ गई है। विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। अब विपक्ष सवाल कर रही है कि सम्राट चौधरी के उस दावे का क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार की सड़कों पर महिलाएं आधी रात को भी बाहर निकल सकती हैं। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि जमुई के जानवरों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
3: आज यदि दुश्मन आपका नहीं है श्वेता जी, तो रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा। किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है। लेकिन जिसके अपराध हो, किसी का व्यक्तिगत झगड़ा है, तब तो मैं पक्का कहूंगा कि भाई पुलिस थाने को बता के जाइए, ऐसे नहीं जाइए।
1: तो ये था बिहार के मुख्यमंत्री का दावा और ये है दावे की हकीकत। सम्राट चौधरी ने आज तक के मंच पर कहा था कि बिहार में कानून व्यवस्था है, कोई आधी रात को भी बाहर निकल सकता है, किसी को किसी का कोई खौफ नहीं है। आधी रात तो छोड़िए, दिन ढलने के बाद ही जमुई के जानवर नाबालिग पर टूट पड़े थे। सम्राट चौधरी के इसी बयान को तेजस्वी यादव याद दिला रहे हैं।
4: यही सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया था कि यहां से चले जाइए मुंगेर, अगर कोई कुछ हो जाए, किसी को हाथ लगा दे, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आज बिहार में ये वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बच्चियां सुरक्षित पूरे बिहार में नहीं है। चाहे दिन हो, रात हो, घर हो या सड़क हो, कॉलेज हो या स्कूल हो या अस्पताल हो, आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है।
1: तेजस्वी विपक्ष में है, सरकार की आलोचना करना उनका काम है, सरकार की कमियां गिनाना उनका काम है, सरकार को सचेत करना उनका काम है। लेकिन इतनी शर्मनाक घटना हुई और उस घटना पर सम्राट सरकार के मंत्री और सहयोगियों की पहली प्रतिक्रिया क्या थी, सुनिए।
5: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
2: विशेष में वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
12: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट।
12: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
14: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
15: लायन डेट नट बाइट्स।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: यार लोन भूल गया। मैरी,
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: There's nothing small about
6: us. Ujjivan, nothing small about us.
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: पूरी लस्सी पीने के बाद पुरवा यूं ही फेंक दिया बिना पानी लिए और पानी घोल के पिए, तो वो घूर के देखते हैं एक बार, गोरस बर्बाद कर दिया।
1: डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया कि भैया हुतियों ने अटैक कर दिया है, कुछ करिए भैया। उसने कहा नहीं करेंगे, हमरा हुतियों से डील हो गया है।
2: तुम तो साला डील माना नहीं, एक कमजोर प्रेसिडेंट एक घायल कुत्ते की तरह होता है।
1: हाँ भाई
2: किसी को भी काट सकता है।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, माँ ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है, अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है। कितना गहरा उस परिवार का दुख होगा। पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता।
8: IIT बॉम्बे पवई को राजनीतिक अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है, उस IIT पवई के डायरेक्टर पर क्या बीत रही होगी जिसका इस्तीफा आप ले रहे हैं। दोनों विषयों को गंभीरता से समझिए। बच्चे की मृत्यु का सभी को दुख है, संवेदना है। उसने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, इसकी जांच होनी चाहिए। SIT बैठे, क्राइम ब्रांच आए, पुलिस आए, इसकी एक निष्पक्ष जांच भी हो। साथ ही साथ नकल को भी तो रोकना शिक्षक का ही काम है, मैनेजमेंट का ही काम है।
9: ये BLO को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहां और BLO के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया। मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। 1992 और 2002 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं।
10: SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, और वो इतना निष्पक्ष है, उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं, और चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों, और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उन सबको दिए गए हैं, क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत सबको बताना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में। लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए, बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई, एस जयशंकर जी को भी गया है, जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के, लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना, अपने मातम शुरू कर दिया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: विशेष में मेरे साथ आज इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर।
1: प्रेजेंटेड बाय
0: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री अमित शाह ANTF के तीसरे सम्मेलन में बोले, 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का लिया है प्रण। अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बड़ी बैठक, सेवा संकल्प अभियान पर चर्चा, कल से पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों की चिंतन बैठक। छात्र की आत्महत्या पर फंसी जाति की फांस, आज कांग्रेस ने किया IIT बॉम्बे के बाहर प्रदर्शन, पीड़ित परिवार की मांग, प्रोफेसर डायरेक्टर हो गिरफ्तार, प्रोटेस्ट की तैयारी। जमुई में दरिंदगी मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों गिरफ्तार। कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। और देश में जो सबसे चिंताजनक और सबसे खबरदार करता सवाल इस समय बना हुआ है वो ये है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार का जमुई हो, चाहे उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी हो, या फिर मध्य प्रदेश का ग्वालियर, खबरदार करता सवाल ये है कि वो दिन कब आएगा जब माता पिता इस बात को लेकर चिंता नहीं करेंगे कि उनकी बेटियां घर से बाहर जा रही हैं। कब ये परिस्थितियां सुधरेंगी, कब मन चलों के मन में भरेगा खौफ।

0: The cause of liberty found its home on this continent. I can report to you with pride that America is back.
1: और अमेरिका फिर से वापस आया है. अमेरिका इज बैक और देश पहले से और ज्यादा मजबूत हुआ है. हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में किसी के लिए भी ईर्ष्या का विषय है. हमारा सैन्य बल भी सबसे अधिक ताकतवर है पूरी दुनिया में. टेक्नोलॉजी हमारे पास सबसे ज्यादा है. हमारी जो ऊर्जा है वो भी लगातार आगे बढ़ रही है और हमारा देश पहले से अधिक बेहतर कर रहा है. हमारा भविष्य उज्जवल है और जब से मैंने अपना कार्यकाल संभाला है हमने तब से लेकर अब तक 1 मिलियन से अधिक निजी क्षेत्र की नौकरियां सृजित की हैं और पिछले हफ्ते यह भी घोषणा की गई थी कि हमारे यहाँ हमारे देश में जो गरीबी की दर है वो सबसे नीचे पहुंच गई है. 1.5 मिलियन अमेरिकी गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं और अफ्रीकी अमेरिकन और इसके अलावा बाकी अमेरिकी भी निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू आय लगातार बढ़ी है और इनकी औसत आय 87,000 औसतन डॉलर औसतन पहुंच गई है. और मेरा जो प्रशासन है वो लगातार नियमों और कानूनों का पालन करवा रहा है. अमेरिका में बिजनेस करने के सभी रुकावटों को सभी व्यवधानों को दूर कर रहा है और यूएसए में बहुत ज्यादा निवेश हुआ है और किसी भी देश में दुनिया में इतना निवेश नहीं हुआ है जितना हमारे यहाँ हुआ है. यूएस स्टॉक मार्केट इस समय बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पर है और निश्चित रूप से 21 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट या निवेश पूरी दुनिया से हमारे पास आया है पिछले 4 सालों में और पिछले

0: कार्यकाल में देखें, पिछले पिछले राष्ट्रपति के कार्यकाल को देखें तो ये बहुत कम था। और हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक ऐसा बॉर्डर था, ऐसी सीमा थी जहाँ हमेशा झगड़े होते रहते थे, अब ये बिल्कुल शांत है। और पिछले 16 महीनों में आप देखेंगे कि अमेरिका में अवैध प्रवासी आने बिल्कुल बंद हो गए हैं, एक भी व्यक्ति नहीं आ पाया है। ट्रंप प्रशासन ने इसको शून्य कर दिया है और किसी भी तरह की हिंसक घटनाएं या हिंसक अपराध नहीं हुए हैं, सबसे कम हुए हैं। और पिछले 125 सालों में आप देखें तो अपराध की दर सबसे कम हुई है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अभी भी 80% अपराध कम हुए हैं। और पिछले साल 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में आपने देखा होगा कि हमने इसके बारे में कई प्रस्ताव लाने का प्रयास किया था, और अब वाशिंगटन डीसी में अपराधों की दर काफी कम हो गई है। अगर आप देखें, चाहे रेस्तरां की बात हो, चाहे लोगों को लूटने की बात हो, या किसी भी तरह की ऐसी घटनाओं पर हमने अंकुश लगाया है। और अमेरिका में पिछले 12 महीनों में हमने मिलिट्री पर बहुत पैसा खर्च किया है और $1.5 trillion का निवेश इसमें किया गया है। और जो पिछला प्रशासन था उसके मुकाबले अगर आप देखें तो हम एक सुनहरे युग में हैं। पूरी दुनिया निश्चित रूप से हमारी दौलत ले जा रही थी जो हम वापस लाने में कामयाब हुए हैं। अपनी ताकत, अपनी भावनाओं को, अपने मोमेंटम को हमने आगे बढ़ाया है और हमने निश्चित रूप से फैसले लेने में तेजी दिखाई है। और बहुत सारी समस्याओं का हालांकि हमने सामना किया, लेकिन इसका समाधान भी किया है। जितने भी नेता यहाँ पर हैं, महान नेता इस कक्ष में मौजूद हैं, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के लिए अब सबसे सुरक्षित भविष्य अमेरिका में है। और एक असाधारण देश के राष्ट्रपति होने के नाते हम किसी भी खतरे को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, मैंने हमेशा से कार्यवाही की है और मैंने शांति कायम भी की है, शांति कायम करने का प्रयास भी किया है। जहां पर भी लोगों ने किसी तरह की बात की है तो मैंने उनको उचित जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, बहुत सारी व्यावहारिक चुनौतियां हमारे सामने हैं और हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे सामने जो खतरा था उससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं मिल सकता जिसका हमने सामना किया है। और आप देख सकते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने निश्चित रूप से हम और पूरे मध्य पूर्व में और बाकी स्थानों पर उनका आतंक था, लेकिन अब उनकी बदमाशी नहीं चल रही है। और मैं आपको बता दूं, हम कभी भी किसी भी परमाणु बम को या परमाणु अस्त्र को बनने की इजाजत नहीं देंगे। और हम निश्चित रूप से पूरे सहयोग के साथ इसे समाप्त करना चाहते हैं, उनके परमाणु कार्यक्रम को हम सीमित करना चाहते हैं। और हालांकि उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था जब हमने इस तरीके की बात पिछले कार्यकाल में की थी, लेकिन यूएस मिलिट्री ने निश्चित रूप से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया है और उन्होंने लगातार एक मिसाइलें बनानी जारी रखी और अमेरिका के क्षेत्र में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से वो सक्षम है कि यूरोप पर भी मिसाइलें दाग सकें।
1: Nuclear bomb
0: और हम निश्चित रूप से उनको न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना चाहते हैं। अगर वो सफल हो जाते तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत भयंकर स्थिति होती और उनको रोकने का कोई भी प्रयास असफल हो जाता। अमेरिका में हम आपको बता दें, हमने हाल ही में 25वीं वर्षगांठ मनाई है सितंबर 11 को, जिसमें आपने देखा कि 3,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान खोई थी। और 2 सप्ताह पहले हमने इसकी वर्षगांठ मनाते हुए निश्चित रूप से हमने कोशिश ये की है कि आप देख सकते हैं कि 1200 से अधिक लोग ईरान के संघर्ष में भी मारे जा चुके हैं, जिसमें से कुछ अमरीकी भी हैं। और ये निश्चित रूप से ये हमारे लिए मानवता के पर एक धब्बा था, जो आप देख सकते हैं। हाल ही में हमने देखेंगे कि आप 72,000 से अधिक नागरिक उस देश में मारे जा चुके हैं जो प्रदर्शन करने के दोषी, जिनको उन्होंने माना था, और वो न्यूक्लियर शील्ड के पीछे वो उन्होंने आतंकी आक्रमण करने का सिलसिला जारी रखा। हमने इसको नजरअंदाज किया, बहुत सारे राष्ट्रपति और बहुत सारे अन्य नेताओं ने भी इसे नजरअंदाज करने का प्रयास किया था। हमने ईरान को हर मौका दिया कि वो डील पर आए, कोई समझौता करें, और निश्चित रूप से हमने उन्हें एक हम अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो हम निश्चित रूप से उनको पूरा जवाब देंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान आपने देखा सभी 159 जहाज तो थे नेवी के, वो आज उनके समुद्र की तलहटी में समा गए हैं। और हम आपको बता दें कि उनका जो विनिर्माण क्षमता है वो लगभग खत्म हो गई है, वो मिसाइलें नहीं बना पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमने निश्चित रूप से लगभग 300% इस युद्ध को समाप्त कर दिया है। और अगर आप नागरिक शिप्स की बात करें, जहाजों की बात करें, वो उन पर हमले कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ईरान के लिए और उन्होंने कमर्शियल जहाजों पर टैक्स लगाने का भी प्रयास किया था। ये प्रस्ताव हम अपनी तरफ से पेश करना चाहते हैं कि हम उस पर कुछ कर लगाना चाहते हैं। यूएन के जो मेंबर नेशंस हैं, वो निश्चित रूप से इन सब चीजों में हमारा सहयोग कर सकते हैं। अमेरिका की नेवी ने हाल ही में 1 बिलियन से अधिक बैरल तेल को एस्कॉर्ट किया है, उसको होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकाला है। और हम लगातार 22, 25, 30, 32 और 37 जहाजों को वहां से बाहर निकाल चुके हैं। और लेकिन मुझे एक बड़ा फैसला लेना है, और ईरान के साथ एक डील की जाएगी, एक समझौता किया जाएगा, और साथ ही साथ ऐसा समझौता पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और हो सकता है कि ये मध्य पूर्व में सबसे पहला हो।
1: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
0: उनको बचने का मौका नहीं मिलेगा अगर उन्होंने इसे बंद नहीं किया, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से यह विनाशक होगा। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहते हैं कि पीढ़ियों पर इसका असर पड़ेगा। हमारे यहाँ मध्य अवधि चुनावों की बात लोग कर रहे हैं, इन इलेक्शंस के बाद कोई ना कोई डील की जाएगी।
1: And I'll be here for 2.5 years.
0: और मैं यहाँ पर 2.5 साल से हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, और निश्चित रूप से रिपब्लिकन हमारी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए हैं। और हालांकि ये कई चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, ये मेरा कहना है। धन्यवाद।
1: थैंक यू। The cowards and traitors would love to say the United States.
0: और निश्चित रूप से जो कायद होते हैं और जो ट्रेटर्स होते हैं, जो गद्दार होते हैं, वो कहेंगे कि अमेरिका निश्चित रूप से कामयाब नहीं हुआ है.

0: लेकिन हम आपको बता दें कि जो हम कर रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और हम निश्चित रूप से जो कुछ पहले नहीं हुआ है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे और भविष्य में हमारी योजनाएं बहुत बहुत बड़ी हैं
1: Defense companies in the world right now.
0: और हम आपको बता दें कि 18 हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका हम निर्माण कर रहे हैं
1: leading to very rapid deployment
0: और हम तेजी से इनको डिप्लॉय कर रहे हैं, इस तरह के हथियारों को तैनात कर रहे हैं जिससे हमारी सुरक्षा तेजी से बढ़ेगी, हमारे सहयोगियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप ईरान का पूरी तरह आर्थिक रूप से बहिष्कार करें, उनको अकेला होने दें और निश्चित रूप से हमें कभी भी आतंक को सहारा नहीं देना है और निश्चित रूप से वो ठीक है, ये सब चीजें बहुत बहुत मजबूत हैं और उनके अंदर विश्वास है, लेकिन वास्तव में वो बहुत कमजोर हैं। 51 साल के जो हालात रहे हैं ईरान में आतंक का शासन रहा है और निश्चित रूप से जब ये समाप्त होता है तो तेल के दाम भी नीचे आएंगे और आप समझ सकते हैं साहस के साथ कुछ भी संभव है। एक साल पहले जब मैंने महान नेताओं को इस हाल में संबोधित किया था, उस समय गाजा का युद्ध पूरे यवन पर था और साथ ही साथ, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें, जनरल असेंबली आम सभा के दौरान हमने कई लोगों से बात भी की थी, हमने हजारों जिंदगियों को बचाने का प्रयास किया और जितने भी हमारे पास जितने भी बंधक थे उनके पास, उनके जीवन को सुरक्षित बनाया।
1: धन्यवाद।
0: प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा था कि ये चमत्कार है और हमने उसका उत्सव भी मनाया था और मैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और आधिकारिक रूप से 20 बिंदु का जो हमने गाजा योजना बनाई है उसको आधिकारिक रूप से स्वीकृत कराना चाहता हूँ और मैं निश्चित रूप से उन सदस्य देशों का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने उस वहाँ की राहत के लिए लाखों डॉलर दान में दिए हैं और साथ ही साथ कतार, कुवैत, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, उज्बेकिस्तान, इन देशों का हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने इसमें सहयोग दिया और उन्होंने उदार दिल दिखाया है और निश्चित रूप से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मानवतावादी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए और मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं जो पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, जैसे सैन्य बल हैं, पुलिस है और साथ ही साथ इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, इजिप्ट और बाकी जो देश हैं उनका भी हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं और निश्चित रूप से ये कहना गर्व का विषय है कि मैंने 8 युद्धों को शांत कराया है, समाप्त कराया है और निश्चित रूप से मेरे लिए ये बड़े सम्मान का विषय है और मैंने अपने संबंधों का उपयोग किया, अपने खास संबंधों का उपयोग किया इन सभी कार्यों के लिए और साथ ही साथ जहां तक टैरिफ की बात है, टैरिफ का उपयोग भी इसके लिए किया गया, कंबोडिया और थाईलैंड, सर्बिया और कोसोवो और कांगो के युद्धों को हमने शांत कराया, पाकिस्तान और भारत के युद्ध को शांत कराया, अज़रबैजान के युद्ध को शांत कराया और निश्चित रूप से जितने भी बंधक थे उनको भी हमने छुड़वाने का प्रयास किया और मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का

धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और डोनाल्ड, उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मिलियन लोगों की जिंदगी बचाई है, और निश्चित रूप से अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया है, 6 महीनों में उन्होंने चमत्कार करके दिखा दिया। तो ये सब चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कंबोडिया के प्रेसिडेंट ने भी निश्चित रूप से इन सब बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और यही नहीं, जो इस समय राजनीति या डिप्लोमेसी दिखाई गई वो नवाचारी थी, बहुत अद्भुत थी, और समय पर इसमें हस्तक्षेप किया गया, और ये सब हमारे लिए अद्भुत था और जिंदगियों को बचाया गया। और साथ ही साथ शांति की पुनर्स्थापना की गई, हामिद अली ने भी इसके लिए हमें संदेश भेजा, और रवांडा के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि लाखों लोग मर जाते अगर ऐसा न होता। हालांकि इसके लिए कई प्रयास किए गए थे, लेकिन वो सफल पहले नहीं हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्रभावी समझौता लागू कराया, शांति की स्थापना की, जिसको असंभव समझा जाता था उसे संभव करके दिखाया, और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है उसके बारे में भी हम जल्दी से काफी कुछ करने वाले हैं। 25,000 युवा सैनिक जो मौत का शिकार हुए हैं, आप देखिए, आप मैंने देखी हैं युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें देखी हैं, 25,000 लोगों की मौत एक महीने में, और निश्चित रूप से आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में भी जल्दी ही समझौता होगा। एक साल पहले जनवरी में मेरे निर्देश पर अमेरिका ने एक बहुत भारी सैन्य परिचालन किया था, मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, और साथ ही साथ जो मिलिट्री बेस था उसकी सुरक्षा की थी, और साथ ही साथ और आपने देखा होगा कि वेनेजुएला में भी निकोलस माडुरो, जो वास्तव में एक अपराधी थे, उनको सत्ता से बाहर किया गया था, और वेनेजुएला का जो भविष्य है निश्चित रूप से और ज्यादा बेहतर हुआ है, और ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा एक ऐसा ऑपरेशन था जिससे 65 बिलियन बैरल तेल अमेरिका के हिस्से में आया, और अब निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी कंपनियां जो तेल की हैं वो वहां पर जा रही हैं, वहां के लोगों को लाभ हो रहा है, और वेनेजुएला के साथ मिलकर हमने 60% तेल पूरी दुनिया में पहुंचाने का फैसला किया है, और मेरे विचार से ये सबसे बड़ी डील है जो अब तक की हुई है, और आपने इसके बारे में सुना होगा। वेनेजुएला में जो हमारी कार्यवाही थी वो इस बात को साबित करती है कि अमेरिका कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देगा कि अमेरिका को किसी तरह की धमकियां दी जाएं, और साथ ही साथ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यह गर्व का विषय है, और निश्चित रूप से लोग हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए आ रहे हैं। वेनेजुएला में हम मिलकर काम कर रहे हैं, और जो अनियंत्रित प्रवासन है उसको भी हमने नियंत्रित किया है, और आप देखेंगे
कि जितने भी विदेशी लोग हैं जो यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा आतंक मचाते थे उनको रोका गया है, और अमेरिका की ताकत जिसमें अमेरिका की सैन्य शक्ति भी शामिल है वो बड़ी तेजी से बढ़ी है, और हम अपने सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों का सफाया भी किया है, और संयुक्त राष्ट्र के जो सैन्य बल हैं उन्हें हमने इस काम पर लगाया कि इस तरीके के जितने भी गिरोह हैं उनका समाप्त किया जाए। पश्चिमी गोलार्ध में जितने भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो फिरौती वसूल रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको समाप्त कर दिया जाए। और साथ ही साथ अमेरिका ने इस तरह के अभियान चलाए हैं और 97% जो ड्रग्स हैं उनको हमने महासागरों में डुबो दिया है, उसको उनको नष्ट कर दिया है। आप देखें कि 97% लोग सोचते हैं कि संभव ही नहीं है, लेकिन हमने ऐसा करके दिखाया है। और साथ ही साथ वेनेजुएला के गैंग के लीडर की बात करें, हमने उनको बर्खास्त किया, और अमेरिका के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अस्वीकार्य हैं। मेक्सिको के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर मानवता के जो दुश्मन हैं उनको भी हमने नियंत्रित करने का प्रयास किया है, और आप जानते हैं जो वो लोग सबसे ज्यादा दबाव में हैं, और वो पूरी तरह असफल राज्य है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मार्को रूबियो इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, वार्ताएं जारी हैं, उनके साथ लगातार बात की जा रही है, और निश्चित रूप से ये सब बातें अमेरिका को धमकाने के कारण ही उत्पन्न हुई थी, और उनका हमने पूरी तरह जवाब दिया है। जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको हमने पूरी तरह उनके नेटवर्क को खत्म करने का प्रयास भी किया है, जितने भी रेडिकल समूह हैं, अतिवादी समूह हैं, और वो अमेरिका के जितने भी प्रजातांत्रिक समाजवादी हैं वो निश्चित रूप से इसमें उनके साथ भी इसी तरीके से निपटा जा रहा है। मेक्सिको के साथ हमारे शानदार संबंध रहे हैं, और निश्चित रूप से वो पहले इन सब चीजों का समाप्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब और ज्यादा बेहतर और सुरक्षित स्थान हम उसको बनाना चाहते हैं जहां पर लोग शांति से रह सके। अगर आप उत्तरी मोर्चों की बात करें, उत्तरी सीमाओं की बात करें, जहां तक ग्रीनलैंड का सवाल है, और डेनमार्क एक खूबसूरत देश है जैसा कि आप जानते हैं, ग्रीनलैंड के जितने भी लोग हैं उसके बारे में भी हम काम कर रहे हैं, जो कुछ भी अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए होगा वो हम सब करेंगे। और ग्रीनलैंड में किसी तरह का सैन्य शासन नहीं होगा, अमेरिकी सेना का प्रभाव बढ़ेगा, और ग्रीनलैंड में आप देख सकते हैं कि हम मुख्य स्थानों पर अपने सैन्य बलों की तैनाती करेंगे, और इस समझौते पर आज ही हस्ताक्षर होंगे, और डेनमार्क और ग्रीनलैंड के शानदार लोग हैं, बहुत अनुभवी हैं, अद्भुत अनुभव रहा है उनका, और मैं आर्कटिक क्षेत्र में अमरीकी पदचिन्हों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, इससे ये चीजें बढ़ेंगी भी। और यही नहीं, नेटो के जो महान नेता हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे, मार्क हमारे नेता हैं वहाँ के, वो निश्चित रूप से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और नाटो बहुत सारे काम कर रहा है,
और जहां तक सुरक्षा का सवाल है, अधिक सुरक्षा की उन्हें आवश्यकता है, और हम निश्चित रूप से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विनाशक युद्ध हो रहा है, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया।

0: पिछले सप्ताह भी हमने सीनेटर लिंडसे ग्राहम को के सम्मान में हमने एक शानदार नया कानून पारित किया था और मैं आपको बता दूं और निश्चित रूप से मैं जो हमारी फर्स्ट लेडी हैं उनके महान कार्य को की प्रशंसा करता हूं और उन्होंने यूक्रेन और रशिया के बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं फर्स्ट लेडी और निश्चित रूप से आप इन्हें देख पाए होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कड़ी मेहनत की है और आप ऐसी फर्स्ट लेडी बनी हैं, पहली महिला बनी हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं और 60 सदस्य हैं उनकी, उनके लिए आपने काफी काम किया है मेलानी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और
0: यही नहीं,
1: countries in this room to implement the most sweeping UN
0: यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं माइकल वॉश जैसे जिन्होंने अपने नेतृत्व में इन सब बातों को आगे बढ़ाया है और 2026 में 15% जो यूएन का बजट है पहली बार इस दिशा में उपयोग किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं और कोई भी इस तरीके से चयनित नहीं किया गया था। पिछले साल मेरे प्रशासन ने इस बात के लिए हस्तक्षेप किया था और साथ ही साथ पहले ही तरह का ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाने के लिए प्रयास किया था और ये 10-20% तक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर जो लागत आती है ये ऐसा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसका विरोध भी किया था, बहुत बहुत शुक्रिया। और संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह कई बार जो है नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की बात हम कहें, हम कभी भी यूएस सर्विस मेंबर्स को या बाकी लोगों को इस तरह के मुकदमों के लिए इन्वेस्टिगेट करने की अनुमति नहीं देंगे। और मैंने निश्चित रूप से आईसीसी के जितने भी सदस्य हैं उनको आधिकारिक रूप से वहां से इस्तीफा देने के लिए कहा था और यही नहीं, अपने बच्चों को फ्रांस और बाकी ट्रांसजेंडर की बात हम कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, उस संदर्भ में भी हमने कई तरह के कानूनों से मुक्त करने का प्रयास किया था। हम ट्रांसजेंडर म्यूटिलाइजेशन और ट्रांसजेंडर इंसेनिटी और इन सब चीजों को इन कानूनों से अलग रखने का प्रयास किया था और पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस को निश्चित रूप से उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उनको सजा दी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को निश्चित रूप से जो सीमाएं हैं वहां पर अपराधियों के जो गैंग हैं उनको समाप्त करने का हक सभी को होना चाहिए। हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा किया और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन एक ऐसा संस्थान है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नेस्को।
2: यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। यूएनजीए के मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार अब नहीं बना सकेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान की पूरी तरीके से आर्थिक बहिष्कार करे दुनिया के जो जितने भी देश हैं। ईरान के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे, यूएनजीए में उनको सुनते रहे, उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई और एक बार फिर उन्होंने इस बात का ढिंढोरा पीटा कि उन्होंने दुनिया में कितने युद्ध रुकवाए हैं। अपने युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने केवल इतना कहा कि बस कुछ दिनों में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन 8 युद्ध का जिक्र उन्होंने कर दिया और एक बार फिर भारत पाकिस्तान का जिक्र करके ये कहा कि पाकिस्तान बड़ा धन्यवाद उनको कर रहा था। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहां कहा है उस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।

0: पूरी दुनिया उसे सुन रही है। लेकिन हम देश की बात करते हैं, देश के उस सबसे बड़े सवाल से आपको खबरदार करते हैं जो बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बिहार के जमुई की खबर, जहां पर जो अपराधी थे जिन्होंने उन नाबालिग लड़के और लड़की को रोका था, वहां पर अभद्रता की थी, उनमें से दो का हाफ
1: नंदन यादव, उसके पैर में गोली लगी है और ये वो है उसमें से तुमको शर्म नहीं आई ये सब करते हो।
2: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ विभत्स वारदात को अंजाम देने वाले, चेहरे पर गमछा बांधकर बिहार में कानून व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर देने वाले नंदन यादव की आंखों में वारदात करते वक्त ना कोई शर्म थी और ना ही कानून का कोई खौफ। लेकिन हाफ एनकाउंटर के बाद इस वारदात का मुख्य आरोपी नंदन यादव घिसटता हुआ दिखा।
1: यही वो नाम यादव है जिसके
2: लगातार फरार चल रहे नंदन यादव को देश ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए देखा। जम्मू में जिस बेखौफ अंदाज में 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी की गई, उसने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया। इनमें 3 नाबालिग भी हैं। दोनों मुख्य आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
3: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने
4: जी, जी, जी।
3: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
4: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
3: अच्छा
4: जी।
3: तो ये पुलिस से भाग रहे थे?
4: भाग रहे थे सर।
3: और पुलिस को चैलेंज भी किया?
4: पुलिस के ऊपर गोली चला, पुलिस को मारा गोली।
3: अच्छा, पुलिस
2: छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी की गई, उसने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया। इनमें 3 नाबालिग भी हैं। दोनों मुख्य आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
3: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने
4: जी, जी, जी।
3: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
4: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
3: अच्छा
4: जी।
3: तो ये पुलिस से भाग रहे थे?
4: भाग रहे थे सर।
3: और पुलिस को चैलेंज भी किया?
4: पुलिस के ऊपर गोली चला, पुलिस को मारा गोली।
3: अच्छा, पुलिस के ऊपर गोली चलाया इन्होंने।
2: नंदन यादव और हरेराम यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
5: अभी तक कल 3 व्यक्ति निरुद्ध किए गए थे, आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
1: और लोग आरोपी है इसमें या फिर अज्ञात में छापेमारी?
5: अभी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे और पूछताछ अभी की जाएगी।
2: तो पुलिस की घेराबंदी के दौरान हुई कार्रवाई में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्य आरोपी नंदन यादव जमुई के प्रतापपुर गांव का रहने वाला है, जो नाबालिग छात्रा से की गई जगह से नजदीक है।
3: इसी सड़क से आगे जब आप क्यूल नदी की तरफ जाते हैं तो वहां पर खनन का काम चलता है, और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है और उसका सहयोगी हरेराम यादव, ये दोनों बालू खनन के कारोबार में शामिल हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं, बालू की जो घाट से निकासी होती है उसको लेकर के।
2: नंदन यादव के साथ वारदात में एक और आरोपी हरेराम यादव की भी गिरफ्तारी हुई। कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में हरेराम यादव का पैर टूट गया। बिहार पुलिस कह रही है कि वो इस वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? नंदन यादव जैसे दरिंदों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जानवरों की तरह एक नाबालिग छात्रा पर टूट पड़े?
3: छोटे सा पहाड़ है और 2 पहाड़ियां हैं यहाँ पे। एक पहाड़ी वो जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाईं तरफ। इन 2 पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं।
2: इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रा से अभद्रता के वीडियो को वायरल करने के मामले में 3 लोग हिरासत में। लेकिन सवाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर है।

0: सभी रूपों की आराधना की जाएगी, लेकिन फिर भी उसी देश में क्यों इस तरह के कुकृत्य होते हैं, क्यों इस तरह की चीजें होती हैं कि हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि माँ बाप तो नसीहत दे दें, लेकिन सरकारें आखिर ऐसा क्या करें कि इस तरह की चीजें कभी ना हो।
1: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद में उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
2: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर लाठड़ा किया। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया था।
3: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
2: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गई। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
4: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दें इस्तीफा अगर हिम्मत है तो, अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं।
2: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने, उनके साथी नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
5: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
6: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
2: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
7: Moral policing can be one on one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion, but the way that they mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.
2: सवाल ये है कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे moral policing कहा जा सकता है, जबकि ये मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
8: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है, और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
2: भारत में महिला अपराधों पर, यहाँ तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना ये है कि ये सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।

0: बिहार के जमुई में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद सम्राट चौधरी की तरफ से ये कहा गया है कि जो दरिंदे होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। उन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो पुलिस पीछे नहीं हटेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
1: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथी, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
0: बिहार के नवादा में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर ही आरोप लगा है कि जो स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका उत्पीड़न वो करता है। मुजफ्फरपुर में एग्जाम देने के लिए दो छात्राएं जा रही थी, उनके ऊपर गुंडों ने चाकू से वार कर दिया। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ, बिहार में इस बात पर नेता बहस कर रहे हैं कि अपराधियों की जाति क्या है।
2: देखिए गोदी उठा लेता है बच्चा, बोल रहा है बाथरूम घुसता है तो
3: बिहार में छात्राएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जमुई में अगर सड़क पर अकेली नाबालिग से छेड़खानी की गई तो नवादा में ये घिनौना काम करने का आरोप स्कूल में लगा। स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं ने गलत नियत से छूने का आरोप लगाया। नवादा में बेटियों ने अपने ही प्रिंसिपल पर छेड़खानी का इल्जाम लगाया तो मुजफ्फरपुर में सोमवार दोपहर परीक्षा देने जा रही छात्राओं पर ब्लेड से हमला हो गया। दो छात्राएं जब अपने कॉलेज जा रही थी तो बाइक सवार युवकों ने चलती बाइक से ही छात्राओं पर ब्लेड से हमला किया और फरार हो गए।
4: दो छात्राएं जो कि कमालपुर बिथरौल के पास से स्कूल जा रही थी, इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल सवार ने ब्लेड से इन लोगों पर दाहिने हाथ में प्रहार कर दिया, जिससे इन दोनों बच्चियों को दाहिने हाथ में ब्लेड का जख्म हुआ। तुरंत इनका पीएचसी में प्राथमिकी उपचार कराया गया। एक मोटरसाइकिल सवार जिसने ब्लेड से दोनों बच्चियों पर प्रहार किया है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है।
3: बिहार में बेटियों पर लगातार हो रहे हमले और छेड़खानी की घटनाएं बता रही हैं कि अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है। इतने गंभीर मामले पर जब पक्ष और विपक्ष को बैठकर समाधान खोजना चाहिए, तब बिहार में अपराधियों की जाति पर भी राजनीति हो रही है। जमुई में छेड़खानी के आरोपी नंदन यादव के हाफ एनकाउंटर में घायल होने के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तेजस्वी पर पलटवार किया, जिन्होंने सम्राट चौधरी पर हमला किया।
5: Moral policing can be on one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion.
3: इसी के जवाब में जीतन राम मांझी ने लिखा कि जमुई मामले के आरोपी भी यादव हैं। मांझी ने तंज करते हुए कहा कि तेजस्वी अब ये कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठुकवा दिया। इसके बाद
0: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

0: state of mind with a cola spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a cola spa at home.
1: बोलो ना बेटा, क्या चाहिए?
2: जूस या सोडा, डाले या आटा, बोले ना बेटा, क्या लेगा अभी फॉर यू फ्राई माय भेजा?
3: मजा नहीं आया।
4: इसे कैसे दिलाऊं मजा भगवान?
5: ये लो बस।
3: मजा।
6: अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
7: आगे आगे।
8: अरे उधर।
7: उधर किधर?
8: करेक्ट करेक्ट।
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
9: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
10: लायन डेट नट बाइट्स।
11: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
12: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
15: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट।
17: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
19: JK Maxx Paints.
18: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: state of mind with a Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler Spa at home.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: चला
2: मैं
5: आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो
6: सखी उड़ ले अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट।
5: भाई जल्दी सीख गई,
2: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी।
6: स्वाद सपनों का।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
9: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
10: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
9: स्मॉल बैंक?
10: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
9: Okay.
10: Oh, Jeevan, nothing small about us.
11: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
12: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
13: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.
14: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको जमुई कांड के दरिंदों का चेहरा दिखाएंगे। नाबालिग बच्ची के साथ सरेआम दरिंदगी करने वाले इस जल्लाद ने वारदात के वक्त अपना चेहरा छिपा लिया था ताकि ये बच निकले, इसकी पहचान जनता के बीच नहीं जाए। और सोचिए, जब आज इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद भी थाने के पास बस अपना चेहरा छिपाते फिर रहा है। लेकिन इन्हीं लोगों ने इस बच्ची का वीडियो

और उसको सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने पीड़िता की पहचान को खूब उजागर किया, लेकिन इस अपराधी का चेहरा छिप गया जिसे आज बेनकाब किया जाएगा। इस चेहरे को आज देखिए, इस चेहरे को आज हर जगह वायरल कीजिए।

आज आपको ये भी बताएंगे कि जब एक बच्ची के साथ दरिंदगी होती है तो समाज की सोच क्या होती है। अपराधियों पर कार्रवाई की मांग करने के बजाय कुछ लोग लड़की के कपड़ों, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। कुछ नेता इसमें जाति ढूंढते हैं, कुछ आरोपी के गमछे के रंग को लेकर राजनीति चमकाते हैं। हद तो तब हो गई जब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इसको छिटपुट घटना बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। जब जनता से घिरे तो माफी मांगी और बिल्कुल सफाई देने आ गए। सवाल यह है कि आखिर पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाने के बजाय हर बार अपराध को राजनीति की सूली पर क्यों चढ़ा दिया जाता है। जमुई की घिनौनी घटना के बाद आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाएंगे, जहां अपने दोस्त के साथ पार्क गई एक लड़की को कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी बनकर धमकाया और फिर गैंगरेप किया। अब पुलिस ने एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर भी धर्म देखा जा रहा है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि IIT बॉम्बे में छात्र साहिल घाटे की जो आत्महत्या का मामला है उसमें पुलिस जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। क्राइम ब्रांच द्वारा खंगाले गए CCTV फुटेज से घटना से जुड़ी कुछ अहम कड़ियां सामने आई है। फुटेज से ही पता चला है कि समीक्षा जो परीक्षा है उसके दौरान साहिल को एग्जाम हॉल से बाहर जाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद वो अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर ये खौफनाक कदम उठा लिया। इसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनवाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरफ अमेरिका को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और सबसे सुरक्षित देश करार दिया, दूसरी तरफ ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने पूछा कि क्या वो ईरान के साथ कोई डील करे या फिर उसे पूरी तरह तबाह कर दे। उन्होंने कहा कि वो ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उनके पास दो ही रास्ते हैं, समझौता या पूरा सफाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर टैरिफ लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाएंगे। अगली खबर अमेरिका के ही टेक्सास में होगी, जहां 90 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर फिर विवाद हो रहा है। अमेरिका के मशहूर यूट्यूबर जैसे ह्यूज ने मूर्ति को उखाड़ फेंकने की खुली धमकी दी है और इसके बाद अमेरिका में रहने वाले हिंदू भड़क उठे। इसके बाद आपको बताएंगे भारत को ओडिशा तट से 43 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां ONGC ने प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज की है। समुद्र मंथन प्रोजेक्ट के तहत की गई ये खोज भारत की विदेशी गैस पर निर्भरता को कम करने में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है।

0: आज स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भी काम की खबर है। सरकार ने घटिया क्वालिटी के स्क्रीन गार्ड्स पर एक्शन लिया है। 1 अप्रैल 2027 से देश में बिना BIS रजिस्ट्रेशन वाले स्क्रीन गार्ड और टेम्पर्ड ग्लास की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने अब मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए कड़े नियम बना दिए हैं, कड़े और अनिवार्य सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तय किए हैं। यानी अब आपकी स्क्रीन की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, सिर्फ असली और जो टेस्टेड ग्लास है वही बाजार में बिकेंगे। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब खाने की चीजों की तरह साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, सभी सामानों के जो पैकेट है उस पर हरा या लाल निशान लगाना जरूरी होगा। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में जानवर की चर्बी या जेलेटिन का इस्तेमाल हुआ है तो उस पर लाल या भूरा निशान लगाना होगा। इससे शाकाहारी लोगों को ये चुनने में आसानी होगी कि उन्हें कौन सा सामान खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। कई लोग जो शाकाहारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का वो इस्तेमाल करें जिसमें किसी भी पशु का कोई सामान हो जो कि नॉन वेजिटेरियन। एशियन गेम्स की पिच पर भारत की बेटियों ने कमाल किया है और इसके लिए हम सब एक कृतज्ञ देश की तरह से सलाम करते हैं अपने महिला क्रिकेटर्स को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है और इसके साथ भारत का गोल्ड का खाता खुल गया।
1: Of the Asian Games and as the medals are being given, this is a moment of pride. Anjum, Mithali, Reema, ये जो moments हैं, ये जो पल हैं, इसके लिए एक sportsman
2: क्रिकेट को मिला।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोच कह रहे थे कि वो इतने खुश हैं अपनी टीम से कि जाके सुशी खा रहे थे। आज
0: हम आपको जमुई के उस जल्लाद का चेहरा दिखाना चाहते हैं जिस पर एक नाबालिग बच्ची के साथ सरेआम बदसलूकी और यौन हिंसा करने का आरोप है और हम चाहते हैं कि आज पूरा देश इसका चेहरा देखे, इस दरिंदे के चेहरे को याद रखे और ये भी समझे कि गलती उस बच्ची की नहीं थी। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, हजारों लोग मिल जाएंगे जो इस नाबालिग बच्ची का वीडियो वायरल कर रहे हैं, जाने अनजाने में उसकी पहचान, उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे। जबकि इसी वीडियो में उसके साथ दरिंदगी करने वाले इस जल्लाद ने अपना चेहरा छिपाया हुआ है और इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि ये आदमी कौन है। यानी जिसने अपराध किया उसने अपना चेहरा छिपा लिया, जिसके साथ अपराध हुआ उसका चेहरा दुनिया के सामने आया। और यह भी सोचिए कि अगर घटना के वक्त इसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा था तो इसकी मंशा कितनी खतरनाक रही होगी। इसे पता था कि वो जो करने जा रहा है उसके बाद उसकी पहचान सामने आ सकती है। उसने चेहरा छिपाया वहां पर, लेकिन वीडियो बन रहा था और इन सबको पता था और इसलिए उसने अपना चेहरा छिपा लिया। लेकिन इस नाबालिग बच्ची के पास अपनी पहचान छिपाने का कोई विकल्प नहीं था और यही कारण है कि जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो यही बच्ची सबके निशाने पर आ गई। लोग वीडियो देखते रहे, शेयर करते रहे, उसकी पहचान को सार्वजनिक करते रहे, जबकि इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा जरूरत उसकी पहचान बचाने की थी। लेकिन ये जागरूकता किसी ने नहीं दिखाई और इसलिए आज हम सबसे पहले कहना चाहते हैं, हमने भी ये खबर कल से आपको दिखाई है लेकिन हमने बच्ची का चेहरा मॉर्फ कर दिया। हमने ये सुनिश्चित किया कि कहीं से भी इस बच्ची की पहचान ना चली जाए। आज हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ वायरल ही करना है तो इस दरिंदे का चेहरा वायरल कीजिए ना, इसके चेहरे को सामने लाइए जिसने ये घिनौनी हरकत की है, ना कि इस बच्ची का वीडियो वायरल कीजिए जो इस घटना में इन दरिंदों और जल्लादों का शिकार हुई और कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, सब वीडियो बनाते रहे। देखिए,

बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह घटना मॉरल पुलिसिंग की है, छेड़छाड़ की है, इस लड़की और उसके दोस्त को परेशान करने की है। कुछ लोग इसे यौन उत्पीड़न बता रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या 19 सितंबर की शाम जमुई में सिर्फ इतना ही हुआ था। हकीकत यह है कि उस शाम इस बच्ची के साथ जो हुआ उसे सिर्फ किसी एक कानून की धारा या किसी एक शब्द में समेट देना, उस पूरी घटना की भयावहता को छोटा कर देना होगा। जिस मानसिक आघात और डर से ये बच्ची गुजरी, जिस तरह उसे उठाकर एक दूसरे के पास फेंका जा रहा था, जिस तरह वो हाथ जोड़कर अपने लिए रहम की भीख मांग रही थी, उस तस्वीर को देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान के भीतर सवाल उठना चाहिए कि आखिर एक बच्ची के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। सोचिए, एक इंसान थी वो उस समय, जो उस वक्त अपने सामने खड़ी भीड़ से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही थी। वो चाह रही थी बस किसी तरह उसे सुरक्षित वहां से निकलने दिया जाए, और ये लोग एक तरह से नोच रहे थे चारों तरफ से उसे। और सबसे डरावनी बात यही है कि वहां सिर्फ एक आरोपी नहीं था, एक भीड़ थी। देखिए, इस भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे तो, अगर चाहते तो आगे बढ़कर इस लड़की को बचा सकते थे, आवाज तो उठा सकते थे, निकालने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने मदद करने की जगह उसका वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा। यानी एक बच्ची मदद के लिए हाथ जोड़ रही थी, कुछ हाथ उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि मोबाइल कैमरा उठाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और ये सिर्फ संवेदनहीनता नहीं है,

0: ये घिनौनापन है, ऐसा घिनौनापन जिसमें इस लड़की के साथ उस दिन कुछ भी किया जा सकता था। और हम चाहते हैं कि आप इस बार एक बार इस भीड़ के चरित्र को देखें।
1: पहले मोबाइल का घर में भी सबको पता है,
2: घर में पता है।
3: बात करा फैमिली को फोन करो,
4: फैमिली है ना। चलो मंदिर में बढ़िया सेम हो जाएगा,
3: सेम हो जाएगा यहीं पे देखो सेम मंदिर। ये भैया क्या करेगा जब गलती किया तो?
5: मेरा घर जमुई में,
3: कहाँ पे? मैसूरी रोज जाती
6: बाबू टोला में।
7: कॉपी किताब देख लीजिए,
8: कॉपी
9: किताब
8: ना
9: करेगा इसको। पहले
10: बोलो फैमिली को फोन
11: करेगा ना मंडी पर।
12: अरे किसी को
13: छोड़
12: दो,
13: कसम से कभी नहीं
14: जाने दो।
15: जाओ
16: जाओ
17: जाओ
18: जाओ
19: जाओ।
20: कैसे जाएगा
0: है। इस वीडियो के बाद हम आपको फिर से इस जल्लाद का चेहरा दिखाना चाहते हैं। और क्या आप इसका नाम जानते हैं? नंदन कुमार यादव, और इसकी उम्र है सिर्फ 20 साल। जमुई पुलिस के मुताबिक ये आरोपी मुख्य रूप से एक ट्रैक्टर चालक है और नदी से बालू ढोने का काम करता था। और अब इसके इंस्टा रील्स वायरल हो रही है जिनमें ये खुद को इलाके का दबंग दिखाता था या शराब पीते हुए सोशल मीडिया पर लाइव वीडियोज बनाता था। और आरोप है कि उस दिन भी इसी आरोपी ने इस घटना का पूरा वीडियो बनवाया। बाद में जब यह वीडियो 21 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की। आज भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में मुख्य आरोपी नंदन यादव और उसके साथी हरे राम यादव को जब गिरफ्तार किया तब ये पुलिस की गाड़ी में हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था और अपने चेहरे को यहां भी एक गमछे से छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, छिपाया ही हुआ था समझिए। देखिए

0: प्लीज
1: प्लीज प्लीज
2: फोटो
1: दिखा
2: दिया
1: स्कूल में, साथ में
2: पढ़ते हैं।
3: चलो मंडे
2: यहाँ पे क्या करेगा,
4: कॉपी किताबें देख लीजिए आप।
3: अरे कॉपी किताब ना करेगा।
5: देखिए यहाँ पे यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी।
6: फायरिंग की आवाज हुआ सर, तो हम लोग सोचे कि जरूर कहीं एनकाउंटर हो रहा है। जब आए हम लोग देखे तो सब जगह पुलिस, कम से कम 50 गो पुलिस थे उधर से, 50 गो इधर से। आक्रोश है सर, एकदम बहुत आक्रोश था कि किसी एकदम इनको एनकाउंटर किया जाए। ऐसा दरिद्रगी घटना है ना सर, कि आपको भी देख करके रोक कब जाएगा।
7: इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें मुख्य आरोपी नंदन यादव और हरिराम यादव को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। हमने सोचा था कि इस घटना के बाद शायद अब कुछ गंभीरता दिखाई जाएगी, शायद अब बात उस बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर होगी और शायद सवाल उस भीड़ से पूछे जाएंगे, शायद ये पूछा जाएगा कि आखिर एक नाबालिग बच्ची को सरेआम इस तरह क्यों प्रताड़ित किया गया, और ये पूछा जाएगा कि आखिर बिहार की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार, सम्राट चौधरी की पुलिस कर क्या रही है। लेकिन देखिए कुछ नेता इस घटना में आरोपियों की जाति ढूंढने लगे, कुछ आरोपियों के गमछे के रंग में राजनीति तलाशने लगे, कुछ इसे छिटपुट घटना बताने लगे, कुछ नेता इसमें पिछली सरकारों का जंगल राज खोज कर ले आए, और कुछ लोगों ने तो सारी हदें ही पार कर ली, सारी मर्यादाएं पार कर ली। उन्होंने उल्टा ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर ये लड़की शाम को इस लड़के के साथ उस इलाके में क्या कर रही थी, उससे कैसे कपड़े पहने थे, उसकी बाजू पूरी क्यों नहीं ढकी थी। शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने इस घटना का वीडियो देखने के बाद सबसे पहले ये पूछा कि लड़की अंधेरे में इस लड़के के साथ क्या करने गई थी। किसी ने पूछा क्या माता पिता को इस लड़के के बारे में पता था, किसी ने पूछा उसने सूट क्यों नहीं पहना था, किसी ने पूछा उसने पूरी बाजू के कपड़े क्यों नहीं पहने थे। सारे सवाल न सिर्फ तकलीफ देते हैं बल्कि इन लोगों की सोच पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और यहां आज हम ये कहना चाहते हैं कि एक बच्ची किसी लड़के के साथ कहीं भी गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को उसे परेशान करने, छूने, उठाने, घसीटने या उससे किसी भी तरह की बदसलूकी करने का अधिकार मिल गया, और ना ही उन तमाम लोगों को यह अधिकार है कि वो उस लड़की के कपड़े पर चर्चा छेड़ दे, वो उस लड़की को ही शर्मसार करने की कोशिश करे। ऐसा करता हुआ जो भी आपको दिखाई देता है वो सब बराबर के अपराधी हैं। वो शाम को बाहर थी या दिन में, उसे क्या पहना था क्या नहीं पहना था, उसका साथ कौन था, अकेली थी, कोई भी बात किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने की इजाजत नहीं देता। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस लड़की को उस वक्त सुरक्षा की जरूरत थी, घटना के बाद उसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया, उसका चेहरा सब डाल रहे हैं वीडियो बना बना कर, लेकिन ये अपराधी अपना चेहरा छिपाता रहा, और इसीलिए आज हम उसका चेहरा बार बार आपको दिखा रहे हैं। जिसके साथ अपराध हुआ उसी से पूछा जाने लगा कि क्यों गई थी, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसी के कपड़ों की जांच होने लगी, और लड़के के साथ उसकी दोस्ती और उसके चरित्र पर ही सवाल उठने लगे, जबकि अपराध करने वाले लड़कों से कोई ये नहीं पूछ रहा कि इन्होंने, तुमने ऐसा क्यों किया। भीड़ में मौजूद लोगों से ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा जा रहा कि जब एक बच्ची मदद के लिए हाथ जोड़ रही थी, वीडियो बना रहे थे, जिस आरोपी ने इस बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की उसके चरित्र पर कोई चर्चा नहीं हो रही। हमें उसके ऐसे ऐसे कई वीडियोस, कई रील्स मिले हैं जिनमें वो दबंगई दिखाने की कोशिश करता है। देखिए

0: जो लोग इस आरोपी पर सवाल ना उठाकर इस बच्ची के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं वो हकीकत में ये जानते तक नहीं है कि ये घटना हुई कैसे थी। जमुई पुलिस के मुताबिक ये बच्ची अपने दोस्त के साथ एक कोचिंग सेंटर से पढ़कर लौट रही थी और जिस पहाड़ी के पास इसे रोका गया वहां एक सेल्फी पॉइंट है जहां अक्सर लोग फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। ये बच्ची भी अपने दोस्त के साथ कोचिंग सेंटर से लौटते हुए इस पहाड़ के पास फोटो खिंचवाने के लिए आई थी और ये बात पुलिस खुद कह रही है। शाम हुई, अंधेरा बढ़ने लगा, तब इसी नंदन यादव ने मुंह पर गमछा बांधा, बीच सड़क पर रोक लिया और इसके बाद उसने इस बच्ची को उठाकर सुनसान जगह ले जाने की भी कोशिश की। उसे कई बार अश्लील तरीके से छुआ जो पॉक्सो एक्ट के तहत संगीन अपराध है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस लड़की से पूछ रहे हैं इस लड़के के साथ क्या कर रही थी। शर्मनाक है, लोगों को छोड़िए हमारे नेता यही काम कर रहे हैं और हम खास तौर पर सभी पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं। जैसे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई छिटपुट घटना घटती है तो सरकार उस पर संवेदनशील रहती है। इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि साल 2005 से पहले आरजेडी की सरकार में जंगल राज होता था, यानी कोई घटना हो जाए तो उस पूरी घटना को छोड़कर पिछली बातें निकाल लेना। और ये राजनीति के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन हमारे नेता एक बार इस घटना की संवेदनशीलता तो देख लेते। इन्हें छोड़िए, बिहार सरकार में जेडीयू के कोटे से मंत्री है श्रवण कुमार, कह रहे हैं बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। सोचिए, इनके लिए अगर ये छोटी घटना है तो ये मंत्री जी बड़ी घटना किसको मानेंगे। कुछ लोगों ने आरोपियों की जाति ढूंढी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिया है सुबह सुबह कि वो इस मामले में कहीं से भी मुस्लिम और यादव एंगल ढूंढ कर लाएं। उन्होंने ये भी लिखा कि मुख्य आरोपी ने भगवा रंग का गमछा पहना था इसलिए ये भगवा बलात्कारी भी हो सकता है। तेजस्वी यादव ने यह बात कही तो जीतन राम मांझी ने एक कदम आगे बढ़कर यह लिख दिया कि तेजस्वी यादव हर यादव को अपना भाई बताते हैं तो उन्हीं भाइयों में से कुछ भाइयों ने जमुई में लड़की का वीडियो बनाया था ताकि उनकी सरकार को बदनाम किया जा सके। और ये राजनीति यही नहीं थमी। आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या इस मामले में हमारे समाज को ऐसी चर्चा की जरूरत थी या लोग चाहते थे कि इस घटना में सरकार और नेता ज्यादा गंभीरता दिखाएं, ऐसे कदम उठाएं जिससे ऐसी चीजें दोबारा ना हो, लेकिन किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। सब के सब अपनी सुविधा अपने अनुसार राजनीति तलाशने में लग गए, लेकिन एक बार उस बच्ची से जाकर पूछे कि उस पर क्या बीत रही होगी। जिस बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई वो तो इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाई कि इस घटना के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे सके। घटना के दो दिन बाद जब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया तब पुलिस खुद स्वतः संज्ञान लेकर इस लड़की और उसके दोस्त के घर पहुंची और इससे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन हमारे नेता, हमारी सरकार, हमारे मंत्री इतने गंभीर मुद्दे को कहीं और ही ले गए हैं।
1: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
2: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
3: आज बिहार के जेलों में जाइए तो 70% एक समाज के लोग आते हैं, चाहे बलात्कार का मामला हो, भूमि हड़प का मामला हो, हत्या का मामला हो, ये सारे केसों में 70% लोग जो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, एक ही कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के लोग होते हैं।
0: इतने संगीन मुद्दे पर यह राजनीति तब हो रही है जब बिहार के 130 यानी 53% विधायकों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें भी 102 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे, आपने सही सुना, 102 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे, 9 विधायकों पर महिला अपराध के गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और आज इन आंकड़ों को भी लोग देख रहे हैं। जब ये पूरी राजनीति हो रही है तब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं और हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी कहेंगे कि वो हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखें। साल 2022 से 2024 के बीच बिहार भारत के उन राज्यों में शामिल रहा जहां महिला अपराधों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। साल 2022 में बिहार महिला अपराधों के मामले में 9वें स्थान पर था, लेकिन साल 2023 में यह 8वें स्थान पर आया, फिर 2024 में 7वें स्थान पर पहुंचा। यह भी तब हुआ जब बिहार की गिनती उन राज्यों में होती है जहां ज्यादातर महिलाएं यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ के मामलों में शिकायत ही दर्ज नहीं कराती। उदाहरण के लिए 2024 में बिहार में रेप के 1165 मामले दर्ज हुए, लेकिन इनमें सिर्फ एक मामला ऐसा था जिसमें पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी, जबकि बाकी राज्यों में यह आंकड़ा ज्यादा होता है। लेकिन बिहार में यह कम इसलिए है क्योंकि बिहार में ज्यादातर नाबालिग लड़कियां परिवार की बदनामी, समाज के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराती। जैसे साल 2024 में ऐसे कुछ कुल 225 मामले दर्ज हुए जिनमें महिलाओं से छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न का आरोप था, लेकिन इनमें एक भी नाबालिग लड़की का मुकदमा शामिल ही नहीं था। यौन उत्पीड़न के सभी 62 मामलों में सिर्फ 5 पीड़िताएं नाबालिग थी, और स्टॉकिंग यानी पीछा करने के 57 मामलों में भी सिर्फ 9 नाबालिग पीड़िताएं थी। और ये आंकड़े तब थे जब शादी के लिए लड़कियों को अगवा या पहला फुसला कर ले जाने के 12,438 मामले दर्ज हुए, 6,231 पीड़िताएं 18 साल से कम उम्र की थी। यानी बिहार में नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराध तो ज्यादा है लेकिन रिपोर्टिंग कम। सबसे बड़ी बात यह कि बिहार भारत का वो राज्य है जहां परिवारों और बच्चियों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जागरूकता नहीं। वर्ल्ड विजन इंडिया ने साल 2020 में इस पर एक सर्वे किया था जिसमें बिहार के सिर्फ 0.67% बच्चे ही ऐसे मिले जो पॉक्सो कानून के बारे में जानते थे। यानी बिहार में हर 100 में से एक बच्चा भी इस कानून से परिचित नहीं था। और यहां भी अगर आप जमुई के इस मामले को देखेंगे तो इस बच्ची ने खुद शिकायत दर्ज नहीं कराई, बल्कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस बच्ची तक पहुंची और पुलिस ने बच्ची से शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ आप सोचिए इस पुलिस की हालत कि शनिवार को हुई घटना और पुलिस को कोई जानकारी ही नहीं है उसके बारे में। ये तो वीडियो जब वायरल हुआ और चारों तरफ से घिरने लगी बिहार पुलिस, तब वो नींद से जागे। देखिए, बिहार में महिला अपराधों को लेकर सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद जमुई जैसी घटना होती है,

0: ऐसा नहीं है कि बिहार पहली बार ऐसी घटना को देख रहा है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री रहते हुए अब ये पहली ऐसी बड़ी घटना है। आज से सिर्फ 6 महीने पहले इसी बिहार के नालंदा में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक शादीशुदा लड़की के कपड़े फाड़कर उसकी परेड निकाली थी। कारण सिर्फ इतना था कि ये लड़की इन गुंडों से बात करने के लिए तैयार नहीं थी। आप एक बार इस घटना का वीडियो भी देखें। इन आंकड़ों और घटनाओं को देखने के बाद हमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का 1 साल पुराना वही बयान याद आ रहा है, जब उन्होंने गृह मंत्री बनने के बाद इंडिया टुडे के मंच पर कहा था कि रात के 12 बजे भी अगर आपको कोई छू दे तो सम्राट चौधरी सुबह होते ही इस्तीफा दे देंगे।
1: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है, लेकिन जिसके अपराध हो, किसी का व्यक्तिगत झगड़ा है, तब तो मैं पक्का कहूंगा कि भाई पुलिस थाने को बता के जाइए, ऐसे नहीं जाए।
0: आज बात सिर्फ बिहार और बिहार के जमुई की नहीं है। कड़वा सच तो यह है कि जमुई में जो हुआ वो एक बहुत बड़ी बीमारी है और ऐसे लोगों को आज हम भीड़ के भेड़िए कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि भीड़ के बीच छिपे कुछ ऐसे भेड़िए होते हैं जो मौका मिलते ही महिलाओं लड़कियों को गलत तरीके से छूते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, फिर उसी भीड़ में इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें लगता है कि भीड़ उनकी पहचान छिपा लेगी, सैकड़ों लोगों के बीच कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा, कैमरे होंगे लेकिन कैमरे में उनका चेहरा नहीं आएगा, और इसी भरोसे के साथ वो किसी महिला की मजबूरी, किसी लड़की के डर, किसी भीड़ की अफरा तफरी, इन सब का फायदा उठाते हैं। अब उदाहरण के लिए हैदराबाद में हर साल बोनालू त्योहार के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग महिलाओं से छेड़छाड़ करते थे, बदसलूकी करते थे, भीड़ में घुस गए, और यही भीड़ के भेड़िए को पकड़ने के लिए हैदराबाद पुलिस ने शी टीम्स तैनात की। इन टीम्स ने मंदिरों, जुलूस के रास्तों, बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन, बाजारों, भीड़भाड़ वाली तमाम जगहों पर निगरानी रखी, और ये महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में भी तैनात थी ताकि छेड़छाड़ करने वालों को पकड़ा जा सके, और ऐसा हुआ भी। हिडन कैमरों में हैदराबाद की टीम ने जो देखा वो बता रहा था कि कैसे कुछ भेड़िए भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं, और ये असल में एक बहुत बड़ी बीमारी है। देखिए।

0: खैर जो नेता ऐसी घटनाओं को छिटपुट मानते हैं उन्हें देश की राजधानी दिल्ली की इस घटना को भी देखना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इस घटना में भी कुछ लोग अपराध की गंभीरता से ज्यादा आरोपियों के धर्म को ढूंढ रहे हैं। ये पूरी घटना 21 सितंबर की है जब शाम को एक 17 साल की नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ कालका जी मंदिर में दर्शन करने के बाद गेट नंबर 7 से आस्था कुंज पार्क गई थी, लेकिन इसी दौरान वहां 3 लड़के पहुंचे, खुद को पुलिसकर्मी बताया और दोनों को डराने धमकाने लगे। ये कहने लगी कि वो यहाँ क्या करने आए हैं और क्या लड़की के माता पिता लड़के के बारे में जानते हैं। जब ये लड़की और उसका दोस्त बुरी तरह डर गए तब आरोपियों ने लड़की के दोस्त को बंधक बना लिया और लड़की को जबरन पार्क के एक सुनसान हिस्से में ले गए जहां तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया और घटना के बाद वो मौके से फरार हो गए। आज जब पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और ये बताया कि उसका नाम मोहम्मद आसिफ है तो लोग घटना की गंभीरता को समझने के बजाय आरोपियों के धर्म की बात करने लगे और गूगल पर यह सर्च होने लगा कि बाकी दो आरोपी भी मुस्लिम हैं या हिंदू हैं। ये तो हालत हो गई है। जब ये बात सामने आई कि बाकी आरोपियों का नाम हेमंत और मुकेश है तो ये घटना हिंदू और मुस्लिम में बट गई और हमें लगता है कि इससे ज्यादा दुखद कुछ और नहीं हो सकता क्योंकि यहां भी आरोपियों के धर्म के चक्कर में पीड़ित लड़की के दर्द, इस घटना की भयावहता को किसी ने नहीं समझा। देखिए,
1: सोमवार देर शाम 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पकड़

0: पकड़ा गया है, एनकाउंटर में घायल हुआ है, जबकि बाकी दो आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। साउथ ईस्ट दिल्ली की पुलिस कई इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है।
1: अब बात अमेरिका की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर डाली जिसमें व्हाइट हाउस के बाहर कूड़े से भरी तीन थैलियां रखी, जिस पर CNN, MS Now और पोलिटिको का लिखा हुआ था नाम। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के तीन बड़े मीडिया संस्थानों CNN, MS Now और पोलिटिको की व्हाइट हाउस में एंट्री प्रतिबंधित करवा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर इन तीनों मीडिया संस्थानों का निर्देश उनको दे दिया गया है कि अब से उनके किसी भी पत्रकार को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में नहीं आने दिया जाएगा। एंट्री प्रतिबंधित करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों अमेरिकी मीडिया संस्थानों को चिढ़ाते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर उनको कूड़ा बताते हुए तस्वीर डाली जिसमें उन्हें व्हाइट हाउस के बाहर फेंका हुआ दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप CNN, MS Now, पोलिटिको पर पिछले काफी दिनों से हमलावर हैं। तीनों मीडिया संस्थानों को फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाते हुए वो दावा करते हैं कि ये तीनों अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर झूठी कहानियां गढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इन तीनों को ही व्हाइट हाउस में एंट्री बैन करने के साथ साथ कुछ अन्य मीडिया संस्थानों को भी संकेतों में बड़ी धमकी दी है। उनका इशारा अमेरिका के दो बड़े अखबारों की तरफ है, द न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट। इन दोनों अखबारों पर भी डोनाल्ड ट्रंप अक्सर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा चुके हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने फॉक्स न्यूज के हवाले से बताया कि CNN, MS Now और पोलिटिको के पत्रकारों के इस फैसले की जानकारी पहले नहीं दी गई थी। 18 सितंबर को व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग शुरू होनी थी, उसी दौरान तीनों मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को वहीं पर जब वो मौके पर पहुंचे व्हाइट हाउस में, तब उनको बताया गया कि कल से उनकी एंट्री प्रतिबंधित है, वो कल से ना आए। अब व्हाइट हाउस में मीडिया संस्थानों की एंट्री की प्रतिबंधित किया जाना प्रेस फ्रीडम को लेकर सीधा हमला देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास प्रेस ब्रीफिंग में कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ही अनुमति देने का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद इन फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तीनों मीडिया संस्थानों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को अमेरिकी संविधान में दिए गए फ्री स्पीच के अधिकार के खिलाफ बताया है। CNN, MS Now और पोलिटिको ने अमेरिकी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया। उनकी मांग है कि इस असंवैधानिक फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। इसी के साथ कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने इस फैसले के विरोध में डोनाल्ड ट्रंप की पूल कवरेज को बंद कर दिया है। पूल कवरेज का मतलब है ऐसी टीवी कवरेज जिसमें जगह की कमी की वजह से कुछ पत्रकारों को ही प्रेस ब्रीफिंग में बुलाया जाता है और बाकियों को वो वीडियो भी दे देते हैं, जानकारी भी साझा करते हैं और सभी टीवी चैनल्स को वीडियो और जानकारी मिल जाती है। ABC, CBS, Fox News, NBC ने राष्ट्रपति की पूल कवरेज वाली वर्षों पुरानी व्यवस्था के से नाम वापस ले लिया है, यानी ऐसी खबरें वो राष्ट्रपति की नहीं चलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिकी मीडिया के साथ उनकी एक नई जंग छिड़ी। मीडिया के साथ उनकी ये जंग आने वाले मिड टर्म चुनाव में उनके खिलाफ जा सकती है। नवम्बर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है और ईरान युद्ध की वजह से पहले से ही उनके खिलाफ काफी माहौल बना हुआ है। हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग उनके दूसरे कार्यकाल में अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को उन्होंने संभाला था। 21 जनवरी 2025 को उनकी अप्रूवल रेटिंग लगभग 47% थी, 47%। लेकिन रॉयटर्स और इसी के साथ साथ इप्सोस का नया सर्वे आया है जो 20 सितंबर 2026 को अभी अभी किया गया है, उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो 47% से गिरकर 32% रह गई है, जो उनके दूसरे कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। यानी ट्रंप की समर्थन करने के वाले जो लोग हैं वो लगातार अमेरिका में घट रहे हैं। और ये सिर्फ आम अमेरिकियों के बात नहीं है, उनकी खुद की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी भी उनकी अप्रूवल रेटिंग जो 73% पर आ गई है, पिछले हफ्ते वो 82% थी और इस सप्ताह 73 पर आ गई है, तो लगभग 9% की गिरावट है। ऐसे में मीडिया संस्थानों के साथ उनका झगड़ा और मुश्किल ला सकता है और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया का 36 का आंकड़ा वैसे पहले भी रहा है और हमेशा आप देखिए तो कई रिपोर्ट्स जो उनके खिलाफ छपती हैं उनके बारे में वो अक्सर खुलकर बोलते भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से अगर आप देखिए तो एक नए परंपरा की शुरुआत हो गई, वो सीधा मीडिया संस्थानों से टकराने लगे, मानहानि के कई केसेस करने लगे और मानहानि के केसेस में सेटलमेंट में उन्होंने खूब वसूली भी की है, खूब पैसा भी लिया है। डोनाल्ड ट्रंप अब तक मीडिया टेक कंपनीज के साथ अपनी कानूनी लड़ाइयों में जानते हैं 886 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। साल माफ कीजिएगा 826 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। साल 1980 के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग मीडिया संस्थानों पर मानहानि के 30 से ज्यादा केस किए, एक भी केस नहीं जीते हैं, लेकिन समझौते के तौर पर वो उनसे करोड़ों रुपए वसूल चुके हैं। साल 2024 में उन्होंने एबीसी न्यूज से 143 करोड़ रुपए, सीबीएस न्यूज से 153 करोड़ रुपए वसूले। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप यूट्यूब, एक्स, फेसबुक जैसी टेक कंपनी से भी 564 करोड़ रुपए ले चुके हैं। इन कंपनीज पर उन्होंने अकाउंट निलंबित करने को लेकर केस किया था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, द डेस मोइनिस रजिस्टर, इन सब पर केस किए हुए हैं। CNN, MS Now और पोलिटिको पर लिए गए फैसले के बीच ट्रंप टीवी की भी बहुत चर्चा हो रही है। व्हाइट हाउस ने कल से ट्रंप टीवी के नाम से डिजिटल वीडियो स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है, तो ट्रंप ने अपना चैनल ही खोल दिया है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट और यूट्यूब पर सातों दिन 24 घंटे ये चलती रहेगी ट्रंप टीवी। ट्रंप टीवी में डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों, संबोधनों को दिखाया जाएगा। इसके अलावा इसमें व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। इस पर ट्रंप प्रशासन से जुड़े कार्यक्रम चलेंगे, खासतौर से इस वीडियो स्ट्रीमिंग चैनल पर ट्रंप के पुराने भाषण, उनकी उपलब्धियां, उनका कामकाज, वीडियो सब चलते रहेंगे। अब से डोनाल्ड ट्रंप के देश विदेश में जितने भी कार्यक्रम होंगे उन्होंने ट्रंप टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप टीवी पर आने वाली फीड रियल टाइम अपडेट होगी। न्यूयॉर्क में यूएन महासभा का सत्र चल रहा है, करीब 130 देशों के बड़े नेता या उनके प्रतिनिधि उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज से इस सत्र का सबसे अहम दौर शुरू हो रहा है। भारत के नजरिए से इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सीट है, और इस बार यूएनजीए की यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठकों से अलग जाकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए यूरोप के चार ताकतवर देशों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के बाद चारों देशों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यूरोप के V4 यानी विसेग्राड समूह के जो चार देश हैं, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, उन्होंने यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता देने की वकालत। यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए यूरोप के चार ताकतवर देशों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के बाद चारों देशों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यूरोप के V4 यानी विसेग्राड समूह के जो चार देश हैं, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, उन्होंने यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता देने की वकालत की। ये देश मानते हैं कि भारत दुनिया की एक है, और ऐसे में इन देशों का समर्थन पाना भारत की दावेदारी को मजबूत बनाता है। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का एक समूह है जो वैश्विक व्यवस्था में काफी महत्व रखता है। इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया इस बात पर सहमत हो गई थी कि एक वैश्विक व्यवस्था बननी चाहिए जो विश्व युद्ध जैसे स्थितियों को रोके। इसके बाद 1945 में यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हुआ और उसके तहत यूएनएससी बना यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फिलहाल ये जो यूनाइटेड नेशंस का सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और अमेरिका। इसके अलावा यूएनएससी में 2 साल के कार्यकाल के हिसाब से 10 अस्थायी सदस्य भी बनाए जाते हैं। फिलहाल बहरीन, कोलंबिया, कांगो, डेनमार्क, ग्रीस, लातविया, लाइबेरिया, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया इसके अस्थायी सदस्य हैं। यूएनएससी की असली शक्ति उसके स्थायी सदस्यों के पास होती है। वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके विश्व के विवादित संवेदनशील मुद्दों पर अपनी वोटिंग पावर के तहत बड़े फैसले लेते हैं। यूएनएससी में स्थायी सीट वाले देशों के पास यूएन के किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव और निर्णय को रोकने का अधिकार होता है। इसे वीटो पार कहते हैं। अगर एक भी स्थायी सदस्य ने वीटो पार का इस्तेमाल करके यूएन में पेश किसी प्रस्ताव का विरोध किया तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। स्थायी सदस्यता लगातार बनी रहती है, उस पर 2 साल के कार्यकाल वाली बाध्यता नहीं है। यूएन के पीस कीपिंग मिशन की मंजूरी भी स्थायी सदस्य ही देते हैं। ये मिशन गृह युद्ध झेल रहे देशों में शांति लाने के लिए चलाया जाता है, जिसके तहत सदस्य देश अपने सैनिक भेजते हैं। इसके अलावा शांति के लिए खतरा बन रहे देशों पर प्रतिबंध का फैसला भी स्थायी सदस्यों के फैसलों पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय संकट बन रहे युद्धों पर सामूहिक कार्रवाई की दिशा तय करना भी स्थायी सदस्यों के हाथ में ही होता है। यूएन के किसी चार्टर में बदलाव करना हो या फिर सुधार करना हो, इनके लिए भी स्थायी सदस्यों की सहमति चाहिए होती है। अभी तक भारत 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है, और अब वो स्थायी सदस्यता के लिए भी दावेदारी पेश कर

यूएन चार्टर में स्थायी सीट देने का प्रावधान है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 108 के मुताबिक स्थायी सीट के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के कम दो तिहाई सदस्यों यानी 193 में से कम 129 देश का समर्थन और पक्ष में वोट चाहिए। स्थायी सदस्यता के लिए किसी देश के नाम पर आए प्रस्ताव पर पांचों स्थायी सदस्यों का समर्थन और वोट सबसे जरूरी है। अगर इन स्थायी सदस्य देशों ने विरोध में

0: कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान दुनिया पूरी तरह बदल गई। भारत का तर्क है कि सुरक्षा परिषद में उन क्षेत्रों या देशों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है जिनकी आबादी, जिनकी अर्थव्यवस्था और प्रभाव 1945 की तुलना से आज बहुत ज्यादा है। हालांकि यूएनएससी में स्थायी सीट को लेकर फ्रांस, यूके, रशिया भारत का समर्थन करने आए हैं। ये देश मानते हैं कि यूएनएससी में स्थायी सीटों का विस्तार होना ही चाहिए। इसके अलावा अमेरिका भी सैद्धांतिक तौर पर भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन देता है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी भी देश को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है, जबकि यूएनएससी के विस्तार की चर्चा में हर बार भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे देशों का नाम उठता रहा है जिन्हें स्थायी सदस्यता दी जाने की वकालत की जाती है।
1: Well, we have very good relations with the V4 countries, and we know that these are countries with a very strong, very distinctive capability. These are industrial economies, economies with great innovation and technology talent. I think how the V4 come together is for them to decide, but we certainly welcome the opportunity to work with the V4 together.
2: We all agreed as V4 countries that India, as a part of the Global South country, upcoming superpower in the Indo-Pacific region, must be at the table as the permanent member of UN Security Council.
0: अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन में भाषण दिया। उनके भाषण में अमेरिका की ताकत, अमेरिकी सेना के शौर्य का जिक्र था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने कई मौकों पर युद्ध रुकवाकर शांति कायम करवाई, जो देश उनके लिए चुनौती बने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। यहां पर उन्होंने ईरान का नाम लेते हुए कहा कि ईरान कई देशों के लिए खतरा बना हुआ है, वो मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा है, उसे कभी भी परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने ईरान युद्ध लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान के हमले अभी जारी
3: है। We'll never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake.
0: अब एक चर्चा ये भी है कि क्या न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की मुलाकात होने वाली है। दरअसल यूएन की बैठक है और इस बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची पहले से ही न्यूयॉर्क में है। और यही वजह है कि ट्रंप और पेजेश्कियान के बीच सीधी बातचीत की चर्चाएं गर्म हो गई। हालांकि अभी तक किसी तरह की आधिकारिक मीटिंग तय नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब दोनों नेता एक ही शहर में और एक ही कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं तो क्या सुलह को लेकर कोई डायरेक्ट बात होगी। हालांकि ईरान वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है। उन्होंने हाल ही में कहा कि ईरान के मुद्दे पर वो फैसला लेने के दौर में आ गए हैं और उनके सामने तीन रास्ते हैं। पहला है बड़ी सैन्य कार्रवाई, दूसरा ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाए रखना, तीसरा ईरान से कोई समझौता करना। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से ईरान को बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का मौका दिया है और यही वजह है कि लोगों को यूएनजीए के लिए आए मसूद पेजेश्कियान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मीटिंग की संभावनाएं दिख रही। दरअसल दोनों ही देश पिछले 7 महीने से जंग लड़ रहे हैं और बीच बीच में समझौते के संकेत देते आए हैं। न्यूयॉर्क आने से पहले ईरान के राष्ट्रपति ने भी बातचीत के संकेत दिए थे। ईरान की तरफ से अमेरिका से बातचीत दोबारा शुरू करने के संकेत मिले। हालांकि ट्रंप की ओर से बड़ी सैन्य कार्रवाई, आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी की वजह से इसकी संभावना बहुत कमजोर है। अमेरिका ने मसूद पेजेश्कियान के दौरे को लेकर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं। अमेरिका ने केवल राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और ईरान के वरिष्ठ राजनयिकों को यूएनजीए में शामिल होने का वीजा दिया है, लेकिन उनकी मीडिया टीम के कुछ सदस्यों को वीजा नहीं दिया गया। इसके अलावा ईरान के प्रतिनिधिमंडल की आवाजाही पर भी कड़े प्रतिबंध हैं। मसूद पेजेश्कियान यूएनजीए में ईरान का पक्ष रखने गए हैं और माना जा रहा है कि वो मिनाब में अमेरिकी हमले में मारे गए 166 बच्चों की बात भी बताएंगे। कुल मिलाकर ईरान यूएनजीए के संबोधन में अमेरिका के खिलाफ अपना पक्ष रख सकता है। क्या धर्म की स्वतंत्रता का दावा करने वाले अमेरिका में अब सनातन आस्था पर हमले की खुली छूट है? क्या सुपर पावर अमेरिका में 90 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा से कट्टरपंथी डरे हुए हैं? टेक्सास शहर में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनियन को लेकर एक बार फिर हिंदू विरोधी और भारत विरोधी तत्व खड़े हैं, लेकिन इस बार अमेरिका की सेना में अफगानिस्तान और इराक युद्ध लड़ चुके एक हिंदू अमेरिकी सैनिक ने इन्हें करारा जवाब दिया है। सुगरलैंड के अष्टलक्ष्मी मंदिर

0: परिसर में करीब 90 फीट ऊंची और 68 करोड़ रुपए की लागत से बनी है हनुमान जी की प्रतिमा अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है। अगस्त 2024 में अनावरण के बाद से ही यह मूर्ति वहां रहने वाले 5 लाख से अधिक भारतीय अमेरिकियों के लिए गर्व का प्रतीक है। हालांकि इसकी यही भव्यता कुछ लोगों की आंखों में खटक रही है। ताजा मामला अमेरिकी यूट्यूबर जेस ह्यूज से जुड़ा है। उसने प्रतिमा की तस्वीर शेयर करते हुए खुलेआम धमकी दी कि जब वो सत्ता में आएंगे इसे उखाड़ फेंकेंगे। अमेरिका में होने वाले चुनाव से ठीक पहले आई इस नफरती धमकी से हिंदू आस्था पर मंडराते खतरे की झलक मिलती है। चुनावी माहौल में ऐसा बयान देना कोई इत्तफाक नहीं है। वोटों के ध्रुवीकरण की गहरी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन इस बार नफरत फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिला है। इराक और अफगानिस्तान युद्ध में शामिल रहे पूर्व अमेरिकी सैनिक रुचिर बख्शी ने इस पोस्ट पर कड़ा पलटवार किया। रुचिर बख्शी ने लिखा कि उन्होंने अमेरिकी वर्दी पहनकर अपना परिवार छोड़कर युद्ध के मैदान में इसलिए सेवा नहीं दी थी कि कोई टॉक शो होस्ट उनके धर्म पर हमले का ऐलान कर दे। उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों और हिंदुओं के साथ देश की रक्षा की है। युद्ध के मैदान में कभी किसी ने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनके कई साथियों ने शहादत दी। उन्होंने इसलिए जान नहीं गंवाई कि कोई दूसरों के धर्म को तबाह करने का सपना देखे। रुचिर बख्शी के इस बेबाक जवाब को नॉर्थ अमेरिका के हिंदू संगठनों और दूसरे सैनिकों का भारी समर्थन मिला है। और लोगों का कहना है कि टेक्सास में टैक्स देने वाले, व्यापार चलाने वाले, अमेरिकी सेना में सेवाएं देने वाले हिंदू समुदाय के पूजा स्थलों पर हमला अमेरिका के संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता का अपमान है। वैसे इस हनुमान प्रतिमा को निशाना बनाए जाने का यह पहला मामला नहीं है। 2024 में स्थापना के वक्त स्थानीय चर्च और कुछ कट्टरपंथियों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक किया था, हटाने की मांग भी की थी। वहीं साल 2025 में रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन प्रतिमा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, टेक्सास में झूठे भगवान की मूर्ति क्यों लगाने दी जा रही है। अमेरिका एक ईसाई देश है। टेक्सास ऐतिहासिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ रहा है, जहां पिछले 40 सालों से डेमोक्रेट्स को जीत नसीब ही नहीं हुई। लेकिन आगामी चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले एंटी इमिग्रेंट और हिंदू विरोधी बयानबाजी को तूल देने की खतरनाक कोशिश साफ दिख रही है। कट्टरपंथियों को जवाब देकर लोगों से साफ कर दिया है हालांकि कि कानून और संविधान के दायरे में बनी 90 फीट के हनुमान जी की यह प्रतिमा न सिर्फ हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है बल्कि अमेरिका की विविधता का भी प्रतीक है। और अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी, जो एक इंसान और रोबोट के बीच हुए रोमांचक मुकाबले से जुड़ी है। सैन फ्रांसिस्को के एक मिक्स मार्शल आर्ट्स केज में एक 6 फीट लंबे रोबोट ने इंसान को बुरी तरह किक और पंच लगाए हैं।
1: बिल्कुल अंजना, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। एक तरफ थे मशहूर अमेरिकी इन्फ्लुएंसर फ्रेंकी लापेना और दूसरी तरफ था 6 फीट का धातु और मशीनों से बना ताकतवर टर्मिनेटर रोबोट। और शुरू हो गई ह्यूमन वर्सेस ह्यूमनॉइड रोबोट की फाइट। जैसे ही फाइट की घंटी बजी, फ्रेंकी ने रोबोट पर घूंसों की बौछार कर दी। लेकिन लोहे के इस शरीर पर मुक्कों का असर ही कहां होना था। इसके बाद रोबोट ने जो पलटवार किया उसने सबके होश उड़ा दिए। रोबोट के पंच और किक इतने ताकतवर थे कि फ्रेंकी हवा में उछलकर केस के दूसरे कोने में जा गिरे। इंसान ने रोबोट बनाया और अब वही रोबोट इंसान को केज में मात दे रहा है। हालांकि इस फाइट में फ्रेंकी लापेना ने हार नहीं मानी और अंत तक डटे रहे। असल में ये अमेरिकी रोबोटिक्स कंपनी रोबोट एंटरटेनमेंट कॉम्बैट का एक एक्सपेरिमेंट था। ये रोबोट पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं बल्कि इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था। कंपनी अपने वर्चुअल रियलिटी कॉम्बैट गेम के प्रमोशन के लिए इस लाइव फाइट का आयोजन कर रही थी।
0: और इसी के साथ हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा देखते रहे।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: Ek to Vishram.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, माँ ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है, अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है। कितना गहरा उस परिवार का दुख होगा। पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता।
3: आईआईटी बॉम्बे पवई को राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है। उस आईआईटी पवई के डायरेक्टर पर क्या बीत रही होगी जिसका इस्तीफा आप ले रहे हैं। दोनों विषयों को गंभीरता से समझिए। बच्चे की मृत्यु का सभी को दुख है, संवेदना है। उसने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठे, क्राइम ब्रांच आए, पुलिस आए, इसकी एक निष्पक्ष जांच भी हो। साथ ही साथ नकल को भी तो रोकना शिक्षक का ही काम है, मैनेजमेंट का ही काम है।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और धोखा इस कलयुग का प्रसाद है, लाइन में लगे रहो, सबको मिलेगा। नमस्कार।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का पूरी तरह हो आर्थिक बहिष्कार, आतंकवाद परमाणु हथियारों की होड़ किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृहमंत्री अमित शाह एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में बोले, 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिन तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत फेल। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड, आर्टिकल 370 के लिए यामी को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर

0: सर्वश्रेष्ठ गीतकार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अनंतनाग.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में बात गठबंधन वाली राजनीति। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं, तो बंगाल में 2 सीटों पर 6 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति पर राजनीतिक माहौल जबरदस्त है और अटकलों का बाजार गर्म है। तो नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करके ममता बनर्जी ने बंगाल के चुनावी समीकरण में बड़ा उलटफेर कर दिया है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर तलवारें खिंच गई। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच तू-तू मैं-मे का खेल चल रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या 2027 में अखिलेश और राहुल की जोड़ी हमें नजर नहीं आएगी?
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तनातनी। यूपी चुनाव से पहले गठबंधन में टकराव। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की बड़ी डिमांड। क्या कांग्रेस को 100 सीटें देंगे अखिलेश? अखिलेश और राहुल तैयार तो कैसा कलेश? गठबंधन में रार, 2027 में कैसे होगा बेड़ा पार?
2: 403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें तो कितनी होगी? 806। तो सोचिए, बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। इसमें क्या खराब बात है? इसमें क्या बुरा लग रहा है आपको? डबल तैयारी हो रही है।
1: 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने चेहरों से सजी बीजेपी की चुनावी मशीनरी को चारों खाने चित कर दिया था। बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए। अब 2024 के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव 2027 के चुनावी बिसात बिछा चुके हैं। दावा यही है कि 2027 में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। यानी अखिलेश ये तय कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे।
3: समाजवादी पार्टी का जो पूर्व में गठबंधन था वही रहेगा।
1: 2027 चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान दोनों पार्टियां पहले ही कर चुकी हैं। अखिलेश यादव कई मौकों पर साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी यही मानती है कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन के सिवाय कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। सवाल यही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है तो दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से मतभेद और मनभेद वाले बयान सामने क्यों आ रहे हैं?
4: अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है कहीं भी, पूरे देश में नहीं है।
5: बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए भी।
1: अभी तक कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी की नीति और नियत पर सवाल उठा रहे थे। बीते कुछ वक्त से समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के बयान का विरोध किया है। दावा यही किया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस तभी तक चुनावी खेल में है जब तक समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार है।
6: कौन है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अलावा? बीएसपी

0: एक एमएलए थे उनकी डेथ हो, कांग्रेस के दो है और या तो बीजेपी के या समाजवादी पार्टी। तो जो लोग बात कर रहे हैं उनका यहाँ कुछ है ही नहीं, बीजेपी यही चाहती है।
1: दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। चर्चा यही है कि कांग्रेस इस बार 2017 के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लागू करवाना चाहती है, यानी कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन धर्म निभाते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें 107 से 120 सीटें दी जाएं। ये सीटें भी कांग्रेस की शर्तों पर मिले। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने इंटरनल मीटिंग में टॉप लीडरशिप को 150 से ज्यादा सीटों की लिस्ट सौंप दी है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि 2027 में बीजेपी तभी हारेगी जब कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर होगा। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में मिली बढ़त के चश्मे से देखें तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 217 पर आगे रहा। इसमें समाजवादी पार्टी 178 विधानसभा सीट पर और कांग्रेस 38 सीट पर। वहीं यूपी की सत्तारूढ़ बीजेपी पिछड़ गई। एनडीए सिर्फ 181 विधानसभा सीटों पर आगे रही। इसमें बीजेपी 169, आरएलडी 8, अपना दल 4 सीट पर, यानी राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मोदी और योगी की जोड़ी को देश के सबसे बड़े राज्य में पीछे किया। अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव की नीति एकदम स्पष्ट है। अगर गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई पेच फंसा तो सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को सीट बंटवारे की कोई जल्दबाजी नहीं है।
2: आज हम लोग संगठन के उन लोगों से मिले हैं जो उत्तर प्रदेश की रिजर्व सीटें हैं, जो सीटें समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई है। यहां सबने बैठकर के संकल्प लिया है कि अभी तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी आने वाले समय में।
1: अखिलेश अपनी तैयारियों के मुकम्मल होने के बाद सीटों के बंटवारे पर बात करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस को लगता है कि अगर गठबंधन में सीटें फाइनल करने में देरी हुई तो सीटों को लेकर बार्गेनिंग पावर को खो देगी और ऐसी स्थिति में तब कांग्रेस को अखिलेश यादव की दया पर ही गठबंधन करना पड़ेगा। अभी तक अनौपचारिक तौर पर भले ही गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई हो, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है।
3: समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी को पनौती मान रही है, जान रहे हैं कि उसको कितनी भी सीटें दे दें चुनाव जीत नहीं सकते। हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं और 5 सीटें भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जीत नहीं सकती है।
1: यही वजह है कि गठबंधन में छिड़ी जवाबी जंग पर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। मतलब यही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। इसमें सीट शेयरिंग से लेकर 2024 का प्रदर्शन दोहराना शामिल है, क्योंकि 2024 में पीडीए की बिसात पर मिली कामयाबी की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि अब मुद्दों और चुनावी माहौल दोनों में फर्क है।
4: देखना यह है कि क्या शीर्ष नेतृत्व पर कोई बातचीत स्तर पर हो पाती है या नहीं। शिवपाल यादव ने साफ कर दिया कि किसी के बात का कोई मतलब नहीं, तय तो सिर्फ दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
5: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मनभेद और मतभेद की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब है। देखना यही है कि अखिलेश सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की डिमांड पूरी करेंगे या फिर 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में ओवैसी को गठबंधन के साथियों की तलाश। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने का प्रस्ताव रख दिया है। अब गेंद इन दोनों यानी कि विपक्षी पार्टियों के पाले में, मतलब ओवैसी ने अपना चुनावी दांव चल दिया है।
1: 2027 के लड़ाई में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी की सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं। 2017, 2022 और 2024 में ओवैसी नाकाम रहे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर मिली बड़ी जीत के बाद ओवैसी को उत्तर प्रदेश चुनाव से बड़ी उम्मीद है। वजह है उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। ओवैसी का पूरा फोकस ऐसी ही सीटों पर है। यही वजह है कि विपक्ष

0: पार्टी ओवैसी की चुनावी नीति और नियत पर सवाल उठाती है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी वोट कटवा साबित होती है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है। ओवैसी अपने ऊपर लगने वाले आरोपों की परवाह नहीं करते, उल्टा यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के सामने अपना प्रस्ताव रखकर उन्होंने बड़ा दांव चल दिया है।
1: 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
0: ओवैसी का प्रस्ताव यही है कि 2 अक्टूबर तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तय करे कि उन्हें अपने गठबंधन का हिस्सा बनाएंगी या नहीं। अगर ओवैसी का ऑफर स्वीकार किया तो वो गठबंधन की शर्तों पर चुनाव लड़ेंगे नहीं तो अपने हिसाब से उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतारेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी में ओवैसी को लेकर कंफ्यूजन है।
2: समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है, ये मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में। ओवैसी साहब अगर चाहते हैं कि गठबंधन हो तो एक अपना प्रस्ताव भेजें, समाजवादी पार्टी उस पर विचार करेगी।
3: इनका जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से भुगतान आना होगा वो 3 अक्टूबर को आएगा, तो वो डेडलाइन हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी है कि 2 अक्टूबर के बाद, 3 अक्टूबर को बैंक खुलेगी तो आपका भुगतान कर देंगे। तो बेशक वो अपना काम करें, समाजवादी पार्टी की चिंता वो ना करें।
0: ओवैसी के नाम पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की राय बटी हुई है, वहीं कांग्रेस तो ओवैसी की राजनीति पर सवाल उठा रही है। भले ही ओवैसी के ऑफर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप चुप है, लेकिन उनकी पार्टी के साथ गठबंधन की उम्मीद कम है, क्योंकि विपक्ष को डर है कि ओवैसी से हाथ मिलाने से हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण भारी पड़ सकता है। इसे यूं समझिए, यूपी में मुस्लिमों का एक मुश्त वोट लेने वाले अखिलेश अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। अखिलेश जिस फॉर्मूले के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने में सफल रहे थे, उसी तौर तरीके से 2027 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव अपनी सियासी लाइन से एक इंच भी डिगना नहीं चाहते, यही वजह है कि ओवैसी के निशाने पर अखिलेश यादव भी हैं।
1: अब चुनाव आएगा, ये तमाम चमचे आएंगे, ये तमाम मीर जाफर आएंगे, मीर सादिक आएंगे और आकर वो आपको पुराना चरस चकाएंगे, हम सरकार बना रहे हैं। किसी को मालूम कितने मुस्लिम एमएलए थे समाजवादी के पास? 47, 47 थे, 47 थे, उसके बावजूद भी 100 मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटी गई थी। एक या दो को इंसाफ मिला, बाकी तड़प रही है इंसाफ के लिए।
4: उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की रिपोर्ट आपने देख ली, अब आपको हम टीम एनडीए से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से सबक लेते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी एनडीए के अंदर कील और कांटे दुरुस्त करने में जुट चुकी है। नाराज ओम प्रकाश राजभर को मना लिया है, संजय निषाद की नाराजगी दूर करने की कोशिशें बीजेपी कर रही है, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल जैसे सहयोगियों को किसी भी मुद्दे पर नाराज करने के मूड में बीजेपी बिल्कुल नहीं।
5: चुनाव में खटाखट खटाखट खटाखट, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? आप शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी।
0: 2027 चुनाव में टीम एनडीए कितनी एकजुट? क्या राजभर और संजय निषाद मारेंगे पलटी? कितनी सीटों पर बांध जाएंगे जयंत चौधरी? एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या? क्या योगी का चेहरा सहयोगियों को मंजूर है?
6: 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब, वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर, 2013 में जे वो भी रिपीट होने वाले,
0: गठबंधन की दुहाई, 2027 की बड़ी लड़ाई। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी से पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में मिशन 2027 का बिगुल बजा दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं, संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ चुनाव को लेकर चिंतन और मंथन जारी है, तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले बीजेपी अपने सहयोगियों की नाराजगी दूर करने में जुट गई है। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। खबरें ये भी हैं कि 2027 के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में एनडीए के सहयोगियों को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। मतलब बीजेपी अपना कोटा कम करेगी और साथियों को ज्यादा सीटें देगी। मतलब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी कोई चुनावी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है।
1: मेरी मंशा है आने वाले दिनों में प्रदेश का बंटवारा होगा, प्रदेश का चार भागों में बंटवारा होगा। जिस दिन पूर्वांचल राज्य अलग होगा, सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री कोई जाति का होगा तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री पूर्वांचल का होगा। इसको ध्यान में रखकर के काम करना।
7: समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा। उस पर
8: कहने का ये है कि आप जैसे मुलाकात आपने की है, बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
7: कुछ तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग। अगर वो बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे, या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी?
0: ऐसा क्यों? इसे आप टीम एनडीए का हिस्सा सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी को दूर करने की इनसाइड स्टोरी से समझ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा हैं और योगी सरकार में मंत्री भी। बीते कुछ वक्त से राजभर यही मांग कर रहे थे कि उनके मंत्रालय के प्रमुख सचिव को हटाया जाए। मांग को अनसुना कर दिया गया तो राजभर ने दबाव की राजनीति का सहारा लिया। अचानक अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी बंद कर दी और यूपी के चार टुकड़े होंगे वाला बयान देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। बस फिर क्या था, अखिलेश के खिलाफ 10 दिनों की चुप्पी ने रंग दिखाया। राजभर का दबाव काम आया और मुख्यमंत्री ने राजभर के पंचायती राज के प्रमुख सचिव अनिल कुमार को हटा दिया। ओम प्रकाश राजभर अपने विभाग के प्रमुख सचिव से बेहद नाराज थे और खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और उन्हें अपने विभाग से हटाने को लेकर आमादा थे। ऐसे में राजभर की मुराद पूरी करके बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया है। राजभर ने अपने अंदाज में अखिलेश पर सियासी हमले शुरू कर दिए।
9: वो किस पीडीए की बात करते हैं? अगर जो उनके रथ पे लिखा गया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो सामान्य वर्ग कहाँ गया? उनका रथ भी भगवा कलर है। वो याद दिला रहा है कि देखो हम ही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कि हम नकली भगवा कलर बनाए हैं कि आप देखो पहचानो हमको, हम वही हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाए।
0: इससे पहले संजय निषाद की नाराजगी खुलकर सामने थी और अगर राजभर ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया होता तो एनडीए मुश्किल में आ जाता। अब ये समझिए कि बीजेपी के लिए गठबंधन जरूरी क्यों है। इस वक्त टीम एनडीए का हिस्सा चार क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अपना दल सोनेलाल, जिसकी अगुवाई अनुप्रिया पटेल करती हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए की अहम सहयोगी। अपना दल पूर्वांचल और मध्य यूपी में कुर्मी और दूसरे ओबीसी मतदाताओं पर मजबूत पकड़ रखती है। राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं और इस चुनाव में एनडीए का हिस्सा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और किसान मतदाताओं के बीच आरएलडी की अच्छी पैठ है। संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी भी टीम एनडीए का हिस्सा है और खासकर निषाद और मल्ला समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। ये पार्टी गंगा यमुना के तटीय इलाकों और पूर्वांचल में मल्ला, निषाद और विंध जातियों को साधने का काम करती है। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी एनडीए की साझेदार है। राजभर की पार्टी के जरिए एनडीए राजभर और अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को अपने पाले में मजबूत कर रहा है। यानी पूरब से पश्चिम तक एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग या जातिगत समीकरण को साधने के लिए ये गठबंधन जरूरी है। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों के जरिए जाति की सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ 2027 के लिए सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं।
10: ये लड़ाई एक लंबी चलने वाली लड़ाई है और हम भी ठहरने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सत्ता के मद में हम लोग मौन हो जाएंगे। जो रामद्रोही होगा उससे अंतिम दम तक निपटेंगे और पूरी ताकत से उसका मुकाबला भी करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं।
0: मुख्यमंत्री योगी के तर्कश में हिंदुत्व और लॉ एंड ऑर्डर का तीर मौजूद है। ये वही तीर है जिसे योगी अपनी हर रैली हर भाषण में चला रहे हैं।
11: यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा।
0: मतलब यही है कि बीजेपी ने 2027 का एजेंडा सेट कर दिया है, तो एनडीए में भी अभी ऑल इज वेल है। देखना यही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक होने के बाद भी टीम एनडीए एकजुट रहती है या फिर बगावत का बिगुल बज सकता है।
4: उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर तनातनी की खबर आपने देखी। तनातनी के बीच 2027 चुनाव से पहले 10 राज्यसभा सीटों का चुनाव भी होना है, उसका ऐलान हुआ है। 16 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस समय हमारे साथ हैं, और अभिषेक ये बताइए कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का चुनावी समीकरण क्या है?
12: देखिए सईद, 2027 के विधानसभा चुनाव हैं, उसके पहले 16 अक्टूबर को 10 राज्यसभा की सीटों के लिए वोटिंग होगी। दोनों पार्टियों के लिए ये नाक का सवाल होने वाला है। अगर आप देखें तो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीती, बीजेपी 7 सीटें जीती, और तीसरी सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो कि आलोक रंजन थे, बीजेपी ने वहां पर अपना कैंडिडेट उतारा और वो सीट जीत ली। बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग हुई थी, समाजवादी पार्टी के कई विधायक टूटे थे। इस बार फिर इसकी संभावना बनेगी। बीजेपी समाजवादी पार्टी के पास सरप्लस वोट काफी है, चूंकि 403 विधायक यहां हैं, लेकिन अब इस वक्त जो मौजूदा विधायकों की संख्या है वो 397 है। ऐसे में 37 वोटों से थोड़ा ज्यादा एक वोट की कीमत है, यानी कि प्रथम वरीयता वाला। तो ऐसी स्थिति में 2 सीटें आराम से सपा जीतेगी, 7 आराम से बीजेपी जीतेगी, लेकिन 1 सीट की लड़ाई आएगी। तो क्या सपा इस बार अपने वो तमाम साम दाम दंड भेद बीजेपी के सामने रख पाएगी? जिस तरीके से बीजेपी ने पिछली बार संजय सेठ को खड़ा करके 8वीं सीट जीत ली थी, एक तरीके से सपा के मुंह से वो सीटें निकाली थी, इस बार समाजवादी पार्टी बेहद सतर्क दिख रही है। और चुनाव के पहले क्या बड़े पैमाने पर बीजेपी के भीतर से कोई क्रॉस वोटिंग हो पाएगी, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि तीसरी सीट बेहद अहम होगी। और कहते हैं कि बीजेपी को थोड़ी भी संभावना दिखती है तो वो नहीं छोड़ती है। लेकिन एक बात और इसे बता दें कि जातीय समीकरणों का ख्याल रखना पड़ेगा। इस बार बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव तो है ही हैं, शायद उनको दोबारा भेजा जाए। इसके अलावा एक मुस्लिम चेहरा जा सकता है सपा की तरफ से, एक ओबीसी को उतार सकती है बीजेपी। बीजेपी भी इस बार 2027 के मद्देनजर बेहद कह सकते हैं कि जो जातीय समीकरण उसको साधना होगा। कई ब्राह्मण चेहरे थे, कई ओबीसी दलित, देखना है कौन चेहरे सामने आते हैं। लेकिन इस बार की लड़ाई आसान सचमुच नहीं होने वाली है, एक सीट फिर फंसेगी और उस पर क्रॉस वोटिंग पर सबकी नजर होगी। सही।
4: और अब गठबंधन की राजनीति का बंगाल अध्याय आपको दिखाते हैं। बंगाल की 2 सीटें नंदीग्राम और रेजू नगर में उपचुनाव है। उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन रेजू नगर में मुकाबला त्रिकोणीय है क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी और ममता की पार्टी के बीच चुनावी युद्ध है। सवाल यही कि नंदीग्राम में कांग्रेस का समर्थन तो रेजू नगर में गठबंधन फेल क्यों?
0: नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी की तरफ से घोषित उम्मीदवार संचिता प्रधान ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद नाम वापस ले लिया। मतलब वोटिंग से पहले ही ममता की पार्टी चुनावी लड़ाई से बाहर हो गई। शुभेंदु के नहले पर नहला चलते हुए ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की अगुवाई में 2029 की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया।
13: पहले से डिसाइड किया था कांग्रेस को इस सीट में आप सपोर्ट करेंगे, उसका कैंडिडेट अच्छा है, इसी के लिए हम जो करेंगे अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम होंगे कामयाब। ये मेरे को इशारा ही काफी है।
0: नंदीग्राम सीट पर ममता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन रिजी नगर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार को मैदान में उतारा

0: सरल शब्दों में समझें तो गठबंधन सिर्फ एक सीट पर है, वही एक सीट जहां ममता ने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया और दूसरी सीट पर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है। ममता का यही फैसला बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने वाले दावे पर सवाल खड़े करता है। अगर कांग्रेस के साथ ममता गठबंधन को तैयार है तो ये कैसा गठबंधन है? क्या नंदीग्राम में साख बचाने के लिए ममता ने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया? क्योंकि पार्टी में बगावत के बाद अब ममता खुद अलग थलग पड़ चुकी हैं। पार्टी के तमाम विधायक और सांसदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
1: टू सेटिस्फाई द ईगो ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, ऑलरेडी आपने, आपका पता है कि उन्होंने बोला था पहले, नाम भी नहीं रखने दूंगा, निशाना भी नहीं रखने दूंगा।
2: दशक में बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे ईरान से युद्ध नहीं फिर भी क्यों ईरान पर भड़के हुए हैं ट्रंप। आप देखते रहिए दशक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: बहुत टायर्ड हो गई।
8: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
9: लायन डेट नट बाइट्स।
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ। तू
12: चार्ज हुआ यार।
13: बैट किसका है?
14: टाटा AIG है तो भरोसा है।
15: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर क्राइम से।
3: आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी जी के बयान पर, एक संदेह पैदा करने वाला घटना है कि बिहार में आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।
4: इस तरह की घटना घटी है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, समाज को बदनाम कर देने वाली ये घटना है। और एक बेटी होने के नाते जब ये घटनाएं घर से करीब होती है तो निश्चित रूप से मन और ज्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ जो विपक्ष की टिप्पणी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करना अपने आप में ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी संकुचित है।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर ईरान अमेरिका युद्ध पर आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत। कुछ देर पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण खत्म हुआ है। ट्रंप ने करीब 40 मिनट का भाषण दिया। ट्रंप ने कई मुद्दों पर बोला लेकिन पूरा फोकस ईरान अमेरिका युद्ध पर था। 40 मिनट के भाषण का सारांश यही है कि ईरान को लेकर ट्रंप का रुख सख्त है। यूएन के मंच से ट्रंप ने अपनी धमकी को दोहरा दिया, अगर ईरान डील के लिए तैयार नहीं होगा तो हमले जारी रहेंगे। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यही कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हम हासिल नहीं करने देंगे। और तो और ट्रंप ने ईरान के साथ हॉर्मुज के साथ मिड टर्म चुनाव के बाद डील का उल्लेख भी किया। ट्रंप के भाषण को एक लाइन में अगर हम समझें तो अभी स्थायी युद्ध विराम की मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी के साथ साथ यूएन से ईरान की आर्थिक नाकेबंदी की अपील कर दी। मतलब ईरान के साथ समझौते के बजाय युद्ध जारी रखने के संकेत ट्रंप ने दिए।

दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण पर टिकी थी। उम्मीद यही थी कि करीब 7 महीने से जारी युद्ध को लेकर ट्रंप ईरान के साथ समझौते का संकेत दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने अपनी भाषण में

0: लेकिन दुनिया को पता है कि वादे तो वादे हैं, वादों का क्या। आज तक ब्यूरो।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर युद्ध को लेकर कई बड़ी बातें कही, हमले का कारण बताया, हमले का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा, हॉर्मुज को लेकर ईरान के साथ बड़ी डील की भविष्यवाणी की। ट्रंप के भाषण के दौरान मिड टर्म चुनाव से भी उन्होंने जोड़ा, ट्रंप ने जो कहा क्यों कहा समझते हैं। वॉशिंगटन में मौजूद हमारे संवाददाता रोहित शर्मा से।
2: राष्ट्रपति ट्रंप ने आज यूएनजे में जिनका जो स्पीच था उसको बहुत पूरी दुनिया से बहुत बेसब्री से सुन रही थी, वो क्या कहने वाले। उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही, स्पेशली ईरान को लेके। जब ईरान की बात आई तो उन्होंने कहा कि वो उनके वो एक डिसीजन लेने वाले हैं, या तो ईरान को पूरी तरह से वो खत्म कर दे या फिर वेट करके एक डील करे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का ऐसा मानना है कि मिड टर्म्स के बाद जो चुनाव होने वाले नवंबर में, उसके बाद शायद ईरान एक डील करे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा पूरी दुनिया को कि मैं एक मैन ऑफ एक्शन हूं, मैंने हमेशा से एक्ट किया है। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने 9/11 जैसे जो इसके 25वीं सालगिरह बनाई है अमेरिका ने, अभी उसको सेलिब्रेट किया था, लोगों को याद दिलाया कि ईरान में किस तरह से हमेशा से एक अमेरिका का दुश्मन रहा है, और जो भी एक्शन उन्होंने लिए हैं वो मानवता के लिए लिए हैं। जहां तक रशिया और यूक्रेन की बात है, उन्होंने कहा कि कल वो जेलेंस्की से जो बातचीत हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट की आने वाले समय में शायद हो सकता है डील बहुत जल्दी हो जाए। जेलेंस्की जो है वो यूएनजे में आए हुए हैं, वो बाकी के जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, और भारत के लिए बहुत बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हो सकता है जो रिसेंटली पास्ड बिल है, जो रशिया सैंक्शंस बिल है, जिसमें भारत पे और चाइना पे और ऐसे जो बाकी देश है जो रशिया से एनर्जी लेते हैं, ऑयल लेते हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस, उनके ऊपर टैरिफ्स जो है अमेरिका लगा सकता है। उन्होंने कहा हो सकता है मैं इस शक्ति का इस्तेमाल करूं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि यूएन जो है उसे रिफॉर्म करने की जरूरत है यूनाइटेड नेशंस को। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड मैसेज गया है पूरी दुनिया को। हालांकि उन्होंने कोई बड़े डिक्लेरेशन नहीं किए, बड़े बोल्ड डिक्लेरेशन नहीं किए। ये जरूर कहा है, सेक्रेटरी रूबियो ने भी कहा कि अगर ईरान की लीडरशिप मिलना चाहती है, ईरान की लीडरशिप कोई बात करना चाहती है तो वो ओपन है, और हो सकता है कि इस तरह की चीजें हो। लेकिन आज जो है उनका स्केड्यूल यूनाइटेड नेशंस पे काफी ज्यादा पैक्ड है। वो जीसीसी के नेताओं से मिलने वाले, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मिलकर एक डील साइन किया है, ट्रायलेटरल डील, तो जिसमें ग्रीनलैंड को जो है अमेरिका अब यूज कर सकता है, वहां पे अपनी मिलिट्री फोर्सेज भेज सकता है, जिसका जिक्र प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में भी कहा। तो ऑल इन ऑल 30 मिनट का जगभग ये जो स्पीच था, इसमें दो बड़ी बातें सामने आई हैं। एक और पहली ये कि ईरान को लेकर अभी भी उन्होंने एक कंफ्यूजन जो है उनके दिमाग में है, उन्होंने जाहिर किया कि मैं खत्म कर सकता हूं ईरान को हमेशा के लिए, या मैं उनकी हेल्प कर सकता हूं रीबिल्ड करने के लिए अगर वो अच्छी डील करते हैं अमेरिका के साथ तो। और दूसरा रशिया यूक्रेन को लेकर उनका ऐसा कहना है कि अगर हम दबाव बनाएं रशिया के ऊपर तो हो सकता है कि बहुत जल्दी वहां पे एक सोल्यूशन निकल जाए।
1: न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। दुनिया की नजरें टिकी हैं कि यूएन की बैठक में अमेरिका ईरान युद्ध का स्थायी समाधान निकलेगा या नहीं। हालांकि बैठक से ठीक पहले अमेरिका और ईरान की तरफ से आए बयानों को डिकोड करें तो स्थायी युद्ध विराम की संभावना बहुत कम है। आखिर युद्ध को लेकर दोनों देशों की तरफ से क्या क्या कहा गया, हम आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं।

0: ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी, हमला किया तो विध्वंसक होगा परिणाम। ट्रंप का ऐलान, गोला बारूद है तैयार।
1: सेटल द वॉर।
0: ना ट्रंप रुकेंगे ना तो ईरान झुकेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच, क्या निकलेगा समाधान? न्यूयॉर्क में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा लग चुका है। यूएन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। सवाल यही है कि क्या बातचीत के रास्ते युद्ध का समाधान निकलेगा? अगर यूएन की अहम बैठक से ठीक पहले दोनों मुल्कों की तरफ से दिए गए बयानों को सुने तो समाधान की राह में कांटे ही कांटे हैं। ईरान ने होर्मुज को लेकर अपना स्टैंड दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। ईरान होर्मुज के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा और वार्ता अब इसी जलवाद से जुड़ी हुई है। जब तक अमेरिका और दूसरे मुल्क अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं लाते तब तक उन्हें तेल और गैस की ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी नज़र से होर्मुज ईरान का है।

0: लेकिन ओमान का जल क्षेत्र भी इसका हिस्सा है। हुर्मुज को लेकर ईरान ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है, लेकिन इसे खोलने के लिए एक शर्त रखी है। ईरान की शर्त यही है कि अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाता है तो 7 दिनों में हुर्मुज खुल सकता है। अगर अमेरिका सैन्य दबाव कम करता है और ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटाता है तो ईरान 7 दिनों के अंदर हुर्मुज को फिर से खोल सकता है। ये प्रस्ताव 16 सितंबर को मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को भेजा गया था और न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी प्रतिनिधि मंडल के पास अमेरिका के साथ कूटनीति को फिर से शुरू करने का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ IRGC ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका के एक हमले के बदले 10 हमले करेगा। अगर अमेरिका ईरान में किसी भी स्थान पर हमला करना चाहता है, न सिर्फ पिकैक्स माउंटेन पर और न ही केवल उस स्थान पर जिसकी उसने धमकी दी है, तो हम अमेरिकी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं अमेरिकी नेताओं और सत्ताधारी वर्ग को सलाह देता हूं कि वो उस प्रयास को न दोहराएं जिसमें वो पहले असफल रहे हैं। आज ईरान के लड़ाकों के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से दुश्मन के बड़े जहाजों को निशाना बनाने की क्षमता है। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से ईरान के साथ बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। मार्को रूबियो मानते हैं कि ईरान के साथ स्थायी समाधान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरह से तैयार है। हम इसके लिए तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ तय हुआ है, लेकिन हम निश्चित रूप से इस तरह की किसी चीज के लिए तैयार हैं। ट्रंप आमतौर पर दूसरे नेताओं से मिलने के लिए तैयार रहते हैं अगर बातचीत से समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है। ट्रंप का मानना है कि समस्याओं को हल करने के लिए लोगों से बातचीत करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे सहमत ही होंगे, लेकिन ये जरूरी है। अगर बातचीत से कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है तो अमेरिका उसका स्वागत करेगा। हालांकि ईरान की लीडरशिप को लेकर रूबियो ने सवाल उठाए हैं। रूबियो का आरोप है कि ईरान के साथ शांति वार्ता में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान के कट्टरपंथी मौलवी हैं, वही कट्टरपंथी जो नहीं चाहते कि युद्ध विराम हो। ईरान के साथ मुख्य मुद्दा यह है कि ईरान पर पागल मौलवियों का शासन है, ऐसे पागल मौलवियों का शासन है जिनके अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथी और प्रलयकारी सोच है। इन लोगों के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते। विश्व के नेता इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। आप जिस भी विश्व नेता से मिलते हैं वो राष्ट्रपति से कहता है, हम इस बात से सहमत हैं कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। आखिरकार किसी को तो इसके बारे में कुछ करना ही होगा, वरना ऐसा ही हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति भी यही दावा करते आए हैं कि ईरान को किसी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने का मौका नहीं दिया जा सकता। भले ही ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका में हैं, लेकिन ट्रंप ये चेतावनी देना नहीं भूलते कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। अमेरिका में गोले बारूद की कोई कमी नहीं है और वो अपने भंडार को बढ़ा रहे हैं। कायर और गद्दार ये कहना पसंद करेंगे कि अमेरिका के पास गोला बारूद की कमी है। ये सच नहीं है। हमारे पास हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गोला बारूद है और हम इसे अभूतपूर्व स्तर पर जमा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के मुताबिक UN की बैठक अमेरिका के वॉर क्राइम को दुनिया के सामने रखने का सबसे बड़ा मंच है।
1: यह स्वाभाविक है कि यह मंच एक ऐसी जगह होगी जहां ईरान के लोग और मिनाब स्कूल के शहीद बच्चों के परिजन अपनी बात रख सकेंगे। मिनाब का मामला एक ऐसा सबूत साबित हो रहा है जिसे वॉशिंगटन नजरअंदाज नहीं कर सकता। हाल ही में यून के एक पैनल ने पाया है कि यह एक युद्ध अपराध था और वॉशिंगटन उस काउंसिल से हट गया जो उसका पक्ष सुन सकती थी।
0: अब्बास अराक्ची ने युद्ध में UN की भूमिका पर संगीन सवाल उठाए हैं। अमेरिकी इजरायली हमलों और उसके बाद के घटनाक्रमों के मद्देनजर ईरान अभी भी युद्ध की स्थिति में है। अगर ईरान जैसे किसी देश में कहीं किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है तो वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। इस संगठन पर से भरोसा खत्म हो गया है। विश्वास बहाल करने का प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये दुनिया के साथ इस बात पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है कि संयुक्त राष्ट्र में विश्वास कैसे खो गया और इसे कैसे बहाल किया जा सकता है। हमारा सर्वोपरि उद्देश्य एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच का उपयोग करके ईरानी लोगों के अधिकारों, हितों और न्याय संगत उद्देश्य की रक्षा करना है। मतलब यही है कि ईरान किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकु।
6: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: GK Maxx.
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी
10: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
11: पापा
12: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
12: छक्का
11: सब कैशलेस हो गया है
12: हाँ ला भाई मेरा बैट वो अभी तो ठीक हुआ तू
13: चार्ज हुआ यार
14: बैट किसका है
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cool.

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: जो जमुई में जो घटना हुई, जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो बच्चियां जो हैं, जो महिलाएं जो हैं, जो युवती है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, शर्मसार कर देने वाला वो वीडियो है। दोषियों को जितनी कड़ी से भी कड़ी सजा दी जाए वो कम है। जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, पूरे देश भर में बिहार सरकार की थूथू हो रही है। यही सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया था कि यहां से चले जाइए मुंगेर, अगर कोई कुछ हो जाए, किसी को हाथ लगा दे, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आज बिहार में ये वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बच्चियां सुरक्षित पूरे बिहार में नहीं है। चाहे दिन हो, रात हो, घर हो, या सड़क हो, कॉलेज हो, या स्कूल हो, या अस्पताल हो। आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं, तो दे इस्तीफा अगर हिम्मत है तो।
2: I saw that. It's horrible and crimes against. I didn't understand you asking about crimes against women. No, crimes against women are just increasing. It's become unsafe for women. It was always unsafe, but it's become more and more increasingly violent towards women. And I think that there's no point talking about big schemes and programs if we can't even ensure the safety of women on our streets. So it's really something that all of us need to think about. Wherever there are state governments, and especially central government, they need to think about how they are going to ensure that women feel safe.

0: पूरी लस्सी पीने के बाद पुरवा यूं ही फेंक दिया बिना पानी लिए और पानी घोल के पिए, तो वो घूर के देखते हैं एक बार, गोरस बर्बाद कर दिया।
1: डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया कि भैया हुतियों ने अटैक कर दिया है, कुछ करिए भैया। उसने कहा नहीं करेंगे, हमारा हुतियों से डील हो गया है।
2: तुम तो साला डील माने नहीं, एक कमजोर प्रेसिडेंट एक घायल कुत्ते की तरह होता है।
1: हाँ भाई।
2: कुछ किसी को भी काट सकता है।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
3: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का हो पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार का, आतंकवाद और परमाणु हथियारों की होड किसी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृहमंत्री शाह, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक का काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अभी कुछ वक्त पहले ही हरियाणा के एक स्कूल में घुसकर एक लड़के ने सबके सामने एक टीचर को मार डाला चाकू से हमला कर। वो लड़का उस टीचर से एक तरफा प्यार करता था। अब ठीक ऐसी ही एक कहानी यूपी के लखीमपुर खीरी के एक स्कूल में दोहराई गई। एक शख्स पिस्टल लेकर स्कूल में दाखिल होता है, इसके बाद वो एक टीचर से कहता है कि या तो वो उसे गोली मार दे वरना वो उसे मार डालेगा। इसके बाद स्कूल के अंदर 2 गोलियां चलती हैं।
2: पहले फरीदाबाद और अब लखीमपुर खीरी, दोनों ही वारदातें स्कूली बच्चों की आंखों के सामने, दोनों ही वारदात का शिकार स्कूल टीचर और दोनों ही वारदातों में कातिल एक तरफा आशिक। दिल्ली के करीब मौजूद फरीदाबाद से बमुश्किल 1.5 महीने पहले सामने आई ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी, जब एक सिरफिरे ने एक स्कूल में घुसकर एक टीचर को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया था। तब कातिल ने हमले में मारी गई टीचर पर महज 34 सेकंड में चाकुओं के 34 वार किए थे। एक टीचर पर हुए उस जानलेवा हमले की तस्वीरें तब स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अब दिल्ली से करीब 425 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी ठीक ऐसी ही एक और वारदात हुई है। यहाँ भी एक सिरफिरे नौजवान ने एक स्कूल में घुसकर पहले एक टीचर को अगवा करने और बंधक बनाने की कोशिश की और फिर उसे अपने साथ लाए गए तमंचे से एक एक कर 4 गोलियां मारकर उसकी जान ली। मासूम बच्चों की आंखों के सामने स्कूल में हुई इस वारदात की कुछ तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये उन्हीं सीसीटीवी तस्वीरों का एक हिस्सा है। इन दोनों ही वारदातों में फर्क बस इतना है कि पहली वारदात में कत्ल का हथियार एक चाकू बना जबकि दूसरी वारदात में तमंचा। अगर किसी और फर्क की बात करें तो वो ये कि लखीमपुर खीरी में टीचर की हत्या करने वाले सिरफिरे शख्स ने टीचर की जान लेने के बाद खुद को भी गोली मारकर खत्म कर लिया, जबकि फरीदाबाद का कातिल मौके से भाग छूटा था। लेकिन स्कूली बच्चों की आंखों के सामने हुई इन दोनों ही वारदातों ने बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी दहला कर रख दिया। इसके साथ ही ये बात भी उभर कर सामने आई कि नए दौर में रिजेक्शन या ब्रेकअप का अंजाम कई बार कितना खतरनाक हो सकता है। लखीमपुर खीरी के पौश इलाके में मौजूद यही वो चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल है जहां सोमवार की सुबह टीचर के कत्ल की वारदात हुई। स्कूल में इन दिनों बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं। सुबह करीब 11:30 बजे इम्तिहान देने के बाद बच्चे घर जाने की तैयारी कर रहे थे। स्कूल में अभिभावकों का आना

0: ताना लगा हुआ था। तभी एक नौजवान अपने साथ एक पिट्ठू बैग लिए दंदनाता हुआ स्कूल में घुस आया। इत्तेफाक से इसी स्कूल में चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर निशात फातिमा भी तब क्लास के बाहर स्कूल कैंपस में खड़ी थी। निशात को पहले से जानने वाला वो नौजवान सीधे उसके पास पहुंचा और उसे पकड़कर खींचता हुआ अपने साथ स्कूल के फर्स्ट फ्लोर में लेकर जाने लगा। लड़के के तेवर और गुस्से को देखकर वहां मौजूद किसी भी टीचर या स्टाफ की हिम्मत नहीं हुई कि वो लड़के को रोक पाए। इसके बाद नौजवान निशात को लेकर सीधे फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में पहुंचा और वहां अपने साथ लाए गए दो तमंचों में से एक निशात के हाथों में थमाकर ये कहने लगा कि तुम मेरी जान ले लो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। निशात घबरा गई मगर उसने गोली नहीं चलाई। इसी बीच निशात ने खुद को बचाने के लिए एक क्लासरूम में छुपने की भी कोशिश की मगर नाकाम रही। उधर शोर शराबा सुनकर कुछ टीचर निशात की मदद के लिए पहुंचे लेकिन लड़के ने सभी को धमकाते हुए कहा कि अगर किसी ने भी उनके करीब आने की कोशिश की तो वो गोली चला देगा। इधर निशात ने गोली चलाने से मना किया और उधर लड़के ने अपने पास मौजूद दूसरे तमंचे से सीधे निशात पर फायरिंग कर दी। उसने एक के बाद एक निशात को चार गोलियां मारी और फिर आखिर में खुद को भी एक गोली मारकर खत्म कर दी।
1: आप लोग डर गए थे?
2: हाँ अंकल।
1: हाँ। सब लोग डर गए थे?
2: चार गोलियां चली, चार चार गोलियां चली।
1: अच्छा?
2: हाँ चार चली, फिर आवाज आई, मैं दौड़कर पीछे मुड़ा, तभी
3: यहाँ निशान में एक टीचर है, उस अंदर आया और उसका यहाँ पर पूरा काट दिया है।
1: सर नेचर कैसी थी, उसका नेचर कैसा था जो आपके यहाँ पढ़ा?
4: बहुत बढ़िया नेचर था,
1: मिलनसार थी।
4: हाँ मिलनसार बिल्कुल। मॉर्निंग में हम लोग की मॉर्निंग हुई है, मॉर्निंग में ही अभी हम लोग की मॉर्निंग हुई है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था।
1: अच्छा ये लड़का जिस पे आरोप है कभी आया यहाँ पर?
4: मुझे नहीं मालूम ये तो
1: सवाल उठता है ना, एक लड़का स्कूल के अंदर बैग में तमंचा लेकर चला आए,
4: ऐसा इतना तो जानकारी अगर होती तो फिर आपको बताना देते हूँ।
5: लगभग 11:30 बजे के करीब चिल्ड्रंस अकेडमी स्कूल है, क्लास 5th तक का ये स्कूल है, यहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना के क्रम में घटनाक्रम इस प्रकार पाया गया है कि एक यहाँ टीचर पढ़ाती हैं निशात फातिमा, लगभग 1 साल से यहाँ पढ़ाती थी, लगभग 26 साल की लड़की है निशात फातिमा, और उनसे मिलने के लिए यहाँ पर एक लड़का आया था, लगभग 27-28 साल का है, उसका नाम है मोहम्मद सऊद, और ये लड़का उससे मिलने आया ग्राउंड फ्लोर पर और उसको लेकर ये यहाँ सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर कॉरिडोर गया और वहाँ जाकर ये आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। उसी बातचीत के क्रम में यहाँ चिल्ड्रंस एकेडमी का कोई स्टाफ भी उनके पीछे गया और जब वहाँ कॉरिडोर में पहुँचे तो आपसी बातचीत के बीच उस लड़के ने अपने बैग से एक तमंचा निकाल कर उस लड़की के ऊपर फायर किया है और फिर अपने ऊपर फायर किया है। मौके पर लड़की निशात फातिमा और जो लड़का है मोहम्मद सऊद, दोनों की मृत्यु हो गई है और फोरेंसिक टीम यहाँ मौजूद है, सभी अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं, घर वालों से संपर्क करके उनसे बातचीत की जा रही है और अन्य सभी विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
0: डीएम ऑफिस के बिल्कुल करीब एक स्कूल में हुई इस भयानक वारदात की खबर मिलते ही डीएम समेत पूरा का पूरा पुलिस महकमा मौके वारदात पर पहुंच गया और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। पुलिस ने दोनों ही शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच आगे बढ़ाई। पता चला कि 26 साल की निशात फातिमा का कत्ल कर अपनी जान देने वाले 28 साल के लड़के का नाम सऊद अंसारी था। निशात और उसका परिवार कभी सऊद के मकान में ही किराए पर रहता था, यहीं से दोनों एक दूसरे को जानते थे और उनमें बात मुलाकात भी होती थी। लेकिन बात मुलाकातों के बाद एक दिन निशात का उससे ब्रेकअप कर लेना उसके लिए इतना खौफनाक साबित होगा ये खुद निशात ने भी कभी नहीं सोचा था। अब इस वारदात के बाद निशात के भाइयों और रिश्तेदारों का कहना है कि सऊद निशात को कई सालों से परेशान कर रहा था और उससे शादी करने की जिद पर अड़ा था लेकिन निशात इसके लिए तैयार नहीं। निशात को लेकर पड़ोसियों का कहना है कि वो बहुत शांत मिजाज की लड़की थी।
6: ये निशात फातिमा का है
1: और बगल वाला?
6: बगल वाला उनके पिताजी का है, सऊद के पिताजी का।
1: अच्छा, ये दोनों घर एक जैसे बने?
6: हाँ दोनों एक जैसे बने, इन लड़की के पिताजी और लड़के के पिताजी दोनों दोस्त है। अच्छा। इसलिए दोनों ने साथ में ही बनवाया था।
1: और दोनों घर एक ही डिजाइन के?
6: एक ही डिजाइन के हैं और अपोजिट।
1: किस तरह की थी ये बच्ची?
6: बहुत ही सीधी थी और ये लोग सुमेर नगर के रहने

0: वाले यहाँ बसे थे आके, और इंडिया टीचर इस चिल्ड्रन एकेडमी में टीचर्स थी, और बहुत ही सीधी थी, किसी से लेना देना नहीं था।
1: आप लोग भी नहीं जानते थे कि टीचर है?
0: हम लोग भी नहीं जानते थे, इतनी सीधी थी। मतलब वो साल भर से यहाँ पढ़ा रही थी, हमें बाद में पता चला।
1: अच्छा, और सामने घर है आपका?
0: सामने घर है, और बहुत ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं था, घर में ही रहते
1: कभी
0: थे वो लोग।
1: साउथ का आना जाना इनके घर, जो लड़का था उसका आना जाना इनके घर आना जाना?
0: नहीं, यहाँ नहीं है वो लोग। उनका जो मेन घर है वो नौरंगाबाद फेमस मैदान में है।
1: यहाँ कभी आता था साउथ आया?
0: नहीं, उनके फैमिलीज वाले आते रहते हैं कभी कभार, उनके घर के फैमिलीज टर्म्स
1: अभी
0: हैं। हाँ, वो आते हैं कभी, उनके फादर आते हैं।
2: अभी ये चिल्ड्रन एकेडमी में मेरी सगी भतीजी है निशात फातिमा, टीचर थी, वहीं पढ़ा रही थी। और आज मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है कि एक लड़का हाथों में वेपन से लेकर के तमंचा खुलेआम लेकर के स्कूल के अंदर घुस जाता है, और उसके बाद जा करके भरे कैंपस में लड़की को, जो वहाँ टीचर है, उसको ले जाकर के ऊपर गोलियां मार देता है। गोली मारने के बाद खुद सुसाइड कर लेता है, लेकिन स्कूल प्रबंधक या प्रिंसिपल महोदया द्वारा किसी तरह की कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया गया, ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी थी। यदि उसको डिटेन किया जाता गेट पर, तो शायद इस तरह की घटना एक टीचर के साथ न होती। निर्मम हत्या हुई उस लड़की की, उस लड़की की मैं चाचा हूं, इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे तो न्याय मिलना चाहिए। इस तरह के स्कूल अपने कमियों को छिपाने के लिए अभी तक किसी तरह का उन्होंने पुलिस में या अन्य कार्रवाई नहीं की है।
3: क्या लगता है कि विद्यालय प्रबंधक की जिम्मेदारी है सुरक्षा?
2: नहीं, बिल्कुल विद्यालय प्रबंधक की जिम्मेदारी है। यदि उनके कैंपस में जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं और कैंपस के अंदर घटना घट रही, तो उनकी लायबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है, उस टीचर की जिम्मेदारी तो निभाए। प्रबंधक या प्रिंसिपल द्वारा किसी तरह का कोई अपने तरफ से एक्शन नहीं लिया गया।
4: इस वारदात के सामने आने के बाद जब पुलिस ने सऊद के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की, तो उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से उसके दिमाग में चल रही बातों की झलक मिल गई। सऊद ने इस वारदात से पहले इंस्टा पर एक स्टोरी लगाई, जिसमें उसने लिखा, हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें ये दुनिया छोड़नी भी पड़ेगी, मुझे माफ कर देना अगर मैंने जाने अनजाने आपका दिल दुखाया, अल्लाह हाफिज। जबकि एक दूसरे इंस्टा पोस्ट में उसने स्पेनिश में लिखा कि यूजर की मौत।
5: अस्सलाम वालेकुम सभी को। अगर अचानक मेरी मौत हो जाए तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि प्लीज अपने फोन और सोशल मीडिया से मेरी तस्वीरें हटा दें, मेरे मैसेज हटा दें और मेरे फेसबुक अकाउंट को रिपोर्ट कर दें। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई भी स्थायी नहीं है। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि एक दिन इसे छोड़कर चले जाएं। दुनिया अस्थायी है, लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली है। मेरी मौत के बाद मेरी तस्वीरें न देखें और न पोस्ट करें, मेरे लिए दुआ करें, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हमें हमारे पाप के लिए माफ करे और तब तक वफादार बने रहें। सभी से माफी मांगना एक सुन्नत है। मुझे माफ कर देना अगर मैंने कभी जानबूझकर या अनजाने में आपको दुख पहुंचाया हो, अगर मैंने आपको जाने अनजाने में इग्नोर किया हो, अगर मैंने आपको सामने या किसी और के जरिए बुरा कहा हो। मैं हर उस दर्द के लिए माफी मांगता हूँ जो मैंने आपको पहुंचाया, जब मेरी वजह से आपको कभी रोना पड़ा हो। अच्छा रहेगा कि हम अपनी आत्मा को साफ करें ताकि अल्लाह हमारी दुआ को स्वीकार करे। मैं आप सब के लिए भी यही करूंगा इंशाल्लाह। या रब्बुल आलमीन, हमें हिदायत, ईमान, तकवा और सब्र अता फरमा, आमीन। जब आप सुने कि मैं अब नहीं रहा, आरआईपी ना कहें और ना पोस्ट करें। मैं मुस्लिम हूं, इसलिए आप कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे हजरत मोहम्मद के उम्मती होने पर गर्व है। अल्लाह हाफिज।
4: कत्ल और खुदकुशी से पहले इंस्टा पर डाली गई सऊद की इस स्टोरी से साफ है कि वो ऐसी किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी पहले से ही कर रहा था, और इसी इरादे से उसने दो दो तमंचों का इंतजाम भी किया।
6: आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, इसी जगह पर बच्चे खड़े होते हैं स्कूल में छुट्टी होने के बाद। यहाँ पर बच्चों की भारी संख्या होती है, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं। इसी दौरान एक जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सऊद जो है निषाद को किस तरह से यहाँ से घसीटने की कोशिश कर रहा है, घसीटता है, घसीटते हुए वो फर्स्ट फ्लोर पर ले जाता है। वहाँ पर दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है, उसके बाद सऊद अपनी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है।
4: जानकारी के मुताबिक निषाद और सऊद का घर फिलहाल एक दूसरे से करीब 1 किलोमीटर के फासले पर है। सऊद के पिता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में हैं,

0: जबकि बड़े भाई का अपना कारोबार है। खुद सऊद बीकॉम के बाद बीएड कर रहा है। उधर निषाद के पिता मुंबई में रहते हैं, जबकि उसके दोनों भाई पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा भाई शादाब पीसीएस की तैयारी कर रहा है। दोनों का परिवार एक दूसरे को सालों से जानता है। करीब 12 साल पहले निषाद का परिवार सऊद के घर किराए पर रहता था और तभी से दोनों की एक दूसरे से जान पहचान थी। जानकारों की माने तो पहले सऊद निषाद को कभी कभार स्कूल छोड़ने भी जाता था, लेकिन हाल के दिनों में दोनों में बातचीत बंद थी, ब्रेकअप हो चुका था। इसके बाद भी सऊद ने निषाद का पीछा करना नहीं छोड़ा। निषाद के घर वालों ने सऊद के घर वालों से इसकी शिकायत भी की थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिलहाल इस वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन बिल्कुल डीएम ऑफिस के पास एक स्कूल में हुई इस वारदात ने लोगों को सख्ते में डाल दिया है। खासकर छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में जिस तरह से एक सिरफिरा नौजवान दो दो पिस्टल के साथ अंदर घुसने में कामयाब हुआ, वो सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।
1: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मनोचा मर्डर केस में बुधवार को उनके बेटे सुब्रत की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल कानपुर की एक अदालत ने विनीत मनोचा मर्डर केस के मामले में तीनों आरोपी यानी शालू और दोनों सुपारी किलर को 24 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का हुक्म दिया है। पुलिस कस्टडी की मियाद बुधवार दोपहर 12 बजे से शुरू होकर गुरुवार दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान उम्मीद है कि सुब्रत और शालू को आमने सामने बिठाकर कानपुर पुलिस पूछताछ करेगी। कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा मर्डर केस में बुधवार का दिन कानपुर पुलिस के लिए सबसे अहम दिन साबित होने जा रहा है। बुधवार यानी 23 सितंबर को ये पता चल जाएगा कि विनीत मिनोचा के कत्ल की साजिश अकेले उनकी बहू शालू ने रची थी, या इस साजिश में विनीत मिनोचा का बेटा और शालू का पति सुब्रत भी शामिल था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दो किश्तों में सुब्रत से 4 घंटे की पूछताछ और अब तक मिले सबूतों की बिना पर सुब्रत के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बहुत मुमकिन है या तो 23 सितंबर या फिर 24 सितंबर को कानपुर पुलिस सुब्रत को गिरफ्तार कर सकती है। विनीत मिनोचा के बेटे और शालू के पति सुब्रत की गिरफ्तारी के बीच अब तक कोई चीज जो रुकावट बनी हुई थी वो थी शालू और सुब्रत को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करना। मंगलवार को कानपुर की एक अदालत ने इस रुकावट को भी दूर कर दिया। कानपुर पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने शालू और दोनों सुपारी किलर यानी विशाल और राजकिशोर को 24 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का हुक्म सुना दिया। ये तीनों बुधवार दोपहर 12 बजे से गुरुवार दोपहर 12 बजे तक कानपुर पुलिस की कस्टडी में होंगे, यानी कुल 24 घंटे। और इन्हीं 24 घंटों में वो लम्हा भी आएगा जब शालू और सुब्रत आमने सामने होंगे और पुलिस दोनों से एक साथ पूछताछ कर रही होगी। अंदेशा यही है कि जैसे ही दोनों से पूछताछ खत्म होगी, सुब्रत को शायद गिरफ्तार कर लिया जाए, अपने ही पिता के कत्ल की साजिश रचने या उस साजिश में शामिल होने के इल्जाम।
2: पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड तीनों अक्यूज की मांगी थी। सालू की ओर से हम लोगों ने उसमें आपत्ति दाखिल की थी। पुलिस का ये कहना था कि विशाल ने ये बताया है कि सालू ने उसको फ्लैट की चाबी बनवा कर दी। हमने जो आपत्ति दाखिल की थी उसमें इस बात को कहा था कि अगर चाबी सालू ने विशाल को दी है तो सालू से चाबी के लिए क्यों पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाए। और रही बात यह कि आपको अगर कोई बयान लेना है तो आप जेल में भी ले सकते हैं, कितने बार भी ले सकते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय ने और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए तीनों अक्यूज की कल दोपहर 12 बजे से परसों दोपहर 12 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकार कर ली।
1: दरअसल कानपुर पुलिस पिछले हफ्ते से ही शालू की पुलिस कस्टडी की उम्मीद लगाए बैठी थी। इस पर 19 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन उस दिन वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई अधूरी रह गई और कोर्ट ने 22 सितंबर की अगली तारीख दे दी। 22 सितंबर को सुनवाई शुरू हुई। पुलिस ने कोर्ट के सामने कहा कि उसे शालू की कस्टडी इसलिए चाहिए क्योंकि वो उसे उस दुकान तक ले जाना चाहती है जहां से उसने घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी और फिर वही चाबी सुपारी किलर और घर के पुराने नौकर विशाल को सौंप दी। विशाल ने उसी

0: अभी से 5 सितंबर की रात घर का दरवाजा खोला और फिर अपने साथी राजकिशोर के साथ मिलकर विनीत मिनोचा का कत्ल कर दिया। हालांकि कानपुर पुलिस के अलावा खुद शालू की तरफ से उसके वकील ने भी कोर्ट में एक अर्जी दी थी। शालू के वकील का कहना था कि कानपुर पुलिस शालू के नाम पर इकरार जुर्म की जो बात कर रही है या फिर विशाल को चाबी देने की बात कर रही है वो गलत है। शालू ने कभी भी अपने ससुर के कत्ल की बात नहीं मानी, वो बेकसूर है। शालू की तरफ से उसके वकील ने कोर्ट से दरखास्त की कि शालू इस मर्डर केस के बारे में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान कलमबंद करना चाहती है, पर चूंकि अभी जांच शुरुआती स्टेज पर है लिहाजा कोर्ट ने शालू की ये मांग खारिज कर दी।
1: क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि शालू ने ये कहा कि हाँ हमने चाबी बनवाई और विशाल कह रहे हैं, जबकि सालू का कहना यह था कि हमने ऐसा कोई चाबी बनाने जैसा बयान दिया नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में जब पुलिस के सामने के बयान को वो डिनाय कर रही है तो हम माननीय न्यायालय के समक्ष अपना बयान देना चाहते थे और हो सकता अगर माननीय न्यायालय अनुमति दे देती तो हो सकता कुछ और भी गंभीर तथ्य सामने निकल कर आते, लेकिन माननीय न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
0: हालांकि शालू और दोनों सुपारी किलर की 24 घंटे की पुलिस कस्टडी देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस हिरासत के दौरान किसी को भी यातना न दी जाए, साथ ही रिमांड के दौरान की वीडियोग्राफी की जाए। शालू और दोनों सुपारी किलर इस वक्त कानपुर सेंट्रल जेल में बंद है। कोर्ट के आदेश के बाद कल दोपहर 12 बजे तीनों को जेल से बाहर निकाला जाएगा और फिर वो कानपुर पुलिस की हिरासत में होंगे। 24 घंटे की पूछताछ के बाद तीनों को वापस दोपहर 12 बजे जेल पहुंचाना होगा। अगर पुलिस को जरूरी लगा तो वो आगे पुलिस कस्टडी मांगने के लिए फिर से कोर्ट का रुख कर सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस हिरासत के दौरान शालू और सुब्रत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने के अलावा विशाल को भी सुब्रत और शालू के साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी। दरअसल विशाल ही वो कड़ी है जो ये जानता है कि विनीत मनोचा को मारने का हुक्म किसने दिया, शालू ने या फिर सुब्रत ने। शालू से जेल में मिलकर लौटे शालू के भाई ने इस बात पर हैरानी जताई कि पता नहीं विशाल ने मीडिया के सामने ऐसा बयान क्यों दिया कि उसने शालू के कहने पर विनीत मिनोचा को मारा था।
2: शालू ने कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया कि विशाल से उनका कोई ऐसा कन्वर्सेशन हुआ है, और विशाल का क्यों झूठ बोलना क्या है ये तो रिमांड में चीजें सामने आएंगी आएंगी, मुझे विश्वास है चीजें खुल के आएंगी कि झूठ क्यों बोला गया, किस दबाव में बोला गया।
0: शालू के भाई ने ये सवाल भी उठाया कि विशाल शालू से कहीं ज्यादा सुब्रत के करीब है। शालू के भाई के मुताबिक विशाल सुब्रत को या सुब्रत विशाल को पिछले 15 सालों से जानता था। शालू के भाई का ये भी कहना है कि विनीत मिनोचा के मर्डर के बाद से ही सुब्रत का रवैया बदला हुआ है। इस दौरान न उसने अपनी पत्नी शालू से मिलने या उससे संपर्क करने की कोशिश की, न ही उसका या उसके परिवार के किसी सदस्य का फोन उठा रहा।
3: क्या इस पूरी घटना के बाद एक बार भी आपकी सुब्रत से बात हुई है?
2: बिल्कुल भी नहीं हुई, कोई कॉल नहीं, कोई संपर्क नहीं हमारा उनसे,
3: उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया,
2: कोई संपर्क नहीं हुआ है।
3: क्या आपने संपर्क साधने की कोशिश की?
2: संपर्क शुरुआत में साधने की कोशिश की थी तो उनके परिवारजनों से ही था कि वो अभी बहुत मेंटल ट्रॉमा में है और वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं, यही सब बताया गया।
3: क्या आपके मन में सवाल थे, आपने परिवार वालों से इनसे पूछा कि शालू इतने बड़े जो पूरा घटना है उसके एपिसेंटर पे है, तो क्या उन्होंने जानने की भी कोशिश नहीं करी या फिर जो आपके वकील हैं उनके सामने पेश होके कुछ जानकारी साझा करने की कोशिश नहीं की?
2: वो कुछ नहीं हुआ, स्टार्टिंग में जब ये हुआ था तब उनका परिवार के सब सदस्यों ने बोला था हम मान नहीं सकते शालू ने ऐसा किया है, आज रवैया क्या है आप सब लोग देख ही रहे।
0: 23 सितंबर को भले ही सुब्रत और शालू आमने सामने होंगे, लेकिन इससे पहले ही पिछले हफ्ते 2 बार कानपुर पुलिस सुब्रत से लंबी पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ में कत्ल को लेकर शालू के रोल, विशाल के साथ खुद उसके रिश्ते, घर में पैसों को लेकर झगड़ा और पूरी साजिश में खुद उसकी भूमिका को लेकर तमाम सवाल पूछे गए।
4: कानपुर के चर्चित विनीत मिनोचा हत्याकांड में आज कोर्ट में सुनवाई के बाद शालू समेत तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली गई। कानपुर पुलिस ने सभी आरोपियों की 24 घंटे की रिमांड मांगते हुए यह अर्जी दाखिल की थी कि उन्हें शालू और विशाल को उस जगह ले जाकर तस्दीक करनी है जहां शालू ने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी विशाल को सौंपी थी। वहीं शालू के वकील ने इसका विरोध करते हुए एक अर्जी दाखिल की कि पुलिस द्वारा शालू के जिस कथित बयान का जिक्र किया जा रहा है वैसा बयान शालू ने कभी दिया ही नहीं और वह चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट के

0: सामने शालू का 164 का कलमबंद बयान दर्ज किया जाए। फिलहाल कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए सभी आरोपियों को 24 घंटे की पुलिस रिमांड में रहने का आदेश दिया है और साथ ही साथ ये भी आदेश दिया है कि पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और आरोपियों को किसी तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए। अब देखना यह है कि कल पुलिस रिमांड मिलने के बाद क्या कुछ नए तथ्य इस पूरे मामले में सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
1: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का हो पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार का, आतंकवाद और परमाणु हथियारों की होड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृहमंत्री शाह, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029

0: प्रदेश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक का काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: हिंदी फिल्म श्रीकांत को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्मयुग के लिए बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, वहीं फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तमिल स्टार धनुष को मिले 2 नेशनल अवार्ड, तमिल फिल्म रायन को बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो वहीं तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को अभिनय के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान। हिंदी फिल्म स्त्री 2 के गाने आज की रात के लिए, विजय गांगुली को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफी का पुरस्कार दिया गया, गाने में तमन्ना भाटिया नजर आई थी। तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 द रूल को मिले हैं 2 नेशनल अवार्ड, फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले ओरिजिनल और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड। फिल्म मैदान के गाने जाने दो के लिए मनोज मुंतशिर को मिला बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड, दूसरी बार हासिल किया है राष्ट्रीय सम्मान। छात्र सुसाइड के मामले में जातिवाद वाला मामला, आईआईटी बॉम्बे के बाद कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। आईडी बॉम्बे छात्र साहिल वाकुडे की मौत के मामले में पिता का बयान, बोले जल्द पूरी करें श्रीश केदारे और सूर्य नारायण दुल्ला की गिरफ्तारी हो, बेटे को लेकर का उसे सहने की बात कहकर मैंने गलती की। मुंबई में खाद्य सुरक्षा पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल निलंबित हुए, मलाड में 2,464 किलो से ज्यादा कथित मिलावटी घी जब्त किया गया, वर्सोवा में बिना लाइसेंस कारोबार पर रोक। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर को 3 दिनों तक काम बंद रहेगा, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। गणेश उत्सव के 9वें दिन भी लालबाग चौराहा के दरबार में भक्तों की भीड़ है, बप्पा का मनमोहक श्रृंगार देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं श्रद्धालु। लालबाग चौराहा के दरबार में संजय दत्त ने परिवार के साथ किए दर्शन, पूजा अर्चना, मत्था टेका। मुंबई के अंधेरी इलाके में अंधेरी चौराहा के दरबार में दिखी अयोध्या की भव्यता, इस वर्ष राम मंदिर के आधारित इस पंडाल को तैयार किया गया है। मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान दिख रहे हैं अलग अलग थीम के पंडाल, भटवाड़ी का राजा के दरबार में एआई थीम पर तैयार किया गया भव्य पंडाल। जालना में 65 किलो चांदी की गणपति बप्पा की मूर्ति बनी है विशेष आकर्षण, दर्शनों के लिए उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। एशियन गेम्स में भारत की बेटियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन, क्रिकेट फाइनल में श्रीलंका को बड़े अंतर से पटकनी देकर जीता गोल्ड मेडल। फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से करारी शिकस्त दी, 16वें ओवर में ही पूरी टीम महज 69 रन के स्कोर पर ऑल आउट हुई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया था 216 रनों का विशाल स्कोर, स्मृति मंदाना ने खेली 89 रनों की पारी, श्रीलंका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 11,000 रन। शेफाली वर्मा ने गेंद और बल्ले से दोनों से कमाल दिखाया, 48 रनों की शानदार पारी खेली, पावर प्ले में झटके श्रीलंका के 2 विकेट। टी20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी जीत, इससे पहले टीम इंडिया ने एशिया कप 2018 में मलेशिया को 142 रनों से हराया था। एशियन गेम्स से भारतीय तैराकी टीम के लिए शानदार खबर, भारतीय टीम ने 4x100 मीटर मेडली रिले के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ऋषभ दास, धनुष, सुरेश, बेनेडिक्टन, रोहित और आकाश मणि ने हीट्स में महज 3 सेकंड में ये लक्ष्य हासिल किया, फाइनल में एंट्री मारी। कबड्डी में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का शानदार प्रदर्शन, अपने दूसरे ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 63-21 से करारी शिकस्त दी। एशियन

0: 2026 में भारतीय हॉकी टीम के बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से हराया। भारत का प्रदर्शन अब तक का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा, दोनों मैचों में 8-8 खिलाड़ियों ने गोल किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र साहिल की खुदकुशी पर सियासत लगातार जारी है। कैंपस में कांग्रेस और आरपीआई कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया है। आज साहिल के पिता ने पुलिस के सामने अपने बयान भी दर्ज करवाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को लंबे समय से जाति सूचक शब्दों को कहकर लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। मुंबई पुलिस फैकल्टी प्रोफेसर डुल्ला पर SC ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर चुकी है, तो आईआईटी बॉम्बे और मद्रास उनके समर्थन में आ चुके हैं।
1: आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में तीन आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। पहली बात पुलिस जांच है। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की CCTV तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी। प्रोफेसर डुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं। एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RBI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर डुल्ला पर SC ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर डुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया, फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन।
2: इस वक्त हम मुंबई IIT के बाहर है, यहाँ पर एक और प्रदर्शन देखने मिल रहा है। साहिल वाकोड़े की जो खुदकुशी के केस हुई है, उसके समर्थन में लोग जो है वो यहाँ पर प्रदर्शनकारी आए हुए हैं। अलग अलग पार्टी से यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी आए हुए हैं बॉम्बे IIT के बाहर, जिनका कहना है कि जो इंसाफ है वो साहिल को मिलना चाहिए, ये जस्टिस फॉर साहिल, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बोर्ड लगाए गए हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं यहाँ पर, जिनको पुलिस इस वक्त डिटेन करके आप कह सकते हैं कि बसेस के अंदर डाला जा रहा है, और जस्टिस फॉर साहिल के पोस्टर लेकर के ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों में जो पहले बच्चों ने सुसाइड किए हैं, उनके परिवार के लोगों ने भी इस इशू को समर्थन जताया।
1: तीन दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है। जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था। साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो। मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC ST एक्ट लगाने का है।
3: ऊंचे जाति का हो तुम, नीचे जाति का हो, मेरे से बोला उसने।
4: किसने बोला
3: प्रोफेसर, ओ प्रॉपर्टी है ना उसका, क्या है वो
5: डीन
3: है ना वहाँ का, उसने उसको स्टेटमेंट ले लिया उन्होंने और तपास चालू है करके बता दिया है हमारे को। लेकिन तपास में उन्होंने उनको अरेस्ट करने को होना, यही मेरी मांग है।
1: साहिल के रिश्तेदारों से लेकर दलित राजनीति करने वाले यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बड़े कैंपस में दलित ही क्यों मर रहे हैं, जबकि कैंपस के छात्र कहते हैं कि जातीय भेदभाव के आरोप गलत है।
3: अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा हूँ, शिरीष के दारे और डुल्ला ना,
5: श्री नारायण डुल्ला,
3: उसको अरेस्ट करिए, बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको, जो चौकसी में आएगा उसको देख, चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। वो टॉर्चर करा उत्साह नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है। हाँ टॉर्चर क्या है, सुसाइड नहीं, उसकी हत्या करो की है, हत्या की है उसने। ओ पिछले जाति का ऐसा कर करके उसको
6: बहुत ही अनफॉर्चुनेट, लाइक हमारा एक

0: हमारा छोटा भाई चला गया, पर जो प्रोटेस्ट प्रोफेसर के अगेंस्ट हो रहा है वो इतना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि इट्स अ रूल कि अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे। दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो डुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। आईआईटी में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफ कोर्स ना मेरे साथ ना मेरे किसी दोस्त के साथ ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
1: जाहिर तौर पर साहिल की खुदकुशी ने दो बड़े सवाल खड़े किए हैं, जिसमें एक है

0: जिसमें एक है कैंपस में बढ़ती खुदकुशी और दूसरा है दलित उत्पीड़न। देश के आईआईटी आईएएम जैसे बड़े संस्थानों में बढ़ती खुदकुशी का आंकड़ा कुछ ऐसा है कि टॉप 5 आईआईटी और 15 नए आईआईटी मिलाकर जनवरी 2006 से सितंबर 2026 के बीच 171 स्टूडेंट्स की असम में मौत हुई, जिसमें 140 सुसाइड थे। आईआईटी खड़गपुर में 29, आईआईटी मद्रास में 26, आईआईटी कानपुर में 21, आईआईटी दिल्ली में 17, आईआईटी बॉम्बे में 14 बच्चों ने जान दी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आईआईटीज, आईएम्स और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सुसाइड करने वाले 55% से अधिक एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट थे।
1: आईआईटीज में ज्यादातर एससी ओबीसी के बच्चे ही आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? मैं ये जनरल के भी कुछ करते हैं, लेकिन एससी के क्यों ज्यादा करते हैं? जबकि एससी की प्रोपोर्शनेट उनकी संख्या 15% ही है।
0: आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही सुसाइड करने वाले छात्र दर्शन के पिता कहते हैं कि कैंपस में भेदभाव तो होता है।
2: मेरे बच्चे के साथ ये आईआईटी वालों ने कुछ नहीं किया था, लेकिन एक उसका रूममेट था, रूममेट ने दर्शन के साथ कुछ जातिगत भेदभाव किया था, उसके साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं कर रहा था, जातिगत भेदभाव कर रहा था।
0: हालांकि कैंपस में खुदकुशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जो कहती है कि आईआईटीज में ग्रेड, रैंक, प्लेसमेंट सफलता की गारंटी हो गए। वाइब चेक कल्चर में कमजोर स्टूडेंट आइसोलेट हो रहे हैं। क्लासरूम में एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट 60% है, लेकिन 56% फैकल्टी अगड़ी जाति के, 7.57% एससी और 1.91% एसटी फैकल्टी है। देश के 65% उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं की भारी कमी है। 23 आईआईटी सहित 31 केंद्रीय संस्थानों में स्टूडेंट के तनाव की समय रहते स्क्रीनिंग की सक्रिय व्यवस्था नहीं है, लिहाजा स्टूडेंट में 75% मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं 24 साल से पहले शुरू हो जाती है। नतीजा, गलाकाट कमीशन के दौर में खुद को पिछड़ता देख कर या माता पिता, परिवार, समाज के दबाव के कारण स्टूडेंट खुदकुशी जैसा खतरनाक कदम उठा रहे हैं। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश से मुंबई आज तक।
3: तो आईआईटी बॉम्बे सुइसाइड केस में मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कुछ छात्रों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं जो परीक्षा हॉल में मौजूद थे, और साथ ही साथ उन छात्रों के भी जो आईआईटी बॉम्बे में मृतक छात्र साहिल के दोस्त थे। साहिल के पास आईफोन था और वो लॉक है अब, और इसी वजह से उसे खोलने के लिए टेक्निकल हेल्प भी ली जा रही है। पुलिस उसके मोबाइल की चैट जीपीटी हिस्ट्री भी देखेगी जिससे कि नकल वाले दावे की जांच की जा सके।
4: आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट साहिल वाकोड़े के मृत्यु के बाद जो एफआईआर दर्ज किया गया है मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा एससी एसटी एक्ट और अबेटमेंट टू सुसाइड के सेक्शंस के तहत, उस केस में मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक साहिल वाकोड़ा के माता पिता का बयान दर्ज कर लिया गया है, और मुंबई क्राइम ब्रांच अब बहुत से ऐसे फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रही है, जैसे एग्जामिनेशन हॉल का फुटेज और लॉबी का फुटेज, और उसके बाद जब साहिल वाकोड़े अपने हॉस्टल गया है वहां तक का फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारा फुटेज उन्हें मिल गया है और बहुत सारा फुटेज वो लेने की कोशिश कर रहे हैं आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन से। आपको बता दें कि इस मामले में जो साहिल वाकोड़े का आईफोन है, उसके पास एक आईफोन था, वो ओपन नहीं कर पा रही है पुलिस, क्योंकि वो लॉक्ड है, उसका पासवर्ड किसी को पता नहीं है। उसके लिए तकनीकी हेल्प ली जा रही है कि किसी तरीके से साहिल का फोन ओपन किया जा सके, और तब उसमें उसकी सर्च हिस्ट्री क्या थी या चैट जीपीटी की हिस्ट्री क्या थी वो चेक किया जाएगा। वो अभी ओपन नहीं हुआ है, इसी वजह से अभी पुलिस उसकी जांच नहीं कर पाई है।
3: और अब बात करेंगे किसानों की आफत के बारे में, क्योंकि बारिश की कमी की वजह से महाराष्ट्र में सूखे का संकट खड़ा हो चुका है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक में कहा है कि सूखे को लेकर पहली अधिसूचना जारी की जाएगी जिसमें जानकारी होगी कि किन इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं और वहां सरकार कौन कौन से कदम उठाएगी। समीक्षा बैठक के बाद फडणवीस ने कहा कि कई जिलों में कपास, सोयाबीन के साथ ही कई फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है।
0: महाराष्ट्र में सूखे के संकट ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। आज कैबिनेट की मीटिंग में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला

0: फैसला लिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सूखे को लेकर पहली अधिसूचना जारी होने वाली है। बारिश की कमी की वजह से मक्का, कपास और कोंकण में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन फसलों के नुकसान का आकलन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से भी सहायता मांगने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी। अधिसूचना में यह जानकारी होगी कि किन इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं और वहां सरकार कौन कौन से कदम उठाएगी। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं।
1: तत्काल उद्यापासन फील्ड वर पंचनामे करण्याचे आदेश देखील दिलेले आहेत, जेणेकरून आपल्याला जी काही मदत करावी लागते आणि त्यानंतर केंद्र सरकारची मदत देखील घ्यावी लागते, या दोन्ही करता जे काही नियम आहेत त्या नियमानुसार प्रस्ताव तयार करण्याकरता फील्डवरची माहिती आपल्याला गोळा करावी लागते, ती गोळा केली जाणार आहे। साधारणपणे बहुतांश भागामध्ये दुष्काळी परिस्थिती दिसते आहे।
0: फडणवीस कैबिनेट ने किसानों को सूखे से तुरंत राहत और फसल के नुकसान के सर्वे के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है।
2: देखिए, कैबिनेट में आज बहुत ही चर्चा हुई है और जो सूखा पीड़ित जो इलाके हैं वहाँ जो दुष्काल जन्य परिस्थिति निर्माण हुई है उस पर सभी मंत्रियों ने चर्चा की और मुख्यमंत्री महोदय जी, सरकार, हम लोग सभी लोगों ने इस पर गंभीरता से लिया हुआ है और सभी हमारे जो जिलाधिकारी से लेके अधिकारी जो है और तालुका स्तरीय जो अधिकारी है, कृषि सेवक है, ग्राम सेवक है, तलाटी है, इनको तत्काल कल से पंचनामा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
0: इसके अलावा मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद और विधायक हालात का जायजा लेने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मराठवाड़ा और विदर्भ के कई इलाके सूखे से बुरी तरह प्रभावित। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में भी किसान परेशान दिख रहे हैं। दाभड़ गांव में छोटे किसान आत्माराम टोकले भी सूखे से गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। नांदेड़ में परिवार का पेट पालने के लिए आत्माराम ने अपनी 5 एकड़ जमीन पर सोयाबीन की खेती करने के लिए पत्नी के गहने तक बेच दिए, लेकिन बारिश की भारी कमी की वजह से उनकी सोयाबीन और कपास की फसलें पूरी तरह सूख गई।
3: 4 एकड़ सोयाबीन लगा वाला, 1 एकड़ हल्दी लगा वाली।
4: अच्छा, आई क्या ये पूरी?
3: हाँ नहीं, सोयाबीन तो चला गया, सब चला गया। हल्दी उधर इसमें पानी लगा वाला, खाली हल्दी को 1 एकड़ खाली 1 एकड़ का देख रहे इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। इधर सोयाबीन में किसके मेरे से नहीं, आजू बाजू के खेत में भी कुछ नहीं, मेरे खेत में तो कुछ नहीं। 1 किलो सोयाबीन निकाल को दिखाओ, हाँ। निकाल के दिखाओ। अच्छा। ये खेत में जो है ना, हाँ, ये खेत में निकाल के 1 किलो दिखाओ। अच्छा। मैं 1 क्विंटल, हाँ। गांव में चंदा करके, गांव में, हाँ। मेरा ने चंदा करके हम तुमका तुम्हारे को सबको खिलाने को देंगे। कादू, बादाम, पिस्ता, वो क्या क्या रहता, वो देखे ने, वो हम न्यूज में कहा तो भी सुने। अच्छा। सुने बोल के हम बोले, वो मैं न्यूज में सुने, मैं खुद का बोला नहीं, कहां से भी न्यूज आई थी, काजू बादाम का न्यूज आई थी, वो सुने मैं, सुने सुनने के बाद हरी भाव काजू बादाम हम तो गांव में के चंदा करके बेच देते, उनको खिलाती, मगर उसको आन दो हमारे खेत में आके देखन दो।
5: नांदेड़ के किसान आत्माराम टेकाले का ये दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि सूखे की मार झेल रहे उन सभी अन्नदाताओं की कड़वी सच्चाई है। कागजों और सरकारी बैठकों में बर्बाद हुए फसल के आंकड़े तो साफ तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन सही मायने में जमीन पर अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। अब देखना यह होगा कि सरकार के इस नई अधिसूचना और पंचनामे के आदेशों के बाद उन बेबस किसानों के आंसुओं को राहत कब तक मिल पाती है।
0: अकोला में भी कपास की खेती बारिश की कमी की वजह से बर्बाद हो गई है। किसानों को समझ नहीं आ रहा कि अब उनके परिवार को 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी।
6: हल्की सी बारिश गिरी, उसकी वजह से ये जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो गई। अभी सोयाबीन तो गया, अभी रह गई कपास। कपास भी एक एक दो दो बोंडा है कपास को, उससे भी बोंडली आ रही हमारे तरफ।
7: सोयाबीन की हालत तो बहुत खराब है, अभी जल गई सब जल गई, अभी होने वाला कुछ बाकी नहीं।
0: ऐसे किसानों को चिंता से रात की नींद नहीं आ रही। जिन किसानों ने खेती के लिए बैंक से कर्ज लिया था और अब बारिश नहीं होने की वजह से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई।
8: हम फिलहाल है अकोला जिले के सीसामासा इलाके के एक कपास के खेत में, जहां पर कपास की ये जो फसल है इसकी अब मानो इतनी हाइट होनी थी, कितनी, इतनी हाइट होनी थी, लेकिन बारिश नहीं होने के चलते जो है सोयाबीन के साथ अब कपास की भी फसल जो है वो धीरे धीरे जो है गर्दन डालती नजर आ रही है, जिसे मराठी में मान ताकने मनता, मानो ये जो है बारिश नहीं होने के चलते जो है ये फसल जो है वो अब किस तरह से यहाँ पर जलती नजर आ रही है।
9: और अब बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, जिसकी पहली बार आयोजन हुआ है दिल्ली से बाहर गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जिसमें फिल्म जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया। देखिए किन किन सितारों को कौन सा सम्मान मिला।
10: ये सितारों के सम्मान की तस्वीर है। 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सिनेमा जगत की हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्म युग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए दिया गया, जो कि अपने पति और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पहुंची थी। बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को दिया गया। भक्षक के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को समारोह में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्टर धनुष को डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन पहली बार केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास किया जा रहा है। अब हर साल अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दिल्ली से बाहर सेरेमनी कराने को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य देश के सभी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कुल 45 पुरस्कार दिए गए, इनमें 26 फीचर फिल्म, 16 नॉन फीचर फिल्म, 2 सिनेमा पर लेखन और 1 दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल है। आज तक ब्यूरो।
9: मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के गीत जाने दो के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला है। मनोज मुंतशिर ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अजय देवगन अभिनीत स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान के भावुक और बेहद ही लोकप्रिय गाने जाने दो के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और ये उनके करियर का दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इससे पहले उन्हें फिल्म साइना के लिए चल वहीं चलें के लिए भी ये प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुका है।
11: जोश, दृढ़ता, एकता और विजय की भावना को समेटने वाला सशक्त और भावप्रवण गीत रचने के लिए श्री मनोज मुंतशिर को राष्ट्रीय सम्मान।
9: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गणेशोत्सव के रंग, आप बने रहे हमारे साथ।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: और अब चलते चलते मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में देखिए कि कैसे गणेशोत्सव में श्रद्धालु बप्पा की भक्ति में आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। आज शाहरुख खान और संजय दत्त ने भी बप्पा के दर्शन किए हैं।

गणेश उत्सव के दौरान बप्पा से मुराद मांगने का सिलसिला जारी है। आम लोगों से खास तक गणेश जी से आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं। आज शाहरुख खान मुंबई में टी सीरीज के ऑफिस में गणपति दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने बप्पा के चरणों में फूल चढ़ाए और प्रार्थना की, जिसके बाद शाहरुख ने प्रसाद भी चढ़ाया। इससे पहले कल भी शाहरुख खान परिवार के साथ लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे। शाहरुख ने पत्नी गौरी और बेटी सुहाना के साथ बप्पा के दर्शन किए थे। शाहरुख खान की बप्पा की पूजा करते हुए तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

0: शाहरुख गौरी और सुहाना के साथ बप्पा की आरती में भी शामिल हुए थे। आज मुंबई में संजय दत्त ने भी लाल बागचा राजा के दरबार में माथा टेका। संजय दत्त पापा के दर्शन करने पत्नी मान्यता के साथ पहुंचे थे। दोनों ने गणेश जी को नमन किया। उसके बाद संजय दत्त ने पापा के चरणों से रोली लेकर मान्यता को तिलक भी लगाया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने संजय दत्त के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई।
1: मेरा सौभाग्य है कि मैं वापस लालबाग पापा के वहाँ आया हूँ और पापा का बुलावा था और मैं आया हूँ और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हर साल मैं बप्पा मुझे यहाँ बुलाए और मैं हर साल आया हूँ।
2: इस बार महाकाल की थीम रखी है, थीम आपने देखी होगी, कैसा लगा अट्रैक्शन?
1: बहुत अच्छा लगा और बप्पा ऐसे ही पड़ते
3: हैं। महाकाल थीम है ऑरेंज, हाँ,
4: भगवा कलर। गणपति बप्पा।
0: लाल बागचे राजा के दरबार में अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी पहुंची। उन्होंने गजानन महाराज से परिवार में चल रहे तनाव को दूर करने की प्रार्थना की। वहीं मुंबई से सटे भटवाड़ी का राजा दरबार में इस बार एआई से मिल रही सफलता और देश के विकास में एआई के योगदान की कहानी एलईडी के जरिए श्रद्धालुओं को दिखाई जा रही है। खास बात यह है कि भटवाड़ी का राजा के गणपति कागज से बनाए गए हैं, जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है।
5: देश की तरक्की में एआई की कितनी ज्यादा मदद है, एआई कितना ज्यादा लोगों के लिए उपलब्धि हासिल कर रहा है, कितनी सरलता हो गई है अत्याधुनिक जीवन में काम करने की, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है भटवाड़ी का राजा। मैं इस समय मौजूद हूँ उन्हीं के दरबार में। सबसे पहले आप गणपति बप्पा के दर्शन करें। गणपति बप्पा जितने ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं, उससे भी ज्यादा उनकी जो खासियत है वो हमें अभी यहाँ पता चली है। आपको बताया कि गणपति बप्पा को लगातार 4 साल से कागज से बना करके यहाँ लाया जाता है और पास के ही कृत्रिम तालाब में, जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बनाई गई है, वहाँ इनका विसर्जन कर दिया जाता है। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और पूरी तरह से पर्यावरण के समर्थन है।
6: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ।

हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का हो पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार का, आतंकवाद और परमाणु हथियारों की होड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी के मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, नादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग।

नक्सल के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे होम मिनिस्टर एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक खत्म कर देंगे नशे का कारोबार। अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक, सेवा संकल्प अभियान पर चर्चा, प्रधानमंत्री करेंगे केंद्रीय मंत्रियों के साथ चिंतन बैठक। छात्र सुसाइड केस में जातिवाद वाला मामला, आईआईटी बॉम्बे के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। पीड़ित परिवार की मांग, प्रोफेसर और डायरेक्टर को करेंगे गिरफ्तार, आगे बड़े प्रदर्शन की तैयारियां। आईआईटी बॉम्बे वाले साहिल की मौत के मामले में पिता का बयान, बोले जांच जल्द पूरी करे शिरीष केदारे और सूर्य नारायण दुल्ला को गिरफ्तार करें, बेटे को लेकर उन्होंने कहा उसे सहने की बात कहकर मुझसे गलती हुई। आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल की मौत की जांच के में मामले में नया अपडेट, लॉक आईफोन खोलने के लिए तकनीकी मदद ले रही है क्राइम ब्रांच। जमुई में दरिंदगी के मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को नहीं मिली राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट से मिलन प्रधान ने न्यायिक हिरासत के खिलाफ दाखिल की अर्जी, अब 12 अक्टूबर को सुनवाई, 6 को है वोटिंग। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी गबन के मामले में 6 आरोपियों की राहत नहीं, अदालत ने जमानत अर्जियां खारिज की, 8 आरोपी गिरफ्तार, 2 की जमानत पर 23 सितंबर को सुनवाई। सिया ने पहले हाथों से धक्का दिया, फिर चेतन ने पैर से गिराया, 5053 पन्नों की चार्जशीट में केतन मर्डर की पूरी कहानी, फर्जी इंस्टाग्राम से किले तक बुलाने को लेकर हत्या की साजिश रचने तक कहानी। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह, अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन के साथ बढ़ा संपर्क, 2027 यूपी चुनाव को लेकर गठबंधन में सीटों और पश्चिमी यूपी की भूमिका पर चर्चाएं। आज गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ चरगावा में राजकीय महिला शरणालय का करेंगे लोकार्पण, कोविड प्रभावित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बांटेंगे लैपटॉप। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। मुंबई में खाद्य सुरक्षा पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल निलंबित हुए, मालाड में 2,464 किलो से ज्यादा कथित मिलावटी घी जब्त। शिमला में संजौली के 4-लेन टनल पर निर्माण से मकानों में आई है दरारें, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले बनेगी हाई पावर कमेटी, टनल निर्माण की जांच की जाएगी। सहारनपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत, 2027 की तैयारियों पर मंथन, वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से लिया गया फीडबैक। नितिन नवीन से कार्यकर्ताओं का संवाद, 2027 में बीजेपी की सरकार दोहराने का दावा, संगठन को साथ लेकर चलने का संदेश। दिल्ली में खंडित मूर्तियों के सम्मानजनक निस्तांतरण की पहल, 110 से ज्यादा संग्रह केंद्र शुरू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहल का जायजा लिया। द्वारिका, रोहिणी, पीतमपुरा समेत कई इलाकों में सुविधा, खुले में या जल स्रोतों में मूर्ति छोड़ने पर रोक के साथ वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर। ग्रेटर नोएडा के सरकारी स्कूलों में निरीक्षण को पहुंचे सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास का विरोध, स्थानीय लोगों ने बहस की, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मामला। इंदौर के नवलखा कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट टूटने से मची अफरा तफरी, 7 लोगों के घायल होने की खबर। झांसी में बीए छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई, परिजनों ने 6 युवकों पर यौन उत्पीड़न और वीडियो वायरल करने की धमकी के आरोप लगाए, 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। नोएडा में गरीबों को सामान बांटने के बहाने घर में घुसी महिलाएं, 3 महीने की बच्ची को चुराकर हुए फरार, 3 की गिरफ्तारी। मोगा में नशे में धुत 3 युवकों की लूट की कोशिश नाकाम हुई, करीब 70 साल के बुजुर्ग दंपति ने एक आरोपी को खेत में दबोचा, पुलिस ने हिरासत में लिया वीडियो वायरल। जालौन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग छात्रों में खूनी संघर्ष, परिसर में तनाव बढ़ा। नोएडा में पुलिस की तत्परता से बची युवक की जान, फांसी लगाने की सूचना पर तुरंत पहुंची डायल 112, पीआरवी ने बचाई जान। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर चल गया बुलडोजर, परिजनों ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मुजफ्फरपुर में 21 साल की युवती को बेला फुसलाकर ले गया था अधेड़, दुष्कर्म का आरोप लगा, आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ में सीमेंट से लदे हुए ट्रक में भीषण आग लगी, चालक उपचालक कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। बेगूसराय में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, शव मिलने पर आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा में युवती से छीना आईफोन 18 प्रो, 3 दिन पहले ही खरीदा था फोन। साबरकांठा में पदयात्रियों को बेकाबू स्कॉर्पियो ने रौंद डाला, एक श्रद्धालु की मौत हुई, 7 गंभीर रूप से घायल, गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो को फूंका। प्रतापगढ़ की कोतवाली के बाथरूम में 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी अस्पताल में एसी फटने से 5 दिन के नवजात की मौत हुई, वार्ड में मची अफरा तफरी। भिवानी में फर्जी हरियाणा
पुलिस अधिकारी बनकर मेडिकल स्टोर संचालक से फिरौती वसूलने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में घूमने गई नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, एनकाउंटर के बाद एक की गिरफ्तारी। नाबालिग से रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड थाने पर किया हंगामा, प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प। दिल्ली के कालकाजी गैंगरेप केस में बड़ी कार्रवाई, घटनास्थल से आरोपी की पिस्टल भी बरामद। लखनऊ में हिट एंड रन केस के बाद पीड़िता को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। तिरुवल्लूर में सरकारी अस्पताल परिसर में महिला पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया, आरोपी को मुठभेड़ में गोली लगी। गणेश उत्सव के नौवें दिन भी लालबाग चौराहा के दरबार में भक्तों की भीड़, बप्पा का मनमोहक श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालुओं की कतार। लालबाग चौराहा के दरबार में संजय दत्त ने परिवार के साथ दर्शन किए, पूजा अर्चना की गई। मुंबई के अंधेरी इलाके में अंधेरी चौराहा के दरबार में अयोध्या की भव्यता नजर आई, इस वर्ष राम मंदिर की आधारित पंडाल की थीम है। मुंबई के गणेशोत्सव के दौरान देख रहे हैं अलग अलग थीम के पंडाल, भट्टवाड़ी का राजा के दरबार में एआई थीम पर तैयार किया गया भव्य पंडाल। जालना में 65 किलो चांदी के गणपति बप्पा की मूर्ति बनी है विशेष आकर्षण, दर्शनों के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हिंदी फिल्म श्रीकांत को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर का पुरस्कार मिला है, दिग्गज अभिनेता अनंतनाग को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्मयुग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, वहीं फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तमिल स्टार धनुष को मिले 2 नेशनल अवार्ड, तमिल फिल्म रायन को बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का पुरस्कार, तो वहीं तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को अभिनय के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। हिंदी फिल्म स्ट्रीटू के गाने आज की रात के लिए विजय गांगुली को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला, गाने में तमन्ना भाटिया नजर आई थी। तेलुगु फिल्म पुष्प 2 द रूल को मिले हैं 2 नेशनल अवार्ड, फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले ओरिजिनल और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला। फिल्म मैदान के गाने जाने दो के लिए मनोज मुंतशिर को मिला है बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड, दूसरी बार हासिल किया राष्ट्रीय सम्मान। एक ही समय में 37 कलाकारों के रियल टाइम मोशन कैप्चर के जरिए बनाया गया ये रिकॉर्ड, इसमें एडवांस्ड वीएफएक्स और 92 कैमरों का किया गया है इस्तेमाल। ऑस्कर अवार्ड्स में भारत के लिए एक और गौरव का पल, नागालैंड की फिल्म अंग को 2027 के ऑस्कर अवार्ड्स की इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में डायरेक्ट एंट्री। इस साल भारत की ओर से ऑस्कर जाने वाली ये दूसरी फिल्म है, इसके पहले मराठी फिल्म गोंधल को भारत की ऑफिशियल मिली थी एंट्री। अप्रैल से शुरू होगी 3 इडियट्स की सीक्वल की शूटिंग, फिल्म ललकारा के बाद काम करेंगे हमें आमिर खान। एशियन गेम्स में भारत की बेटियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन, क्रिकेट फाइनल में श्रीलंका को बड़े अंतर से पटकनी देकर जीता गोल्ड मेडल। फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से करारी शिकस्त दी, 16वें ओवर में पूरी टीम महज 69 रन के स्कोर पर ऑल आउट हुई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया था 216 रनों का विशाल स्कोर, स्मृति मंदाना ने खेली 89 रनों की पारी, श्रीलंका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 11,000 रन। शेफाली वर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों को दिखाया कमाल, 48 रनों की शानदार पारी खेली, पावर प्ले में झटके श्रीलंका के 2 विकेट। टी20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी जीत, इससे पहले टीम इंडिया ने एशिया कप 2018 में मलेशिया को 142 रनों से हराया था। एशियन गेम्स से भारतीय तैराकी टीम के लिए शानदार खबर, भारत की टीम ने मीटर मेडली रिले के फाइनल में क्वालिफाई किया है। ऋषभ दास, धनुष सुरेश, रोहित और आकाश मणि ने हीट्स में सेकंड्स का समय लेकर हासिल किया है 7वां स्थान, फाइनल में एंट्री मारी। कबड्डी में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का शानदार प्रदर्शन, अपने दूसरे ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 63-31 से करारी शिकस्त दी। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय हॉकी टीम की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से हराया। भारत का प्रदर्शन अब तक रहा जबरदस्त, दोनों ही मैचों में 8-8 खिलाड़ियों ने किए हैं गोल। यूपीआई के MDR4 से बड़े बास्केट वाले रिटेलर्स और ऑनलाइन कंपनियों की लागत बढ़ने की आशंका, कारोबारियों के इस बोझ को उठाने में नाकाम रहने पर कीमतें बढ़ेंगी या कैश भुगतान में इजाफा होगा। ऊंची कीमतों के बीच गणेश चतुर्थी पर सोने की बिक्री की मात्रा में 15% की गिरावट आई, हल्के गहने खरीदने के साथ ही पुराने गहनों के एक्सचेंज पर बढ़ गया है कस्टमर्स का फोकस।
जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में ऑनलाइन शॉपिंग 25% बढ़ने का अनुमान है। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी घटने की आशंका, ग्रोसरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड में तेजी। त्योहारी सीजन से पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर नकली और बिना सर्टिफिकेट वाले सामान पर सीबीआईसी की नजर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियां, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स पर खास निगरानी। अमेजॉन के सर्वे के मुताबिक स्मार्टफोन्स खरीदते वक्त लोग सबसे पहले परफॉर्मेंस और स्पीड देखते हैं। एआई फीचर्स और रिव्यूज का खरीदारी पर बढ़ा है असर। बड़ी स्क्रीन वाले टीवी की डिमांड भी बढ़ गई है। जीएसटी रेट्स में कटौती के बाद टू व्हीलर्स से फोर व्हीलर्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं कस्टमर्स। अप्रैल जून में पैसेंजर्स व्हीकल्स की बिक्री करीब 26% से बढ़कर रिकॉर्ड 12.7 लाख यूनिट्स पर पहुंची। युवा और संपन्न बायर्स का घर के साथ अब जमीन और लग्जरी एसेट्स में रुझान तेजी से बढ़ा है। 50 लाख से कम घरों का स्टॉक घट गया है, जबकि 2 से 5 करोड़ के घरों की डिमांड बढ़ गई है। 69% कंपनीज का दावा है कि टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में हायरिंग 2 साल में 30% से ज्यादा बढ़ गई है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटने के बाद पॉलिसी खरीद और कवरेज में बढ़ोतरी। इंश्योरेंस कंपनियां और डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक शुरुआती तेजी में कमी के बीच कस्टमर बेस में बढ़ोतरी। एचएआई ने वन टैक्स सुविधा के पुराने फास्टैग बदले बिना उसको किसी भी बैंक से जोड़ कर सकेंगे कस्टमर्स, और इससे मिलने वाली सुविधाओं से स्टिकर लगाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को किया संबोधित। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध खत्म करने के लिए भी कहा, साथ ही कहा हमारी ऊर्जा दुनिया को चला रही है। रूस और यूक्रेन में आरपार की जंग जारी है। यूक्रेन ने रूस की समारा और उफा ऑयल रिफाइनरी पर किया है भीषण हमला। मिसाइल हमले के बाद लगी थी भीषण आग। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की। सर्दियों में ऊर्जा संकट और रूस के साथ जंग को लेकर की गई चर्चा। रूसी उप विदेश मंत्री और अमेरिका के वीजा न मिलने पर रूस ने जताया कड़ा विरोध। क्रेमलिन ने कहा अमेरिका वीजा न देना अमित्रतापूर्ण कृत्य है। अमेरिका से तनाव के बीच न्यूयॉर्क रवाना हो गए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लेंगे हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वो ईरानी राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बैठक अभी तय नहीं। यूएन में भाषण से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की कड़ी निंदा की। नेतन्याहू ने ममदानी पर हमास का समर्थन और यहूदियों के खिलाफ दंगे भड़काने के आरोप लगाए। ग्रीनलैंड में 2 नए बेस बनाने की तैयारी में अमेरिका। यूएन महासभा में समझौते के बाद बढ़ेगी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ मंगलवार को अमेरिका की होनी है अहम डिफेंस डील। यमन के ताइस प्रांत में सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक। लड़ाकू विमानों में हूती ठिकानों पर बरसाए गए बम। हमले में 6 लोगों की मौत, 8 लोग घायल हुए। हूती ने कहा तनाव बढ़ने के बाद से सऊदी अरब ने 917 हवाई हमले किए। तुर्की के पश्चिमी प्रांत मनीसा में स्कूल में गोलीबारी से हड़कंप मचा। 11 छात्र घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने हमलावर छात्र और हथियार रखने वाले परिजनों को हिरासत में ले लिया है। एशियन गेम्स में भारत की विमेंस क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराकर जीता है गोल्ड मेडल। लगातार दूसरी बार गोल्ड जीतकर विमेंस क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड बनाया।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको जमुई कांड के दरिंदों का चेहरा दिखाएंगे। नाबालिग बच्ची के साथ सरेआम दरिंदगी करने वाले इस जल्लाद ने वारदात के वक्त अपना चेहरा छिपा लिया था ताकि ये बच निकले, इसकी पहचान जनता के बीच नहीं जाए। और सोचिए, जब आज इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद भी थाने के पास बस अपना चेहरा छिपाते फिर रहा है। लेकिन इन्हीं लोगों ने इस बच्ची का वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने पीड़िता की पहचान को खूब उजागर किया, लेकिन इस अपराधी का चेहरा छिप गया जिसे आज बेनकाब किया जाएगा। इस चेहरे को आज देखिए, इस चेहरे को आज हर जगह वायरल कीजिए।

आज आपको ये भी बताएंगे कि जब एक बच्ची के साथ दरिंदगी होती है तो समाज की सोच क्या होती है। अपराधियों पर कार्रवाई की मांग करने के बजाय कुछ लोग लड़की के कपड़ों, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। कुछ नेता इसमें जाति ढूंढते हैं, कुछ आरोपी के गमछे के रंग को लेकर राजनीति चमकाते हैं। हद तो तब हो गई जब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इसको छिटपुट घटना बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। जब जनता से घिरे तो माफी मांगी और बिल्कुल सफाई देने आ गए। सवाल यह है कि आखिर पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाने के बजाय हर बार अपराध को राजनीति की सूली पर क्यों चढ़ा दिया जाता है। जमुई की घिनौनी घटना के बाद आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाएंगे, जहां अपने दोस्त के साथ पार्क गई एक लड़की को कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी बनकर धमकाया और फिर गैंगरेप किया। अब पुलिस ने एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर भी धर्म देखा जा रहा है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल घाटे की जो आत्महत्या का मामला है उसमें पुलिस जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। क्राइम ब्रांच द्वारा खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज से घटना से जुड़ी कुछ अहम कड़ियां सामने आई है। फुटेज से ही पता चला है कि समीक्षा जो परीक्षा है उसके दौरान साहिल को एग्जाम हॉल से बाहर जाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद वो अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया और फिर ये खौफनाक कदम उठा लिया। इसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनवाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरफ अमेरिका को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और सबसे सुरक्षित देश करार दिया, दूसरी तरफ ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने पूछा कि क्या वो ईरान के साथ कोई डील करे या फिर उसे पूरी तरह तबाह कर दे। उन्होंने कहा कि वो ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उनके पास दो ही रास्ते हैं, समझौता या पूरा सफाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैरिफ लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाएंगे। अगली खबर अमेरिका के ही टेक्सास में होगी, जहां 90 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर फिर विवाद हो रहा है। अमेरिका के मशहूर यूट्यूबर जैसे ह्यूज ने मूर्ति को उखाड़ फेंकने की खुली धमकी दी है और इसके बाद अमेरिका में रहने वाले हिंदू भड़क उठे। इसके बाद आपको बताएंगे भारत को ओडिशा तट से 43 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां ONGC ने प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज की है। समुद्र मंथन प्रोजेक्ट के तहत की गई ये खोज भारत की विदेशी गैस पर निर्भरता को कम करने में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है।

0: आज स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भी काम की खबर है। सरकार ने घटिया क्वालिटी के स्क्रीन गार्ड्स पर एक्शन लिया है। 1 अप्रैल 2027 से देश में बिना BIS रजिस्ट्रेशन वाले स्क्रीन गार्ड और टेम्पर्ड ग्लास की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने अब मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए कड़े नियम बना दिए हैं, कड़े और अनिवार्य सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तय किए हैं। यानी अब आपकी स्क्रीन की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, सिर्फ असली और जो टेस्टेड ग्लास है वही बाजार में बिकेंगे। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब खाने की चीजों की तरह साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम सभी सामानों के जो पैकेट है उस पर हरा या लाल निशान लगाना जरूरी होगा। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में जानवर की चर्बी या जेलेटिन का इस्तेमाल हुआ है तो उस पर लाल या भूरा निशान लगाना होगा। इससे शाकाहारी लोगों को ये चुनने में आसानी होगी कि उन्हें कौन सा सामान खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। कई लोग जो शाकाहारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का वो इस्तेमाल करें जिसमें किसी भी पशु का कोई सामान हो जो कि नॉन वेजिटेरियन हो। एशियन गेम्स की पिच पर भारत की बेटियों ने कमाल किया है और इसके लिए हम सब एक कृतज्ञ देश की तरह से सलाम करते हैं अपने महिला क्रिकेटर्स को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है और इसके साथ भारत का गोल्ड का खाता खुल गया।
1: Of the Asian Games and as the medals are being given, this is a moment of pride. Anjum, Mithali, Reema, ये जो moments हैं, ये जो पल हैं, इसके लिए एक sportsman
2: cricket को मिला।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोच कह रहे थे कि वो इतने खुश हैं अपनी टीम से कि जाके सुशी खा रहे थे। आज
0: हम आपको जमुई के उस जल्लाद का चेहरा दिखाना चाहते हैं जिस पर एक नाबालिग बच्ची के साथ सरेआम बदसलूकी और यौन हिंसा करने का आरोप है और हम चाहते हैं कि आज पूरा देश इसका चेहरा देखे, इस दरिंदे के चेहरे को याद रखे और ये भी समझे कि गलती उस बच्ची की नहीं थी। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, हजारों लोग मिल जाएंगे जो इस नाबालिग बच्ची का वीडियो वायरल कर रहे हैं, जाने अनजाने में उसकी पहचान, उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे। जबकि इसी वीडियो में उसके साथ दरिंदगी करने वाले इस जल्लाद ने अपना चेहरा छिपाया हुआ है और इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि ये आदमी कौन है। यानी जिसने अपराध किया उसने अपना चेहरा छिपा लिया, जिसके साथ अपराध हुआ उसका चेहरा दुनिया के सामने आया। और यह भी सोचिए कि अगर घटना के वक्त इसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा था तो इसकी मंशा कितनी खतरनाक रही होगी। इसे पता था कि वो जो करने जा रहा है उसके बाद उसकी पहचान सामने आ सकती है। उसने चेहरा छिपाया वहां पर, लेकिन वीडियो बन रहा था और इन सबको पता था और इसलिए उसने अपना चेहरा छिपा लिया। लेकिन इस नाबालिग बच्ची के पास अपनी पहचान छिपाने का कोई विकल्प नहीं था और यही कारण है कि जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो यही बच्ची सबके निशाने पर आ गई। लोग वीडियो देखते रहे, शेयर करते रहे, उसकी पहचान को सार्वजनिक करते रहे, जबकि इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा जरूरत उसकी पहचान बचाने की थी। लेकिन ये जागरूकता किसी ने नहीं दिखाई और इसलिए आज हम सबसे पहले कहना चाहते हैं, हमने भी ये खबर कल से आपको दिखाई है लेकिन हमने बच्ची का चेहरा मॉर्फ कर दिया। हमने ये सुनिश्चित किया कि कहीं से भी इस बच्ची की पहचान ना चली जाए। आज हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ वायरल ही करना है तो इस दरिंदे का चेहरा वायरल कीजिए ना, इसके चेहरे को सामने लाइए जिसने ये घिनौनी हरकत की है, ना कि इस बच्ची का वीडियो वायरल कीजिए जो इस घटना में इन दरिंदों और जल्लादों का शिकार हुई और कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, सब वीडियो बनाते रहे। देखिए

0: बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये घटना मॉरल पुलिसिंग की है, छेड़छाड़ की है, इस लड़की और उसके दोस्त को परेशान करने की है। कुछ लोग इसे यौन उत्पीड़न बता रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या 19 सितंबर की शाम जमुई में सिर्फ इतना ही हुआ था। हकीकत यह है कि उस शाम इस बच्ची के साथ जो हुआ उसे सिर्फ किसी एक कानून की धारा या किसी एक शब्द में समेट देना, उस पूरी घटना की भयावहता को छोटा कर देना होगा। जिस मानसिक आघात और डर से ये बच्ची गुजरी, जिस तरह उसे उठाकर एक दूसरे के पास फेंका जा रहा था, जिस तरह वो हाथ जोड़कर अपने लिए रहम की भीख मांग रही थी, उस तस्वीर को देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान के भीतर सवाल उठना चाहिए कि आखिर एक बच्ची के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। सोचिए, एक इंसान थी वो उस समय, जो उस वक्त अपने सामने खड़ी भीड़ से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही थी। वो चाह रही थी बस किसी तरह उसे सुरक्षित वहां से निकलने दिया जाए, और ये लोग एक तरह से नोच रहे थे चारों तरफ से उसे। और सबसे डरावनी बात यही है कि वहां सिर्फ एक आरोपी नहीं था, एक भीड़ थी। देखिए, इस भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे तो, अगर चाहते तो आगे बढ़कर इस लड़की को बचा सकते थे, आवाज तो उठा सकते थे, निकालने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने मदद करने की जगह उसका वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा। यानी एक बच्ची मदद के लिए हाथ जोड़ रही थी, कुछ हाथ उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि मोबाइल कैमरा उठाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और ये सिर्फ संवेदनहीनता नहीं है, ये घिनौनापन है। ऐसा घिनौनापन जिसमें इस लड़की के साथ उस दिन कुछ भी किया जा सकता था। और हम चाहते हैं कि आप इस बार एक बार इस भीड़ के चरित्र को देखें।
1: पहले मोबाइल का
2: घर में भी सबको पता है,
1: घर में पता है।
3: बात करा
1: फोन करो
3: फैमिली में, जब गलती किया तो
4: मेरा घर जमुई में,
3: कहाँ पे मैं चोरी रोज जाती
5: बाबू टोला में।
6: कॉपी किताब देख
7: लीजिए,
8: कॉपी
9: किताब ना करेगा मोबाइल गिर गया, हमारे मोबाइल लग गया।
10: ठीक तो मोबाइल लग जाते, अरे किसी को
11: बच्चा
12: छोड़
13: दो,
14: जाओ
13: जाओ
14: जाओ
15: मोबाइल दे लो, जाओ
16: कैसे जाएगा जी
0: है। इस वीडियो के बाद हम आपको फिर से इस जल्लाद का चेहरा दिखाना चाहते हैं। और क्या आप इसका नाम जानते हैं? नंदन कुमार यादव, और इसकी उम्र है सिर्फ 20 साल। जमुई पुलिस के मुताबिक ये आरोपी मुख्य रूप से एक ट्रैक्टर चालक है और नदी से बालू ढोने का काम करता था। और अब इसके इंस्टा रील्स वायरल हो रही है जिनमें ये खुद को इलाके का दबंग दिखाता था या शराब पीते हुए सोशल मीडिया पर लाइव वीडियोज बनाता था। और आरोप है कि उस दिन भी इसी आरोपी ने इस घटना का पूरा वीडियो बनवाया। बाद में जब यह वीडियो 21 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की। आज भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में मुख्य आरोपी नंदन यादव और उसके साथी हरे राम यादव को जब गिरफ्तार किया, तब ये पुलिस की गाड़ी में हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था और अपने चेहरे को यहां भी एक गमछे से छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, छिपाया ही हुआ था समझिए। देखिए,

0: प्लीज
1: आपके पास
0: प्लीज प्लीज
1: प्लीज
2: फोटो भी दिखा
3: दिया।
1: स्कूल में साथ नहीं पढ़ते।
3: चलो
1: मंदिर में
3: बढ़िया सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या
0: करेगा?
2: कॉपी की
0: देख लीजिए।
2: कॉपी की दाम ना करेगा।
4: देखिए यहाँ पे यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है। यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी।
5: फायरिंग की आवाज हुआ सर, तो हम लोग सोचे कि जरूर कहीं एनकाउंटर हो रहा है। जब आए हम लोग देखे तो सब जगह पुलिस, कम से कम 50 पुलिस थे उधर से, 50 को इधर से। आक्रोश है सर, एकदम बहुत आक्रोश था कि किसी एकदम इनको एनकाउंटर किया जाए। ऐसा दरिद्रगी घटना है ना सर, कि आपको भी देख करके रोक अब जाएगा।
6: इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें मुख्य आरोपी नंदन यादव और हरिराम यादव को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। हमने सोचा था कि इस घटना के बाद शायद अब कुछ गंभीरता दिखाई जाएगी, शायद अब बात उस बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर होगी और शायद सवाल उस भीड़ से पूछे जाएंगे। शायद ये पूछा जाएगा कि आखिर एक नाबालिग बच्ची को सरेआम इस तरह क्यों प्रताड़ित किया गया, और यह पूछा जाएगा कि आखिर बिहार की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार, सम्राट चौधरी की पुलिस कर क्या रही है। लेकिन देखिए, कुछ नेता इस घटना में आरोपियों की जाति ढूंढने लगे, कुछ आरोपियों के गमछे के रंग में राजनीति तलाशने लगे, कुछ इसे छिटपुट घटना बताने लगे, कुछ नेता इसमें पिछली सरकारों का जंगल राज खोज कर ले आए, और कुछ लोगों ने तो सारी हदें ही पार कर दी, सारी मर्यादाएं पार कर दी। उन्होंने उल्टा ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर ये लड़की शाम को इस लड़के के साथ उस इलाके में क्या कर रही थी, उससे कैसे कपड़े पहने थे, उसकी बाजू पूरी क्यों नहीं ढकी थी। शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने इस घटना का वीडियो देखने के बाद सबसे पहले ये पूछा कि लड़की अंधेरे में सड़के के साथ क्या करने गई थी। किसी ने पूछा क्या माता पिता को इस लड़के के बारे में पता था। किसी ने पूछा उसने सूट क्यों नहीं पहना था। किसी ने पूछा उसने पूरी बाजू के कपड़े क्यों नहीं पहने थे। सारे सवाल न सिर्फ तकलीफ देते हैं, बल्कि इन लोगों की सोच पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और यहां आज हम ये कहना चाहते हैं कि एक बच्ची किसी लड़के के साथ कहीं भी गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को उसे परेशान करने, छूने, उठाने, घसीटने या उससे किसी भी तरह की बदसलूकी करने का अधिकार मिल गया, और ना ही उन तमाम लोगों को यह अधिकार है कि वो उस लड़की के कपड़े पर चर्चा छेड़ दे, वो उस लड़की को ही शर्मसार करने की कोशिश करे। ऐसा करता हुआ जो भी आपको दिखाई देता है वो सब बराबर के अपराधी। वो शाम को बाहर थी या दिन में, उसे क्या पहना था क्या नहीं पहना था, उसका साथ कौन था, अकेली थी, कोई भी बात किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने की इजाजत नहीं देता। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस लड़की को उस वक्त सुरक्षा की जरूरत थी, घटना के बाद उसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। उसका चेहरा सब डाल रहे हैं वीडियो बना बना कर, लेकिन यह अपराधी अपना चेहरा छिपाता रहा, और इसीलिए आज हम उसका चेहरा बार बार आपको दिखा रहे हैं। जिसके साथ अपराध हुआ उसी से पूछा जाने लगा कि क्यों गई थी, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसी के कपड़ों की जांच होने लगी, और लड़के के साथ उसकी दोस्ती और उसके चरित्र पर ही सवाल उठने लगे, जबकि अपराध करने वाले लड़कों से कोई ये नहीं पूछ रहा कि इन्होंने, तुमने ऐसा क्यों किया। भीड़ में मौजूद लोगों से ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा जा रहा कि जब एक बच्ची मदद के लिए हाथ जोड़ रही थी, वीडियो बना रहे थे, जिस आरोपी ने इस बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की उसके चरित्र पर कोई चर्चा नहीं हो रही। हमें उसके ऐसे ऐसे कई वीडियोस, कई रील्स मिले हैं जिनमें वो दबंगई दिखाने की कोशिश करता है। देखिए

0: जो लोग इस आरोपी पर सवाल ना उठाकर इस बच्ची के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं वो हकीकत में ये जानते तक नहीं है कि ये घटना हुई कैसे थी। जमुई पुलिस के मुताबिक ये बच्ची अपने दोस्त के साथ एक कोचिंग सेंटर से पढ़कर लौट रही थी और जिस पहाड़ी के पास इसे रोका गया वहां एक सेल्फी पॉइंट है जहां अक्सर लोग फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। ये बच्ची भी अपने दोस्त के साथ कोचिंग सेंटर से लौटते हुए इस पहाड़ के पास फोटो खिंचवाने के लिए आई थी और ये बात पुलिस खुद कह रही है। शाम हुई, अंधेरा बढ़ने लगा, तब इसी नंदन यादव ने मुंह पर गमछा बांधा, बीच सड़क पर रोक लिया और इसके बाद उसने इस बच्ची को उठाकर सुनसान जगह ले जाने की भी कोशिश की। उसे कई बार अश्लील तरीके से छुआ जो पॉक्सो एक्ट के तहत संगीन अपराध है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस लड़की से पूछ रहे हैं इस लड़के के साथ क्या कर रही थी। शर्मनाक है, लोगों को छोड़िए हमारे नेता यही काम कर रहे हैं और हम खास तौर पर सभी पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं। जैसे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई छिटपुट घटना घटती है तो सरकार उस पर संवेदनशील रहती है। इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि साल 2005 से पहले आरजेडी की सरकार में जंगल राज होता था, यानी कोई घटना हो जाए तो उस पूरी घटना को छोड़कर पिछली बातें निकाल लेना। और ये राजनीति के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन हमारे नेता एक बार इस घटना की संवेदनशीलता तो देख लेते। इन्हें छोड़िए, बिहार सरकार में जेडीयू के कोटे से मंत्री है श्रवण कुमार, कह रहे हैं बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। सोचिए, इनके लिए अगर ये छोटी घटना है तो ये मंत्री जी बड़ी घटना किसको मानेंगे। कुछ लोगों ने आरोपियों की जाति ढूंढी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिया है सुबह सुबह कि वो इस मामले में कहीं से भी मुस्लिम और यादव एंगल ढूंढ कर लाएं। उन्होंने ये भी लिखा कि मुख्य आरोपी ने भगवा रंग का गमछा पहना था इसलिए ये भगवा बलात्कारी भी हो सकता है। तेजस्वी यादव ने यह बात कही तो जीतन राम मांझी ने एक कदम आगे बढ़कर यह लिख दिया कि तेजस्वी यादव हर यादव को अपना भाई बताते हैं तो उन्हीं भाइयों में से कुछ भाइयों ने जमुई में लड़की का वीडियो बनाया था ताकि उनकी सरकार को बदनाम किया जा सके। और ये राजनीति यही नहीं थमी। आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या इस मामले में हमारे समाज को ऐसी चर्चा की जरूरत थी या लोग चाहते थे कि इस घटना में सरकार और नेता ज्यादा गंभीरता दिखाएं, ऐसे कदम उठाएं जिससे ऐसी चीजें दोबारा ना हो, लेकिन किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। सब के सब अपनी सुविधा अपने अनुसार राजनीति तलाशने में लग गए, लेकिन एक बार उस बच्ची से जाकर पूछे कि उस पर क्या बीत रही होगी। जिस बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई वो तो इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाई कि इस घटना के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे सके। घटना के दो दिन बाद जब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया तब पुलिस खुद स्वतः संज्ञान लेकर इस लड़की और उसके दोस्त के घर पहुंची और इससे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन हमारे नेता, हमारी सरकार, हमारे मंत्री इतने गंभीर मुद्दे को कहीं और ही ले गए हैं।
1: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
2: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है इससे इनकार नहीं किया जा सकता और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
3: आज बिहार के जेलों में जाइए तो 70% एक समाज के लोग आते हैं, चाहे बलात्कार का मामला हो, भूमि हड़प का मामला हो, हत्या का मामला हो, ये सारे केसों में 70% लोग, जो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, एक ही कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के लोग होते हैं।
0: इतने संगीन मुद्दे पर यह राजनीति तब हो रही है जब बिहार के 130 यानी 53% विधायकों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें भी 102 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे, आपने सही सुना, 102 विधायकों पर

0: जब ये पूरी राजनीति हो रही है तब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं और हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी कहेंगे कि वो हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखें। साल 2022 से 2024 के बीच बिहार भारत के उन राज्यों में शामिल रहा जहां महिला अपराधों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। साल 2022 में बिहार महिला अपराधों के मामले में 9वें स्थान पर था, लेकिन साल 2023 में यह 8वें स्थान पर आया, फिर 2024 में 7वें स्थान पर पहुंचा। ये भी तब हुआ जब बिहार की गिनती उन राज्यों में होती है जहां ज्यादातर महिलाएं यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ के मामलों में शिकायत ही दर्ज नहीं कराती। उदाहरण के लिए 2024 में बिहार में रेप के 1165 मामले दर्ज हुए, लेकिन इनमें सिर्फ एक मामला ऐसा था जिसमें पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी, जबकि बाकी राज्यों में यह आंकड़ा ज्यादा होता है। लेकिन बिहार में यह कम इसलिए है क्योंकि बिहार में ज्यादातर नाबालिग लड़कियां परिवार की बदनामी, समाज के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराती। जैसे साल 2024 में ऐसे कुछ कुल 225 मामले दर्ज हुए जिनमें महिलाओं से छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न का आरोप था, लेकिन इनमें एक भी नाबालिग लड़की का मुकदमा शामिल ही नहीं था। यौन उत्पीड़न के सभी 62 मामलों में सिर्फ 5 पीड़िताएं नाबालिग थी और स्टॉकिंग यानी पीछा करने के 57 मामलों में भी सिर्फ 9 नाबालिग पीड़िताएं थी। और ये आंकड़े तब थे जब शादी के लिए लड़कियों को अगवा या बहला फुसला कर ले जाने के 12,438 मामले दर्ज हुए, 6,231 पीड़िताएं 18 साल से कम उम्र की थी। यानी बिहार में नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराध तो ज्यादा है लेकिन रिपोर्टिंग कम। सबसे बड़ी बात यह कि बिहार भारत का वो राज्य है जहां परिवारों और बच्चियों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जागरूकता नहीं। वर्ल्ड विजन इंडिया ने साल 2020 में इस पर एक सर्वे किया था जिसमें बिहार के सिर्फ 0.67% बच्चे ही ऐसे मिले जो पॉक्सो कानून के बारे में जानते थे। यानी बिहार में हर 100 में से एक बच्चा भी इस कानून से परिचित नहीं था। और यहां भी अगर आप जमुई के इस मामले को देखेंगे तो इस बच्ची ने खुद शिकायत दर्ज नहीं कराई, बल्कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस बच्ची तक पहुंची और पुलिस ने बच्ची से शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ आप सोचिए इस पुलिस की हालत कि शनिवार को हुई घटना और पुलिस को कोई जानकारी ही नहीं है उसके बारे में। ये तो वीडियो जब वायरल हुआ और चारों तरफ से घिरने लगी बिहार पुलिस, तब वो नींद से जागे। देखिए, बिहार में महिला अपराधों को लेकर सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद जमुई जैसी घटना होती है। ऐसा नहीं है कि बिहार पहली बार ऐसी घटना को देख रहा है सम्राट चौधरी के गृह मंत्री रहते हुए, अब ये पहली ऐसी बड़ी घटना है। आज से सिर्फ 6 महीने पहले इसी बिहार के नालंदा में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक शादीशुदा लड़की के कपड़े फाड़कर उसकी परेड निकाली थी। कारण सिर्फ इतना था कि ये लड़की इन गुंडों से बात करने के लिए तैयार नहीं थी। आप एक बार इस घटना का वीडियो भी देखें। इन आंकड़ों और घटनाओं को देखने के बाद हमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक साल पुराना वही बयान याद आ रहा है जब उन्होंने गृहमंत्री बनने के बाद इंडिया टुडे के मंच पर कहा था कि रात के 12 बजे भी अगर आपको कोई छू दे तो सम्राट चौधरी सुबह होते ही इस्तीफा दे देंगे।
1: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है, लेकिन जिसके अपराध हो, किसी का व्यक्तिगत झगड़ा है, तब तो मैं पक्का कहूंगा कि भाई पुलिस थाने को बता के जाइए, ऐसे नहीं जाए।
0: आज बात सिर्फ बिहार और बिहार के जमुई की नहीं है। कड़वा सच तो यह है कि जमुई में जो हुआ वो एक बहुत बड़ी बीमारी है और ऐसे लोगों को आज हम भीड़ के भेड़िए कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि भीड़ के बीच छिपे कुछ ऐसे भेड़िए होते हैं जो मौका मिलते ही महिलाओं लड़कियों को गलत तरीके से छूते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, फिर उसी भीड़ में इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें लगता है कि भीड़ उनकी पहचान छिपा लेगी, सैकड़ों लोगों के बीच कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा, कैमरे होंगे लेकिन कैमरे में उनका चेहरा नहीं आएगा, और इसी भरोसे के साथ वो किसी महिला की मजबूरी, किसी लड़की के डर, किसी भीड़ की अफरा तफरी, इन सब का फायदा उठाते हैं। अब उदाहरण के लिए हैदराबाद में हर साल बोनालू त्योहार के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग महिलाओं से छेड़छाड़ करते थे, बदसलूकी करते थे, भीड़ में घुस गए, और यही भीड़ के भेड़िए को पकड़ने के लिए हैदराबाद पुलिस ने शी टीम्स तैनात की। इन टीम्स ने मंदिरों, जुलूस के रास्तों, बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन, बाजारों, भीड़भाड़ वाली तमाम जगहों पर निगरानी रखी।

और ये महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में भी तैनात थी ताकि छेड़छाड़ करने वालों को पकड़ा जा सके, और ऐसा हुआ भी। हिडन कैमरों में हैदराबाद की टीम ने जो देखा वो बता रहा था कि कैसे कुछ भेड़िए भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं, और ये असल में एक बहुत बड़ी बीमारी है। देखिए,

0: खैर, जो नेता ऐसी घटनाओं को छिटपुट मानते हैं उन्हें देश की राजधानी दिल्ली की इस घटना को भी देखना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इस घटना में भी कुछ लोग अपराध की गंभीरता से ज्यादा आरोपियों के धर्म को ढूंढ रहे हैं। ये पूरी घटना 21 सितंबर की है, जब शाम को एक 17 साल की नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद गेट नंबर 7 से आस्था कुंज पार्क गई थी। लेकिन इसी दौरान वहां 3 लड़के पहुंचे, खुद को पुलिसकर्मी बताया और दोनों को डराने धमकाने लगे। ये कहने लगे कि वो यहाँ क्या करने आए हैं और क्या लड़की के माता पिता लड़के के बारे में जानते हैं। जब ये लड़की और उसका दोस्त बुरी तरह डर गए, तब आरोपियों ने लड़की के दोस्त को बंधक बना लिया और लड़की को जबरन पार्क के एक सुनसान हिस्से में ले गए, जहां तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया और घटना के बाद वो मौके से फरार हो गए। आज जब पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और ये बताया कि उसका नाम मोहम्मद आसिफ है, तो लोग घटना की गंभीरता को समझने के बजाय आरोपियों के धर्म की बात करने लगे और गूगल पर यह सर्च होने लगा कि बाकी दो आरोपी भी मुस्लिम हैं या हिंदू हैं। ये तो हालत हो गई है। जब ये बात सामने आई कि बाकी आरोपियों का नाम हेमंत और मुकेश है, तो ये घटना हिंदू और मुस्लिम में बढ़ गई। और हमें लगता है कि इससे ज्यादा दुखद कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि यहां भी आरोपियों के धर्म के चक्कर में पीड़ित लड़की के दर्द, इस घटना की भयावहता को किसी ने नहीं समझा। देखिए,
1: सोमवार देर शाम 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पकड़ा गया है, एनकाउंटर में घायल हुआ है, जबकि बाकी दो आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। साउथ ईस्ट दिल्ली की पुलिस कई इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है।
0: अब बात अमेरिका की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर डाली जिसमें व्हाइट हाउस के बाहर कूड़े से भरी 3 थैलियां रखी, जिस पर CNN, MS Now और पोलिटिको का लिखा हुआ था नाम। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 3 बड़े मीडिया संस्थानों CNN, MS Now और पोलिटिको की व्हाइट हाउस में एंट्री प्रतिबंधित करवा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर इन तीनों मीडिया संस्थानों का निर्देश उनको दे दिया गया है कि अब से उनके किसी भी पत्रकार को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में नहीं आने दिया जाएगा। एंट्री प्रतिबंधित करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों अमेरिकी मीडिया संस्थानों को चिढ़ाते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर उनको कूड़ा बताते हुए तस्वीर डाली जिसमें उन्हें व्हाइट हाउस के बाहर फेंका हुआ दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप CNN, MS Now, पोलिटिको पर पिछले काफी दिनों से हमलावर हैं। तीनों मीडिया संस्थानों को फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाते हुए वो दावा करते हैं कि ये तीनों अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर झूठी कहानियां गढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इन तीनों को ही व्हाइट हाउस में एंट्री बैन करने के साथ साथ कुछ अन्य मीडिया संस्थानों को भी संकेतों में बड़ी धमकी दी है। उनका इशारा अमेरिका के 2 बड़े अखबारों की तरफ है, द न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट। इन दोनों अखबारों पर भी डोनाल्ड ट्रंप अक्सर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा चुके हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने फॉक्स न्यूज के हवाले से बताया कि CNN, MS Now और पोलिटिको के पत्रकारों के इस फैसले की जानकारी पहले नहीं दी गई थी। 18 सितंबर को व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग शुरू होनी थी, उसी दौरान तीनों मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को वहीं पर जब वो मौके पर पहुंचे व्हाइट हाउस में, तब उनको बताया गया कि कल से उनकी एंट्री प्रतिबंधित है, वो कल से ना आए। अब व्हाइट हाउस में मीडिया संस्थानों की एंट्री की प्रतिबंधित किया जाना प्रेस फ्रीडम को लेकर सीधा हमला देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास प्रेस ब्रीफिंग में कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ही अनुमति देने का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद इन फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तीनों मीडिया संस्थानों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को अमेरिकी संविधान में दिए गए फ्री स्पीच के अधिकार के खिलाफ बताया है। CNN, MS Now और पोलिटिको ने अमेरिकी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया। उनकी मांग है कि इस असंवैधानिक फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। इसी के साथ कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने इस फैसले के विरोध में डोनाल्ड ट्रंप की पूल कवरेज को बंद कर दिया है। पूल कवरेज का मतलब है ऐसी टीवी कवरेज जिसमें जगह की कमी की वजह से कुछ पत्रकारों को ही प्रेस ब्रीफिंग में बुलाया जाता है और बाकियों को वो वीडियो भी दे देते हैं, जानकारी भी साझा करते हैं और सभी टीवी चैनल्स को वीडियो और जानकारी मिल जाती है। ABC, CBS, Fox News, NBC ने राष्ट्रपति की पूल कवरेज वाली वर्षों पुरानी व्यवस्था के से नाम वापस ले लिया है, यानी ऐसी खबरें वो राष्ट्रपति की नहीं चलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिकी मीडिया के साथ उनकी एक नई जंग छिड़ी। मीडिया के साथ उनकी ये जंग आने वाले मिड टर्म चुनाव में उनके खिलाफ जा सकती है। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है और ईरान युद्ध की वजह से पहले से ही उनके खिलाफ काफी माहौल बना हुआ है। हालात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग उनके दूसरे कार्यकाल में अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को उन्होंने संभाला था। 21 जनवरी 2025 को उनकी अप्रूवल रेटिंग लगभग 47% थी, 47%। लेकिन रॉयटर्स और इसी के साथ साथ इप्सोस का नया सर्वे आया है जो 20 सितंबर 2026 को अभी अभी किया गया है। उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो 47% से गिरकर 32% रह गई है, जो उनके दूसरे कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। यानी ट्रंप की समर्थन करने के वाले जो लोग हैं वो लगातार अमेरिका में घट रहे हैं। और ये सिर्फ आम अमेरिकियों के बात नहीं है, उनकी खुद की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी भी उनकी अप्रूवल रेटिंग जो 73% पर आ गई है पिछले हफ्ते वो 82% थी और इस सप्ताह 73 पर आ गई है, तो लगभग 9% की गिरावट है। ऐसे में मीडिया संस्थानों के साथ उनका झगड़ा और मुश्किल ला सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया का 36 का आंकड़ा वैसे पहले भी रहा है, और हमेशा आप देखिए तो कई रिपोर्ट्स जो उनके खिलाफ छपती हैं उनके बारे में वो अक्सर खुलकर बोलते भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से अगर आप देखिए तो एक नए परंपरा की शुरुआत हो गई, वो सीधा मीडिया संस्थानों से टकराने लगे, मानहानि के कई केसेस करने लगे, और मानहानि के केसेस में सेटलमेंट में उन्होंने खूब वसूली भी की है, खूब पैसा भी लिया है। डोनाल्ड ट्रंप अब तक मीडिया टेक कंपनीज के साथ अपनी कानूनी लड़ाइयों में जानते हैं 886 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं, साल 1980 के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग मीडिया संस्थानों पर मानहानि के 30 से ज्यादा केस किए, एक भी केस नहीं जीते हैं, लेकिन समझौते के तौर पर वो उनसे करोड़ों रुपए वसूल चुके हैं। साल 2024 में उन्होंने एबीसी न्यूज से 143 करोड़ रुपए, सीबीएस न्यूज से 153 करोड़ रुपए वसूले। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप यूट्यूब एक्स फेसबुक जैसी टेक कंपनी से भी 564 करोड़ रुपए ले चुके हैं। इन कंपनीज पर उन्होंने अकाउंट निलंबित करने को लेकर केस किया था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, द डेस मोइनिस रजिस्टर, इन सब पर केस किए हुए। सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको पर लिए गए फैसले के बीच ट्रंप टीवी की भी बहुत चर्चा हो रही है। व्हाइट हाउस ने कल से ट्रंप टीवी के नाम से डिजिटल वीडियो स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है, तो ट्रंप ने अपना चैनल ही खोल दिया है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट और यूट्यूब पर सातों दिन 24 घंटे ये चलती रहेगी ट्रंप टीवी। ट्रंप टीवी में डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों संबोधनों को दिखाया जाएगा। इसके अलावा इसमें व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। इस पर ट्रंप प्रशासन से जुड़े कार्यक्रम चलेंगे, खासतौर से इस वीडियो स्ट्रीमिंग चैनल पर ट्रंप के पुराने भाषण, उनकी उपलब्धियां, उनका कामकाज, वीडियो सब चलते रहेंगे। अब से डोनाल्ड ट्रंप के देश विदेश में जितने भी कार्यक्रम होंगे उन्होंने ट्रंप टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप टीवी पर आने वाली फीड रियल टाइम अपडेट होगी। न्यूयॉर्क में यूएन महासभा का सत्र चल रहा है, करीब 130 देशों के बड़े नेता या उनके प्रतिनिधि उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज से इस सत्र का सबसे अहम दौर शुरू हो रहा है। भारत के नजरिए से इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सीट है, और इस बार यूएनजीए की यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठकों से अलग जाकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए यूरोप के 4 ताकतवर देशों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के बाद चारों देशों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यूरोप के V4 यानी विसेग्राड समूह के जो 4 देश हैं, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, उन्होंने यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता देने की वकालत की। ये देश मानते हैं कि भारत दुनिया की एक उभरती महाशक्ति है, इसीलिए स्थायी सीट मिलने की उसकी दावेदारी मजबूत है। ये चारों देश यूरोपियन यूनियन और नेटो के सदस्य हैं, और ऐसे में इन देशों का समर्थन पाना भारत की दावेदारी को मजबूत बनाता है। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का एक समूह है जो वैश्विक व्यवस्था में काफी महत्व रखता है। इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया इस बात पर सहमत हो गई थी कि एक वैश्विक व्यवस्था बननी चाहिए जो विश्व युद्ध जैसे स्थितियों को रोके। इसके बाद 1945 में यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हुआ और उसके तहत यूएनएससी बना यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फिलहाल ये जो यूनाइटेड नेशंस का सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और अमेरिका। इसके अलावा यूएनएससी में 2 साल के कार्यकाल के हिसाब से 10 अस्थायी सदस्य भी बनाए जाते हैं। फिलहाल बहरीन, कोलंबिया, कांगो, डेनमार्क, ग्रीस, लातविया, लाइबेरिया, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया इसके अस्थायी सदस्य हैं। यूएनएससी की असली शक्ति उसके स्थायी सदस्यों के पास होती है। वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके विश्व के विवादित संवेदनशील मुद्दों पर अपनी वोटिंग पावर के तहत बड़े फैसले लेते हैं। यूएनएससी में स्थायी सीट वाले देशों के पास यूएन के किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव और निर्णय को रोकने का अधिकार होता है। इसे वीटो पार कहते हैं। अगर एक भी स्थायी सदस्य ने वीटो पार का इस्तेमाल करके यूएन में पेश किसी प्रस्ताव का विरोध किया तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। स्थायी सदस्यता लगातार बनी रहती है, उस पर 2 साल के कार्यकाल वाली बाध्यता नहीं है। यूएन के पीस कीपिंग मिशन की मंजूरी भी स्थायी सदस्य ही देते हैं। ये मिशन गृह युद्ध झेल रहे देशों में शांति लाने के लिए चलाया जाता है, जिसके तहत सदस्य देश अपने सैनिक भेजते हैं। इसके अलावा शांति के लिए खतरा बन रहे देशों पर प्रतिबंध का फैसला भी स्थायी सदस्यों के फैसलों पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय संकट बन रहे युद्धों पर सामूहिक कार्रवाई की दिशा तय करना भी स्थायी सदस्यों के हाथ में ही होता है। यूएन के किसी चार्टर में बदलाव करना हो या फिर सुधार करना हो, इनके लिए भी स्थायी सदस्यों की सहमति चाहिए होती है। अभी तक भारत 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है और अब वो स्थायी सदस्यता के लिए भी दावेदारी पेश कर रहा है। यूएन चार्टर में स्थायी सीट देने का प्रावधान है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 108 के मुताबिक स्थायी सीट के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के कम से कम 2/3 सदस्यों यानी 193 में से कम 129 देश का समर्थन और पक्ष में वोट चाहिए। स्थायी सदस्यता के लिए किसी देश के नाम पर आए प्रस्ताव पर 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन और वोट सबसे जरूरी है। अगर इन स्थायी सदस्य देशों ने विरोध में वीटो पार का इस्तेमाल किया तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। हालांकि अभी तक जब से यूएनएससी का गठन हुआ है किसी भी नए सदस्य को स्थायी सीट नहीं दी गई है। इतना जरूर है कि ज्यादातर देशों को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। भारत पिछले काफी समय से यूएनएससी के ढांचे में सुधार की मांग कर रहा है। तर्क यही है कि साल 1945 में सुरक्षा परिषद के गठन के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान दुनिया पूरी तरह बदल गई। भारत का तर्क है कि सुरक्षा परिषद में उन क्षेत्रों या देशों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है जिनकी आबादी, जिनकी अर्थव्यवस्था और प्रभाव 1945 की तुलना से आज बहुत ज्यादा है। हालांकि यूएनएससी में स्थायी सीट को लेकर फ्रांस, यूके, रशिया, भारत का समर्थन करने आए हैं। ये देश मानते हैं कि यूएनएससी में स्थायी सीटों का विस्तार होना ही चाहिए। इसके अलावा अमेरिका भी सैद्धांतिक तौर पर भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन देता है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी भी देश को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है। जबकि यूएनएससी के विस्तार की चर्चा में हर बार भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे देशों का नाम उठता रहा है जिन्हें स्थायी सदस्यता दी जाने की वकालत की जाती है।
2: Well, we have very good relations with the V4 countries, and we know that these are countries with a very strong, very distinctive capability. These are industrial economies, economies with great innovation and technology talent. I think how the V4 come together is for them to decide, but we certainly welcome the opportunity to work with the V4 together.
3: We all agreed as V4 countries that India, as a part of the Global South country, upcoming superpower in the Indo-Pacific region, must be at the table as the permanent member of UN Security Council.
0: अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन में भाषण दिया। उनके भाषण में अमेरिका की ताकत, अमेरिकी सेना के शौर्य का जिक्र था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने कई मौकों पर युद्ध रुकवाकर शांति कायम करवाई। जो देश उनके लिए चुनौती बने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। यहां पर उन्होंने ईरान का नाम लेते हुए कहा कि ईरान कई देशों के लिए खतरा बना हुआ है, वो मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा है, उसे कभी भी परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने ईरान युद्ध लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान के हमले अभी जारी
4: है। We will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake.
0: अब एक चर्चा ये भी है कि क्या न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की मुलाकात होने वाली है। दरअसल यूएन की बैठक है, और इस बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची पहले से ही न्यूयॉर्क में हैं। और यही वजह है कि ट्रंप और पेजेश्कियान के बीच सीधी बातचीत की चर्चाएं गर्म हो गई। हालांकि अभी तक किसी तरह की आधिकारिक मीटिंग तय नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब दोनों नेता एक ही शहर में और एक ही कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं तो क्या सुलह को लेकर कोई डायरेक्ट बात होगी। हालांकि ईरान वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है। उन्होंने हाल ही में कहा कि ईरान के मुद्दे पर वो फैसला लेने के दौर में आ गए हैं और उनके सामने तीन रास्ते हैं। पहला है बड़ी सैन्य कार्रवाई, दूसरा ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाए रखना, तीसरा ईरान से कोई समझौता करना। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से ईरान को बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का मौका दिया है और यही वजह है कि लोगों को यूएनजीए के लिए आए मसूद पेजेश्कियान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मीटिंग की संभावनाएं दिख रही हैं। दरअसल दोनों ही देश पिछले 7 महीने से जंग लड़ रहे हैं और बीच बीच में समझौते के संकेत देते आए हैं। न्यूयॉर्क आने से पहले ईरान के राष्ट्रपति ने भी बातचीत के संकेत दिए थे। ईरान की तरफ से अमेरिका से बातचीत दोबारा शुरू करने के संकेत मिले, हालांकि ट्रंप की ओर से बड़ी सैन्य कार्रवाई, आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी की वजह से इसकी संभावना बहुत कमजोर है। अमेरिका ने मसूद पेजेश्कियान के दौरे को लेकर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं। अमेरिका ने केवल राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और ईरान के वरिष्ठ राजनयिकों को यूएनजीए में शामिल होने का वीजा दिया है, लेकिन उनकी मीडिया टीम के कुछ सदस्यों को वीजा नहीं दिया गया। इसके अलावा ईरान के प्रतिनिधिमंडल की आवाजाही पर भी कड़े प्रतिबंध हैं। मसूद पेजेश्कियान यूएनजीए में ईरान का पक्ष रखने गए हैं और माना जा रहा है कि वो मिनाब में अमेरिकी हमले में मारे गए 166 बच्चों की बात भी बताएंगे। कुल मिलाकर ईरान यूएनजीए के संबोधन में अमेरिका के खिलाफ अपना पक्ष रख सकता है। क्या धर्म की स्वतंत्रता का दावा करने वाले अमेरिका में अब सनातन आस्था पर हमले की खुली छूट है? क्या सुपर पावर अमेरिका में 90 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा से कट्टरपंथी डरे हुए हैं? टेक्सस शहर में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनियन को लेकर एक बार फिर हिंदू विरोधी और भारत विरोधी तत्व खड़े हैं, लेकिन इस बार अमेरिका की सेना में अफगानिस्तान और इराक युद्ध लड़ चुके एक हिंदू अमेरिकी सैनिक ने इन्हें करारा जवाब दिया है। शुगरलैंड के अष्टलक्ष्मी मंदिर परिसर में करीब 90 फीट ऊंची और 68 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये हनुमान जी की प्रतिमा अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है। अगस्त 2024 में अनावरण के बाद से ही ये मूर्ति वहां रहने वाले 5 लाख से अधिक भारतीय अमेरिकियों के लिए गर्व का प्रतीक है। हालांकि इसकी यही भव्यता कुछ लोगों की आंखों में खटक रही है। ताजा मामला अमेरिकी यूट्यूबर जेस ह्यूज से जुड़ा है। उसने प्रतिमा की तस्वीर शेयर करते हुए खुलेआम धमकी दी कि जब वो सत्ता में आएंगे इसे उखाड़ फेंकेंगे। अमेरिका में होने वाले चुनाव से ठीक पहले आई इस नफरती धमकी से हिंदू आस्था पर मंडराते खतरे की झलक मिलती है। चुनावी माहौल में ऐसा बयान देना कोई इत्तफाक नहीं है, वोटों के ध्रुवीकरण की गहरी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन इस बार नफरत फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिला है। इराक और अफगानिस्तान युद्ध में शामिल रहे पूर्व अमेरिकी सैनिक रुचिर बख्शी ने इस पोस्ट पर कड़ा पलटवार किया। रुचिर बख्शी ने लिखा कि उन्होंने अमेरिकी वर्दी पहनकर अपना परिवार छोड़कर युद्ध के मैदान में इसलिए सेवा नहीं दी थी कि कोई टॉक शो होस्ट उनके धर्म पर हमले का ऐलान कर दे। उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों और हिंदुओं के साथ देश की रक्षा की है। युद्ध के मैदान में कभी किसी ने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनके कई साथियों ने शहादत दी। उन्होंने इसलिए जान नहीं गंवाई कि कोई दूसरों के धर्म को तबाह करने का सपना देखे। रुचिर बख्शी के इस बेबाक जवाब को नॉर्थ अमेरिका के हिंदू संगठनों और दूसरे सैनिकों का भारी समर्थन मिला है और लोगों का कहना है कि टेक्सस में टैक्स देने वाले, व्यापार चलाने वाले, अमेरिकी सेना में सेवाएं देने वाले हिंदू समुदाय के पूजा स्थलों पर हमला अमेरिका के संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता का अपमान है। वैसे इस हनुमान प्रतिमा को निशाना बनाए जाने का यह पहला मामला नहीं है। 2024 में स्थापना के वक्त स्थानीय चर्च और कुछ कट्टरपंथियों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक किया था, हटाने की मांग भी की थी। वहीं साल 2025 में रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन प्रतिमा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, टेक्सस में झूठे भगवान की मूर्ति क्यों लगाने दी जा रही है। अमेरिका एक ईसाई देश है। टेक्सस ऐतिहासिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ रहा है, जहां पिछले 40 सालों से डेमोक्रेट्स को जीत नसीब ही नहीं हुई, लेकिन आगामी चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले एंटी इमिग्रेंट और हिंदू विरोधी बयानबाजी को तूल देने की खतरनाक कोशिश साफ दिख रही है। कट्टरपंथियों को जवाब देकर लोगों से साफ कर दिया है हालांकि कि कानून और संविधान के दायरे में बनी 90 फीट के हनुमान जी की यह प्रतिमा न सिर्फ हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है बल्कि अमेरिका की विविधता का भी प्रतीक है। और अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी, जो एक इंसान और रोबोट के बीच हुए रोमांचक मुकाबले से जुड़ी है। सैन फ्रांसिस्को के एक मिक्स मार्शल आर्ट्स केज में एक 6 फीट लंबे रोबोट ने इंसान को बुरी तरह किक और पंच लगाए हैं। बिल्कुल अंजना, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। एक तरफ थे मशहूर अमेरिकी इन्फ्लुएंसर फ्रेंकी लापेना और दूसरी तरफ था 6 फीट का धातु और मशीनों से बना ताकतवर टर्मिनेटर रोबोट। और शुरू हो गई ह्यूमन वर्सेस ह्यूमनॉइड रोबोट की फाइट। जैसे ही फाइट की घंटी बजी, फ्रेंकी ने रोबोट पर घूंसों की बौछार कर दी। लेकिन लोहे के इस शरीर पर मुक्कों का असर ही कहां होना था। इसके बाद रोबोट ने जो पलटवार किया उसने सबके होश उड़ा दिए। रोबोट के पंच और किक इतने ताकतवर थे कि फ्रेंकी हवा में उछलकर केज के दूसरे कोने में जा गिरे। इंसान ने रोबोट बनाया और अब वही रोबोट इंसान को केज में मात दे रहा है। हालांकि इस फाइट में फ्रेंकी लापेना ने हार नहीं मानी और अंत तक डटे रहे। असल में ये अमेरिकी रोबोटिक्स कंपनी रोबोट एंटरटेनमेंट कॉम्बैट का एक एक्सपेरिमेंट था। ये रोबोट पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं बल्कि इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था। कंपनी अपने वर्चुअल रियलिटी कॉम्बैट गेम के प्रमोशन के लिए इस लाइव फाइट का आयोजन कर रही थी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और धोखा इस कलयुग का प्रसाद है, लाइन में लगे रहो, सबको मिलेगा। नमस्कार।

बिहार के जमुई में एक नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने सबका दिल दुखाया है। पुलिस ने नंदन यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई। नंदन यादव और उसका सहयोगी हरेराम यादव इस वक्त अस्पताल में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाफ एनकाउंटर से जमुई छेड़खानी का कांड पूरा उसका हिसाब हो गया है?

0: खानदानी आजाद है, उसके पैर में गोली लगी है और ये वो है उसमें से तुमको शर्म नहीं आई ये सब करते हो।
1: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ विभत्स वारदात को अंजाम देने वाले, चेहरे पर गमछा बांधकर बिहार में कानून व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर देने वाले नंदन यादव की आंखों में वारदात करते वक्त ना कोई शर्म थी और ना ही कानून का कोई खौफ। लेकिन हाफ एनकाउंटर के बाद इस वारदात का मुख्य आरोपी नंदन यादव घिसटता हुआ दिखा।
0: यही वो नाम यादव है जिसके
1: लगातार फरार चल रहे नंदन यादव को देश ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए देखा। जम्मू में जिस बेखौफ अंदाज में दसवीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी की गई, उसने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया, इनमें 3 नाबालिग भी हैं। दोनों मुख्य आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
2: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है।
3: हमारे गांव की तरफ उधर से जम्मू जिला से रपेटते हुए आए प्रशासन लोग, तो हमारे कुंदर गांव के लोग उधर गांव में हम लोग जब भीड़ जमा देखा तो कांस की ओर छुपने का प्रयास किया। उसके बाद उधर से बराज पर से पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए और जिला से फिर इधर से घेरे तो ये लोग को यहां रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
2: ये कौन सा नदी क्षेत्र है?
3: ये क्यूल नदी।
2: क्यूल नदी
3: जी जी जी।
2: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
3: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
2: अच्छा
3: जी।
2: तो ये पुलिस से भाग रहे थे?
3: भाग रहे थे सर।
2: और पुलिस को चैलेंज भी किया जी,
3: पुलिस के ऊपर गोली चलाया, पुलिस को मारा गोली।
2: अच्छा, पुलिस के ऊपर गोली चलाया इन्होंने।
1: नंदन यादव और हरिराम यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
4: अभी तक कल 3 व्यक्ति निरुद्ध किए गए थे, आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
0: और लोग आरोपी हैं इसमें या फिर अज्ञात में छापेमारी?
4: अभी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे और पूछताछ अभी की जाएगी।
1: तो पुलिस की घेराबंदी के दौरान हुई कार्रवाई में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्य आरोपी नंदन यादव जमुई के प्रतापपुर गाँव का रहने वाला है जो नाबालिग छात्रा से की गई जगह से नजदीक है।
2: इसी सड़क से आगे जब आप क्यूल नदी की तरफ जाते हैं तो वहां पर खनन का काम चलता है, और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है और उसका सहयोगी हरेराम यादव, ये दोनों बालू खनन के कारोबार में शामिल हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बालू की जो घाट से निकासी होती है उसको लेकर के।
1: नंदन यादव के साथ वारदात में एक और आरोपी हरेराम यादव की भी गिरफ्तारी हुई। कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में हरेराम यादव का पैर टूट गया। बिहार पुलिस कह रही है कि वो इस वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? नंदन यादव जैसे दरिंदों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जानवरों की तरह एक नाबालिग छात्रा पर टूट पड़े?
2: छोटे सा पहाड़ है और 2 पहाड़ियां हैं यहाँ पे, एक पहाड़ी वो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाईं तरफ। इन 2 पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं।
1: इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रा से अभद्रता के वीडियो को वायरल करने के मामले में 3 लोग हिरासत में। लेकिन सवाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर है, क्या हाफ एनकाउंटर से नंदन यादव जैसे लोगों के मन में खौफ पैदा किया जा सकता है? शशि भूषण, जमुई, आज तक।
5: अगले महीने शारदीय नवरात्रि में सारा देश मां दुर्गा की पूजा आदि शक्ति के रूप में करेगा। विडंबना देखिए, जिस देश में देवी शक्ति का प्रतीक है उसी देश में बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने को माता पिता को बार बार कहना पड़ता है। बेटियों को देर तक बाहर न रहने, अकेले न जाने की सलाह अक्सर ही दी जाती है, लेकिन कोई सरकार, कोई राज्य बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता दावा नहीं कर पाता।
2: ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद में उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
1: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर लाठड़ा किया है। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया था।
6: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
1: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गई। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
7: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा, अगर हिम्मत है तो। अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं है।
1: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
8: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
9: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
1: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
10: Moral policing can be one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion, but the way that they mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.
1: सवाल ये है कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे moral policing कहा जा सकता है, जबकि ये मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
11: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है, और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
1: भारत में महिला अपराधों पर, यहां तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना ये है कि ये सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
5: बिहार के जमुई में दरिंदगी पर सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
12: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथियों। लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है, और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
5: बिहार की तरह दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसे लेकर सवाल दो वारदातों से और गहरा गया है। दिल्ली के कालकाजी में एक नाबालिग से पार्क में गैंगरेप किया गया, तो सदर बाजार इलाके में स्टेशनरी की दुकान जा रही एक बच्ची का दुकानदार ने यौन शोषण किया।

0: राजधानी दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में जिस तरह से एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ और एक बच्ची का बाजार में यौन शोषण हुआ, उसके बाद देश की राजधानी में बेटियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों में है। सोमवार शाम को दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी। दिल्ली के कालकाजी इलाके के इसी पार्क में आसिफ समेत तीन लोगों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था कुंज पार्क में, जहां पर सोमवार देर शाम 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी आसिफ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आसिफ के पैर में गोली लगी है, वो घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दो साथियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमवार शाम उनको जानकारी मिली, शिकायत मिली कि 17 साल की एक लड़की के साथ इस पार्क में तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि 7:30 बजे के आसपास तीनों इस पार्क में दाखिल होती है, वो मंदिर आई थी और उसके बाद उसके बैक गेट के इलाके से होते हुए आस्था कुंज पार्क में आ जाती है, गेट नंबर 7 से, और इस पार्क के अंदर जब वो पहुंचती है तो अंधेरा हो ही चुका था, लाइट जल रही थी लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं थी। तभी वो तीनों सामने आ जाते हैं, उन्होंने खुद को पुलिस वाला बनाया ताकि लड़कियों को डराया जा सके, और पुलिस वाला बनाने के बाद वो पीड़िता को अलग कर दिए, दो लड़कियों को एक तरफ उन्होंने कर दिया और पीड़िता को एक तरफ ले गए। वहां पर आसिफ नाम का आरोपी जो एनकाउंटर के बाद घायल हुआ है, पकड़ा गया है, उसने मंचा निकाला और उसने पीड़िता को डराना धमकाना शुरू किया और एक ने चाकू निकाला, दोनों ने मिलकर पीड़िता को धमकाया और उसके बाद बारी बारी तीनों ने गलत हरकत को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए।
0: इस वारदात के एक मुख्य आरोपी आसिफ को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, वहीं बाकी दो और आरोपी भी धरे गए। यहीं पर आसिफ नाम के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। यहां पर आरोपी की बाइक गिरी हुई दिख रही है, पास ही आरोपी की पिस्टल पड़ी है।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ, जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है, इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा, पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
0: पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया है कि सोमवार शाम को वो अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी। पूजा के बाद दोनों मंदिर के पास के आस्था कुंज पार्क गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे हैं।
2: एक अक्यूज जो है आशीष, उसको एक पुलिस एनकाउंटर के तहत सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ा है। दो और लोगों के नाम सामने आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, तो आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी बाकी जो अरेस्ट हैं वो भी डाले जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी।
0: इस मामले में भले ही सभी तीनों आरोपी पकड़े गए हों, लेकिन इस वारदात ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दिल्ली के सदर बाजार में हो रहे इस प्रदर्शन को देखिए, जो 11 साल की एक मासूम बच्ची के यौन शोषण के खिलाफ है। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि थाने में बंद आरोपी और उसके परिजन भीड़ के निशाने पर आ गए, जिन्हें बचाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। बच्ची से रेप की वारदात 16 सितंबर रात को हुई, जब छठी में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी। तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
3: मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ, और अगर आप देखें ये पूरे इलाके को तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कंजस्टेड इलाका है और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहां काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी आप देखें तो ये जो पूरी गली है, इसी गली में ये दूसरी दुकान जो है ये बताई जा रही है ये मकसूद की है, जहां वो टेलर का काम करता था। 16 तारीख की रात करीब 11 बजे के आसपास जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से नीचे उतरती है, स्टेशनरी जाती है, कॉपी पेंसिल लेने के लिए जाती है, लेकिन मकसूद जो कि उसे पहले से जानता था उसे अपनी दुकान में लाता है। आरोप यह है कि उसके हाथ पैर बांधता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है।
0: बच्ची से इस तरह की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
4: हमारे भी बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा कि हम बाहर निकालें ना निकालें, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हमें फिक्र महसूस हो गया, क्योंकि अब जब ऐसा इंसान नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा, शैतान जाग के अंदर, तो हर आदमी को डर लगेगा।
0: राजधानी दिल्ली की दोनों ही वारदातें याद दिलाती हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का खौफ नहीं है, इसलिए बेटियां बार बार निशाना बन रही हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
5: और अब बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, जिसका पहली बार आयोजन हुआ है दिल्ली से बाहर केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जिसमें फिल्म जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया।
0: ये सितारों के सम्मान की तस्वीर है। 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सिनेमा जगत की हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्म युग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए दिया गया, जो कि अपने पति और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पहुंची थी। बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को दिया गया। भक्षक के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को समारोह में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्टर धनुष को डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन पहली बार केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास किया जा रहा है। अब हर साल अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दिल्ली से बाहर सेरेमनी कराने को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य देश के सभी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में कुल 45 पुरस्कार दिए गए, इनमें 26 फीचर फिल्म, 16 नॉन फीचर फिल्म, 2 सिनेमा पर लेखन और 1 दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल है। आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का हो पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार का, आतंकवाद और परमाणु हथियारों की होड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी के मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग। बिहार के जमुई में एक नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने सबका दिल दुखाया है। पुलिस ने नंदन यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई। नंदन यादव और उसका सहयोगी हरेराम यादव इस वक्त अस्पताल में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाफ एनकाउंटर से जमुई छेड़खानी का कांड पूरा उसका हिसाब हो गया है।

0: चंदन नहीं यादव उससे पैर में गोली लगी है और ये वो है उसमें से तुमको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए।
1: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ विभत्स वारदात को अंजाम देने वाले, चेहरे पर गमछा बांधकर बिहार में कानून व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर देने वाले नंदन यादव की आंखों में वारदात करते वक्त ना कोई शर्म थी और ना ही कानून का कोई खौफ। लेकिन हाफ एनकाउंटर के बाद इस वारदात का मुख्य आरोपी नंदन यादव घिसटता हुआ दिखा।
0: यही नाम यादव है जिसके
1: लगातार फरार चल रहे नंदन यादव को देश ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए देखा। जम्मू में जिस बेखौफ अंदाज में 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी की गई, उसने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया। इनमें 3 नाबालिग भी हैं। दोनों मुख्य आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
2: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है।
3: हमारे गांव की तरफ उधर से जम्मू जिला से रपेटते हुए आए प्रशासन लोग, तो हमारे कुंदर गांव के लोग उधर गांव में हम लोग जब भीड़ जमा देखा तो कांस की ओर छुपने का प्रयास किया। उसके बाद उधर से बराज पर से पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए और जिला से फिर इधर से घेरे तो ये लोग को यहां रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
2: ये कौन सा नदी क्षेत्र है?
3: ये क्यूल नदी।
2: क्यूल नदी
3: जी जी जी।
2: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
3: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
2: अच्छा
3: जी।
2: ये पुलिस से भाग रहे थे?
3: भाग रहे थे सर।
2: और पुलिस को चैलेंज भी किया
3: जी, पुलिस के ऊपर गोली चलाया, पुलिस को मारा गोली।
2: अच्छा, पुलिस के ऊपर गोली चलाया इन्होंने।
1: नंदन यादव और हरेराम यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
4: अभी तक कल 3 व्यक्ति निरुद्ध किए गए थे, आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
5: और लोग आरोपी हैं इसमें या फिर अज्ञात में छापेमारी?
4: अभी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे और पूछताछ अभी की जाएगी।
1: तो पुलिस की घेराबंदी के दौरान हुई कार्रवाई में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्य आरोपी नंदन यादव जमुई के प्रतापपुर गाँव का रहने वाला है जो नाबालिग छात्रा से की गई जगह से नजदीक है।
2: इसी सड़क से आगे जब आप क्यूल नदी की तरफ जाते हैं तो वहां पर खनन का काम चलता है और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है और उसका सहयोगी हरेराम यादव, ये दोनों बालू खनन के कारोबार में शामिल हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बालू की जो घाट से निकासी होती है उसको लेकर के।
1: नंदन यादव के साथ वारदात में एक और आरोपी हरेराम यादव की भी गिरफ्तारी हुई। कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में हरेराम यादव का पैर टूट गया। बिहार पुलिस कह रही है कि वो इस वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? नंदन यादव जैसे दरिंदों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जानवरों की तरह एक नाबालिग छात्रा पर टूट पड़े?
2: छोटे सा पहाड़ है और 2 पहाड़ियां हैं यहाँ पे। एक पहाड़ी वो जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाईं तरफ। इन 2 पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं।
1: इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रा से अभद्रता के वीडियो को वायरल करने के मामले में 3 लोग हिरासत में। लेकिन सवाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर है। क्या हाफ एनकाउंटर से नंदन यादव जैसे लोगों के मन में खौफ पैदा किया जा सकता है? शशि भूषण, जमुई, आज तक।
6: अगले महीने शारदीय नवरात्रि में सारा देश मां दुर्गा की पूजा आदि शक्ति के रूप में करेगा। विडंबना देखिए, जिस देश में देवी शक्ति का प्रतीक है उसी देश में बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने को माता पिता को बार बार कहना पड़ता है। बेटियों को देर तक बाहर न रहने, अकेले न जाने की सलाह अक्सर ही दी जाती है, लेकिन कोई सरकार, कोई राज्य बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता दावा नहीं कर पाता।
2: ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद में उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
1: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर लाठड़ा किया है। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया था।
7: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
1: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गई। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
8: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा, अगर हिम्मत है तो। अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़ बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं।
1: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
9: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था ना। आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
10: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
1: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
11: Moral policing can be on one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion, but the way that they mishandled, mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.
1: सवाल यह है कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे moral policing कहा जा सकता है, जबकि यह मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
12: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है, और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
1: भारत में महिला अपराधों पर, यहाँ तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना ये है कि ये सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
6: बिहार के जमुई में दरिंदगी पर सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
13: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे

0: अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
1: बिहार की तरह दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसे लेकर सवाल दो वारदातों से और गहरा गया है। दिल्ली के कालकाजी में एक नाबालिग से पार्क में गैंगरेप किया गया, तो सदर बाजार इलाके में स्टेशनरी की दुकान जा रही एक बच्ची का दुकानदार ने यौन शोषण किया।

0: राजधानी दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में जिस तरह से एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ और एक बच्ची का बाजार में यौन शोषण हुआ, उसके बाद देश की राजधानी में बेटियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों में है। सोमवार शाम को दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी। दिल्ली के कालकाजी इलाके के इसी पार्क में आसिफ समेत तीन लोगों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था कुंज पार्क में, जहां पर सोमवार देर शाम 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी आसिफ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आसिफ के पैर में गोली लगी है, वो घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दो साथियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमवार शाम उनको जानकारी मिली, शिकायत मिली कि 17 साल की एक लड़की के साथ इस पार्क में तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि 7:30 बजे के आसपास तीनों इस पार्क में दाखिल होती है, वो मंदिर आई थी और उसके बाद उसके बैक गेट के इलाके से होते हुए आस्था कुंज पार्क में आ जाती है गेट नंबर 7 से, और इस पार्क के अंदर जब वो पहुंचती है तो अंधेरा हो ही चुका था, लाइट जल रही थी लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं थी। तभी वो तीनों सामने आ जाते हैं, उन्होंने खुद को पुलिस वाला बनाया ताकि लड़कियों को डराया जा सके, और पुलिस वाला बनाने के बाद वो पीड़िता को अलग कर दिए, दो लड़कियों को एक तरफ उन्होंने कर दिया और पीड़िता को एक तरफ ले गए। वहां पर आसिफ नाम का आरोपी जो एनकाउंटर के बाद घायल हुआ है, पकड़ा गया है, उसने मंचा निकाला और उसने पीड़िता को डराना धमकाना शुरू किया और एक ने चाकू निकाला, दोनों ने मिलकर पीड़िता को धमकाया और उसके बाद बारी बारी तीनों ने गलत हरकत को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए।
0: इस वारदात के एक मुख्य आरोपी आसिफ को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, वहीं बाकी दो और आरोपी भी धरे गए। यहीं पर आसिफ नाम के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। यहां पर आरोपी की बाइक गिरी हुई दिख रही है, पास ही आरोपी की पिस्टल पड़ी है।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ, जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
0: पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया है कि सोमवार शाम को वो अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी। पूजा के बाद दोनों मंदिर के पास के आस्था कुंज पार्क गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे हैं।
2: एक अक्यूज जो है आशीष, उसको एक पुलिस एनकाउंटर के तहत सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ा है। दो लोगों के नाम सामने आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, तो इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी बाकी जो अरेस्ट हैं वो भी डाले जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी।
0: इस मामले में भले ही सभी तीनों आरोपी पकड़े गए हों, लेकिन इस वारदात ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दिल्ली के सदर बाजार में हो रहे इस प्रदर्शन को देखिए, जो 11 साल की एक मासूम बच्ची के यौन शोषण के खिलाफ है। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि थाने में बंद आरोपी और उसके परिजन भीड़ के निशाने पर आ गए, जिन्हें बचाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा।

0: बच्ची से रेप की वारदात 16 सितंबर रात को हुई, जब छठी में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी। तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
1: मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ, और अगर आप देखें ये पूरे इलाके को तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कंजस्टेड इलाका है, और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहाँ काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी आप देखें तो ये जो पूरी गली है, इसी गली में ये दूसरी दुकान जो है ये बताई जा रही है ये मकसूद की है, जहां वो टेलर का काम करता था। 16 तारीख की रात करीब 11 बजे के आसपास जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से नीचे उतरती है, स्टेशनरी जाती है, कॉपी पेंसिल लेने के लिए जाती है, लेकिन मकसूद जो कि उसे पहले से जानता था उसे अपनी दुकान में लाता है। आरोप ये है कि उसके हाथ पैर बांधता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है।
0: बच्ची से इस तरह की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
2: हमारे भी बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा कि हम बाहर निकालें ना निकालें, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हमें फिक्र महसूस हो गया, क्योंकि अब जब ऐसा इंसान नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा, शैतान जाग गया अंदर, तो हर आदमी को डर लगेगा।
0: राजधानी दिल्ली की दोनों ही वारदातें याद दिलाती हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का खौफ नहीं है, इसलिए बेटियां बार बार निशाना बन रही हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: यूपी के लखीमपुर खीरी से भी बहुत ही डराने वाली वारदात सामने आई। यहां पर एक टीचर ने आरोपी से बात करना बंद किया तो उसने स्कूल में घुसकर टीचर को गोलियों से भून डाला और उसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली।
4: बात करने से बंद किया तो स्कूल में घुसकर गोली मारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की इस वारदात ने देश को झकझोर दिया है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी के इस स्कूल में सैकड़ों बच्चों की मौजूदगी में एक टीचर को ब्रेकअप से नाराज हत्यारा सऊद अंसारी घसीटता हुआ ले जाता है। वारदात की ये सीसीटीवी तस्वीरें टीचर निशात फातिमा की हत्या से ठीक पहले की है, जहां आरोपी सऊद अंसारी पहले टीचर को जबरन कॉरिडोर में ले गया, फिर कुछ देर के विवाद के बाद महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, महिला टीचर की हत्या के बाद आरोपी सऊद अंसारी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर दी। ये सब देखकर स्कूल का स्टाफ सकते में आ गया। बच्चे ऐसी वारदात का गवाह बन गए जिसकी बुरी यादें उनके जहन में हमेशा रहेंगी।
5: चार गोलियां चली। हाँ, चार चली, फिर आवाज आई,
6: यहाँ निशान में एक टीचर है, उसके अंदर आया और उसका यहाँ पर पूरा काट दिया।
4: इस वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल स्कूल की सुरक्षा को लेकर है, जिसमें आरोपी इतनी आसानी से दाखिल हो जाता है, आखिर उसे किसी ने रोका क्यों नहीं?
7: ये पहले जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसे कर लेने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा वो तो कैमरा फुटेज में है ना।
8: उसमें कैसे आ गया ये थोड़ा सा सवाल होता है, ये भी क्या व्यवस्था है यहाँ पे, क्या
7: सारी व्यवस्था है यहाँ पे आईडी कार्ड देखकर ही बच्चों को दिया जाता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल स्कूल। अरे वही तो कह रहे हैं, आप लोग देखिए अभी जो चीज़ आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं कैसे हुआ, पहले देखिए जो चीज़, मेरे ख्याल से ये सवाल आप बेहतर होगा पुलिस से इसलिए पूछे क्योंकि अभी वो कैमरा फुटेज वो देख रहे हैं, है ना, तो उसमें बेहतर पता लग जाएगा क्या हुआ। ऐसे तो आप मुझसे सवाल कुछ पूछेंगे,
8: सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है स्कूल में, क्या है
7: स्कूल में सिक्योरिटी की व्यवस्था क्या होनी चाहिए आप बताइए, क्या होनी चाहिए
8: गेट पे कम से कम चेक होना चाहिए,
7: क्या होना चाहिए चेक छुट्टी के टाइम पे, तो सिक्योरिटी हमारा है ना, माय गार्ड है और सिक्योरिटी में कैमरे हैं, सब चीजें, तभी तो पता लगेगा, वरना पता कैसे लगेगा। तो कैमरे नहीं चल रहे तो फिर पुलिस क्या कर रही है अंदर?
4: जिस वक्त आरोपी टीचर को घसीट कर ले जाता दिख रहा है, उस वीडियो में बच्चों के साथ दो महिलाएं भी नजर आ रही हैं, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोला।
9: शहर का सबसे सुरक्षित इलाका कलेक्ट्रेट परिसर, जहाँ जिले के डीएम बैठते हैं, जहाँ जिले की एसपी बैठती है, उस सुरक्षित परिसर के आसपास पड़ोस में बना एक निजी स्कूल जो है वहाँ पर शूट आउट होता है। एक लड़का अपने बैग में तमंचा लेकर पहुँच जाता है, उसके बाद क्लास में घुसता है, पहले जो अपनी प्रेमिका है या टीचर है उसको गोली मारता है, उसके खुद गोली मार कर हत्या कर देता है। सवाल ये उठता है कि शहर के पड़ोस में जहां सबसे सुरक्षित इलाका जिसको कहा जाता है, जहां जिले की डीएम एसपी तक बैठते हैं, हम कोशिश करेंगे। देखिए वो स्टाफ है, ये स्टाफ उस समय कितना सहम गया होगा, कितना डर गया होगा। मैडम क्या हुआ था उस समय, क्या जान पाएंगे आप लोग? आपके यहाँ और टीचर्स भी हैं, ये भी स्टाफ है, ऐसे तो फिर कोई भी,
10: देखिए हम लोग इस चीज के लिए तो कुछ कह भी नहीं सकते और ना समझ सकते हैं आपको और ना समझा।
9: नेचर कैसी थी, उसका नेचर कैसा था जो आपके यहाँ पढ़ा?
10: बहुत बढ़िया नेचर था,
9: मिलनसार थी।
10: हाँ मिलनसार बिल्कुल। मॉर्निंग में हम लोग की मॉर्निंग हुई है, मॉर्निंग में ही अभी हम लोग की मॉर्निंग हुई है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था।
9: अच्छा, ये लड़का जिस पे आरोप है कभी आया यहाँ पर?
10: मुझे नहीं मालूम।
9: लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर देखिए इतना डर है इस शूट आउट को देखकर। देखिए जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने का, जिनके जो बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं।
4: मरने वाली टीचर निशात फातिमा के पिता लखीमपुर खीरी के सुमेर नगर गांव के रहने वाले हैं और इस वक्त सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। निशात फातिमा का परिवार आरोपी सऊद अहमद के घर में किराए पर रह चुका है। इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी, लेकिन साल भर से निशात फातिमा ने सऊद अंसारी से बात करना भी कम कर दिया। ये भी बताया जा रहा है कि निशात फातिमा की शादी कहीं और तय हो गई थी। यही बात आरोपी सऊद अंसारी को नागवार गुजरी और उसने वारदात को अंजाम दिया।
11: इसी तरह की कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया गया, ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी थी। यदि उसको डिटेन किया जाता गेट पर तो शायद इस तरह की घटना एक टीचर के साथ न होती। निर्मम हत्या हुई उस लड़की की, उस लड़की की मैं चाचा हूँ, इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे तो न्याय मिलना चाहिए। इस तरह के स्कूल अपने कमियों को छिपाने के लिए अभी तक किसी तरह का उन्होंने पुलिस में या अन्य कार्रवाई नहीं की।
4: निशात की नाराजगी की वजह से सऊद न सिर्फ तनाव में था बल्कि मरने मारने पर आमादा था। इसका संकेत उसके सोशल मीडिया स्टेटस से लगता है, जिसमें उसने अपने दोस्तों से अपील की थी कि अगर वो मर जाए तो उसकी फोटो वो हटा दे। कहा जा रहा है कि सऊद को उसके दोस्त समझाते थे, लेकिन माना जा रहा है कि निशात से उसका मनमुटाव इतना बढ़ गया कि उसने पहले सरेआम उसे गोलियों से भूना और फिर उसने खुदकुशी कर ली। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।
3: और अब बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे में जारी तनाव के बारे में, जहां एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अब फैकल्टी और छात्र आमने सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है।
12: आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में तीन आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की सीसीटीवी तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर दुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं।
13: सर रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे। दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो डुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप क्लास में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। IIT में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफ कोर्स ना मेरे साथ, ना मेरे किसी दोस्त के साथ, ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
14: उनके पास कर सकते कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहिल ने जो है उनको किसी बार अप्रोच भी किया हो या कुछ अपनी शंका भी जताई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने का नहीं है। ये स्टेटमेंट SC/ST स्टेल IIT बॉम्बे ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है।
13: इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा हो, मुझे भी दिख रहा है। तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है SC/ST, वो तो कम्प्लीटली बेसलेस ही हुआ ना फिर, वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
12: एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RPI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर डुल्ला पर SC/ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर डुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया, फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। 3 दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ है कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है, जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था, साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो, मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC/ST एक्ट लगाने का है। वहीं परिवार मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है।
15: चौकशी चालू है, वो चौकशी चालू करेंगे, लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके वो जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण डुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है।
12: बहरहाल अब जंग छात्र और फैकल्टी के बीच आ गई है, जिस पर अब जाति पर घमासान की एंट्री हो चुकी है। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
3: और अब बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, जिसका पहली बार आयोजन हुआ है दिल्ली से बाहर केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जिसमें फिल्म जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया।
0: ये सितारों के सम्मान की तस्वीर है। 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सिनेमा जगत की हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्म युग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए दिया गया, जो कि अपने पति और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पहुंची थी। बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को दिया गया। भक्षक के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को समारोह में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्टर धनुष को डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन पहली बार केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास किया जा रहा है। अब हर साल अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दिल्ली से बाहर सेरेमनी कराने को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य देश के सभी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में कुल 45 पुरस्कार दिए गए, इनमें 26 फीचर फिल्म, 16 नॉन फीचर फिल्म, 2 सिनेमा पर लेखन और 1 दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का हो पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार का, आतंकवाद और परमाणु हथियारों की होड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी के मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, नादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग। बिहार के जमुई में एक नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने सबका दिल दुखाया है। पुलिस ने नंदन यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई। नंदन यादव और उसका सहयोगी हरेराम यादव इस वक्त अस्पताल में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाफ एनकाउंटर से जमुई छेड़खानी का कांड पूरा उसका हिसाब हो गया है।

0: आमदनी आता है, उससे कैर में गोली लगी है और ये वो है उसमें से तुमको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए।
1: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ विभत्स वारदात को अंजाम देने वाले, चेहरे पर गमछा बांधकर बिहार में कानून व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर देने वाले नंदन यादव की आंखों में वारदात करते वक्त ना कोई शर्म थी और ना ही कानून का कोई खौफ। लेकिन हाफ एनकाउंटर के बाद इस वारदात का मुख्य आरोपी नंदन यादव खिसकता हुआ दिखा।
0: यही राम यादव है जिसके
1: लगातार फरार चल रहे नंदन यादव को देश ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए देखा। जम्मू में जिस बेखौफ अंदाज में दसवीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी की गई, उसने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया। इनमें 3 नाबालिग भी हैं। दोनों मुख्य आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
2: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है।
3: हमारे गांव की तरफ उधर से जम्मू जिला से रपेटते हुए आए प्रशासन लोग, तो हमारे कुंदर गांव के लोग उधर गांव में, हम लोग जब भीड़ जमा देखा तो कांस की ओर छुपने का प्रयास किया। उसके बाद उधर से बराज पर से पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए और जिला से फिर इधर से घेरे, तो ये लोग को यहां रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
2: ये कौन सा नदी क्षेत्र है?
3: ये क्यूल नदी।
2: क्यूल नदी
3: जी जी जी।
2: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
3: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
2: अच्छा
3: जी।
2: तो ये पुलिस से भाग रहे थे?
3: भाग रहे थे सर।
2: और पुलिस को चैलेंज भी किया
3: जी, पुलिस के ऊपर गोली चलाया, पुलिस मारा गोली।
2: अच्छा, पुलिस के ऊपर गोली चलाया इन्होंने।
1: नंदन यादव और हरेराम यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
4: अभी तक कल 3 व्यक्ति निरुद्ध किए गए थे, आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
5: और लोग आरोपी हैं इसमें या फिर अज्ञात में छापेमारी?
4: अभी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे और पूछताछ अभी की जाएगी।
1: तो पुलिस की घेराबंदी के दौरान हुई कार्रवाई में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्य आरोपी नंदन यादव जमुई के प्रतापपुर गाँव का रहने वाला है, जो नाबालिग छात्रा से की गई जगह से नजदीक है।
2: इसी सड़क से आगे जब आप क्यूल नदी की तरफ जाते हैं तो वहां पर खनन का काम चलता है, और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है और उसका सहयोगी हरेराम यादव, ये दोनों बालू खनन के कारोबार में शामिल हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बालू की जो घाट से निकासी होती है उसको लेकर के।
1: नंदन यादव के साथ वारदात में एक और आरोपी हरेराम यादव की भी गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में हरेराम यादव का पैर टूट गया। बिहार पुलिस कह रही है कि वो इस वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? नंदन यादव जैसे दरिंदों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जानवरों की तरह एक नाबालिग छात्रा पर टूट पड़े?
2: छोटे सा पहाड़ है और 2 पहाड़ियां हैं यहाँ पे, एक पहाड़ी वो जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाईं तरफ। इन 2 पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं।
1: इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रा से अभद्रता के वीडियो को वायरल करने के मामले में 3 लोग हिरासत में। लेकिन सवाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर है। क्या हाफ एनकाउंटर से नंदन यादव जैसे लोगों के मन में खौफ पैदा किया जा सकता है? शशि भूषण, जमुई, आज तक।
6: अगले महीने शारदीय नवरात्रि में सारा देश मां दुर्गा की पूजा आदि शक्ति के रूप में करेगा। विडंबना देखिए, जिस देश में देवी शक्ति का प्रतीक है उसी देश में बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने को माता पिता को बार बार कहना पड़ता है। बेटियों को देर तक बाहर न रहने, अकेले न जाने की सलाह अक्सर ही दी जाती है, लेकिन कोई सरकार कोई राज्य बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता दावा नहीं कर पाता।
2: ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद में उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
1: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर लाठड़ा किया है। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया था।
7: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
1: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गईं। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
8: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा अगर हिम्मत है तो, अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं।
1: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
9: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
10: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए, जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
1: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
11: Moral policing can be one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion, but the way that they mishandled, mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.
1: सवाल ये है कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे moral policing कहा जा सकता है, जबकि ये मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
12: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
1: भारत में महिला अपराधों पर, यहां तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना यह है कि यह सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
6: बिहार के जमुई में दरिंदगी पर सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
13: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथियों। लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
6: बिहार की तरह दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसे लेकर सवाल दो वारदातों से और गहरा गया है। दिल्ली के कालकाजी में एक नाबालिग से पार्क में गैंगरेप किया गया, तो सदर बाजार इलाके में स्टेशनरी की दुकान जा रही एक बच्ची का दुकानदार ने यौन शोषण किया।

0: राजधानी दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में जिस तरह से एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ और एक बच्ची का बाजार में यौन शोषण हुआ, उसके बाद देश की राजधानी में बेटियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों में है। सोमवार शाम को दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी। दिल्ली के कालकाजी इलाके के इसी पार्क में आसिफ समेत तीन लोगों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था कुंज पार्क में, जहां पर सोमवार देर शाम 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी आसिफ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आसिफ के पैर में गोली लगी है, वो घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दो साथियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमवार शाम उनको जानकारी मिली, शिकायत मिली कि 17 साल की एक लड़की के साथ इस पार्क में तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि 7:30 बजे के आसपास तीनों इस पार्क में दाखिल होती है, वो मंदिर आई थी और उसके बाद उसके बैक गेट के इलाके से होते हुए आस्था कुंज पार्क में आ जाती है गेट नंबर 7 से, और इस पार्क के अंदर जब वो पहुंचती है तो अंधेरा हो ही चुका था, लाइट जल रही थी लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं थी। तभी वो तीनों सामने आ जाते हैं, उन्होंने खुद को पुलिस वाला बनाया ताकि लड़कियों को डराया जा सके, और पुलिस वाला बनाने के बाद वो पीड़िता को अलग कर दिए, दो लड़कियों को एक तरफ उन्होंने कर दिया और पीड़िता को एक तरफ ले गए। वहां पर आसिफ नाम का आरोपी जो एनकाउंटर के बाद घायल हुआ है, पकड़ा गया है, उसने मंचा निकाला और उसने पीड़िता को डराना धमकाना शुरू किया और एक ने चाकू निकाला, दोनों ने मिलकर पीड़िता को धमकाया और उसके बाद बारी बारी तीनों ने गलत हरकत को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए।
0: इस वारदात के एक मुख्य आरोपी आसिफ को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, वहीं बाकी दो और आरोपी भी धरे गए। यहीं पर आसिफ नाम के आरोपी का एनकाउंटर हुआ, यहां पर आरोपी की बाइक गिरी हुई दिख रही है, पास ही आरोपी की पिस्टल पड़ी है।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ, जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है, इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा, पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
0: पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया है कि सोमवार शाम को वो अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी। पूजा के बाद दोनों मंदिर के पास के आस्था कुंज पार्क गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे हैं।
2: एक अक्यूज जो है आशीष, उसको एक पुलिस एनकाउंटर के तहत सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ा है। दो और लोगों के नाम सामने आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी बाकी जो अरेस्ट हैं वो भी डाले जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी।
0: इस मामले में भले ही सभी तीनों आरोपी पकड़े गए हों, लेकिन इस वारदात ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दिल्ली के सदर बाजार में हो रहे इस प्रदर्शन को देखिए, जो 11 साल की एक मासूम बच्ची के यौन शोषण के खिलाफ है। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि थाने में बंद आरोपी और उसके परिजन भीड़ के निशाने पर आ गए, जिन्हें बचाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। बच्ची से रेप की वारदात 16 सितंबर रात को हुई, जब छठी में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी। तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
3: मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ, और अगर आप देखें ये पूरे इलाके को तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कंजस्टेड इलाका है और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहां काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी आप देखें तो ये जो पूरी गली है, इसी गली में ये दूसरी दुकान जो है ये बताई जा रही है ये मकसूद की है, जहां वो टेलर का काम करता था। 16 तारीख की रात 11 बजे के आसपास जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से नीचे उतरती है, स्टेशनरी जाती है, कॉपी पेंसिल लेने के लिए जाती है, लेकिन मकसूद जो कि उसे पहले से जानता था उसे अपनी दुकान में लाता है। आरोप ये है कि उसके हाथ पैर बांधता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है।
0: बच्ची से इस तरह की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
4: हमारे भी बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा है कि हम बाहर निकाले ना निकाले, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हमें फिक्र महसूस हो गया, क्योंकि अब जब ऐसा इंसान नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा है शैतान जाग के अंदर, तो हर आदमी को डर लगेगा।
0: राजधानी दिल्ली की दोनों ही वारदातें याद दिलाती हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का खौफ नहीं है, इसलिए बेटियां बार बार निशाना बन रही हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
5: और अब बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे में जारी तनाव के बारे में, जहां एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अब फैकल्टी और छात्र आमने सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है।
6: आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में 3 आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की सीसीटीवी तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 बजे से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर दुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं।
7: सर रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे, दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो दुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप क्लास में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। IIT जितना मेरा एक्सपीरियंस है अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफ कोर्स ना मेरे साथ ना मेरे किसी दोस्त के साथ ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
8: उनके पास कैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहिल ने जो है उनको किसी बार अप्रोच भी किया हो या कुछ अपनी शंका भी जताई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने का नहीं है। यह स्टेटमेंट SC/ST स्टेल IIT बॉम्बे ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है।
7: इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा हो मुझे भी दिख रहा है, तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है वो तो कम्प्लीटली बेसलेस ही हुआ ना, फिर वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
6: एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RPI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर ढुल्ला पर SC/ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर ढुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया, फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। 3 दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ है कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है, जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था, साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो, मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC/ST एक्ट लगाने का है। वहीं परिवार मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है।
9: चौकसी चालू है, वो चौकसी चालू करेंगे, लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके वो जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण दुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है।
6: बहरहाल अब जंग छात्र और फैकल्टी के बीच आ गई है, जिस पर अब जाति पर घमासान की एंट्री हो चुकी है। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
5: और अब बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, जिसका पहली बार आयोजन हुआ है दिल्ली से बाहर केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जिसमें फिल्म जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया।
0: ये सितारों के सम्मान की तस्वीर है। 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सिनेमा जगत की हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्म युग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए दिया गया, जो कि अपने पति और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पहुंची थी। बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को दिया गया। भक्षक के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को समारोह में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्टर धनुष को डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन पहली बार केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास किया जा रहा है। अब हर साल अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दिल्ली से बाहर सेरेमनी कराने को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य देश के सभी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में कुल 45 पुरस्कार दिए गए, इनमें 26 फीचर फिल्म, 16 नॉन फीचर फिल्म, 2 सिनेमा पर लेखन और 1 दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल है। आज तक ब्यूरो।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भाषण दिया। करीब 40 मिनट के भाषण में ट्रंप ने कई मुद्दों पर बोला, लेकिन पूरा फोकस ईरान अमेरिका युद्ध पर था। यूएन के मंच से ट्रंप ने अपनी धमकी को दोहराया, अगर ईरान डील के लिए तैयार नहीं होगा तो हमले जारी रहेंगे। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे।

0: दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण पर टिकी थी। उम्मीद यही थी कि करीब 7 महीने से जारी युद्ध को लेकर ट्रंप ईरान के साथ समझौते का संकेत दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने अपनी भाषण में ईरान को लेकर वही बातें दोहराई जो लगातार कहते आ रहे हैं। ट्रंप ने यूएन के मंच से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बचाव किया, दावा किया कि ईरान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना लेता और अमेरिका से लेकर यूरोप तक आतंकी हमलों को अंजाम देता।
1: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
0: ट्रंप की माने तो अमेरिकी हमले में ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ये दावा ट्रंप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइलों का कहर थमा नहीं है। मतलब यही है कि ट्रंप ने जो कहा उसमें हकीकत कम, फसाना ज्यादा है।
1: After giving Iran every chance for a deal, I took action to ensure that neither the United States nor any nation in this hall would ever have to face such a nightmare, such a catastrophic problem. As a result of Operation Epic Fury, all 159 ships of their Navy are now lying at the bottom of the sea. Likewise, their Air Force is gone. Their radar is gone. Their anti-aircraft equipment is gone. Their missiles and drone manufacturing capacity is almost gone. Their economy is gone. The only thing that isn't gone is inflation, which is destroying their country and is now well over 300%.
0: भाषण के दौरान ट्रंप ने होर्मुज को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात कही। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में मिड टर्म के बाद ईरान के साथ होर्मुज पर कोई बड़ी डील हो सकती है, लेकिन ये डील होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स वसूली को लेकर होगी। यानी होर्मुज पर टैक्स को ट्रंप मंजूरी दे सकते हैं, जिसमें ईरान के साथ साथ अमेरिका का भी हिस्सा होगा।
1: Yet even after we agreed to a ceasefire for nuclear discussions, Iran promptly violated it with brazen acts of terrorism against civilian ships from other countries. I want to thank the UN Security Council for voting overwhelmingly to pass a resolution condemning Iran's despicable terrorist attacks on commercial shipping. Thank you very much. Now we must be equally united in maintaining pressure. The United States Navy has recently escorted more than 1 billion barrels of oil out of the Strait of Hormuz. And more oil is flowing than at any point since the start of the war. We're taking 22, 25, 30, 32, and 37 ships out, respectively, every single day, every single night.
0: एक तरफ ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ होर्मुज पर ईरान के साथ डील की बात करते हैं। सवाल यही है कि ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्यों है? ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर कोई ठोस दलील पेश नहीं की, लेकिन ये दावा करना नहीं भूले कि यूक्रेन रूस युद्ध को रुकवा देंगे।
1: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it. 25,000 young people, mostly soldiers, a month are dying. 25,000 a month. And I look at those battlefield pictures and I really don't want to see them anymore. It's so horrible to see. 25,000 a month, both sides. We continue to seek and end the disastrous war between Russia and Ukraine, which is killing, as I said, thousands and thousands of people every month. Last week, in honor of Senator Lindsey Graham, I signed a powerful new law passed by Congress, providing me with enormous new tariff authorities, and if necessary, I will have to use them. It's time to stop the killing.
0: ईरान के साथ स्थायी युद्ध विराम में उलझे ट्रंप यूक्रेन और रूस को युद्ध में उलझाने का दम भर रहे हैं, दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता है कि वादे तो वादे हैं, वादों का क्या? आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का हो पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार का, आतंकवाद और परमाणु हथियारों की होड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी के मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, नादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग। बिहार के जमुई में एक नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने सबका दिल दुखाया है। पुलिस ने नंदन यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई। नंदन यादव और उसका सहयोगी हरेराम यादव इस वक्त अस्पताल में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाफ एनकाउंटर से जमुई छेड़खानी का कांड पूरा उसका हिसाब हो गया है।

0: अंदर नहीं आता, उसके पैर में गोली लगी है और ये वो है उसमें से उसको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए।
1: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ विभत्स वारदात को अंजाम देने वाले, चेहरे पर गमछा बांधकर बिहार में कानून व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर देने वाले नंदन यादव की आंखों में वारदात करते वक्त ना कोई शर्म थी और ना ही कानून का कोई खौफ। लेकिन हाफ एनकाउंटर के बाद इस वारदात का मुख्य आरोपी नंदन यादव खिसटता हुआ दिखा।
0: यही नाम यादव है जिसके
1: लगातार फरार चल रहे नंदन यादव को देश ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए देखा। जम्मू में जिस बेखौफ अंदाज में दसवीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी की गई, उसने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया। इनमें 3 नाबालिग भी हैं। दोनों मुख्य आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
2: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है।
3: हमारे गांव की तरफ उधर से जम्मू जिला से रपेटते हुए आए प्रशासन लोग, तो हमारे कुंदर गांव के लोग उधर गांव में, हम लोग जब भीड़ जमा देखा तो कांस की ओर छुपने का प्रयास किया। उसके बाद उधर से बराज पर से पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए और जिला से फिर इधर से घेरे, तो ये लोग को यहां रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
2: ये कौन सा नदी क्षेत्र है?
3: ये क्यूल नदी।
2: क्यूल नदी
3: जी जी जी।
2: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
3: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
2: अच्छा
3: जी।
2: तो ये पुलिस से भाग रहे थे?
3: भाग रहे थे सर।
2: और पुलिस को चैलेंज भी किया
3: जी, पुलिस के ऊपर गोली चलाया, पुलिस मारा गोली।
2: अच्छा, पुलिस के ऊपर गोली चलाया इन्होंने।
1: नंदन यादव और हरेराम यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
4: अभी तक कल 3 व्यक्ति निरुद्ध किए गए थे, आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
5: और लोग आरोपी हैं इसमें या फिर अज्ञात में छापेमारी?
4: अभी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे और पूछताछ अभी की जाएगी।
1: तो पुलिस की घेराबंदी के दौरान हुई कार्रवाई में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्य आरोपी नंदन यादव जमुई के प्रतापपुर गाँव का रहने वाला है, जो नाबालिग छात्रा से की गई जगह से नजदीक है।
2: इसी सड़क से आगे जब आप क्यूल नदी की तरफ जाते हैं तो वहां पर खनन का काम चलता है, और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है और उसका सहयोगी हरेराम यादव, ये दोनों बालू खनन के कारोबार में शामिल हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बालू की जो घाट से निकासी होती है उसको लेकर के।
1: नंदन यादव के साथ वारदात में एक और आरोपी हरेराम यादव की भी गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में हरेराम यादव का पैर टूट गया। बिहार पुलिस कह रही है कि वो इस वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? नंदन यादव जैसे दरिंदों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जानवरों की तरह एक नाबालिग छात्रा पर टूट पड़े?
2: छोटे सा पहाड़ है और 2 पहाड़ियां हैं यहाँ पे, एक पहाड़ी वो जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाईं तरफ। इन 2 पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं।
1: इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रा से अभद्रता के वीडियो को वायरल करने के मामले में 3 लोग हिरासत में। लेकिन सवाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर है। क्या हाफ एनकाउंटर से नंदन यादव जैसे लोगों के मन में खौफ पैदा किया जा सकता है? शशि भूषण, जमुई, आज तक।
6: अगले महीने शारदीय नवरात्रि में सारा देश मां दुर्गा की पूजा आदि शक्ति के रूप में करेगा। विडंबना देखिए, जिस देश में देवी शक्ति का प्रतीक है उसी देश में बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने को माता पिता को बार बार कहना पड़ता है। बेटियों को देर तक बाहर न रहने, अकेले न जाने की सलाह अक्सर ही दी जाती है, लेकिन कोई सरकार कोई राज्य बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता दावा नहीं कर पाता।
2: ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद में उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
1: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर लाठड़ा किया है। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया था।
7: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
1: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गईं। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
8: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा, अगर हिम्मत है तो। अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़ बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं।
1: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
9: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
10: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत है। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए, जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
1: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
11: Moral policing can be one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion, but the way that they mishandled, mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.

0: अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
1: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
0: भारत में महिला अपराधों पर, यहाँ तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना ये है कि ये सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
2: बिहार के जमुई में दरिंदगी पर सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
3: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथी, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
2: बिहार की तरह दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसे लेकर सवाल दो वारदातों से और गहरा गया है। दिल्ली के कालकाजी में एक नाबालिग से पार्क में गैंगरेप किया गया तो सदर बाजार इलाके में स्टेशनरी की दुकान जा रही एक बच्ची का दुकानदार ने यौन शोषण किया।

0: राजधानी दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में जिस तरह से एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ और एक बच्ची का बाजार में यौन शोषण हुआ, उसके बाद देश की राजधानी में बेटियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों में है। सोमवार शाम को दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी। दिल्ली के कालकाजी इलाके के इसी पार्क में आसिफ समेत तीन लोगों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था कुंज पार्क में, जहां पर सोमवार देर शाम 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी आसिफ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आसिफ के पैर में गोली लगी है, वो घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दो साथियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमवार शाम उनको जानकारी मिली, शिकायत मिली कि 17 साल की एक लड़की के साथ इस पार्क में तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि 7:30 बजे के आसपास तीनों इस पार्क में दाखिल होती है, वो मंदिर आई थी और उसके बाद उसके बैक गेट के इलाके से होते हुए आस्था कुंज पार्क में आ जाती है, गेट नंबर 7 से, और इस पार्क के अंदर जब वो पहुंचती है तो अंधेरा हो ही चुका था, लाइट जल रही थी लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं थी। तभी वो तीनों सामने आ जाते हैं, उन्होंने खुद को पुलिस वाला बनाया ताकि लड़कियों को डराया जा सके, और पुलिस वाला बनाने के बाद वो पीड़िता को अलग कर दिए, दो लड़कियों को एक तरफ उन्होंने कर दिया और पीड़िता को एक तरफ ले गए। वहां पर आसिफ नाम का आरोपी जो एनकाउंटर के बाद घायल हुआ है, पकड़ा गया है, उसने मंचा निकाला और उसने पीड़िता को डराना धमकाना शुरू किया और एक ने चाकू निकाला, दोनों ने मिलकर पीड़िता को धमकाया और उसके बाद बारी बारी तीनों ने गलत हरकत को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए।
0: इस वारदात के एक मुख्य आरोपी आसिफ को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, वहीं बाकी दो और आरोपी भी धरे गए। यहीं पर आसिफ नाम के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। यहां पर आरोपी की बाइक गिरी हुई दिख रही है, पास ही आरोपी की पिस्टल पड़ी है।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ, जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ

0: यहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
1: पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया है कि सोमवार शाम को वो अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी। पूजा के बाद दोनों मंदिर के पास के आस्था कुंज पार्क गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे हैं।
2: एक अक्यूज जो है आशीष, उसको एक पुलिस इनकाउंटर के तहत सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ा है। दो और लोगों के नाम सामने आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी बाकी जो अरेस्ट हैं वो भी डाले जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी।
1: इस मामले में भले ही सभी तीनों आरोपी पकड़े गए हों, लेकिन इस वारदात ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दिल्ली के सदर बाजार में हो रहे इस प्रदर्शन को देखिए, जो 11 साल की एक मासूम बच्ची के यौन शोषण के खिलाफ है। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि थाने में बंद आरोपी और उसके परिजन भीड़ के निशाने पर आ गए, जिन्हें बचाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। बच्ची से रेप की वारदात 16 सितंबर रात को हुई, जब छठी में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी। तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
3: मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। और अगर आप देखें ये पूरे इलाके को, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कंजस्टेड इलाका है और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहाँ काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी आप देखें तो ये जो पूरी गली है, इसी गली में ये दूसरी दुकान जो है ये बताई जा रही है ये मकसूद की है, जहां वो टेलर का काम करता था। 16 तारीख की रात करीब 11 बजे के आसपास जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से नीचे उतरती है, स्टेशनरी जाती है, कॉपी पेंसिल लेने के लिए जाती है, लेकिन मकसूद जो कि उसे पहले से जानता था उसे अपनी दुकान में लाता है। आरोप ये है कि उसके हाथ पैर बांधता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है।
1: बच्ची से इस तरह की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
4: हमारे भी बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा है कि हम बाहर निकालें ना निकालें, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हमें फिक्र महसूस हो गया, क्योंकि अब जब ऐसा इंसान नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा, शैतान जाग गया अंदर, तो हर आदमी को डर लगेगा।
1: राजधानी दिल्ली की दोनों ही वारदातें याद दिलाती हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का खौफ नहीं है, इसलिए बेटियां बार बार निशाना बन रही हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
5: और अब बात करेंगे IIT बॉम्बे में जारी तनाव के बारे में, जहां एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अब फैकल्टी और छात्र आमने सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है।
6: IIT बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में 3 आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की CCTV तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 बजे से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर दुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं।
7: सर रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे, दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो दुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। IIT में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफकोर्स ना मेरे साथ, ना मेरे किसी दोस्त के साथ, ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
8: उनके पास कैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहिल ने जो है उनको किसी बार अप्रोच भी किया हो या कुछ अपनी शंका भी जताई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने का नहीं है। यह स्टेटमेंट SC/ST बॉम्बे ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है।
7: इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा हो, मुझे भी दिख रहा है। तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है SC/ST, वो तो कम्प्लीट बेसलेस ही हुआ ना, फिर वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
6: एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब आरपीआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर ढुल्ला पर SC ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर ढुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया। फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। 3 दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ है कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है, जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था, साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो, मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC ST एक्ट लगाने का है। वहीं परिवार मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है।
9: चौकशी चालू है, वो चौकशी चालू करेंगे, लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके वो जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण डुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है।
6: बहरहाल अब जंग छात्र और फैकल्टी के बीच आ गई है, जिस पर अब जाति पर घमासान की एंट्री हो चुकी है। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भाषण दिया। करीब 40 मिनट के भाषण में ट्रंप ने कई मुद्दों पर बोला, लेकिन पूरा फोकस ईरान अमेरिका युद्ध पर था। यूएन के मंच से ट्रंप ने अपनी धमकी को दोहराया, अगर ईरान डील के लिए तैयार नहीं होगा तो हमले जारी रहेंगे। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे।

0: दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण पर टिकी थी। उम्मीद यही थी कि करीब 7 महीने से जारी युद्ध को लेकर ट्रंप ईरान के साथ समझौते का संकेत दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने अपनी भाषण में ईरान को लेकर वही बातें दोहराई जो लगातार कहते आ रहे हैं। ट्रंप ने यूएन के मंच से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बचाव किया, दावा किया कि ईरान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना लेता और अमेरिका से लेकर यूरोप तक आतंकी हमलों को अंजाम देता।
1: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
0: ट्रंप की माने तो अमेरिकी हमले में ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ये दावा ट्रंप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइलों का कहर थमा नहीं है। मतलब यही है कि ट्रंप ने जो कहा उसमें हकीकत कम, फसाना ज्यादा है।
1: After giving Iran every chance for a deal, I took action to ensure that neither the United States nor any nation in this hall would ever have to face such a nightmare, such a catastrophic problem. As a result of Operation Epic Fury, all 159 ships of their Navy are now lying at the bottom of the sea. Likewise, their Air Force is gone. Their radar is gone. Their anti-aircraft equipment is gone. Their missiles and drone manufacturing capacity is almost gone. Their economy is gone. The only thing that isn't gone is inflation, which is destroying their country and is now well over 300%.
0: भाषण के दौरान ट्रंप ने होर्मुज को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात कही। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में मिड टर्म के बाद ईरान के साथ होर्मुज पर कोई बड़ी डील हो सकती है, लेकिन ये डील होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स वसूली को लेकर होगी। यानी होर्मुज पर टैक्स को ट्रंप मंजूरी दे सकते हैं, जिसमें ईरान के साथ साथ अमेरिका का भी हिस्सा होगा।
1: Yet even after we agreed to a ceasefire for nuclear discussions, Iran promptly violated it with brazen acts of terrorism against civilian ships from other countries. I want to thank the UN Security Council for voting overwhelmingly to pass a resolution condemning Iran's despicable terrorist attacks on commercial shipping. Thank you very much. Now we must be equally united in maintaining pressure. The United States Navy has recently escorted more than 1 billion barrels of oil out of the Strait of Hormuz, and more oil is flowing than at any point since the start of the war. We're taking 22, 25, 30, 32, and 37 ships out, respectively, every single day, every single night.
0: एक तरफ ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ होर्मुज पर ईरान के साथ डील की बात करते हैं। सवाल यही है कि ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्यों है? ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर कोई ठोस दलील पेश नहीं की, लेकिन ये दावा करना नहीं भूले कि यूक्रेन रूस युद्ध को रुकवा देंगे।
1: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it. 25,000 young people, mostly soldiers, a month are dying. 25,000 a month. And I look at those battlefield pictures and I really don't want to see them anymore. It's so horrible to see. 25,000 a month, both sides. We continue to seek and end the disastrous war between Russia and Ukraine, which is killing, as I said, thousands and thousands of people every month. Last week, in honor of Senator Lindsey Graham, I signed a powerful new law passed by Congress, providing me with enormous new tariff authorities, and if necessary, I will have to use them. It's time to stop the killing.
0: ईरान के साथ स्थायी युद्ध विराम में उलझे ट्रंप यूक्रेन और रूस को युद्ध में उलझाने का दम भर रहे हैं, दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता है कि वादे तो वादे हैं, वादों का क्या? आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का हो पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार का आतंकवाद और परमाणु हथियारों की होड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी के मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, नादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग। बिहार के जमुई में एक नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने सबका दिल दुखाया है। पुलिस ने नंदन यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई। नंदन यादव और उसका सहयोगी हरेराम यादव इस वक्त अस्पताल में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाफ एनकाउंटर से जमुई छेड़खानी का कांड पूरा उसका हिसाब हो गया है।

0: अंदर नहीं आता, उसके पैर में गोली लगी है और ये वो है उसमें से तुमको शर्म नहीं आई ये सब करते हो।
1: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ विभत्स वारदात को अंजाम देने वाले, चेहरे पर गमछा बांधकर बिहार में कानून व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर देने वाले नंदन यादव की आंखों में वारदात करते वक्त ना कोई शर्म थी और ना ही कानून का कोई खौफ। लेकिन हाफ एनकाउंटर के बाद इस वारदात का मुख्य आरोपी नंदन यादव घिसटता हुआ दिखा।
0: यही वो नाम यादव है जिसके
1: लगातार फरार चल रहे नंदन यादव को देश ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए देखा। जम्मू में जिस बेखौफ अंदाज में दसवीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी की गई, उसने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया, इनमें 3 नाबालिग भी हैं। दोनों मुख्य आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
2: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है।
3: हमारे गांव की तरफ उधर से जम्मू जिला से रपेटते हुए आए प्रशासन लोग, तो हमारे कुंदर गांव के लोग उधर गांव में हम लोग जब भीड़ जमा देखा तो कांस की ओर छुपने का प्रयास किया। उसके बाद उधर से बराज पर से पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए और जिला से फिर इधर से घेरे तो ये लोग को यहां रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
2: ये कौन सा नदी क्षेत्र है?
3: ये क्यूल नदी।
2: क्यूल नदी
3: जी जी जी।
2: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
3: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
2: अच्छा
3: जी।
2: तो ये पुलिस से भाग रहे थे?
3: भाग रहे थे सर,
2: और पुलिस को चैलेंज भी किया जी,
3: पुलिस के ऊपर गोली चलाया, पुलिस को मारा गोली।
2: अच्छा, पुलिस के ऊपर गोली चलाया इन्होंने।
1: नंदन यादव और हरेराम यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
4: अभी तक कल 3 व्यक्ति निरुद्ध किए गए थे, आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
5: और लोग आरोपी हैं इसमें या फिर अज्ञात में छापेमारी?
4: अभी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे और पूछताछ अभी की जाएगी।
1: तो पुलिस की घेराबंदी के दौरान हुई कार्रवाई में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्य आरोपी नंदन यादव जमुई के प्रतापपुर गाँव का रहने वाला है जो नाबालिग छात्रा से की गई जगह से नजदीक है।
2: इसी सड़क से आगे जब आप क्यूल नदी की तरफ जाते हैं तो वहां पर खनन का काम चलता है, और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है और उसका सहयोगी हरेराम यादव, ये दोनों बालू खनन के कारोबार में शामिल हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बालू की जो घाट से निकासी होती है उसको लेकर के।
1: नंदन यादव के साथ वारदात में एक और आरोपी हरेराम यादव की भी गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में हरेराम यादव का पैर टूट गया। बिहार पुलिस कह रही है कि वो इस वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? नंदन यादव जैसे दरिंदों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जानवरों की तरह एक नाबालिग छात्रा पर टूट पड़े?
2: छोटे सा पहाड़ है और 2 पहाड़ियां हैं यहाँ पे, एक पहाड़ी वो जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाईं तरफ। इन 2 पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं।
1: इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रा से अभद्रता के वीडियो को वायरल करने के मामले में 3 लोग हिरासत में। लेकिन सवाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर है, क्या हाफ एनकाउंटर से नंदन यादव जैसे लोगों के मन में खौफ पैदा किया जा सकता है? शशि भूषण, जमुई, आज तक।
6: अगले महीने शारदीय नवरात्रि में सारा देश मां दुर्गा की पूजा आदि शक्ति के रूप में करेगा। विडंबना देखिए, जिस देश में देवी शक्ति का प्रतीक है उसी देश में बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने को माता पिता को बार बार कहना पड़ता है। बेटियों को देर तक बाहर न रहने, अकेले न जाने की सलाह अक्सर ही दी जाती है, लेकिन कोई सरकार, कोई राज्य बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता दावा नहीं कर पाता।
2: ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद में उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
1: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर ला खड़ा किया। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया था।
7: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
1: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गईं। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
8: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा, अगर हिम्मत है तो। अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं।
1: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
9: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
10: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
1: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
11: Moral policing can be on one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion, but the way that they mishandled, mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.
1: सवाल यह है कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे moral policing कहा जा सकता है, जबकि यह मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
12: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
1: भारत में महिला अपराधों पर, यहाँ तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना ये है कि ये सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
6: बिहार के जमुई में दरिंदगी पर सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
13: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं। साथियों, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
6: बिहार की तरह दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसे लेकर सवाल दो वारदातों से और गहरा गया है। दिल्ली के कालकाजी में एक नाबालिग से पार्क में गैंगरेप किया गया, तो सदर बाजार इलाके में स्टेशनरी की दुकान जा रही एक बच्ची का दुकानदार ने यौन शोषण किया।

0: राजधानी दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में जिस तरह से एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ और एक बच्ची का बाजार में यौन शोषण हुआ, उसके बाद देश की राजधानी में बेटियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों में है। सोमवार शाम को दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी। दिल्ली के कालकाजी इलाके के इसी पार्क में आसिफ समेत तीन लोगों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था कुंज पार्क में, जहां पर सोमवार देर शाम 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी आसिफ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आसिफ के पैर में गोली लगी है, वो घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दो साथियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमवार शाम उनको जानकारी मिली, शिकायत मिली कि 17 साल की एक लड़की के साथ इस पार्क में तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि 7:30 बजे के आसपास तीनों इस पार्क में दाखिल होती है, वो मंदिर आई थी और उसके बाद उसके बैक गेट के इलाके से होते हुए आस्था कुंज पार्क में आ जाती है गेट नंबर 7 से, और इस पार्क के अंदर जब वो पहुंचती है तो अंधेरा हो ही चुका था, लाइट जल रही थी लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं थी। तभी वो तीनों सामने आ जाते हैं, उन्होंने खुद को पुलिस वाला बनाया ताकि लड़कियों को डराया जा सके, और पुलिस वाला बनाने के बाद वो पीड़िता को अलग कर दिए, दो लड़कियों को एक तरफ उन्होंने कर दिया और पीड़िता को एक तरफ ले गए। वहां पर आसिफ नाम का आरोपी जो एनकाउंटर के बाद घायल हुआ है, पकड़ा गया है, उसने मंचा निकाला और उसने पीड़िता को डराना धमकाना शुरू किया और एक ने चाकू निकाला, दोनों ने मिलकर पीड़िता को धमकाया और उसके बाद बारी बारी तीनों ने गलत हरकत को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए।
0: इस वारदात के एक मुख्य आरोपी आसिफ को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, वहीं बाकी दो और आरोपी भी धरे गए। यहीं पर आसिफ नाम के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। यहां पर आरोपी की बाइक गिरी हुई दिख रही है, पास ही आरोपी की पिस्टल पड़ी है।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ, जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
0: पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया है कि सोमवार शाम को वो अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी। पूजा के बाद दोनों मंदिर के पास के आस्था कुंज पार्क गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे हैं।
2: एक अक्यूज जो है आशीष, उसको एक पुलिस एनकाउंटर के तहत सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ा है। दो और लोगों के नाम सामने आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी बाकी जो अरेस्ट हैं वो भी डाले जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी।
0: इस मामले में भले ही सभी तीनों आरोपी पकड़े गए हों, लेकिन इस वारदात ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दिल्ली के सदर बाजार में हो रहे इस प्रदर्शन को देखिए, जो 11 साल की एक मासूम बच्ची के यौन शोषण के खिलाफ है। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि थाने में बंद आरोपी और उसके परिजन भीड़ के निशाने पर आ गए, जिन्हें बचाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। बच्ची से रेप की वारदात 16 सितंबर रात को हुई, जब छठी में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी। तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
3: मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ, और अगर आप देखें ये पूरे इलाके को तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कंजस्टेड इलाका है और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहां काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी आप देखें तो ये जो पूरी गली है, इसी गली में ये दूसरी दुकान जो है ये बताई जा रही है ये मकसूद की है, जहां वो टेलर का काम करता था। 16 तारीख की रात करीब 11 बजे के आसपास जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से नीचे उतरती है, स्टेशनरी जाती है, कॉपी पेंसिल लेने के लिए जाती है, लेकिन मकसूद जो कि उसे पहले से जानता था उसे अपनी दुकान में लाता है। आरोप यह है कि उसके हाथ पैर बांधता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है।
0: बच्ची से इस तरह की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
4: हमारे भी बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा है कि हम बाहर निकालें ना निकालें, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हमें फिक्र महसूस हो गया क्योंकि अब जब ऐसा इंसान नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा है शैतान जाग के अंदर, तो हर आदमी को डर लगेगा।
0: राजधानी दिल्ली की दोनों ही वारदातें याद दिलाती हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का खौफ नहीं है, इसलिए बेटियां बार बार निशाना बन रही हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
5: और अब बात करेंगे IIT बॉम्बे में जारी तनाव के बारे में, जहां एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अब फैकल्टी और छात्र आमने सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है।
6: IIT बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में 3 आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की CCTV तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 बजे से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर दुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं।
7: सर रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे, दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो डुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप क्लास में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। IIT में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफ कोर्स ना मेरे साथ ना मेरे किसी दोस्त के साथ ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
8: उनके पास कब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहिल ने जो है उनको किसी बार अप्रोच भी किया हो या कुछ अपनी शंका भी जताई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने का नहीं है। ये स्टेटमेंट SC/ST स्टेल IIT बॉम्बे ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है।
7: इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा हो मुझे भी दिख रहा है, तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है SC/ST वो तो कम्प्लीटली बेसलेस ही हुआ ना, फिर वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
6: एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RPI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर ढुल्ला पर SC/ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर ढुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया, फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। 3 दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ है कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है, जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था, साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो, मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC/ST एक्ट लगाने का है। वहीं परिवार मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है।
9: चौकशी चालू है, वो चौकशी चालू करेंगे, लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके वो जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण दुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है।
6: बहरहाल अब जंग छात्र और फैकल्टी के बीच आ गई है, जिस पर अब जाति पर घमासान की एंट्री हो चुकी है। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
5: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर तलवारें खिंच चुकी हैं। दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच तूतू मैमे का खेल चल रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या 2027 में अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी नजर नहीं आएगी?
10: अखिलेश यादव और राहुल गांधी,
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तनातनी। यूपी चुनाव से पहले गठबंधन में टकराव। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की बड़ी डिमांड। क्या कांग्रेस को 100 सीटें देंगे अखिलेश? अखिलेश और राहुल तैयार तो कैसा कलेश? गठबंधन में रार, 2027 में कैसे होगा बेड़ा पार?
10: 403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें तो कितनी होगी? 806। तो सोचिए, बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। इसमें क्या खराब बात है? इसमें क्या बुरा लग रहा है आपको? डबल तैयारी हो रही है।
0: 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने चेहरों से सजी बीजेपी की चुनावी मशीनरी को चारों खाने चित कर दिया था। बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए। अब 2024 के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव 2027 के चुनावी बिसात बिछा चुके हैं। दावा यही है कि 2027 में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा, यानी अखिलेश ये तय कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे।
11: समाजवादी पार्टी का जो पूर्व में गठबंधन था वही रहेगा।
0: 2027 चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान दोनों पार्टियां पहले ही कर चुकी हैं। अखिलेश यादव कई मौकों पर साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी यही मानती है कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन के सिवाय कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। सवाल यही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है तो दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से मतभेद और मनभेद वाले बयान सामने क्यों आ रहे हैं?
12: अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है कहीं भी, पूरे देश में नहीं है।
13: बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए भी।
0: अभी तक कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी की नीति और नियत पर सवाल उठा रहे थे, बीते कुछ वक्त से समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के बयान का विरोध किया है। दावा यही किया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस तभी तक चुनावी खेल में है जब तक समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार है।
14: कौन है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अलावा? बीएसपी एक एमएलए थे, उनकी डेथ हो, कांग्रेस के दो है, और या तो बीजेपी के हैं समाजवादी पार्टी। तो जो लोग बात कर रहे हैं उनका यहाँ कुछ है ही नहीं, बीजेपी यही चाहती है।
0: दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। चर्चा यही है कि कांग्रेस इस बार 2017 के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लागू करवाना चाहती है, यानी कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन धर्म निभाते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें 107 से 120 सीटें दी जाएं, ये सीटें भी कांग्रेस की शर्तों पर मिले। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने इंटरनल मीटिंग में टॉप लीडरशिप को 150 से ज्यादा सीटों की लिस्ट सौंप दी है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि 2027 में बीजेपी तभी हारेगी जब कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर होगा। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में मिली बढ़त के चश्मे से देखें तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 217 पर आगे रहा। इसमें समाजवादी पार्टी 178 विधानसभा सीट पर और कांग्रेस 38 सीट पर। वहीं यूपी की सत्तारूढ़ बीजेपी पिछड़ गई, एनडीए सिर्फ 181 विधानसभा सीटों पर आगे रही, इसमें बीजेपी 169, आरएलडी 8, अपना दल 4 सीट पर, यानी राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मोदी और योगी की जोड़ी को देश के सबसे बड़े राज्य में पीछे किया। अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव की नीति एकदम स्पष्ट है। अगर गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई पेच फंसा तो सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को सीट बंटवारे की कोई जल्दबाजी नहीं है।
11: आज हम लोग संगठन के उन लोगों से मिले हैं जो उत्तर प्रदेश की रिजर्व सीटें हैं, जो सीटें समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई है। यहां सबने बैठकर के संकल्प लिया है कि अभी तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी आने वाले समय में।
0: अखिलेश अपनी तैयारियों के मुकम्मल होने के बाद सीटों के बंटवारे पर बात करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस को लगता है कि अगर गठबंधन में सीटें फाइनल करने में देरी हुई तो सीटों को लेकर बार्गेनिंग पावर को खो देगी और ऐसी स्थिति में तब कांग्रेस को अखिलेश यादव की दया पर ही गठबंधन करना पड़ेगा। अभी तक अनौपचारिक तौर पर भले ही गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई हो, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है।
15: समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी को पनौती मान रही है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जीत नहीं सकती है।
0: यही वजह है कि गठबंधन में छिड़ी जवाबी जंग पर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। मतलब यही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। इसमें सीट शेयरिंग से लेकर 2024 का प्रदर्शन दोहराना शामिल है, क्योंकि 2024 में पीडीए की बिसात पर मिली कामयाबी की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि अब मुद्दों और चुनावी माहौल दोनों में फर्क है।
16: देखना यह है कि क्या शीर्ष नेतृत्व पर कोई बातचीत स्तर पर हो पाती है या नहीं। शिवपाल यादव ने साफ कर दिया कि किसी के बात का कोई मतलब नहीं, तय तो सिर्फ दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
5: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का हो पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार का, आतंकवाद और परमाणु हथियारों की होड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी के मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, नादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग। बिहार के जमुई में एक नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने सबका दिल दुखाया है। पुलिस ने नंदन यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई। नंदन यादव और उसका सहयोगी हरेराम यादव इस वक्त अस्पताल में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाफ एनकाउंटर से जमुई छेड़खानी का कांड पूरा उसका हिसाब हो गया है।

0: रमजान यादव उसके पैर में गोली लगी है और ये वो है उसको शर्म
1: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ विभत्स वारदात को अंजाम देने वाले चेहरे पर गमछा बांधकर बिहार में कानून व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर देने वाले नंदन यादव की आंखों में वारदात करते वक्त ना कोई शर्म थी और ना ही कानून का कोई खौफ। लेकिन हाफ एनकाउंटर के बाद इस वारदात का मुख्य आरोपी नंदन यादव घिसटता हुआ दिखा।
0: यही राम यादव है जिसके
1: लगातार फरार चल रहे नंदन यादव को देश ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए देखा। जम्मू में जिस बेखौफ अंदाज में दसवीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी की गई, उसने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया। इनमें 3 नाबालिग भी हैं। दोनों मुख्य आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
2: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है।
3: हमारे गांव की तरफ उधर से जम्मू जिला से रपेटते हुए आए प्रशासन लोग, तो हमारे कुंदर गांव के लोग उधर गांव में हम लोग जब भीड़ जमा देखा तो कांस की ओर छुपने का प्रयास किया। उसके बाद उधर से बराज पर से पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए और जिला से फिर इधर से घेरे तो ये लोग को यहां रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
2: ये कौन सा नदी क्षेत्र है?
3: ये क्यूल नदी।
2: क्यूल नदी
3: जी जी जी।
2: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
3: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
2: अच्छा
3: जी।
2: तो ये पुलिस से भाग रहे थे?
3: भाग रहे थे सर।
2: और पुलिस को चैलेंज भी किया
3: जी, पुलिस के ऊपर गोली चलाया, पुलिस को मारा गोली।
2: अच्छा, पुलिस के ऊपर गोली चलाया इन्होंने।
1: नंदन यादव और हरेराम यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
4: अभी तक कल 3 व्यक्ति निरुद्ध किए गए थे, आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
5: और लोग आरोपी हैं इसमें या फिर अज्ञात में छापेमारी?
4: अभी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे और पूछताछ अभी की जाएगी।
1: तो पुलिस की घेराबंदी के दौरान हुई कार्रवाई में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्य आरोपी नंदन यादव जमुई के प्रतापपुर गाँव का रहने वाला है जो नाबालिग छात्रा से की गई जगह से नजदीक है।
2: इसी सड़क से आगे जब आप क्यूल नदी की तरफ जाते हैं तो वहां पर खनन का काम चलता है और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है और उसका सहयोगी हरेराम यादव, ये दोनों बालू खनन के कारोबार में शामिल हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बालू की जो घाट से निकासी होती है उसको लेकर के।
1: नंदन यादव के साथ वारदात में एक और आरोपी हरेराम यादव की भी गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में हरेराम यादव का पैर टूट गया। बिहार पुलिस कह रही है कि वो इस वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? नंदन यादव जैसे दरिंदों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जानवरों की तरह एक नाबालिग छात्रा पर टूट पड़े?
2: छोटे सा पहाड़ है और 2 पहाड़ियां हैं यहाँ पे। एक पहाड़ी वो जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाईं तरफ। इन 2 पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं।
1: इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रा से अभद्रता के वीडियो को वायरल करने के मामले में 3 लोग हिरासत में। लेकिन सवाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर है। क्या हाफ एनकाउंटर से नंदन यादव जैसे लोगों के मन में खौफ पैदा किया जा सकता है? शशि भूषण, जमुई, आज तक।
6: अगले महीने शारदीय नवरात्रि में सारा देश मां दुर्गा की पूजा आदि शक्ति के रूप में करेगा। विडंबना देखिए, जिस देश में देवी शक्ति का प्रतीक है उसी देश में बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने को माता पिता को बार बार कहना पड़ता है। बेटियों को देर तक बाहर न रहने, अकेले न जाने की सलाह अक्सर ही दी जाती है, लेकिन कोई सरकार, कोई राज्य बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता दावा नहीं कर पाता।
2: पर यह घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद में उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
1: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर लाखड़ा किया है। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया था।
7: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
1: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गई। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
8: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा, अगर हिम्मत है तो। अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं।
1: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
9: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
10: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मरमाहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
1: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
11: Moral policing can be one on one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion, but the way that they mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.
1: सवाल ये है कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे moral policing कहा जा सकता है, जबकि ये मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
12: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मरमाहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
1: भारत में महिला अपराधों पर, यहां तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना यह है कि यह सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
6: बिहार के जमुई में दरिंदगी पर सीएम सम्राट चौधरी

0: नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
1: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं सच, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
0: यूपी के लखीमपुर खीरी से भी बहुत ही डराने वाली वारदात सामने आई। यहां पर एक टीचर ने आरोपी से बात करना बंद किया तो उसने स्कूल में घुसकर टीचर को गोलियों से भून डाला और उसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली।
2: बात करने से बंद किया तो स्कूल में घुसकर गोली मारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की इस वारदात ने देश को झकझोर दिया है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी के इस स्कूल में सैकड़ों बच्चों की मौजूदगी में एक टीचर को ब्रेकअप से नाराज हत्यारा सऊद अंसारी घसीटता हुआ ले जाता है। वारदात की ये सीसीटीवी तस्वीरें टीचर निशात फातिमा की हत्या से ठीक पहले की है, जहां आरोपी सऊद अंसारी पहले टीचर को जबरन कॉरिडोर में ले गया, फिर कुछ देर के विवाद के बाद महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, महिला टीचर की हत्या के बाद आरोपी सऊद अंसारी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर दी। ये सब देखकर स्कूल का स्टाफ सकते में आ गया। बच्चे ऐसी वारदात का गवाह बन गए जिसकी बुरी यादें उनके जहन में हमेशा रहेंगी।
3: चार गोलियां चली। हाँ, चार चली, फिर आवाज आई,
4: यहाँ निशान में एक टीचर है, उसके अंदर आया और उसका यहाँ पर पूरा काट दिया।
2: इस वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल स्कूल की सुरक्षा को लेकर है, जिसमें आरोपी इतनी आसानी से दाखिल हो जाता है, आखिर उसे किसी ने रोका क्यों नहीं?
5: पहले जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसे कर लेने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा वो तो कैमरा फुटेज में है ना। सारी व्यवस्था है यहाँ पे, यहाँ पे आईडी कार्ड देखकर ही बच्चों को दिया जाता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल स्कूल। अरे वही तो कह रहे हैं, आप लोग देखिए अभी जो चीज़ आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं कैसे हुआ, पहले देखिए जो चीज़ मेरे ख्याल से ये सवाल आप बेहतर होगा पुलिस से इसलिए पूछे क्योंकि अभी वो कैमरा फुटेज वो देख रहे हैं, है ना, तो उसमें बेहतर पता लग जाएगा क्या हुआ। ऐसे तो आप मुझसे सवाल कुछ पूछेंगे,
6: सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था स्कूल में, क्या है
5: स्कूल में सिक्योरिटी की व्यवस्था क्या होनी चाहिए आप बताइए, क्या होनी चाहिए
6: गेट पे कम से कम चेक होना चाहिए,
5: क्या होना चाहिए चेक छुट्टी के टाइम पे, तो सिक्योरिटी हमारा है ना, माय गार्ड है और सिक्योरिटी में कैमरे हैं, सब चीज है, तभी तो पता लगेगा, वरना पता कैसे लगेगा। तो कैमरे नहीं चल रहे तो फिर पुलिस क्या कर रही है अंदर?
2: जिस वक्त आरोपी टीचर को घसीट कर ले जाता दिख रहा है, उस वीडियो में बच्चों के साथ दो महिलाएं भी नजर आ रही हैं, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोला।
7: शहर का सबसे सुरक्षित इलाका कलेक्ट्रेट परिसर, जहाँ जिले के डीएम बैठते हैं, जहाँ जिले की एसपी बैठती है, उस सुरक्षित परिसर के आसपास पड़ोस में बना एक निजी स्कूल जो है वहाँ पर शूटआउट होता है। एक लड़का अपने बैग में तमंचा लेकर पहुँच जाता है, उसके बाद क्लास में घुसता है, पहले जो अपनी प्रेमिका है या टीचर है उसको गोली मारता है, उसको खुद गोली मारकर हत्या कर देता है। सवाल ये उठता है कि शहर के पड़ोस में जहाँ सबसे सुरक्षित इलाका जिसको कहा जाता है, जहाँ जिले की डीएम एसपी तक बैठते हैं, हम कोशिश करेंगे, देखिए वो स्टाफ है, ये स्टाफ उस समय कितना सहम गया होगा, कितना डर गया होगा। मैडम क्या हुआ था उस समय, क्या जान पाएंगे आप लोग? आपके यहाँ और टीचर्स भी हैं, ये भी स्टाफ है, ऐसे तो फिर कोई भी,
8: देखिए हम लोग इस चीज के लिए तो कुछ कह भी नहीं सकते और ना समझ सकते हैं आपको और ना समझा।
7: नेचर कैसी थी, उसका नेचर कैसा था जो आपके यहाँ पढ़ा?
8: बहुत बढ़िया नेचर था,
7: मिलनसार थी।
8: हाँ मिलनसार बिल्कुल। मॉर्निंग में हम लोग की मॉर्निंग हुई है, मॉर्निंग में ही अभी हम लोग की मॉर्निंग हुई है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था।
7: अच्छा, ये लड़का जिस पे आरोप है कभी आया यहाँ पर?
8: मुझे नहीं मालूम।
7: लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर देखिए इतना डर है इस शूट आउट को देखकर। देखिए जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने का, जिनके जो बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं।
2: मरने वाली टीचर निशात फातिमा के पिता लखीमपुर खीरी के सुमेर नगर गांव के रहने वाले हैं और इस वक्त सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। निशात फातिमा का परिवार आरोपी सऊद अहमद के घर में किराए पर रह चुका है। इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी, लेकिन साल भर से निशात फातिमा ने सऊद अंसारी से बात करना भी कम कर दिया। ये भी बताया जा रहा है कि निशात फातिमा की शादी कहीं और तय हो गई थी। यही बात आरोपी सऊद अंसारी को नागवार गुजरी और उसने वारदात को अंजाम दिया।

0: किसी तरह की कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया गया, ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी थी। यदि उसको डिटेन किया जाता गेट पर तो शायद इस तरह की घटना एक टीचर के साथ न होती। निर्मम हत्या हुई उस लड़की की, उस लड़की की मैं चाचा हूं, इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे तो न्याय मिलना चाहिए। इस तरह के स्कूल अपने कमियों को छिपाने के लिए अभी तक किसी तरह का उन्होंने पुलिस में या अन्य कार्रवाई नहीं की।
1: निषाद की नाराजगी की वजह से सऊद न सिर्फ तनाव में था बल्कि मरने मारने पर आमादा था। इसका संकेत उसके सोशल मीडिया स्टेटस से लगता है, जिसमें उसने अपने दोस्तों से अपील की थी कि अगर वो मर जाए तो उसकी फोटो वो हटा दे। कहा जा रहा है कि सऊद को उसके दोस्त समझाते थे, लेकिन माना जा रहा है कि निषाद से उसका मनमुटाव इतना बढ़ गया कि उसने पहले सरेआम उसे गोलियों से भूना और फिर उसने खुदकुशी कर ली। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।
2: और अब बात करेंगे IIT बॉम्बे में जारी तनाव के बारे में, जहां एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अब फैकल्टी और छात्र आमने सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है।
3: IIT बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में तीन आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की CCTV तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 बजे से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर दुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं।
4: सर रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे। दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने का बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो डुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप क्लास में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। IIT में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफकोर्स ना मेरे साथ, ना मेरे किसी दोस्त के साथ, ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
5: उनके पास कब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहिल ने जो है उनको किसी बार अप्रोच भी किया हो या कुछ अपनी शंका भी जताई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने का नहीं है। ये स्टेटमेंट SC ST स्टेल IIT बॉम्बे ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है।
4: इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा हो, मुझे भी दिख रहा है। तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है SC ST, वो तो कम्प्लीट बेसलेस ही हुआ ना फिर, वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
3: एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RPI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर डुल्ला पर SC ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर डुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया, फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। 3 दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ है कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है, जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था, साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो। मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC ST एक्ट लगाने का है। वहीं परिवार मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है।
6: चौकशी चालू है, वो चौकशी चालू करेंगे, लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके वो जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण डुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है।
3: बहरहाल अब जंग छात्र और फैकल्टी के बीच आ गई है, जिस पर अब जाति पर घमासान की एंट्री हो चुकी है। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।
2: और अब बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, जिसका पहली बार आयोजन हुआ है दिल्ली से बाहर केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जिसमें फिल्म जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया।
7: ये सितारों के सम्मान की तस्वीर है। 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सिनेमा जगत की हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्म युग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए दिया गया, जो कि अपने पति और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पहुंची थी। बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को दिया गया। भक्षक के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को समारोह में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्टर धनुष को डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन पहली बार केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास किया जा रहा है। अब हर साल अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दिल्ली से बाहर सेरेमनी कराने को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य देश के सभी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कुल 45 पुरस्कार दिए गए। इनमें 26 फीचर फिल्म, 16 नॉन फीचर फिल्म, 2 सिनेमा पर लेखन और 1 दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल है। आज तक ब्यूरो।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भाषण दिया। करीब 40 मिनट के भाषण में ट्रंप ने कई मुद्दों पर बोला, लेकिन पूरा फोकस ईरान अमेरिका युद्ध पर था। यूएन के मंच से ट्रंप ने अपनी धमकी को दोहराया, अगर ईरान डील के लिए तैयार नहीं होगा तो हमले जारी रहेंगे। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे।

0: दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण पर टिकी थी। उम्मीद यही थी कि करीब 7 महीने से जारी युद्ध को लेकर ट्रंप ईरान के साथ समझौते का संकेत दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने अपनी भाषण में ईरान को लेकर वही बातें दोहराई जो लगातार कहते आ रहे हैं। ट्रंप ने यूएन के मंच से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बचाव किया, दावा किया कि ईरान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना लेता और अमेरिका से लेकर यूरोप तक आतंकी हमलों को अंजाम देता।
1: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
0: Trump ki mane to Ameriki hamle mein Iran ki sainya kshamta puri tarah tabah ho chuki hai. Ye dawa Trump pehle bhi kar chuke hain. लेकिन अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइलों का कहर थमा नहीं है। मतलब यही है कि ट्रंप ने जो कहा उसमें हकीकत कम, फसाना ज्यादा है।
1: After giving Iran every chance for a deal, I took action to ensure that neither the United States nor any nation at all would ever have to face such a nightmare, such a catastrophic problem. As a result of Operation Epic Fury, all 159 ships of their Navy are now lying at the bottom of the sea. Likewise, their Air Force is gone. Their radar is gone. Their anti-aircraft equipment is gone. Their missiles and drone manufacturing capacity is almost gone. Their economy is gone. The only thing that isn't gone is inflation, which is destroying their country and is now well over 300%.
0: भाषण के दौरान ट्रंप ने होर्मुज को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात कही। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में मिड टर्म के बाद ईरान के साथ होर्मुज पर कोई बड़ी डील हो सकती है, लेकिन ये डील होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स वसूली को लेकर होगी। यानी होर्मुज पर टैक्स को ट्रंप मंजूरी दे सकते हैं, जिसमें ईरान के साथ साथ अमेरिका का भी हिस्सा होगा।
1: Yet even after we agreed to a ceasefire for nuclear discussions, Iran promptly violated it with brazen acts of terrorism against civilian ships from other countries. I want to thank the UN Security Council for voting overwhelmingly to pass a resolution condemning Iran's despicable terrorist attacks on commercial shipping. Thank you very much. Now we must be equally united in maintaining pressure. The United States Navy has recently escorted more than 1 billion barrels of oil out of the Strait of Hormuz, and more oil is flowing than at any point since the start of the war. We're taking 22, 25, 30, 32, and 37 ships out, respectively, every single day, every single night.
0: एक तरफ ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ होर्मुज पर ईरान के साथ डील की बात करते हैं। सवाल यही है कि ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्यों है? ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर कोई ठोस दलील पेश नहीं की, लेकिन ये दावा करना नहीं भूले कि यूक्रेन रूस युद्ध को रुकवा देंगे।
1: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it. 25,000 young people, mostly soldiers, a month are dying. 25,000 a month. And I look at those battlefield pictures and I really don't want to see them anymore. It's so horrible to see. 25,000 a month, both sides. We continue to seek and end the disastrous war between Russia and Ukraine, which is killing, as I said, thousands and thousands of people every month. Last week, in honor of Senator Lindsey Graham, I signed a powerful new law passed by Congress, providing me with enormous new tariff authorities, and if necessary, I will have to use them. It's time to stop the killing.
0: ईरान के साथ स्थायी युद्ध विराम में उलझे ट्रंप यूक्रेन और रूस को युद्ध में उलझाने का दम भर रहे हैं, दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता है कि वादे तो वादे हैं, वादों का क्या? आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का हो पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार का, आतंकवाद और परमाणु हथियारों की होड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी के मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, नादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग। बिहार के जमुई में एक नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने सबका दिल दुखाया है। पुलिस ने नंदन यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई। नंदन यादव और उसका सहयोगी हरे राम यादव इस वक्त अस्पताल में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाफ एनकाउंटर से जमुई छेड़खानी का कांड पूरा उसका हिसाब हो गया है।

0: रमजान यादव, उससे कैर में गोली लगी है और ये वो है उसमें से उनको शर्म नहीं आई ये करते हुए।
1: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ विभत्स वारदात को अंजाम देने वाले, चेहरे पर गमछा बांधकर बिहार में कानून व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर देने वाले नंदन यादव की आंखों में वारदात करते वक्त ना कोई शर्म थी और ना ही कानून का कोई खौफ। लेकिन हाफ एनकाउंटर के बाद इस वारदात का मुख्य आरोपी नंदन यादव घिसटता हुआ दिखा।
0: यही राम यादव है जिसके
1: लगातार फरार चल रहे नंदन यादव को देश ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए देखा। जम्मू में जिस बेखौफ अंदाज में 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी की गई, उसने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया। इनमें 3 नाबालिग भी हैं। दोनों मुख्य आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
2: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है।
3: हमारे गांव की तरफ उधर से जम्मू जिला से रपेटते हुए आए प्रशासन लोग, तो हमारे कुंदर गांव के लोग उधर गांव में हम लोग जब भीड़ जमा देखा तो कांस की ओर छुपने का प्रयास किया। उसके बाद उधर से बराज पर से पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए और जिला से फिर इधर से घेरे तो ये लोग को यहां रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
2: ये कौन सा नदी क्षेत्र है?
3: ये क्यूल नदी।
2: क्यूल नदी
3: जी जी जी।
2: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
3: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
2: अच्छा
3: जी।
2: तो ये पुलिस से भाग रहे थे?
3: भाग रहे थे सर।
2: और पुलिस को चैलेंज भी किया
3: जी, पुलिस के ऊपर गोली चलाया, पुलिस को मारा गोली।
2: अच्छा, पुलिस के ऊपर गोली चलाया इन्होंने।
1: नंदन यादव और हरेराम यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
4: अभी तक कल 3 व्यक्ति निरुद्ध किए गए थे, आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
5: और लोग आरोपी हैं इसमें या फिर अज्ञात में छापेमारी?
4: अभी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे और पूछताछ अभी की जाएगी।
1: तो पुलिस की घेराबंदी के दौरान हुई कार्रवाई में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्य आरोपी नंदन यादव जमुई के प्रतापपुर गाँव का रहने वाला है, जो नाबालिग छात्रा से की गई जगह से नजदीक है।
2: इसी सड़क से आगे जब आप क्यूल नदी की तरफ जाते हैं तो वहां पर खनन का काम चलता है, और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है और उसका सहयोगी हरेराम यादव, ये दोनों बालू खनन के कारोबार में शामिल हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बालू की जो घाट से निकासी होती है उसको लेकर के।
1: नंदन यादव के साथ वारदात में एक और आरोपी हरेराम यादव की भी गिरफ्तारी हुई। कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में हरेराम यादव का पैर टूट गया। बिहार पुलिस कह रही है कि वो इस वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? नंदन यादव जैसे दरिंदों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जानवरों की तरह एक नाबालिग छात्रा पर टूट पड़े?
2: छोटे सा पहाड़ है और 2 पहाड़ियां हैं यहाँ पे। एक पहाड़ी वो जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाईं तरफ। इन 2 पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं।
1: इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रा से अभद्रता के वीडियो को वायरल करने के मामले में 3 लोग हिरासत में। लेकिन सवाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर है। क्या हाफ एनकाउंटर से नंदन यादव जैसे लोगों के मन में खौफ पैदा किया जा सकता है? शशि भूषण, जमुई, आज तक।
6: अगले महीने शारदीय नवरात्रि में सारा देश मां दुर्गा की पूजा आदि शक्ति के रूप में करेगा। विडंबना देखिए, जिस देश में देवी शक्ति का प्रतीक है उसी देश में बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने को माता पिता को बार बार कहना पड़ता है। बेटियों को देर तक बाहर न रहने, अकेले न जाने की सलाह अक्सर ही दी जाती है, लेकिन कोई सरकार, कोई राज्य बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता दावा नहीं कर पाता।
2: पर यह घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद में उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
1: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर लाठला किया है। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया था।
7: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
1: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गईं। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
8: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा अगर हिम्मत है तो, अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़ बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं।
1: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
9: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
10: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत है। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
1: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
11: Moral policing can be one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion, but the way that they mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.
1: सवाल यह है कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे moral policing कहा जा सकता है, जबकि यह मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
12: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
1: भारत में महिला अपराधों पर, यहां तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना यह है कि यह सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
6: बिहार के जमुई में दरिंदगी पर सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।

0: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं सच, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
1: यूपी के लखीमपुर खीरी से भी बहुत ही डराने वाली वारदात सामने आई। यहां पर एक टीचर ने आरोपी से बात करना बंद किया तो उसने स्कूल में घुसकर टीचर को गोलियों से भून डाला और उसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली।
2: बात करने से बंद किया तो स्कूल में घुसकर गोली मारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की इस वारदात ने देश को झकझोर दिया है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी के इस स्कूल में सैकड़ों बच्चों की मौजूदगी में एक टीचर को ब्रेकअप से नाराज हत्यारा सऊद अंसारी घसीटता हुआ ले जाता है। वारदात की ये सीसीटीवी तस्वीरें टीचर निशात फातिमा की हत्या से ठीक पहले की है, जहां आरोपी सऊद अंसारी पहले टीचर को जबरन कॉरिडोर में ले गया, फिर कुछ देर के विवाद के बाद महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, महिला टीचर की हत्या के बाद आरोपी सऊद अंसारी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर दी। ये सब देखकर स्कूल का स्टाफ सकते में आ गया। बच्चे ऐसी वारदात का गवाह बन गए जिसकी बुरी यादें उनके जहन में हमेशा रहेंगी।
3: चार गोलियां चली। हाँ, चार चली, फिर आवाज आई, मैं दौड़कर पीछे मुड़ा, तभी
4: यहाँ निशान में एक टीचर है, उसके अंदर आया और उसका यहाँ पर पूरा काट दिया।
2: इस वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल स्कूल की सुरक्षा को लेकर है, जिसमें आरोपी इतनी आसानी से दाखिल हो जाता है, आखिर उसे किसी ने रोका क्यों नहीं?
5: ये पहले जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसे कर लेने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा वो तो कैमरा फुटेज में है ना।
6: उसमें कैसे आ गया ये थोड़ा सा सवाल होता है,
5: ये भी
6: क्या व्यवस्था है यहाँ पे, क्या
5: सारी व्यवस्था है यहाँ पे आईडी कार्ड देखकर ही बच्चों को दिया जाता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल स्कूल। अरे वही तो कह रहे हैं आप लोग, देखिए अभी जो चीज़ आप स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं कैसे हुआ, पहले देखिए जो चीज़, मेरे ख्याल से ये सवाल आप बेहतर होगा पुलिस से इसलिए पूछे क्योंकि अभी वो कैमरा फुटेज वो देख रहे हैं, है ना, तो उसमें बेहतर पता लग जाएगा क्या हुआ। ऐसे तो आप मुझसे सवाल कुछ पूछेंगे,
6: सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है स्कूल में, क्या
5: स्कूल में सिक्योरिटी की व्यवस्था क्या होनी चाहिए आप बताइए, क्या होनी चाहिए
6: गेट पे कम से कम चेक होना चाहिए,
5: क्या होना चाहिए चेक छुट्टी के टाइम पे, तो सिक्योरिटी हमारा है ना, माय गार्ड है और सिक्योरिटी में कैमरे हैं, सब चीज है, तभी तो पता लगेगा, वरना पता कैसे लगेगा। तो कैमरे नहीं चल रहे तो फिर पुलिस क्या कर रही है अंदर?
2: जिस वक्त आरोपी टीचर को घसीट कर ले जाता दिख रहा है, उस वीडियो में बच्चों के साथ दो महिलाएं भी नजर आ रही हैं, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोला।
7: शहर का सबसे सुरक्षित इलाका कलेक्ट्रेट परिसर, जहाँ जिले के डीएम बैठते हैं, जहाँ जिले की एसपी बैठती है, उस सुरक्षित परिसर के आसपास पड़ोस में बना एक निजी स्कूल जो है वहाँ पर शूटआउट होता है। एक लड़का अपने बैग में तमंचा लेकर पहुँच जाता है, उसके बाद क्लास में घुसता है, पहले जो अपनी प्रेमिका है या टीचर है उसको गोली मारता है, उसको खुद गोली मारकर हत्या कर देता है। सवाल ये उठता है कि शहर के पड़ोस में जहाँ सबसे सुरक्षित इलाका जिसको कहा जाता है, जहाँ जिले की डीएम एसपी तक बैठते हैं, हम कोशिश करेंगे। देखिए वो स्टाफ है, ये स्टाफ उस समय कितना सहम गया होगा, कितना डर गया होगा। मैडम क्या हुआ था उस समय, क्या जान पाएंगे आप लोग? आपके यहाँ और टीचर्स भी हैं, ये भी स्टाफ है, ऐसे तो फिर कोई भी,
8: देखिए हम लोग इस चीज के लिए तो कुछ कह भी नहीं सकते और ना समझ सकते हैं आपको और ना समझा।
7: नेचर कैसी थी, उसका नेचर कैसा था जो आपके यहाँ पढ़ा?
8: बहुत बढ़िया नेचर था,
7: मिलनसार थी।
8: हाँ मिलनसार बिल्कुल। मॉर्निंग में हम लोग की मॉर्निंग हुई है, मॉर्निंग में ही अभी हम लोग की मॉर्निंग हुई है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था।
7: अच्छा, ये लड़का जिस पे आरोप है कभी आया यहाँ पर?
8: मुझे नहीं मालूम।
7: लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर देखिए इतना डर है इस शूट आउट को देखकर। देखिए जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने का, जिनके जो बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं।
2: मरने वाली टीचर निशात फातिमा के पिता लखीमपुर खीरी के सुमेर नगर गांव के रहने वाले हैं और इस वक्त सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। निशात फातिमा का परिवार आरोपी सऊद अहमद के घर में किराए पर रह चुका है। इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी, लेकिन साल भर से निशात फातिमा ने सऊद अंसारी से बात करना भी कम कर दिया। ये भी बताया जा रहा है कि निशात फातिमा की शादी कहीं और तय हो गई थी। यही बात आरोपी सऊद अंसारी को नागवार गुजरी और उसने वारदात को अंजाम दिया।
9: इसी तरह की कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया गया, ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी थी। यदि उसको डिटेन किया जाता गेट पर तो शायद इस तरह की घटना एक टीचर के साथ न होती। निर्मम हत्या हुई उस लड़की की, उस लड़की की मैं चाचा हूं, इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे तो न्याय मिलना चाहिए। इस तरह के स्कूल अपने कमियों को छिपाने के लिए अभी तक किसी तरह का उन्होंने पुलिस में या अन्य कार्रवाई नहीं की।
2: निषाद की नाराजगी की वजह से सऊद न सिर्फ तनाव में था बल्कि मरने मारने पर आमादा था। इसका संकेत उसके सोशल मीडिया स्टेटस से लगता है जिसमें उसने अपने दोस्तों से अपील की थी कि अगर वो मर जाए तो उसकी फोटो वो हटा दें। कहा जा रहा है कि सऊद को उसके दोस्त समझाते थे लेकिन माना जा रहा है कि निषाद से उसका मनमुटाव इतना बढ़ गया कि उसने पहले सरेआम उसे गोलियों से भूना और फिर उसने खुदकुशी कर ली। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।
1: और अब बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे में जारी तनाव के बारे में, जहां एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अब फैकल्टी और छात्र आमने सामने आ चुके हैं जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है।
10: आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में तीन आयामों पर खबर चल रही है जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की सीसीटीवी तस्वीरें ली हैं जिसमें दोपहर 12:30 बजे से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर दुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं।
11: सर रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे। दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो डुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते हो वो कम्प्लीटली बेसलेस है। IIT में जितना मेरा एक्सपीरियंस है अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफ कोर्स ना मेरे साथ ना मेरे किसी दोस्त के साथ ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
12: उनके पास कब से कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहिल ने जो है उनको किसी बार अप्रोच भी किया हो या कुछ अपनी शंका भी जताई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने का नहीं है। यह स्टेटमेंट SC/ST स्टेल IIT बॉम्बे ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है।
11: इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा हो मुझे भी दिख रहा है। तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है SC/ST वो तो कम्प्लीटली बेसलेस ही हुआ ना, फिर वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
10: एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RPI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर डुल्ला पर SC/ST एक्ट लगे उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर डुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया, फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। 3 दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ है कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है, जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था, साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो, मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC/ST एक्ट लगाने का है। वहीं परिवार मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है।
13: चौकशी चालू है, वो चौकशी चालू करेंगे, लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके वो जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण डुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है।
10: बहरहाल अब जंग छात्र और फैकल्टी के बीच आ गई है जिस पर अब जाति पर घमासान की एंट्री हो चुकी है। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।
1: और अब बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की जिसका पहली बार आयोजन हुआ है दिल्ली से बाहर केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जिसमें फिल्म जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया।
14: ये सितारों के सम्मान की तस्वीर है। 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सिनेमा जगत की हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्म युग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला।
15: बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए दिया गया, जो कि अपने पति और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पहुंची थी। बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को दिया गया। भक्षक के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को समारोह में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्टर धनुष को डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन पहली बार केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास किया जा रहा है। अब हर साल अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दिल्ली से बाहर सेरेमनी कराने को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य देश के सभी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में कुल 45 पुरस्कार दिए गए। इनमें 26 फीचर फिल्म, 16 नॉन फीचर फिल्म, 2 सिनेमा पर लेखन और 1 दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल है। आज तक ब्यूरो।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भाषण दिया। करीब 40 मिनट के भाषण में ट्रंप ने कई मुद्दों पर बोला, लेकिन पूरा फोकस ईरान अमेरिका युद्ध पर था। यूएन के मंच से ट्रंप ने अपनी धमकी को दोहराया, अगर ईरान डील के लिए तैयार नहीं होगा तो हमले जारी रहेंगे। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे।

0: दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण पर टिकी। उम्मीद यही थी कि करीब 7 महीने से जारी युद्ध को लेकर ट्रंप ईरान के साथ समझौते का संकेत दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने अपनी भाषण में ईरान को लेकर वही बातें दोहराई जो लगातार कहते आ रहे हैं। ट्रंप ने यूएन के मंच से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बचाव किया, दावा किया कि ईरान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना लेता और अमेरिका से लेकर यूरोप तक आतंकी हमलों को अंजाम देता।
1: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
0: ट्रंप की माने तो अमेरिकी हमले में ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ये दावा ट्रंप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइलों का कहर थमा नहीं है। मतलब यही है कि ट्रंप ने जो कहा उसमें हकीकत कम, फसाना ज्यादा है।
1: After giving Iran every chance for a deal, I took action to ensure that neither the United States nor any nation in Seoul would ever have to face such a nightmare, such a catastrophic problem. As a result of Operation Epic Fury, all 159 ships of their Navy are now lying at the bottom of the sea. Likewise, their Air Force is gone, their radar is gone, their anti-aircraft equipment is gone, their missiles and drone manufacturing capacity is almost gone, their economy is gone. The only thing that isn't gone is inflation, which is destroying their country and is now well over 300%.
0: भाषण के दौरान ट्रंप ने होर्मुज को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात कही। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में मिड टर्म के बाद ईरान के साथ होर्मुज पर कोई बड़ी डील हो सकती है, लेकिन ये डील होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स वसूली को लेकर होगी। यानी होर्मुज पर टैक्स को ट्रंप मंजूरी दे सकते हैं, जिसमें ईरान के साथ साथ अमेरिका का भी हिस्सा होगा।
1: Yet even after we agreed to a ceasefire for nuclear discussions, Iran promptly violated it with brazen acts of terrorism against civilian ships from other countries. I want to thank the UN Security Council for voting overwhelmingly to pass a resolution condemning Iran's despicable terrorist attacks on commercial shipping. Thank you very much. Now we must be equally united in maintaining pressure. The United States Navy has recently escorted more than 1 billion barrels of oil out of the Strait of Hormuz, and more oil is flowing than at any point since the start of the war. We're taking 22, 25, 30, 32, and 37 ships out, respectively, every single day, every single night.
0: एक तरफ ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ होर्मुज पर ईरान के साथ डील की बात करते हैं। सवाल यही है कि ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्यों है? ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर कोई ठोस दलील पेश नहीं की, लेकिन ये दावा करना नहीं भूले कि यूक्रेन रूस युद्ध को रुकवा देंगे।
1: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it. 25,000 young people, mostly soldiers, a month are dying. 25,000 a month. And I look at those battlefield pictures and I really don't want to see them anymore. It's so horrible to see. 25,000 a month, both sides. We continue to seek and end the disastrous war between Russia and Ukraine, which is killing, as I said, thousands and thousands of people every month. Last week, in honor of Senator Lindsey Graham, I signed a powerful new law passed by Congress, providing me with enormous new tariff authorities, and if necessary, I will have to use them. It's time to stop the killing.
0: ईरान के साथ स्थायी युद्ध विराम में उलझे ट्रंप यूक्रेन और रूस को युद्ध में उलझाने का दम भर रहे हैं, दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता है कि वादे तो वादे हैं, वादों का क्या? आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का हो पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार का, आतंकवाद और परमाणु हथियारों की होड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी के मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग। बिहार के जमुई में एक नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने सबका दिल दुखाया है। पुलिस ने नंदन यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई। नंदन यादव और उसका सहयोगी हरेराम यादव इस वक्त अस्पताल में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाफ एनकाउंटर से जमुई छेड़खानी का कांड पूरा उसका हिसाब हो गया है?

0: लंदन यादव, उसके पैर में गोली लगी है और ये वो है उसमें से उनको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए।
1: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ विभत्स वारदात को अंजाम देने वाले, चेहरे पर गमछा बांधकर बिहार में कानून व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर देने वाले नंदन यादव की आंखों में वारदात करते वक्त ना कोई शर्म थी और ना ही कानून का कोई खौफ। लेकिन हाफ एनकाउंटर के बाद इस वारदात का मुख्य आरोपी नंदन यादव घिसटता हुआ दिखा।
0: यही मुलायम यादव है जिसके
1: लगातार फरार चल रहे नंदन यादव को देश ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए देखा। जम्मू में जिस बेखौफ अंदाज में दसवीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी की गई, उसने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया। इनमें 3 नाबालिग भी हैं। दोनों मुख्य आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
2: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है।
3: हमारे गांव की तरफ उधर से जम्मू जिला से रपेटते हुए आए प्रशासन लोग, तो हमारे कुंदर गांव के लोग उधर गांव में हम लोग जब भीड़ जमा देखा तो कांस की ओर छुपने का प्रयास किया। उसके बाद उधर से बराज पर से पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए और जिला से फिर इधर से घेरे तो ये लोग को यहां रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
2: ये कौन सा नदी क्षेत्र है?
3: ये क्यूल नदी।
2: क्यूल नदी
3: जी जी जी।
2: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
3: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
2: अच्छा
3: जी।
2: ये पुलिस से भाग रहे थे?
3: भाग रहे थे सर।
2: और पुलिस को चैलेंज भी किया जी,
3: पुलिस के ऊपर गोली चलाया, पुलिस को मारा गोली।
2: अच्छा, पुलिस के ऊपर गोली चलाया इन्होंने।
1: नंदन यादव और हरेराम यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
4: अभी तक कल 3 व्यक्ति निरुद्ध किए गए थे, आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
0: और लोग आरोपी हैं इसमें या फिर अज्ञात?
5: अगले महीने शारदीय नवरात्रि में सारा देश मां दुर्गा की पूजा आदि शक्ति के रूप में करेगा। विडंबना देखिए, जिस देश में देवी शक्ति का प्रतीक है उसी देश में बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने को माता पिता को बार बार कहना पड़ता है। बेटियों को देर तक बाहर न रहने, अकेले न जाने की सलाह अक्सर ही दी जाती है, लेकिन कोई सरकार कोई राज्य बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता दावा नहीं कर पाता।
2: यहीं पर यह घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद में उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
1: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर लाठड़ा किया है। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया था।
6: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
1: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गई। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
7: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा, अगर हिम्मत है तो। अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं।
1: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
8: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
9: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
1: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
10: Moral policing can be one on one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion, but the way that they mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.
1: सवाल यह है कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे moral policing कहा जा सकता है, जबकि यह मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था, लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
11: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है, और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
1: भारत में महिला अपराधों पर, यहाँ तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना ये है कि ये सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
5: बिहार के जमुई में दरिंदगी पर सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
12: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं सच, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है, और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
5: बिहार की तरह दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसे लेकर सवाल दो वारदातों से और गहरा गया है। दिल्ली के कालकाजी में एक नाबालिग से पार्क में गैंगरेप किया गया, तो सदर बाजार इलाके में स्टेशनरी की दुकान जा रही एक बच्ची का दुकानदार ने यौन शोषण किया।

राजधानी दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में जिस तरह से एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ और एक बच्ची का बाजार में यौन शोषण हुआ, उसके बाद देश की राजधानी में बेटियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों में है। सोमवार शाम को दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी। दिल्ली के कालकाजी इलाके के इसी पार्क में आसिफ समेत तीन लोगों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया।

0: गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आसिफ के पैर में गोली लगी है, वो घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दो साथियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमवार शाम उनको जानकारी मिली, शिकायत मिली कि 17 साल की एक लड़की के साथ इस पार्क में तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि 7:30 बजे के आसपास तीनों इस पार्क में दाखिल होती है, वो मंदिर आई थी और उसके बाद उसके बैक गेट के इलाके से होते हुए आस्था कुंज पार्क में आ जाती है, गेट नंबर 7 से, और इस पार्क के अंदर जब वो पहुंचती है तो अंधेरा हो ही चुका था, लाइट जल रही थी लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं थी, तभी वो तीनों सामने आ जाते हैं। उन्होंने खुद को पुलिस वाला बनाया ताकि लड़कियों को डराया जा सके और पुलिस वाला बनाने के बाद वो पीड़िता को अलग कर दिए, दो लड़कियों को एक तरफ उन्होंने कर दिया और पीड़िता को एक तरफ ले गए। वहां पर आसिफ नाम का आरोपी जो एनकाउंटर के बाद घायल हुआ है, पकड़ा गया है, उसने मंचा निकाला और उसने पीड़िता को डराना धमकाना शुरू किया और एक ने चाकू निकाला, दोनों ने मिलकर पीड़िता को धमकाया और उसके बाद बारी बारी तीनों ने गलत हरकत को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए।
1: इस वारदात के एक मुख्य आरोपी आसिफ को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, वहीं बाकी दो और आरोपी भी धरे गए। यहीं पर आसिफ नाम के आरोपी का एनकाउंटर हुआ, यहां पर आरोपी की बाइक गिरी हुई दिख रही है, पास ही आरोपी की पिस्टल पड़ी है।
0: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था, पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
1: पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया है कि सोमवार शाम को वो अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी, पूजा के बाद दोनों मंदिर के पास के आस्था कुंज पार्क गए लेकिन वो नहीं जानते थे कि आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे हैं।
2: एक अक्यूज जो है आशीष, उसको एक पुलिस एनकाउंटर के तहत सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ा है, दो और लोगों के नाम सामने आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, तो आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी बाकी जो अरेस्ट हैं वो भी डाले जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी।
1: इस मामले में भले ही सभी तीनों आरोपी पकड़े गए हों लेकिन इस वारदात ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दिल्ली के सदर बाजार में हो रहे इस प्रदर्शन को देखिए जो 11 साल की एक मासूम बच्ची के यौन शोषण के खिलाफ है। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि थाने में बंद आरोपी और उसके परिजन भीड़ के निशाने पर आ गए, जिन्हें बचाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। बच्ची से रेप की वारदात 16 सितंबर रात को हुई, जब छठी में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी, तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
3: मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ और अगर आप देखें ये पूरे इलाके को तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कंजस्टेड इलाका है और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहाँ काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी आप देखें तो ये जो पूरी गली है, इसी गली में ये दूसरी दुकान जो है ये बताई जा रही है ये मकसूद की है जहां वो टेलर का काम करता था। 16 तारीख की रात करीब 11 बजे के आसपास जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से नीचे उतरती है, स्टेशनरी जाती है, कॉपी पेंसिल लेने के लिए जाती है, लेकिन मकसूद जो कि उसे पहले से जानता था उसे अपनी दुकान में लाता है। आरोप यह है कि उसके हाथ पैर बांधता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है।
1: बच्ची से इस तरह की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
4: हमारे ही बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा कि हम बाहर निकाले ना निकाले, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हमें फिक्र महसूस हो गया क्योंकि अब जब ऐसा इंसान नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा है, शैतान जाग के अंदर, तो हर आदमी को डर लगेगा।

0: राजधानी दिल्ली की दोनों ही वारदातें याद दिलाती हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का खौफ नहीं है, इसलिए बेटियां बार बार निशाना बन रही हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
1: यूपी के लखीमपुर खीरी से भी बहुत ही डराने वाली वारदात सामने आई। यहाँ पर एक टीचर ने आरोपी से बात करना बंद किया तो उसने स्कूल में घुसकर टीचर को गोलियों से भून डाला और उसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली।
2: बात करने से बंद किया तो स्कूल में घुसकर गोली मारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की इस वारदात ने देश को झकझोर दिया है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी के इस स्कूल में सैकड़ों बच्चों की मौजूदगी में एक टीचर को ब्रेकअप से नाराज हत्यारा सऊद अंसारी घसीटता हुआ ले जाता है। वारदात की ये सीसीटीवी तस्वीरें टीचर निशात फातिमा की हत्या से ठीक पहले की है, जहां आरोपी सऊद अंसारी पहले टीचर को जबरन कॉरिडोर में ले गया, फिर कुछ देर के विवाद के बाद महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, महिला टीचर की हत्या के बाद आरोपी सऊद अंसारी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर दी। ये सब देखकर स्कूल का स्टाफ सकते में आ गया। बच्चे ऐसी वारदात का गवाह बन गए जिसकी बुरी यादें उनके जहन में हमेशा रहेंगी।
3: चार गोलियां चली। हाँ, चार चली, फिर आवाज आई,
4: यहाँ निशान में एक टीचर है, उसके अंदर आया और उसका यहाँ पर पूरा काट दिया।
2: इस वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल स्कूल की सुरक्षा को लेकर है, जिसमें आरोपी इतनी आसानी से दाखिल हो जाता है। आखिर उसे किसी ने रोका क्यों नहीं?
5: ये पहले जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसे कर लेने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा वो तो कैमरा फुटेज में है ना।
6: उसमें कैसे आ गया ये थोड़ा सा सवाल होता है। ये भी क्या व्यवस्था है यहाँ पे, क्या
5: सारी व्यवस्था है यहाँ पे आईडी कार्ड देखकर ही बच्चों को दिया जाता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल स्कूल। अरे वही तो कह रहे हैं, आप लोग देखिए अभी जो चीज़ आप स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं कैसे हुआ, पहले देखिए जो चीज़। मेरे ख्याल से ये सवाल आप बेहतर होगा पुलिस से इसलिए पूछे क्योंकि अभी वो कैमरा फुटेज वो देख रहे हैं, है ना, तो उसमें बेहतर पता लग जाएगा क्या हुआ। ऐसे तो आप मुझसे सवाल कुछ पूछेंगे।
6: सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है स्कूल में? क्या
5: स्कूल में सिक्योरिटी की व्यवस्था क्या होनी चाहिए आप बताइए, क्या होनी चाहिए?
6: गेट पे कम से कम चेक होना चाहिए।
5: क्या होना चाहिए चेक? छुट्टी के टाइम पे तो सिक्योरिटी हमारा है ना, माय गार्ड है और सिक्योरिटी में कैमरे हैं, सब चीजें, तभी तो पता लगेगा, वरना पता कैसे लगेगा? तो कैमरे नहीं चल रहे तो फिर पुलिस क्या कर रही है अंदर?
2: जिस वक्त आरोपी टीचर को घसीट कर ले जाता दिख रहा है, उस वीडियो में बच्चों के साथ दो महिलाएं भी नजर आ रही हैं, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोला।
7: शहर का सबसे सुरक्षित इलाका कलेक्ट्रेट परिसर, जहाँ जिले के डीएम बैठते हैं, जहाँ जिले की एसपी बैठती है, उस सुरक्षित परिसर के आसपास पड़ोस में बना एक निजी स्कूल जो है वहाँ पर शूट आउट होता है। एक लड़का अपने बैग में तमंचा लेकर पहुँच जाता है, उसके बाद क्लास में घुसता है, पहले जो अपनी प्रेमिका है या टीचर है उसको गोली मारता है, उसको खुद गोली मारकर हत्या कर देता है। सवाल ये उठता है कि शहर के पड़ोस में जहाँ सबसे सुरक्षित इलाका जिसको कहा जाता है, जहाँ जिले की डीएम एसपी तक बैठते हैं, हम कोशिश करेंगे। देखिए वो स्टाफ है, ये स्टाफ उस समय कितना सहम गया होगा, कितना डर गया होगा। मैडम क्या हुआ था उस समय, क्या जान पाएंगे आप लोग? आपके यहाँ और टीचर्स भी हैं, ये भी स्टाफ है, ऐसे तो फिर कोई भी,
8: देखिए हम लोग इस चीज के लिए तो कुछ कह भी नहीं सकते और ना समझ सकते हैं आपको और ना समझा।
7: टीचर कैसी थी, उसका नेचर कैसा था जो आपके यहाँ पढ़ा?
8: बहुत बढ़िया नेचर था,
7: मिलनसार थी।
8: हाँ मिलनसार बिल्कुल। मॉर्निंग में हम लोग की मॉर्निंग हुई है, मॉर्निंग में ही अभी हम लोग की मॉर्निंग हुई है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था।
7: अच्छा, ये लड़का जिस पे आरोप है कभी आया यहाँ पर?
8: मुझे नहीं मालूम।
7: लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर देखिए इतना डर है इस शूट आउट को देखकर। देखिए जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने का, जिनके जो बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं।
2: मरने वाली टीचर निशात फातिमा के पिता लखीमपुर खीरी के सुमेर नगर गांव के रहने वाले हैं और इस वक्त सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। निशात फातिमा का परिवार आरोपी सऊद अहमद के घर में किराए पर रह चुका है। इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी, लेकिन साल भर से निशात फातिमा ने सऊद अंसारी से बात करना भी कम कर दिया। ये भी बताया जा रहा है कि निशात फातिमा की शादी कहीं और तय हो गई थी। यही बात आरोपी सऊद अंसारी को नागवार गुजरी और उसने वारदात को अंजाम दिया।
9: इसी तरह की कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया गया, ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी थी। यदि उसको डिटेन किया जाता गेट पर तो शायद इस तरह की घटना एक टीचर के साथ न होती। निर्मम हत्या हुई उस लड़की की, उस लड़की की मैं चाचा हूँ। इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे तो न्याय मिलना चाहिए। इस तरह के स्कूल अपने कमियों को छिपाने के लिए अभी तक किसी तरह का उन्होंने पुलिस में या अन्य कार्रवाई नहीं की।
2: निषाद की नाराजगी की वजह से सऊद न सिर्फ तनाव में था बल्कि मरने मारने पर आमादा था। इसका संकेत उसके सोशल मीडिया स्टेटस से लगता है जिसमें उसने अपने दोस्तों से अपील की थी कि अगर वो मर जाए तो उसकी फोटो वो हटा दे। कहा जा रहा है कि सऊद को उसके दोस्त समझाते थे लेकिन माना जा रहा है कि निषाद से उसका मनमुटाव इतना बढ़ गया कि उसने पहले सरेआम उसे गोलियों से भूना और फिर उसने खुदकुशी कर ली। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।
1: और अब बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे में जारी तनाव के बारे में, जहां एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अब फैकल्टी और छात्र आमने सामने आ चुके हैं जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है।
10: आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में तीन आयामों पर खबर चल रही है जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की सीसीटीवी तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 बजे से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर दुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं।
11: सर रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे। दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो डुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप क्लास में डिस्क्रिमिनेशन करते हो वो कम्प्लीटली बेसलेस है। IIT में जितना मेरा एक्सपीरियंस है अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफ कोर्स ना मेरे साथ ना मेरे किसी दोस्त के साथ ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
12: उनके पास कब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहिल ने जो है उनको किसी बार अप्रोच भी किया हो या कुछ अपनी शंका भी जताई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने का नहीं है। ये स्टेटमेंट SC/ST स्टेल IIT बॉम्बे ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है।
11: इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा हो मुझे भी दिख रहा है। तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है SC/ST वो तो कम्प्लीटली बेसलेस ही हुआ ना, फिर वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
10: एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RPI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर डुल्ला पर SC/ST एक्ट लगे उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर डुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया, फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। 3 दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ है कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है, जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था, साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो। मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC/ST एक्ट लगाने का है। वहीं परिवार मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है।
13: चौकशी चालू है, वो चौकशी चालू करेंगे, लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके वो जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण डुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है।
10: बहरहाल अब जंग छात्र और फैकल्टी के बीच आ गई है जिस पर अब जाति पर घमासान की एंट्री हो चुकी है। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।
1: और अब बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, जिसका पहली बार आयोजन हुआ है दिल्ली से बाहर केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जिसमें फिल्म जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया।
0: ये सितारों के सम्मान की तस्वीर है। 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सिनेमा जगत की हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्म युग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए दिया गया, जो कि अपने पति और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पहुंची थी। बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को दिया गया। भक्षक के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को समारोह में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्टर धनुष को डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन पहली बार केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास किया जा रहा है। अब हर साल अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दिल्ली से बाहर सेरेमनी कराने को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य देश के सभी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में कुल 45 पुरस्कार दिए गए, इनमें 26 फीचर फिल्म, 16 नॉन फीचर फिल्म, 2 सिनेमा पर लेखन और 1 दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल है। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का हो पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार का, आतंकवाद और परमाणु हथियारों की होड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी के मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग। बिहार के जमुई में एक नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने सबका दिल दुखाया है। पुलिस ने नंदन यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई। नंदन यादव और उसका सहयोगी हरेराम यादव इस वक्त अस्पताल में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाफ एनकाउंटर से जमुई छेड़खानी का कांड पूरा उसका हिसाब हो गया है।

0: अंदर नहीं आता, उसके पैर में गोली लगी है और ये वो है उसमें से तुमको शर्म नहीं आई ये सब करते हो।
1: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ विभत्स वारदात को अंजाम देने वाले, चेहरे पर गमछा बांधकर बिहार में कानून व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर देने वाले नंदन यादव की आंखों में वारदात करते वक्त ना कोई शर्म थी और ना ही कानून का कोई खौफ। लेकिन हाफ एनकाउंटर के बाद इस वारदात का मुख्य आरोपी नंदन यादव खिसकता हुआ दिखा।
0: यही नाम यादव है जिसके
1: लगातार फरार चल रहे नंदन यादव को देश ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए देखा। जम्मू में जिस बेखौफ अंदाज में दसवीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी की गई, उसने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया। इनमें 3 नाबालिग भी हैं। दोनों मुख्य आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
2: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है।
3: हमारे गांव की तरफ उधर से जम्मू जिला से रपेटते हुए आए प्रशासन लोग, तो हमारे कुंदर गांव के लोग उधर गांव में हम लोग जब भीड़ जमा देखा तो कांस की ओर छुपने का प्रयास किया। उसके बाद उधर से बराज पर से पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए और जिला से फिर इधर से घेरे, तो ये लोग को यहां रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
2: ये कौन सा नदी क्षेत्र है?
3: ये क्यूल नदी।
2: क्यूल नदी
3: जी जी जी।
2: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
3: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
2: अच्छा
3: जी।
2: तो ये पुलिस से भाग रहे थे?
3: भाग रहे थे सर।
2: और पुलिस को चैलेंज भी किया
3: जी, पुलिस के ऊपर गोली चलाया, पुलिस मारा गोली।
2: अच्छा, पुलिस के ऊपर गोली चलाया इन्होंने।
1: नंदन यादव और हरेराम यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
4: अभी तक कल 3 व्यक्ति निरुद्ध किए गए थे, आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
0: और लोग आरोपी हैं इसमें या फिर अज्ञात में छापेमारी?
4: अभी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे और पूछताछ अभी की जाएगी।
1: तो पुलिस की घेराबंदी के दौरान हुई कार्रवाई में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्य आरोपी नंदन यादव जमुई के प्रतापपुर गाँव का रहने वाला है, जो नाबालिग छात्रा से की गई जगह से नजदीक है।
2: इसी सड़क से आगे जब आप क्यूल नदी की तरफ जाते हैं तो वहां पर खनन का काम चलता है, और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है और उसका सहयोगी हरेराम यादव, ये दोनों बालू खनन के कारोबार में शामिल हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बालू की जो घाट से निकासी होती है उसको लेकर के।
1: नंदन यादव के साथ वारदात में एक और आरोपी हरेराम यादव की भी गिरफ्तारी हुई। कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में हरेराम यादव का पैर टूट गया। बिहार पुलिस कह रही है कि वो इस वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? नंदन यादव जैसे दरिंदों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जानवरों की तरह एक नाबालिग छात्रा पर टूट पड़े?
2: छोटे सा पहाड़ है और 2 पहाड़ियां हैं यहाँ पे, एक पहाड़ी वो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाई तरफ। इन 2 पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं।
1: इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रा से अभद्रता के वीडियो को वायरल करने के मामले में 3 लोग हिरासत में। लेकिन सवाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर, क्या हाफ एनकाउंटर से नंदन यादव जैसे लोगों के मन में खौफ पैदा किया जा सकता है? शशि भूषण, जमुई, आज तक।
5: अगले महीने शारदीय नवरात्रि में सारा देश मां दुर्गा की पूजा आदि शक्ति के रूप में करेगा। विडंबना देखिए, जिस देश में देवी शक्ति का प्रतीक है उसी देश में बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने को माता पिता को बार बार कहना पड़ता है। बेटियों को देर तक बाहर न रहने, अकेले न जाने की सलाह अक्सर ही दी जाती है, लेकिन कोई सरकार कोई राज्य बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता दावा नहीं कर पाता।
2: ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
1: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर लाठड़ा किया है। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया।
6: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
1: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गई। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
7: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा, अगर हिम्मत है तो। अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं।
1: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
8: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
9: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए, जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
1: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
10: Moral policing can be one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion, but the way that they mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.
1: सवाल ये है कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे moral policing कहा जा सकता है, जबकि ये मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
11: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
1: भारत में महिला अपराधों पर, यहां तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना ये है कि ये सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
5: बिहार के जमुई में दरिंदगी पर सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
12: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथियों। लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है, और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
5: बिहार की तरह दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसे लेकर सवाल दो वारदातों से और गहरा गया है। दिल्ली के कालकाजी में एक नाबालिग से पार्क में गैंगरेप किया गया, तो सदर बाजार इलाके में स्टेशनरी की दुकान जा रही एक बच्ची का दुकानदार ने यौन शोषण किया।

0: राजधानी दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में जिस तरह से एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ और एक बच्ची का बाजार में यौन शोषण हुआ, उसके बाद देश की राजधानी में बेटियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों में है। सोमवार शाम को दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी। दिल्ली के कालकाजी इलाके के इसी पार्क में आसिफ समेत तीन लोगों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था कुंज पार्क में, जहां पर सोमवार देर शाम 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी आसिफ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आसिफ के पैर में गोली लगी है, वो घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दो साथियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमवार शाम उनको जानकारी मिली, शिकायत मिली कि 17 साल की एक लड़की के साथ इस पार्क में तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि 7:30 बजे के आसपास तीनों इस पार्क में दाखिल होती है, वो मंदिर आई थी और उसके बाद उसके बैक गेट के इलाके से होते हुए आस्था कुंज पार्क में आ जाती है गेट नंबर 7 से, और इस पार्क के अंदर जब वो पहुंचती है तो अंधेरा हो ही चुका था, लाइट जल रही थी लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं थी। तभी वो तीनों सामने आ जाते हैं, उन्होंने खुद को पुलिस वाला बनाया ताकि लड़कियों को डराया जा सके, और पुलिस वाला बनाने के बाद वो पीड़िता को अलग कर दिए, दो लड़कियों को एक तरफ उन्होंने कर दिया और पीड़िता को एक तरफ ले गए। वहां पर आसिफ नाम का आरोपी जो एनकाउंटर के बाद घायल हुआ है, पकड़ा गया है, उसने मंचा निकाला और उसने पीड़िता को डराना धमकाना शुरू किया और एक ने चाकू निकाला, दोनों ने मिलकर पीड़िता को धमकाया और उसके बाद बारी बारी तीनों ने गलत हरकत को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए।
0: इस वारदात के एक मुख्य आरोपी आसिफ को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, वहीं बाकी दो और आरोपी भी धरे गए। यहीं पर आसिफ नाम के आरोपी का एनकाउंटर हुआ, यहां पर आरोपी की बाइक गिरी हुई दिख रही है, पास ही आरोपी की पिस्टल पड़ी है।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ, जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है, इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा, पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
0: पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया है कि सोमवार शाम को वो अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी। पूजा के बाद दोनों मंदिर के पास के आस्था कुंज पार्क गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे हैं।
2: एक अक्यूज जो है आशीष, उसको एक पुलिस एनकाउंटर के तहत सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ा है। दो और लोगों के नाम सामने आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, तो आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी बाकी जो अरेस्ट हैं वो भी डाले जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी।
0: इस मामले में भले ही सभी तीनों आरोपी पकड़े गए हों, लेकिन इस वारदात ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दिल्ली के सदर बाजार में हो रहे इस प्रदर्शन को देखिए, जो 11 साल की एक मासूम बच्ची के यौन शोषण के खिलाफ है। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि थाने में बंद आरोपी और उसके परिजन भीड़ के निशाने पर आ गए, जिन्हें बचाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। बच्ची से रेप की वारदात 16 सितंबर रात को हुई, जब छठी में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी। तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
3: मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ, और अगर आप देखें ये पूरे इलाके को तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कंजस्टेड इलाका है और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहां काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी आप देखें तो ये जो पूरी गली है, इसी गली में ये दूसरी दुकान जो है ये बताई जा रही है ये मकसूद की है, जहां वो टेलर का काम करता था। 16 तारीख की रात करीब 11 बजे के आसपास जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से नीचे उतरती है, स्टेशनरी जाती है, कॉपी पेंसिल लेने के लिए जाती है, लेकिन मकसूद जो कि उसे पहले से जानता था उसे अपनी दुकान में लाता है। आरोप यह है कि उसके हाथ पैर बांधता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है।
0: बच्ची से इस तरह की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
4: हमारे भी बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा कि हम बाहर निकाले ना निकाले, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हमें फिक्र महसूस हो गया, क्योंकि अब जब ऐसा इंसान नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा है शैतान जाग के अंदर, तो हर आदमी को डर लगेगा।
0: राजधानी दिल्ली की दोनों ही वारदातें याद दिलाती हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का खौफ नहीं है, इसलिए बेटियां बार बार निशाना बन रही हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
5: यूपी के लखीमपुर खीरी से भी बहुत ही डराने वाली वारदात सामने आई। यहां पर एक टीचर ने आरोपी से बात करना बंद किया तो उसने स्कूल में घुसकर टीचर को गोलियों से भून डाला और उसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली।
6: बात करने से बंद किया तो स्कूल में घुसकर गोली मारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की इस वारदात ने देश को झकझोर दिया है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी के इस स्कूल में सैकड़ों बच्चों की मौजूदगी में एक टीचर को ब्रेकअप से नाराज हत्यारा सऊद अंसारी घसीटता हुआ ले जाता है। वारदात की ये सीसीटीवी तस्वीरें टीचर निशात फातिमा की हत्या से ठीक पहले की है, जहां आरोपी सऊद अंसारी पहले टीचर को जबरन कॉरिडोर में ले गया, फिर कुछ देर के विवाद के बाद महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, महिला टीचर की हत्या के बाद आरोपी सऊद अंसारी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये सब देखकर स्कूल का स्टाफ सख्ते में आ गया। बच्चे ऐसी वारदात का गवाह बन गए जिसकी बुरी यादें उनके जहन में हमेशा रहेंगी।
7: चार गोलियां चली। हाँ, चार चली, फिर आवाज आई,
8: यहाँ निशान में एक टीचर है, उसके अंदर आया और उसका यहाँ पर पूरा काट दिया।
6: इस वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल स्कूल की सुरक्षा को लेकर है, जिसमें आरोपी इतनी आसानी से दाखिल हो जाता है, आखिर उसे किसी ने रोका क्यों नहीं?
9: ये पहले जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसे कर लेने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा वो तो कैमरा फुटेज में है ना।
10: ये भी क्या व्यवस्था है यहाँ पे, क्या
9: सारी व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे आईडी कार्ड देखकर ही बच्चों को दिया जाता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल स्कूल। अरे वही तो कह रहे हैं, आप लोग देखिए अभी जो चीज़ आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं कैसे हुआ, पहले देखिए जो चीज़। मेरे ख्याल से ये सवाल आप बेहतर होगा पुलिस से इसलिए पूछे क्योंकि अभी वो कैमरा फुटेज वो देख रहे हैं, है ना, तो उसमें बेहतर पता लग जाएगा क्या हुआ। ऐसे तो आप मुझसे सवाल कुछ पूछेंगे,
10: सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था स्कूल में, क्या
9: स्कूल में सिक्योरिटी की व्यवस्था क्या होनी चाहिए आप बताइए, क्या होनी चाहिए?
10: गेट पे कम से कम चेक होना चाहिए,
9: क्या होना चाहिए चेक? छुट्टी के टाइम पे तो सिक्योरिटी हमारा है ना, माय गार्ड है और सिक्योरिटी में कैमरे हैं, सब चीजें, तभी तो पता लगेगा, वरना पता कैसे लगेगा? तो कैमरे नहीं चल रहे तो फिर पुलिस क्या कर रही है अंदर?
6: जिस वक्त आरोपी टीचर को घसीट कर ले जाता दिख रहा है, उस वीडियो में बच्चों के साथ दो महिलाएं भी नजर आ रही हैं, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोला।
11: शहर का सबसे सुरक्षित इलाका कलेक्ट्रेट परिसर, जहाँ जिले के डीएम बैठते हैं, जहाँ जिले की एसपी बैठती है, उस सुरक्षित परिसर के आसपास पड़ोस में बना एक निजी स्कूल जो है वहाँ पर शूटआउट होता है। एक लड़का अपने बैग में तमंचा लेकर पहुँच जाता है, उसके बाद क्लास में घुसता है, पहले जो अपनी प्रेमिका है या टीचर है उसको गोली मारता है, उसको खुद गोली मारकर हत्या कर देता है। सवाल ये उठता है कि शहर के पड़ोस में जहाँ सबसे सुरक्षित इलाका जिसको कहा जाता है, जहाँ जिले की डीएम एसपी तक बैठते हैं, हम कोशिश करेंगे। देखिए वो स्टाफ है, ये स्टाफ उस समय कितना सहम गया होगा, कितना डर गया होगा। मैडम क्या हुआ था उस समय, क्या जान पाएंगे आप लोग? आपके यहाँ और टीचर्स भी हैं, ये भी स्टाफ है, ऐसे तो फिर कोई भी,
12: देखिए हम लोग इस चीज के लिए तो कुछ कह भी नहीं सकते और ना समझ सकते हैं आपको और ना समझा
11: सकते। कैसी थी उसका नेचर, कैसा था जो आपके यहाँ पढ़ा?
12: बहुत बढ़िया नेचर था,
11: मिलनसार थी।
12: हाँ मिलनसार बिल्कुल। मॉर्निंग में हम लोग की मॉर्निंग हुई है, मॉर्निंग में ही अभी हम लोग की मॉर्निंग हुई है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था।
13: अच्छा, ये लड़का जिस पे आरोप है कभी आया यहाँ पर?
12: मुझे नहीं मालूम।
13: लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर देखिए इतना डर है इस शूट आउट को देखकर। देखिए जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने का, जिनके जो बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं।
6: मरने वाली टीचर निशात फातिमा के पिता लखीमपुर खीरी के सुमेर नगर गांव के रहने वाले हैं और इस वक्त सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। निशात फातिमा का परिवार आरोपी सऊद अहमद के घर में किराए पर रह चुका है। इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी, लेकिन साल भर से निशात फातिमा ने सऊद अंसारी से बात करना भी कम कर दिया। ये भी बताया जा रहा है कि निशात फातिमा की शादी कहीं और तय हो गई थी। यही बात आरोपी सऊद अंसारी को नागवार गुजरी और उसने वारदात को अंजाम दिया।
14: इसी तरह की कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया गया, ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी थी। यदि उसको डिटेन किया जाता गेट पर तो शायद इस तरह की घटना एक टीचर के साथ न होती। निर्मम हत्या हुई उस लड़की की, उस लड़की की मैं चाचा हूं, इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे तो न्याय मिलना चाहिए। इस तरह के स्कूल अपने कमियों को छिपाने के लिए अभी तक किसी तरह का उन्होंने पुलिस में या अन्य कार्रवाई नहीं की।
6: निशात की नाराजगी की वजह से सऊद न सिर्फ तनाव में था बल्कि मरने मारने पर आमादा था। इसका संकेत उसके सोशल मीडिया स्टेटस से लगता है, जिसमें उसने अपने दोस्तों से अपील की थी कि अगर वो मर जाए तो उसकी फोटो वो हटा दे। कहा जा रहा है कि सऊद को उसके दोस्त समझाते थे, लेकिन माना जा रहा है कि निशात से उसका मनमुटाव इतना बढ़ गया कि उसने पहले सरेआम उसे गोलियों से भूना और फिर उसने खुदकुशी कर ली। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।
5: और अब बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे में जारी तनाव के बारे में, जहां एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अब फैकल्टी और छात्र आमने सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है।
15: आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में तीन आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की सीसीटीवी तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 बजे से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर दुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं।
16: सर, रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे। दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो डुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। आईआईटी में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफ कोर्स ना मेरे साथ, ना मेरे किसी दोस्त के साथ, ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
17: उनके पास कैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहिल ने जो है उनको किसी बार अप्रोच भी किया हो या कुछ अपनी शंका भी जताई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने का नहीं है। यह स्टेटमेंट SC/ST सेल IIT बॉम्बे ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है।
16: इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है SC/ST, वो तो कम्प्लीट बेसलेस ही हुआ ना। फिर वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
15: एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RPI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर डुल्ला पर SC/ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर डुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया। फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। 3 दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ है कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है, जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था, साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो, मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC/ST एक्ट लगाने का है। वहीं परिवार मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है।
18: चौकशी चालू है, वो चौकशी चालू करेंगे, लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके, और जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण डुल्ला, उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है।
15: बहरहाल अब जंग छात्र और फैकल्टी के बीच आ गई है, जिस पर अब जाति पर घमासान की एंट्री हो चुकी है। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
5: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

संकट टल जाता है? क्या गाय की सेवा करने से ग्रह बेहतर हो जाते हैं? क्या पक्षियों को पालने से पारिवारिक जीवन खराब हो जाता है? क्या है पशु पक्षियों के पालन का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

हॉर्मुज पर ऐतिहासिक डील और ईरान को धमकी के बीच जीएनजीए में बोले ट्रंप, ईरान का हो पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार का, आतंकवाद और परमाणु हथियारों की होड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं। नक्सल मुक्त के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे गृह मंत्री, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक देश से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण। जमुई में दरिंदगी के मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग। बिहार के जमुई में एक नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने सबका दिल दुखाया है। पुलिस ने नंदन यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई। नंदन यादव और उसका सहयोगी हरेराम यादव इस वक्त अस्पताल में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाफ एनकाउंटर से जमुई छेड़खानी का कांड पूरा उसका हिसाब हो गया है।

0: अंदर नहीं आता उसके पैर में गोली लगी है और ये वो है उसमें से तुमको शर्म नहीं आई ये सब करते हो।
1: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ विभत्स वारदात को अंजाम देने वाले, चेहरे पर गमछा बांधकर बिहार में कानून व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर देने वाले नंदन यादव की आंखों में वारदात करते वक्त ना कोई शर्म थी और ना ही कानून का कोई खौफ। लेकिन हाफ एनकाउंटर के बाद इस वारदात का मुख्य आरोपी नंदन यादव खिसकता हुआ दिखा।
0: यही नाम यादव है जिसके
1: लगातार फरार चल रहे नंदन यादव को देश ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए देखा। जम्मू में जिस बेखौफ अंदाज में दसवीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और सरेआम बदसलूकी की गई, उसने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया। इनमें 3 नाबालिग भी हैं। दोनों मुख्य आरोपियों नंदन यादव और हरेराम यादव को तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
2: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है, यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर, और यहां से उनको लेकर के जब वो घायल हो गया तो यहां से ले जा करके फिर जमुई अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है।
3: हमारे गांव की तरफ उधर से जम्मू जिला से रपेटते हुए आए प्रशासन लोग, तो हमारे कुंदर गांव के लोग उधर गांव में हम लोग जब भीड़ जमा देखा तो कांस की ओर छुपने का प्रयास किया। उसके बाद उधर से बराज पर से पुलिस लोग इधर लखीसराय जिला में आए और जिला से फिर इधर से घेरे तो ये लोग को यहां रपेट करके पकड़ करके पैर में गोली मारा गया और पकड़ा के फिर जम्मू।
2: ये कौन सा नदी क्षेत्र है?
3: ये क्यूल नदी।
2: क्यूल नदी
3: जी जी जी।
2: तो ये दोनों किस गांव के, मतलब प्रतापपुर के रहने वाले?
3: दोनों प्रतापपुर के रहने वाले हैं।
2: अच्छा
3: जी।
2: तो ये पुलिस से भाग रहे थे? ये
3: भाग रहे थे सर।
2: और पुलिस को चैलेंज भी किया
3: जी, पुलिस के ऊपर गोली चलाया, पुलिस को मारा गोली।
2: अच्छा, पुलिस के ऊपर गोली चलाया इन्होंने।
1: नंदन यादव और हरेराम यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
4: अभी तक कल 3 व्यक्ति